0: आवश्यकता है। वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है।
1: 13 अगस्त को लोकसभा में संसद सत्र का समापन संपूर्ण वंदे मातरम से हुआ था, जिसके बाद 15 अगस्त को पहली बार लाल किले में वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। 17 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम के सिर्फ 2 पद गाए गए। इसके बाद खड़गे ने साफ कर दिया था कि पार्टी वंदे मातरम के सभी 6 पद नहीं गाएगी।
2: कंप्लेंट वो क्या फाइल करी, जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया या जे उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं।
1: अब कांग्रेस जहां 2 पद गाने पर अड़ी है तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है।
3: अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर।
4: मेरा अधिकार है मैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता बरकरार रखूं। इस्लाम के अंदर अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती, लेकिन इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया। 51 सेकंड का राष्ट्रगान, 312 सेकंड का राष्ट्रगीत इन्होंने पहले नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया, इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया।
1: अब सवाल यह है कि क्या जिस वंदे मातरम को लेकर बिल पास किया गया है, क्या उसके अपमान के मुद्दे पर सरकार का एक्शन होगा या फिर ये सिर्फ सियासत तक सीमित रह जाएगा। आज तक ब्यूरो।
5: झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। सोरेन सरकार के निर्णय पर रोक के बाद नौकरी खोने वाले सरकारी कर्मचारी अब खुशियां मना रहे हैं।
1: रांची में जेपीएससी जेएसएससी को लेकर छात्रों के जश्न को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि आज हाईकोर्ट से प्रदर्शनकारियों को बड़ा झटका लगा। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से 15 सितंबर तक जवाब मांगा है।
6: प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की धज्जी उड़ाई गई है सरकार के द्वारा, इसलिए हमने आ रहा ये बहस था कि इस तरह का ऑर्डर रातों रात नहीं पारित किया जा सकता है। टेंटेड और अनटेंटेड में फर्क करना पड़ेगा सरकार का, सरकार को।
1: अब मामले में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है।
7: शायद इसी वजह से विलंब हो रहा होगा जिसके लिए, लेकिन इतना दबाव और इतना मतलब कुछ लोग राजनीति कर रहे थे इसको लेकर, चीजों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है कि शायद इसी का अंदेशा होगा जिसकी वजह से उस समय विलंब हो रहा था डिसीजन लेने में।
8: सरकार ने पहले से ही ऐसा षड्यंत्र कर दिया था आंदोलन को समाप्त करने के लिए और एक बहुत ही कमजोर ब्लैंकेट ऑर्डर निकाला था जो सबको पता था कि संभवतः ये जुडिशियल स्क्रूटनी के सामने टिकने वाला नहीं है, और हुआ भी वही। अदालत ने आज ये इंटरिम रोक लगा दी, सरकार से जवाब मांगा।
1: झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की ओर से आयोजित फूड सेफ्टी ऑफिसर के इम्तिहान को भी कैंसिल कर दिया था, जिससे एक झटके में 56 लोगों की नौकरी चली गई थी जो कि आज प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने राहत की सांस ली है।
9: और जज सर भी हमारी प्रॉब्लम को समझे, वो उन्होंने खुद बोला कि अगर ये मेरे साथ आप लोग कर देते, मेरे साथ ये इंसिडेंट हो जाता, रातों रात मेरा कुर्सी आप लोग छोड़वा देते तो हम क्या बोलते। वो खुद शर्मिंदा थे कि इस तरह डिसीजन सरकार कैसे ले सकती है, ये सीधा सीधी एक नेचुरल जस्टिस का हनन है।
1: बहरहाल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
5: जेन जी को लेकर हर पार्टी ने अपनी रणनीति को नए सिरे से गढ़ना शुरू कर दिया। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक अब जेन जी वोटर्स को टारगेट करने का मन बना चुके हैं।
1: सरकारें ही नहीं, देश में अरसे से सियासत करने वाले राजनीतिक दल भी अब जेन जी और जेन अल्फा के मुद्दों के जरिए जमीनी आधार दोबारा हासिल करने की जुगत में जुट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में जेन जी आउटरीच प्रोग्राम के तहत वन डे वन यूनिवर्सिटी अभियान चालू करने को कहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और युवा खेल मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया को जिम्मा सौंपा गया है, क्योंकि देश में करीब 1300 विश्वविद्यालय हैं। इनमें 57 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 522 राज्य विश्वविद्यालय के अलावा डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं। किस मंत्री को कब और किस यूनिवर्सिटी में जाना है, इसका एक लिखित औपचारिक शेड्यूल बन रहा है, क्योंकि मंत्रियों का ये दौरा दिन भर का होगा जिसमें वो विद्यार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। इतना ही नहीं, मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों के दौरे पर भी जाएंगे और बच्चों से संवाद करेंगे। नई पीढ़ी से राजनीतिक संवाद बढ़ाने के लिए पीएम बेहद गंभीर हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने मंत्रियों को ये भी सलाह दी है कि पारंपरिक तरीके छोड़कर अब जेन जी और युवा वोटर्स के पसंदीदा तरीकों से संवाद स्थापित करें। इसके लिए मंत्रियों को फेसबुक, एक्स के अलावा इंस्टा, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने को कहा गया है। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार की खानापूर्ति वाले पोस्ट के बजाय शॉर्ट्स, रील्स, वर्टिकल्स, सेल्फी स्टाइल में कंटेंट क्रिएटर की तरह पोस्ट करने को कहा गया है, क्योंकि अब सीएम और मंत्रियों के यूथ कनेक्ट को परफॉर्मेंस रिव्यू का हिस्सा भी बनाया जाएगा। दरअसल कैबिनेट बैठक के अंदर मंत्रियों का जो सोशल मीडिया रिपोर्ट कार्ड दिया गया, उसमें मंत्रियों का सोशल मीडिया आउटरीच का पूरा डेटा था। खासकर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के आंकड़े रखे गए थे। जिन पैमानों पर परफॉर्मेंस आकी गई, उसमें ये था कि मंत्री ने रोज कितने पोस्ट किए, उनके पोस्ट पर कितने लाइक्स, कितने शेयर, कितने कमेंट्स, यानी कुल एंगेजमेंट कितनी हुई, मंत्री के प्रति पोस्ट औसतन कितने लोग जुड़ रहे हैं, मंत्री के फॉलोअर्स कितने हैं, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, और मंत्री ने सरकारी योजनाओं कामयाबियों को कितने प्रभावी ढंग से डिजिटली प्रमोट किया है। उधर राहुल गांधी भी 22 अगस्त को पुणे में छात्रों के साथ गूंज कार्यक्रम करने जा रहे हैं।
10: छात्रों की गूंज है या राहुल गांधी अपनी जमीन तलाश रहे, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझे जानकारी है, अगर वो एक ओपन इस प्रकार का इवेंट करते तो शायद ये छात्रों से संवाद होता।
1: बहरहाल जेन जी के मुद्दे ने हर पार्टी को अपनी रणनीति पर नए सिरे से मंथन करने पर मजबूर कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
5: यूपी में जेन अल्फा बुनियादी समस्याओं को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी मामले को लेकर सख्त हैं, जहां अब नए सिरे से किसी भी तरह की लापरवाही के विरोध में एक्शन के आदेश उन्होंने दे दिए हैं।
1: जब जिले जिले जनरेशन अल्फा यानी स्कूली बच्चे अपनी मांगों और शिकायतों को लेकर सड़क पर उतरने लगे, तो प्रदेश में अव्यवस्था और नाकामी के सवाल बड़े होते दिखने लगे। तो सीएम योगी ने सख्ती की। स्कूली बच्चों की परेशानियों को फौरन दूर करने के लिए सीएम दफ्तर की निगरानी शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर शिक्षण संस्थानों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा, तमाम शिक्षण संस्थानों की अलग अलग अधिकारियों के जरिए निगरानी होगी। जहां भी खामियां सामने आएंगी, उन्हें फौरन दूर करने के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों को चिन्हित किया जाएगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को स्कूलों से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों के सोशल मीडिया अकाउंट के मामलों की जांच कर तथ्यात्मक जवाब देने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर शिकायत मिलते ही डीएम और मंडलायुक्तों को जांच की जिम्मेदारी मुख्य सचिव ने दी है। बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने, साफ सफाई और छात्रों अभिभावकों से नियमित संवाद के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खासकर स्कूलों में एमडीएम, किचन, ब्लैक बोर्ड, विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें और जरूरी सामग्री समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश के दौरान स्कूलों में जल भराव और साफ सफाई की समस्या दूर करने के लिए ब्लॉक वार निर्देश दिए गए हैं। उधर समाजवादी पार्टी ने जेन जी को ध्यान में रखकर नई पॉलिसी बनाई है। खबर है कि समाजवादी पार्टी जेन जी वोटरों को एआई, मीम और शॉर्ट वीडियो के जरिए साध रही है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और पार्टी के आधिकारिक हैंडल से एआई जनरेटेड वीडियो और ग्राफिक्स साझा किए जा रहे हैं। पार्टी के राजनीतिक संदेश, नीतियां और उपलब्धियां भी एआई कंटेंट के रूप में जेन जी तक पहुंचाई जा रही हैं। क्योंकि यूपी में करीब 21% वोटर 18 से 29 वर्ष की उम्र के हैं, जिनके ऊपर समाजवादी पार्टी का खास फोकस है।
11: अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का व्यवहार किसी ट्रोलर की तरह हो गया है। झूठे चित्र, झूठे वीडियो लाकर समाज को भ्रम में पैदा करो।
12: समाजवादियों ने ही इनको कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप देने का काम किया। वही लैपटॉप समाजवादी द्वारा दिए लैपटॉप को, जब ऑनलाइन पढ़ाई की बात है तो समाजवादी पार्टी द्वारा दिए लैपटॉप और आईपैड से ही छात्रों ने अपनी पढ़ाई की।
1: समाजवादी पार्टी ही नहीं, अब कांग्रेस से लेकर बीएसपी तक की नजर भी जेन जी क्लास के वोट बैंक की ओर घूम रही है। यूपी कांग्रेस भी डिजिटल मोर्चे पर सक्रिय हो चुकी है। हर जोन के लिए सोशल मीडिया और आईटी सेल की टीमें मजबूत की जा रही हैं। कांग्रेस मीम, व्यंग, ग्राफिक्स और विजुअल कंटेंट के जरिए सरकार विरोधी मुद्दों को युवाओं तक पहुंचा रही है। उधर मायावती के निर्देश पर बीएसपी भी बूथवार समीक्षा बैठकें कर रही है। इसमें भी जेन जी कनेक्ट का आधार तलाशा जा रहा है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
5: उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एनकाउंटर, ये दो कार्रवाई ऐसी हैं जिनके दम पर सरकार कानून व्यवस्था की मजबूती, अपराधियों पर लगाम का दावा करती है। विपक्ष इन दोनों ढंगों से चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई का आरोप लगाता है। इस सब के बीच 15 महीने पुराने एक हाफ एनकाउंटर से जुड़ी खबर पर कोर्ट ने ही आदेश दिया, जहां एनकाउंटर की सीबीआई जांच का आदेश देते हुए अदालत ने पुलिस अधिकारी की निशानेबाजी की क्षमता तक जांचने को कह दिया।
13: 12 मई 2025 जगह श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, अलाउद्दीन उर्फ छुटकऊ नाम के आरोपी को गोली मारकर हाफ एनकाउंटर किया जाता है। यूपी में हाफ एनकाउंटर का मतलब है पैरों में गोली लगना। मई 2025 में श्रावस्ती पुलिस की टीम आरोपी अलाउद्दीन को नाबालिग बच्ची के अपहरण के मामले में गिरफ्तार करने पहुंची थी। पुलिस कहती कि तभी इसने फायर किया और दोबारा जब रात के अंधेरे में पुलिस के मुताबिक आरोपी ने हथियार लोड करना चाहा, तो ये है तत्कालीन एसएचओ इकोना अश्विनी कुमार दुबे, जो बहुत बहादुरी से कहा जाता है कि उसी रात के अंधेरे में केवल हथियार लोड होने की आवाज सुनकर ऐसी गोली चलाते हैं जो सीधे आरोपी के पैर में लगती है, किसी और को नहीं।
14: के पास वहां घेराबंदी की गई और जब पुलिस ने उसको रोका तो उसने पुलिस पर फायर किया और पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया, जिसमें उसके दोनों पैर में गोली लगी है और उसको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया।
13: मई 2025 के इस हाफ एनकाउंटर पर 23 पुलिस वालों को पुरस्कार मिला, लेकिन अब एनकाउंटर से लेकर पुरस्कार तक पर सवालों का नया एनकाउंटर शुरू हो चुका है। हाफ एनकाउंटर के 15 महीने बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मई 2025 के श्रावस्ती के एकौना में अलाउद्दीन वाले हाफ एनकाउंटर पर यूपी पुलिस को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की सिंगल बेंच ने कहा है कि 23 पुलिस वालों से घिरे होने के बावजूद आरोपी ने फायरिंग की, जिसमें एक भी पुलिस वाला घायल नहीं होता। वहीं रात 11 बजे सुनसान इलाके में 15 मीटर की दूरी से एसएचओ ने गोली चलाई और वो सीधे आरोपी के दोनों पैर में लगी। श्रावस्ती में हुए हाफ एनकाउंटर पर सीबीआई जांच का आदेश लखनऊ की अदालत ने दिया है और कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई अपनी जांच के दौरान तत्कालीन एसएचओ अश्विनी कुमार दुबे की निशानेबाजी और शूटिंग क्षमता का भी जरा परीक्षण कर ले।
15: कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस की जीप में कैसे 23 लोग बैठ सकते हैं और वहीं रात के अंधेरे में एसएचओ, जिसने इस पूरी एनकाउंटर की कहानी बताई, एफआईआर दर्ज करवाई, वो रात के 11 बजे कैसे असलाह को लोड करने की आवाज से उसने फायरिंग की और जिसमें जो आरोपी था उसके दोनों पैर में सटीक जाकर गोली लगी है।
16: इतना सटीक निशाना बहुत सव्यसाची तो है नहीं, सव्यसाची तो मैंने सुना था कि राजा दशरथ थे जो किसी की आवाज पे तीर मार देते थे, उसी में शायद श्रवण कुमार भी मरा था। सव्यसाची नहीं है ये, अगर इन्हें ये बोलना चाहिए था कि हाँ मैंने ऐसा अनुमान में लगाया तो अनुमान से भी चलाया तो किसी अन्य को भी गोली लग सकती थी ना, कोई और भी तो मर सकता था। सटीक इनकाउंटर होना चाहिए, किसी अन्य की जनहानि नहीं होना चाहिए, किसी का अन्य घायल भी हो सकता था। ये मुझे गले से उतरने वाली बात नहीं, कोर्ट ने बिल्कुल सही ये जांच के आदेश दिए हैं और मैंने बहुत पहले भी कहा है कि जिस दिन एनकाउंटर इस तरह के फंसेंगे जवाब देते नहीं बनेगा, सजा हो जाएगी लोगों को।
17: जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है छुटकाऊ का गोली लगने के बाद, उसमें जो वुंड का साइज आता है वो है 0.5 सेंटीमीटर और जो गोली एसएचओ के माध्यम से पता, केस डायरी के माध्यम से पता चली कि चलाई गई है वो है 0.9 mm की। तो गोली जब 9 mm की है और एंट्री वुंड है 0.5 mm का, तो ये बहुत ही इम्प्रोबेबल चीज़ें हैं जो कोर्ट को लगी हैं। एक बहुत ही कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई गई है पुलिस के द्वारा और जो कि मानने के योग्य नहीं है।
13: उत्तर प्रदेश पुलिस के बहुत से एनकाउंटर पर सियासी सवाल जवाब होता आया है। श्रावस्ती एनकाउंटर अपने आप में शायद ऐसा पहला केस है जहां एनकाउंटर करने वाले पुलिस वाले की निशानेबाजी क्षमता के परीक्षण तक का आदेश दे दिया गया है। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
5: खबर राजस्थान की, जहां जेन अल्फा की समस्याओं को लेकर सरकार ने अनोखा आदेश जारी किया। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में मीडिया के प्रवेश पर रोक लगा दी गई, जिसे लेकर अब कांग्रेस ने हल्ला बोला है।
1: राजस्थान में मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस का ये प्रदर्शन उस फैसले के खिलाफ है जिसमें राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में प्रवेश पर बैन लगा दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने आज मार्च निकाला और विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया।
18: इतने बच्चों की जान चली गई, छतें गिर रही हैं, बाढ़ आ रही है, व्यवस्था चरमरा गई है, बजाय उस वास्तविकता को एक्सेप्ट करके उस पे कदम उठाएं, सरकार ने आदेश जारी कर दिया। कोई फोटो नहीं खींचेगा, कोई रील नहीं बनाएगा, कोई मीडिया नहीं जाएगा, सरकारी स्कूलों पे लोगों को पाबंद कर दिया। अगर आप जाएंगे अंदर, आप पे पॉस्को कानून लगा दिया जाएगा। तो ये सरकार को जो एक तानाशाह रवैया है और शिक्षा मंत्री जो एक बेवजह इस प्रकार के आदेश जारी किए, उसके विरोध में हम लोग बैठे हैं।
1: कांग्रेस के नेताओं को सुरक्षा बलों ने रोकने की कोशिश की, जो कि हंगामे में तब्दील हो गए।
19: किसको बचा रहे हैं? कब तक बचाएंगे? कब तक बचाएंगे इस चोर मंत्री को? 15 दिन पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष गए थे, इन्होंने वादा करा था कि स्कूल को सही कर देंगे, आज तक एक कमरा नहीं बना पाए, ऊपर से नोटिस लगा दिया कि अंदर नहीं जा सकते, बेशर्म कहीं के।
1: बीजेपी अब कांग्रेस से सवाल कर रही है।
20: उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल और केवल मात्र हंगामा खड़ा करना उनका मकसद था, उन्होंने अपने आचरण के माध्यम से इसको स्पष्ट कर दिया।
19: पुलिस फोर्स
1: लगा। दरअसल पिछले काफी वक्त से राजस्थान के स्कूलों की हालत को लेकर घमासान चल रहा था। सीजेपी ने स्कूलों के मुद्दे पर मोर्चा संभाला तो अलवर के एक स्कूल में प्रवक्ता आशुतोष प्रांका के जाने पर जबरदस्त हंगामा हुआ था, जिसके बाद राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने राजस्थान के स्कूल परिसरों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए ये निर्देश जारी किया, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
5: खबर पाकिस्तान की, जिसके कश्मीर प्रोपोगंडा की अमेरिका ने हवा निकाल दी। अमेरिका के भारतीय राजदूत ने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है।
21: ट्रंप के बेहद करीबी और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर न केवल श्रीनगर पहुंचे बल्कि इसे भारत का बेहद अहम हिस्सा भी बता दिया।
22: Knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi.
21: सर्जियो गोर का ये बयान महज इसलिए अहम नहीं क्योंकि वो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, बल्कि ट्रंप ने उन्हें दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए अमेरिका का विशेष दूत भी बनाया है। इस लिहाज से उनके बयानों का प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति पर पड़ता है। उनके कश्मीर आने से पहले महबूबा मुफ्ती ने ये मांग उठाई थी कि अमेरिका कम से कम कश्मीर के लिए अपनी एडवाइजरी को हटा ले, जिसमें उसने अमेरिकी लोगों को कश्मीर न जाने की सलाह दे रखी है। इस पर भी सर्जियो गोर ने कश्मीर के पक्ष में बड़ा बयान दे दिया।
22: The chief minister here, the government here, we believe have made some incredible steps to keeping this area safer and making it more safe. And so we will be looking at if the travel warning that is imposed, that is recommended by the United States, is something that should be downgraded. Because as I said earlier, this is a beautiful area. I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exist here.
21: दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी फौज लाशें बिछा रही है, जबकि श्रीनगर में अमेरिका के राजदूत बेखौफ होकर शिकारा की सवारी कर रहे हैं। इन सब के बावजूद सर्जियो गोर के बयानों से पाकिस्तान बौखला गया। उसने इस्लामाबाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास की प्रभारी राजनयिक नताली बेकर को विदेश मंत्रालय तलब किया। उसके विदेश मंत्रालय ने रोना धोना शुरू कर दिया और कहा कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा बताए जाने की कड़ी निंदा करता है और इसे पूरी तरह से खारिज करता है। यही नहीं, पाकिस्तान ने ट्रंप के बेहद करीबी सर्जियो गोर के बयान को गैर जिम्मेदाराना बता दिया पाकिस्तान में मची खलबली अभी खत्म नहीं हुई है। उसके पूर्व राजनयिक मसूद खान कह रहे हैं कि सरजू गोर को जम्मू कश्मीर के इतिहास की जानकारी नहीं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।
5: खबर मौसम की, जहां नदियों में उफान ने शहरों का बुरा हाल कर दिया। यूपी के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। नदियों के पानी ने रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर लिया है।
1: ये प्रयागराज है, संगम नगरी प्रयागराज। कहने को तो ये स्मार्ट सिटी है, लेकिन अभी तो एक्वा सिटी प्रयागराज बनी हुई है। ये प्रयागराज की सिवाई चिंतामणि रोड है। कहने को ये पौश इलाका है, लेकिन पौश इलाके की मूलभूत व्यवस्था यही है कि पानी की वजह से बिजली पानी सब बंद है।
0: घरों के सामने सड़कें हैं, वहाँ जलभराव की स्थिति है। और ये पानी जो बारिश का पानी है, सड़कों के अलावा घर में भी घुस गया है। आलम यह है कि लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं, बारिश के पानी ने इन सभी लोगों को घरों में हाउस अरेस्ट कर लिया है।
1: लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि घर के बाहर निकले तो रोड पर पानी, घर पर रहे तो कमरे में पानी।
2: हम लोग के घर में बहुत सारा पानी घुस चुका है, तो हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं। दूसरा, मेरे स्कूल में दो बार छुट्टी हो चुकी है, हम लोग के दो एग्जाम कैंसिल हो चुके,
3: जिसको कहते हैं जेल। हम लोग जेल में बंद है, ना हमारे पास पानी है, ना लाइट। हम लोग रात रात भर नहीं सोए, पंखा, पुराना दिया, बत्ती, अगरबत्ती, यही सब कर रहे हैं। पीने का पानी नहीं है, नहाने का पानी नहीं है। किसी तरह जो जरा से इकट्ठा पानी हुआ तो उसको उबाल के ठंडा करके वही पी रहे हैं।
23: और पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना सभासद आए, ना विधायक आए, ना सांसद, तीनों भाजपा के।
1: वाराणसी का हाल भी देख लीजिए। बड़े बड़े घाटों को गंगा नदी ने अपने आगोश में ले लिया है।
24: वाराणसी में गंगा का जल स्तर पक्के घाटों को डुबोने के बाद अब गलियों और सड़कों के जरिए शहर के अंदर पहुंचने के लिए आमादा है। गंगा के अलावा वरुणा के भी काफी तटीय इलाकों में बढ़ता हुआ जल स्तर पहुंच चुका है।
1: कानपुर में भी गंगा नदी के विकराल रूप की तस्वीरें आ रही हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन की टीमें संवेदनशील इलाकों की पहचान कर रही हैं, जहां खतरा ज्यादा है।
25: पीछे अगर आप मेरे देखेंगे तो यहां पर कानपुर के पुलिस कमिश्नर मौजूद हैं, जो खुद बोट के जरिए अपने बाकी पुलिस अधिकारियों के साथ यहां पर निरीक्षण कर रहे हैं घाटों का। स्पीकर के जरिए लोगों को चेताया जा रहा है कि वह किस तरीके से सावधान रहे, क्योंकि जो वाटर लेवल है वो डेंजरस मार्क पे लगभग पहुंच चुका है।
1: यूपी के 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 84,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। आज तक ब्यूरो।
5: पहाड़ों पर जमकर बरसात हो रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में मूसलाधार बारिश से फ्लैश फ्लड आ गया कई इलाकों में। हिमाचल के कांगड़ा में नेशनल हाईवे पर अचानक पानी आने से कई लोग फंस गए।
26: ये तस्वीरें कांगड़ा के प्रागपुर इलाके की है, जहां फ्लैश फ्लड से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। बहाव इतना तेज था कि कांगड़ा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे तक पानी पहुंच गया। पानी के तेज बहाव के बीच में एक कार सवार फंस गया। कार ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, लेकिन पानी की धारा इतनी तेज थी कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकी। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की और कार में सवार लोगों को बाहर निकाला, लेकिन कार पानी में बह गई। अब जरा अनंतनाग की तस्वीरें भी देखिए। घरों के बीच में पानी ऐसा आ गया मानो ये मकान किसी नदी पर बनाए गए हों। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, आंगन तक पानी भर गया। ऊंचाई वाले इलाकों में जब मूसलाधार बरसात होती है तो निचले इलाकों में फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ की घटनाएं बढ़ जाती हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी इन दिनों फ्लैश फ्लड की घटनाएं बढ़ गई हैं। आज तक ब्यूरो।
5: भारत और जापान के बीच आज एक बड़ा रक्षा समझौता हुआ। इस समझौते में कई विशेष बातें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात भारत और जापान का मिलकर नौसेना का जहाज बनाने की तरफ बढ़ना। और अगर ऐसा होता है तो फिर भारत की नौसेना न सिर्फ आत्मनिर्भर होगी बल्कि मेक इन इंडिया को भी इससे मिलेगा बढ़ावा।
27: पहली बार मिलकर नौसेना का जहाज बनाने की तरफ बढ़े भारत और जापान। पहली बार भारत आएंगे जापान के लड़ाकू विमान। भारत के थिएटर कमांड में भी मदद करेगा जापान। भारत और जापान के बीच बढ़ता दोस्ताना दुश्मनों को खबरदार कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के रक्षा मंत्री शिंजो कोइजुमी को कोनिचिवा और अरिगातो कहकर विदाई दी है, जिसके जवाब में कोइजुमी ने जवाब में नमस्ते कहकर भारत और जापान के बीच रक्षा संबंधों के गहरे रिश्तों का साफ साफ संकेत दे दिया। रक्षा मंत्रियों के बीच दिखी ये गर्मजोशी भारत और जापान के बीच हुए बड़े रक्षा समझौते में भी नजर आती है, जो देश के दुश्मनों के लिए जोरदार झटके से कम नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री के बीच द्विपक्षीय बैठक में इन दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर व्यवस्था संबंधी समझौते को लेकर हस्ताक्षर किए गए।
4: नमस्ते।
6: एक्सेलेंसी कोइजुमी-शान, कोनिचिवा।
27: इसकी जानकारी खुद देश के रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर दी है और लिखा है कि इंडो पैसिफिक में स्थिरता के लिए एक अहम पड़ाव। नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी के साथ बहुत सार्थक बैठक हुई है। हमारी बातचीत समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया रक्षा तकनीक और रणनीतिक भरोसे को बढ़ाने पर केंद्रित रही है।
6: अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 इयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
27: दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा समझौते में नौसेनाओं के बीच सहयोग, सूचना का आदान प्रदान, खोज और बचाव, मानवीय सहायता, आपदा राहत जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया। लेकिन सबसे अहम बात, भारत और जापान का नौसेना के जहाजों को मिलकर बनाने और डिजाइन करने को लेकर बनती एक राय है। जापान के एडवांस तकनीक और भारत की उत्पादन क्षमता का मेल मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। जापान के मोगामी क्लास फ्रिगेट जैसे आधुनिक जहाजों की तकनीक भारत के लिए उपयोगी हो सकती है। इससे पहले दोनों देशों के बीच नेवल रेडियो एंटीना सिस्टम को मिलकर बनाने का समझौता कर लिया गया था, लेकिन मिलकर नौसैनिक जहाज बनाने का कदम भारत की नौसेना को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगा। इनका सीधा असर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के इरादों पर होगा, जो जापान, फिलीपींस जैसे अपने पड़ोसियों को डराने के साथ ही हिंद महासागर में भी अपना शिकंजा कस रहा है। लेकिन इस समुद्री समझौते के बाद दोनों देश हर तरह से एक दूसरे की मदद करेंगे।
7: तो ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

वंदे मातरम पढ़े जाने को लेकर सियासी संग्राम तेज। शाह ने बताया देश विरोधी, कहा मुस्लिम तुष्टिकरण कांग्रेस की नीति। आज पूरे केरलम में बीजेपी का वंदे मातरम को लेकर कार्यक्रम। परीक्षा रद्द करने के फैसले पर अदालती रोक के बाद फिर झारखंड में हलचल। आज जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मोर्चा राज्यभर में करेगा पुतला दहन। सरकार पर धोखे का आरोप, बड़े आंदोलन की चेतावनी। लखनऊ में बैंक कर्मी की हत्या के मामले में नया खुलासा। दो दिनों से रेकी कर रहा था आरोपी पति। बैंक के सामने हुई वारदात से जुड़ी तस्वीरें सामने आई, जांच जारी। ईरान के खिलाफ ट्रंप का बड़े पैमाने पर आर्थिक युद्ध का ऐलान। अब तक आदेश जारी नहीं। ईरान ने प्रतिबंधों की धमकी को बताया गैर कानूनी और अमानवीय। और आखिरकार 3 साल बाद अडियाला जेल से इस्लामाबाद के अस्पताल में शिफ्ट किए गए इमरान खान। कड़ी सुरक्षा घेरे में पहुंचा काफिला। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब इलाज चलेगा।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। वंदे मातरम पर मचा है घमासान। कांग्रेस वंदे मातरम के पहले दो पैरा पर अड़ गई है। बीजेपी इसे वंदे मातरम का अपमान बता रही है। अब इसे लेकर सियासत तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है।
1: कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में साफ कर दिया गया कि कांग्रेस वंदे मातरम के दो पैरा ही गाएगी।
2: टॉप मोस्ट लीडरशिप ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइडेड दैट व्हाटएवर द डिसीजन दे टुक वी विल अबाइड दैट डिसीजंस। वी आर वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट दैट आवर कांग्रेस पार्टी वर्कर्स विल डू दैट ओनली। दिस इज अवर डिसीजन। फर्स्ट टू चांस था।
1: अमित शाह इसे वंदे मातरम का अपमान बता रहे हैं।
3: इनकी घोर तुष्टिकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है।
1: 13 अगस्त को लोकसभा में संसद सत्र का समापन संपूर्ण वंदे मातरम से हुआ था, जिसके बाद 15 अगस्त को पहली बार लाल किले में वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। 17 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम के सिर्फ दो पद गाए गए। इसके बाद खड़गे ने साफ कर दिया था कि पार्टी वंदे मातरम के सभी 6 पद नहीं गाएगी।
4: कंप्लेंट वो क्या फाइल करी, जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया है आज उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं।
1: अब कांग्रेस जहां दो पद गाने पर अड़ी है तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है।
5: अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर।
6: मेरा अधिकार है मैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता बरकरार रखूं। इस्लाम के अंदर अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती, लेकिन इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया। 51 सेकंड का राष्ट्रगान, 312 सेकंड का राष्ट्रगीत इन्होंने पहले नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया।
1: अब सवाल यह है कि क्या जिस वंदे मातरम को लेकर बिल पास किया गया है, क्या उसके अपमान के मुद्दे पर सरकार का एक्शन होगा या फिर ये सिर्फ सियासत तक सीमित रह जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: उधर झारखंड में 26 दिनों तक छात्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला ले लिया था। सरकार के उस फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत के फैसले को लेकर परीक्षा के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्र एक बार फिर गुस्से में हैं। आज जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्र पूरे झारखंड में सीएम सोरेन का पुतला दहन करने जा रहे हैं।
1: रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 26 दिनों तक डटे रहे छात्र लौट चुके थे। परीक्षा रद्द किए जाने के बाद से वो सोरेन सरकार के फैसले से खुश थे। 2 महीने के लिए अपना आंदोलन स्थगित कर छात्र जा चुके थे, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला किया है कि रांची में फिर से हलचल तेज हो गई। गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की 11वीं और 13वीं परीक्षा के जरिए सरकारी कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करने वाले नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी। साथ ही फूड सेफ्टी अफसरों की नियुक्तियों को रद्द करने वाले आदेश पर भी स्टे लगा दिया। साथ ही कहा कि दोनों परीक्षा की याचिकाकर्ता तत्काल प्रभाव से काम पर वापस लौटेंगे। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के बैनर तले प्रदर्शन करने वाले छात्र इस फैसले को लेकर नाराज हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने परीक्षा रद्द करने को लेकर कोर्ट में अपना पक्ष सही से नहीं रखा।
7: आपका जो मनसा हम आज कोर्ट में देखने को जो मिला, आप किस मनसा के साथ आप जो ऐसा कोर्ट में उतरने का काम किए हैं, उस मनसा को हम तमाम छात्र आज पढ़े हैं। आप ये धोखा सिर्फ झारखंड के लाखों छात्रों को नहीं दिए हैं, झारखंड के तमाम आम आवाम को दिए हैं, झारखंड के उन तमाम अभिभावक को दिए हैं जिन्होंने अपने बच्चा को, अपने बेटा और बेटियों को पिछले 26 दिनों से अपने हक और अधिकार के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भेजने का काम किए थे।
1: अब एक बार फिर से छात्र संगठन ने अपील की है कि आज झारखंड के सभी जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका जाएगा।
8: मैं अपील करूंगा कि कल पूरे मुख्यालय में, राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में आप माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला फूंकने का कार्य करें और उन्हें चेतावनी दें कि सुधर जाए, अन्यथा इस बार उससे भी बड़ा आंदोलन होगा जिसे कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी।
1: 16 दिनों तक अनशन करने वाले देवेंद्र महतो ने भी चेतावनी दी है कि सरकार ने लापरवाही बरती तो बड़ा आंदोलन करेंगे।
9: अगर सरकार अपना पक्ष रखने में, अपना जांच रिपोर्ट रखने में अगर किसी तरीके से लिपापोती करती है, किसी तरीके से कोताही बरतती है, तो यहाँ के छात्र बिल्कुल अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब जेपी के तर्ज पर, जेपी आंदोलन के तर्ज पर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, ये हम आज ऐलान करते हैं।
1: हाई कोर्ट ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 15 सितंबर तक जवाब मांगा है। सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।
0: और बात करेंगे जेन जी की, जिसे लेकर हर पार्टी ने अपनी रणनीति को नए सिरे से गढ़ना शुरू कर दिया है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक अब जेन जी वोटर को टारगेट करने का मन बना चुकी है।
10: सरकारें ही नहीं, देश में अरसे से सियासत करने वाले राजनीतिक दल भी अब जेन जी और जेन अल्फा के मुद्दों के जरिए जमीनी आधार दोबारा हासिल करने की जुगत में जुट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में जेन जी आउटरीच प्रोग्राम के तहत वन डे वन यूनिवर्सिटी अभियान चालू करने को कहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और युवा खेल मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया को जिम्मा सौंपा गया है, क्योंकि देश में करीब 1300 विश्वविद्यालय हैं। इनमें 57 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 522 राज्य विश्वविद्यालय के अलावा डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं। किस मंत्री को कब और किस यूनिवर्सिटी में जाना है, इसका एक लिखित औपचारिक शेड्यूल बन रहा है, क्योंकि मंत्रियों का यह दौरा दिन भर का होगा जिसमें वो विद्यार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। इतना ही नहीं, मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों के दौरे पर भी जाएंगे और बच्चों से संवाद करेंगे। नई पीढ़ी से राजनीतिक संवाद बढ़ाने के लिए पीएम बेहद गंभीर हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने मंत्रियों को ये भी सलाह दी है कि पारंपरिक तरीके छोड़कर अब जेन जी और युवा वोटर्स के पसंदीदा तरीकों से संवाद स्थापित करें। इसके लिए मंत्रियों को फेसबुक, एक्स के अलावा इंस्टा, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने को कहा गया है। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार की खानापूर्ति वाले पोस्ट के बजाय शॉर्ट्स, रील्स, वर्टिकल्स, सेल्फी स्टाइल में कंटेंट क्रिएटर की तरह पोस्ट करने को कहा गया है, क्योंकि अब सीएम और मंत्रियों के यूथ कनेक्ट को परफॉर्मेंस रिव्यू का हिस्सा भी बनाया जाएगा। दरअसल कैबिनेट बैठक के अंदर मंत्रियों का जो सोशल मीडिया रिपोर्ट कार्ड दिया गया, उसमें मंत्रियों का सोशल मीडिया आउटरीच का पूरा डेटा था। खासकर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के आंकड़े रखे गए थे। जिन पैमानों पर परफॉर्मेंस आकी गई, उसमें ये था कि मंत्री ने रोज कितने पोस्ट किए, उनके पोस्ट पर कितने लाइक्स, कितने शेयर, कितने कमेंट्स, यानी कुल एंगेजमेंट कितनी हुई, मंत्री के प्रति पोस्ट औसतन कितने लोग जुड़ रहे हैं, मंत्री के फॉलोअर्स कितने हैं, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, और मंत्री ने सरकारी योजनाओं, कामयाबियों को कितने प्रभावी ढंग से डिजिटली प्रमोट किया है। उधर राहुल गांधी भी 22 अगस्त को पुणे में छात्रों के साथ गूंज कार्यक्रम करने जा रहे हैं।
11: छात्रों की गूंज है या राहुल गांधी अपनी जमीन तलाश रहे, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझे जानकारी है, अगर वो एक ओपन इस प्रकार का इवेंट करते तो शायद ये छात्रों से संवाद होता।
10: बहरहाल जेन जी के मुद्दे ने हर पार्टी को अपनी रणनीति पर नए सिरे से मंथन करने पर मजबूर कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: उधर उत्तर प्रदेश में जेन अल्फा बुनियादी समस्याओं को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ मामले को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं, जहां अब नए सिरे से किसी भी तरह की लापरवाही के खिलाफ एक्शन के आदेश दिए गए हैं।
1: जेन
10: जब जिले जिले जनरेशन अल्फा यानी स्कूली बच्चे अपनी मांगों और शिकायतों को लेकर सड़क पर उतरने लगे तो प्रदेश में अव्यवस्था और नाकामी के सवाल बड़े होते दिखने लगे। तो सीएम योगी ने सख्ती की, स्कूली बच्चों की परेशानियों को फौरन दूर करने के लिए सीएम दफ्तर की निगरानी शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर शिक्षण संस्थानों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा, तमाम शिक्षण संस्थानों की अलग अलग अधिकारियों के जरिए निगरानी होगी। जहां भी खामियां सामने आएंगी उन्हें फौरन दूर करने के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों को चिन्हित किया जाएगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को स्कूलों से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों के सोशल मीडिया अकाउंट के मामलों की जांच कर तथ्यात्मक जवाब देने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर शिकायत मिलते ही डीएम और मंडलायुक्तों को जांच की जिम्मेदारी मुख्य सचिव ने दी है। बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने, साफ सफाई और छात्रों अभिभावकों से नियमित संवाद के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खासकर स्कूलों में एमडीएम, किचन, ब्लैक बोर्ड, विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें और जरूरी सामग्री समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश के दौरान स्कूलों में जल भराव और साफ सफाई की समस्या दूर करने के लिए ब्लॉक वार निर्देश दिए गए हैं। उधर समाजवादी पार्टी ने जेंजी को ध्यान में रखकर नई पॉलिसी बनाई है। खबर है कि समाजवादी पार्टी जेंजी वोटरों को एआई, मीम और शॉर्ट वीडियो के जरिए साध रही है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और पार्टी के आधिकारिक हैंडल से एआई जनरेटेड वीडियो और ग्राफिक्स साझा किए जा रहे हैं। पार्टी के राजनीतिक संदेश, नीतियां और उपलब्धियां भी एआई कंटेंट के रूप में जेन जी तक पहुंचाई जा रही हैं। क्योंकि यूपी में करीब 21% वोटर 18 से 29 वर्ष की उम्र के हैं, जिनके ऊपर समाजवादी पार्टी का खास फोकस है।
12: अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का व्यवहार किसी ट्रोलर की तरह हो गया है। झूठे चित्र, झूठे वीडियो लाकर समाज को भ्रम में पैदा करो।
13: समाजवादियों ने ही इनको कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप देने का काम किया। वही लैपटॉप समाजवादी द्वारा दिए लैपटॉप को, जब ऑनलाइन पढ़ाई की बात है तो समाजवादी पार्टी द्वारा दिए लैपटॉप और आईपैड से ही छात्रों ने अपनी पढ़ाई की।
10: समाजवादी पार्टी ही नहीं, अब कांग्रेस से लेकर बीएसपी तक की नजर भी जेन जी क्लास के वोट बैंक की ओर घूम रही है। यूपी कांग्रेस भी डिजिटल मोर्चे पर सक्रिय हो चुकी है। हर जोन के लिए सोशल मीडिया और आईटी सेल की टीमें मजबूत की जा रही हैं। कांग्रेस मीम, व्यंग, ग्राफिक्स और विजुअल कंटेंट के जरिए सरकार विरोधी मुद्दों को युवाओं तक पहुंचा रही है। उधर मायावती के निर्देश पर बीएसपी भी बूथवार समीक्षा बैठकें कर रही है। इसमें भी जेन जी कनेक्ट का आधार तलाशा जा रहा है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: उत्तर प्रदेश में बुलडोजर और एनकाउंटर, ये दो ऐसी कार्रवाई हैं जिनके दम पर सरकार कानून व्यवस्था की मजबूती और अपराधियों पर लगाम का दावा करती है। वहीं विपक्ष इन दोनों तरीकों से चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई का आरोप लगाता है। इन सब के बीच 15 महीने पुराने खाफ एनकाउंटर से जुड़ी खबर पर कोर्ट ने खबरदार किया है, एनकाउंटर की सीबीआई जांच का आदेश दिया है और अदालत ने तत्कालीन पुलिस अधिकारी के निशानेबाजी तक की क्षमता जांचने को कहा है।
14: 12 मई 2025 जगह श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, अलाउद्दीन उर्फ छुटकऊ नाम के आरोपी को गोली मारकर हाफ एनकाउंटर किया जाता है। यूपी में हाफ एनकाउंटर का मतलब है पैरों में गोली लगना। मई 2025 में श्रावस्ती पुलिस की टीम आरोपी अलाउद्दीन को नाबालिग बच्ची के अपहरण के मामले में गिरफ्तार करने पहुंची थी। पुलिस कहती कि तभी इसने फायर किया और दोबारा जब रात के अंधेरे में पुलिस के मुताबिक आरोपी ने हथियार लोड करना चाहा, तो ये है तत्कालीन एसएचओ इकोना अश्विनी कुमार दुबे, जो बहुत बहादुरी से कहा जाता है कि उसी रात के अंधेरे में केवल हथियार लोड होने की आवाज सुनकर ऐसी गोली चलाते हैं जो सीधे आरोपी के पैर में लगती है, किसी और को नहीं।
15: के पास वहां घेराबंदी की गई और जब पुलिस ने उसको रोका तो उसने पुलिस पर फायर किया और पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया जिसमें उसके दोनों पैर में गोली लगी है और उसको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया।
14: मई 2025 के इस हाफ एनकाउंटर पर 23 पुलिस वालों को पुरस्कार मिला, लेकिन अब एनकाउंटर से लेकर पुरस्कार तक पर सवालों का नया एनकाउंटर शुरू हो चुका है। हाफ एनकाउंटर के 15 महीने बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मई 2025 के श्रावस्ती के एकौना में अलाउद्दीन वाले हाफ एनकाउंटर पर यूपी पुलिस को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की सिंगल बेंच ने कहा है कि 23 पुलिस वालों से घिरे होने के बावजूद आरोपी ने फायरिंग की जिसमें एक भी पुलिस वाला घायल नहीं होता। वहीं रात 11 बजे सुनसान इलाके में 15 मीटर की दूरी से एसएचओ ने गोली चलाई और वो सीधे आरोपी के दोनों पैर में लगी। श्रावस्ती में हुए हाफ एनकाउंटर पर सीबीआई जांच का आदेश लखनऊ की अदालत ने दिया है और कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई अपनी जांच के दौरान तत्कालीन एसएचओ अश्विनी कुमार दुबे की निशानेबाजी और शूटिंग क्षमता का भी जरा परीक्षण कर ले।
16: कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस की जीप में कैसे 23 लोग बैठ सकते हैं और वहीं रात के अंधेरे में एसएचओ जिसने इस पूरी एनकाउंटर की कहानी बताई, एफआईआर दर्ज करवाई, वो रात के 11 बजे कैसे असलाह को लोड करने की आवाज से उसने फायरिंग की और जिसमें जो आरोपी था उसके दोनों पैर में सटीक जाकर गोली लगी है।
17: इतना सटीक निशाना बहुत सव्यसाची तो है नहीं, सव्यसाची तो मैंने सुना था कि वो राजा दशरथ थे जो किसी की आवाज पे तीर मार देते थे, उसी में शायद श्रवण कुमार भी मरा था। सव्यसाची नहीं है ये, अगर इन्हें ये बोलना चाहिए था कि हाँ मैंने ऐसा अनुमान में लगाया तो अनुमान से भी चलाया तो किसी अन्य को भी गोली लग सकती थी ना, कोई और भी तो मर सकता था। सटीक इनकाउंटर होना चाहिए, किसी अन्य की जनहानि नहीं होना चाहिए, किसी का अन्य घायल भी हो सकता था, ये मुझे गले से उतरने वाली बात नहीं। कोर्ट ने बिल्कुल सही ये जांच के आदेश दिए हैं और मैंने बहुत पहले भी कहा है कि जिस दिन एनकाउंटर इस तरह के फंसेंगे जवाब देते नहीं बनेगा, सजा हो जाएगी लोगों को।
18: जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है छुटकाऊ का गोली लगने के बाद, उसमें जो वुंड का साइज आता है वो है 0.5 सेंटीमीटर और जो गोली एसएचओ के माध्यम से पता, केस डायरी के माध्यम से पता चली कि चलाई गई है वो है 0.9 एमएम की। तो गोली जब 9 एमएम की है और एंट्री वुंड है 0.5 एमएम का, तो ये बहुत ही इम्प्रोबेबल चीज़ें हैं जो कोर्ट को लगी हैं। एक बहुत ही कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई गई है पुलिस के द्वारा और जो कि मानने के योग्य नहीं है।
14: उत्तर प्रदेश पुलिस के बहुत से एनकाउंटर पर सियासी सवाल जवाब होता आया है। श्रावस्ती एनकाउंटर अपने आप में शायद ऐसा पहला केस है जहां एनकाउंटर करने वाले पुलिस वाले की निशानेबाजी क्षमता के परीक्षण तक का आदेश दे दिया गया है। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
0: बात करेंगे राजस्थान की, जहां जन अल्फा की समस्याओं को लेकर सरकार ने एक अनोखा आदेश जारी किया है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में मीडिया के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, जिसे लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोला है।
10: राजस्थान में मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस का ये प्रदर्शन उस फैसले के खिलाफ है जिसमें राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में प्रवेश पर बैन लगा दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने आज मार्च निकाला और विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया।
19: इतने बच्चों की जान चली गई, छतें गिर रही हैं, बाढ़ आ रही है, व्यवस्था चरमरा गई है, बजाय उस वास्तविकता को एक्सेप्ट करके उस पर कदम उठाएं, सरकार ने आदेश जारी कर दिया। कोई फोटो नहीं खींचेगा, कोई रील नहीं बनाएगा, कोई मीडिया नहीं जाएगा, सरकारी स्कूलों पे लोगों को पाबंद कर दिया। अगर आप जाएंगे अंदर आप पे पॉस्को कानून लगा दिया जाएगा। तो ये सरकार को जो एक तानाशाह रवैया है और शिक्षा मंत्री जो एक बेवजह इस प्रकार के आदेश जारी किए उसके विरोध में हम लोग बैठे हैं।
10: कांग्रेस के नेताओं को सुरक्षा बलों ने रोकने की कोशिश की जो कि हंगामे में तब्दील हो गए।
20: किसको बचा रहे हैं? कब तक बचाएंगे? कब तक बचाएंगे इस चोर मंत्री को? 15 दिन पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष गए थे, इन्होंने वादा करा था कि स्कूल को सही कर देंगे, आज तक एक कमरा नहीं बना पाए, ऊपर से नोटिस लगा दिया कि अंदर नहीं जा सकते, बेशर्म कहीं के।
10: बीजेपी अब कांग्रेस से सवाल कर रही है।
21: उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल और केवल मात्र हंगामा खड़ा करना उनका मकसद था, उन्होंने अपने आचरण के माध्यम से इसको स्पष्ट कर दिया।
22: पुलिस फोर्स
10: दरअसल पिछले काफी वक्त से राजस्थान के स्कूलों की हालत को लेकर घमासान चल रहा था। सीजेपी ने स्कूलों के मुद्दे पर मोर्चा संभाला तो अलवर के एक स्कूल में प्रवक्ता आशुतोष प्रांका के जाने पर जबरदस्त हंगामा हुआ था, जिसके बाद राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने राजस्थान के स्कूल परिसरों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए ये निर्देश जारी किया, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
0: बात करेंगे मौसम की, जहां नदियों में उफान ने शहरों का बुरा हाल कर रखा है। उत्तर प्रदेश के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। नदियों के पानी ने रिहायशी इलाकों का रुख कर लिया है।
10: ये प्रयागराज है, संगम नगरी प्रयागराज। कहने को तो ये स्मार्ट सिटी है, लेकिन अभी तो एक्वा सिटी प्रयागराज बनी हुई है। ये प्रयागराज की सिवाई चिंतामणि रोड है। कहने को ये पौश इलाका है, लेकिन पौश इलाके की मूलभूत व्यवस्था यही है कि पानी की वजह से बिजली पानी सब बंद है।
2: घरों के सामने सड़कें हैं, वहां जलभराव की स्थिति है और ये पानी जो बारिश का पानी है सड़कों के अलावा घर में भी घुस गया है। आलम यह है कि लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं बारिश के पानी ने इन सभी लोगों को घरों में हाउस अरेस्ट कर लिया है।
3: लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, हालात ये हो गए हैं कि घर के बाहर निकले तो रोड पर पानी, घर पर रहे तो कमरे में पानी।
22: तो हम लोग के घर में बहुत सारा पानी घुस चुका है तो हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं। दूसरा, मेरे स्कूल में दो बार छुट्टी हो चुकी है, हम लोग के दो एग्जाम कैंसिल हो चुके
23: हैं। जिसको कहते हैं जेल, हम लोग जेल में बंद है, ना हमारे पास पानी है ना लाइट, हम लोग रात रात भर नहीं सोए, पंखा पुराना दिया बत्ती अगरबत्ती यही सब कर रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, नहाने का पानी नहीं है, किसी तरह जो जरा से इकट्ठा पानी हुआ तो उसको उबाल के ठंडा करके वही पी रहे हैं।
24: और पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है, न सभासद आए न विधायक आए न सांसद, तीनों भाजपा के।
3: वाराणसी का हाल भी देख लीजिए, बड़े बड़े घाटों को गंगा नदी ने अपने आगोश में ले लिया है।
25: वाराणसी में गंगा का जल स्तर पक्के घाटों को डुबोने के बाद अब गलियों और सड़कों के जरिए शहर के अंदर पहुंचने के लिए आमादा है। गंगा के अलावा वरुणा के भी काफी तटीय इलाकों में बढ़ता हुआ जल स्तर पहुंच चुका है।
3: कानपुर में भी गंगा नदी के विकराल रूप की तस्वीरें आ रही हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन की टीमें संवेदनशील इलाकों की पहचान कर रही हैं जहां खतरा ज्यादा है।
26: पीछे अगर आप मेरे देखेंगे तो यहां पर कानपुर के पुलिस कमिश्नर मौजूद हैं जो खुद बोट के जरिए अपने बाकी पुलिस अधिकारियों के साथ यहां पर निरीक्षण कर रहे हैं घाटों का। स्पीकर के जरिए लोगों को चेताया जा रहा है कि वह किस तरीके से सावधान रहे क्योंकि जो वाटर लेवल है वो डेंजरस मार्क पे लगभग पहुंच चुका है।
3: यूपी के 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, 84,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात पहाड़ों की। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में फ्लैश फ्लड आ रहे हैं। हिमाचल के कांगड़ा में नेशनल हाईवे पर अचानक पानी आने से कई लोग फंस गए।
27: ये तस्वीरें कांगड़ा के प्रागपुर इलाके की हैं, जहां फ्लैश फ्लड से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। बहाव इतना तेज था कि कांगड़ा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे तक पानी पहुंच गया। पानी के तेज बहाव के बीच में एक कार सवार फंस गया। कार ड्राइवर ने बहुत कोशिश की लेकिन पानी की धारा इतनी तेज थी कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकी। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की और कार में सवार लोगों को बाहर निकाला लेकिन कार पानी में बह गई। अब जरा अनंतनाग की तस्वीरें भी देखिए। घरों के बीच में पानी ऐसा आ गया मानो ये मकान किसी नदी पर बनाए गए हों। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते आंगन तक पानी भर गया। ऊंचाई वाले इलाकों में जब मूसलाधार बरसात होती है तो निचले इलाकों में फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ की घटनाएं बढ़ जाती हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी इन दिनों फ्लैश फ्लड की घटनाएं बढ़ गई हैं। आज तक ब्यूरो।
0: भारत और जापान के बीच एक बड़ा रक्षा समझौता हुआ है। इस समझौते में कई खास बात है लेकिन सबसे अहम बात भारत और जापान का मिलकर नौसेना का जहाज बनाने की तरफ बढ़ना है। अगर ऐसा होता है तो फिर भारत की नौसेना न सिर्फ आत्मनिर्भर होगी बल्कि मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा।
28: पहली बार मिलकर नौसेना का जहाज बनाने की तरफ बढ़े भारत और जापान। पहली बार भारत आएंगे जापान के लड़ाकू विमान। भारत के थिएटर कमांड में भी मदद करेगा जापान। भारत और जापान के बीच बढ़ता दोस्ताना दुश्मनों को खबरदार कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के रक्षा मंत्री शिंजो कोइजुमी को कोनिचिवा और अरिगातो कहकर विदाई दी है। जिसके जवाब में कोइजुमी ने जवाब में नमस्ते कहकर भारत और जापान के बीच रक्षा संबंधों के गहरे रिश्तों का साफ साफ संकेत दे दिया। रक्षा मंत्रियों के बीच दिखी ये गर्मजोशी। भारत और जापान के बीच हुए बड़े रक्षा

0: ナマステ。
1: Excellency, Kuei Mushan, Konnichiwa.
2: इसकी जानकारी खुद देश के रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर दी है और लिखा है कि इंडो पैसिफिक में स्थिरता के लिए एक अहम पड़ाव। नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमो के साथ बहुत सार्थक बैठक हुई है। हमारी बातचीत समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया रक्षा तकनीक और रणनीतिक भरोसे को बढ़ाने पर केंद्रित रही है।
1: अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 इयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
2: दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा समझौते में नौसेनाओं के बीच सहयोग, सूचना का आदान प्रदान, खोज और बचाव, मानवीय सहायता, आपदा राहत जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया। लेकिन सबसे अहम बात, भारत और जापान का नौसेना के जहाजों को मिलकर बनाने और डिजाइन करने को लेकर बनती एक राय है। जापान के एडवांस तकनीक और भारत की उत्पादन क्षमता का मेल मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। जापान के मोगामी क्लास फ्रिगेट जैसे आधुनिक जहाजों की तकनीक भारत के लिए उपयोगी हो सकती है। इससे पहले दोनों देशों के बीच नेवल रेडियो एंटीना सिस्टम को मिलकर बनाने का समझौता कर लिया गया था, लेकिन मिलकर नौसैनिक जहाज बनाने का कदम भारत की नौसेना को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगा। इनका सीधा असर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के इरादों पर होगा, जो जापान, फिलीपींस जैसे अपने पड़ोसियों को डराने के साथ ही हिंद महासागर में भी अपना शिकंजा कस रहा है। लेकिन इस समुद्री समझौते के बाद दोनों देश हर तरह से एक दूसरे की मदद करेंगे।
3: वक्त एक ब्रेक का है, खबरें जा रही हैं, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से
5: आपके पतिदेव की वाणी कठोर है? क्या आपके पतिदेव व्यवस्थित तरीके से नहीं रहते? क्या आपके पतिदेव की आदतें आपके लिए समस्या पैदा कर रही हैं? पतिदेव की बुरी आदतों को कैसे संभाला जाए, क्या है निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
6: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

वंदे मातरम पढ़े जाने को लेकर सियासी संग्राम तेज। शाह ने बताया देश विरोधी, कहा मुस्लिम तुष्टिकरण कांग्रेस की नीति। आज पूरे केरल में बीजेपी का वंदे मातरम को लेकर कार्यक्रम। परीक्षा रद्द करने के फैसले पर अदालती रोक के बाद फिर झारखंड में हलचल। आज जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मोर्चा राज्यभर में करेगा पुतला दहन। सरकार पर धोखे का लगाया आरोप। लखनऊ में बैंक कर्मी की हत्या के मामले में नया खुलासा। दो दिनों से रेकी कर रहा था आरोपी पति। बैंक के सामने हुई वारदात से जुड़ी सीसीटीवी तस्वीर सामने आई, जांच जारी। ईरान के खिलाफ अब ट्रंप का बड़े पैमाने पर आर्थिक युद्ध का ऐलान। अब तक आदेश जारी नहीं। ईरान ने प्रतिबंधों की धमकी को बताया गैर कानूनी और अमानवीय। और आखिरकार अडियाला जेल से इस्लामाबाद के अस्पताल में शिफ्ट किए गए इमरान खान। कड़ी सुरक्षा घेरे में पहुंचा काफिला। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चलेगा इलाज।

ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ में हूं आशुतोष मिश्रा। आज बात करेंगे अब लखनऊ में हुई एक सनसनीखेज वारदात की। लखनऊ में एक डबल मर्डर और सुसाइड की वारदात हुई। ऐसी वारदात की हर कोई हैरान है। एक बैंक कर्मी ने पहले पत्नी की हत्या की, फिर घर जाकर के अपनी बहन का मर्डर कर दिया और अंत में खुद भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इस पूरे हत्याकांड का राज छिपा है एक व्हाट्सएप स्टेटस पे। इस व्हाट्सएप स्टेटस में ऐसा क्या लिखा है, देखिए रिपोर्ट।

0: पत्नी का मर्डर, फिर अपनी ही बहन की हत्या और अंत में खुद को भी गोली से उड़ा दिया। लखनऊ में आज डबल मर्डर और सुसाइड की ऐसी वारदात हुई है कि हर कोई हैरान है। सवाल पूछ रहा है कि SBI जैसे बैंक में काम करने वाले मानस ने ICICI बैंक में काम करने वाली पत्नी की हत्या क्यों की? मानस वाजपेयी ने पत्नी की हत्या के बाद अपनी ही बहन को क्यों मार दिया? मानस वाजपेयी ने पत्नी और बहन को मारने के बाद आत्महत्या क्यों की? लखनऊ के पॉश इलाके गोमती नगर का ये प्राइवेट बैंक आज एक क्राइम सीन बन गया। इस बैंक में दिव्या मिश्रा नाम की एक महिला असिस्टेंट मैनेजर के पद पर थी। बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर का काम देखती थी। दोपहर में महिला के पास उनके पति का फोन आया और बैंक के बाहर मिलने के लिए बुलाया। चश्मदीदों के मुताबिक पति मानस ने दिव्या से पहले बात की और फिर अचानक से उसे गोली मार दी। इसके बाद पति वहां से भाग गया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने बैंक से पीड़िता दिव्या को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस इधर छानबीन कर ही रही थी कि अचानक से खबर आई कि इस घटना स्थल से थोड़ी ही दूरी पर एक शख्स ने खुद को और अपनी बहन को गोली मार दी। पता चला कि ये वही शख्स है जिसने कुछ देर पहले इस प्राइवेट बैंक के बाहर पत्नी की हत्या की।
1: हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जो क्राइम सीन है। यूं तो ये प्राइवेट बैंक है, लेकिन अब इसकी बाहरी जगह क्राइम सीन में तब्दील हो चुकी है। तस्वीरों में देखें तो ये वो जगह है जहां पर कुल मिलाकर ये हत्या की गई है। पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कुछ बातचीत की और उसके बाद यहीं पर इस जगह पर हत्या कर दी। और ये वो क्राइम सीन जगह है जहां पर ये पूरी हत्या को अंजाम दिया गया। अब मैं आपको यहां लेकर चलता हूं। ये जो बैंक है वो आपको मैं दिखाऊंगा। ये वो बैंक है जहां उसकी पत्नी असिस्टेंट मैनेजर के रूप में कार्यरत थी। और इस बैंक को अगर आप देखें यहां पर, तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल तो ये बैंक बंद कर दिया गया है, लेकिन इसी गेट से बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी बाहर निकली थी और इसी गेट से बाहर निकलकर वो पत्नी यहाँ पहुंची बात करने के लिए अपने पति से। एक साल से सब कुछ ठीक नहीं था, याचिका पड़ी थी डाइवोर्स की। तो आखिर ऐसा क्या एकदम से हुआ कि पति मानस, जो खुद एक अच्छी पोस्ट पर SBI में था, उसे इस हत्या को अंजाम देना पड़ा? ये सवालों के घेरे में है। उसने मृत्यु यानी कि मर्डर के बाद एक व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा दिया और अपनी पत्नी पर चीटिंग का आरोप लगाया। क्या सच्चाई है कोई नहीं जानता, पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन एक विवाद ने तीन जाने लखनऊ में फिलहाल ले ली।
0: पता चला कि मानस ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर बाकायदा ये घोषणा की थी। लिखा था कि आज मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है क्योंकि वो मुझे धोखा दे रही थी, अब मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना होगा। आस पड़ोस के लोग जब तक ये व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते तब तक मानस वारदात को अंजाम दे चुका था। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। लोगों ने पहले दरवाजा पीटा, दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजा तोड़ा गया। अंदर गए तो देखा कि दो लाशें पड़ी हैं, एक मानस की और दूसरी उनकी बहन की। टीवी पर भक्ति गीत चल रहे थे।
2: मेरे भाई का पास उसके दोस्त का फोन आया कि तुम्हारे मकान मालिक ने क्या स्टेटस लगाया, देखो। जब हम लोग ने स्टेटस देखा तब पता चला कि भैया अंदर हैं। हम लोग को पता चला स्टेटस लगा, तो हम लोग उनके रिलेशन में उनके मामा के लड़के आए जल्दी, तो हम लोग बेल बजाएं, फोन करें, फोन भी नहीं उठाए, घटखटाए, वो भी नहीं उठाए। फिर हम लोग बगल से गए छत से कि देखे, वहां से देखे तो वहां से भी अंदर बंद था। फिर तीन चार लोग मिलके, वहां के सब लोग मिलके दरवाजा तोड़े। जब दरवाजा तोड़े तब देखे वो गोली मार चुके थे अपने आप।
1: अच्छा, जब वो यहाँ आए थे ICICI बैंक से, तो क्या पसीना पसीना छूट रहा था, क्या माहौल था, वो कैसे लग रहा है?
3: जैसे हमेशा आते थे वो,
1: वैसे रिएक्ट नहीं कर रहे थे कुछ,
3: कोई ऐसा कोई नहीं। मुझसे नॉर्मल जैसे हमेशा पूछते थे, मुझसे पूछा उन्होंने
1: क्या पूछा
3: कि लोग कैसे हो, मैंने कहा ठीक है बस।
1: अरे मतलब मर्डर करके आया तो नॉर्मली पूछा कैसे हो?
3: हाँ, नॉर्मल। वो हमेशा ही पूछते थे, कोई याद नहीं था
1: उनके पास कोई गन थी, पिस्टल थी?
3: नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे नजर में ऐसा कुछ नहीं था।
0: लेकिन सवाल यह है कि मानस ने पत्नी पर चीटिंग का आरोप लगाया तो पत्नी की हत्या की, खुद को भी मार डाला, लेकिन अपनी बहन की हत्या क्यों की? बताया जा रहा है कि मानस के माता पिता की मौत हो चुकी थी और वो अपनी बहन के साथ अकेले रहते थे। पहले पत्नी भी साथ रहती थी, लेकिन पिछले लगभग एक साल से दोनों अलग थे। दोनों के बीच तलाक की प्रक्रिया भी चल रही थी। बताया जा रहा है कि मानस की बहन मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी, इसीलिए शायद मानस को ये लगा होगा कि उनके बाद बहन की देखभाल कौन करेगा। यही वजह रही कि मानस ने इतना बड़ा कदम उठाया, पत्नी को मारने के बाद बहन की हत्या की और फिर खुद को भी गोली मार दी।
4: हुआ कि मेरी मम्मी ने कहा कि तुमने मानस का स्टेटस देखा, तो मैंने कहा नहीं, तो अचानक से मैंने स्टेटस देखा तो उसमें मैसेज देखा, उसमें लिखा था कि मेरी वाइफ को लेके, मैंने स्टेटस देखा उसमें, फिर मैं बाहर आया देखा तो जो किराएदार है वो दरवाज़ा जो है खटखटा रहे थे, खुल नहीं रहा था, फिर हम भी आए, हम भी खोलने लगे, तो पूरी मेहनत करी, उनके मामा के लड़के आए हुए थे, फिर एक साथ दरवाज़ा खोला तो देखा अंदर, जब उसे एंट्री किया तो देखा दोनों लोग मरे हुए पड़े हुए थे।
5: तो क्या वजह कुछ समझ में आ रही है?
4: नहीं वजह कोई नहीं, बस उसकी बहन में
5: इस पे तो लिखा था चीट किया,
4: हाँ उनकी वाइफ ने चीट किया ऐसे में स्टेटस लिखा हुआ था।
5: तो बहन को क्यों मारा
4: ये तो बता नहीं सकता हूँ, बहन को क्यों मारा, उसकी बहन तो वैसे भी मेंटली थी। हाँ
5: अच्छा, ये गोली पिस्टल की आवाज आवाज आई
4: है? कुछ नहीं है, जब हम लोग एंट्री किए तो टीवी पे हनुमान चालीसा चल रहा था। हाँ बस और कुछ नहीं था।
5: अंदर और क्या क्या पड़ा था बहन के?
4: कुछ नहीं सब, ऐसे दोनों लोग लेटे हुए थे, पिस्तौल पड़ी हुई थी, हम लोगों ने देखा तुरंत पुलिस आई, उसके बाद फिर आगे कार्रवाई हुई।
5: तो वो दोनों लोग अंदर ही थे, किराए पे दे रखी थी?
6: जी जी।
5: और अब माता पिता कहाँ रहते?
6: माता पिता एक्सपायर हो गए काफी समय पहले।
5: इकलौती बहन थी और वो थे, और पत्नी उनकी कहाँ रहती?
6: पत्नी भी यहीं रहती थी?
7: नहीं
6: रहती थी,
7: 3 महीने से नहीं, 3-4 महीने।
0: यह हत्याकांड और सुसाइड केस भले ही सनसनीखेज जरूर रहा, लेकिन पुलिस के सामने पूरा चैप्टर ही क्लोज हो चुका है। पुलिस अभी छानबीन कर रही है, सारी गुत्थियां तो सुलझी हुई लग रही हैं, बस ये पता नहीं चल पा रहा कि वो क्या बात थी जिसकी वजह से मानस ने पत्नी दिव्या मिश्रा की हत्या की, क्योंकि दोनों करीब 1 साल से साथ में नहीं रहते थे, और मानस ने जो चीटिंग का आरोप लगाया है उनकी सच्चाई क्या है?
8: देखिए ये आज बहुत ही एक दुखद घटना थाना गोमती नगर में हुई। प्रारंभिक रूप से जो सूचना मिली कि गोमती नगर के ICICI बैंक के कर्मी को गोली मार दी गई है, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल पीड़िता को हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी छानबीन टीम हमारी कर ही रही थी कि यहां हुसैरिया से एक सूचना मिली कि गोली चलने की आवाज और किसी व्यक्ति के द्वारा सुसाइड करने की बात हुई। टीम यहां भी पहुंची तो ये ज्ञात हुआ कि जो उस महिला पीड़िता मृतका के पति थे उसने अपने सिस्टर का हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली है। टीमें यहां पहुंचकर जो डेड बॉडी है उसको पंचायतनामा के लिए भेज दिया है। हमारी फील्ड यूनिट यहां आकर सारे एविडेंसेस को कलेक्ट कर रही है, और हमारे थाने की और सर्विलांस टीम जो है पूरी डिटेल जानकारी कर रही है कि किस पॉइंट पे किस बात के कारण आज की ये घटना ट्रिगर हुई।
0: आशीष श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
9: और एक बड़ी खबर पाकिस्तान से, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अदियाला जेल से कुछ देर पहले इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। भारी सुरक्षा के बीच पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की इजाजत दी है। मंगलवार को यह आदेश दिया था कि 73 साल के इमरान खान को रावलपिंडी के गैरिसन शहर की जेल से इस्लामाबाद के अस्पताल में भर्ती किया जाए। इमरान खान 5 अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था तोशाखाना के मामले में, अलकादी ट्रस्ट के केस में, 190 मिलियन करप्शन केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और 14 साल की सजा सुनाई गई थी। और बीते 3 सालों से जेल में रहे इमरान खान की सेहत लगातार बिगड़ रही थी, परिवार को जेल में मिलने नहीं दिया गया था, जिसके बाद परिवार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। ये तस्वीरें उस तैयारियों की हैं जब बीती रात ये पूरा काफिला पहुंचा था, और उसी के बाद उनकी सेहत को लेकर के परिवार ने चिंता जताई, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की सरकार को, हुकूमत को यह आदेश दिया कि उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। उधर भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर जब से कश्मीर की वादियों की सैर करके आए हैं तब से पाकिस्तान के सीने में मानो सांप लौट रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का अहम अंग है, अभिन्न अंग है, ये शांति समृद्धि तरक्की की मिसाल है। बस यही बात पाकिस्तान को नागवार गुजरी है, और अब उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में मौजूद अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत को तलब भी कर लिया। दूसरी तरफ गुलाम जम्मू कश्मीर यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान सरकार और उसकी हुकूमत के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और खौफनाक बगावत भड़क उठी है। इस बीच पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर स्वघोषित सैन्य तानाशाह बन गए हैं।
10: अगर तुम गोलियों का गोलियों की हुक्मरानी चाहते हो तो फिर आवाम भी गोलियां इकट्ठी करेगी। आपके दोहरे कानून को, दोहरे मेयार को कबूल नहीं करेंगे। हम इस गोली के कानून को नहीं मानते, हम इस गोली के कानून को नहीं मानते।
11: पाकिस्तान में खत्म होगा संविधान। तानाशाह आसिफ मुनीर चलाएंगे पाकिस्तान। शहबाज सरकार का मुनीर के सामने सरेंडर। पाकिस्तान की संघीय कैबिनेट ने डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी संशोधन को हरी झंडी दे दी है। इनके साथ ही फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के निर्विरोध सैन्य तानाशाह बन चुके हैं। इस नए कानून के तहत पाकिस्तान में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF के पद को कानूनी और प्रशासनिक तौर पर असीमित शक्तियां दे दी गई हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों पूरी तरह मुनीर के इशारे पर पलक झपकाएंगी। इतना ही नहीं, नेशनल कमांड अथॉरिटी कानून में संशोधन करके पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का कंट्रोल भी नए सैन्य ढांचे के जरिए मुनीर के प्रभाव में ला दिया गया है। यानी पाकिस्तान में तख्ता पलट की अब कोई जरूरत ही नहीं बची, क्योंकि आसिफ मुनीर ने संविधान में 27वां संशोधन करवा कर लूटे पिटे लोकतंत्र पर अपने तानाशाही शासन की लीगल मोहर लगवा ली है। अब पाकिस्तान में शहबाज सरकार सिर्फ एक कठपुतली है और पाकिस्तान का असली हुक्मरान है सैन्य तानाशाह आसिफ मुनीर।
12: पाकिस्तान में सत्ता का रिमोट कहां से और कैसे चलता है ये तो खैर बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आज एक बार फिर ये साबित हुआ कि पाकिस्तान में यदि फौज चाह ले तो क्या नहीं हो सकता और कितने फटाफट नहीं हो सकता। तो हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अगुवाई के अंदर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और इस बैठक के अंदर ताबड़तोड़ दो बिल्स को मंजूरी दे दी गई और ये दोनों बिल न केवल कैबिनेट से मंजूर हुए बल्कि आज ही पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पेश भी हुए और पारित भी हो गए। और ये दोनों बिल थे पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर, जो कि अब फील्ड मार्शल और फील्ड मार्शल से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बन चुके हैं, उनको संवैधानिक ताकत देने वाले। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में सेना प्रमुख के पास अब उस न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की भी चाबी आ चुकी है जो तय करती है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर नियंत्रण किसका होगा और कितना होगा।
11: इधर भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो बोर के बयान से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, लेकिन उसे अपने कब्जे वाले कश्मीर और भारत के कश्मीर के हालातों में जो अंतर है उसे गौर से देख लेना चाहिए। कश्मीर की वादियों की सैर पर निकले अमेरिकी राजदूत सर्जियो बोर ने दो टूक कहा कि कश्मीर भारत का अहम और अभिन्न अंग है, वहाँ शांति है, समृद्धि है, तरक्की है। वो डल झील जहाँ UPA की सरकार के दौरान खौफ का आलम था, वही पिछले 12 साल में दूर दूर तक डर का नामो निशान नहीं है। देखिए सर्जियो बोर और उनकी टीम कितने सुकून से शिकारा की सवारी कर रहे हैं।
12: भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने श्रीनगर की जमीन से जम्मू कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा क्या बताया कि पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया। तिलमिलाए पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिका की मिशन प्रमुख नेटली बेकर को बुलाया, इस मामले के ऊपर अपना सख्त एतराज दर्ज कराया, लेकिन पाकिस्तान करे तो क्या करे, क्योंकि अमेरिका अब ये साफ कर चुका है कि इस पूरे मामले के ऊपर उसका रुख और रवैया क्या है, क्योंकि सर्जियो गोर केवल भारत के अंदर अमेरिका के राजदूत नहीं हैं बल्कि वो दक्षिण और मध्य एशिया के मामलों को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत भी हैं। हालांकि पाकिस्तान इस समय ये दिखाने और जताने में लगा हुआ है कि वो अमेरिका का कितना खास है और अमेरिका को उसकी कितनी ज़रूरत है, लेकिन इस समय उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी आवाम को क्या बताए, क्या समझाए। ये बात अलग है कि इस समय पाकिस्तान की सेना का सारा जोर और फोकस इसी बात को लेकर है कि किस तरीके से आसिफ मुनीर की ताकत को बढ़ाया जाए और केवल वहां पर सत्ता का खेल चलाया जाए।
11: लेकिन अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताए जाने के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के बीच कूटनीतिक विवाद गहरा गया है। इस बयान पर मिर्ची लगने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में मौजूद अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत को तलब किया है। सर्जियो गोर के कश्मीर पर दिए बयान पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और PDP चीफ महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रिया भी सामने आई है।
13: अमेरिका के एम्बेसडर ने ये कहा कि वो जो ट्रैवल एडवाइजरी है जम्मू कश्मीर के मुतलक उसको वो रिव्यू करेंगे, मुझे उम्मीद है वो रिव्यू करेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि हम इकोनॉमिकली ज्यादा इंगेज करेंगे जम्मू कश्मीर के साथ, जिसमें मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर वो यहाँ के हॉर्टिकल्चर, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट, जिससे जॉब क्रिएशन हो, जिससे इकोनॉमिकली हमारा फायदा हो, मुझे लगता है उसको देखने की जरूरत है। क्या अगर उन्होंने, अमेरिका ने जो बात कही कि वो जम्मू कश्मीर में इकोनॉमिकली इंगेज करने के लिए तैयार है, एडवाइजरी ट्रैवल एडवाइजरी को खत्म करने के लिए तैयार है वो मुझे लगता है वो देखने की जरूरत है।
14: इनको तो समझ नहीं किया वहाँ जो चार्ज अफेयर्स हैं उनको ना, ये तो पाकिस्तान और अमेरिका का मामला है, इसमें ना आप कोई कुछ कर सकते हैं ना मैं। अमेरिकन एम्बेसडर ने जो कहा सो कहा, अब वो दोनों मुल्कों के दरमियान।
11: अमेरिकी राजदूत के कश्मीर घूमने और उसकी खूबसूरती का बखान करने से स्थानीय लोगों को भी उम्मीद है कि इससे पर्यटन में इजाफा होगा।
15: मैं उस चीज को वेलकम करता हूं क्योंकि वेरीनाग जो है एक टूरिज्म का इलाका है, यहां पे मुगल गार्डन है, तो मैं उनकी बात के साथ सहमत हूं, यहां पे टूरिस्ट आने चाहिए और जो है यहां पे वेरीनाग में जो टूरिस्ट का फ्लो या कश्मीर का फ्लो जो है वो बढ़ना चाहिए, फॉरनर भी यहाँ आना चाहिए, हम भी उस चीज के साथ खुश है ताकि यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़े, यहाँ के जो यूथ बैठे हुए हैं घरों में उनका भी जो है रोजगार बढ़े। कश्मीर तो खूबसूरत है ही, कश्मीर की खूबसूरती को क्या कहना है, कश्मीर तो जन्नत है ही, दुनिया में अगर देखेंगे कहीं जन्नत तो वो तो कश्मीर है ही बिल्कुल।
11: कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद घाटी सैलानियों से लगातार गुलजार हो रही थी, देश विदेश से पर्यटक जन्नत देखने आ रहे थे, लेकिन पहलगाम हमले के बाद फिर सैलानियों की संख्या काफी घटने लगी थी, पर एक बार फिर डल झील समेत पूरी घाटी सैलानियों से शराबोर है। अमेरिकी राजदूत के दौरे और उनके बयान से कश्मीर में पर्यटन बढ़ने की उम्मीद स्थानीय युवाओं के साथ कारोबारियों को भी है।
1: भारत में अमेरिका के उच्चायुक्त सर्जियो गोर की तरफ से कश्मीर में दिए गए बयान के बाद जम्मू कश्मीर में खासतौर से कश्मीर में पर्यटन से जुड़े लोग काफी गदगद हैं, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही आतंकवाद शुरू होते ही कश्मीर में पर्यटकों की आवाजाही पर गाइडलाइन शुरू की थी, लेकिन अब अमेरिका के एम्बेसडर की तरफ से कश्मीर आकर ये बयान देना कि कश्मीर के हालात न सिर्फ बेहतर है बल्कि कश्मीर बहुत ही खूबसूरत जगह है, वो कहीं ना कहीं देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भी कश्मीर की ओर जो है रागिब कराएगा और कश्मीर में पर्यटन उद्योग को बड़ा फायदा मिल सकता है।
11: दूसरी तरफ गुलाम जम्मू कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तान सरकार और उसकी हुकूमत के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और खौफनाक बगावत भड़क उठी है। जम्मू कश्मीर आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने पाकिस्तानी फौज और शहबाज सरकार की ईंट से ईंट बजा दी है। वो पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं जिसने उनका इस्तेमाल सिर्फ भारत के खिलाफ किया है, और इसीलिए पालंदरी में आवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमन कश्मीरी ने पाकिस्तानी सेना को खुली चुनौती देते हुए दहाड़ लगाई है और कहा है कि हम तुम्हारी गोलियों से नहीं डरते, तुमने निहत्थे कश्मीरियों की 100 से ज्यादा लाशें गिराई हैं। अमन कश्मीरी ने पाकिस्तान के उस झूठे कश्मीरी नैरेटिव की धज्जियां उड़ाते हुए पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा का पोल खोल बयान याद दिलाया, जिसमें बाजवा ने कबूला था कि पाकिस्तान के टैंकों में भारत से लड़ने के लिए तेल तक नहीं है।
10: निहत्थे कश्मीरियों की 100 लाशें गिरा दी गई, 100 से ज्यादा लाशें निहत्थे कश्मीरियों की गिरा दी गई और उन पर गोलियां बरसाई गई।
11: पीओके में आजादी की आवाज को बुलंद कर रहे सरदार अमन कश्मीरी ने आतंकवाद को लेकर भी पाकिस्तान के चेहरे से नकाब उतार दिया। अमन कश्मीरी ने खुलकर कहा कि पाकिस्तान ने ही भारत के खिलाफ आसिया अंद्राबी से नारे लगवाए, पाकिस्तान ने ही यासीन मलिक से भारत के खिलाफ आतंकी घटनाओं को अंजाम दिलवाया, उन्होंने भारत के कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को तार तार कर दिया। यही नहीं, उन्होंने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीर में 1.5 लाख लोगों को हिंसा की आग में झोंक दिया।
10: आसिया इंद्राबी से आपने नारे लगवाए, आज वो उम्र कैद काट रही है, यासीन मलिक आज हिंदुस्तान की जेल में उम्र कैद काट रहा है।
11: वहीं बलूचिस्तान में बलूच विद्रोही संगठन बलूच राजी अजोई संगत ने पाकिस्तानी सेना पर घात लगाकर एक भीषण हमला करने का दावा किया है। ये हमला नुश्की इलाके में कचकी के लेवी स्टेशन के पास हुआ है। बलूच लड़ाकों ने 17 अगस्त को पाकिस्तानी सैन्य काफिले को निशाना बनाकर अचानक हमला बोला था। संगठन का दावा है कि इस हमले में पाकिस्तानी सेना के कम से कम 7 जवान मारे गए हैं और 8 से ज्यादा जवान गंभीर रूप से जख्मी हैं। बलूच विद्रोही संगठन ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि जब तक पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान से पूरी तरह हट नहीं जाती, उनके सशस्त्र अभियान इसी तरह जारी रहेंगे। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर पाकिस्तानी फौज ने चुप्पी साध रखी है, क्योंकि अपने फौजियों की मौत से इनकार करना और उनके शव तक न लेना पाकिस्तानी फौज की पुरानी आदत है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।
9: एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां कुर्ला में इमारत ध्वस्तीकरण के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया है। जर्जर इमारत के ध्वस्तीकरण के दौरान भारी भरकम क्रेन अचानक अनियंत्रित हो गई और पलट गई। इस भीषण हादसे में 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। क्रेन गिरने से एक मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। क्रेन के पोकलिन मशीन को ऊपर चढ़ाया जा रहा था और इसी दौरान ये क्रेन पलट गई और फिर ये हैवी अर्थ मूवर मशीन नीचे गिर गई, जिसके बाद एक पूरा मकान उसके नीचे आ गया। चपेट में 4 से 5 लोग घायल हो गए हैं। ये तस्वीरें हैं।
16: बीती रात मुंबई के कुरेश नगर में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया है, जब MMRDA का एक बड़ा सा क्रेन जो है गिर गया है। इस हादसे में जो जानकारी मिल पा रही है, उसमें 4 से 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से नजदीक के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं घटनास्थल पर। तस्वीर में देख सकते हैं, ये वही क्रेन है जो सामने इस घर पे गिरा था। इसके बाद जो दूसरी तरफ, जो क्योंकि ये पूरा घर है, इसके बाद जो रेलवे का जो वायर है उस वायर पे भी गिरा था, उस वायर को भी नुकसान पहुंचा है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, तुरंत ही जो अंदर फंसे लोग थे उन सभी को निकाल कर नजदीक के अस्पताल में ले जाए गए हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 16 फ्लोर की जो बिल्डिंग है, इसका डेमोलिशन का काम चल रहा था। इसी के लिए एक और क्रेन को जो है लाया गया था, ताकि इस क्रेन की मदद से उसको ऊपर ले जाया जा सके। लेकिन उसी वक्त ये जो है क्रेन जो है किसी तरह फिसल गया और ये पलट गया था। इस हादसे के बाद ये पूरा का पूरा क्रेन जो है कई घरों को तोड़ता हुआ ये नीचे गिरा हुआ है। इस हादसे में जो शुरुआती जाँच में 4 से 5 लोग घायल हुए हैं। घटना बाद से ही चूंकि इलाके के लोग जो यहां पर थे, सभी घायलों को निकालकर नजदीक के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाए गए हैं। घटना के बाद से मुंबई पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है, फायर ब्रिगेड के लोग यहां पर पहुंचे हैं। साथ ही अब ये जानने की कोशिश की जा रही है कि महज ये एक हादसा है या फिर कहीं ना कहीं यह एक बड़ी लापरवाही हुई है।
9: यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए आज तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
18: क्या आपके पतिदेव की वाणी कठोर है? क्या आपके पतिदेव व्यवस्थित तरीके से नहीं रहते? क्या आपके पतिदेव की आदतें आपके लिए समस्या पैदा कर रही हैं? पतिदेव की बुरी आदतों को कैसे संभाला जाए, क्या है निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
19: B.R. अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है?
20: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट अलग स्टेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही बल्तिस्तान भी बनता।

वंदे मातरम पढ़े जाने को लेकर सियासी संग्राम तेज। शाह ने बताया देश विरोधी, कहा मुस्लिम तुष्टिकरण कांग्रेस की नीति। आज पूरे केरलम में बीजेपी का वंदे मातरम को लेकर कार्यक्रम। परीक्षा रद्द करने के फैसले पर अदालती रोक के बाद फिर झारखंड में हलचल। आज जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मोर्चा राज्यभर में करेगा पुतला दहन। सरकार पर धोखे का लगाया आरोप। लखनऊ में बैंक कर्मी की हत्या के मामले में नया खुलासा। दो दिनों से रेकी कर रहा था आरोपी पति। बैंक के सामने हुई वारदात से जुड़ी सीसीटीवी तस्वीर सामने आई। जांच जारी। ईरान के खिलाफ अब ट्रंप का बड़े पैमाने पर आर्थिक युद्ध का ऐलान। अब तक आदेश जारी नहीं। ईरान ने प्रतिबंधों की धमकी को बताया गैर कानूनी और अमानवीय। और आखिरकार अडियाला जेल से इस्लामाबाद के अस्पताल में शिफ्ट किए गए इमरान खान। कड़ी सुरक्षा घेरे में पहुंचा काफिला। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चलेगा इलाज।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज का जो एपिसोड है, कार्यक्रम है, वो पत्नियों के लिए है, क्योंकि अगर आपको आपके पति की आदतों से, उनके स्वभाव से परेशानी है, तो आप कौन सा उपाय कर सकती हैं जिस उपाय को करने से घर में शांति बनी रहे, पति की आदतों में और स्वभाव में सुधार हो, इस विषय पर आज बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 21 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, रात के 11:36 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, प्रातः 11:53 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं पत्नियों की परेशानी के बारे में, कि पति की आदतों से अगर पत्नी परेशान है तो उसको कौन से उपाय करने चाहिए। पहले जानते हैं कि कब पत्नियों को पति की आदतें ज्यादातर परेशान करती हैं। देखिए, पत्नी की कुंडली का सप्तम, नवम और लग्न, सातवां, नवा और लग्न का जो खाना है, ये पति की आदतों से संबंध रखता है। इन भावों के खराब होने पर पत्नी को पति की आदतों से परेशानी होती है। पत्नी की कुंडली का जो शुक्र है, अगर आप शुक्र को अलग से जज करें, शुक्र को अलग से देखें, तो आपको उस पत्नी के पति की आदतों का पता चल जाएगा। लेकिन ये मामला इतना जटिल नहीं होता। पत्नी कुछ उपाय करके, कुछ बातों का ध्यान करके पति की इन आदतों को सुधार सकती है। दो स्थितियां होती हैं। एक तो ये है कि पति की आदतें इतनी ज्यादा खराब हैं कि वो सुधर नहीं सकती, मामला सेपरेशन तक पहुंच जाता है, वो मामला जरा जटिल है। लेकिन सामान्य वैवाहिक जीवन में, जहां पति पत्नी सामान्य तरीके से ठीक से रहते हैं, वहां पति की कुछ आदतें अगर पत्नी को परेशान करती हैं तो पत्नी उपाय करके अपने पति की आदतों को ठीक कर सकती हैं। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले,
और सावन के पावन महीने में आपके भाग्य को बेहतर करने का उपाय बताएंगे सावन सूत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, धन के नुकसान से बचाव करें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में खुशहाली आएगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। बहुत बार ऐसा होता है कि पति की वाणी अच्छी नहीं होती, पति तेज आवाज में बोलते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, चुभने वाली बात बोलते हैं, तो अगर आपके पति की वाणी ठीक ना हो तो क्या उपाय करेंगी? रोज सवेरे स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करिए, सादा पानी प्लेन वाटर। सुबह के समय पूजा करिए, शंख और घंटी बजाइएगा और कम से कम 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। पत्नी को चाहिए कि घर में भोजन अपने हाथों से बनाएं, या पूरा भोजन नहीं भी बना पाती तो थोड़ा सा भोजन अपने हाथों से बनाएं, और कोशिश करें कि एक समय कम से कम अपने पति के साथ भोजन करें। अगर आप ऐसा उपाय नियमित रूप से करें तो 1 से 3 महीने में आप देखेंगी कि आपके पति की वाणी में, उनके बोलने के तरीके में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी,
स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी।

स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न शोभना ने हमें लिखा है, पटना से लिखती हैं। शोभना की जन्म तारीख है 9 अक्टूबर सन 1998, जन्म का समय शाम के 6 बजे, जन्म का स्थान है बेगूसराय। शोभना कह रही हैं कि मैं टीचिंग सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं, क्या शिक्षा क्षेत्र में मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? शोभना, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2027 आपके लिए बहुत अच्छा है और अगर आप प्रयास करें, थोड़ी मेहनत बढ़ाएं तो 2027 में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। ये संभावना आपकी कुंडली में जरूर दिखाई दे रही है।

अपना प्रयास जारी रखिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और सुबह के समय एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। बहुत सारी पत्नियों की ये शिकायत है कि पति घर में अस्त व्यस्तता फैलाते हैं, घर में गंदगी फैलाते हैं, साफ सफाई से कमरा, बाथरूम, काम करने की जगह नहीं रखते हैं। तो अगर आपके पति घर में गंदगी फैलाते हैं तो पत्नी क्या उपाय करेंगी? घर में जब भी पोंछा लगे, पोंछे के पानी में एक चम्मच या दो चम्मच नमक डाल दीजिए। नमक मिले हुए पानी का पोंछा घर में लगाइए। नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, गंदगी टिक नहीं पाएगी। घर में कपूर की सुगंध का प्रयोग करिए। कपूर की सुगंध वाले डिफ्यूजर्स आते हैं, उसमें कपूर जलाने से कपूर की महक पूरे घर में फैलती है। अपने बेडरूम में एक कांच के गिलास में पानी भरिए आधा और उसमें नींबू डालकर रख दीजिए। 15-15 दिन में इस पानी को बदलते रहिए और नींबू जब पूरी तरह खराब हो जाए तब उसको फेंक दीजिएगा। अपने पतिदेव को चंदन की सुगंध का प्रयोग करवाइएगा। ऐसा करने से मन में पवित्रता पैदा होती है, मन में शुभता पैदा होती है और आदमी गंदगी से दूर जाता है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, चोट चपेट से सावधान रहें, परिवार के कामों में आज व्यस्तता रहेगी। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। पत्नियों की सबसे बड़ी समस्या

समस्या जिसके बहुत सारे मेल भी हमारे पास आते हैं या पत्नियां जो कंप्लेन करती हैं वो ये है कि पतिदेव हमारे नशा करते हैं, एल्कोहल लेते हैं, नशे की दवाइयां खाते हैं, नशा करते हैं, जिस चक्कर में पूरा पारिवारिक जीवन तबाह हो रहा है, पूरी जिंदगी खराब हो रही है। तो अगर आपके पति को नशे की आदत हो तो क्या करना चाहिए? पति के नशे की वस्तु जो है, जैसे वो एल्कोहल लेते हैं तो शराब की बोतल, इसको शनिवार को सुबह के समय सुनसान जगह पर या कूड़े पात्र में फेंक आइए। ऐसा 8 शनिवार करने का प्रयास करिए, नहीं तो कम से कम 3 शनिवार लगातार करिए। अगर आपके पतिदेव नशा करते हो तो रोज सुबह और शाम ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और प्रार्थना करिए कि मेरे पति की नशे की आदत छूटे। घर में पुरानी अनुपयोगी वस्तुएं और कबाड़ ये इकट्ठा मत करिएगा और शयन कक्ष में लाइटिंग बढ़िया रखिए, शयन कक्ष में प्रकाश की व्यवस्था करिए। एक बड़ा अचूक उपाय है, अगर आपके पतिदेव नशा करते हैं तो उनके मन से नशे की भावना कम हो, इसके लिए शनिवार को 1 लोटा जल ले लें, उसमें दूर्वा यानी दूब घास डालें और दूब घास वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर प्रार्थना करें कि मेरे पति के नशे की आदत छूटे। ऐसा अगर हर शनिवार को आप प्रातः काल करें तो इस उपाय से भी नशे की आदत जल्दी छूट जाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग हैं, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, करियर में लाभ के योग हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

राशि धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि शुक्रवार को माता वैभव लक्ष्मी की पूजा करने से धन की प्राप्ति बड़ी आसानी से होती है। क्या ऐसा है? देखिए, वैभव लक्ष्मी कोई शास्त्रीय देवी नहीं है, ये लोक मान्यता की और लोकाचार की देवी हैं। शास्त्र में अष्ट लक्ष्मी का उल्लेख किया गया है जिसमें वैभव लक्ष्मी का कोई उल्लेख नहीं है, तो ये केवल जन सामान्य की मान्यता वाली देवी हैं। आप श्रद्धा से जो भी पूजा करिए, हो सकता है आपको लाभ भी हो जाए, लेकिन जहां तक शास्त्र की बात है, धन प्राप्त करने के लिए अष्ट लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, करियर में बदलाव होगा। नंबर 5, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। नंबर 6, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर 7, रिश्तों में समस्या हो सकती है। नंबर 8, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी को सफेद और श्री हरि यानी भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार होता चला जाएगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न मनीष जी ने हमें लिखा है, हैदराबाद से मेल लिखते हैं। मनीष की जन्म तारीख है 27 अगस्त 1988। जन्म का समय शाम के 7:05। जन्म का स्थान है हैदराबाद। मनीष कह रहे हैं कि मैं करियर के लिए बेंगलोर शिफ्ट होना चाहता हूं और उसके लिए काफी समय से प्रयास कर रहा हूं, तो मैं कब तक बेंगलोर शिफ्ट हो पाऊंगा
और क्या वहां जाकर प्रॉपर्टी बना सकूंगा? मनीष, आपकी कुंडली में स्थान परिवर्तन का समय चल रहा है। अप्रैल 2027 के पहले आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा। मनचाहा स्थान परिवर्तन दिखता है तो हो सकता है आप बेंगलोर की तरफ शिफ्ट कर जाएं। प्रॉपर्टी के लाभ की जहां तक बात

है साल 2028 में प्रॉपर्टी के लाभ की संभावना बनती है और आपका जन्म स्थान हैदराबाद है, वहां से दूर आप रहेंगे भी और वहां से दूर आप प्रॉपर्टी भी बना पाएंगे। एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी

की उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, दही खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, अपने साथ एक गुलाब का फूल रखकर जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, लाभ होगा। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो गुलाबी रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को आज सावधान।

ज्यादा शुभ होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ राशि वालों के लिए। पुरस्कार और सम्मान मिलेगा, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा सिंह राशि वालों को, सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज नवमी तिथि है, रिक्तता तिथि है नवमी, इसलिए आज कोई भी नया कार्य मत करिए। आज थोड़ा समय निकाल कर अगर माता लक्ष्मी की आरती करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सावन का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में आपको बताते हैं सावन में भाग्य को बेहतर करने का उपाय सावन सूत्र में। वर्षा जब भी हो वर्षा का जल इकट्ठा कर लें, एक बोतल में भर लें, इसको अपने पूजा स्थान या शयन कक्ष में रखें साल भर तक। इससे घर में सुख और शांति बनी रहेगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: डॉक्टर इमरान खान को स्वास्थ्य लाभ के लिए अस्पताल लाया गया था, लेकिन अब जानकारी आ रही है कि अब से थोड़ी देर पहले उन्हें वापस शिफा अस्पताल से उनको वापस हदियाला जेल भेज दिया गया है। वजह क्या है? प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, 3 साल की जेल लगभग वो काट चुके, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ले जाया गया, और अचानक ऐसा क्या हो गया उन्हें कि आनंद फान में फिर से जेल ले जाया गया है?
1: देखिए, ये अभी जो है सरकार की तरफ से किसी तरीके की कोई स्पष्ट जानकारी साझा नहीं की गई है वहां पर, लेकिन इस मामले को लेकर एक पिटीशन दाखिल की गई थी सरकार की तरफ से, जो पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन दाखिल की थी। वो पिटीशन, उसके ऊपर सुनवाई पे किसी तरीके का फैसला नहीं आया, वो पिटीशन उस समय रिजेक्ट हुई, उसके बाद वो रीफाइल होनी थी पिटीशन। ये जो प्रक्रिया है, ये कानूनी प्रक्रिया है इस मामले के अंदर, लेकिन फिलहाल किसी स्पष्ट बयान का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही इमरान खान को अदियाला जेल से लगभग 3 साल के बाद में शिफा अस्पताल पहुंचाया गया था, वहां उनकी जांच होनी थी, और उसके साथ ही ये भी संकेत आ रहे थे कि अगर जरूरत पड़ी तो उनको चिकित्सा कारणों से चलते हुए उनको बाहर ही जाने की इजाजत मिल सकती है। लेकिन ये सारा घटनाक्रम पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से उथल पुथल के बीच में हुआ है, आशुतोष वहां पर आप जानते हैं कि लेयर विद इन लेयर होती है पाकिस्तान के हर चीज के अंदर, क्योंकि कल ही इमरान खान का अदियाला जेल से बाहर निकलकर शिफा अस्पताल पहुंचाया
0: जाना। मैं एक चीज बस खाली आपसे ये जानना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह भी लिखा था कि अगर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है, जमावड़ा बहुत ज्यादा होता है, तो वापस उनको जेल ले जाया जा सकता है, यानी जो राहत मिली वो खत्म की जा सकती है। देर रात ये भी पता चला कि वहां भीड़ भाड़ जमी थी, क्या ये भी एक वजह हो सकती है?
1: देखिए, ये कारण हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर चीजें की जा सकती हैं, लेकिन अगर आप देखें आशुतोष, तो ये ऐसा कोई कारण नहीं है जिसे पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान की सरकार इमरान खान को वापस जेल भेजने के लिए इस्तेमाल करे। निश्चित रूप से वहां पर इमरान खान पॉपुलर नेता है, उनकी पार्टी का समर्थन है, जाहिर तौर पर अगर वो अडियाला जेल से बाहर आते हैं, 3 साल बाद आते हैं, तो लोगों का जमावड़ा बहुत स्वाभाविक सी चीज है वहां पर, वो जमावड़ा हुआ था वहां पर, लेकिन किसी तरीके की कोई हिंसा नहीं हुई, किसी तरीके की कोई हालात खराब होने की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है वहां पर, और भारी सुरक्षा के बीच ही उनको अडियाला जेल से शिफा अस्पताल पहुंचाया गया था।
0: ठीक है प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इमरान खान को, जिन्हें कुछ घंटे पहले ही अस्पताल ले जाया गया था राहत के लिए, उन्हें कुछ ही घंटे बाद फिर से अदियाला जेल वापस भेज दिया गया है। और वक्त हो चला है नॉनस्टॉप 100 का।

एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जानकारी आ रही है कि इमरान खान को लेकर, इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से वापस अदियाला जेल भेज दिया गया है। अब से कुछ घंटे पहले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए इमरान खान को अदियाला जेल से शिफा अस्पताल लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगभग 3 साल के बाद तोशाखाना केस में गिरफ्तारी की सजा काट रहे 14 साल की सजा

0: वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता विजय वेट्टीवार ने शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आजादी से पहले अंग्रेजों का साथ देने वाली विचारधारा आज कांग्रेस को राष्ट्रवाद का पाठ कैसे पढ़ा सकती है। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने भी शाह पर हमला बोलते हुए असली मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया, कहा बीजेपी के लिए ये राजनीतिक मुद्दा है। बीजेपी आज केरल में सभी जिला मुख्यालयों पर वंदे मातरम कार्यक्रम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रगीत को शामिल करने के फैसले के विरोध। वंदे मातरम को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का कांग्रेस पर तीखा हमला हुआ है, कहा है देश विरोधी चरित्र कांग्रेस का फिर से सामने आया है। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की 11वीं से 13वीं परीक्षाओं की नियुक्तियों को रद्द करने के हेमंत सोरेन की सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। 15 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है। झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद रिफॉर्म मंच ने छात्रों के साथ छल का आरोप लगाया है। आज मुख्यमंत्री के पुतला दहन का आह्वान किया गया है। बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। देवेंद्र महतो ने सरकार को चेतावनी दी है कि सीआईडी की रिपोर्ट कोर्ट में ठीक से क्यों नहीं रखी गई, पर्दा डालने की अगर कोशिश हुई तो सहेंगे नहीं, दोबारा आंदोलन होगा। जंतर मंतर से जागी जनरेशन जिन जी पर सत्ता से लेकर विपक्ष तक की नजरें हैं। संघ ने भी मंथन किया है। सर्व मार्च के दौरान ज्यादा बल प्रयोग के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कमेटी भी बनाई है। राहुल गांधी का महिलाओं से अब सीधा संवाद, समाज की नहीं बल्कि अपनी आवाज बताइए। 22 अगस्त को पुणे में महिला विशेष छात्रों की गूंज कार्यक्रम होगा। लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की बेंच स्थापित की जाएगी। अमित शाह बोले दूरदराज के लोगों को न्याय आसान और तेज पहुंचने का लाभ होगा। लद्दाख में हाईकोर्ट बेंच की मंजूरी को लेकर अमित शाह ने आगे कहा कि संवैधानिक सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर बीजेपी सेवा संकल्प महोत्सव मनाएगी। देशभर में 15 दिन तक कार्यक्रम किए जाएंगे। सेवा संकल्प महोत्सव में स्वच्छता, रक्तदान, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य शिविरों के साथ साथ विकास सुशासन पर कार्यक्रम होंगे। 22 अगस्त को बीजेपी अध्यक्ष तैयारियों की समीक्षा करेंगे। योगी सरकार का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर फोकस है। यूपी में बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार सीधे अभिभावकों के खाते में पैसा भेजेगी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय समिति बनाई है। प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के आरोपों की इस मामले में कमेटी पूरी तरह जांच करेगी। समिति प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन, इलेक्ट्रॉनिक बैटन, लाठी चार्ज और आंसू गैस के अत्यधिक प्रयोग से जुड़े आरोपों की भी जांच करेगी। समिति यह भी देखेगी कि प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से उठाए गए कदम की स्थिति अनुपात में थे या इस मामले में एसओपी का पालन नहीं हुआ था। गृहमंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय बंगाल दौरा आज से शुरू। सीमा सुरक्षा जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुरक्षा बलों के साथ सीधी रणनीति और सामूहिक भोज का भी कार्यक्रम है। दौरे पर गृहमंत्री सीमा सुरक्षा को मजबूत करने वाली कई नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। नीर प्रदर्शनकारियों पर जनरेशन गटर वाली टिप्पणी को लेकर के आगरा में कंगना रनौत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आज इस मामले में सुनवाई होगी। सरजू को लद्दाख दौरे पर ले में दलाई लामा से मिलने को लेकर के अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कौमिन साफ मोर्चा ने 21 अगस्त को पंजाब बंद का आह्वान किया है। यह बंद सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक रहेगा। लखनऊ में डबल मर्डर सुसाइड केस में एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें आरोपी मानस अपनी पत्नी दिव्या से आईसीआईसीआई बैंक के सामने लड़ता झगड़ता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। यूपी एमपी पश्चिम बंगाल में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मुंबई जमीन सौदों पर आदित्य ठाकरे का आरोप है कि अंधेरी का खेल मैदान 21 लाख में लीज में दिया जा रहा। बोले हजारों करोड़ की जमीन में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। मुंबई में जमीन कब्जे के आरोप पर आदित्य ठाकरे का प्रदर्शन का ऐलान है। 23 अगस्त को बांद्रा में जुटने की अपील की गई है। थाने में आरटीओ द्वारा ऑटो रिक्शा चालकों की चेकिंग शुरू की गई है। 6 जगहों पर चेकिंग जारी है। जिन ऑटो वालों को मराठी नहीं आ रही है उन्हें नोटिस दिया जा रहा है। वसई, विरार, मीरा भाईंदर में मराठी नहीं बोलने वाले ऑटो चालकों पर आरटीओ की कार्यवाही हो रही है। नोटिस देकर 1 महीने की मोहलत दी गई है। भाषा नहीं सीखने पर लाइसेंस और परमिट पर कार्यवाही हो सकती है। महाराष्ट्र में खुले खाद्य तेल की बिक्री पर एफडीए का शिकंजा कसा गया है। पुराने डिब्बों में तेल भरकर बेचने पर रोक लगा दी गई है। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे का सख्त आदेश है कि मिलावट और घटिया तेल पर कार्रवाई होगी। 25% से ज्यादा टीपीसी वाला इस्तेमाल तेल दोबारा नहीं बिकेगा। 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का आयोजन। मुंबई में विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर एफडीए ने सितारों को नोटिस भेजा। तुकाराम मुंडे ने कहा अभी तक कोई जवाब सितारों की ओर से नहीं दिया गया है। पुणे में गृहमंत्री अमित शाह के एंटी नेशनल वाले बयान पर विजय वेट्टीवार का पलटवार। हमें राष्ट्र विरोधी कहने वाले अपनी विचारधारा का इतिहास दिखा। मुंबई में 600 करोड़ रुपए के बैंक लोन सौदे पर ईओडब्ल्यू की नजर। लोन ट्रांसफर की संपत्तियों की कीमत तय करने में गड़बड़ी के आरोप। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने द भारत मॉडल किताब लॉन्च की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों से विकसित भारत के भविष्य और युवाओं की भूमिका पर चर्चा की। यूपी पुलिस की हाफ एनकाउंटर थ्योरी पर हाईकोर्ट ने खड़े सवाल करते हुए सख्ती की है। श्रावस्ती में हुए हाफ एनकाउंटर पर सीबीआई जांच के आदेश दिए। आज तक की खबर का असर, जैन अल्फा स्कूली बच्चों के आगे झुका महोबा प्रशासन। डीएमएसपी ने गांव पहुंचकर सुनी समस्याएं, कोतवाल पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। मणिपुर के कांगला टुंगमी में प्रदर्शन के दौरान तनाव, आंसू गैस के इस्तेमाल से 4 प्रदर्शनकारी घायल। पटना पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हुई, आश्वासन के बाद सभी डॉक्टर काम पर लौटे। दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का बड़ा फैसला। 2027 से पेट्रोल डीजल सीएनजी मालवाहक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश के रीवा में लगातार मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जर्जर इमारत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। भारी बारिश के चलते बाकिया डैम के 14 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लोगों को जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। राजस्थान के धौलपुर में तेज बारिश से कई सड़कें सैलाब में बदल गई हैं। निचले इलाकों में बाजारों में जलभराव के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा है। प्रयागराज में बाढ़ का असर, डूबने लगे सामान, संगम क्षेत्र की सड़कें जलमग्न हैं। सड़कों पर अब नावें भी चलानी पड़ी। बाढ़ का पानी धीरे धीरे संगम के प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर की बाउंड्री तक पहुंच चुका है। दुकानदार पुरोहित अब सामान बचाने के लिए दिन रात मशक्कत कर रहे हैं। पश्चिम मेदिनीपुर में बाढ़ से 2 की मौत हो गई है। परिवार वालों को 9 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया। मिर्जापुर में बारिश का कहर देखने को मिला, मिट्टी की दीवार गिरने से 3 की मौत हो गई, 1 घायल हो गए। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर आधा दर्जन जगह पर कटाव हो गया है। हवा में डिवाइडर झूल रहे हैं, एनएचआई प्रशासन अभी भी सो रहा है। पन्ना में आफत की बारिश देखने को मिली, उफनते नदी नाले में महिला बह गई, लोगों ने रेस्क्यू कर जान बचाई। मुरादाबाद में रामगंगा जलस्तर बढ़ चुका है, प्रशासन अब अलर्ट पर है, चौकियां और रेस्क्यू टीमों को तैयार कर दिया गया है। दिल्ली में रोहतक पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, भावु गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार, पुलिस आरोपियों का क्राइम रिकॉर्ड खंगाल रही है। मेरठ में गन्ने के खेत में युवती का शव बरामद हुआ है, हत्या की आशंका है, कई घंटे की कोशिश के बाद उसकी पहचान नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश के बैतूल में फेल करने की धमकी देकर छेड़छाड़ का आरोप, छात्राओं ने स्कूल से थाने तक पैदल मार्च निकाला, शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में FIR दर्ज। अजमेर से शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया, सरकारी स्कूल में तैनात कार्यवाहक हेडमास्टर शराब के नशे में स्कूल पहुंचा। जलंधर के सिटी इंस्टीट्यूट कैंपस में छात्रों के 2 गुटों में झड़प हुई, कई घायल, छात्रों ने एक दूसरे पर डंडे बैट से हमला किया, कमरों के अंदर कांच बिखरा। गुजरात के पाटन में एसटी बस को ट्रेलर जोरदार टक्कर मारी, बस चालक का घुटना फ्रैक्चर हो गया, सीसीटीवी में पूरा हादसा कैद हुआ। अमरावती के आदिवासी स्कूल में छात्रा की मौत के बाद FDA का एक्शन हुआ, बिना लाइसेंस वाला किचन, गंदगी और एक्सपायर्ड मसाले जब्त किए गए। देहरादून में 20 सड़क पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, 1 घायल हुआ, सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई, 1 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सूरत के सरकारी स्कूल में शराब पार्टी का वीडियो वायरल हो गया, सिक्योरिटी गार्ड समेत 4 गिरफ्तार। विशाखापट्टनम के निजी स्कूल में बच्चे की मौत, शिक्षक पर पिटाई का आरोप, सीसीटीवी में डांटते दिखाई दिया था शिक्षक। आज तक की खबर का असर, झांसी में जर्जर रपटे आवागमन बंद, पानी के तेज बहाव में बच्चों के नदी पार करने पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। बारिश में मोहाली यूनिवर्सिटी निर्माणाधीन अस्पताल की इमारत ढह गई, 2 लोगों की मौत हो गई, 2 को रेस्क्यू कर लिया गया। सहारनपुर में युवक पर फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो गया, बाइक सवार ने घर के बाहर गोली चलाई, हड़कंप मचा, पुलिस ने तहरीर लेकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। यूपी के बांदा में मानव तस्करी गैंग का भंडाफोड़ हुआ, पुलिस ने गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर में बारिश में खोया एक डिलीवरी बॉय का फोन, समाजवादी पार्टी के विधायक ने लौटाई मुस्कान, आवास पर बुलाकर उसे गिफ्ट किया फोन। हरियाणा के हिसार कोर्ट में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, 31 केस में आरोपी गैंगस्टर का मर्डर हुआ, घटना के बाद पुलिस ने कोर्ट परिसर को छापने में बदल दिया। वाराणसी में 3 दिन से लापता छात्रा का शव प्रेमी के किराए के कमरे में बरामद हुई, फरार प्रेमी को पकड़ने के लिए 4 टीमें पुलिस ने गठित कर दी। मसूरी में 20 सड़क पर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, हाथ लात और घूसों से चले वार भगत सिंह चौक का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। इंदौर में 3 साल की बच्ची से प्रताड़ना का आरोप, बैग में छिपे वॉइस रिकॉर्डर से खुलासा किया गया, टीचर पर केस दर्ज कर लिया गया है। दक्षिण 24 परगना के चंपाहाटी में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाने आ रहे हैं यश, आज से टॉक्सिक की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, दर्शकों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर दस्तक दे रही है फिल्म वेलकम टू जंगल, जियो हॉटस्टार सीन होगी, अक्षय कुमार, जैकलीन, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी और अर्षद वारसी समेत 30 से ज्यादा सितारों से सजी फिल्म। जैकी श्रॉफ की फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो भी अब ओटीटी पर उपलब्ध है, आज से Zee5 पर स्ट्रीम की जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सुपरस्टार विजय की सबसे चर्चित फिल्म जननायकन ओटीटी पर भी स्ट्रीमिंग को तैयार, आज से Zee5 पर उपलब्ध होगी। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी तमिल रोमांटिक फिल्म प्यार प्रेमा कल्याणम। हिंदी तेलुगु कन्नड़ मलयालम भाषाओं में भी फिल्म उपलब्ध है। पेरू में भूस्खलन के बाद ट्रक और यात्री तटीय हाईवे पर फंस गए। स्थानीय प्रशासन फंसे हुए ट्रक ड्राइवरों यात्रियों को राहत सामग्री बांटने में जुटा। सड़क खोलने की कोशिश की जा रही। पेरू में 6.7 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया। कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। चिली के राष्ट्रपति जोस एंटोनियो कास्ट ने बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित उत्तरी शहर टोकापिला का दौरा किया। नॉर्थ मैसेडोनिया में स्थानीय लोग और फायर फाइटर जंगल की आग बुझाने के लिए फावड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन फुटेज में भयावह नजारा दिखा। भीषण गर्मी और सूखे मौसम की वजह से जंगलों में आग तेजी से फैल रही है। स्थानीय प्रशासन दमकल विभाग पुलिस सेना आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक और क्रूज हाइपरसोनिक मिसाइलों से बड़ा हमला हुआ है। रूसी एयर स्ट्राइक में 12 की मौत हो गई। 30 से ज्यादा घायल हो गए। कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गई। रूसी नियंत्रण वाले जापरोजिया न्यूक्लियर प्लांट की आखिरी बाहरी बिजली लाइन भी अब बंद कर दी गई है। केवल इमरजेंसी डीजल जनरेटरों के भरोसे प्लांट चल रहा है। रूस ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ जेरेड कुशनर के मॉस्को दौरे को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने तुर्की की चेतावनी दी। नेतन्याहू ने कहा कि सीरिया में तुर्की की सैन्य मौजूदगी इसराइल के लिए खतरा पैदा कर सकती है। वेस्ट बैंक में कार्रवाई को लेकर अमेरिका ने सख्त चेतावनी दी। कहा जबरन कब्जा है उन्हें डराने की कार्रवाई नहीं की जाएगी स्वीकार। उत्तर कोरिया ने गुरुवार को संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागी। कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी समुद्री इलाके में मिसाइलें दागने का जापान और दक्षिण कोरिया ने दावा किया। चीन ने अमेरिकी ड्रोन टैरिफ के फैसले का कड़ा विरोध करते हुए चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका को लगाया गया टैरिफ तुरंत वापस लेना चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर उनके प्रवक्ता ने बयान दिया कि जेल से रिहाई के बाद पाकिस्तान सेना प्रमुख से टकराव अब नहीं करेंगे इमरान खान। प्रिंस हैरी और मेगन की ब्रिटेन यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ब्रिटिश पीएम ने निजी मामला बताया। पीएम एंडी बर्नम ने कहा सरकार सुरक्षा का खर्च नहीं उठाएगी। दुनिया की नंबर वन टेनिस खिलाड़ी एरिना सबलेंका को सिंसिनाटी ओपन में लगा बड़ा झटका। राउंड ऑफ 16 में चेक गणराज्य की 20 वर्षीय सारा बिजलिक ने दी मात।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ
1: एक हिंट तो देते।
2: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
3: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 20 रुपए का कैशबैक 20 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
4: इट्स द माय वे।

0: The new BE6 Sportac.
1: मुल्तानी कोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
2: AU
3: सोच बदलो और बैंक भी।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी।
2: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
3: B.R. अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है।
4: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट इलेक्ट्रेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही बल्तिस्तान भी बनता है।

सड़कों पर उड़ती धूल, गाड़ियों की लंबी कतारें और टोल प्लाजा पर रेंगता ट्रैफिक, हाईवे के सफर में ये परेशानी लगभग हर ड्राइवर की कहानी बन चुकी है। लेकिन आने वाले समय में टोल गेट पर रुकने की मजबूरी काफी हद तक खत्म हो सकती है। दरअसल सड़क परिवहन मंत्रालय देश भर में मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी MLFF टोलिंग सिस्टम लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। इस तकनीक के जरिए गाड़ियां बिना रुके टोल पार कर सकेंगी और सफर पहले से ज्यादा तेज और आसान हो जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल देश में 1150 से ज्यादा टोल प्लाजा मौजूद हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के इन टोल प्लाजा से हर साल 83,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टोल कलेक्शन होता है, जिसमें फास्टैग के जरिए टोल वसूली का हिस्सा 98% से ज्यादा पहुंच चुका है। ऐसे में सरकार का लक्ष्य टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम को कम करना और सफर को ज्यादा सुगम बनाना है। इसी दिशा में मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम को अलग अलग फेज में लागू किया जा रहा है। इस MLFF सिस्टम में बैरियर की जरूरत नहीं होगी, जिससे गाड़ियां बिना रुके टोल प्वाइंट से गुजर सकेंगी। वहीं फास्टैग और नंबर प्लेट पहचान तकनीक के जरिए टोल अपने आप कट जाएगा। इससे पहले की बचत के साथ ईंधन की खपत भी कम होगी। अभी देश के कुछ टोल प्लाजा पर ये तकनीक लागू की जा चुकी है और कई दूसरी जगहों पर इसके विस्तार की तैयारी चल रही है। टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए मौजूदा व्यवस्था को आसान बनाने पर भी मंथन चल रहा है। मंत्रालय स्थानीय यात्रियों के लिए सालाना पास जैसी व्यवस्था पर विचार कर रहा है, जिससे बार बार पास रिन्यू कराने की जरूरत कम हो सके। वैसे भी मासिक पास का खर्च 350 रुपए है, जिससे साल भर का कुल खर्च 4,200 रुपए हो जाता है। वहीं सालाना टोल पास करीब 3,000 रुपए का है। टोल भुगतान को आसान बनाने के लिए सरकार पहले ही फास्टैग एनुअल पास जैसी सुविधा शुरू कर चुकी है, जिसका फायदा हाईवे का नियमित इस्तेमाल करने वालों को मिल रहा है। इस फास्टैग एनुअल पास की मदद से एक तय शुल्क पर 200 टोल यात्रियों या एक साल तक की सुविधा मिलती है। जानकारों का मानना है कि फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम लागू होने के बाद हाईवे पर लगने वाले जाम में कमी आएगी, यात्रा का समय घटेगा और ईंधन की बचत होगी। आने वाले वर्षों में देश का टोल नेटवर्क पहले से कहीं ज्यादा डिजिटल और ऑटोमेटेड होने जा रहा है, यानी हाईवे पर सफर करते समय टोल प्लाजा पर रुकने की झंझट धीरे धीरे बीते दौर की बात बन सकती है। आज तक ब्यूरो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: EMI में राहत का इंतजार करने वालों को RBI की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद मायूसी हाथ लगी है। दरअसल उम्मीद के अनुसार ही सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर स्थिर रखा है। रेपो रेट स्थिर रहने से FD और बचत खातों की ब्याज दरों पर तत्काल असर की संभावना कम है। वहीं RBI ने अपना रुख न्यूट्रल रखा है, यानी आगे हालात देखकर फैसला होगा।
4: After a detailed assessment of the evolving macro economic conditions and the economic outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%. Consequently, the STF rate remains at 5% and the MSF rate and the bank rate at 5.5%.
3: लेकिन रसोई के बजट पर महंगाई का असर देखने को मिल सकता है। दुनिया भर में चल रहे तनाव और कच्चे तेल के दामों में उतार चढ़ाव की वजह से आने वाले दिनों में खाने पीने का सामान थोड़ा महंगा हो सकता है। आशंका है कि सब्जी और तेल के दाम बढ़ने से महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं अल नीनो और मानसून को लेकर बनी अनिश्चितता का असर खेती और खाद्य कीमतों पर पड़ सकता है। खास बात है कि खाद्य और ईंधन कीमतों को छोड़ दिया जाए तो कोर इन्फ्लेशन फिलहाल काबू में है। राहत की बात यह है कि ग्लोबल मार्केट में भारी उथल पुथल के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है।
4: बॉन्ड मार्केट सेंटिमेंट्स रिमेन बेयरिश, रिफ्लेक्टिंग फिस्कल सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स। हाउएवर, इक्विटी मार्केट्स ड्रिवन बाय टेक स्टॉक्स रिमेन अपबीट।
3: कुल मिलाकर RBI ने फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे में EMI में राहत का इंतजार थोड़ा और लंबा हो सकता है। हालांकि केंद्रीय बैंक का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और महंगाई पर नजर बनाए रखते हुए ग्रोथ को समर्थन दिया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।

अल्तेज शाह ने बताया देश विरोधी, कहा तुष्टीकरण कांग्रेस की नीति, आज पूरे केरलम में बीजेपी का वंदे मातरम को लेकर कार्यक्रम। परीक्षा रद्द करने के फैसले पर अदालती रोक के बाद फिर से झारखंड में हलचल, आज जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मोर्चा राज्य भर में करेगा पुतला दहन, सरकार पर धोखे का लगाया गया आरोप, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। लखनऊ में बैंक कर्मी की हत्या के मामले में नया खुलासा, दो दिनों से रेकी कर रहा था आरोपी पति, बैंक के सामने हुई वारदात से जुड़ी सीसीटीवी तस्वीर आई सामने, जांच जारी। दिल्ली में देर रात थार सवार शूटर से पुलिस की मुठभेड़, कई राउंड चली गोलियों में, भाऊ गैंग को दो बदमाश घायल, डॉक्टर्स को रंगदारी के लिए दे रहे थे धमकियां।

0: बजे हैं, अब वक्त हो गया है खास बुलेटिन सुपर 8 का। इस बुलेटिन में तमाम अहम खबरें आपके सामने होंगी। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड में रद्द हुई परीक्षा की खबर के बारे में, बताएंगे फिर से आके गुस्से में छात्र वहां क्यों नजर आ रहे हैं, अब कैसे तेज हो रही है यूजीसी पर लड़ाई, ये भी आपको बताएंगे डिटेल के साथ। जिक्र वंदे मातरम पर केरला में बीजेपी के रण का भी करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि अमित शाह का बंगाल दौरा किन मायनों में खास है, खबर यूपी चुनाव से जुड़ी भी होगी, कैसे एपीडीए पर तेज लड़ाई हो चुकी है, डिटेल के साथ आपको बताएंगे। वहीं लखनऊ मर्डर केस में सीसीटीवी में कैद सुराग की करेंगे खुलासा। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे हिसार में गैंगस्टर का मर्डर हो गया है और खबर इमरान खान की भी होगी। तो सबसे पहले रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का, पाकिस्तान की एक बड़ी खबर जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अडियाला जेल से तड़के इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट किया गया और कुछ ही देर में दोबारा उन्हें अडियाला जेल भेज दिया गया है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इतनी जल्दी उन्हें अस्पताल से जेल वापस आखिर क्यों भेजा गया। जेल सूत्रों के ने बताया कि इमरान खान को अस्पताल से बहुत बड़ी सुरक्षा के बीच जेल वापस लाया गया है और उनकी सेल में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की इजाजत दी थी। कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया था कि 73 वर्षीय इमरान खान को रावलपिंडी के गैरिसन शहर की जेल से इस्लामाबाद के अस्पताल में भर्ती किया जाए और इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। आप सभी जानते हैं इससे उनकी पार्टी और परिवार की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है जिन्होंने उनकी सेहत को लेकर चिंता जाहिर की थी।
1: इस वक्त मैं शिफा इंटरनेशनल के बाहर मौजूद हूँ और तेज बारिश यहाँ पर हो रही है। तकरीबन वक्त हो गए 5:40 सुबह के और रात भर यहाँ पर आपने देखा इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पर तैनात रही, पंजाब पुलिस से अभी यहाँ पर मीडिया की कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक इमरान खान को जो है वो यहाँ से शिफा से जो है वो पिम्स लेके जाया गया और उसके बाद जो है वो पिम्स के बाद इमरान खान को अडियाला दोबारा मुंतकिल कर दिया गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पर सख्त सिक्योरिटी तैनात थी, लेकिन अभी मैं हूँ बैक कैमरा से तो ये आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक मीडिया की गाड़ी खड़ी है, बाकी यहाँ पर आपको इस्लामाबाद पुलिस पंजाब पुलिस नहीं दिखाई दे रही होगी, सिर्फ और सिर्फ मीडिया की गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है जहाँ गुज़िश्ता रात भर जो है वो एक हाई सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई थी और हम तमाम तर रास्ते से यहाँ तक पहुँचे हैं तो रास्ते में हमें कोई रुकावट नहीं दिखाई दी गई और इसके साथ साथ जो है वो ना ही पुलिस का कोई अहलकार खड़ा दिखाई दिया और ना ही जो है वो किसी किस्म की कोई रुकावट थी। तो ये आप मनाजर देख सकते हैं सिर्फ और समा की DSNJ जियो की और एक्सप्रेस की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, बाकी यहाँ पर आपको कोई पुलिस अहलकार कोई पुलिस की गाड़ी कुछ रुकावटें भी जो है वो आप देख सकते हैं इस वक्त कोई भी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पुलिस की जानिब से जो रात को रुकावट लगाई गई थी वो भी इस वक्त खोल दी गई और रास्ते तमाम तर जो है वो खोल दिए गए हैं और हमारे ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर इमरान खान को जो है वो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से पिम्स लेके जाया गया और उसके बाद जो है वो इमरान खान को दोबारा जो है वो अडियाला मुंतकिल कर दिया है।
0: चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लखनऊ में हुए डबल मर्डर की बात करते हैं। दरअसल सुसाइड के मामले को लेकर अब हड़कंप मचा हुआ है। एक बैंक कर्मी ने पहले पत्नी की हत्या की, फिर घर आकर अपनी ही बहन को मार डाला और आखिर में खुद को गोली मारकर सुसाइड भी कर लिया। अब इस पूरे मामले से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। देखिए
2: ये सीसीटीवी तस्वीर लखनऊ में हुई दो हत्याओं में से एक की है। इसमें दिख रहा है कि बैंक के अंदर जा रही दिव्या मिश्रा नाम की महिला को उसका पति मानस गेट पर ही रोकता है, फिर दिव्या के साथ मारपीट करने लगता है। मारपीट होता देख पहले बैंक का गार्ड बाहर आता है लेकिन डर कर वो भी लौट जाता है। तब बैंक के अंदर से अन्य स्टाफ दौड़कर बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो सड़क पर पहुंचते हैं गोली चलती है और सभी स्टाफ डर कर बैंक की तरफ भागते हैं। इतने देर में दिव्या का खून हो जाता है। ये सब कुछ लखनऊ के पॉश इलाके गोमती नगर में हुआ, जिस बैंक में दिव्या मिश्रा असिस्टेंट मैनेजर के रूप में काम करती थी उसी बैंक के बाहर इस वारदात को अंजाम दिया गया। तलाक के मामले को लेकर आज कोर्ट में तारीख थी। उससे पहले ही मानस ने इस संगीन वारदात को अंजाम दिया। दिव्या को गोली मारने के बाद मानस ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर बाकायदा ये घोषणा भी कर दी, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है क्योंकि वो मुझे धोखा दे रही थी, अब मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना होगा। इसी स्टेटस के कुछ देर बाद मानस अपने घर पहुंचा, वहां अपनी बहन की हत्या की और फिर खुद को भी गोली मारकर जान दे दी।
3: वेपन्स मिली है, पिस्तल मिला है और तहरीर जैसे ही है मुकदमा लिख के कार्रवाई किया जाएगा।
2: अब इस मामले में खुलासा हुआ है कि आरोपी पति मानस कई दिनों से दिव्या की रेखी कर रहा था। 18 अगस्त को भी उसने दिव्या की गाड़ी रुकवाने की कोशिश की थी, तब से दिव्या डरी सहमी थी। उसने अपने करीबियों को बताया था कि मानस उसे मार देगा। अंकित मिश्रा और आशीष श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: वहीं रांची में 26 दिनों तक छात्रों के प्रदर्शन के बाद झारखंड सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। दरअसल अब सरकार के इस फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट के रोक लगा दी है और अदालत के इस फैसले को लेकर परीक्षा के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्र एक बार फिर से गुस्से में हैं। आज जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्र पूरे झारखंड में सीएम सोरेन का पुतला दहन करने जा रहे हैं और उधर जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। वो कल रांची में गले में फंदा डालकर प्रदर्शन करते दिखे। सीजीएल परीक्षा में कथित अनियमितता मामले में एक दिन पहले 37 संदिग्धों से एसआईटी ने पूछताछ की है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद छात्र संगठन बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। पुतला दहन वो आज करने वाले हैं। इस पूरे मामले को लेकर सीएम सोरेन का पुतला दहन छात्र करेंगे। तो वही झारखंड हाईकोर्ट ने जिन दो परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले पर रोक लगाई है वो आपको समझाते हैं। दरअसल उनमें से एक जो परीक्षा है वो है जेपीएससी की 11वीं और 13वीं की परीक्षा। वहीं दूसरी रोक इस चीज पर लगाई गई है, पहली रोक सुप्रीम कोर्ट की 11वीं और जेपीएससी की 11वीं और 13वीं परीक्षा। वहीं दूसरा मामला है फूड सेफ्टी अफसरों की नियुक्ति से जुड़ी परीक्षा। वहीं जेपीएससी की 11वीं और 13वीं की परीक्षा को लेकर कोर्ट के फैसले पर अब छात्र संगठन एक बार फिर से नाराज नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो पुतला वहां पर फूकेंगे।
2: रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 26 दिनों तक डटे रहे छात्र लौट चुके थे। परीक्षा रद्द किए जाने के बाद से वो सोरेन सरकार के फैसले से खुश थे। 2 महीने के लिए अपना आंदोलन स्थगित कर छात्र जा चुके थे, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला किया है कि रांची में फिर से हलचल तेज हो गई। गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की 11वीं और 13वीं परीक्षा के जरिए सरकारी कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करने वाले नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी। साथ ही फूड सेफ्टी अफसरों की नियुक्तियों को रद्द करने वाले आदेश पर भी स्टे लगा दिया। साथ ही कहा कि दोनों परीक्षा की याचिकाकर्ता तत्काल प्रभाव से काम पर वापस लौटेंगे। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के बैनर तले प्रदर्शन करने वाले छात्र इस फैसले को लेकर नाराज हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने परीक्षा रद्द करने को लेकर कोर्ट में अपना पक्ष सही से नहीं रखा।
4: आपका जो मनसा हम आज कोर्ट में देखने को जो मिला, आप किस मनसा के साथ आप जो ऐसे कोर्ट में उतरने का काम किए हैं, उस मनसा को हम तमाम छात्र आज पढ़े हैं। आप ये धोखा सिर्फ झारखंड के लाखों छात्रों को नहीं दिए हैं, झारखंड के तमाम आम आवाम को दिए हैं, झारखंड के उन तमाम अभिभावक को दिए जिन्होंने अपने बच्चा को, अपने बेटा और बेटियों को पिछले 26 दिनों से अपने हक और अधिकार के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भेजने का काम किए थे।
2: अब एक बार फिर से छात्र संगठन ने अपील की है कि आज झारखंड के सभी जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका जाएगा।
5: मैं अपील करूंगा कि कल पूरे मुख्यालय में, राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में आप माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला फूंकने का कार्य करें और उन्हें चेतावनी दें कि सुधर जाए, अन्यथा इस बार उससे भी बड़ा आंदोलन होगा जिसे कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी।
2: 16 दिनों तक अनशन करने वाले देवेंद्र महतो ने भी चेतावनी दी है कि सरकार ने लापरवाही बरती तो बड़ा आंदोलन करेंगे।
6: अगर सरकार अपना पक्ष रखने में, अपना जांच रिपोर्ट रखने में अगर किसी तरीके से लिपापोती करती है, किसी तरीके से कोताही बरतती है, तो यहाँ के छात्र बिल्कुल अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब जेपी के तर्क पर, जेपी आंदोलन के तर्क पर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, ये हम आज ऐलान करते हैं।
2: हाई कोर्ट ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 15 सितंबर तक जवाब मांगा है। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: तो वहीं बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि झारखंड सरकार ने छात्रों के साथ छल किया है।
7: न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि साहब, नैसर्गिक न्याय का ये सिद्धांत है, कि आप जिसको हटा रहे हैं उसका पक्ष सुनेंगे, एक ब्लैंकेट ऑर्डर से आप कैसे निकाल सकते हैं, और फिर 15 दिन का सरकार को समय भी दिया है। तो ये तो होना ही था, सरकार ने जानबूझकर आंदोलित छात्र जो सड़कों पे थे 24-25 दिन से उसके साथ छल किया। काश सरकार ने स्ट्रॉन्ग ऑर्डर निकाला होता या उससे भी बेटर होता 2 वर्ष पहले जब परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक की बातें आई थी।
0: तो वही वंदे मातरम के गायन को लेकर सियासी टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल कांग्रेस ने फैसला कर लिया है कि पार्टी सिर्फ 2 पैराग्राफ ही गाएगी, और इसे लेकर बीजेपी की ओर से बड़ा हमला हुआ। अमित शाह ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं।
2: 19 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी का एक फैसला अभी सियासी लड़ाई का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लड़ाई राष्ट्र गीत वंदे मातरम के गायन की है। गृहमंत्री अमित शाह इसे तुष्टिकरण और अपमान करने वाला बता रहे हैं।
8: इनकी घोर तुष्टिकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे।
2: कांग्रेस कह रही है कि पार्टी अपने कार्यक्रम में वंदे मातरम के सिर्फ 2 पैरा ही गाएगी, वो भी तक जब इस पर कानून बन चुका है, तय हो चुका है कि सभी 6 पैरा गाने होंगे। कांग्रेस अपनी जिद पर अड़ी है। वंदे मातरम पर कानून बनने के बाद से कांग्रेस के कई कार्यक्रम में नियम टूटे हैं। ऐसे में बीजेपी जब सवाल उठा रही है तो कांग्रेस पलटवार कर रही है।
9: मेरा अधिकार है मैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता बरकरार रखूं। इस्लाम के अंदर अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती, लेकिन इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया। 51 सेकंड का राष्ट्रगान, 312 सेकंड का राष्ट्रगीत इन्होंने पहले नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया, इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया।
2: बीजेपी ने भी कांग्रेस के रवैये का पुरजोर विरोध का फैसला लिया है। पार्टी आज केरलम में वंदे मातरम कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। सभी जिला मुख्यालयों पर आज ये कार्यक्रम तय है। आज तक ब्यूरो।
0: तो वंदे मातरम को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि जितना आएगा उतना ही गाएंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि वंदे मातरम का 6वां पैरा याद करना सही किसी के भी बस की बात नहीं है।
10: वंदे मातरम कानून बन चुका है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन वंदे मातरम गाया जाए इस तरीके का कोई आदेश सदन ने पास नहीं किया है। तो वंदे मातरम जब होगा तो जो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम खड़े होकर के सावधान मुद्रा में उसके सम्मान में हम उस कानून का पालन करेंगे, और वंदे मातरम जितना आ सकेगा उतना गाएंगे, क्योंकि 6 स्टेंजा याद करना किसी के बस की बात नहीं।
0: तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर बंगाल पहुंचे हैं, और कल शाम वो सिलीगुड़ी पहुंचे और बागडोगरा एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया। अब आज सुबह वो SSB कैंप जाने वाले हैं, वहां पर चिकन स्नैक को लेकर 2 अहम बैठकें होंगी। BSF के अधिकारी भी उस बैठक में शामिल होने वाले हैं, और इसके बाद गृहमंत्री कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए सिलीगुड़ी के कवाखाली मैदान भी जाएंगे। बाद में दोपहर में वो होटल लौटेंगे और वहां पर उनकी पार्टी की एक बैठक भी होने वाली है। कल वो बंगाल के पहाड़ी जिलों की समस्याओं पर भी बैठक करने वाले हैं, फिर शनिवार को ही दिल्ली लौटने का उनका कार्यक्रम है। चलिए आप कुछ खबरें यूपी और पंजाब की सियासी समर की। इस खास रिपोर्ट में आप देखिए दोनों राज्यों में कैसा है चुनावी हलचल।
11: यूपी चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी कमर कस चुकी है। पार्टी लगातार PDA की सरकार बनाने का दावा कर रही है। अध्यक्ष अखिलेश यादव इसी को लेकर BJP पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि BJP में PDA स्थान तो पा सकता है लेकिन सम्मान नहीं। उन्होंने कहा कि अगर संपूर्ण PDA समाज के लोग अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और लाभ का त्याग करके एकजुट हो जाए तो PDA सरकार सदैव के लिए आ जाए। NDA में सीट के बंटवारे को लेकर किए गए अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट किया तो यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर गुस्सा गए। उन्होंने अखिलेश और राहुल पर जमकर हमला बोला। मऊ पहुंचे राजभर ने PDA को लेकर तंज लहजे में कहा कि जो पीट देगा हीर को और जो पीट देगा अल्पसंख्यक को, यही उनका PDA है। अखिलेश यादव के चवन्नी को रुपया बनाने वाले बयान को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। अखिलेश के बयान के बाद आरएलडी भी लगातार हमलावर है। बागपत में आयोजित अल्पसंख्यक सम्मेलन के मंच से आरएलडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने अखिलेश पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक समाज को लेकर वोट बैंक के तौर पर देखती है। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि अल्पसंख्यक समाज का हित आरएलडी और एनडीए के साथ ही सुरक्षित है। यूपी में कांग्रेस को झटका लगा है। ये झटका दिया है समाजवादी पार्टी ने। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के दामाद शायन मसूद ने समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने के बाद शायन मसूद ने कहा कि आने वाले चुनाव में यूपी में सत्ता परिवर्तन तय है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पंजाब की सियासत में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच दोबारा गठजोड़ को लेकर चर्चा फिर तेज है। संत हरचंद सिंह लौंगोवाल की 41वीं बरसी पर लौंगोवाल ने हरसिमरत कौर ने ये संकेत दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे समझौते होने चाहिए जिनसे पंजाब के विकास और तरक्की को गति मिले। दिल्ली के साथ हुए पुराने समझौतों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले जिस तरह पंजाब में विकास और तरक्की के काम हुए थे, उसी तरह दोबारा पंजाब में विकास की नींव रखी जानी चाहिए जिससे जनता और पंजाब दोनों का फायदा हो।
0: और अब खबर दिल्ली में जंतर मंतर पर शुरू हो रहे एक और मोर्चे की। राजस्थान से करनी सेना और चाणक्य सेना के कार्यकर्ता आज से धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आरक्षण और यूजीसी नियमों के विरोध में विरोध उनका अनिश्चितकालीन प्रदर्शन आज शुरू होने वाला है।
12: तो आप लोगों का प्लान क्या है और मांग क्या है सरकार से?
13: हम तो यही कहना चाहते हैं सबसे पहले कि हमारी मांग एक ही है कि इस यूजीसी जो लगाया है इससे मेरे को बताइए एसटीएस के समाज के लोगों को क्या बेनिफिट है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं कि ये स्वर्णों का तो नुकसान है लेकिन एसटीएससी समाज को क्या फायदा है। और आपने जो आरक्षण लगा रखा है उसमें मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक नंबर आता है उसका एमबीबीएस में एडमिशन कर लिया जाता है, जिसके 550 नंबर आ रहे हैं उसके एडमिशन भी नहीं किया जाता। हाँ, ये अंग्रेजों के राज में भी नहीं हुआ करता था। अगर एक देश एक कानून, आज कोई राजा महाराजा नहीं रहे। मैं शिव सिंह शेखावत भी हूँ, हमने हमारी प्रॉपर्टियाँ सिलेंडर कर दी, गढ़ सिलेंडर कर दिए। आने वाले समय में हमने भी जो सरकार के साथ एग्रीमेंट कर रखा है वो कैंसिल करेंगे। हम लोग जंतर मंतर पे आए हैं, चाणक्य सेना भी आई है, करनी सेना भी आई है और पूरी टीम को आप लोग देख रहे हैं। हम लोग सैकड़ों में गाड़ियाँ लेके जयपुर से रवाना हुए। हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे, सरकार को हम लोग अपनी बात कहेंगे। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो आप देखेंगे पूरा जंतर मंतर तो भरी जाएगा, पूरा फुटपाथ भी भर जाएगा।
0: बात मणिपुर की कर लेते हैं। मणिपुर में हाल ही में मारे गए 6 नागा नागरिकों को लेकर चल रहा प्रदर्शन गुरुवार को हिंसक हो गया। दरअसल यूनाइटेड नागा काउंसिल के बैनर तले ये प्रदर्शन हुआ और इस दौरान लोगों में जबरदस्त गुस्सा दिखा है। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे। झड़प में 4 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर है जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लियांगमाई नागा काउंसिल ने इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच और हिरासत में लिए गए ग्रामीणों की रिहाई की मांग की है। वहीं इलाके में तनाव को देखते हुए सुरक्षा बल भी तैनात किए गए। रिसार के कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े एक गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जी हां, पार्किंग के पास बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की जिसमें गैंगस्टर गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन उसकी मौत हो गई। घटना में एक अन्य व्यक्ति भी गोली लगने की वजह से घायल हुआ है। पुलिस ने वारदात के तुरंत बाद एक आरोपी को हथियार समेत पकड़ लिया और मारे गए गैंगस्टर विनोद के खिलाफ हत्या के प्रयास और लूट समेत 31 आपराधिक मामले दर्ज किए थे। अब खबर संगम नगरी प्रयागराज से जुड़ी। दरअसल यहां पर गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसका असर पूरे संगम क्षेत्र में दिख रहा है। जहां कभी श्रद्धालुओं की भीड़ और वाहनों की आवाजाही रहती थी, वहां पर अब चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि कई सड़कों पर नाव चल रही है।
2: संगम क्षेत्र में संकट है, यहां रास्ते पानी में डूब चुके हैं, घाट भी डूबे हैं। तीर्थ पुरोहितों के तख्त, पूजा का सामान और अस्थाई दुकानें भी बाढ़ की चपेट में आ चुकी हैं। बाढ़ का पानी अब संगम के प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर की बाउंड्री तक पहुंच चुका है। मंदिर परिसर के आसपास रहने वाले पंडित और तीर्थ पुरोहित परेशान हो उठे हैं। पूजा सामग्री, तख्त
14: लकड़ी के सामान और अन्य जरूरी वस्तुओं को ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। यहां खतरे का सबब बन चुकी है गंगा और यमुना की लहरें। जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। वैसे तो अभी गंगा और यमुना खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन जिस रफ्तार से जल स्तर बढ़ रहा है उससे सभी की चिंता भी बढ़ी हुई है।
15: जिन रास्तों पर गाड़ियां चला करती थीं, आज इन रास्तों पर नाव चल रही है। और ये आरती स्थल है, हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि आरती स्थल पे लोग स्नान कर रहे हैं और यहाँ जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। तो प्रयागराज में जैसे ही दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर लोगों को दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है।
14: प्रयागराज में संकट बढ़ा है तो सरकार भी सतर्क हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बारिश के दौरान जलभराव से लोगों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जनहित में इसका स्थायी समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाए। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।
0: और अब खबर नॉर्थ मैसेडोनिया की, जहां पर जंगल की भीषण आग लगी हुई है। इस पर काबू पाने के लिए ग्रामीणों और दमकल कर्मियों की मशक्कत करनी पड़ी। पहाड़ी और बेहद ही दुर्गम इलाकों में सूखी घास आग के लिए तेजी से फैलने वाला ईंधन बन गई है। आग बुझाने के लिए पुलिस हेलीकॉप्टर और पानी की अस्थायी टंकी भी तैनात की गई है, लेकिन तेज हवाओं के चलते आग बार बार बेकाबू हो गई। स्थानीय लोगों ने मवेशियों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया है। सुपर हिट में आप वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है. कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है. और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम. जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप.
2: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन.
3: मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय. मुल्तानी घोका कॉफ सिरप.
4: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए. सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स. और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती.
5: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स.
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
8: सोच बदलो और बैंक भी.
9: गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए.
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश.
10: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील TMT से बना.
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड.

0: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
1: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 20 रुपए का कैशबैक 20 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर, भीम ऐप से करो पे।
2: इट्स द माय वे।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है. कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है. और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम. जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप.
2: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन.
3: मुल्तानी कोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय. मुल्तानी कोका कॉफ सिरप.
4: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए. सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स. और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती.
5: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स.
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
8: सोच बदलो और बैंक भी.
9: गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए.
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश.
10: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील TMT से बना.
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड.

0: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
1: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 20 रुपए का कैशबैक 20 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
2: इट्स द माय वे।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
3: B.R. अम्बेडकर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है।
4: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिंदा की तरह कि हम सेपरेट अलग स्टेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही बल्तिस्तान भी बनता।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

अस्पताल से वापस अडियाला जेल शिफ्ट किए गए इमरान खान। शिफा अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम ने की जांच। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देर रात इमरान को लाया गया था। वंदे मातरम पढ़े जाने को लेकर सियासी संग्राम तेज। शाह ने बताया देश विरोधी, कहा तुष्टिकरण कांग्रेस की नीति। आज पूरे केरलम में बीजेपी का वंदे मातरम को लेकर कार्यक्रम। परीक्षा रद्द करने के फैसले पर अदालती रोक के बाद फिर से झारखंड में हलचल। आज जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मोर्चा राज्य भर में करेगा पुतला दहन। सरकार पर धोखे का लगाया आरोप, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। लखनऊ में बैंक कर्मी की हत्या के मामले में नया खुलासा। दो दिनों से रेकी कर रहा था आरोपी पति। बैंक के सामने हुई वारदात से जुड़ी सीसीटीवी तस्वीर आई सामने, जांच जारी। दिल्ली में देर रात थार सवार शूटर से पुलिस की मुठभेड़। कई राउंड चली गोलियों में। भाऊ गैंग के दो बदमाश घायल। डॉक्टर को रंगदारी के लिए दे रहे थे धमकियां। Presented by

वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान तेज, अमित शाह के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, आजादी से पहले अंग्रेजों का साथ देने वाली विचारधारा आज कांग्रेस को राष्ट्रवाद का पाठ कैसे पढ़ा सकती है। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने भी शाह पर हमला बोलते हुए असली मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया, कहा बीजेपी के लिए ये राजनीतिक मुद्दा। बीजेपी आज केरलम में सभी जिला मुख्यालयों पर वंदे मातरम कार्यक्रम कर रही, राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रगीत को शामिल न करने के फैसले के विरोध। वंदे मातरम को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का कांग्रेस पर तीखा हमला, कहा देश विरोधी चरित्र फिर से आया सामने। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की 11वीं से 13वीं परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने के हेमंत सोरेन की सरकार के फैसले पर रोक लगाई, 15 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद रिफॉर्म मंच ने छात्रों के साथ छल का आरोप लगाया, आज मुख्यमंत्री के पुतला दहन का आह्वान किया है और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। देवेंद्र महतो ने सरकार को दी चेतावनी, सीआईडी रिपोर्ट कोर्ट में ठीक से क्यों नहीं रखी, पर्दा डालने की कोशिश हुई तो नहीं सहेंगे। जंतर मंतर से जागी जनरेशन जेन जी पर सत्ता से लेकर विपक्ष तक की नजर, संघ ने भी किया मंथन, संसद मार्च के दौरान ज्यादा बल प्रयोग के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। राहुल गांधी का महिलाओं से सीधा संवाद, समाज की नहीं अपनी आवाज बताइए, 22 अगस्त को होगा पुणे में महिला विशेष छात्रों की गूंज कार्यक्रम। लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की बेंच स्थापित होगी, अमित शाह बोले दूरदराज के लोगों को मिलेगा न्याय तक आसान और तेज पहुंच का लाभ। लखनऊ में हाईकोर्ट बेंच को मंजूरी को लेकर अमित शाह ने आगे कहा, संवैधानिक सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर बीजेपी मनाएगी सेवा संकल्प महोत्सव, देशभर में 15 दिन तक होंगे कार्यक्रम। सेवा संकल्प महोत्सव में स्वच्छता, रक्तदान, वृक्षारोपण और स्वास्थ्य शिविरों के साथ विकास सुशासन पर होंगे कार्यक्रम। 22 अगस्त को बीजेपी अध्यक्ष तैयारियों की समीक्षा करेंगे। योगी सरकार का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर फोकस, यूपी में बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार सीधे अभिभावकों के खाते में पैसा भेज रही है। जंतर मंतर प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 5 सदस्यीय समिति, प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के आरोपों की होगी जांच। समिति प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन और साथ ही लाठीचार्ज और आंसू गैस के अत्यधिक इस्तेमाल से जुड़े आरोपों की जांच करेगी। समिति ये भी देखेगी कि प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से उठाए गए कदम स्थिति के अनुपात में थे या नहीं। अमित शाह का 3 दिवसीय बंगाल दौरा आज से, सीमा सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों में होंगे शामिल, सुरक्षा बलों के साथ सीधी रणनीति और सामूहिक भोज। इस दौरे के दौरान गृहमंत्री अमित शाह सीमा सुरक्षा को मजबूत करने वाली कई नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, नए आपराधिक कानूनों पर भी मीटिंग। नीट प्रदर्शनकारियों पर जनरेशन गटर वाली टिप्पणी को लेकर आगरा में कंगना के खिलाफ मामला दर्ज, आज सुनवाई। सर्जियो गोर लद्दाख दौरे पर, ले में दलाई लामा से मिलने को लेकर सस्पेंस बरकरार। कौमी इंसाफ मोर्चा ने 21 अगस्त को पंजाब बंद का किया आह्वान, ये बंद सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। लखनऊ में डबल मर्डर सुसाइड केस में एक नया वीडियो सीसीटीवी आया सामने, जिसमें आरोपी मानस अपनी पत्नी दिव्या से आईसीआईसीआई बैंक के सामने लड़ता झगड़ता दिख रहा है। आईएमडी ने शुक्रवार को कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी, यूपी, एमपी और पश्चिम बंगाल में बहुत बारिश होने की संभावना। मुंबई जमीन सौदों पर आदित्य ठाकरे का आरोप, अंधेरी का खेल, मैदान 21 लाख में लीज, वही बोले कि हजारों करोड़ की जमीन में भ्रष्टाचार पड़ा। मुंबई में जमीन कब्जे के आरोप पर आदित्य ठाकरे का प्रदर्शन का ऐलान, 23 अगस्त को बांद्रा में जुटने की अपील। थाने में आरटीओ द्वारा ऑटो रिक्शा चालकों की चेकिंग शुरू की गई, 6 जगहों पर चेकिंग जारी, जिन ऑटो वालों को मराठी नहीं आ रही है उन्हें दिया जा रहा है नोटिस। वसई, विरार और मीरा भाईदर में भी मराठी नहीं बोलने वाले ऑटो चालकों पर आरटीओ की कार्रवाई, नोटिस देकर 1 महीने की मोहलत, भाषा नहीं सीखने पर लाइसेंस परमिट पर हो सकती है कार्रवाई। महाराष्ट्र में खुले खाद्य तेल की बिक्री पर एफडीए का शिकंजा, पुराने डिब्बों में तेल भरकर बेचने और इस्तेमाल किए गए तेल को दोबारा बेचने पर सख्त कार्रवाई। पुणे में अमित शाह के एंटी नेशनल वाले बयान पर विजय वडेट्टीवार का पलटवार, हमें राष्ट्र विरोधी कहने वाले अपनी विचारधारा का इतिहास देखें। पुणे में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज नरवणे ने कहा कि चीन भारत का मुख्य प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदी कहना सही है, दुश्मन नहीं, भारत को पाकिस्तान से तत्काल खतरा। जनरेशन गैप पर बोले पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे,
उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी गलत नहीं है, उसे समझकर उसकी ऊर्जा को देश हित में लगाना होगा। मुंबई में विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर एफडीए ने सितारों को भेजा नोटिस। तुकाराम मुंडे बोले, अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिला। मुंबई में 600 करोड़ रुपए के बैंक लोन सौदे पर ईओडब्ल्यू की नजर। लोन ट्रांसफर और संपत्तियों की कीमत तय करने में गड़बड़ी का आरोप। मध्य प्रदेश के रीवा में लगातार मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, रेस्क्यू जारी। जर्जर इमारत गिरने की वजह से एक की मौत। भारी बारिश के चलते बकिया डैम के 14 गेट भी खोल दिए गए हैं, जिससे कि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लोगों को जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह। राजस्थान के धौलपुर में तेज बारिश से कई सड़कें सैलाब में बदली। निचले इलाकों और बाजारों में जलभराव के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का करना पड़ा सामना। प्रयागराज में बाढ़ का असर, डूबने लगे सामान और दुकानें। संगम क्षेत्र जलमग्न, सड़कों पर चलने लगी नाव। बाढ़ का पानी अब संगम के प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर की बाउंड्री तक पहुंचा। दुकानदार और पुरोहित अपना सामान बेचने के लिए दिन रात करना पड़ रहा है मशक्कत। पश्चिम मेदिनीपुर में बाढ़ से 2 लोगों की मौत हुई। परिवारों को 9-9 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा, बंगाल सीएम शुभेंदु का ऐलान। मिर्जापुर में बारिश का कहर, मिट्टी की दीवार गिरने की वजह से 3 की मौत हुई, 1 व्यक्ति घायल। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर आधा दर्जन जगह कटाव। हवा में झूले डिवाइडर, सो रहा है एनएचएआई प्रशासन। पन्ना में आफत की बारिश, उफनते नाले में बही महिला, लोगों ने रेस्क्यू कर बचाई महिला की जान। मुरादाबाद में बढ़ा रामगंगा का जलस्तर, प्रशासन अलर्ट मोड पर, बाढ़ चौकियां और रेस्क्यू टीमें तैयार। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए इमरान मसूद के दामाद शायान मसूद और बोले कि बीजेपी को हराना है तो अखिलेश यादव के अलावा कोई रास्ता नहीं। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी में पीडीए स्थान तो पा सकता है लेकिन सम्मान नहीं। अखिलेश यादव के चवन्नी को रुपया बनाने वाले बयान पर सियासत। आरएलडी ने कहा, चौधरी साहब अखिलेश के सपने में आ रहे हैं जिससे उन्हें घबराहट हो रही है। उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसरों के तबादले। 7 जिले के पुलिस कप्तान बदले गए। एसपी संभल रहे केके बिश्नोई को एसपी बिजनौर बनाया गया। यूपी पुलिस की हाफ एनकाउंटर थ्योरी पर हाईकोर्ट ने खड़े किए हैं सवाल। श्रावस्ती में हुए हाफ एनकाउंटर पर सीबीआई जांच के आदेश। दिल्ली में रोहतक पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। भाव गैंग के 2 शूटर्स गिरफ्तार। पुलिस आरोपियों का क्राइम रिकॉर्ड खंगाल रही। मेरठ में गन्ने के खेत में युवती का शव मिला, हत्या की आशंका। हालांकि कई घंटे की मशक्कत के बाद उसकी पहचान हुई। मध्य प्रदेश के बैतूल में फेल करने की धमकी देकर छेड़छाड़ का आरोप लगा। छात्राओं ने स्कूल से थाने तक निकाला पैदल मार्च। अजमेर से शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया। सरकारी स्कूल में तैनात कार्यवाहक हेडमास्टर शराब के नशे में पहुंचा स्कूल। जालंधर में सिटी इंस्टीट्यूट कैंपस में छात्रों के 2 गुटों में हुई झड़प। कई घायल हुए। छात्रों ने एक दूसरे पर डंडे और बैट से हमला किया। कमरे के अंदर बिखरा कांच। गुजरात के पाटन में भी एसटी बस को ट्रेलर ने मारी जोरदार टक्कर। बस चालक का घुटना फ्रैक्चर हुआ। सीसीटीवी में कैद हादसा। अमरावती के आदिवासी स्कूल में छात्रा की मौत के बाद एफडीए का एक्शन। बिना लाइसेंस मिला किचन और गंदगी और एक्सपायर्ड मसाले मिले। देहरादून में बीच सड़क ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। 1 व्यक्ति घायल। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। एक आरोपी गिरफ्तार। अहमदाबाद में फ्रॉड केस में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। कर्नाटक के मांड्या में गारमेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। करोड़ों रुपए से अधिक मूल्य के कपड़े और अन्य सामान जलकर खाक। कृष्णगिरी में 100 से ज्यादा नर्स का प्रदर्शन। विभिन्न मांगों को लेकर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन। हरियाणा के हिसार कोर्ट में ताबड़तोड़ फायरिंग। 31 केस में आरोपी गैंगस्टर का मर्डर। घटना के बाद पुलिस ने कोर्ट परिसर को छावनी में बदला। मसूरी में बीच सड़क 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। हाथ लात और घूसों से चले वार। भगत सिंह चौक का वीडियो वायरल। पुलिस जांच में जुटी। इंदौर में 30 साल की बच्ची से प्रताड़ना का आरोप। बैग में छिपे वॉइस रिकॉर्डर से खुलासा हुआ। टीचर पर केस दर्ज। दक्षिण 24 परगना के चंपाहटी में पटाखा फैक्ट्री में धमाका। 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। आज तक की खबर का असर। झांसी में जर्जर रपटे पर आवागमन बंद। पानी के तेज बहाव में बच्चों के नदी पार करने पर प्रशासन सख्त। बारिश में मोहाली एरोसिटी में निर्माणाधीन अस्पताल की इमारत ढही। 2 की मौत हुई। 2 को किया गया रेस्क्यू। सहारनपुर में युवक पर फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ। बाइक सवारों ने घर के बाहर चलाई गोली, मचा हड़कंप। पुलिस ने तहरीर लेकर आरोपियों की तलाश शुरू की। यूपी के बांदा में मानव तस्करी गैंग का भंडाफोड़। पुलिस ने गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में बारिश में खोया डिलीवरी बॉय का फोन। समाजवादी पार्टी के विधायक ने लौटाई मुस्कान। आवास पर बुलाकर गिफ्ट किया फोन। बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाने आ रहे हैं यश। आज से टॉक्सिक की एडवांस बुकिंग शुरू हुई। दर्शकों में उत्साह। सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर फिल्म वेलकम टू द जंगल। जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हुई अक्षय कुमार जैकलिन की फिल्म।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 21 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, रात के 11:36 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, प्रातः 11:53 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, धन के नुकसान से बचाव करें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में खुशहाली आएगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कर्क राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी।

रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। तुला राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, चोट चपेट से सावधान रहें, परिवार के कामों में आज व्यस्तता रहेगी, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मकर राशि, धन लाभ के योग हैं, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, करियर में लाभ के योग हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

निर्णय ना लें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
3: संपूर्ण वंदे मातरम इस राष्ट्र का स्वर है। इस भावना के साथ बने संसद के कानून और गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के बावजूद कांग्रेस पहले की तरह सिर्फ दो पदों के गायन पर अड़ गई है। 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय से शुरू हुए विवाद के बाद पार्टी की वर्किंग कमेटी ने जब अपना निर्णय दोहराया तो जोरदार पलटवार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया।
4: कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टिकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है।
3: वैसे ये महत्वपूर्ण है कि 13 अगस्त को लोकसभा में संसद सत्र का समापन संपूर्ण वंदे मातरम से हुआ था। तब राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, कुमारी शैलजा, मनीष तिवारी, मणिकम टैगोर समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ सांसद मौजूद थे और उन्होंने वंदे मातरम का सामूहिक पाठ किया था। लेकिन पहले 15 अगस्त पर कांग्रेस मुख्यालय पर संपूर्ण वंदे मातरम बजने पर सोनिया गांधी कुछ निर्देश देती नजर आई। उसी दिन केरल सरकार के आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में वंदे मातरम का गायन ही नहीं हुआ। हालांकि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकारों ने 15 अगस्त के आधिकारिक कार्यक्रमों में संपूर्ण वंदे मातरम का पाठ किया। जबकि 17 अगस्त को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम के सिर्फ दो पद गाए गए। इसके बाद खड़गे ने साफ कर दिया था कि पार्टी वंदे मातरम के सभी 6 पद नहीं गाएगी। फिर CWC में बाकायदा चर्चा के बाद निर्णय सुनाया गया।
5: 1937 का रेसोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ ठाकुर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, दिस टाइप ऑफ सरदार पटेल जी, दिस टाइप ऑफ टॉप मोस्ट लीडरशिप ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइडेड दैट वट एवर द डिसीजन दे टुक वी विल अबाइड दैट डिसीजंस। वी आर वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट that our Congress party workers will do that only. This is our decision. First two stands down.
3: वंदे मातरम पर कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक्स पोस्ट में लिखा, कांग्रेस ने अब अपने अपमान को एक प्रस्ताव की शक्ल दे दी है। उसकी कार्यसमिति ने तय किया है कि कांग्रेस के मंचों पर वंदे मातरम के केवल पहले दो छंद ही गाए जाएंगे। जब कुछ दिन पूर्व यही अपमान एक व्यक्ति के आचरण में उजागर हुआ था तब कांग्रेस ने उसे संयोग बताकर टाल दिया था। आज वही अपमान कांग्रेस की नीति बन चुका है। कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग बन गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का आरोप है कि राहुल गांधी जी जिन्ना के असली वारिस हैं। बीजेपी के इस हमले के जवाब में कांग्रेस का पलटवार भी तैयार है।
6: आपने पास कर दिया, संख्या बल आपके पास है, आप मेरे अधिकार से मुझे कैसे वंचित कर दोगे? मेरा अधिकार है कि मैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता बरकरार रखूं। मैं अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा हूं जो मुझे संविधान ने दिया है। मेरा अधिकार है मैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता बरकरार रखूं। इस्लाम के अंदर अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती।
3: वंदे मातरम पर दोनों ओर से खींची तलवारें बता रही हैं कि अभी इस पर सियासत लंबी चल सकती है। आज तक ब्यूरो।
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
9: इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

केरलम विवाद के बाद बीजेपी का प्रदेश भर में कार्यक्रम। शर्मिला टैगोर ने धर्म से जोड़ा, कहा हर मजहब के लिए पूरा गायन मुश्किल, दो छंद ही ठीक है। परीक्षाएं रद्द करने के सीएम सोरेन के फैसले पर अदालत की रोक के बाद झारखंड में फिर उठी आंदोलन की चिंगारी। आज जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मोर्चा राज्यभर में करेगा पुतला दहन, कहा कोर्ट में सरकार का पक्ष कमजोर। आज से पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं गृहमंत्री अमित शाह, बांग्लादेश बॉर्डर का करेंगे जायजा, सीमा सुरक्षा और बॉर्डर मैनेजमेंट पर फोकस, कल अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक।

की टीम ने की जांच। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देर रात इमरान को लाया गया था। लखनऊ में बैंक कर्मी की हत्या मामले में नया खुलासा। 2 दिन से रेकी कर रहा था आरोपी पति। बैंक के सामने हुई वारदात से जुड़ी सीसीटीवी तस्वीर आई सामने। जांच जारी।

नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर पर एक बार फिर से हम हाजिर हैं खबरें रफ्तार से और विस्तार से, लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। वंदे मातरम विवाद, जिसकी केलम फाइल अब खुल चुकी है। त्रिवेंद्रम के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग SFI ने पूरा वंदे मातरम गाने से रोका। पूरी खबर अब से कुछ ही देर बाद आपको दिखाएंगे। क्या झारखंड में फिर भड़केगा छात्र आंदोलन, हाईकोर्ट के फैसले के बाद छात्रों में उबाल। बुलेटिन के अगले हिस्से में बाढ़ की रिपोर्ट होगी, दिखाएंगे उन शहरों का हाल जहां बाढ़ ने मचाया है त्राह में मामा। ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं वंदे मातरम को लेकर नए विवाद के साथ, क्योंकि नया विवाद केलम से जुड़ा हुआ है। केलम के त्रिवेंद्रम में आरोप यह लगा है कि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में SFI ने वंदे मातरम को बीच में ही रुकवा दिया। SFI का कहना है कि केलम में पूरा वंदे मातरम नहीं बजेगा।

0: वंदे मातरम विवाद की ये केरलम फाइल है। आरोप है कि केरलम के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में एक त्रिवेंद्रम के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में SFI ने वंदे मातरम पूरा गाने से रोक दिया। खबरों के मुताबिक त्रिवेंद्रम के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के तहत युवा प्रोफेशनल्स का राउंड टेबल आयोजित किया गया था। राउंड टेबल से पहले वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ तो SFI के छात्रों ने बीच में ही रुकवा दिया। SFI के छात्रों का कहना था कि ये केरलम है और आप यहाँ पूरा वंदे मातरम नहीं गा सकते। वंदे मातरम के दो छंद या छह छंद। 15 अगस्त को कांग्रेस के कार्यक्रम से इस विवाद की शुरुआत हुई थी। सोनिया गांधी पर आरोप लगा कि वो वंदे मातरम पूरा गाने से रोक रही थी। दो दिन गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम के दो छंद ही गाए गए और फिर कांग्रेस कार्य समिति ने पार्टी के आयोजनों में दो छंद वाले वंदे मातरम को ही जारी रखने का फैसला लिया।
1: इनकी घोर तुष्टिकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए।
0: कांग्रेस कार्य समिति के फैसले पर गृहमंत्री ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने भी तुरंत पलटवार किया।
2: वंदे मातरम तो कांग्रेस गा ही रही, ये लोगों ने वो बात के भी और जो लंबा चौड़ा था जिसे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद कहा था कि इतना लंबा ये नहीं होना चाहिए, तो वो उन्होंने जो है रोका था कि इतने बस गाया जाए। तो वो पद वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम है, मातृभूमि की आराधना है, तो कांग्रेस हमेशा गाती रही। इन्होंने नया नया वंदे मातरम पकड़ा है, फिर एक भी भाजपा नेता को आप कैमरा लगा दो सामने अगर वो वंदे मातरम पूरा गा दे, नहीं गा सकते। सिर्फ जो है एक राजनीतिक जो है दुष्प्रचार करना सिर्फ वोटों के लिए।
0: इस विवाद में समाजवादी पार्टी भी कूदी। पार्टी का कहना है कि कानून अपमान को लेकर बना है न कि गाने को लेकर।
3: वंदे मातरम कानून बन चुका है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन वंदे मातरम गाया जाए इस तरीके का कोई आदेश सदन ने पास नहीं किया है। तो वंदे मातरम जब होगा तो जो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं हम खड़े होकर के सावधान मुद्रा में उसके सम्मान में हम उस कानून का पालन करेंगे और वंदे मातरम जितना आ सकेगा उतना गाएंगे, क्योंकि 6 स्टेंजा याद करना किसी के बस की बात नहीं।
0: वंदे मातरम कभी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों में जोश भरने वाला गीत था, लेकिन अब उसी वंदे मातरम पर सियासी लड़ाई छिड़ गई है। कहां से कहां आ गए हम। आज तक ब्यूरो।
4: वंदे मातरम पर विवादों का दौर जारी है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त जुबानी जंग है। अब एक दूसरे पर ये दोनों दल कूद पड़े।
5: जब संसद में वंदे मातरम गीत का पूरा 6 अंतरा गाने का कानून पास हो गया, फिर ये कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है। मैं राहुल गांधी जी की बात करना चाहती हूँ। जब वो संसद में आते हैं बोलते हैं तो संविधान की पुस्तक निकालते हैं और आज संविधान को तार तार कर रहे हैं कांग्रेस, राहुल गांधी तार तार कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा।
6: उनको देश का संविधान मालूम नहीं, वंदे मातरम मालूम नहीं। जो 6 छंद है वंदे मातरम के वो अमित शाह और मोदी जी ने गाकर दिखाए तो अच्छा रहेगा, सामने आकर, पब्लिक के सामने आकर, विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर। 2 छंद को ही संविधान ने स्वीकारा है, संविधान। और देश के स्वतंत्रता संग्राम से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी गुरुनाथ रविंद्रनाथ टैगोर जी के सूचना पर ये 2 छंद का स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से बड़ी नहीं है, ऊपर नहीं है।
4: तो वंदे मातरम को लेकर उठे विवाद में अब दो हिंदी सिनेमा जगत की एक्ट्रेस भी कूद पड़ी हैं। बीजेपी सांसद और फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत ने शर्मिला टैगोर के वंदे मातरम पर दिए बयान की आलोचना की है। कंगना ने शर्मिला टैगोर से हिंदू मुस्लिम सोच से बाहर निकलने की अपील की। शर्मिला ने कहा था कि वंदे मातरम के पहले दो छंद ही सही है और बाकी छंद उन लोगों के लिए मुश्किल है जो एक ही भगवान को मानते हैं। कंगना ने शर्मिला टैगोर के बयान पर हैरानी जताते हुए कहा कि उन्हें हिंदू मुस्लिम वाली सोच से बाहर आना चाहिए।
7: मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे काफी रिलीजन के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं, जो एक गॉड में विश्वास करते हैं, सिंगल गॉड, नॉट मेनी गॉड्स। और वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा, उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला टू टैंसा इज वेरी गुड।
4: और अब बात झारखंड के छात्र आंदोलन की करेंगे। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा रद्द करने के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट ने रोक दिया है। हेमंत सोरेन की सरकार ने छात्र आंदोलन के बाद ये भर्तियां रद्द की थी, लेकिन अब कोर्ट ने इस पर स्टे दे दिया है, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा फिर से भड़क गया। छात्रों ने झारखंड सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया।
0: रांची की सड़कें कल शाम फिर इंसाफ के नारों से गूंज उठी। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर स्टे लगाकर दो परीक्षाओं से चयनित कर्मचारियों को राहत दी, तो दूसरे कर्मचारी भी राहत की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए।
8: हम लोग भी वही रास्ता अख्तियार करेंगे और हम लोग भी स्टे लेके आएंगे।
9: क्या लगता है सरकार ने ये फैसला गलत किया?
8: सरकार ने एक तरफा फैसला किया है। सरकार ने, मुझे लगता है कि अपने सारे रास्तों को एग्जॉस्ट नहीं किया, ये एक हेस्टी डिसीजन है जो कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेशर बनाने से उसके दबाव में आके सरकार ने एक हेस्टी डिसीजन लिया और एक तरफा डिसीजन लिया।
0: दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की 11वीं से 13वीं परीक्षाओं के माध्यम से चयनित सरकारी कर्मियों की नियुक्तियां रद्द करने से संबंधित आदेश पर कल रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति को रद्द करने के आदेश के अमल पर भी रोक लगा दी। कोर्ट ने राज्य सरकार से 15 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट के इस आदेश में कैंसिल हुई सभी 22 परीक्षाएं शामिल नहीं हैं। सोरेन सरकार ने 18 अगस्त को जेएसएससी और टीडीपीएल द्वारा संचालित 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 23 परीक्षाओं की जांच के आदेश दिए थे। इन परीक्षाओं से चयनित करीब 2700 कर्मचारियों की नौकरी पर इस फैसले से संकट खड़ा हो गया।
10: हम लोग का बस एक ही मांग है कि हम लोगों की क्या गलती है जो हमारे साथ यह अन्याय हो रहा है। हमने क्या गलत कर दिया? क्या पढ़ना गलत है? पढ़ के मेहनत करके नौकरी लेना गलत है? मैं अपनी स्थिति बताता हूँ, मेरी ये तीसरी नौकरी, इसके पहले दो सेंट्रल नौकरी में था।
0: इस बीच हाईकोर्ट के फैसले से वो छात्र भी नाराज हैं जिनकी मांग पर सोरेन सरकार ने इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के बैनर तले प्रदर्शन करने वाले छात्र आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष सही से नहीं रखा।
11: आपका जो मनसा हम आज कोर्ट में देखने को जो मिला, आप किस मनसा के साथ आप जो ऐसा कोर्ट में उतरने का काम किए हैं, उस मनसा को हम तमाम छात्र आज पढ़े हैं। आप ये धोखा सिर्फ झारखंड के लाखों छात्रों को नहीं दिए हैं, झारखंड के तमाम आम आवाम को दिए हैं, झारखंड के उन तमाम अभिभावक को दिए हैं जिन्होंने अपने बच्चा को, अपने बेटा और बेटियों को पिछले 26 दिनों से अपने हक और अधिकार के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भेजने का काम किए थे।
0: अब एक बार फिर से छात्र संगठनों ने अपील की है कि आज झारखंड के सभी जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका जाएगा।
12: पूरे मुख्यालय में, राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में आप माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला फूंकने का कार्य करें और उन्हें चेतावनी दें कि सुधर जाए, अन्यथा इस बार उससे भी बड़ा आंदोलन होगा जिसे कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी।
0: 16 दिनों तक अनशन करने वाले देवेंद्र महतो ने भी चेतावनी दी है कि सरकार ने लापरवाही बरती तो बड़ा आंदोलन करेंगे।
13: अगर सरकार अपना पक्ष रखने में, अपना जांच रिपोर्ट रखने में अगर किसी तरीके से लिपापोती करती है, किसी तरीके से कोताही बरतती है, तो यहाँ के छात्र बिल्कुल अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब जेपी के तर्ज पर, जेपी आंदोलन के तर्ज पर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, ये हम आज ऐलान करते हैं।
0: सोरेन सरकार के लिए भी स्थिति अब विचित्र हो गई है। एक गुट की मांग माने तो दूसरा नाराज, और दूसरे की मांग माने तो पहला नाराज। सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।
4: तो छात्र ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने ठीक से पैरवी नहीं की, इसीलिए स्टे ऑर्डर आ गया। जेएमएम सांसद महुआ मांझी का क्या कुछ कहना है, सुनिए।
14: मुझे लगता है कि शायद इसी का अंदेशा होगा, जिसकी वजह से उस समय विलंब हो रहा था डिसीजन लेने में, और अब डिसीजन हुआ। तो ये भी बात सही है कि जिनकी नौकरी लग गई, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले से कुछ नौकरियां वो सरकारी कर रहे थे, कोई रेलवे की नौकरी कर रहा था, सिर्फ अपने स्टेट में वापस आने के ये में उन्होंने यहाँ की नौकरी ज्वाइन कर ली थी, तो उनके साथ अन्याय हो रहा था शायद, इसीलिए माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया। अब देखा जाएगा क्या होता है न्याय के। जी,
4: आम जानकारी के साथ सत्यजीत। अब बीच का रास्ता तो मुमकिन है नहीं, एक फैसला दूसरे गुट को नाराज करता है, उनके हक का फैसला लीजिए तो पहला गुट नाराज हो जाता है। अब झारखंड सरकार क्या करेगी?
15: देखिए, झारखंड सरकार को जो कोर्ट है उसका डिसीजन तो मानना ही होगा। फिलहाल जो है राहत मिल गई है, जेपीएससी 11वीं से लेकर 13वीं तक के जो उम्मीदवार थे, सफल अभ्यर्थी थे, यानी डिप्टी कलेक्टर रैंक के जो अधिकारी थे, उनको अब नौकरी वापस मिल गई है। फिलहाल स्टे लग गया उनके जो है पिटीशन पे, सरकार ने स्टे लगाया है। और बड़ी बात यह है कि ये मांग को सरकार ने बोला है कि सरकार को ही कहा है कि आप काउंटर एफिडेविट फाइल कीजिए कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। बल्क में आप किसी को फायर थोड़ी कर सकते हैं, जब आप जो टेंटेड है और अनटेंटेड है उसके बीच में आपने फर्क नहीं किया, डिस्टिंक्शन नहीं किया। इसके अलावा नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है कि अचानक से आप किसी को नौकरी से निकाल दें, कोई तो उसकी गलती होनी चाहिए। ये जरूर है कि आरोप लग रहे सरकार के ऊपर कि उसने अपना पक्ष ठीक से कोर्ट में नहीं रखा, लेकिन पिटिशनर के वकील अमृतांश वत्स ने साफ तौर से आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि वहां पे सरकार के पास कोई दलील ही नहीं थी। आखिर ये सीधा नेचुरल जस्टिस का ये होता है, पॉलिसी होता है कि 100 जो गुनाहगार है वो छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह जो है उसको भी सजा नहीं होनी चाहिए, किसी तरह से सजा नहीं होनी चाहिए। तो ये अब सरकार के लिए मुश्किल होगी। अब बात यह है कि कोर्ट का मामला है, तो इसमें जो है स्टूडेंट जो है उनको उनका ये जरूर कहना है कि सरकार ने पक्ष नहीं रखा, लेकिन 15 सितंबर तक का वक्त है कि काउंटर एफिडेविट सरकार कैसे फाइल करती है और इस मसला का समाधान क्या निकलता है। जांच तो करना ही होगा कि कौन जेन्युइन है, कौन जो है फर्जी तरीके से नौकरी में आया है, और सिर्फ फर्जी तरीके से जो आए उन्हीं की नौकरी जा सकती है। कैंसिलेशन का डिमांड जो है,
4: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और ये तय करना काफी मुश्किल है कि दरअसल फर्जी तरीके से कौन आया है और गैर फर्जी तरीके से कौन आया है परीक्षा के बाद। अब बात 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई की करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए पैनल गठित कर दिया है, इसमें 3 रिटायर्ड जजेस हैं, एक पूर्व डीजीपी हैं और सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर शामिल हैं। इस जांच पैनल को टास्क दिया गया है कि वो जांच करें कि 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान पुलिस ने अत्यधिक बल प्रयोग किया भी था या नहीं, क्या पुलिस ने छात्रों के साथ ज्यादती की, पुलिसकर्मियों के खिलाफ हुई हिंसा और घटनाओं की जांच करने का भी जिम्मा इन्हें सौंपा गया। इसके अलावा महिला प्रदर्शनकारियों ने यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, उसकी भी जांच ये करेंगे। 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा की वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जांच का आधार बनेंगे। कमेटी पीड़ितों को सुनवाई का अवसर देगी और अपनी सिफारिशें समय समय पर सुप्रीम कोर्ट को देगी। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, सुप्रीम कोर्ट ने समिति तो बना दी है, इसमें नामों का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा आपसे कुछ दिन बाद, लेकिन क्या ये समिति 20 जुलाई को जो कुछ हुआ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई चीजें तय कर पाना दरअसल मुश्किल हो जाएगा इनके लिए?
16: सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही ये विशेषज्ञ समिति अपनी सिफारिशें नहीं देगी, बल्कि तमाम परिस्थितियों की जांच करेगी, मौका मुआयना भी कर सकती है और वहां लोगों से बात भी कर सकती है। और इसके साथ ही सिर्फ पुलिस ज्यादती पर ही ये जांच नहीं करेगी, बल्कि पुलिस पर जो ज्यादती की गई है, पुलिस कर्मियों पर जो हमला किया गया है, खास करके महिलाओं पर हमले को लेकर भी संवेदनशील ढंग से ये समिति जांच करेगी। कोर्ट ने कहा था कि कमेटी के सदस्यों का चुनाव इस नजरिए से किया गया है कि उनके पास अनुभव भी है, उनके पास विशेषज्ञता भी है, लिहाजा समिति पूरे सभी विकल्पों को, सभी प्रकल्पों को और सभी तरह के संकल्पों को ध्यान में रखकर जांच करेगी और जांच का दायरा समय समय पर वो रिपोर्ट भी देती रहेगी। और अदालत ने उम्मीद जताई है कि जिस तरह की विशेषज्ञता है समिति के पास और जो अनुभव है उसको देखते हुए आगे कोर्ट के लिए भी आसानी होगी और आगे आने वाले समय के लिए भी उसकी सिफारिशें बहुत उपयोगी होंगी, ऐसा कोर्ट ने उम्मीद जताई है।
4: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आप बात जयपुर की करेंगे जहां पर सीजेपी कार्यकर्ताओं को ग्रामीणों ने भगाया। बगरू के रामपुरा कवरपुरा गांव में सीजेपी कार्यकर्ता स्कूल की व्यवस्थाओं को देखने पहुंचे थे। सीजेएफ कार्यकर्ता जब पहुंचे तो ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया। आशुतोष रांका दरअसल पहुंचे थे, इससे पहले भी आशुतोष रांका एक स्कूल का मुआयना करने पहुंचे थे, लेकिन गांव के लोगों ने इन सीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से भगा दिया। प्राथमिक स्कूल का दौरा करने वाले थे आशुतोष रांका और राजस्थान के जयपुर में इन कार्यकर्ताओं का दरअसल ग्रामीणों ने ही विरोध कर दिया। और इसी विरोध को लेकर सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने बीजेपी पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह लिखा, रामपुरा कवरपुरा से सरकारी स्कूल पिछले कई सालों से भैंसों के तबेले वहां पर चल रहे हैं। मैं अभी वहीं पर पहुंच रहा हूं, लेकिन हमारी टीम के कुछ साथी जो वहां पहुंचे थे उनके साथ भाजपा के लोगों ने मारपीट की है। भाजपा को हमारे बच्चे भैंसों के तबेले में पड़ते रहे ये मंजूर है, लेकिन स्कूलों को अगर हम ठीक करवाने की कोशिश करें तो ये मंजूर नहीं है। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। तो टीम का विरोध किया गया, ये आशुतोष रांका आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग वहां पर पहुंच गए, उनके कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके लोग इस स्कूल का मुआयना करें। इससे पहले भी कुछ स्कूल्स का मुआयना करके आशुतोष रांका ने वीडियोस डाले थे और स्कूल की हालत दिखाई थी। शरत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरत, जो आशुतोष आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर दरअसल बीजेपी के लोग पहुंच गए थे, दरअसल सच क्या है, बीजेपी के लोग थे या फिर ग्रामीण ही थे?
17: देखिए नेहा, ये बात सही है कि वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, गांव में इस तरह से लोग बंटे हुए रहते हैं और इस तरह से उन्होंने ऐलान किया था कि मैं सुबह पहुंचूंगा स्कूल में, वहां की स्थिति ठीक नहीं है। तो अब ये गाँव में कोई बीजेपी के कार्यकर्ता तो होता नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि हर पार्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी के सिंपथाइजर हो, मगर ये कोई
4: जब आशुतोष रांका पहुंचे थे स्कूल में उन्होंने वीडियो दिखाया था स्कूल की जर्जर हालत का, उसके बाद ही राजस्थान सरकार ने ये आदेश पारित कर दिया कि किसी भी स्कूल में आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। तो किस बात से डर रही है सरकार, अगर कोई वीडियो बनाकर दिखा रहा है तो दिखाने दीजिए, आप दुरुस्त करिए उसकी व्यवस्था को।
17: नहीं नहीं, हाँ मैं थोड़ा सा ठीक कर दूं, ये राका नहीं पहुंचे थे, राका आंदोलन खत्म होने के बाद अदवर में पहुंचे थे, वो जैन अल्फा का आंदोलन था। ये आंदोलन खत्म होने के बाद सरकार का आरोप था कि दोबारा बच्चों को लेकर बैठे थे और सारे विधायक देवेंद्र सिंह भाटी जैसे विधायक भी घुस घुस के स्कूल में वीडियो बनाने लगे थे। ये आदेश के खिलाफ कल कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। अब ये स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये चूंकि निकाय चुनाव की आचार संहिता लग गई है और पंचायत चुनाव होने वाले हैं अगले एक महीने में, दोनों चुनाव है, तो इसे लेकर अब राजनीति तेज होगी और इसीलिए मुझे लग रहा है कि सरकार डरते हुए इस तरह से बैन लगाई है कि कोई राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस तरह का काम ना करे। लेकिन ये भी गलत है कि इस तरह से आप बैन नहीं लगा सकते हैं। हालांकि इस तरह की दलील दी जा रही है कि बिहार में 2 साल से लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश में कई जगह लगने लगा, मगर फिर भी ये बड़ा सवाल है कि ये स्थिति स्कूलों में क्यों बनी हुई है कि बिल्डिंग खराब है और बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। पिछले 5-10 सालों से स्थिति है, रातों रात कोई झोपड़ी बन नहीं गई है कि पहले कोई महल था नहीं जो झोपड़ी बन गई, इतने सालों से झोपड़ी में ही चल रही थी स्कूल, और नहीं जमींदोज 2.5 साल में हो गई, पहले कांग्रेस का शासन में भी स्थिति खराब थी तभी गिर रही है आज।
4: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका शरद। अब बात बारिश और बाढ़ की करेंगे। प्रयागराज पर इस वक्त दोहरी मार पड़ रही है, शहर के पौश इलाकों में पानी घुस गया है और निकल नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हैं।

0: प्रयागराज में गंगा और यमुना के किनारे डूबने लगे हैं, शहर के मोहल्लों में बारिश का पानी नहीं निकल रहा और गंगा यमुना के तट पर बसे इलाके भी अब डूब रहे हैं। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिसका असर अब पूरे संगम क्षेत्र में भी दिखाई देने लगा है। जहां कभी श्रद्धालुओं की भीड़ और वाहनों की आवाजाही रहती थी, वहां अब चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आरती स्थल, तीर्थ पुरोहितों के तख्त, दुकानें और पूजा सामग्री बाढ़ के पानी में डूब चुकी हैं। हालात ऐसे हैं कि जिन सड़कों पर कुछ दिन पहले तक गाड़ियां दौड़ती थी, आज उन्हीं सड़कों पर नावें चल रही हैं। संगम की ओर जाने वाले कई रास्ते पानी में डूब चुके हैं। श्रद्धालु और स्थानीय लोग अब नाव के सहारे आवाजाही कर रहे हैं। कई लोग डूबी हुई सड़कों पर ही स्नान करते दिखाई दे रहे हैं। आरती स्थल पूरी तरह पानी में समा गया है। हालांकि फिलहाल गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं, लेकिन जिस रफ्तार से जलस्तर बढ़ रहा है, उससे प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। बाढ़ का पानी लोगों के रोजगार, धार्मिक गतिविधियों और रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर डाल रहा है। और ये खतरा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि बाढ़ का पानी लेते हुए हनुमान मंदिर की दीवार तक पहुँच गया है।
1: प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हम इस वक्त संगम क्षेत्र में है और हनुमान मंदिर के पास है। यहाँ पर ये गंगा का पानी आ गया है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे हनुमान मंदिर की जो दीवार है, यहाँ तक ये पानी आ गया है। अब इन रास्तों पर जहाँ गाड़ियाँ चला करती थीं, आज उन रास्तों पर नाव चल रही है। आप देख सकते हैं कि सड़क है और संगम जाने का रास्ता है, इन सड़कों पर अब नाव चल रही है। जो यात्री हैं, जो तीर्थयात्री हैं और श्रद्धालु हैं, इन सड़कों पर ही स्नान कर रहे हैं। और ये आप जब अंदर की तरफ आएंगे तो ये संगम जाने का रास्ता है। इन रास्तों पर अब ये बाढ़ का पानी आ गया है। अब नाव इन रास्तों पर चल रही है। जो यहाँ पर भिक्षा मांग करके लोग रहते थे, उनकी जो झोपड़ियाँ हैं वो डूब रही हैं। तीर्थ पुरोहित अपना सामान बाहर सुरक्षित निकाल रहे हैं।
0: संगम के इलाके में हालत ये है कि लोग सड़कों पर ही स्नान कर रहे हैं। बाहर से आए पर्यटकों को पता ही नहीं चल रहा है कि संगम कहाँ है और स्नान कहाँ करना है, क्योंकि डर ये भी है कि अगर आगे गए तो डूब जाएंगे।

0: इसका ये ख्याल है कि ये ऑर्डर जो है ये कानून के उन फोर वॉल्स के अंदर नहीं है जो कि किसी भी सजा याफ्ता शख्स को जो सहूलियात फराहम की जा सकती हैं जेल में लागू कवानीन के तहत।
1: तो क्या आसिम, मुनीर और शहबाज के बीच कोई अनबन हो गई थी और अपनी पावर दिखाने के लिए मुनीर ने शहबाज के साथ ये खेल खेला? क्या मुनीर शहबाज को ये दिखाना चाहते थे कि वो जब चाहे तब इमरान को बाहर ला सकता है और जब चाहे अंदर करवा सकता है? हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है कि इमरान के समर्थक लगातार आरोप लगा रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन अब अस्पताल ने जांच के बाद उन्हें छुट्टी दे दी तो पाकिस्तान सरकार के पास इमरान समर्थकों को जवाब देने का एक आधार मिल गया। पाकिस्तान की सियासत में बीमारी और सत्ता के बीच अजीब इत्तेफाक है। 2019 में नवाज शरीफ की तबीयत बिगड़ी, इलाज के लिए लंदन गए और इसके कुछ साल बाद पाकिस्तान की सत्ता का समीकरण बदला। इमरान खान जेल में पहुंच गए और नवाज शरीफ का भाई पीएम बन गया और अब इमरान खान बीमार हैं। आज तक ब्यूरो।
2: और अब आपको इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल का हाल दिखाते हैं।
3: रात भर यहाँ पर आपने देखा इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पर तैनात रही, पंजाब पुलिस अभी यहाँ पर मीडिया की कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक इमरान खान को जो है वो यहाँ से शिफा से जो है वो पिम्स लेके जाया गया और उसके बाद जो है वो पिम्स के बाद इमरान खान को अडियाला दोबारा मुंतकिल कर दिया गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पर सख्त सिक्योरिटी तैनात थी। ये इस वक्त की सूरत हाल है जहाँ गुज़िश्ता रात भर जो है वो एक हाई सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई थी और हम तमाम तर रास्ते से यहाँ तक पहुँचे हैं तो रास्ते में हमें कोई रुकावट नहीं दिखाई दी गई और इसके साथ साथ जो है वो ना ही पुलिस का कोई अहलकार खड़ा दिखाई दिया और ना ही जो है वो किसी किस्म की कोई रुकावट थी। तो ये आप मनाजर देख सकते हैं, सिर्फ और समा की DSNJ जियो की और एक्सप्रेस की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, बाकी यहाँ पर आपको कोई पुलिस अहलकार, कोई पुलिस की गाड़ी, कुछ रुकावटें भी जो है वो आप देख सकते हैं इस वक्त कोई भी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पुलिस की जानिब से जो रात को रुकावट लगाई गई थी वो भी इस वक्त खोल दी गई और रास्ते तमाम तर जो है वो खोल दिए गए हैं और हमारे ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर इमरान खान को जो है वो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से पिम्स लेके जाया गया और उसके बाद जो है वो इमरान खान को दोबारा जो है वो अडियाला मुंतकिल कर दिया है।
2: तो बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।

उत्तर से दक्षिण तक राजनीतिक संग्राम, केलम विवाद के बाद बीजेपी का प्रदेश भर में कार्यक्रम। शर्मिला टैगोर ने बताई दो छंदों की मजहबी मजबूरी, तो कंगना बोली धर्म के चश्मे से ना देखें। परीक्षाएं रद्द करने के सीएम सोरेन के फैसले पर अदालत की रोक के बाद झारखंड में फिर उठी आंदोलन की चिंगारी। आज जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मोर्चा राज्यभर में करेगा पुतला दहन। आज से पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं गृहमंत्री अमित शाह। बांग्लादेश बॉर्डर का करेंगे मुआयना, सीमा सुरक्षा और बॉर्डर मैनेजमेंट पर फोकस। कल अधिकारियों के साथ थी बड़ी बैठक। अस्पताल से वापस अडियाला जेल शिफ्ट किए गए इमरान खान। शिफा अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम ने की जांच, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देर रात इमरान को लाया गया था। लखनऊ में बैंक कर्मी की हत्या मामले में नया खुलासा। दो दिन से रेकी कर रहा था आरोपी पति। बैंक के सामने हुई वारदात से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज आया सामने।

0: प्रदेश के रीवा में लगातार मूसलाधार बारिश, बाढ़ जैसे हालात, रेस्क्यू जारी, जर्जर इमारतें गिरने से एक की मौत। भारी बारिश के चलते बकिया डैम के 14 गेट खोले गए, जिससे नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लोगों को जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह। राजस्थान के धौलपुर में तेज बारिश से कई सड़कें सैलाब में तब्दील, निचले इलाकों और बाजारों में जलभराव के कारण लोगों को आवागमन में दिक्कत। पश्चिमी मेदिनीपुर में बाढ़ से 2 लोगों की मौत, परिवारों को 9-9 लाख रुपए मुआवजा, बंगाल सीएम शुभेंदु का ऐलान। मिर्जापुर में बारिश के कहर, मिट्टी की दीवार गिरने से 3 की मौत, 1 घायल। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर आधा दर्जन जगह कटाव, हवा में झूले डिवाइडर, 16 NHAI प्रशासन। पन्ना में आफत की बारिश, फंते नाले में बह गई महिला, लोगों ने रेस्क्यू कर बचाई जान। मुरादाबाद बढ़ा रामगंगा का जलस्तर, प्रशासन अलर्ट पर, बाढ़ चौकियां और रेस्क्यू टीमें तैयार। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान, अमित शाह के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, आजादी से पहले अंग्रेजों का साथ देने वाली विचारधारा आज कांग्रेस को राष्ट्रवाद का पाठ कैसे पढ़ा सकती। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने भी शाह पर किया हमला, असली मुद्दों से भटकाने का आरोप, बीजेपी के लिए ये राजनीतिक मुद्दा। बीजेपी आज केरलम के सभी जिला मुख्यालयों पर वंदे मातरम कार्यक्रम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रगीत को शामिल न करने के फैसले का विरोध। वंदे मातरम को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का कांग्रेस पर तीखा हमला, का देश विरोधी चरित्र फिर आया सामने। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की 11वीं और 13वीं परीक्षाओं की नियुक्तियों को रद्द करने के हेमंत सरकार के फैसले पर रोक लगाई है, 15 सितंबर तक जवाब दाखिल करने के आदेश। झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद रिफॉर्म मंच ने छात्रों के साथ छल का आरोप लगाया, आज मुख्यमंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम। देवेंद्र महतो ने सरकार को दी चेतावनी, सीआईडी रिपोर्ट कोर्ट में ठीक से क्यों नहीं रखी, पर्दा डालने की कोशिश हुई तो नहीं सहेंगे। जंतर मंतर से जागी जनरेशन जेन जी पर सत्ता से लेकर विपक्ष तक की नजर, संघ ने भी किया मंथन, संसद मार्च के दौरान ज्यादा बल प्रयोग के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का गठन। राहुल गांधी का महिलाओं से सीधा संवाद, समाज की नहीं अपनी आवाज बताइए, 22 अगस्त को होगा पुणे में महिला विशेष छात्रों का गूंज कार्यक्रम। लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के बेंच स्थापित होगी, अमित शाह बोले दूर दराज के लोगों को मिलेगा न्याय तक आसान और तेज पहुंचने का लाभ। लद्दाख में हाईकोर्ट बेंच को मंजूरी को लेकर अमित शाह ने आगे कहा, संवैधानिक सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर बीजेपी बनाएगी सेवा संकल्प महोत्सव। सेवा संकल्प महोत्सव में स्वच्छता, रक्तदान, वृक्षारोपण और स्वास्थ्य शिविरों के साथ विकास सुशासन पर होंगे कार्यक्रम। 22 अगस्त को बीजेपी अध्यक्ष तैयारियों की समीक्षा करेंगे। योगी सरकार का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर फोकस, यूपी में बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार सीधे अभिभावकों के खातों में पैसा भेजेगी। जंतर मंतर प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट बनाई 5 सदस्यीय कमेटी, प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के आरोप की होगी जांच। समिति प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पेलेट गन, इलेक्ट्रिक बेटन, लाठी चार्ज और आंसू गैस के अत्यधिक इस्तेमाल से जुड़े आरोपों की जांच करेगी। समिति ये भी देखेगी प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से उठाए गए कदम स्थिति के अनुपात में थे या नहीं। अमित शाह का 3 दिवसीय बंगाल दौरा, 8 से सीमा सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रम में होंगे शामिल, सीमा सुरक्षा बलों के साथ सीधी रणनीति और सामूहिक भोज। इस दौरे के दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा को मजबूत करने वाली नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। नीट प्रदर्शनकारियों पर जुडिशियल गटर वाली टिप्पणी को लेकर आगरा में कंगना रनौत के खिलाफ मामला दर्ज, आज सुनवाई। सर्जियो गौर लद्दाख दौरे पर, लेहक में दलाई लामा से मिलने को लेकर सस्पेंस बरकरार। कौम इंसाफ मोर्चा ने 21 अगस्त को पंजाब बंद का आह्वान किया, ये बंद सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। लखनऊ में डबल मर्डर सुसाइड केस में नया वीडियो आया सामने, जिसमें आरोपी मानस अपनी पत्नी दिव्या से ICICI बैंक के सामने लड़ता झगड़ता दिख रहा है। IMD ने शुक्रवार को कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, यूपी, MP और पश्चिम बंगाल में बहुत भारी बारिश की संभावना। मुंबई जमीन सौदों पर आदित्य ठाकरे का आरोप, अंधेरी का खेल मैदान, 21 लाख में लीज, बोले हजारों करोड़ की जमीन में बड़ा भ्रष्टाचार। मुंबई में जमीन कब्जे के आरोप पर आदित्य ठाकरे का प्रदर्शन ऐलान, 23 अगस्त को बांद्रा में जुटने की अपील। थाने में RTO द्वारा ऑटो रिक्शा चालकों की चेकिंग शुरू, 6 जगहों पर चेकिंग जारी। वसई विरार और बीरा भाईंदर में मराठी नहीं बोलने वाले ऑटो चालकों पर RTO की कार्रवाई, नोटिस देकर 1 महीने की मोहलत, भाषा नहीं सीखने पर लाइसेंस परमिट पर हो सकती है कार्रवाई। महाराष्ट्र में खुले खाद्य तेल की बिक्री पर FDA का शिकंजा, पुराने डिब्बों में तेल भरकर बेचने और इस्तेमाल के तेल को दोबारा बेचने पर सख्त कार्रवाई। पुणे में अमित शाह के एंटी नेशनल वाले बयान पर विजय वडेट्टीवार का पलटवार, बोले हमें राष्ट्रविरोधी कहने वाले अपनी विचारधारा का इतिहास देख लें। पुणे में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज नरवणे ने कहा, चीन भारत का मुख्य प्रतिस्पर्धी, प्रतिद्वंदी कहना सही नहीं, दुश्मन नहीं, भारत को पाकिस्तान से तत्काल खतरा है। जनरेशन गैप पर बोले पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे, कहा नई पीढ़ी गलत नहीं है, उसे समझकर उसकी ऊर्जा को देशहित पर लगाना होगा। मुंबई में बंद इलायची के विज्ञापन को लेकर एफडीए ने सितारों को भेजा नोटिस, तुकाराम मुंडे बोले अभी तक नहीं मिला है कोई जवाब। मुंबई में 600 करोड़ रुपए के येस बैंक लोन सौदे पर ईओडब्ल्यू की नजर, लोन ट्रांसफर और संपत्तियों की कीमत तय करने में गड़बड़ी के आरोप। समाजवादी पार्टी में शामिल इमरान मसूद के दामाद शायन मसूद बोले बीजेपी को हराना है तो अखिलेश यादव के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी में पीडीए स्थान तो पा सकता है लेकिन सम्मान नहीं पा सकता। बागपत में आरएलडी का अल्पसंख्यक सम्मेलन, दिल नवाज खान ने अखिलेश यादव पर जमकर साधा निशाना, संगठन मजबूती और चुनाव तैयारियों पर मंथन। अल्पसंख्यक समाज को लेकर आरएलडी नेता का एसपी पर बड़ा आरोप, कहा अल्पसंख्यकों को अछूत समझते हैं अखिलेश। अखिलेश चवन्नी से रुपया वाले बयान पर आरएलडी ने कसा तंज, कहा आजकल अखिलेश के सपने में आते हैं चौधरी साहब जिससे वो बौखलाकर कुछ भी बयान दे रहे हैं। आज तक की खबर का असर, झांसी में जर्जर रपटे पर आवागमन बंद, पानी के तेज बहाव में बच्चों की नदी पार करने पर प्रशासन सख्त। प्रयागराज जल भराव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, बोले समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता हो। भदोई में फर्जी स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र से नीट 2025 के तहत 9 बच्चों का कराया एमबीबीएस में एडमिशन। मुजफ्फरनगर में बारिश से खोया डिलीवरी बॉय का फोन, समाजवादी पार्टी विधायक लौटाई मुस्कान, आवास पर बुलाकर गिफ्ट किया फोन। सहारनपुर में युवक का पर फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो वायरल, बाइक सवारों ने घर के बाहर चलाई गोली, मचा हड़कंप। दिल्ली के रोहतक में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, भाऊ गैंग के दो शूटर गिरफ्तार, पुलिस आरोपियों का क्राइम रिकॉर्ड खंगाल रही है। मेरठ में गन्ने के खेत में युवती का शव बरामद, हत्या की आशंका, हालांकि कई घंटों की कोशिश के बाद उसकी पहचान नहीं हो सकी। मध्य प्रदेश के बैतूल में फेल करने की धमकी देकर छेड़छाड़ का आरोप, छात्राओं ने स्कूल से थाने तक निकाला पैदल मार्च। अजमेर से शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाला मामला, सरकारी स्कूल में तैनात कार्यवाहक हेडमास्टर शराब के नशे में पहुंचा स्कूल। जलंधर के सिटी इंस्टीट्यूट कैंपस में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़े, कई घायल, छात्रों ने एक दूसरे पर डंडों और बैट से किया हमला। गुजरात के पाटन में एसटी बस को लेकर ट्रेलर ने मारी जोरदार टक्कर, बस चालक का घुटना फ्रैक्चर, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। अमरावती के आदिवासी स्कूल में छात्रा की मौत के बाद एफडीए का एक्शन, बिना लाइसेंस मिला किचन गंदगी और स्पार मसाले मिले। देहरादून में बीच सड़क पर ताबड़तोड़ फायरिंग, एक घायल, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, एक आरोपी गिरफ्तार। अहमदाबाद में फ्रॉड केस में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में दो गिरफ्तार। कर्नाटक के मांड्या में गावन फैक्ट्री में लगी आग, करोड़ों रुपए का माल जलकर खाक। कृष्णागिरी में 100 से ज्यादा नर्सों का प्रदर्शन, विभिन्न मांगों को लेकर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। हरियाणा के हिसार कोर्ट में ताबड़तोड़ फायरिंग, 31 केसों में आरोपी गैंगस्टर का मर्डर, घटना के बाद पुलिस ने कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील किया। मसूरी में बीच सड़क पर दो गुटों में जमकर मारपीट, हाथ लात और घूसों से चले वार, भगत सिंह चौक का वीडियो वायरल। इंदौर में 3 साल की बच्ची से प्रताड़ना का आरोप, बैग में छिपे वॉइस रिकॉर्डर से खुलासा, टीचर पर केस। दक्षिण 24 परगना के चंपा आठवीं पटाखा फैक्ट्री में आग, 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे। मुंबई कुर्ला में मकान पर गिरी बड़ी क्रेन, हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल, 6 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोरखपुर में ट्रक से टकराई बस, चालक की मौत, 15 यात्री घायल। मुजफ्फरनगर का वीडियो वायरल, नाबालिग से जुड़े पॉक्सो मामले में युवक गिरफ्तार, हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था। बारिश में मोहाली एरो सिटी में निर्माणाधीन अस्पताल की इमारत ढही, 2 की मौत, 2 को किया गया रेस्क्यू। यूपी के बांदा में मानव तस्करी गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने गैंग के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाने आ रहे हैं यश, आज से टॉक्सिक की एडवांस बुकिंग शुरू। सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर फिल्म वेलकम टू द जंगल लॉन्च, जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हुई अक्षय कुमार, जैकलीन अरशद वारसी समेत 30 से ज्यादा सितारों से सजी ये फिल्म। जैकी श्रॉफ की फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो अब ओटीटी पर उपलब्ध, आज से Zee5 पर स्ट्रीम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सुपरस्टार विजय की सबसे चर्चित फिल्म जन नायकन ओटीटी पर स्ट्रीम। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई तमिल रोमांटिक फिल्म प्यार प्रेमा कल्याणम, हिंदी तेलुगु कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में उपलब्ध। अस्पताल से वापस अग्याला जेल शिफ्ट किए गए इमरान खान, शिफा अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम ने की जांच। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर उनके प्रवक्ता ने दिया बयान, कहा जेल से रिहाई के बाद पाकिस्तान सेना प्रमुख से टकराव नहीं करेंगे इमरान खान। उत्तर कोरिया के गुरुवार को दागी गई संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल, कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी समुद्री इलाके से मिसाइल दागने का जापान और दक्षिण कोरिया ने किया दावा। प्रिंस हैरी और मेगन की ब्रिटेन यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ब्रिटिश पीएम ने बताया निजी मामला। दुनिया की नंबर एक टेनिस खिलाड़ी एरिना साबालेंका को सिनसिनाटी ओपन में लगा बड़ा झटका। राउंड ऑफ 16 में चेक गणराज की 20 वर्षीय सारा वेजलेक ने दी मात। पेरू में भूस्खलन के बाद ट्रक और यात्री तटिया हाईवे पर फंसे। स्थानीय प्रशासन फंसे हुए ट्रक ड्राइवर्स और यात्रियों को राहत सामग्री बांटने में जुटा। पेरू में 6.7 तीव्रता का जोरदार भूकंप, कई इलाकों में महसूस हुए झटके, लोगों में दहशत। चिली के राष्ट्रपति जॉस एंटोनियो कास ने बाढ़ से प्रभावित उत्तरी शहर टोकोपिला का दौरा किया। सेना और नौसेना लगातार हालात को सामान्य करने में जुटे हैं। नॉर्थ मैसेडोनिया में स्थानीय लोग और फायर फाइटर जंगल की आग बुझाने के लिए फावड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भीषण गर्मी और सूखे मौसम की वजह से जंगलों में आग तेजी से फैल रही है। स्थानीय प्रशासन, दमकल विभाग, पुलिस और सेना आग पर काबू पाने में जुटी। महाराष्ट्र मराठी भाषा की अनिवार्यता पर मचे घमासान के बीच आज से परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जो गैर मराठी ऑटो टैक्सी चालक हैं और मराठी नहीं बोल पाते, उन्हें अधिकारियों ने नोटिस थमा दिए हैं। अब ये लोग एक महीने में मराठी नहीं सीख पाए तो उनका लाइसेंस सस्पेंड होगा, और उसके बावजूद ड्राइवर मराठी नहीं सीखते हैं तो सरकार ये मानेगी कि वो मराठी भाषा से ही नफरत करते हैं, जिसके बाद उनका लाइसेंस और परमिट हमेशा के लिए रद्द कर दिया।
1: आज से महाराष्ट्र में परिवहन विभाग ने मराठी भाषा वाला अभियान शुरू कर दिया है। मुंबई समेत पूरे राज्य में आरटीओ ने गैर मराठी टैक्सी और ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की मराठी की वर्किंग नॉलेज चेक करने के लिए यह अभियान शुरू किया है। जिन ड्राइवरों को मराठी की प्रैक्टिकल जानकारी की कमी पाई गई, उन्हें नोटिस दिया गया और मराठी भाषा सीखने के लिए एक महीने का समय दिया गया। आरटीओ अधिकारियों ने उन लोगों को भी नोटिस दिया जो मौखिक मराठी टेस्ट में फेल हो गए थे। उनके पास 15 क्वेश्चन पेपर हैं, जिनमें आने जाने के दौरान ड्राइवर और यात्री के बीच बेसिक सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे मराठी में पूछना कि क्या आप किसी खास जगह पर जाएंगे, मराठी में जवाब देना कि इसमें कितना समय लगेगा। आरटीओ इंस्पेक्टर ने बताया कि परिवहन विभाग अब इस नियम को सख्ती से लागू करेगा, जिसमें हर ड्राइवर की मराठी की जानकारी सीधे बातचीत से जांची जाएगी। खास बात है कि पूरी प्रक्रिया की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी।
2: तो बेसिक मराठी आपको आती है, आगे जो भी सीख लेंगे और उसके बाद
3: थोड़ा जो कुछ है मैं भी सीख रहा है, सीखूंगा। हाँ, बाकी आओ मैं टैक्सी बारे में कुछ भी पूछो, मैं आपको मराठी में बात करेगा।
2: कितने साल से मुंबई में टैक्सी चला रहा हूँ?
3: मैं टैक्सी तो अभी नया चला रहा हूँ, मैं बड़ा गाड़ी चलाता हूँ, मेरा लाइसेंस जो है ना बड़ा गाड़ी के, मैं टैंकर चलाता हूँ। अभी 6 महीने से ये टैक्सी चला रहा हूँ, टैंकर मेरा ट्रांसपोर्ट लाइसेंस है, मैं ट्रांसपोर्ट गाड़ी चलाता हूँ। अभी मराठी
2: टैक्सी है
3: ये घाटकोपर की है, मतलब घाटकोपर है।
1: वहीं जो ऑटो टैक्सी ड्राइवर मराठी सीखने से मना करेंगे तो उनका बैज 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद भी वो मराठी सीखने से मना करेंगे तो सरकार ये मानेगी कि वो मराठी भाषा से नफरत करते हैं, इसलिए बैज और परमिट दोनों को हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा।
4: कि जिनको अभी व्यवहारिक ज्ञान अगर मराठी का नहीं है तो हमारे आरटीओ के अधिकारी उनको चेक करेंगे, उनके साथ मराठी में संवाद रखेंगे और उनको मराठी अगर नहीं आती है तो नोटिस देंगे। 1 महीने के अंदर अगर वो बोल नहीं पाए तो उनका लाइसेंस जो है वो 3 महीने के लिए निलंबित किया जाएगा, और फिर 3 महीने में भी उनको अगर मराठी नहीं आया तो पूरे कार्यकाल के लिए उनका लाइसेंस और बैच कैंसिल करने की जो कानूनन कार्रवाई है वो हमारी कल से हो रही है। और मैं तो ये नहीं चाहता हूँ कि किसी का भी लाइसेंस रद्द हो, मगर किसी का भी बैच रद्द हो, मगर महाराष्ट्र में आने का, महाराष्ट्र में व्यवसाय करने का, महाराष्ट्र में पैसे कमाने का और महाराष्ट्र के प्रति अनादर दिखाने का, ये तो महाराष्ट्र में नहीं चलेगा।
1: ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक ने कहा कि 105 दिन के कैंपेन के दौरान 1,65,000 ड्राइवरों ने पहले ही मराठी ट्रेनिंग ली है और उन्हें सर्टिफिकेट दिए गए हैं, जिसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
0: 9 बज गए, मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

प्रयागराज में बाढ़ का असर, डूबने लगे सामान और दुकान, संगम क्षेत्र जलमग्न, सड़क पर चलने लगी नाव। बाढ़ का पानी अब संगम के प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर की बाउंड्री तक पहुंच गया है। दुकानदार पुरोहित अपना सामान बचाने के लिए दिन रात मशक्कत कर रहे हैं।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: मुल्तानी घो का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घो का कॉफ सिरप।
3: Let's go. The new BE6 Sportage. Hey Maya, let's go. The new BE6 Sportage.
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
6: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
7: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
8: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
9: सोच बदलो और बैंक भी।
10: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
11: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
10: छक्का?
11: सब कैशलेस हो गया है।
10: हाँ ला भाई मेरा बैट,
11: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
10: चार्ज हुआ यार।
11: बैट किसका है?
12: टाटा AIG है तो भरोसा है।
13: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
14: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
15: बिजली का बिल पेड,
16: तो है मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
17: कैसे?
16: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
17: माही वे।
18: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
19: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
20: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Hey, Maya, let's go. The new BE6 Sportac. Hey Maya, let's go. The new BE6 Sportac.
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: Goldie chole masale, jahan jaye, rishte banaye.
4: Goldie laaye hai fresh lock technology, jo rakhe masalon ko har samay fresh.
5: B.R. अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है।
6: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट अलग ट्रेड नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही बल्तिस्तान भी बनता।

0: 15 अगस्त को सोनिया गांधी पर वंदे मातरम के अपमान के आरोपों की तपिश अभी कम भी नहीं हुई थी कि गोवा से तस्वीर आ गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में वंदे मातरम के सिर्फ दो पद गाए गए। विवाद बढ़ा तो कांग्रेस ने कल अपनी कार्य समिति में आधिकारिक रूप से ये तय कर दिया कि वो दो पद ही गाएगी।
1: वी आर वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट दैट आवर कांग्रेस पार्टी वर्कर्स विल डू दैट ओनली। दिस इज आवर डिसीजन। हां, फर्स्ट टू स्टैंड्स था
2: 28 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उस प्रस्ताव में जब पारित किया गया सीडब्ल्यूसी की बैठक में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, राजगोपालाचारी, गोविंद वल्लभ पंत और अन्य नेता, आचार्य नरेंद्र देव मौजूद थे और रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह से ही वो प्रस्ताव पारित किया गया था और आज उस पर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष ने उस प्रस्ताव के कुछ अंश भी पढ़े और इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई सवाल नहीं है।
0: इसी साल फरवरी में सरकार ने आधिकारिक मौकों पर वंदे मातरम के 6 पद वाले संस्करण को बजाना या गाना अनिवार्य कर दिया था, जिसकी कुल अवधि 3 मिनट और 10 सेकंड की है। संसद के मानसून सत्र में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम को मंजूरी दी गई, जिसमें वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर बाधा डालने या अपमान को एक दंडनीय अपराध माना गया है। इसमें पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अपराध दोबारा दोहराने पर कम से कम 1 साल की अनिवार्य जेल होगी। क्या कांग्रेस संसद से पास कानून को नहीं मानेगी?
3: कांग्रेस ने यह भी साबित किया है कि वो अपने को संविधान से ऊपर, अपने को देश से ऊपर और अपने पार्टी के प्रस्ताव को संविधान के कानून से ऊपर मानती है और उसके साथ अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर।
0: जी हाँ, बड़ा सवाल यही है कि देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी का रुख संसद से पास कानून से अलग क्यों है? दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो रिपोर्ट।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

वंदे मातरम पर उत्तर से दक्षिण तक राजनीतिक संग्राम, केरलम विवाद के बाद बीजेपी का प्रदेश भर में कार्यक्रम। शर्मिला टैगोर ने बताई दो छंदों की मजहबी मजबूरी, तो कंगना बोली धर्म के चश्मे से न देखें। परीक्षाएं रद्द करने से सीएम सोरेन के फैसले पर अदालत की रोक के बाद झारखंड में फिर उठी आंदोलन की चिंगारी। आज जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मोर्चा राज्यभर में करेगा पुतला दहन, कहा कोर्ट में सरकार का पक्ष कमजोर। आज से पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं गृहमंत्री अमित शाह, बांग्लादेश बॉर्डर का करेंगे मुआयना, सीमा सुरक्षा और बॉर्डर मैनेजमेंट पर फोकस, कल अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक। अस्पताल से वापस अडियाला जेल शिफ्ट किए गए इमरान खान, शिफा अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने की जांच, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देर रात इमरान को लाया गया। लखनऊ में बैंक कर्मी की हत्या के मामले में नया खुलासा, दो दिनों से रेकी कर रहा था आरोपी पति, बैंक के सामने हुई वारदात से जुड़ी सीसीटीवी तस्वीर सामने आई, जांच जारी।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर से हाजिर है। अगले एक घंटे में क्या क्या होगा पहले वो जान लेते हैं। बात होगी दो अदालती आदेश की, जिसे लेकर दिल्ली से रांची तक उबाल है। हम बताएंगे कि जेन जी को लेकर इस दो जो आदेश आए इनमें क्या क्या खास है, साथ ही कैसे केंद्र से लेकर हेमंत सरकार तक दो फैसलों से टेंशन है। रुक करेंगे वंदे मातरम विवाद का भी, जिसे लेकर केरलम में विवादों की नई फाइल अब खुल गई है। और बताएंगे कि बॉलीवुड की दो अभिनेत्रियों में वंदे मातरम को लेकर कैसे छिड़ी है अब शब्दों की जंग। तो शुरुआत करते हैं जेंजी से। तो जेंजी की आवाज सड़कों से अदालत तक पहुंच रही है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर झारखंड तक छात्रों के आंदोलन और पुलिसियाई कार्रवाई को लेकर अदालतों के रुख ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है। क्या युवा अपने हक के लिए आवाज उठाए, और अगर उठाए तो पुलिस और सरकार की कार्रवाई की सीमा क्या हो। दिल्ली के जंतर मंतर और संसद मार्च से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के कथित अत्याचारों की जांच के लिए हाई पावर्ड कमेटी बनाने का फैसला किया है। तो झारखंड में जीपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद हेमंत सरकार कुएं और खाई के बीच जैसे फंसी गई है। तो बात करते हैं झारखंड की ही, जहां हेमंत सोरेन सरकार के एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली हालत हो गई है। हाईकोर्ट आदेश के बाद जहां नौकरी गंवाने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिली है, वहीं प्रदर्शनकारी छात्र फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की 11वीं से 13वीं परीक्षाओं के जरिए चयनित सरकारी कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर भी रोक लगाई गई है। कोर्ट ने सरकार के 15 सितंबर तक उनसे जवाब भी मांग लिया है। हाईकोर्ट का ये आदेश सभी 22 रद्द परीक्षाओं पर लागू नहीं होगा। 18 अगस्त को हेमंत सोरेन सरकार ने जेएसएससी और टीडीपीएल के जरिए हुई 22 परीक्षाएं रद्द करने का और 23 परीक्षाओं की जांच करने का आदेश दिया था। इससे करीब 2700 चयनित कर्मचारियों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया था। अब तस्वीर यह है कि जिन कर्मचारियों को हाईकोर्ट से राहत मिली वो सड़कों पर उतरे, और जिन छात्रों की मांग पर सरकार ने परीक्षाएं रद्द की थी वो भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा और लाखों अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया है। छात्र संगठनों ने आज पूरे झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंकने का ऐलान किया है। 16 दिन तक अनशन कर चुके छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर लापरवाही जारी रही तो जेपी आंदोलन की तर्ज पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
1: अगर सरकार अपना पक्ष रखने में, अपना जांच रिपोर्ट रखने में अगर किसी तरीके से लिपापोती करती है, किसी तरीके से कोताही बरतती है, तो यहाँ के छात्र बिल्कुल अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब जेपी के तर्क पर, जेपी आंदोलन के तर्क पे आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, ये हम आज ऐलान करते हैं।
2: आपका जो मनसा हम आज कोर्ट में देखने को जो मिला, आप किस मनसा के साथ आप जो ऐसा कोर्ट में उतरने का काम किए हैं, उस मनसा को हम तमाम छात्र आज पढ़े हैं। आप ये धोखा सिर्फ झारखंड के लाखों छात्रों को नहीं दिए हैं, झारखंड के तमाम आम आवाम को दिए हैं, झारखंड के उन तमाम अभिभावक को दिए हैं जिन्होंने अपने बच्चा को, अपने बेटा और बेटियों को पिछले 26 दिनों से अपने हक और अधिकार के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भेजने का काम किए थे।
0: प्रदर्शनकारी छात्रों ने झारखंड सरकार पर पैरवी में लापरवाही का आरोप लगाया है। आज पूरे राज्य में हेमंत सोरेन का पुतला फूंकने का भी ऐलान किया गया है।
3: अपील करूंगा कि कल पूरे मुख्यालय में, राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में आप माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला फूंकने का कार्य करें और उन्हें चेतावनी दें कि सुधर जाए, अन्यथा इस बार उससे भी बड़ा आंदोलन होगा जिसे कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी।
0: हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी सत्यजीत रांची से। सत्यजीत, ये तो बड़ी मुश्किल सरकार के लिए खड़ी हो गई है। एक तरफ हाईकोर्ट का ऑर्डर है, दूसरी तरफ छात्रों का आंदोलन, और तीसरी तरफ वो लोग जिनकी नौकरी पर संकट। तो अब सरकार की क्या रणनीति है, और साथ ही ये भी बताएं कि छात्र क्या कह रहे हैं।
4: देखिए, अब पूरा मामला जो है कोर्ट के पाले में है। छात्रों ने मांग किया कि एग्जामिनेशन रद्द किया जाए, तो उस कोर्ट सरकार ने रद्द कर दी। जो 22 परीक्षाएं हैं वो स्थगित रद्द की गई। 6 जो है स्थगित की गई और 17 में जांच चल रहा है 2014 से। सवाल अब ये है कि कोर्ट का रुख क्या होता है, कोर्ट के डिसीजन का सम्मान तो करना होगा। सीटी 11वां से 13वां जो जेपीएससी इम्तिहान थे, जिसे डिप्टी कलेक्टर से लेकर तमाम अधिकारी नियुक्त हुए थे, उन्होंने पिटीशन कोर्ट में डाला। आज भी पिटीशन, अलग अलग पिटीशन लगे हुए हैं, तो पिटीशन डाला, उसमें कोर्ट ने सीधे कह दिया, कोई दलील सरकार के पास नहीं थी कि आप बल्क में विदाउट किसी प्रायर नोटिस के अगर कोई गिल्टी है नहीं है आप नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं। अगर ये भ्रष्टाचार का आरोप है कि फर्जी तरीके से नौकरी पाई गई है, तो आपको डिस्टिंक्ट करना पड़ेगा, यानी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि टेंटेड कौन है, अनटेंटेड कौन है। रूल ऑफ जो नेचुरल जस्टिस होता है उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं। किसी को नौकरी निकालने के लिए ग्राउंड्स होना चाहिए, और इसमें सरकार के पास कोई दलील नहीं था, क्योंकि इतना प्रेशर बनाया गया था छात्र आंदोलन के द्वारा, प्रेशर इस कदर से माउंट किया गया था, और ये मांगे तो जो है प्रोटेस्टर्स उनके तरफ से की गई थी कि रद्द कीजिए, रिफॉर्म्स कीजिए और जांच कीजिए। तो जांच सीआईटी लगातार चल रही है, इसके अलावा जो है रिफॉर्म्स के लिए भी सरकार ने घोषणा कर दिया,
0: और
4: रद्द करने की जिद
0: पे आज छात्रों का क्या प्लान है ये भी बताएं।
4: अगर नौकरी देखिए, छात्रों का ये आरोप है कि पैरवी सही से नहीं की गई है, एडवोकेट जनरल को अपीयर करना चाहिए था। हालांकि पिटिशनर के जो वकील हैं अमृतांश वत्स, उन्होंने आज तक से खास बातचीत में ये बताया कि कोई भी अपीयर करे या फिर किसी कोई, ये मामला जो है सीधे लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है उसके खिलाफ है, इसलिए उनको राहत मिली है। सरकार को दलील देना होगा कि आखिर बल्क में क्यों हटाया। अगर 100 गुनाहगार बच जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बेगुनाह,
0: बिल्कुल सत्यजीत, और यही वजह है कि अब छात्र आज पुतला दहन का भी प्लान बनाए बैठे हैं। उधर हाई कोर्ट के फैसले के बाद झारखंड में इस सब को लेकर सियासत फिर से गर्मा गई है।
5: सिर पर सिर ये मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के आंदोलन करने की घोषणा करते हैं, मन बनाते हैं, लेकिन झारखंड की जनता अब उतना बेवकूफ नहीं है। झारखंड की जनता जानती है, इस देश की जनता जानती है, देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति हैं, वो गरीबी को जानते हैं, गरीबी की पीड़ा को जानते हैं, हर वो काम करते हैं जो गरीब के लिए भला हो।
6: मुझे लगता है कि शायद इसी का अंदेशा होगा जिसकी वजह से उस समय विलम्ब हो रहा था डिसीजन लेने में, और अब डिसीजन हुआ। तो ये भी बात सही है कि जिनकी नौकरी लग गई, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले से कुछ नौकरियां वो सरकारी कर रहे थे, कोई रेलवे की नौकरी कर रहा था, सिर्फ अपने स्टेट में वापस आने के ये में उन्होंने यहाँ की नौकरी ज्वाइन कर ली थी, तो उनके साथ अन्याय हो रहा था शायद, इसीलिए माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया, अब देखा जाएगा क्या होता है।
0: अब बात करते हैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट में पुलिस एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। नीट प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पुलिस की कथित ज्यादती के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों की जांच के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाने का फैसला किया है। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 3 रिटायर्ड जज, एक पूर्व डीजीपी और पूर्व सीबीआई डायरेक्टर को शामिल किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा है कि कमेटी पूरे मामले की तथ्यात्मक जांच करेगी और प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई जरूरत से ज्यादा थी या नहीं, इसे भी देखा जाएगा। कोर्ट ने साफ किया है कि जिम्मेदार कोई भी हो, इस मामले में कोई बहाना या सफाई स्वीकार नहीं की जाएगी और इसे गंभीरता से लेकर तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी के दायरे में महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन हरासमेंट के आरोपों को भी शामिल किया है। इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए प्रदर्शनकारियों और दूसरे संवेदनशील लोगों को कथित तौर पर निशाना बनाए जाने के मामलों की भी जांच की जाएगी। 20 जुलाई को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा के वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी कमिटी को सौंपे जाएंगे, यानी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के साथ पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोप भी जांच के दायरे में रहेंगे।
7: स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट और स्टूडेंट्स में जो आक्रोश बढ़ा भी था, वो सुप्रीम कोर्ट के कमेंट से ही शुरुआत हुई थी, वहीं से एक शुरुआत हुई, एक चिंगारी भड़काई गई थी और उस चिंगारी के चलते स्टूडेंट्स ने आकर अकाउंटेबिलिटी की मांग की, उनकी बातें पूरी की गई, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ, पर उस बीच में जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, पेलेट गन्स चले, उनके ऊपर मार धाड़ हुआ, उनको एंटी नेशनल कहा गया। हमारी विपक्ष की यही मांग थी कि ये पता लगे कि कहाँ से किसके ऑर्डर पर ये काम हुआ है। ये सब जानते हैं गृह मंत्रालय के ही ऑर्डर पे ये सारा काम हुआ होगा, तो ये अगर इन्वेस्टिगेशन होता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है, मैं उसका स्वागत करती हूँ, पर ये भी उम्मीद करती हूँ कि रिपोर्ट आने के बाद अकाउंटेबिलिटी भी तय होगी।
0: और हमारे सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, इस कमिटी की जांच का दायरा क्या रहेगा, क्या क्या फोकस होगा इसका?
8: देखिए, बिल्कुल साफ है कि इस कमेटी की जांच का दायरा होगा कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की ज्यादती कैसी हुई और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर कैसे ज्यादती की, पुलिस पर कैसे हमले किए, दो तरफा जांच होगी। इसके साथ ही महिलाओं पर उनके उत्पीड़न को लेकर जो शिकायतें सुप्रीम कोर्ट में याचिका में दर्ज की गई हैं उसकी जांच करेगी। साथ ही ये कमेटी सिर्फ जांच ही नहीं बल्कि भविष्योन्मुख एक सिफारिशें भी करेगी, समय समय पर अपनी रिपोर्ट देगी कि अब तक जांच में कितनी प्रगति हुई है और उन्होंने क्या तथ्य पाए हैं। तो मुझे लग रहा है कि अलग अलग सेगमेंट्स में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये सारे विशेषज्ञ भी हैं अपने अपने क्षेत्र के और इनका अनुभव भी बहुत ज्यादा है, तो इन लोगों ने ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम या बहुत सारी घटनाओं को पर नजर रखी है, उनसे निपटा है, तो उस अनुभव का फायदा पूरे देश को, भविष्य की पीढ़ी को मिलना चाहिए। और ये भी उम्मीद जताई है कि इनकी सिफारिशें आगे आने वाले समय के लिए बहुत कारगर और उपयोगी होंगी, ताकि देर तक और दूर तक इनकी सिफारिशों का इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट में पहले भी मामला गया था जिसमें कहा गया था कि पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकता है और उसमें संभावनाएं तलाशनी होंगे कि किन किन परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल हो सकता है, किन किन में नहीं हो सकता।
0: जी बिल्कुल, शुक्रिया संजय इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं राजस्थान के जयपुर की, जहां के रामपुरा कवरपुरा गांव के लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP के कार्यकर्ताओं का विरोध किया। सरकारी स्कूल की एक दौरा किया जा रहा था और उस दौरान CJP कार्यकर्ताओं पर कथित तौर पर हमला किया गया। सरकारी स्कूल में अव्यवस्थाओं को लेकर CJP कार्यकर्ता स्कूल का दौरा करने पहुंचे थे और गांव वालों ने इनका विरोध किया। अब स्कूल के बाहर CJP के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और वहीं CJP के नेता आशुतोष रंका भी रामपुरा कवरपुरा गांव का दौरा करने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है।
9: हाँ वो पकड़ के बिल में कुछ जाते हैं, बिल में कुछ जाते हैं, बिल में कुछ जाता बार बार जाता है, पकड़ लेंगे
10: जन्मभूमि को। झारखंड में भी इतना मुद्दा चला, वहां नहीं गए, ये खुद राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। विदेशी फंड आ रहा है इनके पास, मजे ले रहे हैं, एसी गाड़ियों में घूम रहे हैं, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं।
11: के कार्यकर्ता और प्रवक्ता आशुतोष रंका यहाँ पर गांव में स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं, लेकिन ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ आशुतोष और रंका सहित पूरी टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची है और दोनों तरफ यहाँ पर आमने सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, लोग इनको भगा रहे हैं, आशुतोष रंका के साथ महिला कार्यकर्ता भी है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में और इनको यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष रंका के साथ ये मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी। गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं, ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है और रामपुरा में यहाँ पर ये देखिए लात घूसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक एक की पिटाई कर रहे हैं, यहाँ पर गांव वाले पीछे भाग रहे हैं। और ये जयपुर के रामपुरा में CJP के कार्यकर्ता और प्रवक्ता आशुतोष रंका,
0: तो ये तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से मारपीट की गई। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी शरद। शरद, जिस तरह की तस्वीरें हैं उसमें पत्थरबाजी की गई, लात घूसों से मारा गया, ये लोग थे कौन? क्या महज गांव वाले थे जिन्हें इतना गुस्सा था कि CJP वाले आ गए उनके स्कूलों में, या इनमें कुछ और लोग भी थे जिनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन या संबंध हो सकते हैं?
12: देखिए अंजलि, ये सुबह से चल रहा था, सुबह CJP वाले आए थे जहां पर गांव वालों ने इन्हें भगा दिया था, उसके बाद आशुतोष राका ने ट्वीट किया कि हम वापस आ रहे हैं और जो कमल प्रधान है वो गुंडा है और रोक सके तो रोक ले। उसने भी वीडियो जारी किया कि आ जाओ यहीं पर फैसला कर लेंगे। तो कुल मिला के ये टकराव जानबूझकर हुआ है दोनों तरफ से, कोई अचानक से नहीं हुआ है। और ये कमल प्रधान जो है वहां का प्रधान है।
0: टकराव में हाथ और घूसा, लात और पत्थर तो एक तरफ से ही चलते हुए नजर आ रहे हैं।
12: अब बिल्कुल वो तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि सुबह इनको लौटा दिया था, ये गए थे कि रोक सको तो रोक लो और गांव वालों ने कहा था कि हम पीटेंगे और पुलिस को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए था कि ग्रामीण जब इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं कि उन्हें सीजेपी के कार्यकर्ता नहीं चाहिए अपने आंदोलन के लिए तो फिर इनको रोकना चाहिए था सीजेपी के कार्यकर्ताओं को वहां से जाने के लिए। पुलिस बल वहां पर पर्याप्त संख्या में नहीं था तो ये टकराव सुबह से चल रहा था, उसके बावजूद प्रशासनिक फेलियोर है। देखिए ग्रामीण गांव की राजनीति एक अलग तरह की राजनीति होती है, वो शहरों की राजनीति अलग होती है।
0: आप हमारे साथ बने रहे शरद, क्योंकि एक बार फिर से ये तस्वीरें देखते हैं, क्या ये महज एक विरोध था या हमला किया गया, इसे पूरा देखिए और हमारे सहयोगी विशाल शर्मा की इस रिपोर्ट को देखिए।
11: जयपुर के रामपुरा में सीजेपी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता आशुतोष राका यहां पर गांव में स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं, लेकिन ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ आशुतोष और राका सहित पूरी टीम यहां पर मौके पर पहुंची है और दोनों तरफ यहां पर आमने सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहां पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, लोग इनको भगा रहे हैं, आशुतोष राका के साथ महिला कार्यकर्ता भी है, लेकिन यहां पर ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में और इनको यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष राके के साथ ये मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी। गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं, ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है और रामपुरा में यहाँ पर ये देखिए लात घूसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक एक की पिटाई कर रहे हैं, यहाँ पर गांव वाले पीछे भाग रहे हैं।
0: तो ये तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से पिटाई की गई सीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वहां पर उनकी। शरद हमारे साथ लगातार मौजूद है। शरद, पुलिस का अभी तक मुंह क्यों नहीं खुला इस मामले में? तस्वीरें सामने हैं, हिंसा हुई है, जुर्म हुआ है, कुछ तो कार्रवाई करेगी, कुछ तो बोलेगी पुलिस?
12: ये फेलियोर है अंजलि, बिल्कुल फेलियोर है। ये अचानक से हुआ हमला नहीं है, ये प्रशासन का पुलिस का बड़ा फेलियोर है कि सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से कहा जा रहा था, ग्रामीणों से की तरफ से भी और सीजेपी की तरफ से भी, हम आ रहे हैं, वो कह रहे थे आकर दिखाओ और सुबह टकराव हो चुका था, उसके बावजूद पुलिस बल की वहां व्यवस्था नहीं की गई और ये पूरी तरह से सरकार का एक फेलियोर है। देखिए गांव के लोगों ने गुंडागर्दी की है, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, मगर गांव की बिल्कुल अलग तरह की राजनीति होती है, वहां पर बिल्कुल अलग तरह की सोच होती है। अब मुकदमे भी होंगे, कार्रवाई भी होगी, मगर जो भी है इसमें पुलिस का एक फेलियोर था जिसे रोकना चाहिए था। गांव वालों का आरोप था कि ये केवल मीडिया को लेकर आ रहे हैं, हमारे स्कूल के लिए नहीं आ रहे हैं, ये अपने प्रचार के लिए आ रहे हैं, मगर इसके बावजूद जब तनाव सुबह से बढ़ रहा था, सुबह 8 बजे से ये चल रहा था।
0: और सवाल शरद ये भी उठता है, अगर प्रचार के लिए भी आ रही है, सीजेपी मौका फायदा उठा रही है, तो हाथ तो नहीं उठाया जा सकता है? महज गांव वाले हैं ये जो पत्थर उठा रहे हैं और इतना उनको गुस्सा है कि उनके स्कूल का कोई मुआयना करने आ गया, इस पर थोड़ा संदेह उठता है। इसकी जांच के लिए अब तक पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से क्या किया गया है, क्या बोल रहे हैं वो?
12: अभी तक तो देखो पुलिस पहुंची है वहां पर और पुलिस अब जाकर एक्शन में आएगी, मुझे लगता नहीं। देखिए मैं अंजलि साफ कह रहा हूं कि पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है, गांव वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी इस बारे मुझे संदेह है। अगर पुलिस चाहती तो पहले ही गांव वालों के खिलाफ कार्रवाई करती। हिंसा बिल्कुल गांव वालों को नहीं करना चाहिए थी, यह गलत है, हाथ उठाना गलत है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि पुलिस का फेलियोर है। अगर आपको इस तरह से दोनों तरफ से बात कही जा रही हम आएंगे, वो कह रहे थे कि आकर दिखाऊंगे, यही मारेंगे, ये भी बयान सोशल मीडिया पर चल रहा था, उसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने कोई काम नहीं किया है, कोई हाथ में नहीं लिया है उस तनाव को खत्म करने के लिए, जो सरकार का बड़ा फेलियोर है। ग्रामीणों पर जो एक्शन ले लीजिए आप, हिंसा की कोई जगह नहीं है और हिंसक गतिविधि की है।
0: बिल्कुल बड़ा सवाल है ये कि आखिर हाथ कैसे उठा लिया गया, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी भी हो या कोई भी दूसरी, ये सीजेपी हो, कैसे आई तो उस पर हाथ कैसे उठाया? शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एक तो देश राम।

0: सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ
1: एक हिंट तो देते
2: पापा।
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ, ला भाई मेरा बैट।
2: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
3: डिस्चार्ज हुआ यार।
4: बैट किसका है?
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।
6: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
7: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
8: AU
9: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Squash World.
1: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: EU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
5: सोच बदलो और बैंक भी।

0: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
1: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 20 रुपए का कैशबैक 20 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर, भीम ऐप से करो पे।
2: इट्स द माही वे।
3: मुल्तानी घू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घू का कॉफ सिरप।
4: In association with
5: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera।
6: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
7: B.R. अम्बेडकर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है?
8: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिंदा की तरह कि हम सेपरेट अलग स्टेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही बल्तिस्तान भी बनता।

0: पागल तो बना दूंगा देश को, अभी तो बस पेश किया है। अभी बहुत बहुत है, बहुत है।
1: पागल बनाई बुका रे पत्थर की, पागल बनाई बुका।
2: उसमें सीधा है कि इनको जो रस्सी से छलांग नहीं मारते गुलटनिया, वो एक दो मरवा लो, गांजा पी आदमी नहीं मार सकता। कलखनिया मारे वो लत से खुद गिर जाएगा, समझ लो इसको हटाओ फ्लाइट में जाने लायक
0: नहीं। गुलटनिया और कलखनिया।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

वंदे मातरम पर उत्तर से दक्षिण तक राजनीतिक संग्राम। केरलम विवाद के बाद बीजेपी का प्रदेश भर में कार्यक्रम। शर्मिला टैगोर ने बताई दो छंदों की मजहबी मजबूरी, तो कंगना बोली धर्म के चश्मे से ना देखें। जयपुर में स्कूल का दौरा करने गए सीजेपी के आशुतोष रांका को गांव वालों ने दौड़ाया, गाड़ियों के शीशे तोड़े, कई कार्यकर्ताओं को लगी चोट। सीजेपी का आरोप, बीजेपी के लोगों ने किया है यह हमला। परीक्षाएं रद्द करने के सीएम सोरेन के फैसले पर अदालत की रोक के बाद झारखंड में फिर उठी आंदोलन की चिंगारी। आज जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मोर्चा करेगा पुतला दहन, कहा कोर्ट में सरकार का पक्ष कमजोर। आज से पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। बांग्लादेश बॉर्डर का करेंगे मुआयना, सीमा सुरक्षा और बॉर्डर मैनेजमेंट पर फोकस, कल अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक। अस्पताल से वापस अदियाला जेल शिफ्ट किए गए इमरान खान। शिफा अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने की जांच, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देर रात इमरान को लाया गया था।

0: आज सुबह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर से रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, राजस्थान के जयपुर का, जहां के रामपुरा तंवरपुरा गांव के लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के कार्यकर्ताओं का विरोध किया। इस दौरान सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। गांव वालों ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, पत्थरबाजी की, जिसकी वजह से कई कार्यकर्ताओं को चोटें आ गई है। रामपुरा कंवरपुरा गांव के सरकारी स्कूल की अव्यवस्थाओं को लेकर सीजेपी कार्यकर्ता दौरा करने के लिए पहुंचे थे। गांव वालों का आरोप है कि ये लोग सिर्फ स्कूलों के नाम पर राजनीति करने आए थे और इस वजह से उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन तस्वीरें जो सामने आई है उसमें ग्रामीणों ने हाथापाई की, पिटाई की और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए।
1: जयपुर के रामपुरा में सीजेपी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता आशुतोष राका यहां पर गांव में स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं, लेकिन ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ आशुतोष और राका सहित पूरी टीम यहां पर मौके पर पहुंची है और दोनों तरफ यहां पर आमने सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहां पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, लोग इनको भगा रहे हैं। आशुतोष राका के साथ महिला कार्यकर्ता भी है, लेकिन यहां पर ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुका है, धक्के मुक्की हो रही है आपस में और इनको यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष राका के साथ ये मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी। गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं। ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है और रामपुरा में यहाँ पर ये देखिए लात घूसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक एक की पिटाई कर रहे हैं। यहाँ पर गांव वाले पीछे भाग रहे हैं।
0: ये तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखाते हैं क्योंकि हमारे सहयोगी उस वक्त वहां मौजूद थे जब ये मामला महज एक विरोध से फसाद में बदल गया। ये तस्वीरें जब सीजेपी के कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे तो वहां पर मौजूद ग्रामीणों ने विरोध किया, धक्का मुक्की की, उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की। हमारे सहयोगी जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे विशाल हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। विशाल, जो तस्वीरें आपने रिकॉर्ड की अपने कैमरे में, शुरुआत पूरी नजर आती है किस तरह से महज एक धक्का मुक्की हुई थी, उसके बाद मामला बढ़ गया, हाथ पैर चले, इसके अलावा कार के शीशे तोड़ दिए गए, तो वहां पर क्या कोई ऐसा जिम्मेवार व्यक्ति मौजूद नहीं था जो प्रशासन का रहा?

0: या पुलिस का रहा हो जो रोकने की कोशिश कर रहा हो?
1: देखिए बिल्कुल, पुलिस का प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर था, क्योंकि कल से ही आशुतोष रांका सहित सीजेपी की टीम ने कल से ही अल्टीमेटम दे दिया क्या कि जयपुर की जो दो स्कूल हैं वहां पर वो जाएंगे। ये बगरू की रामपुरा के एक क्षेत्र की जो यहाँ पर प्राथमिक स्कूल है, स्कूल में कहीं ना कहीं जर्जर स्थिति थी, जिसके बाद कुछ साल पहले इस स्कूल को एक भैंसों के तबेले में शिफ्ट कर दिया गया। करीब 30 के करीब स्कूल में यहाँ पर बच्चे हैं जिनको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा था। ग्रामीणों के सहयोग से स्कूल संचालित की जा रही थी, क्योंकि जो जमीन है वो गांव के ही एक लोग की है जो कि इस स्कूल के लिए उन्होंने दे रखी थी। लेकिन जब इस स्कूल के हालात सीजेपी को पता चली तो आशुतोष रांका जो कि सीजेपी के प्रवक्ता है वो अपनी टीम के साथ लवाजमे के साथ यहाँ पर मौके पर पहुंचते हैं। लेकिन शुरुआत में उनके साथ हल्की धक्का मुक्की होती है, उनको यहाँ से भगा दिया जाता है। लेकिन फिर वापस करीब 1 घंटे बाद आशुतोष रांका अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं। लेकिन स्कूल में पहुंचने से पहले ही वो ग्रामीण उनको गांव के बॉर्डर पर ही रोक देते हैं और उनके साथ ना सिर्फ हाथापाई होती है बल्कि उनको खेतों के बीच दौड़ा दौड़ा पर उनको पीटा जाता है, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े जाते हैं, हाथों में रस्सियां लेकर ग्रामीण उनको एक तरह से कहें कि उनको बांध कर उनके साथ पिटाई करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि महिला कार्यकर्ताएं जो थी उनके साथ मारपीट नहीं हुई, लेकिन उनके साथ हल्की धक्का मुक्की और उन पर रेत डाली गई। ऐसे में कहीं ना कहीं ग्रामीणों का भी आरोप था कि सीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर गाड़ियों में लाठी डंडे लेकर पहुंचे थे। लेकिन सीजेपी के प्रवक्ता का ये कहना है कि हम किसी हिस्सा के लिए नहीं आए बल्कि स्कूल के हालात को दिखाने के लिए आए, लेकिन सरकार डर गई। यहाँ के ग्रामीण ये आदेश मान रहे हैं कि हम किसी तरह की कोई हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन जो तस्वीरें आई है वो डरावनी है। महिलाएं कार्यकर्ता खासी डरी हुई दिखी हैं, उनके फोन तोड़े गए हैं, उनके पर्स छीने गए हैं, लेकिन फिलहाल मौके पर शांति है। लेकिन पुलिस अब जाकर मौके पर पहुंची है, हालांकि शुरुआत में एक पुलिस की गाड़ी पहुंची थी लेकिन उन्होंने किसी तरह का कोई बीच बचाव नहीं किया। ग्रामीणों ने पूरे गांव को एक तरह से
0: बिल्कुल, विशाल आप हमारे साथ बने रहे, एक बार आइए ये भी सुन लेते हैं कि जो ग्रामीण आपको नजर आते हैं लात घूंसे चलाते हुए उनका क्या कहना है।
2: जन्मभूमि को झारखंड में भी इतना मुद्दा चला, वहां नहीं गए, ये खुद राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। विदेशी फंड आ रहा है इनके पास, मजे ले रहे हैं, एसी गाड़ियों में घूम रहे हैं, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं।
3: जब शिक्षा व्यवस्था सुधार करना ही उनका एक मुद्दा था तो फिर वो झारखंड क्यों नहीं गए? जब पिछले 15 दिनों से वहां आंसन हो रहा था तो झारखंड क्यों नहीं गए अभिजीत दीप के? और जो नीट में धांधली हो रही है तो वो एक ही जगह हो रही है, यूजीसी का मुद्दा उन्होंने क्यों नहीं उठाया? क्या हम श्रवण समाज की हमारी कोई वो नहीं है? हमें कोई भी जेल में डाल दे, हमारी जमानत नहीं है, ऐसा क्यों?
4: हमारे दादाजी ने जमीन दी थी, गवर्नमेंट से भी हमारी कोई जमीन नहीं मिली, हमारे गांव ने हमारे दादाजी ने जमीन दी थी, उसके उपरांत हम ये सन 1999 में स्कूल का निर्माण हुआ था, उसके बाद में इसके कोई रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ और इसकी अभी ये हालत है कि ये मतलब बच्चे बैठने के लायक नहीं है और जर्जर हालत हो चुकी है।
0: तो चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी विशाल का, जो उस वक्त मौजूद थे जब ये पूरा मामला उग्र हो गया। विशाल, ग्रामीण भी ये कह रहे हैं, जो आखिरी बाइट हमने सुनी, वो कहते हैं कि स्कूल का हाल खराब है, हमारी दी हुई जमीन पर चल रहा है, उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। फिर ऐसे में इतना रोष सीजेपी के खिलाफ क्यों, सरकार की तरफ क्यों नहीं?
1: बिल्कुल, ग्रामीण ये कह रहे हैं कि सीजेपी इस मुद्दे को एक राजनीतिक रूप देना चाहती हैं, इसलिए हम विरोध करते हैं। वो कह रहे हैं कि हम स्कूल के विकास के लिए, स्कूल के भवन को बनाने के लिए हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। सरकार की तरफ से और जो स्थानीय एमएलए है उनकी तरफ से इसकी पहले से पैरवी की जा चुकी है, लेकिन हकीकत यह है कि स्कूल का निर्माण नहीं हुआ, यही वजह है कि तबले में स्कूल चल रहा था। लेकिन खासतौर पर सीजेपी के खिलाफ आक्रोश इसलिए है क्योंकि जो जगह है, इस इलाके का नाम रामपुरा है और राम मंदिर के पास ही ये स्कूल था। ऐसे में कह रहे हैं कि जो राम के नाम के खिलाफ हैं उनको हम गांव के अंदर नहीं घुसने देंगे और यही खासतौर पर इनका आक्रोश था और ये आक्रोश कहीं ना कहीं धक्का मुक्की में उपद्रव के बीच में ये देखने को मिला। स्थानीय लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सीजेपी कार्यकर्ता जहां जहां जा रहे हैं वहां बीजेपी की सत्ता है, वो तो दूसरे गढ़ में क्यों नहीं जाते? लेकिन ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जब सीजेपी इस मुद्दे को अब जाकर आंख खुलिए तब कहां गई थी जब स्कूल को यहां से शिफ्ट किया गया था। वो कह रहे हैं कि सिर्फ ये सोशल मीडिया की पार्टी है, इसलिए हम इसको इस मुद्दे को हम भुनाने नहीं देंगे। रही बात स्कूल के निर्माण की,
5: पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे, गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फोन तोड़े हैं, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से ये सुनियोजित था, ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है, एक साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
6: क्या हुआ था ये बता दीजिए।
5: भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे, पत्थरबाजी हुई है, लाइव मीडिया ने आज ये कैप्चर किया है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 1.5 साल से स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है, मेरे 1 साल पहले का वीडियो है इस स्कूल का। सब कुछ पता होने के बावजूद राजस्थान पुलिस का एक पुलिसकर्मी उस समय वहां मौजूद नहीं था। पत्थर मारे गए हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, उन्हें पुरुषों ने पीटा है, भाजपा के गुंडों ने पीटा है, फोन तोड़े गए हैं रेखा शर्मा जी के, हमारे एक वॉलंटियर का हाथ टूट गया, उसके फ्रैक्चर हो गए, उसको अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। पुलिस पूरी तरह गायब थी। आज राजस्थान के लोकतंत्र में काला दिन है, मदन दिलावर के कहने पर यह सब हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, या तो इन गुंडों को आप अरेस्ट कीजिए और ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, वरना अभी आंदोलन स्कूलों से बढ़कर मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगा। थैंक यू।
0: थे आशुतोष रांका को, जिन्होंने बड़ा आरोप लगाया है, वो सीधे आरोप लगा रहे हैं शिक्षा मंत्री पर, राजस्थान के शिक्षा मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ये गुंडागर्दी करवाई है। आशुतोष रांका कह रहे हैं कि सिर्फ 48 घंटे का वक्त दे रहे हैं कार्रवाई के लिए, सुनिए क्या कहते हैं।
5: ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे, गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फोन तोड़े हैं, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से ये सुनियोजित था, ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है।
0: तो आइए एक बार फिर से रुक करते हमारे सहयोगी विशाल का, जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे जब स्कूल में ये पूरा फसाद हुआ। विशाल, आरोप जो लग रहा है आशुतोष रंका ने अभी लगाया कि ये सब पहला तो शिक्षा मंत्री के कहने पर हुआ है, सीधा आरोप वहां, दूसरा वो कहते हैं महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, क्या सच है इन दावों में?
1: देखिए, जिस तरह से सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका कह रहे हैं कि ये बीजेपी के गुंडे थे, ये उनका तर्क था, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि हम गांव के हित में, बच्चों के हित में फैसला हम लेने वाले हैं, आप कौन होते हैं, यदि काम करना है तो सरकार करेगी, शिक्षा विभाग करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें थी ये काफी हद तक कह सकते हैं कि सीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ ना सिर्फ बदसलूक हुई बल्कि मारपीट हुई, लेकिन महिलाओं के साथ किसी तरह की कोई मारपीट नहीं हुई है। ये खुद जो सीजेपी की महिलाएं कार्यकर्ता थी, सदस्य थी, उन्होंने खुद अपने को बाइट दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आज तक पर कि उनके साथ मारपीट नहीं हुई, लेकिन उनके ऊपर रेत उछाली गई, क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है और ये खेतों के बीच में है, उनके रेत उछाली गई, हालांकि हल्का धक्का मुक्की भी हुई उनके साथ, लेकिन मारपीट उनके साथ नहीं हुई। लेकिन जो उस समय का मंजर था वो बहुत ही डरावना था, और कहीं ना कहीं सीजेपी की जो महिला कार्यकर्ता दो थी वो काफी डरी हुई है, अभी भी सहमी हुई है, अब वो पुलिस का सहारा लेगी। क्यों? प्रशासन का इतना बड़ा फेलियर था, जबकि पता था एक दिन पहले कि सीजेपी की यहाँ पर टीम पहुंचेगी, आंदोलन करेगी, स्कूल का निरीक्षण करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया कि टीम का फेलियर। ये देखिए तस्वीरें, जहां पर जब भगदड़ मची थी उसके बाद ग्रामीणों ने जो यहाँ पर पथराव किया था, ये कांच के टुकड़े आपको दिख सकते हैं, जो कि गाड़ियों के जो शीशे यहाँ पर तोड़े गए, उसके बाद इन खेतों की तरफ उनको नीचे की तरफ पटक पटक कर एक तरह से कहें कि उनकी पिटाई की गई थी, और उसके बाद इस रास्ते से, ये पीछे की तरफ दिख रहा होगा, इस रास्ते से वो भागते हुए दिखे थे, और दूसरी ओर गांव का ये दूसरा हिस्सा जहां पर ग्रामीण यहाँ के बासिंदे यहाँ पर रहते हैं, इस हिस्से से लेकर यहां से उनको भगाना शुरू किया, करीब 400 मीटर तक उनको पीछे भगाया और भगा भगा कर उनके साथ एक तरह से कहें कि मारपीट की गई थी।
0: जी विशाल, आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाते हैं जब आशुतोष रांका को वहां से खदेड़ा गया था जब वो उस स्कूल में पहुंचे थे मुआयना करने के लिए। ये वो तस्वीर है,
7: महिला कार्यकर्ता भी है लेकिन यहाँ पर ग्रामीण।
0: तो तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से पहले बात शुरुआत हुई धक्का मुक्की से,
7: कार्यकर्ताओं को आशुतोष रांका के साथ मारपीट,
0: ग्रामीणों ने पहले धक्का दिया आशुतोष रांका को और उनके साथ पहुंचे सीजेपी के कार्यकर्ताओं को, लेकिन कुछ सेकंड्स के अंदर तस्वीर तब्दील होती हुई नजर आएगी आपको, बात बदल गई और वहां लात घूसे चलने लग गए। आरोप आशुतोष रंका का यह है कि यहां पर महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, उनके साथ मारपीट हुई है, जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे उनके साथ, और साथ ही उनकी गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया, और वो आरोप लगाते हैं कि ये सब किया गया है राजस्थान के शिक्षा मंत्री के कहने पर। उनका कहना है कि ये दरअसल ग्रामीण नहीं है, ये बीजेपी के भेजे हुए गुंडे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं सीजेपी के आशुतोष रांका।
7: लेकिन यहाँ पर ग्रामीण एक तरह से कहे कि,
0: तो ये एग्जैक्ट मोमेंट है, ये वो पल है जब महज एक विरोध से ये पूरा मामला एक फसाद एक मारपीट का बन गया, जब ग्रामीण जो रोकने आए थे सीजेपी के कार्यकर्ताओं को उनका रास्ता रोकने के बजाय धक्का मुक्की शुरू करते हैं, और धक्का मुक्की के बाद ये मामला लात घूसों तक चला जाता है, पिटाई की जाती, और जैसे हमारे सहयोगी विशाल कह रहे थे कि वहां पर रस्सी लेके भी पहुंचे थे ग्रामीण, उन्होंने मारा पीटा, हाथ भी, किसी एक कार्यकर्ता का दावा किया जा रहा है कि उसका फ्रैक्चर भी हो गया है, वहां पर चोट इतनी आई है। महिलाएं जो है उनके साथ आशुतोष रांका कहते हैं अभद्रता हुई है जिसकी वजह से वो सहमी हुई है। तो विशाल हमारे साथ लगातार मौजूद हैं जिन्होंने ये तस्वीरों को उस वक्त कैप्चर किया। विशाल, जो गुस्सा था वहां पे ग्रामीणों का वो क्या लंबे वक्त से उबल रहा था, और गुस्सा होना लेकिन उसके उस गुस्से को पिटाई में तब्दील कर देना ये भी गलत है, लेकिन जानना चाहेंगे कि जो वहां लोग हैं वो क्या कहते हैं कि वो इस तरह से गुस्सा क्यों फूटा।
1: देखिए, जब सीजेपी के जो प्रवक्ता ने जब ऐलान किया था, ट्वीट भी किया था कि हम यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ के ग्रामीण जो खासतौर पर युवा वो पहले से एक्टिव थे, पूरी तैयारी के साथ है कि वो सीजेपी कार्यकर्ताओं को स्कूल के आस पास भी भटकने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी एक का दो का कार्यकर्ता पहले यहाँ पर स्कूल के आस पास पहुंच चुका था, लेकिन बाद में जैसे ही सीजेपी के प्रवक्ता के साथ पूरी टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची, उसके बाद क्योंकि जो पहले से कार्यकर्ता यहाँ पर ग्रामीण थे युवा खासतौर पर, उन्होंने हाथों में गोबर पत्थर रस्सी लेकर पूरी तैयारी थी कि सीजीपी के एक भी कार्यकर्ताओं को गांव के अंदर भी नहीं घुसने देंगे, स्कूल तो दूर की बात है। यही वजह है कि गांव की जो सीमा होती है सीमा पर ही आपस में दोनों गुट उलझ गए, और उलझते पहले ही आशुतोष रांका को टीम ने रोका, लेकिन सीजेपी की टीम ने महिलाओं को आगे कर दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं गांव के युवा आक्रोशित हो गए, महिलाओं को साइडलाइन किया और फिर आशुतोष रांका के ऊपर पहले हाथ छोड़ा गया और उसके बाद एक एक कार्यकर्ताओं के दौड़ा दौड़ा पर भगाया गया। गांव के लोगों का कहना है कि गांव की स्कूल है, गांव के बच्चे हैं और इसके लिए हम आगे पहल करेंगे, स्कूल का निर्माण हम कराएंगे। वो कह रहे कि हमने अभी कुछ महीनों पहले गांव में एक बड़े स्तर पर राम मंदिर बनाया है, तो हम स्कूल का निर्माण भी हम करा देंगे। सीजेपी
0: जी बिल्कुल, विशाल आप हमारे साथ बने रहें। सवाल ये है कि ये जो गुस्सा है ये सीजेपी के कार्यकर्ताओं पर फूटा, सरकार के लिए गुस्सा है या नहीं ये भी सवाल है, लेकिन उस वक्त क्या हुआ था, उस मोमेंट पर उस पल में क्यों गुस्सा निकला, आइए एक बार देखिए उन तस्वीरों को।
7: जयपुर के रामपुरा में सीजेपी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता आशुतोष रांका यहाँ पर गांव में स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे, लेकिन ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ आशुतोष और रांका सहित पूरी टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची है, और दोनों तरफ यहाँ पर आमने सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, लोग इनको भगा रहे हैं, आशुतोष रांका के साथ महिला कार्यकर्ता भी है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुका है, धक्का मुक्की हो रही है आपस में, और इनको यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष रांका के साथ मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी, गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं। ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है और रामपुरा में यहाँ पर ये देखिए लात घूसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक एक की पिटाई कर रहे हैं, यहाँ पर गांव वाले पीछे भाग रहे हैं।
0: तो इस फसाद के बाद अब 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है आशुतोष टांका ने। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
1: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 20 रुपए का कैशबैक 20 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर, भीम ऐप से करो पे।
2: इट्स द माय वे।
3: कंप्लेंट वो क्या फाइल करी? जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया है आज उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, नो पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम किए।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: इस तरह का कोई भी कृत्य वो गैर कानूनी भी है, कानून के तहत कार्रवाई करने के योग्य भी है। इस तरह की गतिविधियां हरकतें अगर कोई करता है, और पार्टी किसी नेशनल पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने 55 साल तक देश में राज किया, ऐसे पार्टी के मुखिया की उपस्थिति में अगर ऐसा होता है तो लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति और देश के मानबिंदुओं के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा है, उनकी कितनी आस्था है, उनकी कितना उनके मन में पवित्रता का भाव है, देश के सामने प्रकट हो जाता है।
1: मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने देगा ना, मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा। मेरे सीधा सीधा है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, ये मेरा मूल अधिकार है, इसे आप छीन नहीं सकते मुझसे। हाँ, मैं अपमान नहीं करूंगा, किसी भी सूरत में अपमान नहीं करूंगा। नहीं, मैंने बेलविन गाई, अब भी नहीं गाऊंगा, उसमें कौन नई बात थोड़ी ना है, मैं खड़ा हो जाऊंगा।
2: पागल तो बना दूंगा देश को, अभी तो बस पेश किया है। अभी बहुत बहुत है, बहुत है।
3: पागल बनाई बुका रे पत्थर की, पागल बनाई बुका।
4: उसमें सीधा है कि इनको जो रस्सी से छलांग नहीं मारते गुलटनिया, वो एक दो मरवा लो, गांजा पीवा आदमी नहीं मार सकता। कलखनिया मारे वो लद से खुद गिर जाएगा, समझ लो इसको हटाओ फ्लाइट में जाने लायक।
2: गुलटनिया और कलखनिया,
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: पागल तो बना दूंगा देश को, अभी तो बस पेश किया है। अभी बहुत बहुत है, बहुत है।
1: पागल बनाई बुका रे पत्थर की, पागल बनाई बुका।
2: उसमें सीधा है कि इनको जो रस्सी से छलांग नहीं मारते गुलटनिया, वो एक दो मरवा लो, गांजा पियो आदमी नहीं मार सकता। कलखनिया मारे वो लत से खुद गिर जाएगा, समझ लो इसको हटाओ फ्लाइट में जाने लायक।
0: गुलटनिया और कलखनिया।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: संग्राम केरलम विवाद के बाद बीजेपी का प्रदेश भर में कार्यक्रम। शर्मिला टैगोर ने बताई दो छंदों की मजहबी मजबूरी, तो कंगना बोली धन के चश्मे से ना देखें।
1: जयपुर के स्कूल का दौरा करने गए सीजेपी के आशुतोष रांका को गांव वालों ने दौड़ाया, गाड़ियों के शीशे तोड़े, कई कार्यकर्ताओं को लगी चोट। सीजेपी का आरोप, बीजेपी के लोगों ने किया हमला।
0: परीक्षाएं रद्द करने के सीएम सोरेन के फैसले पर अदालत की रोक के बाद झारखंड में फिर उठी आंदोलन की चिंगारी। आज जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मोर्चा करेगा पुतला दहन, कहा कोर्ट में सरकार का पक्ष कमजोर।
1: आज से पश्चिम बंगाल के दौरे पर है गृहमंत्री अमित शाह, बांग्लादेश बॉर्डर का करेंगे मुआयना। सीमा सुरक्षा और बॉर्डर मैनेजमेंट पर फोकस, कल अधिकारियों के साथ होगी बड़ी बैठक।
0: इमरान के अस्पताल पहुंचते ही कांप गई पाकिस्तान सरकार, चंद घंटे में शिफा हॉस्पिटल में फिर अडियाला जेल भेजे गए। आधी रात डॉक्टरी जांच के बाद शिफ्टिंग, मंत्री ने कहा फिट थे तो भेजा जेल क्यों।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज एक और 11, आपके साथ हूं मैं नेहा बात।
1: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर से। राजस्थान के जयपुर की शुरुआत करते हैं, वहां से जहां के रामपुरा कंवरपुरा गांव के लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के कार्यकर्ताओं का विरोध किया, उन पर हमला किया। इस दौरान सीजेपी कार्यकर्ताओं पर जोरदार हमला किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, गांव वालों ने कई गाड़ियों के भी शीशे तोड़ दिए। इसके अलावा कई कार्यकर्ताओं को चोट भी आई है। रामपुरा कंवरपुरा गांव के सरकारी स्कूल की अव्यवस्थाओं को लेकर सीजेपी कार्यकर्ता दौरा करने पहुंचे थे, गांव वालों का आरोप है कि ये सिर्फ स्कूलों के नाम पर दरअसल राजनीति करने आए थे, इसलिए उन्होंने उनके साथ मारपीट की।
0: दो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की गई, उनका विरोध किया गया। अब इसमें ग्रामीण थे या फिर किसी पार्टी के कार्यकर्ता, ये दरअसल तय करना होगा।
3: जयपुर के रामपुरा में सीजेपी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता आशुतोष रांका यहाँ पर गांव में स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं, लेकिन ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ आशुतोष और रांका सहित पूरी टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची है और दोनों तरफ यहाँ पर आमने सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, लोग इनको भगा रहे हैं, आशुतोष रांका के साथ महिला कार्यकर्ता भी है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में और इनको यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष रांका के साथ ये मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी। गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं, ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है और रामपुरा में यहाँ पर ये देखिए लात घूसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक एक की पिटाई कर रहे हैं, यहाँ पर गांव वाले पीछे भाग रहे हैं।
1: और आइए अब रुक करते हैं शतक आज तक का।

0: राजस्थान के जयपुर में रामपुरा कंवरपुरा गांव के लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध किया। इस दौरान सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। गांव वालों ने कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़े। इसके अलावा कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। सीजेपी के आशुतोष रांका को गांव वालों ने दौड़ाया। गुस्साए लोगों ने सीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रामपुरा कंवरपुरा गांव के सरकारी स्कूल की बदहाली को लेकर सीजेपी कार्यकर्ताओं ने दौरा किया था। गांव वालों का आरोप है कि ये लोग सिर्फ स्कूलों के नाम पर अपनी राजनीति करने आए थे। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान तेज। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आजादी से पहले अंग्रेजों का साथ देने वाली विचारधारा आज कांग्रेस को राष्ट्रवाद का पाठ कैसे पढ़ा सकती है। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने भी अमित शाह पर हमला बोलते हुए असली मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया। कहा बीजेपी के लिए ये राजनीतिक मुद्दा है। बीजेपी आज केरल में सभी जिला मुख्यालयों पर वंदे मातरम कार्यक्रम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रगीत को शामिल न करने के फैसले का ये विरोध। वंदे मातरम को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का कांग्रेस पर तीखा हमला। कहा देश विरोधी चरित्र फिर सामने आया।
1: झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की 11वीं और 13वीं परीक्षाओं को और नियुक्तियों को रद्द करने के हेमंत सोरेन के सरकार के फैसले पर रोक लगाई है। 15 सितंबर तक जवाब दाखिल करने के आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद रिफॉर्म मंच ने छात्रों के साथ छल का आरोप लगाया। आज मुख्यमंत्री के पुतला दहन का आह्वान किया है और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। त्रिवेंद्र महतो ने सरकार की दी चेतावनी। सीआईडी रिपोर्ट कोर्ट में ठीक से क्यों नहीं रखी। पर्दा डालने की कोशिश हुई तो नहीं सहेंगे। जंतर मंतर से जागी जनरेशन जेन जी पर सत्ता से लेकर विपक्ष तक की नजर। संघ ने भी किया मंथन। संसद मार्च के दौरान ज्यादा बल प्रयोग के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। राहुल गांधी का महिलाओं से सीधा संवाद। समाज की नहीं अपनी आवाज बताइए। 22 अगस्त को होगा पुणे में महिला विशेष छात्रों की गूंज कार्यक्रम। लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की बेंच स्थापित होगी। अमित शाह बोले दूरदराज के लोगों को मिलेगा न्याय तक आसान और तेज पहुंच का लाभ। लद्दाख में हाईकोर्ट बेंच को मंजूरी को लेकर अमित शाह ने आगे कहा संवैधानिक सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर बीजेपी बनाएगी सेवा संकल्प महोत्सव। इस महोत्सव में स्वच्छता रक्तदान वृक्षारोपण और स्वास्थ्य शिविरों के साथ विकास सुशासन पर होंगे कार्यक्रम। 22 अगस्त को बीजेपी अध्यक्ष तैयारियों की समीक्षा करेंगे। योगी सरकार का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर फोकस। यूपी में बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार सीधे अभिभावकों के खाते में पैसा भेज रही है।
0: जंतर मंतर प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 5 सदस्यीय समिति। प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के आरोपों की होगी जांच। समिति प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन इलेक्ट्रिक बेटन और लाठी चार्ज आंसू गैस के अत्यधिक इस्तेमाल से जुड़े आरोपों की जांच करेगी। समिति ये भी देखेगी कि प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से उठाए गए कदम स्थिति के अनुपात में थे या नहीं। अमित शाह का 3 दिवसीय बंगाल दौरा आज से। सीमा सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सुरक्षा बलों के साथ सीधी रणनीति और सामूहिक भोज। इस दौरे के दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा को मजबूत करने वाली कई नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। नए आपराधिक कानूनों पर भी मीटिंग। राजस्थान में स्कूलों पर खर्च को लेकर सियासी घमासान। बीजेपी का दावा कांग्रेस के 2.5 साल में 500 करोड़ ज्यादा हुआ खर्च। मुंबई में जमीन कब्जे के आरोप पर आदित्य ठाकरे का प्रदर्शन का ऐलान। 23 अगस्त को बांद्रा में जुटने की अपील। ठाणे में आरटीओ द्वारा ऑटो रिक्शा चालकों को चेकिंग शुरू की गई। 6 जगहों पर चेकिंग जारी। जिन ऑटो वालों को मराठी नहीं आ रही उन्हें दिया जा रहा है नोटिस। वसई विरार और मीरा भयंदर में मराठी नहीं बोलने वाले ऑटो चालकों पर आरटीओ की कार्रवाई। नोटिस देकर 1 महीने की मोहलत। भाषा नहीं सीखने पर लाइसेंस परमिट पर हो सकती है कार्रवाई। महाराष्ट्र में खुले खाद्य तेल की बिक्री पर एफडीए का शिकंजा। पुराने डिब्बों में तेल भरकर बेचने और इस्तेमाल किए तेल को दोबारा बेचने पर सख्त कार्रवाई। तेल कंपनियों के भ्रामक विज्ञापनों पर भी होगी कार्रवाई।
1: पुणे में अमित शाह के एंटी नेशनल वाले बयान पर विजय वडेट्टीवार का पलटवार, हमें राष्ट्र विरोधी कहने वाले अपनी विचारधारा का इतिहास देख लें। पुणे में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज नरवणे ने कहा, चीन भारत का मुख्य प्रतिस्पर्धी है, प्रतिद्वंदी कहना सही है, दुश्मन नहीं। जनरेशन गैप पर बोले पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे, कहा नई पीढ़ी गलत नहीं है, उसे समझकर उसकी ऊर्जा को देश हित में लगाना होगा। मुंबई में विमल लाइशी के विज्ञापन को लेकर एफडीए ने सितारों को भेजा नोटिस, तुकाराम मुंडे बोले अभी तक नहीं मिला है कोई जवाब। मुंबई में 600 करोड़ रुपए के येस बैंक लोन सौदे पर ईओडब्ल्यू की नजर, लोन ट्रांसफर और संपत्तियों की कीमत तय करने में गड़बड़ी के आरोप। वंदे मातरम को लेकर सियासत पर बीएसपी प्रमुख मायावती का केंद्र सरकार विपक्ष पर हमला, बोली ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। मायावती के राजनीतिक दलों पर दो टूक, बोली देश में बेरोजगारी, युवाओं और बढ़ रहे हैं ऐसे अहम मुद्दे, जनहित के मुद्दों पर ध्यान दें सभी राजनीतिक दल। लखनऊ दौरे पर जापानी प्रतिनिधिमंडल के 14 छात्र, सीएम आवास पर यूपी के राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी जापानी छात्रों से करेंगे मुलाकात। यूपी के जैन अल्फा से जापानी छात्र करेंगे संवाद, लखनऊ के अटल विद्यालय में जापानी और भारतीय छात्रों के बीच होगी शैक्षणिक गतिविधियां। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, का किसान का अपमान देश का अपमान है, किसान नेताओं से मारपीट के मामले में सख्त कार्रवाई की मांग।
0: समाजवादी पार्टी में शामिल हुए इमरान मसूद के दामाद शायान मसूद बोले, बीजेपी को हैरानी है तो अखिलेश यादव के अलावा कोई रास्ता नहीं। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी में पीडीए स्थान तो पा सकता है लेकिन सम्मान नहीं। बागपत में आरएलडी का अल्पसंख्यक सम्मेलन, दिलनवाज खान ने अखिलेश यादव पर जमकर साधा निशाना, संगठन मजबूती और चुनावी तैयारियों पर मंथन। अल्पसंख्यक समाज को लेकर आरएलडी नेता का एसपी पर बड़ा आरोप, कहा अल्पसंख्यकों को अछूत समझते हैं अखिलेश, अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर देखती है एसपी। अखिलेश के 5400 रुपया वाले बयान पर आरएलडी ने कसा तंज, कहा आजकल अखिलेश के सपने में आते हैं चौधरी साहब जिससे वे बौखलाकर कुछ भी बयान दे रहे हैं। लखनऊ में दलित पूजा विवाद गरमाया, आज शीतला देवी मंदिर जाएंगे लाखन आर्मी चीफ सूरज पासी, बोले देखता हूं कौन रोकता है मुझे। उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसर के तबादले, 7 जिले के पुलिस कप्तान बदले गए, एसपी संभल रहे के बिश्नोई को एसपी बिजनौर अब बनाया गया। यूपी पुलिस की हाफ एनकाउंटर थ्योरी पर हाई कोर्ट ने खड़े किए सवाल, श्रावस्ती में हुए हाफ एनकाउंटर पर सीबीआई जांच के आदेश।
1: प्रयागराज में बाढ़ का असर, डूबने लगे सामान और दुकान, संगम क्षेत्र जलमग्न, सड़क पर चलने लगी नावें, बाढ़ का पानी अब संगम के प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर की बाउंड्री तक पहुंचा, दुकानदार पुरोहित अपना सामान बचाने के लिए दिन रात मशक्कत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, रेस्क्यू जारी, जर्जर इमारत गिरने से एक की मौत। भारी बारिश के चलते बकिया डैम में 14 गेट खोले गए जिससे नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लोगों को जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह। राजस्थान के धौलपुर में तेज बारिश से कई सड़कें सैलाब में तब्दील, निचले इलाकों और बाजार में जलभराव के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी। पश्चिमी मेदिनीपुर में बाढ़ से 2 लोगों की मौत, परिवारों को 9 लाख रुपए मुआवजा, बंगाल सीएम शुभेंदु का ऐलान। मिर्जापुर में बारिश का कहर, मिट्टी की दीवार गिरने से 3 की मौत, 1 घायल। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर आधा दर्जन जगह कटाव, हवा में झूले डिवाइडर, सो रहा है एनएचएआई प्रशासन। पन्ना में आफत की बारिश, फंते नाले में बही महिला, लोगों ने रेस्क्यू कर बचाई जान। मुरादाबाद में बढ़ा रामगंगा का जलस्तर, प्रशासन अलर्ट पर, बाढ़ चौकियां और रेस्क्यू टीम तैयार।
0: आज तक की खबर का असर, झांसी में जर्जर रपटे पर आवागमन बंद, पानी के तेज बहाव में बच्चों के नदी पार करने पर प्रशासन सख्त। प्रयागराज में जलभराव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, बोले समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता हो, लोगों को हर संभव मदद मिले। भदोही में फर्जी स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र से नीट 2025 के तहत 9 बच्चों का कराया एमबीबीएस में एडमिशन, सत्यापन में हुआ खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में बारिश में कोया डिलीवरी बॉय का फोन, समाजवादी पार्टी के विधायक ने लौटाई मुस्कान, आवास पर बुलाकर गिफ्ट किया फोन। सहारनपुर में युवक पर फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो वायरल, बाइक सवारों ने घर के बाहर चलाई गोली, मचा हड़कंप, पुलिस ने तहरीर कर लेकर आरोपियों की तलाश शुरू की। उधम सिंह नगर के काशीपुर में लव जिहाद का कथित तौर पर शिकार हुई छात्रा का सड़क किनारे मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गुजरात के पाटन में एसटी बस को ट्रेलर ने मारी जोरदार टक्कर, बस चालक का घुटना फ्रैक्चर, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। देहरादून में बीच सड़क ताबड़तोड़ फायरिंग, एक घायल, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, एक आरोपी गिरफ्तार। अहमदाबाद में फ्रॉड केस में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में दो गिरफ्तार। कर्नाटक के मांड्या में गारमेंट फैक्ट्री में लगी आग, करोड़ों रुपयों से अधिक मूल्य के कपड़े और अन्य सामान जलकर खाक।
1: कृष्णगिरी में 100 से ज्यादा नर्सेज का प्रदर्शन, विभिन्न मार्गों को लेकर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से बाहर किया गया विरोध प्रदर्शन। हरियाणा के हिसार कोर्ट में ताबड़तोड़ फायरिंग, 33 केसों में आरोपी गैंगस्टर का मर्डर। घटना के बाद पुलिस ने कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील किया। मसूरी में 20 सड़क पर दो गुटों में जमकर मारपीट, हाथ लात और घूसल चले वार, भगत सिंह चौक का वीडियो वायरल। इंदौर में 3 साल की बच्ची से प्रताड़ना का आरोप, बैग में छिपे वॉइस रिकॉर्डर से खुलासा, टीचर पर केस दर्ज। दक्षिण 24 परगना में चंपा हाटी पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मुंबई को लाए मकान पर गिरी गड़ी क्रेन, हादसे में 10 लोग घायल, 6 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। गोरखपुर में ट्रक से टकराई बस, चालक की मौत, 15 यात्री घायल। मुजफ्फरनगर का वीडियो वायरल, नाबालिग से जुड़े पॉक्सो केस में युवक गिरफ्तार, हिंदू लड़कियों को टारगेट करने के दावे पर जांच जारी। बारिश में मोहाली एरो सिटी में निर्माणाधीन अस्पताल की इमारत ढही, 2 की मौत, 2 को किया गया रेस्क्यू। यूपी के बांदा में मानव तस्करी गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
0: वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप के टॉप 8 में पहुंची भारतीय महिला हॉकी टीम, जगह बना ली है पूल डी के आखिरी मुकाबले में। भारत ने इंग्लैंड को 0-0 से ड्रॉ पर रोका। अब नए फॉर्मेट के अनुसार एक क्रॉसओवर पूल में पहुंचने वाली टीमों आपस में खेलेंगी मैच, जिसमें नेदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया के से भिड़ेगा भारत। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेंस डबल में भारत के सात्विक और चिराग शेट्टी ने क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश, मलेशिया के खिलाड़ी को हराया। विमेंस डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की क्वार्टर फाइनल में एंट्री, जापान की 7वीं सीड रिन इवानागा और की नाकानिशी को सीधे गेम में 21-16 21-12 से हराया। US ओपन से वापसी करेंगे कार्लोस अल्काराज, उनकी कलाई में चोट के बाद 4 महीने से कोर्ट से बाहर थे और US ओपन के डिफेंडिंग चैंपियन। सलमान खान और संजय दत्त की अंतर्राष्ट्रीय एक्शन फिल्म 7 डॉग्स भारत में रिलीज, मोनिका बलूची, मार्टिन लॉरेंस भी फिल्म का है हिस्सा। हॉलीवुड की हॉरर फिल्म इंसिडियस आउट ऑफ द फर्दर सिनेमा घरों में रिलीज, लोकप्रिय इंसिडियस फ्रेंचाइज की ये 6वीं फिल्म। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सुपरस्टार विजय की सबसे चर्चित फिल्म जन नायकन OTT पर स्ट्रीम, कल से Z5 पर होगी उपलब्ध। पहली बार महात्मा गांधी का रोल करेंगे एक्टर मनोज वाजपेयी, सुधीर मिश्रा की फिल्म गांधी एंड माई मदर में आएंगे नजर। बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाने आ रहे हैं यश, आज से टॉक्सिक की एडवांस बुकिंग शुरू, दर्शकों में उत्साह, 26 अगस्त को सिनेमाघरों में देगी दस्तक।
1: अस्पताल से वापस अडियाला जेल शिफ्ट किए गए इमरान खान, शिफा अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम ने की जांच, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इमरान को लाया गया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर उनके प्रवक्ता ने दिया बड़ा बयान, कहा जेल से रिहाई के बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख से टकराव नहीं करेंगे इमरान। उत्तर कोरिया ने गुरुवार को दागी संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल, कोरियाई प्रायद्वीप और पूर्वी समुद्री इलाके में मिसाइल दागने का जापान और दक्षिण कोरिया ने किया दावा। प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की ब्रिटेन यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ब्रिटिश पीएम ने बताया निजी मामला, पीएम एंडी बर्मन ने कहा सरकार नहीं उठाएगी सुरक्षा का खर्च। दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एरिना सबालेंका को सिंसिनाटी ओपन में लगा बड़ा झटका, राउंड ऑफ 16 में चेक करना चुकी, 20 वर्षीय सारा बेजलेक को दी मात।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
1: और सबसे पहले बात जयपुर की, जहां के रामपुरा कंवलपुरा गांव में लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के कार्यकर्ताओं का विरोध किया। इस दौरान CJP कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया, बीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका पर हमला किया गया। गांव वाले ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़े। इसके अलावा कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। रामपुरा कमलपुरा गांव के सरकारी स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता यहां दौरा करने पहुंचे थे।
0: इस दौरान उन पर हमला किया गया। आरोप लगा रहे हैं आशुतोष रांका कि ये सब शिक्षा मंत्री के कहने पर किया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की गई। अब उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया है। कहते हैं कि इन पर पुलिसियाई कार्रवाई हो, नहीं तो वो इस पर एक्शन शुरू करेंगे और मामला बढ़ जाएगा, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक चला जाएगा।
3: के साथ महिला कार्यकर्ता भी है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण एक तरह से कहें कि
4: देखिए गांव वाले उग्र हो चुके हैं
3: यहाँ पर, इनको
4: देखिए यहाँ पर, और यहाँ भी गिर चुका है।
3: देखिए सहित पूरी टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची है और दोनों तरफ मौके पर पहुंची है और दोनों तरफ यहाँ पर आमने सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, लोग इनको भगा रहे हैं। आशुतोष आगे के साथ महिला कार्यकर्ता भी है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण एक तरह से कहें कि
5: जयपुर के रामपुरा में सीजेपी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता आशुतोष रांका यहाँ पर गांव में स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं, लेकिन ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ आशुतोष और रांका सहित पूरी टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची है और दोनों तरफ यहाँ पर आमने सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, लोग इनको भगा रहे हैं। आशुतोष आगे के साथ महिला कार्यकर्ता भी है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुके हैं। धक्का मुक्की हो रही है आपस में और इनको यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष रांके के साथ ये मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी। गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं। ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है और रामपुरा में यहाँ पर ये देखिए लात घूसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक एक की पिटाई कर रहे हैं। यहाँ पर गांव वाले पीछे भाग रहे हैं।
1: गांव वालों के विरोध के बाद कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये हमला सुनियोजित था और इसके पीछे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं। पुलिस को 48 घंटे में इन सभी आरोपियों पर एक्शन लेना होगा, वरना एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। तो रांका द्वारा एक तरीके से धमकी दी गई है कि बड़ा प्रदर्शन होगा अगर आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि ये सुनियोजित हमला था।
6: आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं। पत्थरबाजी हुई है, हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फोन तोड़े हैं, हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से ये सुनियोजित था, ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। एक साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
0: तो कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर गांव वालों ने बड़ा आरोप लगाया है। गांव वालों का कहना है कि ये लोग सिर्फ स्कूलों के नाम पर दरअसल राजनीति करने आए थे।
7: सीजेपी वाले आए थे, सुबह आए थे, तो हमने प्यार मोहब्बत से उनको समझा के वापस भेज दिया और गांव वाले भी ऐस व्यस्त हो गए थे। उसके बाद करीबन 50-60 आदमी फिर आया, उनके साथ महिलाएं भी आई और कुछ उनकी गाड़ियों में हथियार भी है और वो अभद्रता से हमने रोकने की कोशिश की दोबारा भी, तो अभद्रता से वो लेडीज पेश आई। तो आप जानते हो ग्रामीणों में अगर अभद्रता से पेश आएंगे तो ग्रामीण भी बाकी नहीं रखेंगे, क्योंकि हम बाहरी पार्टी को अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि देश विरोधी जो नारा लगाएगा उसको हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
8: उन्होंने कोई स्कूल सुधारने के लिए नहीं आ रहे, वो ओनली अपनी जड़ें जमाने के लिए आ रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं और उनका कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे यहाँ पर स्कूल के लिए फंड जारी हो चुका है, बस कुछ ही दिनों में वो धरातल पे भी उतर जाएगा। हमने सीजीपी के विरोध इसलिए किया है कि वो देश विरोधी पार्टी है और इस देश विरोधी पार्टी को हम हमारे गांव में घुसने नहीं देंगे। उसके ये उसको बाहर से फंडिंग होती है और हम देश के साथ गद्दारी किसी भी समझौता नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसका विरोध किया है। हमने कई बार उनके कार्यकर्ता आए, उनको प्यार से समझा के भेजा भी है, फिर उसके बाद में उन्होंने टीम बना के कम से कम 50 से 80 लोग उन्होंने टीम बना के हमारे गांव में घुसने का प्रयास किया। हमने उनका विरोध किया, प्यार मोहब्बत से समझाए उन्होंने, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। उसके बावजूद भी आके जबरदस्ती हमारे से हाथापाई की और धक्का मुक्की की। उन्होंने लेडीजों को आगे किया, उनकी जो कारें थी उनमें हथियार भी थे और उन्होंने धक्का मुक्की के उपरांत उनके कांच के शीशे फूटे हैं। उन्होंने जबरदस्ती हमारे ग्रामीणों पे झूठा आरोप लगाया है कि हमारे गाड़ियों के शीशे फूट गए।
1: इसी के साथ हो गई शुरू से ब्रेक के लिए, टिकते रहिए आज।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसें।
9: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: 봐봐.
1: सॉरी यार गलती हो गई है ये चोर खर्चा वर्चा
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा
1: छक्का
2: सब कैशलेस हो गया
1: है हां ओ ला भाई मेरा बैट वो अभी तो ठीक हुआ तू
3: ओ अभी तो चार्ज हुआ यार
4: ओ बैट किसका है
5: टाटा AIG है तो भरोसा है
6: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा. Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera.
7: AU Savings Account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने.
8: Money, money, money, money, every month.
9: सोच बदलो और बैंक भी.
6: In association with hint, एक हिंट तो देते
10: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक
6: विमल बोलो जुबां केसरी

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें साथ तक, देखते रहिए आज तक।
7: B.R. अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है।
8: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट अलग ट्रेड नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही दलतिस्तान भी बनता।

0: पागल तो बना दूंगा देश को। अभी तो बस पेश किया है। अभी बहुत बहुत है, बहुत है।
1: पागल बनाई बुका रे पत्थर की, पागल बनाई बुका।
2: उसमें सीधा है कि इनको जो रस्सी से छलांग नहीं मारते गुलटनिया, वो एक दो मरवा लो, गांजा पीओ आदमी नहीं मार सकता। कलखनिया मारे वो लद्द से खुद गिर जाएगा, समझ लो इसको हटाओ फ्लाइट में जाने लायक
0: नहीं। गुलटनिया और कलखनिया।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: से दक्षिण तक राजनीतिक संग्राम, केरलम विवाद के बाद बीजेपी का प्रदेश भर में कार्यक्रम। शर्मिला टैगोर ने बताई दो छंदों की मजहबी मजबूरी, तो कंगना बोली धर्म के चश्मे से ना देखें।
1: जयपुर में स्कूल का दौरा करने गए सीजेपी के आशुतोष टांका को गांव वालों ने दौड़ाया, गाड़ियों के शीशे तोड़े, कई कार्यकर्ताओं को लगी चोट। सीजेपी का आरोप बीजेपी

0: बीजेपी के लोगों ने किया यह हमला।
1: परीक्षाएं रद्द करने के सीएम सोरेन के फैसले पर अदालत की रोक के बाद झारखंड में फिर उठी आंदोलन की चिंगारी। आज एपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मोर्चा करेगा पुतला दहन का, कोर्ट में सरकार का पक्ष कमजोर।
0: आज से पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। बांग्लादेश बॉर्डर का करेंगे मुआयना, सीमा सुरक्षा और बॉर्डर मैनेजमेंट पर फोकस। कल अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक।
1: इमरान के अस्पताल पहुंचने काम गई पाकिस्तान सरकार। चंद घंटे में शिफा हॉस्पिटल के से फिर आडियाला जेल भेजे गए। आधी रात डॉक्टरी जांच के बाद शिफ्टिंग। मंत्री ने कहा फिट थे तो भेजा जेल।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माह।
1: एक और 11 में एक बार फिर हम बात करेंगे जयपुर की, क्योंकि वहीं से बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक गांव में कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। सीजेपी की टीम रामपुरा कवरपुरा गांव के सरकारी स्कूल के मुआयना करने के लिए गई थी, लेकिन ग्रामीणों ने इस टीम पर हमला कर दिया।
0: गांव वालों का आरोप है कि सीजेपी के लोग सिर्फ स्कूल के नाम पर राजनीति करने आए थे, लेकिन गांव वालों ने जो कुछ किया उसे कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। ग्रामीणों ने सीजेपी की टीम से पहले तो धक्का मुक्की की, फिर उनकी पिटाई की, उनकी गाड़ियां तोड़ी और पत्थरबाजी भी की।
1: तीन तस्वीरें आपके सामने, अचानक टीम को घेरा गया, उनकी गाड़ियां तक तोड़ दी गई। अब सीजेपी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो वहां पर पहुंचे थे और सरकार को इन पर एक्शन लेना चाहिए क्योंकि ये ग्रामीण नहीं थे। लात घूसो तक का इस्तेमाल किया गया, बीजेपी की टीम को वहां से खदेड़ दिया गया।
3: गांव वाले उग्र हो चुके हैं। यहां पर
4: जयपुर के रामपुरा में सीजेपी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता आशुतोष राय का यहाँ पर गांव में स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं, लेकिन ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ आशुतोष और राणा सहित पूरी टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची है और दोनों तरफ यहाँ पर आमने सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, लोग इनको भगा रहे हैं। आशुतोष आगे के साथ महिला कार्यकर्ता भी है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में और इनको यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष राके के साथ ये मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी। गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं। ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है और रामपुरा में यहाँ पर ये देखिए लात घूसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक एक की पिटाई कर रहे हैं, यहाँ पर गांव वाले पीछे भाग रहे हैं।
0: तो कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर गांव वालों ने आरोप लगाए हैं। गांव वालों का कहना है कि ये लोग सिर्फ स्कूल के नाम पर राजनीति करने आए थे। इन आरोपों के साथ उन्होंने कहा है कि यही वजह रही कि उनका गुस्सा फूट पड़ा।
3: गांव वाले उग्र हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर और यहाँ आज भी फिर
0: तो आरोप लग रहे हैं कि ये देश विरोधी हैं, ऐसा कहना है ग्रामीणों का।
3: ये तस्वीर देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं।
5: आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं। पत्थरबाजी हुई है, हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फोन तोड़े हैं, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से ये सुनियोजित था, ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। एक साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे, पत्थरबाजी हुई है, लाइव मीडिया ने आज ये कैप्चर किया है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 1.5 साल से स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे 1 साल पहले का वीडियो है इस स्कूल का। सब कुछ पता होने के बावजूद राजस्थान पुलिस का एक पुलिसकर्मी उस समय वहां मौजूद नहीं था। पत्थर मारे गए हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, उन्हें पुरुषों ने पीटा है, भाजपा के गुंडों ने पीटा है, फोन तोड़े गए हैं। रेखा शर्मा जी के, हमारे एक वॉलंटियर का हाथ टूट गया, उसके फ्रैक्चर हो गए, उसको अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। पुलिस

0: पूरी तरह गायब थी। आज राजस्थान के लोकतंत्र में काला दिन है। मदन दिलावर के कहने पर यह सब हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, या तो इन गुंडों को आप अरेस्ट कीजिए और ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, वरना अभी आंदोलन स्कूलों से बढ़कर मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगा। थैंक यू।
1: वहीं कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर गांव वालों ने बड़ा आरोप लगाया। गांव वालों का कहना है कि ये लोग सिर्फ स्कूलों के नाम पर राजनीति करने आए। गांव वाले कह रहे हैं कि राजनीति की जा रही है स्कूलों के नाम पर, इनको दरअसल भलाई की कोई चिंता नहीं है, लेकिन ये बस राजनीति करना चाहते हैं, इस तरह के वीडियोस बनाकर सरकार पर आरोप लगाना चाहते हैं। ये गांव वाले आरोप लगा रहे हैं।
2: सीजेपी वाले आए थे, सुबह आए थे, तो हमने प्यार मोहब्बत से उनको समझा के वापस भेज दिया और गांव वाले भी ऐस व्यस्त हो गए थे। उसके बाद करीबन 50-60 आदमी फिर आया, उनके साथ महिलाएं भी आई और कुछ उनकी गाड़ियों में हथियार भी है, और वो अभद्रता से हमने रोकने की कोशिश की दोबारा भी, तो अभद्रता से वो लेडीजें पेश आई। तो आप जानते हो ग्रामीणों में अगर अभद्रता से पेश आएंगे तो ग्रामीण भी बाकी नहीं रखेंगे, क्योंकि हम बाहरी पार्टी को अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि देश विरोधी जो नारा लगाएगा उसको हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
3: उन्होंने कोई स्कूल सुधारने के लिए नहीं आ रहे, वो ओनली अपनी जड़ें जमाने के लिए आ रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं, और उनका कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे यहाँ पर स्कूल के लिए फंड जारी हो चुका है, बस कुछ ही दिनों में वो धरातल पर भी उतर जाएगा। हमने सीजीपी के विरोध इसलिए किया है कि वो देश विरोधी पार्टी है, और इस देश विरोधी पार्टी को हम हमारे गाँव में घुसने नहीं देंगे। उसकी ये उसको बाहर से फंडिंग होती है, और हम देश के साथ गद्दारी किसी भी समझौता नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसका विरोध किया है। हमने कई बार उनके कार्यकर्ता आए, उनको प्यार से समझा के भेजा भी है, फिर उसके बाद में उन्होंने टीम बना के कम से कम 50-80 लोग उन्होंने टीम बना के हमारे गांव में घुसने का प्रयास किया। हमने उनका विरोध किया, प्यार मोहब्बत से समझाए उन्होंने, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। उसके बावजूद भी आके जबरदस्ती हमारे से हाथापाई की और धक्का मुक्की की, उन्होंने लेडीज़ों को आगे किया, उनकी जो कार्य थी उनमें हथियार भी थे, और उन्होंने धक्का मुक्की के उपरांत उनके कांच के शीशे फूटे हैं। उन्होंने जबरदस्ती हमारे ग्रामीणों पे झूठा आरोप लगाया है कि हमारे गाड़ियों के शीशे फूट गए।
1: और आइए अब सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी शरद का, जो उस रामपुरा कंवरपुरा गांव में पहुंच चुके हैं जहां ये पूरा फसाद हुआ। शरद, सवाल ये उठता है कि अगर ग्रामीणों ने हाथापाई की, इसकी पूरी जानकारी कि वहां सीजेपी आने वाली थी, ये वहां के प्रशासन को रही होगी, पुलिस को भी रहेगी, तो वहां पर कोई जिम्मेदार व्यक्ति क्यों नहीं था कि फसाद ना हो?
4: ये सवाल आप पूछ रही हैं, वही सवाल हम पूछ रहे हैं राजस्थान सरकार से। देखिए, ये स्कूल है, स्कूल दिखाना चाहूंगा आपको, और इस स्कूल पर लिखा हुआ है श्री आशुतोष राका जी के नाम खुला पत्र आलोचना से आगे सहभागिता और योगदान के लिए। ये एक दिन पहले ये पोस्टर लग गया था, इसलिए आपको पता होगा कि यहाँ पर विवाद होने जा रहा है अंग्रेजी और हिंदी में। मैं स्कूल में प्रवेश नहीं कर रहा हूँ जो गाइडलाइंस है उसके नियमों का, लेकिन मैं अपने कहूंगा कि एक बार स्कूल के बाहर से स्कूल की स्थिति दिखाएं। देखिए, भूसे वाले इस तबेले को देखिए और जो स्कूल चल रहे हैं इसको देखिए। ये स्कूल यहाँ पर चल रहा है पिछले काफी दिनों से, और ये स्कूल इसलिए चल रहा है कि जो स्कूल की बिल्डिंग थी वो ध्वस्त हो गई थी, और ये बात लगातार मीडिया में आ रही थी गांव वालों के आंदोलन की वजह से जो ध्वस्त हो रहा था।
5: क्या आपको अंदर जाने दिया जाएगा या फिर यहाँ पर भी लागू होगा राजस्थान सरकार का वो आदेश जिसमें अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, कोई मीडिया वाला अलाउड नहीं है, अंदर नहीं जा सकते, स्थिति नहीं दिखा सकते?
4: देखिए, मैं कोशिश करता हूँ एक बार, जब आप कह रही हैं तो, कि क्या पता आने जाने दिया जाएगा नहीं दिया जाए।
6: रिक्वेस्ट सर, प्लीज।
4: तो हम अलाउ नहीं दिखाना चाहते हैं केवल।
6: सर सर सर अलाउ नहीं है सर, प्लीज।
4: तो देखिए, हम कानून का उल्लंघन भी नहीं करना चाहते हैं, मगर एक बार कहेंगे अपने कैमरामैन को दिखाएं कि ये
6: सर प्लीज
4: कर रहे हैं यहाँ पर, कि
6: अलाउड नहीं है सर।
4: ये स्थिति इतनी खराब है स्कूल की।
6: सर, मैं कुछ कहने के लिए
5: दिख रहा है तबेले जैसा स्कूल दिख रहा है, और यही वजह है कि शायद अब सरकार को लग रहा है कि वीडियोग्राफी अगर की जाएगी ऐसी जगहों की तो सच्चाई सामने आएगी। दिखाते रहिए और वहां से लोगों से पूछते रहिए कि क्या है स्कूल की स्थिति वास्तविक।
7: पार्टी के जो असामाजिक तत्व हैं इनको लेकर विरोध है।
4: देखिए, आप जब स्कूल इतनी खराब स्थिति में है तो फिर आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं?
7: हमने एमएलए साहब को, जो हमारे यहाँ के क्षेत्रीय एमएलए हैं डॉक्टर कैलाश जी वर्मा, उनको हमने ज्ञापन दे दिया था। उन्होंने 12 लाख रुपए दो कक्षों के लिए स्वीकृत राशि भी पास कर
4: वाले यही दिखाने ही तो आ रहे थे, क्या विरोध क्या हो गया?
7: नहीं नहीं, विरोध हम उनका बहिष्कार करते हैं सीजेपी वालों को, क्योंकि उन्होंने अभी जंतर मंतर पे जो श्री राम हमारे जो आराध्य हैं हिंदू समाज है उनको इतनी गालियां दी।
4: तो पीटोगे थोड़े ही आप,
7: पीट रहा कौन है
4: साहब? वीडियो में दिखा,
7: वीडियो में उनके ही आदमी, हमारे कोई आदमी नहीं है।
4: मतलब खुद से पीट रहे हैं दूसरे को?
7: वो खुद ही पीट रहे हैं, हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, ताकि क्योंकि हमने उनका बहिष्कार कर दिया, हम उनको घुसने। आप
4: ऐसा का तरीका ठीक है?
7: आप ऐसे सोचो, आपके घर में अगर कोई जबरन से घुसेगा तो आप घुसने दोगे क्या? मेरे को तो ये बताओ आप, पहली बात आप घुसने दोगे क्या?
4: जबरन ही तो आ रहे थे।
7: हम एक बार मना कर दिए कि भैया यहाँ पे आपका सीजेपी का कोई रोल नहीं है, आप
4: भगवान हो मना कर दे, गांव का मालिक हो, कोई आ तो सकता है?
7: पूरे गांव के लोग बाग गांव के मालिक ही है, और कौन है? पूरे
4: गांव के लोग, कोई नहीं आएगा तो कोई नहीं आएगा।
7: हम यहाँ पे अनशन वनशन नहीं करने देंगे, वो यहाँ पे धरना बैठा के संतर मंत्र की जैसे यहाँ पे वो करेंगे तो हम करेंगे।
4: क्या स्कूल की स्थिति ठीक है आपको लग रही है?
7: स्कूल की स्थिति सुधरेगी, हमारे जो ये लोकल एमएलए हैं, जो क्षेत्रीय एमएलए हैं, उसने आश्वासन दे दिया 12 लाख रुपए पास कर दिए तो बन जाएगी स्कूल। आचार संहिता में स्कूल थोड़ी बनेगी, टेंडर तो पास होगा।
4: संहिता तो कल लगी है भाई साहब,
7: तो परसों के दिन ही पैसे पास हुए हैं।
4: तो ये स्थिति है,
7: आप उनका समर्थन मत कीजिए, आप उनका समर्थन,
4: हम हिंसा का समर्थन नहीं कर रहा,
7: हम हिंसा कोई नहीं किया यहाँ पे, हिंसा हिंसा वो ही करते हैं।
4: कुछ भी लोग पीटे जा रहे थे,
7: अभी देश में अराजकता फैला रहे हैं, कोकरो जनता पार्टी फैला रही है, अभी आपने देखा नहीं क्या? जो श्री राम को नहीं बख्शीश करेंगे वो हमारे को कहाँ से बख्शीश करेंगे?
4: लेकिन
7: आप उनका समर्थन मत कीजिए, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है।
4: अरे किसी, हम हिंसा का समर्थन मत कीजिए, लेकिन एक दिखाते रहेंगे, देश की स्थिति को दिखाते रहेंगे, एक बार कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाते रहिए कि किस तरह के यहाँ पर हालात हैं, जहाँ पर ये स्थिति बनी हुई जिसकी वजह से विरोध चल रहा है। कुछ और ग्रामीण लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। आप इधर आइए, आप ये बताइए कि ये स्कूल की स्थिति ठीक है आप लोगों को?
8: नहीं सर, बिल्कुल भी हालत खराब है। आप जाके देखिए, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आप सरकार को दिखाइए कि कितनी जर्जर स्थिति हो रही है। कभी भी स्कूल की छत नीचे गिर सकती है सर।
4: जब सीजेपी के कार्यकर्ता दिखाना चाह रहे हैं तो फिर क्यों विरोध है?
8: सर हमारे फंड आ चुका था, उन्होंने फंड आने के बाद में, आज से पहले तो नहीं है, फंड आने के बाद में वो अपनी राजनीति चमकाने आ रहे थे, इसलिए हमने उसका विरोध किया है कि हम हमारे गांव में देश विरोधी पार्टी को नहीं घुसने देंगे।
4: देश विरोधी का सर्टिफिकेट कौन देता है?
8: देश विरोधी पार्टी, उन्होंने जंतर मंतर में, आपने नहीं देखा जंतर मंतर पे कैसे देश के विरोधी नारे लगाए उन्होंने, कैसे हमारे आराध्य राम प्रभु श्री राम को गालियां दी उन्होंने।
4: देश विरोधी होगा तो जेल में होगा ना कि बाहर जाएगा?
8: नहीं सर, आप जेल में होगा, एक्शन चल रहा है।
4: हिंसा का समर्थन कर रहे हैं?
8: हिंसा का समर्थन हम बिल्कुल भी नहीं करते ना किसी का। ठीक था, नहीं मारा किसी ने नहीं, आप बता दीजिए किसने मारा, बता
4: दीजिए अपने कैमरे पे कैद
8: सर, आप बता दीजिए, हाँ बता दीजिए, आप प्रूफ दीजिए, साक्षी दीजिए सर, उसके
4: तो दिखा रहे हैं आज,
8: दिखाइए सर, दिखाइए सर।
4: तो कौन थे वो जो लोग पीट रहे थे?
8: वो उन्हीं के आदमी थे पीछे, उन्होंने गांव की तरफ 3-4 आदमी करे, उन्हीं ने धक्का मुक्की करी है और उन्हीं की तरफ से धक्का मुक्की हुई है जिससे माहौल बिगड़ा है और उसके बाद में ही मतलब ये आक्रोश लोगों में गांव में पैदा हुआ है।
5: शरद, ये सारे लोग एक ही वर्जन क्यों दे रहे हैं? समझ नहीं आ रहा है कि उन्हीं के आदमी थे, उन्हीं को पीट रहे थे, उन्हीं ने ये ड्रामा किया है, ये सब एक ही भाषा कैसे बोल ले रहे हैं? क्योंकि आज तक के कैमरे पे कैद हुआ है कि बाकायदा सीजेपी के लोगों को खदेड़ा गया है, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, उन पर हमला किया गया है, उनको चोटें आई हैं जिसमें महिलाएं भी शामिल थी।
4: बिल्कुल, देखिए राजनीतिक रूप से मोटिवेटेड है, हम इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि, मगर गांव में देखिए गांव की राजनीति बिल्कुल ही अलग होती है शहरों की राजनीति से। सीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी चाहिए था कि गांव में अगर राजनीति उन्हें करनी है तो उन्हें कम से कम गांव के कुछ लोगों को अपने संपर्क में लेना चाहिए था, विश्वास में लेना चाहिए था। आप अगर मीडिया के सहारे चाहते हैं कि लड़ाई लड़े तो मीडिया के सहारे लड़ाई लड़ना आसान नहीं है। आप, उन्होंने पहले मीडिया को कहा कि आप हमारे साथ चलिए, हम स्कूल दिखाएंगे, गाँव दिखाएंगे, ये इन लोगों का आक्रोश है, आप लोगों का।
9: हम लोगों को पहले उन्होंने सूचित कर दिया कि हम आ रहे हैं विरोध करने, तो मीडिया का सारा क्यों ले रहे हैं? अगर विरोध करना है तो उनको खुद को करो ना, आके यहाँ पे हमारा साथ दो, हमारा यहाँ आके।
4: बिल्कुल, हिंसा के स्तर पे उनका विरोध करते हैं। गांव का नजारा आप देखते जाइए, गांव के महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सब एक ही भाषा में बोल रहे हैं। मगर ये क्यों बोल रहे हैं हम आपको बता रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि पंचायत का चुनाव हो रहा है, पंचायत के चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है और जिसकी वजह से यहाँ स्थिति पर ये है कि आपस में लोग टकराव की स्थिति बनी हुई है। ये बहुत सारे महिलाएं, उनसे भी बातचीत करते हैं, इनके बच्चे तो जाते होंगे स्कूल में। आप लोग यहीं रहते हैं गांव में?
10: गांव में ही रहवा सर।
4: तो गांव के स्कूल की स्थिति आप देख रहे हैं?
10: देख रहे थे, वह टूट रही चने पड़ रही चने,
4: तो इसको तो बननी चाहिए।
10: बहुंडी खोल मिला बाड़ा में
4: खोल रखा है
10: अंडा बनावला जितना उंडी फड्डो।
4: और कुछ लोग आ रहे तो गांव वालों ने आज मारा पीटा है, आपको लगता
10: मैं तो
4: है
10: कौन देखी मारा पीटा कौन कर रहा मैं तो छुपी
4: हुई। बच्चे डरते नहीं है, बच्चे डरते पढ़ने जाने से डरते नहीं है तबेले में?
10: तबेले में डर चाहे काय करे बहन जब बड़ा हो
4: गांव का मंदिर है। ये स्कूल जो पुराना है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए ये रस्सी लगाकर स्कूल को पैक किया गया, इसलिए ये कभी भी ध्वस्त हो सकता है। हम सब स्वच्छ भारत एक ही सपना भविष्य हो अपना ये सब लिखा हुआ है और ये राजकीय विद्यालय रामपुरा है। ये जो है आप देख रहे हैं ये रस्सी है यहाँ पर और इस रस्सी के जरिए यहाँ पर से रोका गया है। ये कि बिल्कुल अंदर से दिखाइए एक बार, ये जर्जर हो चुकी है पूरी बिल्डिंग, जिसकी वजह से स्कूल को बंद करके तबेले में शिफ्ट किया गया। इनका कहना था कि हमने दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया था, वो 3 किलोमीटर दूर था। गांव वालों ने कहा कि हमारे गांव में व्यवस्था कीजिए और उन्होंने ये पोस्टर भी लगा रखा है सीजेपी के कार्यकर्ताओं से आने से पहले। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जयपुर यहाँ से बगरू में 85 लाख रुपए के ये कामकाज हमने कराए हैं। विधायक बीजेपी ने इस जीर्ण शीर्ण स्कूल पे ऊपर पोस्टर लगा रखा है। तो आप ये स्थिति है यहाँ पर देखिए, जहाँ पर गांव वाले पूरी तरह से एकजुट हो गए हैं। उनका कहना है कि हमने कोई मारपीट नहीं की थी और बीच बचाव किया है, लेकिन देखिए सच्चाई यही है कि उन्हें गांव के रास्ते में रोका गया है। ये गांव का इधर रास्ता है, उसी रास्ते पर ट्रैक्टर लगा दिया गया था। अब वो सुबह आठ बजे आए उन्होंने गांव वालों ने भगा दिया, उसके बावजूद वो वापस आए बड़ी संख्या में अपने साथ कार्यकर्ताओं को लेकर। जब टकराव की स्थिति थी तो हमारा एक ही कहना है कि सरकार कहां थी, सरकार को सोचना चाहिए था कि अगर इस तरह से टकराव की स्थिति है तो पुलिस का बंदोबस्त किया जाए। कुल मिलाकर हम इसे सरकार का फेल्योर मानते हैं कि यहाँ पर इस तरह से हिंसक घटना हुई। गांव के पूरे लोग एकजुट है कहने के लिए। जी क्या कहना चाहते हैं
11: इन लेडीज से भी पूछो सर, ये भी यहाँ पर मौजूद थी।
4: हाँ।
11: पूरी घटनाक्रम पर ये भी थी, वो देखो वो चले गए।
4: अरे घटनाक्रम तो सब आप लोग एक हो गए हो कि हमने कुछ किया ही नहीं आपस में।
11: सर हमने क्या क्या कर दिया आप इसमें बताओ,
4: कैमरे पे कैद हुआ है भाई साहब मारपीट करते हुए।
11: सर मारपीट हमने नहीं की थी,
4: मैं भी गांव का हूं, मैं जानता हूं गांव की राजनीति कैसे होती, कैसे एकजुट होते हैं।
11: सर जिंदगी गांव में गुजार रहा हूं। वो बात सही है, हमने एकजुट कुछ नहीं होता। हम तो आके उनको वैसे बोले हम आपका बहिष्कार करते हैं। क्यों करते हो? कि आपने श्री राम को गाली बकी है, आपने दिल्ली पर कौन सा कांड किया है, कौन से आपने गंदे गंदे वर्ड बोले थे, इसलिए बस वो कोई बदतमीजी कोई ने बात नहीं की। हाँ फिर उन्होंने आखिरी में उन्होंने वो कांड कर लिया, नहीं कोई ऐसे बात ही नहीं हुई हमारी,
4: कांड कर लिया। देखिए ये इस तरह की बातें यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए गांव की मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमने पूरी जिंदगी अपने गांव में गुजारी है खेती करते हुए। गांव की राजनीति को मैं समझता हूँ कि गांव का साई किस तरह से काम करता है, शहरों का आंदोलन किस तरह से काम करता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने अरुणा राय के RTI आंदोलन को भी देखा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का। इनको सबसे पहले अगर आंदोलन करना था तो गांव वालों को अपने पक्ष में बातचीत करनी चाहिए थी, बातचीत करके आना चाहिए था। उनको दो चार लोगों को भी अपने संपर्क में लेना चाहिए था। ये मीडिया को लेकर आए और मीडिया के संपर्क में इन्होंने चाहा कि मीडिया के जरिए हम छा जाएं। तो गांव वालों को इस बात को गलत माना, कहा कि आपको अगर आना था स्कूल की ऑडिट करना चाहते हैं तो चुपचाप आ सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। जयपुर से इतनी बड़ी संख्या में मीडिया वालों को लेकर क्यों आ रहे हैं? यानी आप तमाशा करने आ रहे हैं, ना कि हमारे स्कूल की हकीकत को दिखाने आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बार बार कहूंगा मैं कि हिंसा की जगह कोई नहीं है, हिंसा इस तरह से नहीं की जा सकती है। अब ये सारे के सारे लोग एकजुट हो गए हैं कि हमने हिंसा की ही नहीं, आपस में मारपीट कर लिया उन्होंने, तो फिर इनकी बातों से इनसे कहने का कोई मतलब नहीं है। एक ही बात पे जीत पे अड़े हुए हैं कि हमने कोई हिंसा नहीं की, उन्होंने आपस में मारपीट कर ली। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो आज तक के कैमरे पर कैद हुआ है, आज तक ही एक यहाँ पर चैनल था जो उस वक्त मौजूद था और आज तक के कैमरे पर जो कैद हुआ है उस पर कोई कार्रवाई इसलिए नहीं होगी, मुझे संदेह है, क्योंकि पंचायत के चुनाव के होने जा रहे हैं और पंचायत के चुनाव में कोई भी सरकार अपने ग्रामीणों को नाराज नहीं करना चाहेगी। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि CJP भले ही अल्टीमेटम दे रही हो कि 48 घंटे के अंदर कार्रवाई करो नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि कोई कार्रवाई हो पाएगी। हिंसा की कोई जगह लोकतंत्र में होनी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं गांव वालों से ज्यादा सरकार के मथे मर रहा हूं। जी
1: शरद, क्या यह मुद्दा आपको लगता है कि विधानसभा तक पहुंचेगा, क्योंकि शिक्षा का मुद्दा, जर्जर स्कूलों का मुद्दा तो कांग्रेस भी उठा रही है।
4: देखिए कांग्रेस के पास नैतिक साहस नहीं है कहने का। ये रातों रात आपको लगता है कि ये रातों रात जर्जर हो गई है? 2.5 साल पहले कांग्रेस ही थी यहाँ पर, और जो आंकड़े जारी हुए हैं उसके अनुसार कांग्रेस के 5 साल में जो 2,700 करोड़ जारी हुए थे, अब ये कहना है भजनलाल शर्मा की सरकार को कि हमने 2.5 साल में ही 500 करोड़ उनसे ज्यादा जारी कर दिए हैं, और इसलिए कांग्रेस के पास वो नैतिक साहस नहीं है इसके मुद्दे को लेकर आंदोलन करे, क्योंकि उनके राज में भी स्कूलों में काम नहीं हुए। ये सारी बिल्डिंगें जर्जर ढाई साल में नहीं हुई है, यहाँ कोई अच्छी तरह से कोई बिल्डिंग बनाई गई।
5: रोकेंगे आपको इस बीच, वाई सहयोगी वहां मौके पर मौजूद थे जब सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
12: जयपुर के रामपुरा में सीजेपी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता आशुतोष सुलांका यहां पर गांव में स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं, लेकिन ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ आशुतोष और रांका सहित पूरी टीम यहां पर मौके पर पहुंची है, और दोनों तरफ यहां पर आमने सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहां पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, लोग इनको भगा रहे हैं, आशुतोष आगे के साथ महिला कार्यकर्ता भी है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में, और इनको यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष राके के साथ ये मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी, गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं। ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है, और रामपुरा में यहाँ पर ये देखिए लात घूसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक एक की पिटाई कर रहे हैं, यहाँ पर गांव वाले पीछे भाग रहे हैं।
1: तो ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिस वक्त वो पल जब हमला हुआ, पहले धक्का मुक्की और उसके बाद लात घूसे सब चले, यहां तक कि शीशे गाड़ियों के तोड़ दिए गए, महिलाओं जो कार्यकर्ता वहां पे थी उन्हें भी धक्का मुक्की की गई, उनके साथ आरोप लगा रहे हैं आशुतोष रंका। तो आइए सुनिए कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए।
13: कांग्रेस के लोग तरह तरह के मुकोटे पहन करके गाँव में जाकर के शांति भंग करना चाहते हैं, जनता उनको जवाब दे रही है।
14: सीजेपी की नहीं थी आपके कहने का मतलब?
13: वो मुखौटा कांग्रेस के लोगों ने सीजेपी का पहन रखा है और जनता उनको जवाब दे रही है।
14: बीटी में सीजेपी कांग्रेस की कहने का मतलब ये है?
13: अजी कांग्रेस को कोई पूछ नहीं रहा तो दूसरे का मुखौटा पहन करके जा रहे हैं।
5: रुके यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: 15 अगस्त को सोनिया गांधी पर वंदे मातरम के अपमान के आरोपों की तपिश अभी कम भी नहीं हुई थी कि गोवा से तस्वीर आ गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में वंदे मातरम के सिर्फ 2 पद गाए गए। विवाद बढ़ा तो कांग्रेस ने कल अपनी कार्य समिति में आधिकारिक रूप से ये तय कर दिया कि वो 2 पद ही गाएगी।
1: वी आर वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट दैट आवर कांग्रेस पार्टी वर्कर्स विल डू दैट ओनली। दिस इज आवर डिसीजन। फर्स्ट 2 स्टैंड्स था।
2: 28 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उस प्रस्ताव में जब पारित किया गया CWC की बैठक में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, राजगोपालाचारी, गोविंद वल्लभ पंत और अन्य नेता, आचार्य नरेंद्र देव मौजूद थे और रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह से ही वो प्रस्ताव पारित किया गया था और आज उस पर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष ने उस प्रस्ताव के कुछ अंश भी पढ़े और इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई सवाल नहीं है।
0: इसी साल फरवरी में सरकार ने आधिकारिक मौकों पर वंदे मातरम के 6 पद वाले संस्करण को बजाना या गाना अनिवार्य कर दिया था, जिसकी कुल अवधि 3 मिनट और 10 सेकंड की है। संसद के मानसून सत्र में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम को मंजूरी दी गई, जिसमें वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर बाधा डालने या अपमान को एक दंडनीय अपराध माना गया है। इसमें पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अपराध दोबारा दोहराने पर कम से कम 1 साल की अनिवार्य जेल होगी। क्या कांग्रेस संसद से पास कानून को नहीं मानेगी?
3: कांग्रेस ने यह भी साबित किया है कि वो अपने को संविधान से ऊपर, अपने को देश से ऊपर और अपने पार्टी के प्रस्ताव को संविधान के कानून से ऊपर मानती है और उसके साथ अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर।
0: जी हाँ, बड़ा सवाल यही है कि देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी का रुख संसद से पास कानून से अलग क्यों है? दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक की रिपोर्ट।

0: मिडिल ईस्ट तनाव के बाद तेल कंपनियों ने मई में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए थे। जून के बाद अमेरिका और ईरान में तनाव घटने से कच्चे तेल की कीमतों में जब कमी आई तो फ्यूल प्राइस कम होने पर भरोसा बढ़ गया था, लेकिन खाड़ी में तनाव फिर बढ़ने से ईंधन की कीमतों में कमी की उम्मीद टूटने लगी है। दरअसल इस वक्त दुनिया भर में चल रहे तनाव का असर भारत के ईंधन और खाने पीने के सामानों पर सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। अमेरिका ईरान के बीच नए समझौते की उम्मीदें कमजोर पड़ने से कच्चे तेल में तेजी आ रही है। इससे ब्रेंट क्रूड $91 प्रति बैरल के ऊपर और WTI क्रूड करीब $85 प्रति बैरल पर चल रहा है। आशंका है क्रूड जल्द ही $100 प्रति बैरल के पास पहुंच सकता है। तेल की कीमतों में ये तेजी ऐसे समय में आई है जब भारत में पेट्रोल और डीजल सस्ता होने की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन हालात फिलहाल राहत वाले नहीं दिख रहे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बनी अनिश्चितता और ईरान अमेरिका के बीच बढ़ी दूरी ने एनर्जी मार्केट की बेचैनी बढ़ा दी है। भारत के लिए हालात ज्यादा गंभीर हैं, क्योंकि देश अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। महंगे कच्चे तेल से ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ सकती है और लंबे समय तक ऊंचे दाम रहने पर ईंधन कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। तेल के साथ साथ खाने की थाली से जुड़ी एक और चिंता भी सिर उठाने लगी है। गेहूं की कीमतों में तेजी ने आटा और ब्रेड जैसे जरूरी सामान को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। दुनिया के बड़े गेहूं निर्यातक रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव ने काला सागर क्षेत्र में सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेकर भारतीय मंडियों तक दिखाई देने लगा है। वैश्विक बाजार में गेहूं करीब $6.7 प्रति बुशेल के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं देश की प्रमुख मंडियों में एक महीने में गेहूं के भाव करीब 4% तक बढ़ गए हैं। जाहिर है गेहूं की बढ़ती कीमतें आटा, ब्रेड और दूसरे खाद्य उत्पादों की लागत बढ़ा सकती हैं। लेकिन रसोई की चिंता यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि प्याज भी लोगों की जेब पर दबाव बढ़ाने लगा है और प्याज का औसत खुदरा बाजार ₹37.20 प्रति किलो पर पहुंच गया है, जबकि एक महीने पहले कीमत ₹34.53 प्रति किलो थी और एक साल पहले प्याज का भाव ₹26.86 प्रति किलो था। इस तेजी की वजह खरीफ प्याज की आवक में देरी है, जिससे बाजार पर दबाव बढ़ गया है। तेल से लेकर गेहूं और प्याज तक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पैदा हुआ तनाव भारतीय ग्राहकों की जेब तक पहुंच रहा है। ऐसे में सबकी नजर दो मोर्चों पर टिकी है, जिसमें पहला है कि मिडिल ईस्ट में तेल की दिशा क्या रहती है और काला सागर क्षेत्र में सप्लाई का संकट कितना गहराता है, क्योंकि इन दोनों का असर सीधे आपकी गाड़ी के खर्च और रसोई के बजट पर पड़ सकता है। आदित्य के राणा आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

जयपुर में स्कूल का दौरा करने गए सीजेपी के आशुतोष रंका को गांव वालों ने दौड़ाया, गाड़ियों के शीशे तोड़े, कई कार्यकर्ताओं को लगी चोट। सीजेपी का आरोप, बीजेपी के लोगों ने किया हमला। जापान से लखनऊ आए स्कूली बच्चों से मिले सीएम योगी, जापानी भाषा में की बात, मुख्यमंत्री को छात्रों ने सुनाए गाने, योगी ने विदेशी बच्चों के साथ सेल्फी खिंचाई। परीक्षाएं रद्द करने के सीएम सोरेन के फैसले पर अदालत की रोक के बाद झारखंड में फिर उठी आंदोलन की चिंगारी, जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मोर्चा करेगा पुतला दहन, कहा कोर्ट में सरकार का पक्ष कमजोर। वंदे मातरम पर उत्तर से दक्षिण तक राजनीतिक संग्राम, केरलम विवाद के बाद बीजेपी का प्रदेश भर में कार्यक्रम, शर्मिला टैगोर ने बताई दो छंदों की मजहबी मजबूरी, तो कंगना बोली धर्म के चश्मे से ना देखें। रात से पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे गृह मंत्री अमित शाह बांग्लादेश बॉर्डर का करेंगे मुआयना, सीमा सुरक्षा और बॉर्डर मैनेजमेंट पर फोकस, कल अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। और 12 बजे 12 रिपोर्टर में पहली रिपोर्ट जयपुर से। जयपुर के रामपुरा कवरपुरा गांव में स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचती है कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और वहां पर क्या होता है, वहां पर ग्रामीण उनको खदेड़ देते हैं, ग्रामीण उनकी पिटाई कर देते हैं। इस दौरान सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष शांका पर हमला किया गया, गांव वालों ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और इसके अलावा कई कार्यकर्ताओं को चोट भी आई है। रामपुरा कवरपुरा गांव के सरकारी स्कूल की अव्यवस्थाओं को लेकर सीजेपी कार्यकर्ता दौरा करने पहुंचे थे।
1: रामपुरा कंवरपुरा में ये तबेले में चल रहा स्कूल है जिसके बदहाली को दिखाने के लिए सीजेपी के कार्यकर्ता सुबह 8 बजे आए थे, जहां पर ग्रामीणों ने भगा दिया। वापस पुनः आशुतोष राखा की अगुवाई में कार्यकर्ता फिर आए और उसके बाद यहां पर मारपीट शुरू हुई। मारपीट के बाद जिस तरह का माहौल बना वहां पर, कहा जा सकता है ये सरकार का पूरी तरह से फेल्योर है, पुलिस का फेल्योर है। ग्रामीणों ने धमकी दी थी कि आओगे तो पीटेंगे, उसके बावजूद पुलिस का बंदोबस्त यहां नहीं रहा। जिस तरह से ग्रामीणों में और सीजेपी के कार्यकर्ताओं में हाथापाई हुई है, निश्चित रूप से शर्मनाक है। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाती है, मगर इसके बावजूद यहां पर यह कहा जा सकता है कि सरकार के फेल्योर की वजह से इस तरह की स्थिति बनी, जहां पर दोनों ही पक्ष पहले ही कह चुके थे टकराव की बात, उसके बावजूद यहां पर सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। जहां तक स्कूल की बात है, सालों से स्कूल ये तबेले में चल रहा है, क्योंकि जिस स्कूल में, जिस बिल्डिंग में ये स्कूल चल रहा था, वो बिल्डिंग खराब हो चुकी है, ध्वस्त होने के कगार पर है, पैसे पास हो चुके हैं, मगर इसके बावजूद वर्क ऑर्डर जारी नहीं हो रहा है।
0: और 12 बजे वाला रिपोर्टर में अब एक बड़ी खबर की बात करते हैं। बड़ी खबर यह है कि संसद मार्ग थाने राहुल गांधी इस वक्त पहुंचे हैं। पैलेटगंज मामले में क्या अपडेट, क्या जांच हुई है, उसको जानने के लिए राहुल गांधी इस वक्त संसद मार्ग थाने पहुंचे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये देखिए, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पहुंचते हैं। पैलेटगंज मामले को लेकर क्या जांच हुई, क्या पता चला है अभी तक, जांच कहां तक बढ़ी है, ये जानने के लिए पहुंचे अरविंद ओझा, जुड़े हुए हमारे सहयोगी हमारे साथ। अरविंद, क्या जानकारी मिल पा रही है?
2: देखिए, राहुल गांधी अपने घर से निकले, सबसे पहले कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन गए, एक मिनट तक वहां रुके, उसके बाद कनॉट प्लेस थाने से पहुंचे हैं अभी अभी पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन। यहां पर वो जो डीसीपी हैं इलाके के, सचिन शर्मा डीसीपी नई दिल्ली, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी जो पैलेट गन चला था, जिस तरह का आरोप लगाया था विपक्ष ने, उसके बारे में डीसीपी नई दिल्ली से जानकारी लेने पहुंचे हैं। अभी शुरुआती जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राहुल गांधी शुरू से ही इस जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ था और 20 जुलाई को जिस तरह से पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी, उसके बाद पुलिस ने जो टीयर गैस की सेल छोड़ी थी, लाठी चार्ज किया था, उसके बाद तमाम तरह के आरोप लगे, उसको लेकर लगातार राहुल गांधी पार्लियामेंट में भी मुखर थे और सड़क पर भी मुखर है। तो अब अभी अभी कुछ देर पहले ही वो संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं और डीसीपी नई दिल्ली सचिन शर्मा उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जी,
0: तो यानी ये बड़ा अपडेट है यहाँ पर कि राहुल गांधी इस मामले को छोड़ने वाले नहीं है। अरविंद, ये साफ पता चलता है कि इस मुद्दे को पकड़ के रखना चाहते हैं और सरकार का घेराव भी यहाँ पर करना चाहते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन इस पर हम बात करेंगे। अरविंद एक बात और बताइए, ये बहुत तय हो चुका है कि राहुल गांधी अभी इस मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे और वो चाहते हैं कि सरकार को चौतरफा तरफ से घेरा जाए इस मुद्दे पर?
2: बिल्कुल, देखिए संसद भवन के अंदर क्या कुछ हुआ वो तो सभी ने देखा। लगातार राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी वो सरकार को घेर रही थी, अमित शाह के बयान की मांग कर रही थी, हालांकि अमित शाह बयान देने पर भी राजी थे। तो संसद के अंदर कुल मिलाकर घमासान हुआ, लेकिन अब सड़क पर भी ये घमासान देखने को नजर आ रहा है। अभी अभी राहुल गांधी पहुंचे हैं, डीसीपी से क्या उनकी बातचीत हुई उसकी डिटेल्स तो कुछ देर बाद ही सामने आएगी, लेकिन जो सूत्र है वो यही बता रहा है कि मुद्दा यही है और इस वजह से राहुल गांधी संसद भवन पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। फिलहाल वो आप डीसीपी से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन दिलचस्प यह है कि इसके पहले वो कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन पहुंचे थे।
0: जब भी राहुल गांधी ने इस तरह का कोई मुद्दा उठाया है तो उन्होंने मीडिया से भी बात की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, तो ये भी हम मान सकते हैं कि जब वो संसद मार्ग थाने से बाहर निकले तो मीडिया से भी मुखातिब हों।
2: बिल्कुल, जाहिर तौर पर बहुत मुमकिन है कि वो मुखातिब हो, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर शुरू से ही काफी अग्रेसिव नजर आ रही है। आपको याद होगा मैं खुद भी वहां पर था कि किस तरह से प्रधानमंत्री आवास के बैक साइड में गेट पर ही राहुल गांधी बैठ गए थे जब जंतर मंतर पर बीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा था। और अभी संसद भवन संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के बाद जब राहुल गांधी बाहर आएंगे तभी पूरी जानकारी सामने आएगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है, वो जानकारी हमने आपको दी है। डीसीपी नई दिल्ली से भी आज तक की टीम बात करेगी, जब राहुल गांधी आप वहां से निकलेंगे तब।
0: अच्छा, एक एक तस्वीर को अगर जो अभी वीडियो चल रहा है जिसमें वो संसद मार्ग थाने में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस तस्वीर को ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के साथ कुछ युवा भी हैं और शायद अधिवक्ता भी हैं जो अंदर जाकर बात करेंगे, ऐसा कुछ दिख रहा है तस्वीरों में।
2: बिल्कुल, कुछ लोग हैं उनके साथ और कुछ वकील भी हैं पूरी तैयारी के साथ।
0: अच्छा, थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं अरविंद। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। मौसमी, संसद मार्ग थाने राहुल गांधी पहुंचे हैं, पैलेट गन मामले में जांच कहां तक पहुंची है ये जानने के लिए आपके पास और क्या जानकारी आ रही है?
3: देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक साहिल लोचप, जो राहुल गांधी के साथ, आपको याद हो कि कुछ ही हफ्तों पहले साहिल लोचप जो जिनके पैलेट गन लगी थी और आंख में जो पैलेट गन का छर्रा लगने से उनकी आंख में काफी गंभीर चोट आई थी, राहुल गांधी ने पूरा उनका दिखाया था कि पूरे शरीर में पैलेट गन के निशान, और एक प्रेस वार्ता भी 10 जनपद पे की थी, उनको लेके पहुंचे थे वहां पे पार्लियामेंट स्ट्रीट। बताया जा रहा है वो पड़ताल करना चाह रहे थे, पूछना चाह रहे थे कि पूरे इस पैलेट गन में जो मामला है, जो जांच पड़ताल है वो कहां तक पहुंची है। इस तरह की जानकारी हम लोग को मिल रही है। ये बताया गया कि राहुल गांधी एकाएक पार्लियामेंट स्ट्रीट पहुंच जाते हैं और वहां पे लगातार आप देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी पैलेट गन को लेके स्पेसिफिक मसला मुद्दा उठाए हुए हैं और लगातार गृह मंत्री अमित शाह को घेरने का काम कर रहे हैं, तो एक तरीके से अपने आक्रामक तेवर को और आगे बढ़ाते हुए वो खुद पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। लगातार पुलिस की जो जो का जो लाठीचार्ज हुआ उसमें जो तरीका इस्तेमाल किया गया उसको लेके उन्होंने दिल्ली पुलिस को भी निशाने पर लिया है और लगातार उसके जरिए गृह मंत्री अमित शाह का उन्होंने इस्तीफा भी मांगा था और जवाब दो अमित शाह, ये लगातार संसद में ये नारे हम लोग ने सुने। अब साहिल लोचप जिनके साथ वो प्रेस वार्ता कर चुके हैं कि साहिल की आंख जा सकती है, एम्स ट्रॉमा सेंटर में साहिल भर्ती थे और एकाएक जब राहुल गांधी उनको अपने साथ लेके खड़े होके उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस की बर्बरता का ये पूरा एग्जाम्पल है, उदाहरण है जो साहिल के साथ हुआ। और यही वजह है कि आज आप देखिए कि राहुल गांधी जब अभी पुणे में उनकी छातों की गूंज होने वाली है, उससे एक दिन पहले साहिल लोचप जो एक युवा है और दिल्ली पुलिस में वो नौकरी के लिए लगातार प्रयासरत थे, दिल्ली के रहने वाले हैं, उनको लेके वो जाते हैं थाने। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि उनको कोई उनसे कोई आला अधिकारी की मुलाकात हुई है, अरविंद ओझा उस पर ज्यादा रोशनी डालेंगे, लेकिन अभी ये खबर बिल्कुल छन के आ ही रही है। और
0: बिल्कुल मौसमी, आप बने रहिए क्योंकि जो आपने जिस साहिल लोचप का जिक्र किया जरा वो तस्वीरों के जरिए समझा देते हैं। आप देखिए राहुल गांधी और राहुल गांधी के ठीक बगल में सफेद टी शर्ट में जो आप देख रहे हैं, जो काले रंग का चश्मा लगाए हैं, वही साहिल लोचप है जिनको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जैसा मौसमी जानकारी दे रही थी। मौसमी, ये तो हम बहुत स्पष्ट देख सकते हैं कि जहां बीजेपी की तरफ से वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस का घेराव किया जा रहा है, तो वहीं पर अब कांग्रेस की तरफ से भी बहुत तीखा हमला पैलेट गन मामले पर सरकार का किया जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह को घेरने के पूरी तरह से तैयार यहां पर कांग्रेस दिखाई दे रही है। देखिए वो तस्वीरें दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखिए 24 जुलाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब राहुल गांधी की तरफ से की गई थी, ये साहिल हैं जिनके शरीर पर पैलेट गन के निशान दिखाए जा रहे हैं, पैलेट गन की वजह से जो शरीर पर चोट लगी है, जो निशान बने हैं वो दिखाए जा रहे हैं। राहुल गांधी उनकी आग भी दिखाते हैं कि उनकी आग की रोशनी जाते जाते रह गई, देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे ये भी पता नहीं, लेकिन अभी आज की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, देखिए राहुल गांधी के बिल्कुल बाएं हाथ पर ठीक साथ में उनके साथ में साहिल लोचप चल रहे हैं चश्मा पहने हुए, उनकी आंख पर भी चोट लगी थी जैसा बताया जा रहा था, पैलेट गन के निशान थे। अरविंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, ये तो बहुत तय है कि राहुल गांधी पूरी तरह से घेराव करने के लिए तैयार हो चुके हैं गृहमंत्री अमित शाह का पैलेट गन मामले पर। अभी आपके पास और क्या जानकारी आ पा रही है, अंदर किस अधिकारी से मुलाकात हो रही है?
2: देखिए, जो पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन है यहाँ पर डीसीपी नई दिल्ली का ऑफिस भी है जहाँ डीसीपी नई दिल्ली बैठते हैं। डीसीपी नई दिल्ली सचिन शर्मा है जो 20 जुलाई को भी पूरी तरह से एक्टिव थे और जब से जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा है तब से लगातार वो एक्टिव थे, चाहे सीजेपी प्रोटेस्टर है उनसे बातचीत करना और सरकार के बीच पूरी तरह से मध्यस्थता का भी काम कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी सचिन शर्मा से मिल रहे हैं, नई दिल्ली इलाके के जो डीसीपी हैं, लेकिन ये सब कुछ अचानक से हुआ है, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। कुछ लोग इर्द गिर्द जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी सबसे पहले पहुंचे हैं कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन, क्योंकि बहुत मुमकिन है, ऐसा हो सकता है कि उनको ये जानकारी मिली हो कि कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में ही डीसीपी नई दिल्ली बैठते हैं। वहां एक मिनट तक वो रुके, जांच पड़ताल की, उसके बाद वहां से फिर वो सीधा पहुंचते हैं संसद मार्ग पुलिस स्टेशन। उनके साथ, जैसा कि मौसमी ने बताया कि एक विक्टिम साहिल वो भी उनके साथ है, कुछ वकील उनके साथ है, और फिर पहुंचे हैं वो डीसीपी नई दिल्ली के दफ्तर। और जाहिर सी बात है उनसे बातचीत करने की कोशिश है, जानकारी लेने की कोशिश है क्या कुछ डिटेल्स है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सारी डिटेल कमोबेश सुप्रीम कोर्ट में भी बता दी है। सब कुछ जो कुछ 20 जुलाई को हुआ, 20 जुलाई के पहले हुआ, ये सारी जानकारी दिल्ली पुलिस कई प्लेटफॉर्म पर बता चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में बता चुकी है हलफनामा दाखिल करके कि किस तरह से 20 जुलाई को सारी चीजें हुई थी, बैरिकेड तोड़े गए थे, एक नहीं बल्कि कई लेयर के बैरिकेड तोड़े गए थे, स्टोन पेल्टिंग हुई थी, टीयर गैस की सेल छोड़ी गई थी, पुलिस के लोग घायल हुए थे, कुछ प्रोटेस्टर भी घायल हुए थे, ये सारी डिटेल्स दिल्ली पुलिस ने दी है। लेकिन राहुल गांधी खासतौर से जो पेलेट गन है उसको लेकर लगातार उन्होंने मुद्दा बनाया हुआ है संसद के अंदर भी। अब संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं, डीसीपी से मुलाकात कर रहे हैं।
0: अरविंद एक बात बताइए, अरविंद ऐसे मामले आपने बखूबी बहुत अच्छे से देखे हैं, पैलेट गन वाले मामले को भी आप कवर कर रहे हैं, अधिकारियों से भी आप लगातार संपर्क में, बातचीत आपकी होती रही है कि इस मामले में जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, सरकार कोर्ट विपक्ष सबकी नजर इस मुद्दे पर है, तो ऐसे में इस मुलाकात से कांग्रेस की राहुल गांधी की क्या रणनीति और निष्कर्ष क्या निकल सकता है, ये जानना चाहती है जनता।
2: देखिए इस वक्त हर कोई ये खास तौर से जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद जितनी मेरी समझ है वो ये कि हर पॉलिटिकल पार्टी ये दिखाना चाहती है कि वो युवाओं के साथ है नंबर एक, और जिस तरह से आप जंतर मंतर पर चाहे आम आदमी पार्टी हो, भीम आर्मी हो, उसके बाद राहुल गांधी जंतर मंतर पर तो नहीं प्रोटेस्ट साइट पर गए थे, लेकिन उन्होंने एक अलग जंतर मंतर बनाया था प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर, और वहां पर काफी वहां पर जब वो बैठे थे धरने पर तो सुर्खियां भी बटोरी, अचानक से जो पूरा कैमरा था वो जंतर मंतर से शिफ्ट होकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर हो गया था। तो राहुल गांधी भी यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हर तमाम लगभग पॉलिटिकल पार्टियां यही दिखाने की कोशिश कर रही हैं, जिस तरह से जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद काफी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव हो गई थी अलग अलग,
0: और वो एक्टिवनेस अभी भी दिखाई दे रही है। और अब यही देखना है कि जब राहुल गांधी जब थाने से निकलते हैं अधिकारियों से क्या बात हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं, इसका इंतजार रहेगा और वो हम दिखाएंगे भी। शुक्रिया अभी अरविंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखिए यहां पर आपको ये बता दें कि 20 जुलाई की संसद मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई की सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एक पैनल गठित कर दिया है। अब इसमें 3 रिटायर्ड जज, 1 पूर्व डीजीपी और सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर शामिल हैं। कमेटी की जांच के दायरे में है क्या क्या, पूरी खबर बता रहे हैं आपको सृष्टि।
4: जंतर मंतर प्रोटेस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब एक हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में 5 मेंबर्स होंगे और इसके हेड होंगे सुप्रीम कोर्ट के ही एक पूर्व जज। यह कमेटी इस मामले में सभी पक्षों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की जांच करेगी, जैसे कि क्या पुलिस ने प्रोटेस्टर्स के खिलाफ अत्याधिक बल का प्रयोग किया, क्या प्रोटेस्टर्स ने पुलिस पे हमला किया, क्या पैलेट गन लाठी चार्ज का यूज हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सभी मुद्दों की जांच की जाएगी। कोर्ट ने कमेटी को कहा है कि वो पहली प्रायोरिटी पे उन केसेस की जांच करे जिनमें ये आरोप लगाए गए हैं कि महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की गई थी। इस मामले में अपनी पहली रिपोर्ट कमेटी को जल्द से जल्द सबमिट करने को कहा गया है। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ सृष्टि ओझा, दिल्ली आज तक।
0: और अब बात वंदे मातरम को लेकर नए विवाद की करते हैं। नया विवाद केरलम के त्रिवेंद्रम का है। अब आरोप यह है कि त्रिवेंद्रम के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में SFI ने वंदे मातरम को बीच में रुकवा दिया। SFI का कहना था कि केरलम में पूरा वंदे मातरम नहीं बजेगा। ये SFI की तरफ, ये देखिए, ये रुकवाते हुए कह दिया गया कि पूरा वंदे मातरम नहीं होगा, त्रिवेंद्रम में बीच में रुकवा दिया गया। अब इसको लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया।
5: सीईटी में हुई थी, सीईटी है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग त्रिवेंद्रम जो केरला की सबसे हाईली रैंक्ड इंजीनियरिंग कॉलेज है, और प्रोग्राम विकसित भारत की इनिशिएटिव एक विकसित भारत की इनिशिएटिव का एक प्रोग्राम थी यंग प्रोफेशनल्स की राउंड टेबल, और उस प्रोग्राम में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थी और कुछ स्कूल स्टूडेंट्स स्टेज में आके वंदे मातरम गा रही थी। और उस वक्त SFI जो CPIM की स्टूडेंट विंग है उनकी वर्कर्स आके प्रोटेस्ट शुरू की और वो स्टेज में आके ये कहा है कि आपको वंदे मातरम गाना है तो आप पहला दो स्टैंसा से वो गाइए, लेकिन पूरी तरह से वंदे मातरम नहीं गा सकती है। और उस दिन इन वंदे मातरम कहीं पे भी, कहीं गवर्नमेंट फंक्शंस में भी पूरी तरह से नहीं गाया, पहला फर्स्ट टू स्टैंसा से गाया था।
0: तो देश के अलग अलग हिस्से में वंदे मातरम विवाद की गूंज सुनाई दे रही है। अब दो अभिनेत्रियों के बयान भी आमने सामने हैं। एक तरफ है शर्मिला टैगोर, वंदे मातरम के कुछ हिस्सों को लेकर अपनी आपत्ति जता रही हैं, तो दूसरी तरफ कंगना रनौत हैं और उनके नजरिए पर वो सवाल खड़े कर रही हैं। शर्मिला टैगोर का कहना है कि भारत में कई धर्म और आस्थाओं को मानने वाले लोग रहते हैं, जो लोग एक ईश्वर में विश्वास करते हैं उनके लिए वंदे मातरम के उन हिस्सों को गाना मुश्किल हो सकता है जहां अलग अलग देवी देवताओं का उल्लेख आता है। लेकिन कंगना रनौत ने इस सोच को लेकर सवाल उठाया है। कंगना ने शर्मिला टैगोर से हिंदू मुस्लिम सोच से बाहर निकलने की अपील की है।
6: राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पे राजनीतिक विवाद के बाद अब कलाकारों के बीच भी बहस शुरू हो गई है। शर्मिला टैगोर ने वंदे मातरम पर अपनी राय रखते हुए बात कही कि किस तरह से भारत में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं जिनकी आस्था एक ही भगवान पे है, और वंदे मातरम के आगे की पंक्तियों में किस तरह से अलग अलग देवी देवताओं की चर्चा है, माँ काली माँ दुर्गा के बारे में कहा गया है, और कुछ समुदाय के लोग कुछ धर्मों को मानने वाले लोग असहज महसूस करेंगे। कंगना रनौत की नसीहत इसी बात पर शर्मिला टैगोर को मिली है। कंगना रनौत कह रही है कि हर बात पर हिंदू मुसलमान वाला नैरेटिव ना लाया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने शर्मिला टैगोर को यह तक कह दिया कि बंकिम चंद चट्टोपाध्याय ने जो लाइनें लिखी हैं वो देश के लोगों को उठाने के लिए, उनको अवेकन करने के लिए लिखी थी, और शब्दशः उसका मतलब निकालने के बजाय मेटाफर यानी कि उसके अंदर की जो भावना है फ्रीडम स्ट्रगल में लोगों को जगाने के लिए, उसको समझने की जरूरत है।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में जो अगली रिपोर्ट है वो उत्तर प्रदेश से यूपी जापान साझेदारी में आज एक नया चैप्टर जुड़ गया, उसके बारे में आपको बताएंगे। जापान के यामानासी से आए 14 स्कूली छात्रों के दल ने मोहनलालगंज स्थित अटल विद्यालय का दौरा किया। अब जापानी छात्रों के दल ने अटल विद्यालय के साथ अनुभव साझा किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने भी छात्रों से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया।
7: उत्तर प्रदेश में जेन अल्फा जापान से और जेन अल्फा उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के साथ एक साथ इंटरेक्शन होगा। इस दौरान जापान डेलीगेशन उत्तर प्रदेश के स्कूलों से सीखेगा कि किस तरीके से यहाँ पर स्टडी होती है, किस तरीके से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने स्कूलों का मैनेजमेंट कर रखा है, और इसी को लेकर जापान से आया हुआ बच्चों का डेलीगेशन इन जेन अल्फा का आपस में संपर्क भी करेगा। इससे पहले चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने भी जेन अल्फा जो जापान के आए उसके साथ मुलाकात की, बातचीत की और उनसे उनके अनुभवों को शेयर किया। ये पूरी तरीके से इस बीच है जब कि प्रदेश में जेन अल्फा और स्टडी को लेकर लगातार कवायद चल रही है।
0: और 12 बजे 12 रिपोर्टर में बात लखनऊ में कल हुए संसदीय केस डबल मर्डर केस की। बैंक के बाहर दिव्या के साथ मारपीट होती है, अब गोली मारने का CCTV विजुअल भी सामने आ गया है जिसमें मानस दिव्या को पीटता और गोली चलाते हुए दिखाई दे रहा है।
8: पत्नी और बहन की हत्या के बाद खुद को गोली मारकर जान देने वाले मानस वाजपेयी की एक CCTV सामने आई है। ये CCTV उस बैंक की है। करीब 50 सेकंड के CCTV में साफ देखा जा सकता है कि जब दिव्या मिश्रा अपने बैंक के पर पहुंचती है, इसी बैंक में वो काम करती है, वो यहां पहुंचती है तो ऑटो से आए मानस वाजपेयी ने कैसे गेट के बाहर पहले उसके साथ मारपीट की और मारपीट करने के बाद उसको गोली मार दी। इतना ही नहीं, दिव्या मिश्रा को गोली मारने के बाद मानस वाजपेयी ने घर में अपनी बहन को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार आज तक।
0: और चलिए एक बार फिर से बड़ी खबर की बात करते हैं। राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पहुंचे हुए पहले गन मामले में क्या अपडेट है, जांच कहां तक पहुंची है, ये जानने के लिए राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पहुंचे हैं और उनके साथ में पीड़ित छात्र साहिल भी है। जिसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस 24 जुलाई को राहुल गांधी ने की थी और पैलेट गन से वो जो जख्मी हुआ वो निशान दिखाए गए। तब देखिए राहुल गांधी के ठीक बाईं तरफ सफेद टी शर्ट में जो चश्मा लगाए हुए साहिल है और यही पैलेट गन के वजह से जो घायल हुए चोटिल हुए वो साथ में उनके संसद मार्ग थाने पहुंचे हैं। अब इस मामले में राहुल गांधी बहुत एक्टिव हैं। राहुल गांधी सरकार का घेराव कर रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठा रहे हैं और संसद में भी ये मुद्दा लगातार गूंजा था, अब संसद के बाहर भी ये मुद्दा लगातार गूंज रहा है। इस मामले में जांच कहां तक पहुंची है, क्या जांच पुलिस के अधिकारियों की तरफ से की गई है, क्योंकि देखिए ये बहुत स्पष्ट है, सरकार की इस मामले पर नजर है, कोर्ट की इस मामले पर नजर है और विपक्ष तो इस मुद्दे को पकड़ के बैठा हुआ है। विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार गृहमंत्री अमित शाह को घेर रहा है कि ये सिचुएशन अगर जो बनी है वो गृहमंत्री अमित शाह की वजह से बनी है, ऐसा विपक्ष की तरफ से कहना है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि किसके आदेश पर पैलेट गन चलाई गई और अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर चलाई तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी ये मांग करते रहे हैं, संसद में भी कांग्रेस की तरफ से मुद्दा उठाया गया, संसद के बाहर भी ये मुद्दा उठाया गया है और अभी भी थाने पहुंचकर राहुल कह रहे हैं राहुल की शिकायत पर दर्ज अभी तक FIR नहीं हुई है, राहुल की शिकायत पर अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। देखिए राहुल चाहते हैं कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाए, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और इसीलिए युवाओं के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और जब गूंज छात्रों की गूंज कार्यक्रम जब राहुल गांधी चलाते हैं, चाहे वो प्रयागराज में अभी पुणे भी जाएंगे राहुल गांधी, तो वहां हर जगह इस मुद्दे को राहुल गांधी उठाते रहे हैं। अब संसद मार्ग थाने पहुंचकर भी राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे हैं और पैलेट गन से घायल शख्स को लेकर यानी साहिल को लेकर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और अभी अधिकारियों के साथ बात हो रही है। अब यह भी जानकारी आ रही है कि राहुल की शिकायत पर FIR दर्ज नहीं हुई और इस बात को लेकर राहुल नाराज हैं, राहुल गांधी नाराज हैं, कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्यों आखिर विपक्षी बात नहीं सुनी जा रही है, क्यों अगर उन छात्रों को इंसाफ नहीं दिया जा रहा है जिन पर अत्याचार हुआ है, जिनके साथ अन्याय हुआ है। और इसीलिए राहुल गांधी पुरजोर तरीके से मुद्दा उठा रहे हैं और देश भर में अलग अलग जगह इस मुद्दे को उठाने की राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं। छात्रों की गूंज का कार्यक्रम देश के किसी भी हिस्से में होता है तो वहां पर छात्रों की आवाज राहुल गांधी उठाते हैं, वहां पर पैलेट गन का मुद्दा राहुल गांधी उठाते हैं, पैलेट गन के मुद्दे को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल राहुल गांधी उठाते हैं और कानून व्यवस्था संचालित करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री पर राहुल गांधी सवाल उठाते हैं। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है। साहिल लोचक जिनकी आग की रोशनी जा सकती थी जैसा राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 24 जुलाई की। मौसमी हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुकी है, मौसमी और क्या जानकारी अभी तक आपके पास आ पा रही है, अंदर क्या हो रहा है?
9: देखिए ये जो खबर आ रही है कि राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि साहिल लोचब की FIR जो है वो दर्ज की जानी चाहिए और साहिल लोचब इससे पहले भी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अपने वकीलों के साथ बार बार दिल्ली पुलिस के पास गए हैं, उनकी FIR रजिस्टर नहीं हो रही थी, उनकी कंप्लेन रजिस्टर नहीं हो रही थी, जो शिकायत वो दे रहे थे वो दिल्ली पुलिस लेने से भी इनकार कर रही थी और अभी इस मामले में कोई FIR लॉन्च नहीं हुई है। और इसको लेके जब उन्होंने राहुल गांधी को ये जानकारी दी तो राहुल गांधी खुद जो है यहाँ पे जाते हैं और FIR की मांग करते हैं, जब दिल्ली पुलिस उनको एंटरटेन करने से मना कर देती है या मना कर देती है FIR रजिस्टर करने से, तब वो जाते हैं और आला अधिकारी से मिलकर ये कहते हैं कि FIR इस मसले पर रजिस्टर होनी चाहिए, साहिल लोचब पर पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ है और एक तरीके से एक बड़ा सियासी रूप से भी कह लीजिए या सरकार पर प्रेशर बनाने को लेकर कह लीजिए, राहुल गांधी एक बड़ा अटैक यहाँ पे ना सिर्फ दिल्ली पुलिस पे कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि दिल्ली पुलिस जानबूझ के इस मामले में पूरी कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि उसकी वो खुद आरोपों के घेरे में है और जिस तरीके से वो खुद दोषी है इस पूरे मसले पर। और साहिल लोचब के साथ राहुल गांधी का जाना ये पूरी एक बड़ा संदेश देता है कि कांग्रेस जो है इस पूरे मसले को छोड़ेगी नहीं, पैलेट गन्स के मसले को और अमित शाह गृह मंत्री को घेरने का काम इसके जरिए किया जाएगा। अभी यही दलील चल रही है, राहुल गांधी ये बार बार कह रहे हैं कि इस मसले पर आप FIR दर्ज कीजिए क्योंकि इनको बहुत गंभीर चोटें आई हैं और इस मसले पर कार्रवाई नहीं हो रही है और जब तक कार्रवाई नहीं होगी मैं नहीं हिलूंगा।
1: अरविंद ओझा बने हुए हमारे साथ। अरविंद, राहुल गांधी नाराज हैं क्योंकि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है क्योंकि पुलिस खुद इस मामले में इन्वॉल्व है। आपके पास अभी तक और क्या जानकारी आ पा रही है?
2: देखिए, अभी जो डीसीपी नई दिल्ली है सचिन शर्मा, उनसे ही बातचीत कर रहे राहुल गांधी, और इसके पहले एक दो पुलिस स्टेशन गए थे ये जानकारी मिली है, कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन गए थे ये जानकारी मिली। कनॉट प्लेस में एसएचओ उस वक्त मौजूद नहीं थे, एक मिनट तक रुके, बिना किसी से बातचीत किए वहां से निकल गए, फिर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। और जैसा मौसमी ने बताया कि एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे हैं। देखिए, इस मामले पर सियासत एक तरफ, लेकिन जो पुलिस है, पुलिस ने 20 जुलाई को जो कुछ भी हुआ था नई दिल्ली इलाके में, उसको लेकर अलग अलग तकरीबन 15 से 20 एफआईआर दर्ज की है। अब पैलेट गन की जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं कि उस पर किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, ये अपने आप में जानना और देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर बात की जाए, कोई भी सिक्योरिटी फोर्स है, अगर उसे कोई वेपन मिला है, कोई भी चीज मिली है, चाहे लाठी हो, टीयर गैस हो, पैलेट गन हो, रबर गन हो, इवन यहां तक कि जो सोफिस्टिकेटेड वेपन होता है वो भी, उनको वो इस्तेमाल करने का, उनको इस्तेमाल
1: जी
2: उनको इस्तेमाल करने का, उनको इस्तेमाल करने का अधिकार तो कम से कम पुलिस को होता ही है।
1: नहीं, बिल्कुल आपको सुन पा रहे हैं, लेकिन मौसम एक बात बताइए, क्योंकि हमने ये देखा है संसद में भी गतिरोध बना हुआ था, समाधान नहीं निकल पाया था। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की जा रही है, एफआईआर भी दर्ज नहीं हो पाई है क्योंकि पुलिस इस खुद मामले में इन्वॉल्व है, तो अगर ये गतिरोध बरकरार रहता है तो आगे अब कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, क्योंकि साहिल भी उनके साथ में है, जो विक्टिम है वो भी उनके साथ में है, तो अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, पुलिस की तरफ से आगे एक्शन नहीं उठाया जाता है जैसा राहुल गांधी चाहते हैं, तो फिर आगे क्या?
9: देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी, अभी ये जानकारी मिल गई है कि राहुल गांधी अभी मीडिया से भी मुखातिब होंगे, तो वो इस पॉइंट को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे कि ये कानून व्यवस्था अगर देश की राजधानी दिल्ली में है तो पूरे देश में क्या हाल होगा, और गृह मंत्री अमित शाह की जो दिल्ली पुलिस है वो एक ऐसे पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है जो बुरी तरीके से उनको चोट लगी है और एक तरीके से पूरी तरीके से उनकी आंख की रोशनी जाने का खतरा भी है एक आंख का, तो उस तरीके से वो राहुल गांधी इसको पेश करने की कोशिश करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह को कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर निशाने पर लेंगे। अभी जैसे की जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी इस बात पर अड़े हुए हैं कि एफआईआर जो है वो दर्ज होनी चाहिए इस पूरे मसले पर, शिकायत जो दी है साहिल लोचप की उसको संज्ञान ले लेना चाहिए। अब देखिए, धीरे धीरे एस्केलेट कर रहे हैं राहुल गांधी, पहले वो जाते हैं सीधे पुलिस स्टेशन और वहां पे कहते हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, उसके बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट जाते हैं, आला अधिकारियों से मिल रहे हैं, जो अरविंद ओझा बता रहे हैं कि यहाँ पे कि आला अधिकारियों से मिलके वो यही कह रहे हैं। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि 14 तारीख को साहिल लोचप जो है दिल्ली पुलिस से मिलने गए थे अपने वकीलों के साथ, वो 14 अगस्त को गए थे और उन्होंने ये

0: ने कहा कि रिटन कंप्लेन उनकी ले ली, पर अभी तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई है, इसके चलते राहुल गांधी ये पूछने गए थे कि उनकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है, यानी कि शिकायत दे दी थी साहिल लोचब ने, लेकिन अभी तक उस मसले पर कार्रवाई ना होने के चलते नेता विपक्ष राहुल गांधी पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। और दिल्ली पुलिस के थाने पर जब वो वहां पे बात करते हैं जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने जब एंटरटेन नहीं किया तो वो चले गए आला अधिकारी के पास।
1: अच्छा, यही यही चीज अरविंद ओझा से जान लेते हैं। अरविंद, देखिए, बहुत स्पष्ट ये बात जानकारी निकल के सामने आ रही है कि साहिल पहले खुद अपने वकीलों के साथ जाते हैं एफआईआर लॉन्च करने, लेकिन वो नहीं होती है। उसके बाद राहुल गांधी उनका साथ देते हैं और राहुल गांधी संदीप साथ में लेकर, साहिल को साथ में लेकर फिर आला अधिकारियों के पास गए हैं कि क्यों आप एफआईआर दर्ज नहीं करा रहे हैं जो पीड़ित है उसकी। अब इस मामले में अधिकारियों का क्या रुख हो रहा है?
0: देखिए, आप इसको सिर्फ फिलहाल अभी पॉलिटिकल एंगल से ही देख सकते
1: अच्छा,
0: हैं, क्योंकि आप देखिए, एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे हैं पैलेट गन की। ये अभी तक जो सूत्र है वो बता रहा है किस तरह की एफआईआर, अगर कोई एक्शन पुलिस लेती भी है, चाहे वहां पर अर्धसैनिक बल के जवान थे आरएएफ के, अगर इस तरह के पैलेट गन चले भी तो बकायदा जनरल डायरी जो दिल्ली पुलिस की थी, उस जनरल डायरी में जो आरएएफ की टीम है उसने ये मेंशन किया था कि वहां पर जो एंटी राइट गन है उसका इस्तेमाल हुआ। अब इस पर एफआईआर किस तरह से दर्ज करती है दिल्ली पुलिस, ये देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि अलग अलग एफआईआर इस पूरे घटना की 20 जुलाई को तकरीबन 15 से 20 एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा है, जिसमें कॉन्स्पिरेसी की भी जानकारी है, पुलिस ने किस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया, आरएएफ ने किस चीजों का इस्तेमाल किया, ये सब कुछ है। लेकिन एफआईआर आखिर राहुल गांधी किसके खिलाफ दर्ज कराना चाहते हैं? क्या पुलिस के खिलाफ दर्ज कराना चाहते हैं, क्या आरएएफ के खिलाफ दर्ज कराना चाहते हैं? क्योंकि अगर जैसा वो ये बोल रहे हैं पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, तो पैलेट गन का इस्तेमाल जाहिर सी बात है जो अर्धसैनिक बल के जवान है वही करते हैं, तो
1: हाँ,
0: क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं, किसके खिलाफ? तो ये काफी अभी
1: अच्छा,
0: कंफ्यूजन
1: मतलब वो
0: कंफ्यूजन किसी लिए,
1: थोड़ी थोड़ा
0: इसको
1: इंतजार करना
0: आप
1: पड़ेगा अरविंद, मुझे लगता है उसके बाद बहुत सारी जानकारी बहुत स्पष्ट हो जाएगी, धुन के बादल छट जाएंगे। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ मौके से जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं उनके पास क्या जानकारी। हिमांशु, क्या जानकारी है आपके पास? राहुल गांधी अभी भी अंदर ही है?
2: बिल्कुल, राहुल गांधी अंदर है, मैं ठीक डीसीपी ऑफिस के बाहर यहाँ पर मौजूद हूँ। हिमांशु, आप देखिए, ये डीसीपी ऑफिस नई दिल्ली है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और ये बाहर आप देखिए राहुल गांधी की गाड़ी यहाँ पर मेन गेट पर ही मौजूद है, और ये सामने जो आप देख रहे हैं सीआरपी के जवान, ये राहुल गांधी की सिक्योरिटी है जो आपको डीसीपी ऑफिस के बाहर मौजूद दिख रही है। राहुल गांधी तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले यहाँ पर पहुंचे हिमांशु, और लगातार वो डीसीपी ऑफिस में ही मौजूद है, क्योंकि जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे उनकी गाड़ी सीधे अंदर आती है और यहीं पर डीसीपी मौजूद थे, राहुल के साथ विक्टिम था, वो अंदर जाते हैं और लगातार बातचीत जारी है। अब यहां पर हिमांशु आप देखिए कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही थी बर्बरता की, कि स्टूडेंट के ऊपर 20 जुलाई को बर्बरता की गई थी, उस पर पुलिस की तरफ से कहना था कि उनका उनकी तरफ से माइल्ड बल का प्रयोग किया गया था। जो लोग, क्योंकि आज तक ने, आपको याद होगा कि आज तक इंडिया टुडे ने साफ दिखाया था 5 सीसीटीवी कैमरों की
1: हाँ।
2: फुटेज, जिसमें यह बात क्लियर हो गई थी कि कितने नजदीक जो प्रदर्शनकारी है वो पार्लियामेंट के पहुंच गए थे। पुलिस का कहना था कि पार्लियामेंट तक पहुंचने से पहले उन्होंने 4 से 5 राउंड बैरिकेड्स को हिमांशु पार किया था। अब अगर एक साथ बल प्रयोग करते तो पीछे जाते स्टैम्पेड बनती, इसलिए न सिर्फ उनको पीछे भेजना था लेकिन पीछे इस तरीके से अचानक से नहीं भेजना था। ऐसे में जो उस वक्त रणनीतिक तैयारियां थी, जो उस वक्त की रणनीति थी कि पार्लियामेंट में अंदर तो जाने नहीं देना, वहां वहां से पहले रोकना है, लेकिन पीछे किसी तरीके का हादसा ना हो, किसी छात्र को गंभीर चोट न लगे, इन दोनों स्थितियों को देख करके जो भीड़ पार्लियामेंट तक पहुंची थी उसको पीछे ढकेला गया था। पैलेट गन के इस्तेमाल की बात है, उसमें एक डीजी एंट्री भी सामने आई थी जो यही पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जहां पर इस वक्त हम मौजूद है यहीं पर दर्ज की गई थी, और उस एंट्री के बाद से कि किस तरीके से पैलेट गन चलाने की अनुमति मिली थी, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना था कि यहां पर इस तरीके की पैलेट गन का कोई प्रयोग नहीं हुआ था। ऑफिशियली पुलिस की तरफ से कभी भी इस बात को नहीं माना गया। तो आप ये देखिए कि अब जब राहुल गांधी पहुंचे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में एफआईआर तो दर्ज है ही हिमांशु, उनमें इन्वेस्टिगेशन भी जारी है, उस इन्वेस्टिगेशन का जो कुछ पार्ट है, हालांकि एफआईआर जो दर्ज है उस पे कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि उसको लेके एक नोटिफिकेशन भी सरकार की तरफ से हो चुका है, लेकिन जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, जो 1000 से ज्यादा 100 100

0: एक के करीब जो जिनको पर ऐसे लोग थे जो कत्ल के आरोप थे, तो क्या उनके साथ क्या होगा, उनको लेकर के अभी स्थिति साफ नहीं है। बहरहाल राहुल गांधी अंदर है, बाहर निकल के वो
1: बात
0: करेंगे। देखिए जो
1: करीब आधा घंटा हो चुका है,
0: ऐसा लग रहा है राहुल
1: करीब हिमांशु आधा घंटा हो चुका है राहुल गांधी साहिल के साथ अंदर गए और इतनी लंबी बातचीत वहां पर अधिकारियों के बीच में चल रही है और राहुल गांधी के बीच में चल रही है, तो ये माना जाए कि कहीं ना कहीं कोई गतिरोध है, इसीलिए समाधान नहीं निकल पा रहा। आधा घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, अब तो
2: आगे करूंगा मैं।
0: जो कांग्रेस का रुख रहा है, देखिए राहुल गांधी को आप फ्रेम में देख सकते हैं। ये देखिए राहुल गांधी, हम लोग एकदम ठीक बाहर मौजूद हैं। आप ये देखिए राहुल गांधी बाहर की तरफ आ रहे हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर पीछे की तरफ करते हैं। राहुल गांधी आप देखिए फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी आपके अपने आप देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए आप सामने देखेंगे तो आपको वकील
1: कुछ भी
0: थे, क्योंकि आप ये देखिए जो फ्रेम है एडवोकेट भी है। जी एडवोकेट भी मौजूद थे, यानी अपनी शिकायतों के साथ पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर राहुल गांधी विक्टिम, आप ये देखिए वकील राहुल गांधी, तो पूरी तैयारी के साथ राहुल गांधी यहाँ पर आए थे। अब हम सामने चलते देखिए राहुल गांधी, आप देखिए हम बात करते हैं।
3: भैया रुको, टेबल लगा, टेबल पे आओ यार, टेबल पे चलो,
0: चलो पीछे चलो। राहुल गांधी हिमांशु यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप लोग जो एक टेबल लगा उस तरफ, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न है और जहाँ पर हम मौजूद है ये जगह बहुत कम है, तो इसलिए
1: ठीक है राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन कुछ महिला भी वहाँ पर नजर आ रही है राहुल के साथ।
0: यहाँ पर जब
4: राहुल गांधी निकल चुके हैं, राहुल गांधी यहाँ पे हैं।
0: जी जी जी जी, ये विक्टिम है और जो उस दिन प्रोटेस्ट हुआ था उसमें वो शुरुआत से अगर आप देखेंगे राहुल गांधी को, तो विक्टिम्स के साथ राहुल गांधी सामने आए हैं। जो प्रोटेस्ट में चाहे अगर किसी को जो लोग प्रोटेस्ट में शामिल थे उन्हें जिसे ट्रोल किया गया, उन स्टूडेंट को लेकर के उधर चले, उन स्टूडेंट्स को लेकर के आए थे। और आप देखिए यहाँ पे कुमारी शैलजा हम इसे बात करने की कोशिश करते हैं।
5: डीलिमिटेशन और फायर डीलिमिटेशन,
2: पीछे जाइए सर प्लीज, आप पीछे होइए नहीं तो बात नहीं करो।
6: पीछे तो हो जाओ, जगह तो दो,
2: पीछे
6: जगह
2: कैसे होगा,
6: पीछे हो जाओ,
2: अच्छा शांत हो जाइए,
7: माइक को लगा के दो यार,
2: पीछे लगाओ, फुट इज डाउन, फुट देम डाउन,
0: उनके साथ हिमांशु आप ये तस्वीरें देख के समझ सकते हैं राहुल गांधी सामने हैं और हम उनसे बात करने की एक बार फिर से कोशिश करते हैं।
1: देखिए इतना हंगामा वहां पर हो रहा है, राहुल गांधी भी चाहते हैं कि सब शांत हो, तो उसके बाद फिर बातचीत वहां पर शुरू हो पाए। और क्या अंदर बातचीत हुई है पुलिस के अधिकारियों से, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से, वो राहुल गांधी यहां पर अपनी बात रखेंगे। और उनके साथ में पीड़ित भी हैं, साहिल है, कुछ महिलाएं भी उनके साथ में मौजूद हैं और अधिवक्ता भी उनके साथ में मौजूद हैं जो इस मामले में अपना पक्ष रखने दिल्ली पुलिस के समक्ष गए थे। और अब क्या राहुल गांधी के अंदर बातचीत हुई है वो बताने वाले हैं, लेकिन भीड़ अभी ज्यादा है। तो राहुल गांधी चाहते हैं कि पहले सब शांत हो, उसके बाद राहुल गांधी अपनी बात रख सके ताकि उनकी बात स्पष्ट तौर पर सभी सुन सके।
4: आप इधर आ जाओ।
0: अरे उधर जाने नहीं दे रहे थे।
1: और देखिए राहुल गांधी अब कुर्सी पर तो बैठ ही चुके हैं, अब साथ में उनके पीड़ित भी हैं, विक्टिम भी हैं। तो डीसीपी ऑफिस के सामने राहुल गांधी अब ये खबर आ रही है धरने पर बैठ गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, डीसीपी ऑफिस के सामने राहुल गांधी धरने पर बैठ गए और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और ठीक उनके बाईं तरफ देखिए साहिल मौजूद हैं, जिनके साथ 24 जुलाई को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि पैलेट गन से कितनी चोट साहिल को आई है। और ठीक उनके पास में आप देखिए एक महिला मौजूद है जो लग रहा है कि साहिल की मां है, उनके साथ में राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हैं और अब FIR दर्ज कराने की मांग पर अड़ गए हैं। राहुल गौतम बने हुए हमारे साथ। राहुल क्या जानकारी आ रही है?
8: देखिए फिलहाल राहुल गांधी डीसीपी ऑफिस पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं, उनके साथ साहिल लोचप भी हैं। साहिल लोचप हरियाणा के रहने वाले हैं और उनका ये क्लेम है कि उनके ऊपर पैलेट गन के थ्रू हमला किया है, उनको चोट लगी है। ये तमाम चीजें 20 तारीख को घटी और राहुल गांधी ने इनके साथ में पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी और अब राहुल गांधी इनको लेकर धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल साहिल का ये आरोप है कि वो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि मेरी FIR रजिस्टर हो जाए। 14 तारीख को वो थाने में भी गए थे अपने वकीलों के साथ में, लेकिन उनकी FIR नहीं लिखी गई और उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी के दफ्तर को अप्रोच किया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपके साथ चलता हूं ताकि आपके FIR को हम रजिस्टर करवा सकें। तो कुल मिलाकर अब ये कोशिश है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि इस पूरे पिच पर वापस लेकर आया जाए। आप देखिए संसद के अंदर भी हमने देखा कि बड़े एग्रेसिव राहुल गांधी दिखे, उन्होंने धरना दिया प्रधानमंत्री के निवास के बाहर, प्रोटेस्ट मार्च निकाला, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और अब वो पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में राहुल गांधी ठीक जो थाना है वहां पर अब बैठ गए हैं धरने पर। उनके साथ में साहिल लोचप भी हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। उनको उनकी जो इंजरीज हैं पैलेट गन के थ्रू जो कथित तौर पर हुई है वो खुद राहुल गांधी ने अपने साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई थी। उनके साथ में उनके परिवारजन भी हैं। तो कुल मिलाकर कोशिश है राहुल गांधी की कि इस मुद्दे पर ध्यान खींचा जाए। राहुल गांधी के दफ्तर का साफ तौर पर कहना है कि जब तक FIR लॉन्च नहीं की जाएगी तब तक राहुल गांधी यहां से उठने वाले नहीं है। तो कुल मिलाकर अब ये कह सकते हैं कि एक प्रेशर टैक्टिक्स है और राहुल गांधी की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि आपको एक जो FIR लिखवाना चाहते हैं साहिल लोचप के, जो कंप्लेंट आपको देना चाहते हैं आप उनकी कंप्लेंट लीजिए और उसके बाद क्या कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है वो आपका भले ही प्रेरोगेटिव हो सकता है, लेकिन आप उनकी जो कंप्लेंट है उसको ऑफिशियली दर्ज करके उसमें जांच कराइए। आपको याद होगा कि राहुल गांधी इससे पहले साहिल लोचप के साथ में 10 जनपद पर जो उनका घर भी आप कह सकते हैं कि वहां पर उनके साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, ना सिर्फ साहिल लोचप के साथ करी थी बल्कि अन्य लोग जिनको कथित
1: जी
8: तौर पर मैन हैंडल किया गया था या चोट लगी थी उन तमाम लोगों के साथ में वो पहुंचे थे। कुल मिलाकर ये देखिए कोशिश है गांधी की कि जो मोमेंटम या जो प्रेशर उन्होंने सरकार के ऊपर बना रखा था वो उसको बनाए रखना चाहते हैं और इसीलिए वो अब पहुंचे हैं। अब आप देखिएगा राहुल गांधी के साथ साथ, क्योंकि अब राहुल गांधी बैठ गए हैं तो तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो भी यहां पर अब पहुंचने लगेंगे, तमाम जो सांसद हैं या पार्टी के कार्यकर्ता है वो तमाम लोग अब यहाँ पर जुटने लगेंगे। और जिस प्रकार का माहौल हमने प्रधानमंत्री के घर के बाहर देखा था, आपको ध्यान होगा जब राहुल गांधी 100 सांसदों के साथ वहां पर पहुंच गए थे, कुछ उसी प्रकार की तस्वीरें अब यहां पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि जाहिर है राहुल गांधी के तरफ से या उनके दफ्तर की तरफ से आप कह सकते हैं साफ कर दिया गया है
1: कि जब तक अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी ये मामला और आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा क्योंकि धरने पर बैठ गए हैं अभी राहुल गांधी, साहिल और साहिल के परिजन हैं। और राहुल गांधी के अलावा और साथ में और कौन है ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है कांग्रेस की लीडरशिप में, नेताओं में?
8: देखिए फिलहाल जब यहाँ पर पहुंचे थे सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पहुंचे थे और उनके दफ्तर के जो उनका स्टाफ है वो पहुंचे थे साहिल के साथ उनके परिवारजन के लोग पहुंचे थे। अब आप ये कह सकते हैं क्योंकि अब ये तस्वीरें चारों जगह पर चली
1: जी जी
8: जो जो कार्यकर्ता है या कांग्रेस के जो नेतागण हैं दिल्ली के अंदर जो मौजूद होंगे तमाम सांसद विधायक वो तमाम लोग अब पहुंचना यहाँ पर शुरू करेंगे। कुल मिलाकर कोशिश की जाएगी कि पूरा जो
1: नैरेटिव है जो बनाया गया था। मैं अंदर की तस्वीर जरा राहुल बता देते हैं। राहुल आप बने रहिए हमारे साथ में। अब इस तस्वीर को देखिए बहुत ध्यान से देखिए। राहुल गांधी आपको दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक उनके पास में है साहिल लोचक जो कि पीड़ित हैं, जिनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस 24 जुलाई को राहुल गांधी पहले भी कर चुके हैं, और ठीक पास में ये बताया जा रहा है कि शायद जो साहिल हैं उनके परिवारजन हैं परिजन हैं, और ठीक पास में उनके अधिवक्ता भी आपको दिखाई दे रही है, और ये बताया जा रहा है कि पहले भी साहिल आए थे और वो FIR चाहते थे लेकिन FIR नहीं हुई। उसके बाद फिर वो राहुल गांधी के पास गए और फिर राहुल गांधी साथ में आके FIR दर्ज कराने की मांग करने लगे। और अभी जो राहुल गौतम हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि राहुल गांधी अब धरने पर बैठ चुके हैं, और ये वो तस्वीरें हैं राहुल साहिल और साहिल के परिजन ये इस वक्त धरने पर बैठ गए हैं। कुछ ही देर में मीडिया से मुखातिब होंगे, मीडिया के समक्ष अपनी बात रखेंगे राहुल गांधी, लेकिन ये वो तस्वीर है, वो तस्वीर आप देखिए कि दिल्ली के पुलिस अधिकारियों से राहुल गांधी अपनी बात रखते हुए कि FIR क्यों दर्ज नहीं हो जा रहे, क्यों कौन जिम्मेदारी तय करेगा, अगर कोई पीड़ित है तो उसके लिए क्या एक्शन अभी तक लिया गया है पैलेट गन मामले में। तो ये राहुल गांधी और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बीच की अंदर की। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु तस्वीरें आई हैं राहुल गांधी और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बीच अंदर जो बातचीत हुई उससे जुड़ी हुई, आपके पास और क्या जानकारी आ रही है?
9: आप एक मिनट, आप इतनी देर हो
10: गई। देखिए ठीक थाने के बाहर मतलब DCP ऑफिस से निकलते ही राहुल गांधी और उनके साथ जो एक वकील है और दो विक्टिम यहाँ पर वो बैठ गए हैं धरने पर। एकदम ठीक थाने से निकलते ही अंदर राहुल गांधी की जो मुलाकात हुई थी वो DCP थे नई दिल्ली इलाके के सचिन शर्मा और ज्वाइंट CP नूपुर प्रसाद, जो कि अभी उनको चार्ज लिए मुझे लगता है 1 से 2 दिन ही हुआ है। नूपुर प्रसाद वो ज्वाइंट CP उनसे मुलाकात करके बाहर की तरफ आए हैं, और यहाँ पर आने के बाद देखिए वो बैठ गए हैं, बाहर चेयर लगी है और यहीं पर राहुल गांधी बैठ गए हैं। साथ में कई वरिष्ठ नेता भी उनके यहां पर जो आए थे वो लोग भी यहीं पर मौजूद हैं, और राहुल गांधी जो जानकारी में मिली है कि अंदर वो तमाम जो शिकायतें लेकर के आए थे उस पर कार्रवाई की मांग थी, जिस पर अभी तुरंत कोई फैसला पुलिस की तरफ से नहीं लिया गया, और शायद यही वजह है कि यहाँ पर निकलते ही राहुल गांधी
1: राहुल गांधी यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं, लेकिन अंदर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से तो उनकी बात हुई है ना, दिल्ली पुलिस के अधिकारी कहाँ है?
11: एक टीम है,
1: वो क्यों नहीं आ रहे सामने?
12: जैसे आगे जाऊंगा तो
11: इंडिया TV
10: देखिए आप देखिए सामने, ये देखिए बिल्कुल सामने अगर आप देखेंगे तो DCP नई दिल्ली यहीं पर मौजूद है, राहुल गांधी आगे बैठे अगर आप देखेंगे तो DCP नई दिल्ली यहीं पर मौजूद है, और लंबी बातचीत हुई थी, करीब करीब आप कह सकते हैं कि आधे घंटे यहां पर बातचीत हुई थी, जो DCP नई दिल्ली से बातचीत हुई थी और इसके अलावा जो NCP भी अंदर मौजूद थी। अब राहुल गांधी से बात करने के लिए आप देखिए सीधी तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी से DCP सचिन शर्मा यहां पर बात कर रहे हैं, और हम सुनने की कोशिश करते हैं हिमांशु, लेकिन हमें सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो आगे जाने नहीं दे रहे हैं, और राहुल गांधी से बात कर रहे हैं। साथ में कुमारी शैलजा जो ठीक बगल में मौजूद है अगर आप देखेंगे तो वो अंदर वो भी मौजूद थी यहाँ पर, और DCP सचिन शर्मा जिनसे लंबी बातचीत करके आए थे, जिनके पास तमाम शिकायतें,
1: लेकिन मैं जानता हूँ मुश्किल है, लेकिन कोशिश कीजिए समझने की क्या बातचीत हो रही है।
10: जो अपनी जी बिल्कुल हिमांशु, मैं पूरी कोशिश करता हूँ ये समझ, गतिरोध कहाँ बना, किस चीज को लेकर के गतिरोध बना कि जिसकी वजह से राहुल गांधी को DCP ऑफिस में ही यहाँ पर बाहर बैठना पड़ गया, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। दिल्ली पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो यहाँ से उठे और जो गतिरोध है उसको खत्म करें, क्योंकि पुलिस को जो शिकायतें हैं, पुलिस का कहना है कि एक लीगल प्रोसीजर है, उस लीगल प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। जो हमारी पुलिस सोर्सेज से बात हुई है उनका ये कहना है कि एक पूरा कोई भी जब कंप्लेन होती है तो एक लीगल प्रोसीजर होता है, और उस निगल देखिए लगातार बातचीत हो रही है। इस समय राहुल गांधी जो है वो कुछ कह रहे हैं, डीसीपी नई दिल्ली से कुछ कह रहे हैं, और साथ में यहाँ पर आप देखिए तमाम जो दूसरे कांग्रेस पार्टी के आप कहिए नेता या दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब किस तरीके की बात बनती है, क्योंकि पुलिस का ये कहना जो हमारी पुलिस सोर्सेज से बात हुई है कि कोई भी जब प्रोसीजर है लीगल प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा और उसके बाद जो है कार्रवाई उस पर की जाएगी। दिल्ली पुलिस के देखे डीसीपी बात करने के बाद वो अंदर की तरफ गए हैं, उनके साथ जो तमाम पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अंदर की तरफ गए हैं और राहुल गांधी फिलहाल यहीं पर बाहर आप देखिए वो यहाँ पर अपने तमाम जो लोग जो घायल हुआ था पैलेट गन से, एक महिला और एक एडवोकेट, ये सभी लोग आप देखेंगे यहाँ पर बाहर जो है वो बैठे हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। गतिरोध जो था वो अभी भी यहाँ पर बना हुआ है। पार्लियामेंट थाने के पीछे पार्लियामेंट थाने के ठीक बाहर की जो तस्वीरें हैं है ना वो ये है ना, ये क्या फर्क पड़ता है पीछे का बाहर है ना, बाहर करवाओ सबको, बाहर क्या फर्क पड़ता है। हेलो, तो अगर हम दिखाए तो यहाँ की ये तस्वीरें हैं। ऐसे में सिक्योरिटी जो फोर्सेज है उनकी अपनी समस्याएं होती हैं, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न होता है सिक्योरिटी कंसर्न होता है। अब ये देखिए जो सिक्योरिटी वाला आगे खड़ा है इसे आगे राहुल गांधी को पूरी तरीके से सिक्योर करना है। भीड़ बहुत ज्यादा है, राहुल गांधी एकदम जो एंट्रेंस गेट है जो आप देखेंगे पार्लियामेंट थाने की और डीसीपी ऑफिस नई दिल्ली की वो है ठीक एंट्रेंस के सामने बैठे हैं। जब वो निकलते हैं उसके बाद लोकल ट्रेन की मदद से यहाँ पर इस जगह को अगर आप देखेंगे तो यहाँ को सिक्योर करने की गतिरोध बना हुआ है। उस गतिरोध को कैसे दूर किया जाए ये यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है। पुलिस ऑफिसर्स जाहिर तौर पर ऐसी कंडीशन में जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बातचीत हो और राहुल गांधी जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनसे बातचीत हो और वो किसी तरीके से जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से उठे। अब डीसीपी नई दिल्ली यहाँ पर पहुँचे, अंदर से आए और जब उन्हें पता लगा कि राहुल गांधी गेट पे बैठ गए हैं और उसके बाद राहुल गांधी से उन्होंने बात की, लेकिन कोई भी बात फिलहाल बनते हुए यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। धीरे धीरे जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर बढ़ाई जा रही है, आसपास की पुलिस भी यहाँ पर बुलाई जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी साथ कांग्रेस पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता इस वक्त पहुंचे हुए हैं और वो बैठे हुए हैं। अब जो कंप्लेन दी गई है क्योंकि पैलेट गन को लेकर के हिमांशु कांग्रेस का जो शुरू से जो कांग्रेस का रवैया था वो काफी उसको लेकर के एग्रेसिव था, वो लगातार पैलेट गन कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जब पार्लियामेंट में गतिरोध इस चीज को लेकर के बना था हिमांशु तो सीधे तौर पर जो की तरफ से कहा जा रहा था कि होम मिनिस्टर इस पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया इस पर जवाब दे, तो इसको लेकर के पार्लियामेंट में लगातार गतिरोध बना हुआ था।
13: ये देखिए गतिरोध बरकरार है, पुलिस के अधिकारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी अपनी बात पर अड़े हुए धरने पर बैठ गए। मौसमी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। मौसमी, धरने पर बैठ चुके हैं राहुल गांधी, अब आगे क्या रणनीति कांग्रेस की तरफ से अपनाई जाएगी, क्योंकि राहुल और पीड़ित साहिल सब इस वक्त धरने पर हैं।
14: जी बिल्कुल, देखिए ये आप देखिए कि पिछले एक महीने में ये दूसरा धरना है जहाँ राहुल गांधी जो है इस तरीके से जमीन पर बैठ गए हैं। पहले प्रधानमंत्री आवास में जो है बैठे थे धरने पर, अब यहाँ पे बैठ गए हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट पे। अपने आप में एक तरीके से जो संसद से लेके सड़क तक लड़ाई जो है, संसद से सड़क तक जो लड़ाई है वो लड़ी जा रही है, और एक तरीके से कोशिश ये है कि इसके जरिए दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह पर दबाव बनाया जाए।
13: और अब तो कांग्रेस के और भी कई नेता यहाँ पर पहुंच रहे होंगे।
14: देखिए ऑलरेडी आप देखिए कि रणदीप सिंह सुरजेवाला से लेके बहुत सारे नेता जो है वो ऑलरेडी साथ में है राहुल गांधी के, और यहाँ पे शैलजा कुमारी से लेके तमाम नेता जिस तरीके से पूरी हमने देखा था कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी बहुत सारे नेता मौजूद हो गए थे, पूरी एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश थी कि कांग्रेस जो है सड़क की लड़ाई छात्रों के बिहाफ पे लड़ने के लिए तैयार है। तो यहाँ राहुल गांधी खुद इस बात को बिल्कुल आक्रामक तरीके से उठाते हुए हैं। अब ये दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत परेशानी का सबब बन जाएगा। पहले वो प्रधानमंत्री आवास पर बैठ जाते हैं, तमाम डीसीपी से लेकर आला अधिकारी ये मशक्कत करते हैं, राहुल गांधी को उठाना पड़ता है, उनको डिटेन करना पड़ता है, छत्रसाल स्टेडियम लेके जाया जाता है, प्रियंका गांधी को अलग ले जाया जाता है और अखिलेश यादव भी थे उस समय। एक तरीके से वही तस्वीर अब फिर से दोहराती हुई, इस बार वो पीड़ित के साथ बैठे हैं। साहिल लोचा बताया जा रहा है 14 तारीख 17 तारीख दो दो तारीख में जो है लगातार दिल्ली पुलिस के पास जा रहे थे शिकायत दर्ज करने की मांग,
13: लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। बने रहिए, अरविंद ओझा भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अरविंद, जॉइंट कमिश्नर नई दिल्ली नुपुर प्रसाद, डीसीपी नई दिल्ली सचिन शर्मा, उनसे बातचीत करते हुए राहुल गांधी दिख रहे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया तो धरने पर बैठ गए हैं। अभी कुछ ही देर में शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, मीडिया से मुखातिब भी होंगे, लेकिन कहां पर गतिरोध बना हुआ, क्या जानकारी आपके पास और आ पा रही है?
15: देखिए, ये तस्वीर में जो आप देख पा रहे हैं, राहुल गांधी जो सोफे पर बैठे हुए हैं, डीसीपी नई दिल्ली सचिन शर्मा का दफ्तर है, साथ में बैठी हैं नूपुर प्रसाद जो इलाके की जॉइंट कमिश्नर हैं। जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि बातचीत हुई और जो डीसीपी नई दिल्ली है, जॉइंट कमिश्नर नई दिल्ली है, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि कितनी एफआईआर दर्ज है। लेकिन राहुल गांधी के साथ जो पीड़ित आए थे उन्होंने एक शिकायत दी, डीसीपी नई दिल्ली ने वो शिकायत रख दी, लेकिन अब राहुल गांधी बाहर धरने पर बैठ गए क्योंकि उनकी उनका कहना है कि एफआईआर दर्ज की जाए। अब सवाल है कि एफआईआर किस पर दर्ज करेगी दिल्ली पुलिस, ये अपने आप में देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो कुल मिलाकर इसको फिलहाल आप सियासत से जोड़कर देख सकते हैं कि ये जो पूरा जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था, किस तरह से कांग्रेस एग्रेसिव थी, उसके बाद चाहे पैलेट गन को लेकर, चाहे छात्रों पर लाठीचार्ज हो उसको लेकर, उसको मुद्दा बनाने की कांग्रेस कोशिश फिर नए सिरे से कर रही है, क्योंकि जो शिकायत दी गई है वो शिकायत पर एफआईआर आखिर कैसे दर्ज करेगी दिल्ली पुलिस, किसके खिलाफ दर्ज करेगी दिल्ली पुलिस, ये अपने आप में सोचना और जानना बेहद दिलचस्प होगा। तो राहुल गांधी अचानक से पहले नई दिल्ली के एक दो पुलिस स्टेशन पहुंचे, उसके बाद संसद मार्ग पहुंचे, और जो तस्वीर आई है ये नई दिल्ली इलाके के डीसीपी की है, जिसमें अगर आप देख पा रहे हैं जो पुरुष अधिकारी उनका नाम डीसीपी सचिन शर्मा है, जबकि जो महिला अधिकारी है ज्वाइंट कमिश्नर नूपुर प्रसाद है, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी दोनों अधिकारियों से बात कर रहे थे, तब दोनों अधिकारियों ने एक्सप्लेन किया कि 20 जुलाई को क्या क्या हुआ, उसको लेकर कितनी एफआईआर दर्ज है। लेकिन राहुल गांधी के साथ जो विक्टिम आए थे उन्होंने एक शिकायत दी है, शिकायतकर्ता राहुल गांधी नहीं है, जो पीड़ित है उसका नाम है, और तुरंत एफआईआर दर्ज करने।
13: अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, ये कितनी देर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर किस बात पर राहुल गांधी अड़े हुए हैं, किस पर एफआईआर कराना चाहते हैं कि पुलिस और दिल्ली पुलिस के अधिकारी और राहुल गांधी में वो एक जो गतिरोध की अब खत्म नहीं हो रहा है, वो क्या चाहते हैं, किस पर एफआईआर चाहते हैं?
15: देखिए, ये तो क्लियर है ना, पैलेट गन की अगर वो मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं तो वो कौन चलाता है? जाहिर सी बात है सिक्योरिटी फोर्सेस चलाते हैं जो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी पर होते हैं। दिल्ली पुलिस ने ये भी बताया और हमने तस्वीरें भी दिखाई थी कि 10 मीटर की दूरी पर भी नहीं थे 20 जुलाई को, प्रोटेस्टर पार्लियामेंट तक पहुंच ही गए थे, पार्लियामेंट के चारों तरफ पहुंच गए थे, और ऐसे में जो दिल्ली पुलिस की दलील थी वो ये थी कि किसी तरह से जो प्रोटेस्टर है उनको डिस्बर्स करना है, जो एसओपी है सबसे पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल करना, फिर लाठी चार्ज करना है, उसके बाद फिर डिस्बर्स करना है। दिल्ली पुलिस ने यह भी दावा किया था कि कई बैरिकेड तोड़ दिए गए थे, तो सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन उन 20 जुलाई पर जो सियासत है वो सियासत पहले सड़क से शुरू हुई, फिर संसद पहुंची और एक दोबारा फिर सड़क पर आई है। राहुल गांधी अचानक पहुंचे हैं, पूरी तरह से मुद्दा कांग्रेस इसको बनाना चाहती है, फ्रंट फुट पर रहना चाहती है और कोशिश करना चाहती है कि बीजेपी इस पूरे मामले पर बैकफुट पर रहे, और यही जो कवायद है, यही जो सियासत है जंतर मंतर 20 जुलाई को जो कुछ भी हुआ था उसकी सियासत को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए हैं, और डीसीपी जो इलाके के हैं, ज्वाइंट कमिश्नर है, उनसे बातचीत भी करने की कोशिश की, दोनों अधिकारियों ने पूरी जो सिनेरियो है कितनी एफआईआर दर्ज हुई वो भी एक्सप्लेन किया है, इंक्वायरी जो चल रही है उसके बारे में भी राहुल गांधी को बताया। तो राहुल गांधी किस पर एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं वो खुद कुछ देर बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो शायद बहुत मुमकिन है कि वो एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन फिलहाल वो धरने पर बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल माइलेज वो कहीं ना कहीं बटोरने की भी कोशिश जरूर राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है।
16: तो संसद मार्ग पर थाने में धरने पर बैठ गए हैं राहुल गांधी। अब से कुछ ही देर पहले उनका ये धरना शुरू हो गया था, वहां के डीसीपी से भी मुलाकात हो चुकी है। दरअसल राहुल गांधी की ये मांग है कि जिन लोगों ने पैलेट गन चलाई थी उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और ऐसे में वो एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं। हालांकि किन स्पेसिफिक नामों पर ये एफआईआर दर्ज होगी इस पर अभी स्पष्टीकरण नहीं मिला है। ये आगे हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी खुद स्पष्ट करें, लेकिन अभी फिलहाल मामला ये है कि राहुल गांधी धरने पर दिखाई दे रहे हैं। डीसीपी सचिन शर्मा से उनकी मुलाकात हो चुकी है अब से कुछ ही देर पहले, और संसद मार्ग थाने जब वो पहुंचे थे तब की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धरने पर अब राहुल गांधी और पैलेट गन का ये मुद्दा है जिसको लेकर लगातार राहुल गांधी और उनकी पार्टी मुखर दिखाई दे रही है। एक पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कांग्रेस ने ये साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी इन तमाम आरोपों से बच रही है कि जब धरने पर बैठे थे वहां पर छात्र तो पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ था, ये बीजेपी कह रही थी। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, इस वक्त क्या ताजा हालात हैं? कब तक धरने पर बैठने का प्लान है राहुल गांधी का? अब तो मुलाकात भी हो गई डीसीपी से, कुछ आश्वासन मिला है क्या?
17: देखिए, जो हम लोग को बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती तब तक जो है यहाँ से नहीं हिलेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि दो बारी साहिल लोचब पहले मिल चुके हैं और बार बार वो ये मांग कर रहे थे कि मैंने जो शिकायत की है उसमें मुझे आयोग का नंबर यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नंबर बताया जाए नेहा, लेकिन ये बार बार पुलिस इससे मना कर रही थी। इसके साथ साथ एफआईआर की कोई जानकारी नहीं दे रही थी, ये भी जानकारी नहीं दे रही थी कि आगे की क्या कार्रवाई हुई है। और इसको लेके जब दो जगह राहुल गांधी जाते हैं और उसके बाद धरने पर बैठ जाते हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। जो राहुल गांधी यहाँ पे तमाम कांग्रेस नेता तो है ही, लेकिन इस बारी वो पीड़ित के साथ जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं धरने पर। और एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती राहुल गांधी तस्लीमा सोने वाले नहीं है। राहुल गांधी का कल पुणे में एक कार्यक्रम भी है, अब देखना ये है कि कितने देर तक ये धरना चलता है। पहले हमने देखा है नेहा कि किस तरीके से जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी बैठे थे काफी उनको मनाने और हटाने की कोशिश हुई, 8-10 पुलिसकर्मी लग गए थे फिर उनको डिटेन करने में उठाने में क्योंकि वो उठने को तैयार नहीं थे। और तब वो वक्त था जब प्रधानमंत्री आवास जो कि हाई
16: सिक्योरिटी है। मैं लौटूंगी आपके पास हिमांशु, मेरे सहयोगी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, और इसमें गंभीरता से लेने वाली बात यह है कि जो पीड़ित हैं उनके साथ राहुल गांधी पहुंचे हैं, और ऐसे में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं दो पीड़ित वहां पर उनके ठीक बगल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं जिन पर शरीर के चोट के निशान पाए गए थे, उसकी तस्वीरें भी कांग्रेस द्वारा सर्कुलेट की गई थी और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी थी। अब इस पूरे मुद्दे को राहुल गांधी और उनकी पार्टी एक मुखर तौर पर उठाने की कोशिश में यहां दिख रहे हैं, और आज पूरे दिन मुझे लगता है कि धरना प्रदर्शन इस तरह से जारी रहेगा जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती है।
18: आज जो एफआईआर दर्ज कराने की बात राहुल गांधी की तरफ से की गई है उसमें एक
16: हिमांशु, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
19: है वो क्राइम ब्रांच के पास।
20: जी बिल्कुल यहाँ पर देखिए आवाज मिल रही है और जो जानकारी दी गई है यहाँ पर कि क्राइम ब्रांच के पास 20 जुलाई को जो कुछ भी हुआ था वो सारी जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। तो यहाँ पर जब शिकायत लेकर के पहुंचे राहुल गांधी और वो पीड़ित जिसके द्वारा शिकायत दिलाई गई है, क्योंकि शिकायतकर्ता राहुल गांधी नहीं है, वो जो पीड़ित अपने साथ लेकर आया उसकी तरफ से शिकायत दी गई है, तो शिकायत रिसीव कर ली गई यहाँ पर। लेकिन बोला गया कि चूंकि पूरे मामले की जाँच क्राइम ब्रांच के पास है इसलिए इस जांच एफआईआर जो कुछ भी होगा वो क्राइम ब्रांच की तरफ से ही किया जाएगा। जो प्रोसीजर है, जो कानूनी प्रोसीजर है दिल्ली पुलिस के काम करने का या किसी भी पुलिस के काम करने का, उसे लागू किया जाएगा और उसके मुताबिक जब कोई भी शिकायत आती है तो उस पर जांच होती है और जांच के बाद उस पर कार्रवाई होती है। और जो कंसर्न एजेंसी है जो उन मामलों की जांच कर रही है वो जांच करेगी। तो लगातार अंदर बैठने के बाद अंदर डीसीपी ऑफिस में जॉइंट सीपी और डीसीपी दोनों लोग मौजूद थे, बाहर निकले राहुल गांधी और आप ये देखिए तस्वीरों में कि राहुल गांधी जब बाहर आए तो बाहर आकर के वो यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। राहुल गांधी के साथ उनके साथ जो पीड़ित है, जो एडवोकेट है, वो सभी लोग यहाँ पर आए और आकर के यहाँ धरने पर वो बैठ गए। तो अब फिर डीसीपी निकल के बाहर आते हैं, डीसीपी ने यहाँ उनसे बात की, समझाने की कोशिश की। अब चूंकि राहुल गांधी धरने पे बैठे हैं और जिस तरीके से कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर के मुखर रही है, तो ऐसे में इस बात की पुलिस को आशंका हुई कि कहीं और सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता न यहाँ पर पहुंच जाए, क्योंकि जैसे ही ये खबर पार्टी कार्यकर्ताओं को चली, क्योंकि वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर हम देख रहे हैं, सुरजेवाला को हमने देखा और साथ साथ कुमारी शैलजा को हमने देखा जो राहुल गांधी के साथ थे, तो और भी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर जो है वो पहुंच जाएंगे, तो इसलिए पूरे इलाके की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है और साथ साथ राहुल गांधी को लगातार डीसीपी के द्वारा जो एनसीपी के द्वारा समझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है साफ तौर पर कि बिल्कुल कार्रवाई होगी, जो आपने कंप्लेन दी है, जो पूरा इस पर बनता है उसी कानूनन जैसे किसी भी शिकायत पर कार्रवाई होती है उसी तरीके से होगी, लेकिन चूंकि जांच क्राइम ब्रांच के पास है तो ऐसे में जो शिकायत आती है जो कंसर्न एजेंसी होती है उनके पास ही फॉरवर्ड होता है और ये कानूनी है, तो लेकिन राहुल गांधी तुरंत एफआईआर की मांग पर अंदर भी डटे हुए थे और बाहर आकर के वो अब देखिए यहाँ पर बैठ गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी और पूरी पार्टी 20 जुलाई के बाद से हमने देखा कि पहले संसद में गतिरोध था और अब यहाँ पर राहुल गांधी शिकायत लेकर के पहुंचे और शिकायत पर तुरंत एफआईआर की मांग की और जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो वो पीड़ित के साथ थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। अब पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, लगातार जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे बातचीत जारी है, मीटिंग की जा रही है और इस गतिरोध को जल्द से जल्द यहाँ पर नेहा खत्म करने की तैयारी है, कोशिश है पुलिस की कि किसी तरीके से जो ये गतिरोध है वो गतिरोध खत्म हो। अंदर अधिकारियों की मीटिंग है, बाहर यहाँ पर धरना जारी है। कहा गया कि किसी भी परिस्थिति में जब शिकायत आती है तो शिकायत मिलने के बाद जो लीगल टीम होती है उसको रिव्यू करती है किन धाराओं में एफआईआर दर्ज होगी और सबसे बड़ी बात जो कंसर्न एजेंसी होती है उसके पास ये जांच भेज दी जाती है। लेकिन राहुल गांधी यहां पर अपनी बात पे अड़ गए और अड़ने के बाद राहुल गांधी पहले उन्होंने कहा कि तुरंत एफआईआर दर्ज करिए। आप डीसीपी हैं,
16: ठीक है, आप पानी पीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर। लेकिन इस बीच दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, डीसीपी सचिन शर्मा से मुलाकात राहुल गांधी की, उनके साथ पीड़ित भी मौजूद हैं और उसके बाद दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि कैसे धरने पर बैठ गए हैं राहुल गांधी। उनका कहना है कि तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, हालांकि मामला इस वक्त क्राइम ब्रांच में चल रहा है, इसके बावजूद ये जो पीड़ित हैं वो अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे, ऐसे में डीसीपी इस पर त्वरित कार्रवाई करें। लेकिन इस बीच ये भी समझना होगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर जुट सकते हैं, इसी को लेकर प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है, वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। मौसमी सिंह मेरे सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, ये हाल उस दिन की तरह ना हो जाए जब कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ता बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे, उसको लेकर और उसी से सबक लेते हुए आज किस तरीके की तैयारी, क्योंकि आज भी कोई कांग्रेस द्वारा बताया नहीं गया था, सूचित नहीं किया गया था कि वो आज इस तरीके से वहां पहुंचेंगे संसद मार्ग के थाने में और शिकायत दर्ज कराने की मांग करेंगे।
17: नेहा, ये बिल्कुल ही स्पोरैडिक था, या जिस तरीके से राहुल गांधी आजकल उनकी स्ट्रेटेजी है एक एक कर देना, जब वो प्रधानमंत्री आवास भी गए थे तो सांसदों को नहीं पता था यहाँ पे कि उनको प्रधानमंत्री आवास भरने पे जाना है, उनको खड़गे साहब के जन्मदिन के लिए बुलाया गया और बोला गया चलिए अब आगे चल लेते हैं, थोड़ी दूर पे प्रधानमंत्री आवास है। तो ये राहुल गांधी की अब स्ट्रैटेजी हो गई है, एक तरीके से स्टाइल हो गया है और यहाँ पे आप देखिए कि कोई मीडिया से लेके किसी के साथ भी राहुल गांधी वहां पे नहीं पहुंचे थे, वो सिर्फ साहिल लोचप और उनके जो वकील है, कोई ज्यादा नेता उनके साथ थे नहीं। राहुल गांधी अपने ऑफिस के कुछ अधिकारियों के साथ वहां पे पहुंचते हैं, पहले एक स्टेशन जाते हैं, वहां सुनवाई नहीं होती है तो फिर उसका डीसीपी से मिलने जाते हैं, पूछाते हैं, डीसीपी और जेसीपी साहब से मुलाकात करते हैं और फिर उसी समय फैसला लेते हैं कि इससे मैं नहीं पीछे हटूंगा और साहिल लोचप की एफआईआर का मामला जो है वो पूरा बताया जाए। ये आपको बता दें कि भले ही दिल्ली पुलिस कह रही है कि क्राइम ब्रांच में मामला है, लेकिन ये आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या जांच में जो अपडेट है वो भी नहीं दी जा रही थी। अगर क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रही है तो कोई आयो होगा इसका, मामला कहां तक पहुंचा ये कम से कम पुलिस बताए, इस पर भी पर्दा डाला जा रहा है और पुलिस के रवैये से नाराज यहां पे आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी वहां पे सड़क पर बैठ गए हैं। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर। एक और अहम बात यह है नेहा कि यहाँ से तो ये दुहाई नहीं दी जा सकती कि प्रधानमंत्री आवास है और हाई सिक्योरिटी जोन है प्रधानमंत्री।
16: ठीक है, तो तस्वीरें उस जगह की हैं जहां पर इस वक्त एकाएक राहुल गांधी पहुंच गए संसद मार्ग थाने में और वहां पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। जब मांग नहीं मानी गई तो डीसीपी से मुलाकात करने पहुंच गए। उनके साथ दो पीड़ित मौजूद हैं जो स्वयं एफआईआर दर्ज कराएंगे। इस बीच राहुल को लेकर दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि राहुल गांधी से शिकायत ले ली गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी से शिकायत ले ली गई है। शिकायत पर जांच अधिकारी को बता दिया गया है। क्राइम ब्रांच जांच कर रहा है इस पूरे मामले की। राहुल गांधी को बता दिया है कि क्राइम ब्रांच शिकायत कर रहा है और उनसे शिकायत ले भी गई है। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, अब राहुल गांधी को सूचित कर दिया गया है कि शिकायत ले ली गई है, क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, तो अब मामला अटका रह सकता है या राहुल गांधी वहां से हट सकते हैं?
10: देखिए, जिस तरीके का गतिरोध बना हुआ उसको देख करके तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि देखिए जब हमने देखा कि अंदर काफी देर, पहली बात तो आधे घंटे के करीब वो अंदर बैठे रहे और उसके बाद जब वो बाहर की तरफ आए, पहले वो अंदर जो हमें जानकारी मिली है जब शिकायत दी गई तो राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि तुरंत अभी FIR दर्ज की जाए, आप DCP है, आपको पूरी अथॉरिटी है। लेकिन उनसे कहा गया कि इस पूरे मामले की जांच 20 जुलाई को जो भी FIR थी, जो कुछ भी था, उन सब की जांच जो है वो क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर है। क्राइम ब्रांच सभी मामलों की एक साथ जांच कर रही है। ऐसे में यहां पर हमने आपकी शिकायत ले ली है, कंसर्न एजेंसीज को ये जो शिकायत है फॉरवर्ड कर दी जाएगी और उसके बाद कानूनन जो कानूनी कार्रवाई होती है, जो लीगल कार्रवाई जो बनती है इस शिकायत पर, वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन राहुल गांधी जो
16: जानकारी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, शिकायत पर जांच अधिकारी को बता दिया गया है, अब जांच अधिकारी ही आगे की कार्रवाई करेगा। क्या इस बात से संतुष्ट होंगे राहुल गांधी या फिर धरने पर कायम रहेंगे?
15: अब ये देखिए, ये तो राहुल गांधी ही बता सकते हैं, लेकिन इतना बिल्कुल समझ में आ रहा है कि जिस तरह से जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद राहुल गांधी पहले प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे, उसके बाद जो पैलेट गन के शिकार लोग हैं चाहे प्रोटेस्ट में शामिल लोगों को लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, आप लगातार अपनी बातों को लेकर मुखर रहते हैं, संसद भवन के अंदर भी आपने देखा ही होगा, अब वो सड़क पर सिलसिला शुरू हो गया है। जो राहुल गांधी है वो पहुंचे थे DCP नई दिल्ली के दफ्तर के बाहर, जो आज तक पर तस्वीर देख पा रहे हैं जो पुरुष अधिकारी हैं वो DCP नई दिल्ली है सचिन शर्मा, जबकि महिला अधिकारी है ज्वाइंट कमिश्नर नुपुर प्रसाद। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो कुछ भी होता है 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें जो कुछ भी होता है उसकी बकायदा डिपार्टमेंटल भी इंक्वायरी होती है, पुलिस भी असेसमेंट करती है कि 20 जुलाई को किसको चोट लगी, पुलिस को चोट लगी, प्रोटेस्टर को चोट लगी, पुलिस की तरफ से किस तरह का एक्शन हुआ, पुलिस पर जो एलिगेशन लगते हैं उन पर भी इन्वेस्टिगेशन होती है, तो ये सारी जांच चल रही है। उसके अलावा 20 जुलाई को मल्टीपल FIR दर्ज हुई थी जिसकी जांच भी क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। आपने जो शिकायत दी है उस शिकायत को भी हम कंपाइल कर रहे हैं और उसकी भी जांच कमेटी की टीम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के पास मामला है, तो सब कुछ जांच में सामने आएगा। लेकिन राहुल गांधी मीटिंग के बाद तुरंत धरने पर बैठ गए और फिलहाल धरना उनका जारी है। जी,
16: अब इस बीच टेक्निकल मोडालिटीज क्या है, कहां पर पेज फंसता है? अगर आपको ये कहा जाता है कि शिकायत आपकी पहुंच चुकी है जांच अधिकारी की, तो आगे मतलब बात बढ़ रही है, ये प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी है जिसके बारे में राहुल गांधी को सूचित किया जा रहा है, DCP से भी मुलाकात हो गई, आश्वासन भी हो गया, तो बात क्या सिर्फ अब FIR पर टिक गई है?
15: बिल्कुल, राहुल गांधी तो कम से कम राहुल गांधी की तरफ से नेहा बात FIR पर ही टिक गई है। अगर प्रोसीजर की आप बात करें तो 20 जुलाई को एक घटना हुई, घटना में मल्टीपल FIR दर्ज हुई, उस FIR पर ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। अगर कोई अपनी तरफ से कोई और दोबारा शिकायत देता है तो उसको भी एफआईआर उस पर भी, लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई थी आपको मालूम होगा इस पर भी जमकर सियासत हुई, चाहे सीजेपी की तरफ से, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सरकारों तक भी पहुंचा, दिल्ली सरकार तक भी कह दिया कि जो पीसफुल प्रोटेस्टर थे उन पे जो एफआईआर है वो वापस ली जाएगी। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जहां तक राहुल गांधी जिस चीज की बात कर रहे हैं, चाहे लाठीचार्ज हुआ, चाहे टियर गैस की सेल छोड़ी गई हो, पैलेट गन का आरोप हो, रबर गन का आरोप हो, तो ये एक प्रोसीजर का हिस्सा है। इसकी जांच कमेटी करती है, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो करती है। इस पे एफआईआर किसके खिलाफ दर्ज होगी, कैसे दर्ज होगी, ये तो राहुल गांधी बता सकते हैं। मुझे जहां तक जानकारी है, जो वो आरोप या वो शिकायत दे रहे हैं वो कंपाइल होगी, उसकी इंक्वायरी होगी, उसके बाद ही उस मामले में एफआईआर दर्ज होगी नहीं होगी ये कहा जा सकता है। अचानक से दिल्ली पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर दे, मुझे कम से कम ऐसा अभी फिलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और राहुल गांधी इसी बात पर अड़े हुए और इसी वजह से वो धरने पर बैठ गए। दिल्ली पुलिस ने सारा प्रोसीजर समझा दिया है कि 20 तारीख को क्या हुआ, कितनी एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर क्राइम ब्रांच के पास कहां ट्रांसफर हुई।
16: दरअसल कांग्रेस अब ये कह रही है अरविंद कि एफआईआर नहीं तो न्याय नहीं तो हम धरना देंगे। ऐसे में दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी रहेगी, एक बड़े धरना प्रदर्शन में ना तब्दील हो जाए, शाम होते होते वहां पर हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच जाए, उनके तमाम नेता पहुंच जाए, कैसे रोका जाएगा उनको?
15: समझाने बुझाने की कोशिश की जाएगी। देखिए प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी तो ये बैठे थे राहुल गांधी, लंबे वक्त तक समझाया गया, चूंकि एक बड़ा पद भी है राहुल गांधी के पास, लोकसभा में विपक्ष के नेता है, राइट सी बात है, उनको समझाया गया और प्रोटेस्ट का अधिकार सबको होता है। उसके बाद उनको समझाया जाएगा कि नई दिल्ली इलाका, यहाँ पर बीएनएस की धारा 163 लगी हुई है, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है आप जंतर मंतर पर जा सकते हैं। तो समझाने बुझाने की कोशिश दिल्ली पुलिस की टीम ने पहले भी की थी, अभी भी कर रही है। राहुल गांधी अपनी तरफ से वहां धरने पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी आपको मालूम है सुबह शुरू से ही इस मामले में एग्रेसिव है। बात तो अंदर भी हुई थी, जो डीसीपी नई दिल्ली के दफ्तर है वहां पर भी ज्वाइंट कमिश्नर नूपुर प्रसाद, उन्होंने समझा दिया, डीसीपी नई दिल्ली ने भी समझा दिया। उसके बाद बातचीत के बाद वो आकर बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। तो समझाने बुझाने की कोशिश है, लेकिन उसके बाद होता वही है जो बाद में अचानक से जबरन दिल्ली पुलिस उठाती है और किसी जगह पर डिटेन करके लिया जाता है। तो बहुत मुमकिन है कि कुछ देर बाद शायद डिटेन कर ले, हालांकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन होता ही, जो मैं प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ, प्रोसीजर होता यही है। तो फिलहाल राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए और पुलिस की कोशिश यही होगी कि उनको समझाया जाए और वहां से हटाया जाए।
16: ठीक है, अब बने रहिए हमारे साथ, बीच मांशु में सहयोगी जुड़े हुए हैं। मांशु, क्या धीरे धीरे वहां पर भीड़ बढ़ रही है, कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं?
10: बंद करने का, क्योंकि कार्यकर्ता ना है यहाँ पर, भीड़ ना पहुंचे। देखिए ये जो पूरा प्रीमिसेस है नेहा, इस प्रीमिसेस में जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है वो भी यहीं पर है, तो थाने में कंप्लेनेंट भी आते हैं। ऐसे में गेट पूरी तरीके से बंद करना भी मुश्किल है पुलिस के लिए, क्योंकि कंप्लेनेंट आ सकते हैं, कोई विक्टिम आ सकता है, लेकिन यहाँ पर इसको काफी हद तक बंद किया गया है और जो एंट्री है वो इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी इस समय जो मेन गेट है वहां पर तैनात कर दिया गया है और राहुल गांधी ठीक गेट के सामने आप देखिए अपने जो विक्टिम है उनके साथ यहां पर बैठ गए हैं। यहां पर जब राहुल गांधी अंदर थे तो उनको यही समझाने की कोशिश लगातार पुलिस के अधिकारियों द्वारा की गई कि जो प्रोसीजर है, जो लीगल प्रोसीजर है वो यहाँ पर अपनाया जाएगा। शिकायत दी गई है, ये शिकायत जो एजेंसी जांच कर रही है क्राइम ब्रांच।
16: ठीक है, मैं रोकूंगी आपको। इस बीच एक पोस्ट आया है कांग्रेस द्वारा, इसमें राहुल गांधी जन नायक की तरह दिखाई दे रहे हैं, अन्याय के खिलाफ जन नायक, इसका कोट है। दरअसल ये बड़ा बड़ा जन नायक यहाँ पर लिखा हुआ है। जाहिर तौर पर ये जो मुद्दा है इसे कांग्रेस छोड़ने वाली नहीं है। संसद में भी मुद्दा उठाया गया था पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर, लगातार राहुल गांधी गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर रहे थे और आज धरने पर इसी को लेकर बैठ गए हैं जब उन्हें जवाब नहीं मिला। हालांकि बीजेपी की ओर से कहा गया कि अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन भारी हंगामे के बीच इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अब देखिए ये पोस्ट बहुत ज्यादा निर्णायक हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस इसे पोज कर रही है वो ये कि अन्याय हुआ है क्योंकि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया।
3: एफआईआर रजिस्टर।
21: क्राइम ब्रांच मेरे को लगातार जांच चल रही है इस मामले के लिए,
22: क्या जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी
23: सर? सिंस एचपीसी हैज ऑलरेडी बीन कॉन्स्टिट्यूटेड,
24: जो यहां है उनका जो आदेश होगा उस आदेश को हम लोग फॉलो करेंगे। मैं अलग से यहां पर अब कोई बात आपसे कहूं वो उचित नहीं होगा। हम उनके समर्थन में यहाँ आए हैं, जो वो चाहेंगे और जैसा वो आदेश देंगे वैसे ही हम करेंगे।
22: क्योंकि राहुल जी तो स्पष्ट कह रहे हैं कि जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं।
24: राहुल जी इस मामले में अडिग हैं। राहुल जी आसानी से किसी बात को मानते नहीं। जब वो कन्विंस हो जाते हैं कि कोई बात सही है तो उस सही बात पर वो अडिग रहते हैं, और यही हम लोग सब मानते हैं कि उनमें एक विशेषता है जो और नेताओं में नहीं होती। उस विशेषता के संबंध में उस विशेषता को सपोर्ट करने के लिए समर्थन में हम यहाँ। मुझे आप अंदर जाने देंगे तो मैं आपको बताऊंगा, मुझे तो आप अंदर नहीं जाने।
23: सिंस द एचपीसी इज ऑलरेडी बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, कुड दिस डिमांड ऑफ एन एफआईआर नॉट हैव वेटेड टिल दे कम इन विद अ रिकमेंडेशन?
24: पॉइंट इज if an FIR is to be registered, it is to be registered. The law of the land does not change with the Supreme Court or the High Court. Supreme Court will also want the law of the land to be followed. If this is not the law of the land, they should go to the Supreme Court and tell them. But the Supreme Court will support the law of the land, which says when there is a cognizable offense, there should be an FIR. That's very clear. It's clear to a young child as well.
25: Salman Khurshid.
23: Well, we were just speaking to Mr. Salman Khurshid, who has clearly stated that the demand.
16: तो सलमान खुर्शीद ने कुछ भी साफ तौर पर बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है दरअसल पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या वहां पर और भी जुट रही है? आप ताजा तस्वीरें वहां से दिखाइए।
10: देखिए बिल्कुल दो अंदर की तस्वीरें हैं, ये आप अंदर की तस्वीर देखिए जहां पर राहुल गांधी बैठे हैं। यहां पर जैसे ही कुछ कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हुआ वैसे ही यहां पर गेट बंद कर दिया गया। अब मैं आपको बाहर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं जहां पर कार्यकर्ता कुछ पहुंच गए हैं और यहां पर नारेबाजी भी शुरू हो गई है। आप देखते हैं कि यहां पर आप देखिए जो थाने के बाहर की सीधी तस्वीर ये है कि यहां पर कुछ कार्यकर्ता पहुंचने शुरू हो गए हैं, नारेबाजी यहां पर शुरू हो गई है। ये मेन गेट की तस्वीर है, आप देखिए ये मैं तस्वीरें अंदर से दिखा रहा हूं क्योंकि यहां पर अब पुलिस ने एंट्री एग्जिट जो है वो काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दी है क्योंकि अंदर डीसीपी ऑफिस के अलावा जैसा मैंने पहले बताया था यहां पर लोकल थाना भी है, पार्लियामेंट स्ट्रीट का पुलिस थाना भी है, एसएचओ भी बैठते हैं और एसीपी बैठते हैं, कई सारे कंप्लेनेंट भी आते हैं। तो जो रोज का काम है वो काम किसी तरीके से प्रभावित ना हो इसकी वजह से ये गेट पूरी तरीके से बंद नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जब अधिकारी आए थे हमें ये भी जानकारी मिली है कि जो लीगल टीम थी उनको ये भी जानकारी दी गई कि जो पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, जो एफआईआर जो दर्ज है और जो शिकायतें हैं उनमें इस बात का जिक्र है और जो भी पहलू 20 जुलाई को जो कुछ भी हुआ था चाहे वो आरोप थे, पुलिस के ऊपर अटैक हुआ, छात्रों को चोट लगी, उनके ऊपर मारपीट का आरोप लगा पुलिस के ऊपर कि छात्रों के साथ ज्यादा बल प्रयोग किया गया, पैलेट गन, तो ये सारे जो पॉइंट है ये सारे पॉइंट जांच के दायरे में है, ये सब कुछ जांच के दायरे में है। अब
16: ठीक है, रोकने में आपको इसी बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हौसला, आप देखते रहिए आज।
26: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
27: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: पापा।
4: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का?
5: सब कैशलेस हो गया
4: है। ओला ला भाई मेरा बैट।
5: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
6: बिना चार्ज हुआ यार।
7: ओला बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
10: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
9: विमल बोलो जुबां केसरी।
11: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
12: B.R. अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है।
13: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट अलग स्टेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही बल्तिस्तान भी बनता।

0: ये सीसीटीवी तस्वीर लखनऊ में हुई दो हत्याओं में से एक की है। इसमें दिख रहा है कि बैंक के अंदर जा रही दिव्या मिश्रा नाम की महिला को उसका पति मानस गेट पर ही रोकता है, फिर दिव्या के साथ मारपीट करने लगता है। मारपीट होता देख पहले बैंक का गार्ड बाहर आता है, लेकिन डर कर वो भी लौट जाता है। तब बैंक के अंदर से अन्य स्टाफ दौड़कर बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो सड़क पर पहुंचते हैं, गोली चलती है और सभी स्टाफ डरकर बैंक की तरफ भागते हैं। इतनी देर में दिव्या का खून हो जाता है। ये सब कुछ लखनऊ के पॉश इलाके गोमती नगर में हुआ, जिस बैंक में दिव्या मिश्रा असिस्टेंट मैनेजर के रूप में काम करती थी, उसी बैंक के बाहर इस वारदात को अंजाम दिया गया। तलाक के मामले को लेकर आज कोर्ट में तारीख थी। उससे पहले ही मानस ने इस संगीन वारदात को अंजाम दिया। दिव्या को गोली मारने के बाद मानस ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर बाकायदा ये घोषणा भी कर दी, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है क्योंकि वो मुझे धोखा दे रही थी, अब मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना होगा। इसी स्टेटस के कुछ देर बाद मानस अपने घर पहुंचा, वहां अपनी बहन की हत्या की और फिर खुद को भी गोली मारकर जान दे दी।
1: वेपन्स मिली है, पिस्तल मिला है और तहरीर जैसे ही है मुकदमा लिख के कार्रवाई किया जाएगा।
0: अब इस मामले में खुलासा हुआ है कि आरोपी पति मानस कई दिनों से दिव्या की रेखी कर रहा था। 18 अगस्त को भी उसने दिव्या की गाड़ी रुकवाने की कोशिश की थी, तब से दिव्या डरी सहमी थी। उसने अपने करीबियों को बताया था कि मानस उसे मार देगा। अंकित मिश्रा और आशीष श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव लखनऊ आज तक

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।
1: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
1: विमल बोलो जुबां केसरी।
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: कांग्रेस नेता। जयपुर में स्कूल का दौरा करने गए सीजेपी के आशुतोष श्रंका को गांव वालों ने दौड़ाया, गाड़ियों के शीशे भी तोड़े, कई कार्यकर्ताओं को लगी चोट, सीजेपी का आरोप बीजेपी के लोगों ने किया हमला। सोरेन सरकार के नोटिफिकेशन के बाद रद्द हुई सभी परीक्षाओं पर कोर्ट ने लगाई रोक, नौकरी गंवाने वाले सभी कर्मचारी फिलहाल रहेंगे बहाल, आंदोलनकारी छात्र फिर नाराज। तो बड़ी खबर आपको बताते हैं राहुल गांधी के समर्थन में। राहुल गांधी जिस जगह पर धरने पर बैठे हुए संसद मार्ग थाने पर, अब वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता भी पहुंच चुके हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां पर पहुंच गई हैं, सलमान खुर्शीद वहां पर पहुंच गए हैं, और इससे पहले कई बड़े नेता ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके हैं। और अब ये देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा, ये अब पहुंच चुकी है संसद मार्ग थाने पर, उसी जगह पर जहां पर राहुल गांधी साहिल के परिजन धरने पर बैठे हुए हैं, और उनकी मांग है कि FIR होनी चाहिए। सलमान खुर्शीद भी कह रहे हैं जैसा राहुल गांधी चाह रहे हैं वैसा होगा, होना चाहिए वैसा। करीब डेढ़ घंटे से धरने पर राहुल गांधी बैठे हुए, देखिए 12 बजे का वक्त था जब राहुल गांधी साहिल के साथ, साहिल की माता के साथ और एक अधिवक्ता के साथ संसद मार्ग थाने पहुंचते हैं। अब वहां पर वो बातचीत करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि साहिल की बात को ऊपर तक पहुंचाने की। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी मौजूद हैं, हर एक तस्वीर सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। हिमांशु जरा बताइए अभी वहां पर क्या हो रहा है, बड़े नेता तो पहुंचना शुरू हो गए हैं।
1: बिल्कुल, वापस जो प्रियंका गांधी वाड्रा है वो दूसरे दरवाजे से अंदर आती है। जयराम रमेश जब यहाँ से सामने से आते हैं तो बड़ी संख्या में जो कांग्रेस कार्यकर्ता है देखिए वो अंदर पहुंच जाते हैं और यहाँ पहुँच कर नारेबाजी, ये आप देखिए ये थाने के अंदर की तस्वीरें हैं, यहाँ पहुँच के नारेबाजी शुरू कर देते हैं। इस वक्त हम लोग थाने के अंदर है, थाने कैंपस के अंदर मौजूद है जहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, और ये देखिए यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता है नारे साथ ये देखिए अब वो यहाँ पे बैठने लगे हैं। तमाम कार्यकर्ता जो बड़े जो नेता है वो यहाँ जो कार्यकर्ता थाने के अंदर, तो ये की तस्वीरें हैं। जबकि जो प्रियंका गांधी वाड्रा है बताया जा रहा है कि वो अंदर पहुंची है, ज्वाइंट CP DCP अंदर मौजूद है, जयराम रमेश है वो सीधे अंदर की तरफ गए हैं, कुछ एडवोकेट
0: कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंच गए, अब तो नारेबाजी भी होने लगी है वहाँ
1: DCP ऑफिस। बिल्कुल ये देखिए अंदर की तस्वीरें हैं हिमांशु, ये देखिए DCP ऑफिस ये अंदर की तस्वीरें हैं, बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पहुंच गए हैं और ये अंदर की तस्वीरें हैं जो यहाँ पर आकर के बैठने भी लगे हैं। महिलाएं भी शामिल हैं, जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं उनमें महिलाएं भी शामिल हैं और लगातार नारेबाजी जारी है कुछ देर पहले ही।
2: राहुल गांधी आज टुडे फॉर अ सिंपल थिंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर लॉज बाय रोड सर
3: हाँ हम इधर हटो भाई, हमें नहीं जाना भीड़ में।
0: हिंदी पहुंचते हैं, उनके साथ में पीड़ित होते हैं यानी साहिल और साहिल के परिजन और एक अधिवक्ता। उसके थोड़ी देर बाद अब देखिए किरण चौधरी तो वहां पर पहुंची जाती हैं, उसके बाद आप कुमारी शैलजा तो वहां पर पहुंचती हैं, कुमारी शैलजा के साथ में फिर उसके बाद सलमान खुर्शीद, फिर प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां पर पहुंच जाती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच जाते हैं, नारेबाजी भी वहां पर शुरू हो गई। और ये देखिए पीड़ित बीच में बैठे हुए हैं, दाईं तरफ राहुल गांधी और बाईं तरफ प्रियंका गांधी, कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा आप देखिए वहां पर लगा हुआ है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच चुके हैं और FIR दर्ज करने पर इस वक्त पीड़ित अड़े हुए हैं। और यह भी हम आपको बता दें कि बातचीत हुई, ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं हुई, करीबन आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक ज्वाइंट कमिश्नर नई दिल्ली नुपुर प्रसाद, DCP नई दिल्ली सचिन शर्मा, इनसे बातचीत हुई, इन लोगों ने ब्रीफ किया राहुल गांधी को कि आखिर क्या क्या कार्रवाई की गई है, जंतर मंतर पर जो हुआ उसके बाद से किस तरह की कार्रवाई की गई है, कितनी FIR दर्ज की गई है। और उसके बाद राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े हुए थे और जब गतिरोध बरकरार रहा, खत्म नहीं हुआ, तो उसके बाद राहुल गांधी जैसे ही अंदर से बाहर आते हैं ठीक पास में, पहले तो जमीन पर बैठ जाते हैं, उसके बाद ये कुर्सियां लगाई जाती हैं।

0: देखिए, पांच कुर्सियां लगी हुई हैं, चार कुर्सी लगी हुई है। अब उसमें से आप देखिए कि सबसे बीच में है पीड़ित परिवार साहिल, जिनके साथ फिर आपको बता रहे हैं, देखिए ये वही साहिल हैं जिनके साथ 24 जुलाई को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पैलेट गन से चोट के वो निशान दिखाई भी तो बताया था कि आग जाते जाते बची है। अब धरने के दौरान राहुल गांधी का पोस्ट भी आ गया सोशल मीडिया पर कि पुलिस बर्बरता के खिलाफ FIR दर्ज कराने में पहुंचा हुआ हूं। ये राहुल गांधी की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ है। साहिल लोचप के साथ बर्बरता हुई है। 24 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने इस बारे में बताया था। अब राहुल कह रहे हैं कि न्याय के लिए FIR दर्ज कराना चाहता हूं और जब तक FIR दर्ज नहीं होगी तब तक वो यहीं बैठे हैं, ऐसा राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। पीछे कुमारी शैलजा भी हैं, सलमान खुर्शीद भी हैं, हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक तस्वीर सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। हिमांशु बताइए इस वक्त वहां पर कैसा माहौल बन रहा है, क्योंकि बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, नारेबाजी हो रही है, लेकिन इस गतिरोध का खात्मा होगा या ये धरना जारी रहेगा, अभी क्या तस्वीरें दिख रही हैं?
1: देखिए, इस गतिरोध का खात्मा तो अब डिपेंड करता है राहुल गांधी के ऊपर, क्योंकि जो पुलिस का कहना है कि जो कंप्लेन है वो रिसीव कर ली गई, रिसीव करने के बाद इसे अब फॉरवर्ड किया जाएगा क्राइम ब्रांच को। अब आगे इस कंप्लेन पे क्या होगा वो क्राइम ब्रांच तय करेगी। अंदर नई दिल्ली जिले की ज्वाइंट CP जो जिन्होंने अभी पदभार संभाला है नुपुर प्रसाद, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट के DCP सचिन शर्मा, दोनों लोग मौजूद थे। लेकिन अब यहाँ की स्थिति यह है कि ये देखिए थाने के अंदर यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता जो है वो आकर के बैठ गए, यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता आकर के बैठ गए हैं। और ये देखिए, ये थाने के अंदर की तस्वीर है, और यहाँ पे अब रघुपति राघव राजा राम यहाँ पर गाया जा रहा है। देखिए, कभी पुलिस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, कभी रघुपति राघव का गान हो रहा है। अब ये देखिए तमाम जो कार्यकर्ता है, ये थाने के अंदर की तस्वीरें हैं। ये देखिए हिमांशु, देख रहे हैं आप?
0: बिल्कुल,
1: सामने लिखा हुआ डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस पार्लियामेंट स्ट्रीट, और उसके अंदर की तस्वीरें हैं। और ये जो है, अब ये कहां पर गतिरोध खत्म होगा ये बताना मुश्किल है। आप ये तो राहुल गांधी ही तय करेंगे, क्योंकि क्लियर पुलिस की तरफ से किया गया है कि जांच जो है वो राहुल गांधी की तरफ है। आपकी जो कंप्लेन है वो वहां पर फॉरवर्ड कर दी गई है।
0: अच्छा, आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा हिमांशु, आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा, क्योंकि सभी सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए, मौसमी भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। मौसमी, रघुपति राघव राजा राम या भजन भी शुरू हो गए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं, और अब थाने के बाहर, संसद मार्ग थाने के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ती जा रही है, भजन भी शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस नेताओं का भी जमावड़ा लग चुका है। क्या आपकी कांग्रेस नेताओं से बात हुई, उनसे क्या आगे की क्या रणनीति है?
2: देखिए, अब आपको दिखाते हैं 360 डिग्री तस्वीर। यहाँ ग्राउंड जीरो पार्लियामेंट स्ट्रीट से आप यहाँ पे देखिए, पीछे की तरफ आप किस तरीके से मीडिया का ताता है, उसके पीछे जो भजन आप कह रहे हैं वो भजन गाए जा रहे हैं। राहुल गांधी यहीं पे बैठे हुए हैं, और पुलिस ने पार्लियामेंट स्ट्रीट के जो गेट है उनको बंद कर दिया है। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता बाहर भी बैठे हैं। यहाँ राहुल गांधी तस्वीरों में साहिल लोचप के साथ बैठे हुए हैं, उनके परिवार के लोग भी हैं और वकील भी हैं। उसके अलावा जरा घुमाइए अजय कैमरा इस तरफ, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस का दफ्तर, ये टाइटल आपको नजर आएगा यहाँ पे। और उसके अलावा पूरे इर्द गिर्द आप देखिए तो कांग्रेस के जो आला नेता हैं वो मौजूद हैं, लेकिन बाहर की तरफ अगर आप नजर दौड़ाएं तो यहाँ जो काला फाटक है इसको बंद कर दिया गया है, बाहर से अंदर लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पे लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ताता बाहर बढ़ता चला जा रहा है। आइए जरा इधर से कोशिश करते हैं जाने की। यहाँ राहुल गांधी की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे नजर आ रही है, और एक तरीके से साइड एंगल से आप देखिए कि अलग अलग महकमे बने हुए हैं, अलग अलग खाने बने हुए हैं। यहाँ पे भी आप देखिए तो तमाम कांग्रेस के नेता भजन गा रहे हैं, और देवेंद्र यादव जो दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी अध्यक्ष है वो यहाँ पे आपको नजर आएंगे। तो दिल्ली कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है, NSUI है, और उसके अलावा सारे आला अधिकारी। इधर देखिए, यहाँ दिल्ली पुलिस के पसीने जो है वो छूट रहे हैं, सारे अधिकारी ये आपस में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस पूरे मामले को डिफ्यूज किया जाए। जो खबर हमारे क्राइम रिपोर्टर्स भी बता रहे थे कि देखिए इसमें आयोग का नंबर दे दिया गया है, शिकायत भी ले ली गई है, लेकिन अब बात इस बात पे अड़ गई है कि FIR दर्ज हो। राहुल गांधी यहाँ तो बैठे हुए हैं, लगातार सोशल मीडिया पर भी जो संदेश है वो देते चले जा रहे हैं। जाहिर तौर पर उनका ये संदेश ना सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए है बल्कि मोदी सरकार के लिए भी।
0: अब बिल्कुल ये तस्वीरें भी देखिए कैसे भजन यहाँ पर किए जा रहे हैं, और अब कांग्रेस अड़ गई है, राहुल गांधी अड़ गए हैं, और राहुल गांधी के साथ में राहुल गांधी के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच गए हैं, भजन वहां पर गाए जा रहे हैं, FIR की मांग पर अड़े हुए हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जैसे मौसमी बता रही थी कि अब, लेकिन अभी अभी ये तस्वीरें देखिए, हर एक तस्वीर बहुत ज्यादा जरूरी है, और तस्वीर में अभी दिख रहा है कि राहुल गांधी उठे हैं कुर्सी से और वो अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब क्या एक बार फिर से अंदर जाकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत होगी? जैसा कि देखिए, आपको हमने पहले भी बताया था कि राहुल गांधी की तरफ से बातचीत की गई थी जॉइंट कमिश्नर नई दिल्ली नुपुर प्रसाद, उनको सारी जानकारी दी, DCP नई दिल्ली सचिन शर्मा के साथ बातचीत की भी वो तस्वीरें सबने देखी थी। तो एक बार फिर से राहुल गांधी अंदर गए हैं, अब क्या अंदर बातचीत होगी या कुछ किन्हीं और कारणों से गए हैं, ये भी हम वहां पर बात जरूर करेंगे। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ में बने हुए। हिमांशु, मौसमी बता रही है कि पुलिस के लिए वाकई एक बड़ी टेंशन वाली बात है कि कैसे इस सिचुएशन का सामना किया जाए, अधिकारियों की क्या रणनीति बन रही है अब आगे, कैसे उसको टैकल किया जा रहा है इस सिचुएशन को?
1: बिल्कुल, देखिए देखिए, जयराम रमेश आए, सीधे अंदर गए हैं, बातचीत जारी है। पुलिस की तरफ से क्लियर पॉइंट रखा जा रहा है कि जो कंप्लेन है, जो पहला प्रोसीजर है कंप्लेन का रिसीव करने का, वो तुरंत रिसीव किया गया DCP के द्वारा, और उसके बाद इस कंप्लेन को जो कंसर्न अथॉरिटी है, जो इस पूरे जो 20 जुलाई को जो तमाम FIR दर्ज हुई है उनको जांच कर रही है, उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। और यहीं पर अब बात बिगड़ी, क्योंकि कांग्रेस राहुल गांधी थे वो अड़ गए कि FIR अभी दर्ज की जाए, दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि ये संभव नहीं है, जांच क्राइम ब्रांच कर रही है, FIR दर्ज करना न करना उनके पास है। साथ साथ ये भी पता लगा कि एक और रास्ता है कि आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के कोर्ट से आदेश जारी करवा सकते हैं सेपरेट FIR की, क्योंकि पुलिस द्वारा कहा गया कि कई सारी FIR दर्ज है और उन सभी इंसिडेंट को उसमें मिला जुला के जांच किया जा रहा है। और शुरुआत में अब ये देखिए, अब देखिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थाने के अंदर पहुंच जाते हैं और थाने के गेट को उसके बाद बंद किया जाता है, एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्ट की गई थी, और देखिए गेट को बंद किया गया ताकि और यहाँ पर कार्यकर्ता अंदर ना पहुंचने पाए, लेकिन जो कार्यकर्ता अंदर पहुंचे उनकी ठीक ठाक है। यहाँ पर आप देखिए इसमें महिलाएं कार्यकर्ता शामिल है, तमाम जो कार्यकर्ता वो यहाँ पर बैठे हैं, और यहाँ पर कभी तो नारे लग रहे हैं अभी कभी ये।
0: मैं फिर आऊंगा आपके पास, आप तस्वीरों पर नजर बनाए रखिए, अगर कहीं भी कुछ गतिविधि होती है तो तुरंत मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा। एक बार फिर कर लेते हैं मौसमी का। मौसमी, हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी जैसे ही धरने पर बैठे, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप, कांग्रेस के सभी नेता इस वक्त एक्टिव हैं, सोशल मीडिया के साथ भी BJP पर निशाना साधा जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं कि FIR होनी चाहिए, युवाओं के दुश्मन है BJP। अब ये बताइए कि कांग्रेस की लीडरशिप या नेताओं से आपकी बात हुई होगी, वो अब आगे क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि यहां पर बैठे रहेंगे? राहुल गांधी वापस आ गए अभी।
2: जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो आप देखिए PA to DCP, यहाँ से ही राहुल गांधी लगातार एंटर कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, पुलिस कुछ समझा रही है, कह रही है कि यहाँ से आप हट जाइए। और यहीं आप पीछे देखिए एक बैकशॉट आप देख रहे हैं, तमाम नेता यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहीं राहुल गांधी आगे खड़े हुए हैं और पुलिस भी उनको घेरे हुए है, प्रियंका गांधी भी यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगी। और ये सुप्रिया तो यहाँ पे देखिए, सुप्रिया श्रीनेत भी यहाँ पे नजर आ जाएंगे, सलमान खुर्शीद, तमाम नेता यहाँ पे अभी, हालांकि कोई कुछ बोल नहीं रहा है। जयराम साहब देखिए, जयराम रमेश भी है सर। सर कब तक रहेंगे कुछ बता दीजिए, राहुल गांधी कह रहे हैं FIR दर्ज नहीं हुई तब तक रहेंगे, एक प्रक्रिया होती है सर, जाहिर तौर पर अभी रणनीति बन रही है, प्लानिंग हो रही है, और राहुल गांधी ने जो संदेश दिया है कि
0: अभी जो तस्वीरों से समझ पा रहे हैं मौसमी, अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा, क्या अभी बिल्कुल ऐसा ही मौसमी, अभी क्या बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि राहुल गांधी क्या करने वाले हैं, क्या फैसला लेते हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं। तब तक वेट एंड वॉच, कोई बोलना नहीं चाहता है।
2: जाहिर तौर पे आप देखिए जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत, ये सब कम्युनिकेशन विभाग के हैं। पीछे रणदीप एक सेकंड, अंदर जा रहे हैं सर बात करने के लिए। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ रणदीप सुरजेवाला बता रहे हैं। सर कब तक यहाँ पे बैठना है, कुछ आइडिया है?
3: जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी।
2: तो ये देखिए मध्यस्थता के लिए कह लीजिए जयराम रमेश और रणदीप सुरजेवाला अब डीसीपी ऑफिस में भीतर जाते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक, यानी कि राहुल गांधी भीतर गए थे उसके बाद भी राहुल गांधी का स्टैंड नहीं बदला है और कांग्रेस का स्टैंड वही है। अभी आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला और जयराम रमेश अब डीसीपी से मिलने के लिए अंदर गए हैं, जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बाहर यूं ही धरने पर बैठे हुए हैं।
0: अच्छा, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए बहुत जरूरी है कि कांग्रेस, एक तरफ कांग्रेस लीडरशिप धरने पर बैठी है तो दूसरी तरफ पुलिस के अधिकारी अंदर मंथन कर रहा है। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, मौसमी बता रही थी जयराम रमेश हुए, रणदीप सुरजेवाला हुए, ये लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी भी अभी अंदर गए थे बातचीत करने के लिए, तो यानी अंदर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है। कुछ जरूर कोशिश की जा रही है समझने की कि आगे सिचुएशन को कैसे समझा जाए, कैसे टैकल किया जाए। अंदर क्या रणनीति बनाई जा रही है, अंदर से कोई खबर आई आपके पास?
1: देखिए अंदर दो चीजें, एक तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना दिल्ली पुलिस की पहली प्राथमिकता है, क्योंकि हिमांशु यहाँ पर जो स्थिति है थाने के अंदर, थाने के रोजमर्रा के बहुत अपने जो नियमित काम होते हैं वो तय हैं, वो होने ही होने हैं, तो किसी भी परिस्थिति में वो काम ना रुके, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी रहे और साथ ही साथ समझाया जा सके कि जो पुलिस है आपने शिकायत दे दी है तो शिकायत देने के बाद वो जो कार्रवाई है उस हिसाब से आगे की तरफ की जाएगी, जो कानूनन रूप से कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी, वो कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि जैसे ही कंप्लेन दी गई, क्लियर बोला गया कि कंप्लेन की पहली प्रक्रिया है रिसीव करना, वो पुलिस ने रिसीव किया। दूसरी प्रक्रिया है कि एक उस केस पर एक ऐसा शख्स हो जो जवाबदेह हो, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसका नंबर शेयर किया गया। तीसरी प्रक्रिया है कि जो भी अगर उस पूरे मामले की जांच जारी है।
0: हिमांशु, मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है इस पर मैं आपसे बात करूंगा। RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स इस वक्त जो थाना परिसर है, संसद थाना परिसर है, वहां पर पहुंच चुकी है और उस थाने परिसर के अंदर में है, क्योंकि देखिए भीड़ बहुत है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग चुका है, भजन नारेबाजी ये सब शुरू हो चुका है। कांग्रेस के बड़े नेता भी वहां पर पहुंच गए, टॉप लीडरशिप भी पहुंच गई है। तो हिमांशु मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स RAF के जवान भी पहुंच गए हैं थाने के अंदर। हिमांशु,
1: देखिए रैपिड एक्शन फोर्स बिल्कुल यहां पर तैनात है। रैपिड एक्शन फोर्स में आपको बताऊं हिमांशु कि 20 जुलाई से यहां पर उनकी तैनाती है ही, और जो बाहर का मेन गेट का पूरा इलाका है, अब चूंकि जिस तरीके की सिचुएशन बनी, जो जानकारी यहां पर आई कि कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आ सकते हैं, तो उसको देखते हुए थाने और आसपास के तमाम इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। हिमांशु अब ये तस्वीरें देखिए, मैं अंदर से बाहर की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थाने के बाहर के क्या हालात है, क्योंकि गेट तो बंद है। अब ऐसे में मैं आपको अंदर से ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे कैमरामैन प्रदीप गुप्ता जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि थाने के अंदर और बाहर की आपको हम थोड़ा ऊंचाई से पूरे फुटेज दिखा सके। तो
0: दिखाइए
1: की तैनाती यहाँ पर इसलिए की गई है ताकि किसी भी परिस्थिति में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एक, और दूसरा भीड़ न बढ़े, क्योंकि थाने के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, और थाने के अंदर की ये तस्वीरें कभी तो लोग, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर बैठ गए। अब देखिए यहाँ पर थाने के अंदर तमाम जो कार्यकर्ता है, ये महिलाएं भी है, देखिए तमाम जो पुरुष कार्यकर्ता है, जो लोग जयराम रमेश जब यहाँ पर पहुंचे थे, हिमांशु कुमार यहाँ पर पहुंचे तो उनके लिए गेट जब खुला तो तमाम कार्यकर्ता जो पहले से यहाँ पे थे वो एक साथ अंदर दाखिल हुए, और अब यहाँ पर कभी नारेबाजी चल रही है, कभी देशभक्ति के गीत देखे, जैसे इस समय आपको सुनाई दे रहा होगा देशभक्ति के गीत यहाँ पर गाए जा रहे हैं, तो कभी यहाँ पर भजन गाया जा रहा है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है यहाँ पर थाने के बाहर जो कंपाउंड है वहाँ पर, और अंदर की अगर मैं बात करूँ जो DCP ऑफिस है, ज्वाइंट CP नुपुर प्रसाद जिन्होंने कि अभी तुरंत ही चार्ज लिया है वो अंदर मौजूद है। इसके अलावा DCP सचिन शर्मा जिनको हम देख रहे हैं कि लगातार वो कभी राहुल गांधी के पास जा रहे हैं, कभी प्रियंका गांधी से बात कर रहे हैं, कभी वो जयराम रमेश को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो तमाम लीगल पहलू है उसको समझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और जो लगातार जो परिस्थिति बनी है, जो गतिरोध बना हुआ है, वो गतिरोध अभी भी बना हुआ है क्योंकि कांग्रेस तुरंत FIR की मांग कर रही है और पुलिस की तरफ से कि तुरंत FIR संभव नहीं है।
0: बिल्कुल, देखिए ये देखिए नारेबाजी और कैसे भजन गाए जा रहे हैं, ये देखिए स्लोगन सुनिए।

0: हिमान देखिए चरखा भी यहाँ पर अब जो गांधी जी के अब प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम वो तो हमने सुना ही था यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर चरखा वो भी चलने लगा है, शुरू हो गया है। मौसमी हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। मौसमी, हिमांशु बता रहे थे कि क्या तैयारियां की जा रही है, आरएएफ भी वहां पर पहुंच गई है, हाईली सेंसिटिव जोन में अब पूरी तरह से बदल चुका है क्योंकि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप भी यहीं पर है। आप लगातार कोशिश कर रही हैं बातचीत करने की, ये जानने की कि अंदर क्या हो रहा है, बातचीत का कोई रास्ता निकल पाया या नहीं, क्या कोई बातचीत हो पाई, कुछ खबर आई आपके पास?
1: अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी तमाम नेताओं से हम पूछ रहे थे, सभी नेताओं को बोला गया है कि आप मीडिया से अभी बात नहीं करें। क्या रणनीति होगी ये राहुल गांधी तय कर रहे हैं और रणनीति के लिए जो एक तरीके से रणदीप सुरजेवाला और जयराम रमेश अभी भीतर गए हैं मिलने डीसीपी से, जो रैपिड एक्शन फोर्स की आप बात कर रहे हैं, आप देखिए कि बाई तरफ पूरा नीला समुंदर आपको जो थाने के भीतर दिखाई दे रहा है वही नीला समुंदर यहाँ पे है। और हिमांशु बता ही रहे थे कि जब से 20 जुलाई के बाद से और छात्रों के प्रदर्शन के चलते एक एसओपी के तहत रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पे डिप्लॉय होती है, अगर जरूरत पड़ती है तो तुरंत ऑन द ग्राउंड नजर आ जाती है। और यही वजह है कि आप देखिए कि यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स है, बाहर गेट बंद कर दिया गया है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यहीं पे बैठे हुए हैं और एक तरीके से सलमान खुर्शीद हो या कोई भी नेता हो वो अभी रणनीति नहीं बता रहे हैं। या बाहर आप देखें तो आपको तमाम लोग दिख जाएंगे, कुछ कांग्रेस के नेता है उनसे ही पूछ लेते हैं कब तक बैठने का इरादा है यहाँ पे।
2: नमस्कार। निश्चित ही जो इस प्रकार प्रजातांत्रिक ढंग से राहुल गांधी जी एफआईआर कराना आए थे और आवेदन देना आए थे जो कि इस पर कार्रवाई नहीं हुई और 15-20 दिन हो गए, उसको लेकर धरने पर बैठे हैं हमारे विपक्ष के नेता
1: और भी लोग आ रहे हैं
2: और भी जैसे जैसे मालूम पड़ रही, बुलाया किसी को नहीं था, राहुल जी खुद ही आए थे। हाँ। लेकिन हम तो जैसे पता चला हम सब यहाँ पर पहुँचे हैं और निश्चित ही उनके धरने के समर्थन में है और न्याय मिले इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं।
1: सचिव है कांग्रेस के, इंदौर से आते हैं, पीछे आइए जरा दिखा दे, यहाँ आप देखिए हमारे बिल्कुल 5 कदम की दूरी पर यहाँ प्रियंका गांधी, गांधी और साहिल यहां पे बैठे हैं, उनके वकील भी बैठे हैं, उनकी माँ भी बैठी हुई हैं और यहाँ जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी यहाँ पे हैं। अभी भीतर से जैसे ही जो जानकारी आती है वो बताएंगे। सप्तगिरी इलाका है, अधीर रंजन चौधरी, शैलजा कुमारी, शैलजा पीछे आपको गुरदीप सप्पल नजर आ जाएंगे और दाहिने हाथ में सलमान खुर्शीद, यहाँ पे लगातार नारेबाजी हो रही है, पूरा एक तरीके से एरियल बर्ड्स आई व्यू आपको हाई एंगल से दिखाए तो यहाँ पे अनाउंसमेंट भी होना शुरू हो गई है। लगातार बताए रहा है कि बीएनएस की धारा के तहत आप ये इलाके को खाली करिए और एक तरीके से एक ऐसी स्थिति यहाँ पे बनती नजर आ रही है। अब सवाल ये है कि क्या कुछ आश्वासन पर राहुल गांधी मान जाते हैं या ये धरना कितने लंबे समय तक चलता है। जाहिर तौर पे साहिल को काफी जो चोटें आई हैं, ज्यादा देर तक वो भी यहाँ धरने पर नहीं बैठ पाएंगे, उनकी आंख में
0: बिल्कुल। मौसमी आप और जानकारी निकालते रहिए, आप बात करते रहिए, पता चल सके कि आगे क्या रणनीति कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो अपना रहे हैं, कैसे बातचीत का रास्ता यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक पुल बांधना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी और कांग्रेस की लीडरशिप के बीच में, ताकि कुछ रास्ता निकल सके, क्योंकि अभी तो राहुल गांधी का कहना है जब तक एफआईआर नहीं तब तक वो यहां से उठने वाले नहीं है। हिमांशु का फिर से रुख कर लेते हैं। हिमांशु, अनाउंसमेंट किया जा रहा है इस परिसर को खाली करवाने के लिए पुलिस की तरफ से, और क्या जानकारी है, क्या कर रही है पुलिस अभी?
3: बिल्कुल देखिए, क्योंकि देखिए जो पहले 144 थी धारा वो अब बीएनएस 163 बन गई है और ये बोला जा रहा है कि सेंसिटिव इलाका है, बीएनएस 163 है, आप लोग इस इलाके को खाली कर दीजिए। लेकिन यहाँ की आप अंदर की तस्वीर देखिए थाने की, यहाँ पे सरफरोशी की तमन्ना कभी गाया जा रहा है इस वक्त, कभी भजन कभी नारेबाजी, तो ये अंदर की तस्वीर है। जाहिर तौर पर कोई भी फिलहाल उस अनाउंसमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे रहा।
0: एक बार फिर रुक कर लेते हैं, मौसमी क्या जानकारी है आपके पास?
1: आता हूं हिमांशु। यार दर्ज नहीं होती तब तक आप लोग रुकेंगे? देवेंद्र जी एक
0: बोलिए मौसमी,
1: क्या रणनीति? देवेंद्र जी ये बस दो लाइन में बता दीजिए क्या रणनीति होने वाली है। अभी रुकेंगे, सारे दिल्ली के नेताओं को बोला है यहाँ पे आने के लिए, तो बेसिकली अभी हमसे पहले हिमांशु बात करें तो मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगी, हाँ। जब मैं हाथ दिखाऊं तो हमारे साथ कोई नेता होगा या कोई होगा मौके पर, तो आप प्लीज तुरंत आए यहाँ पे देवेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि अभी वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए हैं जयराम रमेश और रणदीप सुरजेवाला से कि क्या आगे की रणनीति तय हुई है। अभी देखिए यहाँ पे चर्चा भी चल रही है, देवेंद्र यादव यहाँ पे भीतर जाते हुए घेरा यहाँ पे बनाया गया है और देवेंद्र यादव दिल्ली के अध्यक्ष हैं तो जाहिर तौर पे ये संदेश दिया गया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कि आप पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर एकत्रित होइए। और यहाँ पे आप देखिए कि कुछ गहमा गहमी अब यहाँ पे लगातार डीसीपी ऑफिस में चल रही है। मनीष चतरथ आपको बाहर नजर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, गुरदीप सप्पल और यहाँ पे तमाम कुछ ऐसे नेता हैं जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं बाहर निकलते हुए।
0: अच्छा मौसमी, क्या ये मान सकते हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ये अभी आगे बैठे हुए हैं पीड़ित के साथ में और बाकी जो नेता हैं जो जो बातचीत का एक रास्ता अपनाते हैं या फिर जो आगे रहते हैं बात करने के लिए वो इस वक्त अंदर अधिकारियों के साथ संपर्क में है, बातचीत करने की कोशिश हो रही है?
1: क्यों जाएं हम नहीं जाएंगे भाई।
0: मौसमी, क्या ये माना जाए कि जी लीडरशिप आगे बैठी हुई है धरना प्रदर्शन करते हुए लेकिन जो बाकी नेता हैं जैसे आपने जयराम रमेश रणदीप सुरजेवाला बोला ये सब लोग अंदर अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं?
1: बिल्कुल वही मैंने आपको सबसे पहले हम लोग ने बताया था कि यहाँ रणदीप सुरजेवाला और जयराम रमेश जनरल सेक्रेटरी है पूरे कम्युनिकेशन विभाग के, रणनीतिकार हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला पुराने चावल हैं कांग्रेस के, हरियाणा से आते हैं, कर्नाटक के इंचार्ज हैं, दोनों महासचिव अभी इस वक्त डीसीपी ऑफिस में बातचीत कर रहे हैं। हालांकि ये बातचीत शायद पुलिस की तरफ से ज्यादा हो रही है, जो राहुल गांधी का रवैया लग रहा है, जो उनका स्टैंड लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि राहुल गांधी टस से मस होने वाले हैं। और जैसे ही कुछ हरकत होती है यहाँ पे तो हम आपको बिहाइंड पर्दे के पीछे भी जो हो रहा होगा वो बताएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए कितनी मुस्तैदी से रैपिड एक्शन फोर्स खड़ी हुई है। आप ये देखिए कि हमने 20 जुलाई को भी दिखाया था खाकी का समुंदर, एक नीला समुंदर यहाँ पे थाने के भीतर इस तरीके से स्टैंड बाय पर आरएएफ बहुत कम ही रहती है, उनकी टुकड़ी बाहर रहती है, बसों में रहते हैं और ज्यादातर धरना होता है तो सड़कों पर होता है। इस तरीके से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर जिस तरीके से कुर्सी लगा के राहुल गांधी, अब कुर्सी भी दिल्ली पुलिस ने ही दिलाई होगी, कुर्सी लगा के राहुल गांधी और उनके साथ साहिल लोचा बैठ गए हैं, दिल्ली पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन गया है। ऊपर से तमाम मीडिया जो है वो कवरेज कर रही है तो एक तरीके से कार्रवाई को लेकर जो सवाल खड़े कर रहे हैं राहुल गांधी, ये एक बड़ा दबाव दिल्ली पुलिस पर डाल रहे हैं। और आप देखिए कि बहुत जल्द ही दिल्ली पुलिस ने कहा कि आयोग का ये नंबर है, ये पड़ताल हो रही है, मामला अभी टाइम लगेगा, लेकिन 14-17-2 तारीख को साहिल लोचप जाते हैं, उनको जवाब नहीं मिलता तो राहुल गांधी को वो ट्रिगर पॉइंट मिल गया यहाँ पे हिमांशु, जो ट्रिगर पॉइंट है कि दिल्ली पुलिस, क्योंकि आरोप उस पर है राहुल गांधी के मुताबिक, दोष उस पर है, इसलिए इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। और साहिल लोचप की जो स्थिति है, चश्मा पहने बैठे हैं, चोटें उनकी अभी भी नजर आ रही है, तो ये एक तरीके से बहुत बड़ी मोदी सरकार की कार्रवाई पर भी चोट करने की कोशिश।
0: अब बिल्कुल देखिए राहुल गांधी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, वो जो हम तस्वीरें देख रहे हैं राहुल गांधी के हाथ में मोबाइल है और वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। और कुछ ही देर पहले राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया, जानकारी दी गई कि वो डीसीपी कार्यालय पहुंचे। अब देखिए राहुल को लेकर दिल्ली पुलिस के सूत्रों से खबर आ रही है, खबर हम आपको बता दें, राहुल गांधी से शिकायत ले ली गई है, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कह दिया गया है, लेकिन राहुल इतने में कहां मानने वाले, राहुल गांधी ने कह दिया है एफआईआर जब तक नहीं होगी हम नहीं उठने वाले, कुर्सी पर बैठ गए, पीड़ित भी कुर्सी पर साथ में बैठे हैं, राहुल प्रियंका गांधी वाड्रा भी हैं। अब ये तस्वीर एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं, ये तस्वीर के बारे में हमने आपको शुरुआत में भी बताया था, इस तस्वीर में ज्वाइंट कमिश्नर नई दिल्ली नुपुर प्रसाद हैं, डीसीपी नई दिल्ली सचिन शर्मा हैं। अब पूरी जानकारी दी गई राहुल गांधी की तरफ से, जब पूछा गया इस मामले में क्या हुआ तो पूरी जानकारी दी गई। अब पुलिस कह रही है कि राहुल को बता दिया गया है, क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है, क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जो भी सवाल राहुल गांधी की तरफ से पूछे गए दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उसका जवाब दिया, लेकिन राहुल गांधी का स्पष्ट मानना है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक नहीं उठेंगे। सोशल मीडिया पर भी राहुल गांधी ने लिखा कि साहिल लोचप के साथ पुलिस बर्बरता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने संसद मार्ग के डीसीपी कार्यालय पहुंचा।
4: उसको टेबल नहीं, किसी को चिपका,
5: प्लीज
4: देखिए 14 तारीख को भैया शांत हो जाएं। 14 तारीख को यहाँ पे कनॉट प्लेस में
5: माइक तो माइक
4: 14 तारीख को यहाँ पे भैया शांत हो जाए, फिर मैं बैठ जाता हूँ। चौदह तारीख को कनॉट प्लेस में पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट, देख लीजिए इनको अच्छी तरह, देख लीजिए ये, देखिए ये है पैलेट्स, ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ, ये इनके यहां लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है, वो फाइल दिखाओ।
5: अरे स्टिल,
4: ये
5: भाई
4: करता है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डिंग की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए होंगे, मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं, सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ ये अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है जिनका रेप किया जाता है, उनके साथ होता है, गरीबों पर यह किया जाता है, हर रोज किया जाता है, और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, डीडीआर और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे, हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है, दिखाइए यहां, दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आप दिखाइए, गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। साहिल की लॉयर है, 2 मिनट आप आइए बोलिए, आप ये कितने दिन से आप घूम रही हैं?
6: 13 अगस्त
4: से इनको एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में भेजा जा रहा है, आज सुबह हमें एक पुलिस स्टेशन गए, हमें बताया गया कि यहाँ नहीं हो सकता, आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाइए, हमें वहां से यहाँ भेजा। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए।
6: 14 अगस्त को वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन कनॉट प्लेस, दे सेड कि ये जंतर मंतर के सारे केसेस संसद मार्ग आए हैं, हम इधर भी आए कोऑपरेट करने के लिए। उन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट कनॉट प्लेस एरिया है, तो आप कनॉट प्लेस जाइए, हम फिर से कोऑपरेट करने के लिए वहां गए। वहां वो इनिशियली टेकअप कर रहे थे, द मोमेंट दे रेड द कंप्लेंट उन्होंने वापस कर दिया और बिठाया रखा काफी देर कि SHO साहब आ रहे हैं, SHO साहब आ रहे हैं। SHO साहब ने मुझसे पर्सनली फोन पे बात किया कि मैडम हम नहीं लेंगे, आप DCP क्राइम ब्रांच आदिपुरम जाइए, हम नहीं ले सकते, सॉरी। और उसके मेरे उनके साथ,
4: और जब आपने उनसे कहा तो फिर उन्होंने इनसे कहा कि नहीं ऊपर से ऑर्डर आया है।
6: और हमने ये भी कहा कि आप मेरी कंप्लेंट दर्ज कीजिए, मेरी DD नंबर दे दीजिए, आप कनेक्ट कर दीजिए जो भी FIR है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है DCP क्राइम ब्रांच के पास, नहीं आप वहाँ जाइए। हम 7 बजे पूरा दिन लगाने के बाद 7 बजे DCP क्राइम ब्रांच गए, वहाँ ACP उमेश भारद्वाज से भी मिले, उन्होंने कहा यहाँ डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं आती। आई सेड सर मैं भी यही समझा रही थी, डायरेक्टली कंप्लेंट गोज़ टू द पुलिस स्टेशन, एक आम आदमी तो पुलिस स्टेशन जाएगा कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए, सो यू आर क्लोजिंग द फर्स्ट डोर ऑफ रेमेडी टू हिम विच इज द पुलिस स्टेशन। तो उसकी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं हो रही है, FIR तो अभी तक नहीं, अब कंप्लेंट LOP के आने के बाद कंप्लेंट पे बस ठप्पा लगा, रिसीविंग मिला, FIR अभी भी दर्ज नहीं हो रही है। देयर इज अ क्लियर ऑफेंस दैट हैज हैपेंड, वी हैव एन MLC कॉपी ऑफ लेडी हार्डिंग विच सेज पंक्चर्ड वुंड्स एंड ओजिंग ब्लड ओजिंग आउट। ये MLC मैंने नहीं बनाई, ये लेडी हार्डिंग ने बनाई, दिस सेज दैट देयर आर पंक्चर्ड वुंड्स।
4: History of patient being hit by pellets fired by an unknown police officer near Jantar Mantar, Delhi on 27-26 at about 3 PM, following which he came by self to accident and emergency of LHMC and Srimati SK Hospital, Delhi. Patient is conscious, well oriented to time, place and person. BP, pulse, ये सारे details दिए हैं और यहाँ लिखा है multiple puncture wounds of size varying from 0.5 cm to 0.8 cm, present over the right side of the face, chest, right upper limb and right side of neck. The margins of the wounds are clean, surrounded by contusion and fresh blood is oozing from the wound. This is Lady Harding. ये है छर्रे, ये इन्होंने अपने शरीर से निकाले हैं, इनकी आंख में 3 है, दिखाइए, इनकी आंख से इनको नहीं दिखने वाला है, इनको अंधा कर दिया गया है। हम सिर्फ FIR मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे, DTR, FIR और IO की रिपोर्ट। ज्योति जी आप थोड़ा बताइए इनको आपका एक्सपीरियंस, आइए, ये इनकी मदर है ज्योति जी, इनका सुनिए जरा।
7: पीछे कर लो यार, पूरा फ्रेम में आ रहा है। 14 अगस्त को उन्होंने बोला यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वहाँ पे यही जो उसके पास ही जो दूसरा थाना है, फिर वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला ये तो वहीं होगा, फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे हमारे 2-3 घंटे बिठाया हंडाया, कुछ वहाँ पे बोले यहाँ कुछ नहीं होगा, थाने से लिख के आएगा जब हम करेंगे।
8: हमने पोस्ट किया,
6: कंप्लेंट, सो दैट द कंप्लेंट इज एक्नॉलेज्ड एटलीस्ट, देन वी ईमेल टू DCP क्राइम ब्रांच, DCP दिल्ली पुलिस, DCP सॉरी SHO कनॉट प्लेस, 3 पीपल पोस्टेड, ईमेल, एवरीथिंग, वी हैव अ रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग एंड स्टिल दे डिडंट इवन गिव अस एन एक्नॉलेजमेंट नंबर। टुडे द LOP हैड टू कम पर्सनली टू गेट अस one thappa receiving of the complaint. FIR still not registered for the last
7: 10-16 days.
4: किसी ने तो मारा होगा, कोई ना कोई क्राइम तो हुआ यहाँ पे, इसकी आँख गई है, इसके शरीर में छर्रे हैं, तो किसी ने तो किया होगा, पता लगाइए किसने किया, आपने नहीं किया तो किसी और ने किया, मगर FIR तो होना चाहिए, ये इंडियन सिटीजन है, थोड़ा अपना बताइए।
9: हुआ था 20 जुलाई की जंतर मंतर कनॉट प्लेस के पास, मेरे ऊपर पैलेट गन से हमला हुआ, जिसके बाद लेडी हार्डिंग में एडमिट हो गया, उसके बाद एम्स रेफर कर दिया गया, और एम्स में मेरी 2 सर्जरी हुई आग की, लेकिन वो 2 सर्जरी के बाद भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और अब मैं बेड रेस्ट से उठा तो 14 अगस्त को मैंने अपने हाथों से 7 पेजों की कंप्लेंट लिख के मेरी मम्मी को दी, जो आए और उनके बाद इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि ये जब से एफ आई आर रजिस्टर नहीं कर रहे, और आज भी उन्होंने बस रिसीव की वो दिया अभी भी एफ आई आर रजिस्टर।
8: थैंक
9: यू
8: सर, थैंक यू सो मच।
0: अब आपने सुना राहुल गांधी को, राहुल गांधी की तरफ से बहुत स्पष्ट कह दिया गया है कि कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ और उसके बाद से साहिल और साहिल के अधिवक्ता जिनको अभी आप सुन रहे थे, वो 14 और 17 अगस्त की शिकायतों पर कोई उनको रसीद नहीं दी गई। राहुल गांधी ने कह दिया है कि FIR नहीं तो हम हटेंगे नहीं। कांग्रेस अभी भी औपचारिक FIR दर्ज होने की मांग पर अड़ी हुई है। अब देखिए, पुलिस का यह दावा है कि CJP प्रदर्शन से जुड़ा मामला क्राइम ब्रांच देख रही है, राहुल गांधी को इसकी जानकारी दे दी गई है ना, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी नियुक्त कर लिया गया है और ये जानकारी दे दी गई है। लेकिन राहुल गांधी का बहुत स्पष्ट कहना है कि अगर चोट लगी है तो हमला हुआ है, किसी ने तो किया है, तो उस पर FIR क्यों नहीं होती, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, अभी तक क्यों साहिल को और उनके वकील को इधर से उधर टाला जा रहा है, पहले कनॉट प्लेस ऑफिस पर कहीं और। राहुल गांधी ने एम्स की रिपोर्ट भी दिखाई और उसमें बकायदा उसमें लिखा हुआ है कि अननोन पुलिसमैन और पैलेट क्या, और वो छर्रा भी दिखाया। अब ये भी बताया कि जो साहिल जो पीड़ित था उसके दिल के आसपास भी कई छर्रे हैं, 3 छर्रे बताए जो दिल के पास में है, आंखों में बताया कि आंखों के पास में अब एक आंख से दिखेगा नहीं, एक आंख खराब हो चुकी है साहिल की, ऐसा राहुल गांधी ने कहा कि एक आंख खराब हो चुकी है, उससे अब नहीं दिखेगा, शरीर के अंदर कई छर्रे हैं और इस बात की पुष्टि हुई है और मेडिकल रिपोर्ट इसमें दिखाई गई है, तो फिर FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही है। और इसी बात को लेकर धरने पर राहुल गांधी बैठे हुए, आप देखिए राहुल गांधी तो बैठे हुए हैं, प्रियंका भी आ चुकी है, अधीर रंजन चौधरी से लेकर रणदीप सुरजेवाला, सलमान खुर्शीद, कुमारी शैलजा, जयराम रमेश सब मौजूद हैं। अब देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जब कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की तरफ से निशाना साधा जा रहा है तो बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद का रिएक्शन सामने आया, वो सुनाते हैं।
10: हो गया, भाग की बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं अराजकता की राजनीति करते हैं। अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और अभी फिर यहां बैठ गए। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस घटना का वो संदर्भ दे रहे हैं उसकी शिकायत ली हो चुकी है, वो जांच का विषय। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पीड़ित थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक हाई पावर्ड कमिटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। उसमें 2 जज और हैं, एक CBI के पूर्व डायरेक्टर हैं और एक और बड़े अधिकारी हैं। तो इतनी हाई पावर्ड कमिटी में यह भी जांच का विषय होगा कि गोली चली या नहीं चली। तो यह क्या मतलब है इसका? आपको नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना राहुल गांधी। जो आपके मन में आएगा तो बस जहां जाके धरने पर बैठ जाएंगे और अराजकता फैलाना शुरू करेंगे।
0: शुरू हो गया सिलसिला एक दूसरे पर निशाना साधने का। रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, लेकिन राहुल गांधी कुछ देर पहले मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि हमें अंदर बताया गया कि ऊपर से ऑर्डर आया कि FIR दर्ज नहीं होगा। फिर सुना देते हैं आपको राहुल गांधी ने क्या कहा।
11: 14 तारीख को कनॉट प्लेस में पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत यह है, देखिए यह है पैलेट, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए, ये देखिए ये है पैलेट्स, ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ, ये इनके यहां लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है, वो फाइल दिखाओ।
12: अरे स्टिल
4: ये ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डिंग की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए होंगे, मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि FIR दर्ज कीजिए, FIR दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज FIR दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, FIR नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है। जब तक FIR नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं, सिंपल सी बात है। FIR करना होगा, इस देश में लाखों लोगों के साथ ये अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है, जिनका रेप किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों पर यह किया जाता है, हर रोज किया जाता है, और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है।
0: मौसमी हमारी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। मौसमी, राहुल गांधी बहुत आक्रामक अंदाज में दिखे और उन्होंने कह दिया कि अंदर से हमें ऐसा बताया गया कि ऊपर से कह दिया गया FIR दर्ज नहीं होगी, लेकिन जब तक FIR दर्ज नहीं होगी हम नहीं हटेंगे। रणनीति बहुत स्पष्ट है कि FIR की मांग पर अड़े हुए हैं और अभी उठने वाले नहीं है राहुल गांधी।
12: हेलो
1: जी, बिल्कुल, देखिए यहाँ पे हम लोग सामने आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी अभी भीतर गए हैं, राहुल गांधी अभी भीतर गए हैं, DCP साहब से शायद बात करने गए हैं। यहाँ पे साहिल और उनकी माँ प्रियंका गांधी बैठे हुए हैं, लेकिन अभी राहुल गांधी उठ के भीतर गए हैं, शायद कुछ बातचीत उधर से हो रही हो। मामले में देखिए अगर कोई भी कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है, अगर शिकायत दी जाए तो उसमें FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन 14 तारीख और 17 तारीख, दो तारीख जब साहिल गए हैं तो इनको ना तो आयोग बताया गया ना मामला दर्ज हुआ, ये इनका कहना है, और यहाँ पे वो बैठे हुए हैं। हालांकि अब ये देखना होगा कि क्या पुलिस, पहले आईजी जानकारी दी, अब क्या पुलिस वाकई में इस मामले में तफ्तीश करके, क्योंकि मामले को घटे हुए कुछ टाइम हो गया, कुछ तफ्तीश करके कुछ कार्रवाई करती है, एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थमाती है राहुल गांधी और साहिल को कि नहीं। लेकिन यहाँ पीछे भी आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग दिलचस्प सीन है यहाँ पे कि आप देखिए आगे प्रियंका गांधी, साहिल और उनकी माँ यहाँ पे बैठी हुई है। जाहिर तौर पर इनकी माँ के लिए भी ये बहुत मुश्किल वक्त है, साहिल एक युवा है और जिस तरीके से उनको गंभीर चोटें आई हैं, उनकी आंख में बहुत गंभीर तरीके से चोटें आई हैं। पीछे आप देखें तो तमाम कांग्रेस नेता वहां पे बैठे हुए हैं, सुप्रिया सुले से लेकर सलमान खुर्शीद पर, जयराम रमेश। लेकिन दिलचस्प ये है कि ये प्लान्ड नहीं था। पहले राहुल गांधी आते हैं, पहले मंदिर मार्ग थाने जाते हैं, उसके बाद पालो स्ट्रीट आते हैं, यहाँ पे दो आला अधिकारियों से बात करते हैं और उसके बाद सारी आके बैठ जाते हैं। तब तक कोई ना तो ज्यादा कार्यकर्ता थे, ना नेता थे, ना किसी का ताता था। उसके बाद से जब से राहुल गांधी यहाँ बैठे हैं, पूरा एक यहाँ पे जो तस्वीर है वो काफी तस्वीर जो है वो दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गई है, क्योंकि जिस तरीके से जमावड़ा हो रहा है तो राहुल गांधी ने अभी लगातार मीडिया से भी मुखातिब हो रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ एक लड़ाई लड़ी जा रही है वहीं जमीन पर भी ये लड़ाई लड़ी जा रही है। तो अपने आप में अब बात इस बात पे आके अड़ गई है कि क्या FIR दर्ज होगी इस मामले में या नहीं। और आप देखिए कि साहिल की जो माँ है उनके हाथ में वो थैली है, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स और सामान अपने बेटे के साथ लेके आई है।
0: अच्छा मौसमी, आप बने रहिए, तस्वीरों पर नजर बनाए रखिए, जब भी कोई इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है आप बताइएगा, तुरंत हम आपके पास आएंगे। देखिए संजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए, हिमांशु मिश्रा तो हमारे साथ बने हुए हैं संसद मार्ग थाने से, हर एक जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन बार बार जब बात होती है कि कोर्ट की, और देखिए दिल्ली पुलिस के सूत्रों से भी ये खबर आ रही है कि उनकी तरफ से कहा गया है, बता दिया गया है राहुल गांधी को कि ये मामला कोर्ट के सामने विचाराधीन है। संजय शर्मा बने हुए हमारे साथ में। संजय, दिल्ली पुलिस कह रही है कि कोर्ट के अंदर ये मामला विचाराधीन है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं हमें तो एफआईआर चाहिए और एफआईआर आपको दर्ज करनी होगी वरना हम नहीं उठेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कोर्ट में ये मामला कहां तक पहुंचा हुआ है।
12: हिमांशु, कोर्ट में मामला काफी आगे तक पहुंचा हुआ है और इस मामले की तमाम, इन मामले से जुड़े तमाम पहलुओं की बातचीत, तमाम पहलुओं की चर्चा सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने अब यहां पर 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया है जिसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुभाष आर रेड्डी कर रहे हैं और इसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रविशंकर झा और दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस शैलेंद्र कौर ये इसमें शामिल हैं। इसके अलावा सीबीआई के रिटायर्ड डायरेक्टर ऋषि शुक्ला वो भी इसमें हैं और इसके साथ ही एक मेघालय के पूर्व डीजीपी इसके सदस्य हैं। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि इन सारे सदस्यों को, इन अध्यक्ष को यानी पूरी कमेटी, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस लोग, सबसे ज्यादा इस मामले से जुड़े हुए लोग और उनके अनुभव सबसे ज्यादा हैं तो और विशेषज्ञ हैं वो इस मामले के, लिहाजा इनको इस कमेटी में शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इन 500 लोगों से आग्रह किया और इस आग्रह को इन सभी लोगों ने स्वीकार किया और कोर्ट ने ये उम्मीद जताई है कि समय समय पर यह कमेटी अपनी रिपोर्ट देती रहेगी। सिर्फ पैलेट गन का ही मामला नहीं है, ये भी है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को टैकल करने के लिए चरणबद्ध तरीके से क्या क्या कार्रवाई की जाए,
0: ये बिल्कुल कहा जा सकता है। देखिए सभी सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तो उनसे भी हम बात कर रहे हैं। अरविंद ओझा भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अरविंद, बहुत स्पष्ट है, राहुल गांधी ने तो कह दिया कि अंदर हम गए थे बातचीत करने के लिए और हमसे ये कह दिया गया कि ऊपर से ऑर्डर है, एफआईआर दर्ज नहीं होगी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो हम उठेंगे नहीं और हमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का नाम भी चाहिए, रसीद भी चाहिए और इसी बात पर अड़े हुए हैं। आपके पास और क्या खबर आ रही है?
13: देखिये, जब राहुल गांधी दिल्ली पुलिस के डीसीपी के पास गए थे तो राहुल गांधी ने जो अधिकारी थे उनसे कहा कि एफआईआर दर्ज करो और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने पूरा बता दिया, कंप्लेन भी ले लिया, जो राहुल गांधी के साथ साहिल नाम का शख्स था उसका कंप्लेन भी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने ले लिया और बोला कि पहले इसी पूरे मामले की जांच चल रही है उसमें इसको शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ बता दिया कि जो पूरा घटनाक्रम है 20 जुलाई का जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, यहाँ तक कि जो पैलेट गन का मुद्दा है वो भी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है जिसको लेकर एक कमेटी बनाई गई है। तो जो रॉयटिंग की एफआईआर है, जो घटनाक्रम है वो कोर्ट के सामने है, पुलिस उस मामले की पूरी जांच कर रही है तो उसमें सारे तथ्य सामने आ ही जाएंगे। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने अधिकारियों को कहा एफआईआर दर्ज करो वरना मैं धरने पर जाकर बैठूंगा। बाहर आए, वो धरने पर आकर बैठ गए और जो बाकी तस्वीर है ताजा वो सामने दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ साफ राहुल गांधी के साथ जो शख्स साहिल आया था उससे जो शिकायत की कॉपी थी वो शिकायत की कॉपी ली और ये कहा कि जो भी घटनाक्रम है उसमें इसको शामिल किया जाएगा।
0: नहीं अरविंद, लेकिन अब शिकायत, सिर्फ शिकायत लेने से राहुल गांधी तो संतुष्ट नहीं है, तो अब आगे दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कदम उठाया जा सकता है या फिर अभी अंदर मंथन चल रहा है, सभी अधिकारी बैठे हुए हैं?
13: बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस मुख्यालय में जो तमाम सीनियर अधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। नई दिल्ली इलाके में जो इलाके के डीसीपी सचिन शर्मा, ज्वाइंट कमिश्नर नूपुर प्रसाद वो बैठे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है कि आप तो यहां से आप हट जाए। जो पूरा मामला है, जो पूरा घटनाक्रम है, 20 जुलाई को कितनी एफआईआर दर्ज हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है, कमेटी बना दी गई है, पैलेट गन का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में उठा, तो वो सारा घटनाक्रम बता दिया गया है राहुल गांधी को और उनकी पार्टी को और ये बता दिया गया है कि सभी मामलों की जांच चल रही है। जब मामला देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच चुका है, सर्वोच्च अदालत के सामने सारे तथ्य है, सभी पार्टियां, सारे स्टेक होल्डर है, सीजेपी है, दिल्ली पुलिस की फैमिली की तरफ से जो बातें रखी गई थी, सारे हलफनामे दिल्ली पुलिस ने भी अपना बयान दे दिया।
0: ये जानकारी तो ज्वाइंट कमिश्नर नई दिल्ली नूपुर प्रसाद और डीसीपी नई दिल्ली सचिन शर्मा ने दी है जैसा आप बता भी रहे थे, लेकिन राहुल गांधी संतुष्ट नहीं है ना? राहुल गांधी कह रहे हैं कि एफआईआर के बिना हम उठने वाले यहां पर नहीं। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हमारे साथ हिमांशु मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। अभी रविशंकर प्रसाद को तो आप सुन ही रहे थे, अब बीजेपी का सरकार का क्या रुख है इस पर, वो उनसे हम जान लेते हैं। हिमांशु, राहुल गांधी की तरफ से तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि हम नहीं उठेंगे जब तक एफआईआर नहीं होगी, कई आरोप लगा दिए, वो तो ये भी कह रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर आ गया है कि एफआईआर दर्ज मत करो और इसलिए नहीं हो रही है। अब आगे क्या रुख बनता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी का क्या रुख है?
14: देखिए, बीजेपी का रुख इस पे कोई ऐसा नहीं है कि वो क्या चाहती है, वो जो भी एफआईआर होनी है, वो जो एप्लीकेशन दी गई है, जो शिकायत दी गई है, उसके आधार पर जो कानूनी प्रक्रिया होगी, उसके आधार पर जो है वो एफआईआर होगी, उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है। क्योंकि आप कोई एफआईआर करनी होती है उससे पहले आप एक शिकायत देते हैं, और उसका एक प्रोसेस है जिसका जिक्र जो है अरविंद भी कर रहे थे, और उनका साफ साफ ये है कि अगर आपने एक शिकायत दी है, आप उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है, एफआईआर किस धारा में होगी, ये सारी चीजें जो है वो पुलिस जो है वो देखेगी और उसके बाद एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन आप राहुल गांधी क्योंकि वहां बैठ गए हैं, वहां कांग्रेस के तमाम नेता वहां पहुंच गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो राजनीतिकरण है वो हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इसमें अभी किसी भी तरीके से इसमें शामिल नहीं होना चाहती, क्योंकि ये पुलिस और कांग्रेस का मामला है, और कांग्रेस की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई उस बच्चे की जिसपे पैलेट गन का यूज हुआ है, जो आरोप राहुल गांधी का है। तो अब सरकार की तरफ से तो कोई इस पे बयान नहीं आया, जो भी बयान आएगा वो दिल्ली पुलिस की तरफ से आएगा, और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि अगर आप शिकायत कर रहे हैं ठीक है, पुलिस उस पर जो भी उचित कार्रवाई होगी नियमों के तहत वो करेगी।
0: देखिए, बीजेपी तो लगातार ये कह, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, इन सबके बयान आ रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि नेता विपक्ष होकर कहीं पर भी धरने पर बैठ जाते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले में अभी पहुंच गया है और कमेटी भी गठित कर दी गई है। मौसमी बनी हुई है हमारे साथ में, मौसमी, आज राहुल गांधी ही फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और राहुल गांधी ही अपनी बात रख रहे हैं, बाकी तो नेता भी खुलकर कुछ बोल नहीं रहे हैं, आपने कोशिश भी की थी बात करने की, क्या अब कांग्रेस का कोई और नेता खुलकर अपनी बात रख रहा है कि आगे की क्या रणनीति होगी, या फिर सारा फैसला आज सिर्फ राहुल गांधी करेंगे?
1: देखिए हिमांशु, जाहिर है कि राहुल गांधी की जो स्ट्रैटेजी रहती है, आप देखिए कि अब नहीं कई सालों से राहुल गांधी अगर किसी चीज पर अड़ते हैं या बिलीव करते हैं कि वो सही है, तो चाहे उनको नुकसान हो रहा हो या फायदा हो रहा हो, ये कहा जाता है वो पीछे नहीं हटते। आपने पहले सुना था सलमान खुर्शीद भी यही बात कह रहे थे। अभी आप देखिए कि एक महीने के भीतर ही ये दूसरी बार है जब इस तरीके से राहुल गांधी धरने पर बैठे हैं। हालांकि वो वक्त और था, तब नेता साथ में थे और एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात थी, लेकिन तब से अब यमुना में बहुत पानी बह गया और जो लाठीचार्ज की कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी यहां पे आए थे, उनको नहीं लगा कि साहिल को इंसाफ इस तरीके से मिलते हुए नजर आ रहा है, आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। और आप देखिए कि अगर पूरे पेरिफरी में 360 डिग्रीज जैसे कहेंगे कि टॉप एंगल से दिखाएं, तो जिस तरीके से आप देखिए, अगर पहले से योजना होती, प्लानिंग होती कि धरना ही देंगे, घेराव ही करेंगे, तो और बहुत ज्यादा भीड़ होती, लेकिन ये प्लानिंग हुई एकाएक, औचक तौर पे राहुल गांधी ने फैसला किया कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और उसके कई ऐसे नेता थे जिनको जानकारी नहीं थी इस बारे में, वो एकाएक यहाँ पे कई लोग पहुंच पाए, कई लोग अभी पहुंच भी नहीं पाए। हालांकि आप देखिए कि यहाँ पे दो तीन बारी राहुल गांधी भीतर गए हैं, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला भीतर गए हैं, बातचीत करने की कोशिश की है, लगातार पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है कि आयोग का नंबर दे दिया है, पड़ताल हो रही है, क्राइम ब्रांच के पास है मामला, लेकिन कहीं ना कहीं बात अब ठन गई है और लगातार राहुल गांधी का एकमात्र निशाना ये है कि अगर दिल्ली पुलिस ने नहीं मारा तो किसने मारा, किसी ने तो मारा है। और मेडिकल रिपोर्ट भी पढ़ते हुए उन्होंने कहा, यहाँ पे आप देखिए सवाल ये है कि साहिल कितनी देर तक इस तरीके से बैठ पाते हैं, क्योंकि मेडिकली भी उनकी कंडीशन जो है वो बहुत साउंड नहीं है। गर्मी का भी वक्त है और मौसम भी काफी खराब उस नजर से है, लेकिन
0: अब देखिए सभी की नजर यही है मौसमी, आपने बहुत सही बात की, क्योंकि देखिए तबीयत खराब है, दिल के पास भी छर्रे हैं, ये बताया गया है राहुल गांधी।

0: गांधी प्रियंका भी वहां पर डटी हुई हैं। कुछ देर पहले राहुल गांधी आए, मीडिया के सामने उन्होंने पूरी बात रखी कि अंदर क्या बात हुई अधिकारियों से, फिर से वो सुनवा देते हैं।
1: 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत यह है, देखिए ये है पैलेट, देख लीजिए इनको अच्छी तरह, देख लीजिए ये, देखिए ये है पैलेट, ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ, ये इनके यहां लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है, एम्स की एरी जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए होंगे, मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि FIR दर्ज कीजिए, FIR दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक हैं, साहिल हैं ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज FIR दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, FIR नहीं हो सकता है, जब तक FIR नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं।
0: ने कह दिया जब तक FIR दर्ज नहीं होती है हम यहां से नहीं हिलने वाले, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। फिर से एक बार संजय का रुख कर लेते हैं, संजय शर्मा हमारे साथ में बने हुए हैं। संजय, किस तरह की मजबूरी यहां पर फंसी हुई है, अगर आप इसे बता सकें, दिल्ली पुलिस की भी, क्योंकि राहुल गांधी FIR दर्ज करने की मांग पर अड़े हुए हैं और दिल्ली पुलिस तो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, जंतर मंतर के मामले की जांच तो क्राइम ब्रांच कर रहा है। ऑडियो देखिएगा, शायद आप म्यूट हैं। जी,
2: अब इसमें इस मामले में हाई पावर्ड कमेटी जांच कर रही है, मामला विचाराधीन है, तो हाई पावर्ड कमेटी अगर चाहे तो बातचीत के दौरान जब वो जांच करेगी तो उस समय अगर उसको उपयुक्त लगेगा तो हो सकता है कि हाई पावर्ड कमेटी FIR दर्ज करने को बोले या उसमें आगे के दीर्घकालीन उपाय करे, स्थायी उपाय करे। और पैलेट गन को लेकर ये तो निश्चित है कि हाई पावर कमेटी जो भी सिफारिशें देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई पावर कमेटी समय समय पर हमें सिफारिशें देंगी, और जो फाइनल सिफारिशें आएंगी वो बहुत काम की होंगी, क्योंकि ये सारे लोग जो 500 लोग हैं अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और बहुत एक्सपीरियंस है इनके पास, पूल ऑफ एक्सपीरियंस है, एक्सलेंसी है, तो लिहाजा ये सारे लोग ऐसे उपाय और ऐसी सिफारिशें करेंगे जिससे कि आगे आने वाले समय में इस तरह के आंदोलनों को कैसे निपटा जाए, क्योंकि ये भी देखा गया इस आंदोलन में कि आगे तो छात्र थे जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, लेकिन पीछे जो लोग थे उन्होंने पथराव किया, उन्होंने गड़बड़ की, तो ऐसी स्थिति में जब आगे शांतिपूर्ण लोग हों, पीछे गड़बड़ करने वाले लोग हों, उनसे निपटने को क्या इंतजाम किए जाए, तो ये तमाम चीजें हैं। पुलिस पर हमला हुआ, इसकी भी जांच वो कमेटी कर रही है, पुलिस वालों की तरफ से जो ज्यादतियां हुई उसकी भी जांच कर रही है, तो कोर्ट में तो ये पिटीशन लगाई गई कि पैलेट गन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैलेट गन का इस्तेमाल करना ये विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना हाँ। होता है, इसमें निर्णय लेना होता है कि पैलेट गन का कहां इस्तेमाल होगा कहां नहीं, तो ये ब्लैंकेट बैन हम नहीं लगा सकते हैं, तो ये कमेटी से उम्मीद है कि कमेटी ये कहेगी कहां किस स्थिति के बाद पैलेट गन का इस्तेमाल होगा हाँ। किस स्थिति तक कैसी स्थिति हो जाए तो उस समय आंसू गैस के गोले चलाए जाएंगे, क्या होगा, ये तमाम चीजों का चरणबद्ध इस पर होगा, तो इसमें
0: बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पहलू पर यहां पर ध्यान दिया जाएगा। देखिए जैसे हमने आपको बताया था कि यहां पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी आप समझ ही गए कि धरना दे रहे हैं और वो उठने वाले नहीं है जब तक FIR दर्ज नहीं होती, लेकिन बीजेपी की तरफ से तो पलटवार किया जा रहा है, रविशंकर प्रसाद कैसे निशाना साध रहे हैं LOP पर, वो सुनिए।
3: ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की

0: राजनीति करते हैं। अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और अभी फिर यहां बैठ गए। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस घटना का वो संदर्भ दे रहे हैं उसकी शिकायत लीक हो चुकी है, वो जांच का विषय। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पीड़ित थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक हाई पावर्ड कमिटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। उसमें दो जज और हैं, एक सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर हैं और एक और बड़े अधिकारी हैं। तो इतनी हाई पावर्ड कमिटी में यह भी जांच का विषय होगा कि गोली चली या नहीं चली। तो यह क्या मतलब है इसका? आपको नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना राहुल गांधी। जो आपके मन में आएगा तो बस जहां जाके धरने पर बैठ जाएंगे और अराजकता फैलाना शुरू करेंगे।
1: तो पैलेट गन पर महासंग्राम छिड़ चुका है, शब्द बाण निकाले जा रहे हैं हर तरफ से। अब देखिए 12 बजे संसद मार्ग थाने पर राहुल गांधी पहुंचे थे, 12:30 पर निकलते हैं और तब से वो धरने पर बैठे और तब से हर एक तस्वीर संसद मार्ग थाने से हिमांशु मिश्रा हमें दिखा रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। हिमांशु, एक बार फिर से जरा बता दीजिए अभी क्या तस्वीरें वहां पर दिखाई दे रही हैं, क्या कोई रास्ता निकल पाया दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की तरफ से, अंदर से सूत्रों से आपके क्या खबर आ रही है? हिमांशु, चलिए हिमांशु तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, दोबारा आप जुड़ेंगे कुछ देर बाद, लेकिन मौसमी भी उसी वक्त वहां पर मौजूद हैं और वो भी हर एक तस्वीर पहुंचा रही हैं और ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि राहुल गांधी और उनकी टीम अब आगे क्या रणनीति बना रही है। कुछ और खबर आपके सूत्र बता रहे हैं मौसमी?
2: आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अभी बहरहाल राहुल गांधी ने ये फैसला लिया है कि यहीं पे बैठेंगे जब तक एफआईआर जो है वो रजिस्टर नहीं होती। पर अगर अजय आप दिखाइए तो प्रियंका गांधी के बगल में जो बैठी हुई हैं वो वकील हैं स्वाति खन्ना और वो वकील हैं पीड़ित की। तो आखिर प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है और साहिल और उनकी माँ है, उनके साथ वकील को भी इसलिए बैठाया गया है क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस से जानती है कि ये लड़ाई कानून तक तो जाएगी ही, एक लड़ाई कोर्ट तक जाएगी ही। एफआईआर ना रजिस्टर करना या ढिलाई दिखाना, लापरवाही बरतना, ये मामला भी कानूनी हो सकता है। और किस तरीके से, एक तरीके से साक्ष्य और सबूत के साथ राहुल गांधी यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि उन्होंने वकील को भी बैठाया है कि 2-3 बारी चक्कर लगाए, लगातार पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे हैं दिल्ली पुलिस थाने के और कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी आप देखें तो आराम से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सबके साथ इस योजना के साथ बैठे हैं कि यहाँ पे लंबा बैठना होगा। सब नेता भी आपको नजर आ रहे हैं और अब कोई बातचीत भी नहीं हो रही है, यानी कि अब ये तो करो या वाली स्थिति है, ब्लैक और व्हाइट में एफआईआर होगी कि नहीं और उसी के हिसाब से आगे की रणनीति, आगे का खाका तैयार किया जाएगा कांग्रेस द्वारा। लेकिन एक तरीके से आप देखिए कि दूसरी बार ये हो रहा है कि कांग्रेस इस तरीके से सड़कों पर पिछले 1 महीने के भीतर ही नजर आ रही है, पूरी टीम सक्रिय हो गई है, सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, यूथ कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो या जो भी विंग्स हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस हो, वो सक्रिय है और इसको कोशिश किया जाए
1: आगे तो बढ़ाया जा रहा है। मौसमी, मैं आपके अनुभव से जानना चाह रहा हूं क्योंकि आपने पहले भी देखा है, हम वो दो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, 21 जुलाई जब पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी धरने पर बैठे थे, कुछ वक्त का धरना था, अब 21 अगस्त यानी 1 महीने बाद 2026 आज संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं। आपके अनुभव से मैं जानना चाह रहा हूं, आपको वहां की तस्वीरों को देखते हुए क्या लगता है कि 2 घंटे तो लगभग अभी हो चुके हैं, क्या ये लंबा खिंचेगा या फिर जो सांकेतिक होता है या दोपहर तक शाम तक उसके बाद कुछ ना कुछ समाधान निकाला जाएगा या फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से करते हुए इसको खत्म कर दिया जाएगा? अभी आपको क्या लग रहा है तस्वीरें देखकर?
2: देखिए, ये चीज तो कॉमन है, अगर आप तस्वीर भी देखें कि दोनों में जो है दिल्ली पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत का विषय बन गया है, एक पीएम आवास और एक पार्लियामेंट स्ट्रीट का थाना, तो ये बात कॉमन है। लेकिन मुझे वहाँ पीएम आवास में नजर आया था कि दिल्ली पुलिस में एक बेचैनी थी कि तरह से राहुल गांधी को हटाया जाए, सरकार का भी हस्तक्षेप था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री वहां पहुंच गए थे, मामला बेहद सियासी था, अखिलेश यादव भी आ गए थे, तमाम नेता इधर उधर आ रहे थे, फिर उसके बाद कुछ ही देर में बसों का तांता, इतनी देर में तो वहां बसों का तांता आ गया था, लोगों को डिटेन किया जा रहा था, राहुल गांधी को उठाया जा रहा था, प्रियंका गांधी को उठाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी स्थिरता है, पीछे बातचीत चल रही है, एक यहाँ की तरफ से अडिगता है, मामला दिल्ली पुलिस पे आ टिका है, मामला किसी वीआईपी का नहीं है, दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर है, और दिल्ली पुलिस जाहिर तौर पे इसमें ज्यादा पशुपेश में होगी कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ दिल्ली पुलिस पर धरना दिल्ली पुलिस के पुलिस स्टेशन में हो रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, सड़कों में होता अलग बात है, तस्वीरें बहुत कुछ कह जाती हैं कभी कभी, और आप देखिए कि सिर्फ डीसीपी के ऑफिस के सामने ये मामला इस तरह तूल पकड़ रहा है, तो ये बहुत अच्छी खबर नहीं है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के लिए भी, जिन्होंने ताजा कारोबार संभाला था और उसके बाद वो लाठीचार्ज हो गया था, ये बहुत अच्छी तस्वीरें उनके लिए भी नहीं है। जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस भी अपनी तरफ से अपना पक्ष रख रही है और कह रही है कि हमने जो उचित आश्वासन थे वो हमने
1: अब आप सिचुएशन देखिए,
2: कहीं ना कहीं कटघरे में यहाँ
1: सिचुएशन देखिए कि कटघरे में दिल्ली पुलिस, अब बाहर राहुल गांधी प्रियंका गांधी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है पूरी ये दिख रहा है, और अंदर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, जॉइंट कमिश्नर नई दिल्ली नुपुर प्रसाद, जिनसे पहले भी वो तस्वीरें सामने आई थी जो इस वक्त आप तस्वीर देख भी रहे हैं, आपको डीसीपी नई दिल्ली सचिन शर्मा भी दिखाई दे रहे होंगे जिनसे सबसे पहले राहुल गांधी की बात हुई थी, समाधान कोई नहीं निकला। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा भी हैं, हिमांशु एक बात बताइए, क्या बीजेपी यहां पर बिल्कुल चलिए दोबारा हम जोड़ेंगे, सरकार रिएक्शन तो आ रहे हैं ना, रविशंकर प्रसाद का रिएक्शन आया था और भी कई लोगों का रिएक्शन आया था, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं हिमांशु मिश्रा, बात कर लेते दोबारा उनसे। हिमांशु, ये माना जाए कि अभी इस वक्त बीजेपी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि राहुल गांधी का धरना कितना चलता है क्या नहीं चलता है, क्योंकि देखिए आक्रामक अंदाज तो दिख रहा है, बयान सामने आ रहे हैं, लीडर ऑफ ओपोजिशन कहीं पर भी धरना देना शुरू कर देते हैं, ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। चलिए दोबारा जुड़ जाएंगे, लेकिन आप समझिए इस वक्त तकनीकी कारण हो सकते हैं कि कई बार वो तस्वीरें सामने नहीं आ रही है, लेकिन हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और अब आप फिर देखिए 12 बजे राहुल गांधी पहुंचते हैं, उनके साथ में कौन था, साहिल लोचा, उनकी मां, उनकी अधिवक्ता जो इससे पहले भी कई बार जा चुकी है, दो बार जा चुकी है थाने में, लेकिन इधर से उधर उनको कर दिया जाता था, एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन है, रसीद कौन है, यह नहीं बताया जाता था। अब जयराम रमेश का कह रहे सुनते हैं,
3: और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा जो साहिल के परिवार की मांग, साहिल की मां की मांग, उनके वकील की मांग है कि एफआईआर दर्ज किया जाए, ये कोई जनरल एफआईआर नहीं है, ये बिल्कुल एफआईआर है साहिल पर, जो गैर कानूनी ढंग से पुलिस एक्शन हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, उस संदर्भ में एफआईआर दर्ज किया जाए और एफआईआर नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर उनको दिया जाए। दो घंटे से ये पर हमारी मांग मंजूर नहीं हुआ, अभी तक बातचीत चल रही होगी, गृह सचिव से बात किए होंगे, कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली से बात किए होंगे, और अंत में तो दिल्ली गृहमंत्री से बात करना ही है, पर अब तक कुछ हमें कहा नहीं गया है। मांग सिंपल है, एफआईआर दर्ज करो, रजिस्ट्रेशन नंबर दो और हम यहां से निकलेंगे, और जब तक रजिस्ट्रेशन नंबर एफआईआर नया एफआईआर, ये बात सही है, पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज किया गया था, वो तो जनरल एफआईआर था, ये साहिल ने मांग की है और उन्होंने सबूत दिखाया कि आंख दबाई है, उनके सारे शरीर पर निशान है जो पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। राहुल जी ने भी उसका जिक्र किया है, दिखाया है। उसके बावजूद ये मांग जो है, मैं समझता हूँ वास्तविक मांग है, साहिल की वास्तविक मांग है, साहिल की मां की वास्तविक मांग है, साहिल के वकील की वास्तविक मांग है, और उसी को आवाज दे रहे हैं नेता प्रतिपक्ष लोकसभा। मुद्दा यही है FIR, और अफसोस की बात है, बड़ी निंदनीय बात है, ये अस्वीकार्य बात है, इसको हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं गैर संवैधानिक बात है जो बीजेपी की ओर से इस मुद्दे को ध्रुवीकरण के चश्मे से देख रहे हैं।
1: सर, किसको आरोपी बनाने की मांग कर रहे हैं आप लोग इसमें?
3: मुझे खत्म तो करना है।
1: सर, पुलिस क्या करती है?
4: तो ये पुलिस क्या कह रहे हैं?
1: सर, ये कह रहे हैं सर, बीजेपी ये कह रही है।
3: तो एक मिनट, तो 20 जुलाई का जनरल FIR था। ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, 5 सदस्यों वाली पैनल का गठन भी हुआ है, जांच होगा। पर साहिल की मांग जो बार बार वो कर रहे हैं, सुबह से कर रहे हैं, एक पुलिस स्टेशन में गए थे, उनको कहा गया यहाँ आओ, यहाँ आए और यहाँ मांग की कि मुझ पर जो गैर कानूनी पुलिस एक्शन हुआ, किसी पुलिस अफसर का नाम नहीं लिया उन्होंने, गैर कानूनी पुलिस कार्रवाई जो हुई है, पैलेट गन का जो इस्तेमाल किया गया है, उस पर मैं FIR दर्ज कराना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ LOP जो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा है, उन्होंने उस मांग का समर्थन किया, उन्होंने भी बात की कि FIR दर्ज किया जाए, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाए साहिल को, साहिल के वकील को, साहिल के परिवार को, पर वो नहीं हुआ। उसके बावजूद क्या हो रहा है, BJP की ओर से प्रचार किया जा रहा है, इसको ध्रुवीकरण का मुद्दा बनाना है।
1: मौसमी हमारी सहयोगी हमारे साथ में बनी है, हर एक तस्वीर पहुंचा रही है, हर एक खबर भी पहुंचा रही है क्या हो रहा है। जयराम रमेश का बयान आया, जयराम रमेश ने बहुत स्पष्ट कह दिया मौसमी की नहीं उठेंगे जब तक FIR दर्ज नहीं होगी, IO का नाम नहीं आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आएगा, रसीद नहीं दी जाएगी, तब तक नहीं उठेंगे। और ये साहिल और साहिल के परिवार की मांग है।
2: जी बिल्कुल, देखिए अब यहाँ पे जयराम रमेश उसी बात को इलैबोरेट करते हुए जो राहुल गांधी ने कही है कि जब तक FIR नहीं आती, जिस तरीके से वो लोग उनके वकील जो दलील दे रहे हैं, उनके वकील जो बता रहे हैं, कानून की अनदेखी हो रही है और कहीं किसी भी तरीके से इस पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे, तो एक तरीके से अब ये देखना होगा कि कितनी देर ये लोग यहाँ पे रुकेंगे। दिल्ली पुलिस का क्या रुख होता है ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि FIR की मांग हो रही है और जाहिर तौर पे जो मांग उठाई गई है वो वकील के जरिए, साहिल को जो रिप्रेजेंट कर रही है उनके जरिए ये मांग उठाई गई है कि उनको चोटें आई हैं, जिस तरीके से उसको लेके एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए। यही बात जयराम रमेश भी दो टूक कहते हुए, और ऐसे में ये लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस समेत यहीं पे अब डेरा डालकर बैठ गए हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में। राहुल गांधी कई बारी आए हैं मानशु, कई बारी धरने हुए हैं, कई बारी स्ट्रीट पर प्रोटेस्ट हुई है, लेकिन शायद ही ये वो इतना समय राहुल गांधी ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में इस तरीके से बाहर बैठे हुए धरना देते हुए बिताया होगा। पहली बार है कि एक तरीके से राहुल गांधी धरने पर तो कई बार बैठे हैं, पर पहली बार है कि राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस यहाँ पुलिस थाने के भीतर ही इस तरीके से धरने पर बैठ गई हो। अपने आप में आप देखिए, पार्लियामेंट का मानसून सत्र खत्म हुए एक हफ्ता नहीं हुआ और कुल एक हफ्ते बाद ही संसद से सड़क की लड़ाई लड़ते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस यहाँ दिखते हुए नजर आ रही है। अब सवाल ये है कि सरकार कांग्रेस के इस पूरी रणनीति को किस तरीके से काउंटर करती है।
1: मौसमी, राहुल गांधी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव है और दिख रहा है कि मोबाइल में कुछ ना कुछ वो जरूर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी लगातार वो मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि हम धरने पर बैठे हुए हैं, जब तक FIR दर्ज नहीं होगी हम यहां से उठेंगे नहीं, यानी राहुल गांधी ने जो गेंद है वो दिल्ली पुलिस के पाले में फेंक दी है। अब दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है इस पर जरूर इंतजार रहेगा, लेकिन ढाई घंटा हो चुका है राहुल गांधी के धरने को, 3 घंटे हो चुके थाने में पहुंचे हुए। इस पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी, एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटेंगे।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
3: बी.आर. अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है।
4: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट इलेक्ट्रेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही बल्तिस्तान भी बनता।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: हम तो पुराने सीएम साहिबा को भी बुलाते थे, वो एसएसबी के कार्यक्रम में आना नहीं चाहती थी। हमने तो आपको बुलाया, आप आ गए, आपका स्वागत है। एसएसबी हो, बीएसएफ हो, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक सरकार की एजेंसी नहीं है। ये अहर्निश तप तपस्या और परिश्रम कर देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला बल है। इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिसी, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी गवर्नमेंट, सभी राजनीतिक दलों को, चाहे बंगाल में हो या केंद्र में जो सरकार हो, सभी ने जवानों के साथ आत्मीय रिश्ता रखना चाहिए। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर ही 1129 एकड़ भूमि, जो हम 2014 से मांगते थे, हमें मिलती नहीं थी। बीएसएफ और एसएसबी के लिए 1129 एकड़ भूमि शुभेंदु जी ने दे दिया। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए। हम ममता बनर्जी के हाथ पैर जोड़कर थक गए, मगर हमें भूमि नहीं दी। एक बार उन्होंने आग्रह रखा, मैं उनकी ऑफिस में भी पहुंच गया कि ममता जी, वो भारतीय जनता पार्टी को जमीन नहीं देना है, बीएसएफ को देना है, आप कृपया दे दीजिए। हा बोला, मगर गई तब तक नहीं दी।

0: ढाई घंटे से दिल्ली के संसद मार्ग के बाहर थाने पर बैठे हैं राहुल गांधी। पैलेट गन के इस्तेमाल पर एफआईआर दर्ज करने के लिए अचानक पहुंचे थाने। कहा, जब तक केस दर्ज नहीं होता यहीं बैठूंगा। साथ में है प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता। संसद मार्ग थाने में बड़ी भीड़। दिल्ली पुलिस का दावा, ले ली गई है राहुल गांधी की शिकायत। बीजेपी का पलटवार। कहा, अराजकता फैला रहे हैं राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी कर रही है मामले की जांच। जयपुर में स्कूल का दौरा करने गए सीजीपी के नेता आशुतोष रांका को गांव वालों ने दौड़ाया। गाड़ियों के शीशे भी तोड़े। कई कार्यकर्ताओं को लगी है चोट। सीजीपी का आरोप, बीजेपी के लोगों ने किया है हमला। सोरेन सरकार के नोटिफिकेशन के बाद रद्द हुई सभी परीक्षाओं पर कोर्ट ने लगाई रोक। नौकरी गंवाने वाले सभी कर्मचारी फिलहाल रहेंगे बहाल। आंदोलनकारी छात्र फिर नाराज। नमस्कार, 3 बजे के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं उस बड़ी खबर की जो लगातार जंतर मंतर से आ रही है। जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर, पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर राहुल गांधी अब सीधे पुलिस के दरवाजे के करीब ढाई घंटे से बाहर बैठे हुए हैं। वो दरअसल थाने के बाहर शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराने को लेकर वहां बैठ गए, जिसमें दोपहर 12:15 बजे से दिल्ली के संसद मार्ग थाने में धरने पर राहुल गांधी वहां बैठे हैं। और राहुल गांधी का कहना है कि जब तक पैलेट गन से पीड़ित साहिल की एफआईआर दर्ज नहीं कर ली जाती तब तक वो वहां से नहीं हटेंगे। इस दौरान उन्होंने साहिल को पैलेट गन से लगे छर्रे भी दिखाए। उन्होंने कहा कि पैलेट गन चलने के सबूत हैं और ये छर्रे साहिल के शरीर से निकाले गए। अगर पुलिस ने गन नहीं चलाई तो किसने चलाई? उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और जयराम रमेश जैसे कांग्रेस के बड़े नेता भी उनके साथ वहां मौजूद है। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्र साहिल घायल हो गए थे और कहा जा रहा था, यह आरोप लगाया जा रहा है राहुल गांधी द्वारा कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, और आज उसी शिकायत को लेकर वो एफआईआर दर्ज करने को लेकर संसद मार्ग थाने पहुंचे हैं।
1: 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत यह है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह, देख लीजिए ये, देखिए ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहां लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। एम्स की एरी जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए होंगे। मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं।
2: साथ ही सर, राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे हैं पैलेट गन्स को लेकर के एफआईआर करने के लिए, विक्टिम को लेकर के भी पहुंचे।
3: मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, मुझे इसलिए नहीं आश्चर्य हुआ कि राहुल गांधी एक भी एक्शन बता दीजिए जो एलओपी का एक्शन हो। हमारे बिहार में कहते हैं एक होता है पागल, एक होता है बुद्ध पागल, तो ये बुद्ध पागल है। 1 महीना हो गया 20 तारीख को, सुप्रीम कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुका हाई पावर कमिटी बनाने का, ये कोर्ट से ऊपर है, क्राइम ब्रांच जांच कर रहे, ये मुद्दा पहले से है, सुप्रीम कोर्ट में सारे विजुअल स्क्रिप्ट जा चुका है, ये नौटंकी के सिवा और कुछ तो है नहीं। ये नौटंकी भी है मीडिया में हाईलाइट रहने के लिए और वंदे मातरम पर देश का ध्यान बटाने के लिए। केवल वंदे मातरम नहीं, वंदे मातरम में जिस तरह से बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान का इन्होंने अपमान किया है, और ये लोगों को अभी तक जवाब नहीं दिया कि 60 करोड़ रुपया विदेश यात्रा का कहां से आया, इसलिए भटकाने का। ये नागरिकता के सवाल पर केस है, उस पर ये भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश को भरमाने, भटकाने और अराजकता फैलाने, यही इनका तीन काम है। 12 साल हो गया, एक भी इनका बाइट या एक भी एक्शन जो देश के हित में हो, एक सलूशन, एक सजेशन, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं, बस अहंकार इतना है कि लगता है कि उनके परिवार को छोड़ करके कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर हो नहीं सकता, और इसी अहंकार के फ्रस्ट्रेशन में है।
2: सवाल यह है कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अमित शाह डर क्यों रहे हैं, न्याय से क्यों घबरा रहे हैं,
3: कि पागल है क्या, जब सुप्रीम कोर्ट में केस है तो न्यायालय से तो वो भाग रहे हैं, पागलपन का कोई ठिकाना है? अमित शाह राहुल गांधी जैसे कई लोगों को पागल कर देंगे।
2: बातचीत करने के लिए कैमरा पर्सन संजीव के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
0: और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे। देखिए, लगातार बीजेपी इसको लेकर आक्रामक हो गई। राहुल गांधी के धरने को लेकर अब बीजेपी के कई नेताओं ने पलटवार करना शुरू किया। रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल गांधी पर हमला किया, लेकिन उन बयानों को भी आपको सुनाएंगे। लेकिन हमारे साथ हमारी सहयोगी मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। मौसमी सिंह का रुख करते हैं। मौसमी, राहुल गांधी अब भी वहां धरने पर बैठे हुए और हम देख रहे थे तस्वीरें इससे पहले कि बसेस लगाई जा रही है, कोशिश की जा रही है, क्या उसी तरीके की पुलिस कोशिश कर रही है जो आपको याद होगा कि 7RCR के बारे यानी प्रधानमंत्री आवास के बाहर जब राहुल गांधी वहां मौजूद थे उनको हटाने के लिए पुलिस ने हटाया गया था, क्या उसी तरीके की कार्रवाई की जा सकती है?
4: देखिए, मुझे लगता है कि पुलिस मंथन में लगी हुई है, सोच रही है कि क्या रणनीति, क्या आगे किया जाए। अगर राहुल गांधी जो कहा जा रहा है कि यहीं पे बैठेंगे जब तक FIR नहीं होगी, हिलेंगे नहीं, क्योंकि वहां पे तो पुलिस ने तुरंत रिएक्ट किया था। यहाँ आप देखिए कि यहाँ पे कुर्सियां भी दे दी गई हैं, एक घेरा भी बनाया गया है। दिल्ली पुलिस के जो कर्मी है वो भी यहाँ पे इस घेरे को मेंटेन करने के लिए बकायदा फैसिलिटेट कर रहे हैं। राहुल गांधी की सुरक्षा कर्मी तो है ही, उसके साथ ही बिल्कुल चौखट पर, एंट्री पॉइंट पर राहुल गांधी बैठे हुए हैं। आप देखिए यहाँ पे जो भजन हो रहा है उसको सुन रहे हैं राहुल गांधी, और उनके साथ साहिल बगल में बैठे हैं, वो भी भजनों को सुन रहे हैं। राहुल गांधी आंख बंद करके, अभी थोड़ी देर पहले ही फोन पे आप जब कह रहे थे कि राहुल गांधी है, तो राहुल गांधी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे होंगे। उनका ट्विटर जो एक्स हैंडल है वो उनके दूसरे जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो हैंडल करते हैं, पर क्या कहना है, क्या बोलना है, वो लगातार इसका इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। और क्लैरिटी यहाँ पे कांग्रेस ने रखी हुई है। राहुल गांधी दो बारी मीडिया से बात कर चुके हैं, जयराम रमेश बोल चुके हैं, यहाँ पे कोई चेंज ऑफ स्टैंड नहीं हुआ है कि FIR दर्ज होगी तभी हम जाएंगे। और यहाँ पे उनका जो उनके जो परिजन है वो भी साथ में बैठे हैं, जो भजन हो रहे हैं वो, जहाँ राहुल गांधी आप देखिए भजन सुनते हुए नजर आ रहे हैं, तो बगल में ही जो घेरा है एक अलग छोटा खाना बना है, सेवा दल और बाकी आउटफिट्स के लोग लगातार भजन गा रहे हैं। और यहाँ पे पूरी स्थिति जस की तस नजर आ रही है। आप देखिए कि
0: रुख करते रहेंगे, तस्वीरें मौसमी
4: जमीन पर बैठ गए हैं,
0: बिल्कुल
4: सलमान खुर्शीद से लेके बाकी नेता भी बैठे हुए हैं।
0: बिल्कुल मौसमी, आपका दोबारा से रुख करेंगे। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी, देखिए हमें तस्वीरें दिखा रही है और बता रही है कि किस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई कांग्रेस के नेता वहां पर मौजूद है। हमारे साथ दिल्ली पुलिस के पूर्व एक अधिकारी भी KG त्यागी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख भी करते हैं। त्यागी साहब, जब इस तरीके का प्रोटोकॉल होता है, खासतौर पर जब आप शिकायत की बात करते हैं कि लिखित शिकायत दी जाती है, उसके बाद उस पर मंथन किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में जो पाया जाता है उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाती है, क्या आप कुछ और प्रोटोकॉल्स होते हैं अगर आप बताएं किसी भी कंप्लेंट को लेकर, एक जनरल कंप्लेंट को लेकर भी?
5: नमस्कार, मैं आपको बताऊं कि ये जो अल्लाह फुल असेंबली वाला इशू है, जो जितने भी 20 एफआईआर यहां पे दर्ज हुई है पार्लियामेंट स्ट्रीट में, ऑल दे आर रिलेटिंग द रॉइट्स एंड द अल्लाह फुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए हुई है। और सीआरपीसी ने इसको डिस्पर्स करने का एक प्रोसीजर दिया हुआ है कि कैसे फोर्स यूज करेगी। सब इंस्पेक्टर रैंक तक का आदमी फोर्स यूज कर सकता है और वो डिस्पर्स कर सकता है क्राउड को। और ये सीआरपीसी का सेक्शन 149 बड़ा क्लियर है इस बारे में, फोर्स यूज होगी। और जो ऑफिसर उस रॉइट के दौरान अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे और अगर किसी को लगता है कि पावर का गलत इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर एक राइडर है कि कोई भी कंप्लेंट पुलिस अफसर के खिलाफ विदाउट दी अप्रूवल ऑफ स्टेट फाइल नहीं हो सकती। इसलिए जो राहुल गांधी अपने वकीलों के साथ यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट इज 100% रॉन्ग। अगर उनको करना है तो वो कंप्लेंट फाइल करें एलजी के यहाँ या किसी के यहाँ। पुलिस को तो पावर ही नहीं है एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने की, क्योंकि देखिए 197 में भी पुलिस अफसर को प्रोटेक्शन है, लेकिन वहाँ प्रोटेक्शन है कॉग्निजेंस कि मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस से ही लेगा। लेकिन 149 में जो सीआरपीसी की है उसके अंदर बड़ा क्लियर है कि कंप्लेंट एंटरटेन नहीं करेगी। इसका मतलब कि दिस इज द राइडर ऑन द कंप्लेनेंट कि हिज कंप्लेंट वुड नॉट बी फाइल।
0: लेकिन एक बात बताइए त्यागी जी, त्यागी सर,
5: बिफोर द अप्रूवल ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन।
0: लेकिन एक बात बताइए त्यागी सर, आप तो दिल्ली पुलिस के कामकाज से आप लंबे समय से एक सीनियर अधिकारी रहे, क्या दिल्ली पुलिस के पास पैलेट गन है? क्या दिल्ली पुलिस पैलेट गन का इस्तेमाल करती है, और अगर करती है तो किन किन?
5: देखिए मैं आपको बताऊं, अल्लाहुल असेंबली के लिए ये प्रोटेक्शन तो है ही है कि फोर्स का इस्तेमाल हो सकता है अगर अल्लाहुल असेंबली क्रिमिनल फोर्स यूज कर रही है। लेकिन अगर वो वायलेंट होती है और उसकी वायलेंस से पुलिस अफसर को ही नहीं, अगर दूसरे की प्रॉपर्टी और लाइफ को भी नुकसान हो सकता है, पहला आंसू गैस चलेगा, पैलेट गन चलेगी, लाठी चलेगी, इवन अगर स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है तो गोली भी चलेगी, गोली भी चलेगी। आप उनको बताइए, और उसको प्रोटेक्शन दिया हुआ है सीआरपीसी में, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर है। 1947 में भी पब्लिक ऑर्डर फेल हुआ,
0: बिल्कुल
5: 1984 में भी पब्लिक ऑर्डर फेल हुआ। जब पब्लिक ऑर्डर फेल होता है तो,
0: लेकिन ये 1984 वाले हालात तो नहीं थे त्यागी जी। मैं आपसे एक बात जो जानना चाह रहा था वो ये जानना चाह रहा था कि किन किन सर्कमस्टांसेस में, किन किन आप कह सकते हैं सिचुएशंस के अंदर पैलेट गन का इस्तेमाल होता है, और क्या उसके लिए कोई
5: गन, अगर जो इनको यहाँ पर संसद भवन की सुरक्षा के लिए जो 3 और 4 बैरिकेड लगाए गए थे, जब वो चौथा बैरिकेड तोड़ देंगे तो उसके बाद आंसू गैस और पैलेट गन का इस्तेमाल हो सकता है टू स्टॉप देम टू एंटर पार्लियामेंट एंड टू क्रिएट दी चाउस।
0: बिल्कुल,
5: तो अगर वो लोग पार्लियामेंट में घुस जाते और अगर जरूरत पड़ती तो जो गार्ड वहां पर मौजूद था वो गोली भी चला सकता था।
0: बिल्कुल, और सर क्या इसके लिए कोई सीनियर अधिकारी का या हेडक्वार्टर से अप्रूवल लेना होता है या पर मौके पर मौजूद जो भी?
5: कोई नहीं, आप सीआरपीसी देखिए, पुलिस ना होम मिनिस्ट्री के अंडर में है ना पुलिस किसी के अंडर में है। पुलिस जो भी काम करती है वो कॉन्स्टिट्यूशन और सीआरपीसी और आईपीसी के अधीन काम करती है
0: जी।
5: सीआरपीसी में बाकायदा क्लियर कट प्रोविजन है कि एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन द एब्सेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ए ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सब इंस्पेक्टर कैन यूज द फोर्स टू डिस्पर्स द अल्लाहुल असेंबली।
0: अच्छा सर, एक और चीज, क्योंकि आपने पैलेट गन का इस्तेमाल की हम बात कर रहे हैं, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से इस्तेमाल की गई, दिल्ली पुलिस इसको डिनाई कर रही है, लेकिन अगर दिल्ली पुलिस ने नहीं इस्तेमाल की तो फिर तो ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है भी, क्योंकि लगातार देखिए आखिरकार किसने इस्तेमाल की, और यही बात तो वो कह रहे हैं।
5: बड़ा प्रोसीजर है कि अगर वो आरएएफ के लोग, हमारे पास पैलेट गन पहली बात तो अभी इशू ही नहीं हुई है पार्लियामेंट स्ट्रीट से, दैट फैक्ट कैन बी वेरीफाइड, तो मालखाने से इशू होती है अगर कोई गन इशू होती है, आरएफ वालों की अपनी एसओपी होती है
0: जी।
5: और अगर इनको कंप्लेंट फाइल करनी है, वास्तव में राहुल गांधी चाहते हैं, तो वो विद एविडेंस एक कंप्लेंट आरपीएफ आरएफ को भेजें और वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भेजेंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये समझता है कि ये भी कि उस आदमी ने जिसने ये पैलेट गन यूज की है ही एक्सेडेड फ्रॉम हिज पावर, वो तब उसको जो है
0: बिल्कुल
5: दे सकता है फॉर द रजिस्ट्रेशन।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। लगातार हमारे साथ केजे त्यागी सर जुड़े हुए थे, लगातार दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी रहे हैं और हमें बता रहे थे पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर किस तरीके से प्रोटोकॉल रहते हैं, क्या चीजें रहती हैं। और देखिए हम आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई है जो लगातार वहां पर मौजूद है। मौसमी, इस समय देखिए हम आला अधिकारियों से बात कर रहे थे, दिल्ली पुलिस के कई जो पुराने एक्स ऑफिसर्स हैं वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस से कोई सैंक्शन ही नहीं हुई, लगातार इस्तेमाल ही नहीं हुई, और लगातार अगर ऐसा कुछ है तो फिर राहुल गांधी को कोर्ट जाना चाहिए।
4: देखिए एक बात होती है कि क्या हो सकता है और कानून क्या कहता है और किताब से कैसे मामला चलता है, और एक होती है परसेप्शन की लड़ाई। यहाँ पे राहुल गांधी परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं और हकीकत यह है कि अभी ग्राउंड पर राहुल गांधी उस साहिल के साथ नजर आ रहे हैं जिस साहिल को बहुत गंभीर चोटें लगी थी, काफ़ी सीरियसली वो इंजर हुए थे, एम्स ट्रॉमा सेंटर में भी भर्ती थे और इनको बहुत ही जल्द डिस्चार्ज कर दिया गया था, अस्पताल से भी उसके बाद एम्स ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। तो अपने आप में ये वो वक्त है हिमांशु कि एक तरफ कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है और एक तरफ परसेप्शन बैटल जो है कह लीजिए वो लड़ा जा रहा है, और यहाँ पे सिद्धांतों को लेके राहुल गांधी एक लकीर खींच रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो पूरा मामला है उसको रफा दफा कर रही है, ना प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हैं, ना गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं और ना ही दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो तीन तरफा अटैक जो है, राहुल गांधी तीन तरफा हल्ला बोल रहे हैं मोदी सरकार पर।
0: बिल्कुल, एक और मौसमी, क्योंकि आपने उनकी परसेप्शन की लड़ाई की बात की, लगातार राहुल गांधी का एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा है स्टूडेंट्स को लेकर, छात्रों की गूंज, जहां पर वो छात्रों से मिल रहे हैं देशभर में, उससे भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि वो लगातार जीवित रहे, वो परसेप्शन हमेशा बनी रहे, इस वजह से भी ये पूरा का पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया।
4: देखिए छात्रों की गूंज एक ऐसा कार्यक्रम है जो लगातार चल रहा है, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बोल दिया गया कि 800 कार्यक्रम और होंगे, तो 800 कार्यक्रमों में राहुल गांधी भी कई जगह जाएंगे, तो वो एक पॉलिटिकल कैंपेन कह लीजिए, वो एक ऐसी कैंपेन है जो मोदी सरकार के खिलाफ मोमेंटम बनाने के लिए, और जो यूथ का सेंटिमेंट है, जो बेरोजगारी को लेकर आक्रोश है, उसको टैप करने की कोशिश हो रही है। यहाँ प्रियंका गांधी, आप देखिए सर थोड़ा पीछे हट जाइए, विजुअली आप लोग, यहाँ पे प्रियंका गांधी कुछ बात कर रही है, राहुल गांधी से बात करने की कोशिश हो रही है, और शायद कुछ आगे क्या मामला कैसे रहेगा, कैसे आगे बढ़ना है, इसको लेके कुछ विचार विमर्श हो सकता है। राहुल गांधी साहिल की ओर इशारा करते हुए, हालांकि साहिल आप देखिए सर सामने सर जाइए, साहिल बहुत धैर्य से बैठे हुए हैं, बीच में उनकी माँ भी बैठी हुई है, लगातार जितनी देर राहुल गांधी बैठे हैं आइए सुनने की, भैया धीरे तो ये देखिए बात करने की कोशिश हो रही है प्रियंका गांधी शैलजा से बात करते हुए। राहुल गांधी मुझे लगता है ये कह रहे हैं कि साहिल बैठा हुआ है आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उनके बॉडी लैंग्वेज और उनके डिमीनर से ये लग रहा है। आप देखिए प्रियंका गांधी जो है अंदर जाते हुए शायद पीछे रणदीप सुरजेवाला से कुछ बातचीत कर रही हैं, कागज चलिए आइए देखेंगे जरा, कुछ कागज पत्थर दिखाया जा रहा है, नहीं आइए चलिए आ जाइए थोड़ा सा, हम लोग चलते हैं अंदर और यहाँ शायद कागज पत्थर दिखाने की कोशिश हो रही है एक तरफ, नहीं आइए आ जाइए वहाँ पे, वहाँ से दिखाइए, ओ सॉरी उधर देखिए, अच्छा आ जाइए वहाँ से नहीं दिखेगा बहुत दूर है, देखिए जरा ऊपर से दिखाइए, प्रियंका गांधी कुछ बात करते हुए नजर आ रही हैं और ये आप देखिए कि रणदीप सुरजेवाला से बात कर रही हैं और अब शायद अंदर चली, अंदर जाएंगी या नहीं जाएंगी अब देखते हैं, कुछ विचार विमर्श चल रहा है, चली गई अंदर, अंदर गई कि खड़ी हुई, अभी खड़ी हुई है, कुछ कागज फाइल्स है शायद वो फाइल्स पर कुछ चर्चा चल रही है, प्रियंका गांधी रणदीप और जयराम रमेश और बाकी जो नेता हैं उनसे बात कर रही हैं
6: क्या बातचीत अंदर हुई, और उसके बाद जो लॉयर हैं, कुछ वकील हैं, जो हमने बताया था स्वाति, उनकी वकील है स्वाति खन्ना, उनसे भी बात हो रही है, क्या ये कानूनी तौर पे पॉसिबल है, किस तरीके से आगे इसको लड़ना है, क्या करना है? आप देखिए, रणदीप सुरजेवाला खुद भी वकील हैं और जाहिर तौर पे वो सारे कानून के जानकार हैं, जान रहे होंगे कि क्या कहना क्या करना है इसमें। अब आपको मैंने बताया, एक कानून एक कानून की क्या सारी किताब होती है, और एक तरफ राजनीति की किताब होती है। अब राजनीति की किताब और कानून की किताब में दोनों में कैसे कभी कभी दोनों आमने सामने होते हैं, दोनों में संतुलन बनाना या दोनों किताबों को पढ़ना संभव नहीं होता। और यहाँ पे मुझे लगता है कि सियासी रूप से भी मोदी सरकार एक तरफ दिल्ली पुलिस पे कानूनी तौर से दबाव बनाना है, और सियासी रूप से मोदी सरकार पर दबाव बनाना है। मोदी सरकार के नाक के नीचे संसद के 200 मीटर दूर जब पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है, कोई और थाना नहीं है, मंदिर मार्ग गए थे राहुल गांधी, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर राहुल गांधी ये करते हैं, तो अपने आप में उसके सियासी मायने और हिमांशु बढ़ जाते हैं। यहाँ प्रियंका गांधी अक्सर सारथी रही हैं राहुल गांधी के, उनकी लेफ्टिनेंट के तौर पे, और
0: मौसमी शायद आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि देखिए इस पूरे घटनाक्रम के कई पहलू है, जैसा आप भी तस्वीरों में दिखा रहे हो और बता भी रहे हैं। देखिए, कानूनी लड़ाई है, लेकिन उसके बाद लोगों में उसको लेकर जाना, उस कानूनी लड़ाई को एक परसेप्शन क्रिएट करना, और वो परसेप्शन लगातार राहुल गांधी के प्रोग्राम को लेकर जो देश भर में वो चला रहे हैं कि छात्रों की गूंज, उससे जोड़कर देखा जा रहा है। शायद यही तीनों एंगल्स है जो इस पूरे आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी के इस विजिट को लेकर, साहिल को लेकर, जो थाने पहुंचे हैं और लगातार कंप्लेंट की मांग कर रहे हैं, FIR की बात कर रहे हैं, उसको उससे जोड़ा जा रहा है। और तीनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यार आज एकाएक राहुल गांधी 11:45 पर मंदिर मार्ग थाने पहुंचे, उन्होंने उस कंप्लेंट को दिया, उन्होंने कहा कि देखिए साहिल ने कई थानों में वो कंप्लेंट दी, लेकिन उसकी स्टैंपिंग नहीं की गई, उसकी रिसीविंग नहीं दी गई, लेकिन अब राहुल गांधी उनके साथ पहुंचे और लगातार रिसीविंग के साथ साथ वो इस पर FIR की बात भी कह रहे हैं। और हमारी सहयोगी मौसमी सिंह हमारे साथ वहां से जुड़ी हुई है, जो मौसमी लगातार दिखा भी नहीं है कि देखिए राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के कई बड़े नेता वहां पर मौजूद है। प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी से सलाह मशवरा कर रही थी, बातचीत कर रही थी, और उसके बाद उनके जो वकील है और रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कानून के जानकार भी है, उनके नेता भी है, उनसे भी बातचीत कर रही थी, और शायद सभी पहलुओं को देखा परखा जा रहा होगा, बातचीत की जा रही होगी कि आखिरकार इस लड़ाई को, इन चीजों को, इस मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए। मौसमी, आप वहां पर बनी हुई है, क्या कुछ माना जाए, क्योंकि आप कांग्रेस के कई और नेता भी वहां पर मौजूद है, अगर दिल्ली पुलिस FIR तुरंत दर्ज नहीं करती तो कांग्रेस इसको आगे कैसे लेकर जाएगी?
7: आज पूरा देश एक बार फिर से राहुल गांधी की उस सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति का गवाह बन रही है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने आज संसद मार्ग थाने के बाहर जो किया वो सबने देखा है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है, यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्य उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। आज जब राहुल गांधी संसद मार्ग में DCP ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया गया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहले से ही 20 जुलाई के सभी मामलों में सघन जांच कर रही है। DCP ने यह भी बताया उनको और आश्वासन दिया कि वे इस मामले में जो क्राइम ब्रांच को आपने कहा है वह उनको भेज दिया गया है और क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। प्रशासन के इस स्पष्टीकरण के बावजूद धरने पर बैठ जाना राहुल गांधी के हठ यज्ञ को दर्शाता है और हठ योग के साथ साथ हताशा को भी दर्शाता है। इससे साफ हो जाता है कि उनका मकसद किसी को न्याय दिलाना या जांच करवाना नहीं है, बल्कि सिर्फ हंगामा खड़ा करके कानून व्यवस्था को चुनौती देना है। इस पूरे ड्रामे में और इस पूरे ड्रामे की अगर हम टाइमिंग को समझें तो हमें ध्यान में आएगा कि आज कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम के मुद्दे पर, वंदे मातरम के विषय पर पूरे देश में चारों ओर से घिर चुकी है। राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर जनता कांग्रेस से जवाब मांग रही है। कांग्रेस के एक बड़े नेता तिरंगे वाले केक को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने इसी राष्ट्र विरोधी चेहरे को छिपाने के लिए और इस जो भारी फजीहत हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने आनन फानन में यह ध्यान भटकाने का यह नया ड्रामा रचा है। राहुल गांधी लोकतंत्र और बहस की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब देश के माननीय गृहमंत्री जी ने संसद में उन्हें सीधी चुनौती दी कि आइए संसद में बैठिए, संसद में चर्चा कीजिए, हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो वो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी संसद की चर्चा से भाग खड़ी हुई। संसद के पटल पर जवाब देने की हिम्मत नहीं है, इसलिए सड़क पर बैठकर नौटंकी की जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पहले ही कह दिया है, उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है। जो भी पार्टी कांग्रेस के साथ जुड़ती है उससे वो ताकत लेती है और उसी पार्टी को समाप्त कर देती है। अब कांग्रेस पार्टी बच्चों और छात्रों के भविष्य को भी खत्म करने पर आमदा है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करना चाहती है कि देश संविधान, कानून और न्यायिक प्रक्रियाओं से चलता है, न कि किसी परिवार के हठयोग या कैमरा के प्रति उनके प्रेम से चलता है। नहीं, राहुल गांधी को यह समझ लेना चाहिए कि जनता उनके इस हिट एंड रन वाले रवैये को और राजनीतिक पाखंड को भली भांति पहचान चुकी है। वह चाहे जितना ड्रामा कर लें, कांग्रेस अपने पापों और उसकी जवाबदेही से भाग नहीं सकती है। जनता उनसे जवाब मांग रही है और उनको जनता को जवाब देना पड़ेगा।
8: सबको धन्यवाद सर।
0: और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। लगातार राहुल गांधी के इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वो आक्रामक थे और कह रहे थे राहुल गांधी सिर्फ ये सारी चीजें कैमरे को लेकर कर रहे हैं, सस्ती राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बने रही, आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

कराने की मांग पर राहुल गांधी अड़े हुए हैं। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये संसद मार्ग थाने की हैं। राहुल गांधी भी हैं, प्रियंका भी वहां पर है, कांग्रेस के सभी बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं।

0: उसका सबूत क्या है? 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत यह है, देखिए ये है पैलेट, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए, ये देखिए ये है पैलेट्स, ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ, ये इनके यहां लगे हैं छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है, वो फाइल दिखाओ, ये के है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए होंगे, मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि FIR दर्ज कीजिए, FIR दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक हैं, साहिल हैं ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज FIR दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, FIR नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है, जब तक FIR नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं, सिंपल सी बात है, FIR करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ ये अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है जिनका रेप किया जाता है, उनके साथ होता है, गरीबों पर यह किया जाता है, हर रोज किया जाता है, और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है।
1: तो राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट कह दिया, जब तक FIR दर्ज नहीं होती है तब तक वो यहां से हटने वाले नहीं है, वो ज्यादा नहीं मांगते, बस FIR मांगते और FIR दर्ज होनी चाहिए, और अंदर जाके अधिकारी कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर है, FIR दर्ज नहीं हो सकते। लेकिन राहुल गांधी के इस धरने पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है, और बीजेपी कह रही है कि राहुल जो कर रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है, जनता देख रही है। बीजेपी की तरफ से बड़ा हमला बोला गया है, जेपी नड्डा कह रहे हैं कि राहुल गांधी का धरना छात्रों के लिए नहीं है। जेपी नड्डा राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि राहुल का मकसद हंगामा खड़ा करना है, कानून व्यवस्था को चुनौती देने के लिए राहुल गांधी ये ड्रामा कर रहे हैं।
2: आज जब राहुल गांधी संसद मार्ग में डीसीपी ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया गया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहले से ही 20 जुलाई के सभी मामलों में सघन जांच कर रही है। डीसीपी ने यह भी बताया उनको और आश्वासन दिया कि वे इस मामले में जो क्राइम ब्रांच को आपने कहा है वह उनको भेज दिया गया है और क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। प्रशासन के इस स्पष्टीकरण के बावजूद धरने पर बैठ जाना राहुल गांधी के हठ योग को दर्शाता है और हठ योग के साथ साथ हताशा को भी दर्शाता है। इससे साफ हो जाता है कि उनका मकसद किसी को न्याय दिलाना या जांच करवाना नहीं है, बल्कि सिर्फ हंगामा खड़ा करके कानून व्यवस्था को चुनौती देना है।
1: मार्ग थाने पर राहुल गांधी का जो धरना इस वक्त चल रहा है, जिसमें कांग्रेस के कई नेता मौजूद हैं, उसको लेकर बीजेपी की तरफ से एक तरफा नहीं चौतरफा वार हो रहा है। अभी आप जेपी नड्डा को सुन रहे थे, लेकिन रविशंकर प्रसाद की तरफ से भी पलटवार करते हुए राहुल के धरने पर सवाल उठाए गए हैं, और ये कहा गया कि लीडर ऑफ अपोजिशन कहीं पर भी धरना कर देते हैं, अराजकता की राजनीति कर रहे हैं, ये रविशंकर प्रसाद की तरफ से कहा गया।
3: ये बहुत दुर्भाग्य की बात है।

0: राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और अभी फिर यहां बैठ गए। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस घटना का वो संदर्भ दे रहे हैं उसकी शिकायत लीक हो चुकी है, वो जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पीड़ित थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक हाई पावर्ड कमिटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। उसमें दो जज और हैं, एक सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर हैं और एक और बड़े अधिकारी हैं। तो इतनी हाई पावर्ड कमिटी में यह भी जांच का विषय होगा कि गोली चली या नहीं चली। तो यह क्या मतलब है इसका? आपको नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना राहुल गांधी। जो आपके मन में आएगा तो बस जहां जाके धरने पर बैठ जाएंगे और अराजकता फैलाना शुरू करेंगे।
1: तो राहुल गांधी अराजकता की राजनीति कर रहे हैं, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, सीधे रुख करेंगे मौसमी सिंह का, हमारी सहयोगी कई घंटों से लगातार मौजूद है उसी जगह पर जहां पर राहुल गांधी का ये धरना चल रहा है और हर एक तस्वीर और खबर आप तक पहुंचा रही है। मौसमी, राहुल गांधी का धरना जारी है, अब कांग्रेस की आगे क्या तैयारी है?
2: जी, मुझे ये जानकारी मिल रही है शायद कांग्रेस जो है और भी तैयारी कर रही है, क्योंकि अगर पुलिस डिटेन करती है राहुल गांधी को, राहुल गांधी ऐसे ही बैठे रहते हैं तो पुलिस के सामने और कोई रास्ता नहीं होगा। अगर पुलिस ने ये कह दिया है कि इस तरीके से FIR दर्ज नहीं हो सकती तो पुलिस डिटेन करेगी। और ऐसे में आप दाहिने हाथ पर देखें, अजय आप दिखाइए, ये जो सामने का रास्ता है आप देखें, कुछ बसें आपको पीछे नजर आ जाएंगी। यहाँ बसों को रखा गया है, कई पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स की और पैरामिलिट्री की बसेज हैं, लेकिन डिटेन करने के लिए कई टूरिस्ट बस लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो हो सकता है कि राहुल गांधी को जो है आगे डिटेन किया जाए। यहाँ गुरदीप सप्पल है, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या रणनीति रहेगी। सप्पल साहब, ये तो 3-4 घंटे हो गए इसी तरीके से, कई बारी राहुल गांधी अंदर गए, बाहर आए, DCP साहब से बात की, अभी प्रियंका गांधी देख रहे हैं, बात कर रही हैं, फाइलें खंगाल रही हैं, तो क्या कुछ चेंज करेंगे आप लोग, क्या कैसे रहेगा?
3: एक सिंपल सी डिमांड है कि इस देश में एक व्यक्ति के ऊपर अत्याचार हुआ, वो पुलिस के पास आके FIR दर्ज करना चाह रहा है, पुलिस FIR दर्ज कर ले तो राहुल गांधी यहाँ से चले जाएंगे। दुख की बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष को आना पड़ा इसमें। बीजेपी बार बार कह रही है सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी, अरे पहले तो इंक्वायरी कल हुई ऑर्डर, ये तो कई हफ्ते से भटक रहे हैं, तब क्यों नहीं इनकी FIR दर्ज की गई है? और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि दिल्ली पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रख सकती है, तो दिल्ली पुलिस के पास आकर जांच की मांग करना क्या ये इतना भी हक किसी छात्र का या युवा का नहीं होगा?
2: दर्शकों को ये समझाना जरूरी है, राहुल गांधी शिकायत लेके आए हैं कि साहिल लोचप की शिकायत लेके आए हैं, और जो कागज पुलिस को दिया है वो क्या कागज क्या कहता है?
3: देखिए, शिकायत साहिल और उनकी माता ज्योति ने की है।
2: हाँ हाँ जी जी,
3: शिकायत साहिल और उनकी माता ज्योति, वो पुलिस थाने पर ताने भटक रहे हैं, जब उनकी सुनी नहीं गई तब उन्होंने राहुल गांधी जी को अप्रोच किया है और उनके समर्थन में राहुल गांधी आए हैं।
2: तो अभी पुलिस, आप ये कह रहे थे कि ठप्पा भी पुलिस लगाने को तैयार नहीं है उस साहिल की शिकायत पर।
3: साहिल का यही तो कहना है, कई हफ्तों से वो भटक रहा है।
2: आज लगाया है कि
3: नहीं? अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है।
2: पुलिस ने कहा कि हमने शिकायत ले ली है, तो जाहिर तौर पर रिसीविंग भी ली होगी पुलिस।
3: शिकायत ले ली है तो बता दें, आकर बता दें कि हम शिकायत लेके FIR दर्ज कर रहे हैं, सब चले जाएंगे। इस देश में जहां पे खुद मोदी, खुद शाह अपने भाषणों में कहते हैं कि हमने 0 FIR की व्यवस्था कर दी, अब देश का कोई भी नागरिक किसी भी शहर से FIR कर सकता है, यही कहा जाता है ना। और असलियत यह है कि जिसका केस पूरे देश के सामने, उसकी FIR दर्ज नहीं हो रही है।
2: अभी प्रियंका गांधी बात कर रही थी, तो क्या एनालिसिस चल रहा था आप लोग का?
3: एनालिसिस नहीं चल रहा है, बहुत स्पष्ट है कि जब तक FIR नहीं होगी यहाँ पे धरना जारी रहेगा।
2: साहिल की स्थिति क्या है, कितना लंबा बैठ सकते हैं, वो तैयार है पूरा?
3: सब क्लियर है, जब तक FIR नहीं होगी धरना चलेगा।
2: तो देखिए, ये गुरदीप सप्पल हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, हाँ। कांग्रेस के, जो कि अभी प्रियंका गांधी के साथ ही खड़े हुए थे, बतिया रहे थे। तो आप समझ लीजिए हिमांशु, 3-4 घंटे शायद हम लोग को और इसी तरह से खड़ा रहना पड़ सकता है।
1: राहुल गांधी तो मन बना चुके हैं कि राहुल गांधी नहीं उठेंगे FIR होने तक
2: और FIR दर्ज करे।
1: लेकिन मौसमी, आपने भी बातचीत की और कांग्रेस बहुत स्पष्ट है कि वो उठने वाले नहीं है, तो दिल्ली पुलिस आगे क्या कदम उठाएगी इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। क्या उनको उठवाया जाएगा, जबरदस्ती उठाया जाएगा, उस वक्त क्या रिएक्शन होगा? संसद मार्ग थाने से ही राहुल गौतम हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, आपके पास क्या खबर आ रही है? देखिए, भजन भी चल रहे हैं, गाने भी चल रहे हैं, नारेबाजी भी चल रही है वहां। राहुल, सुन पा रहे हैं आप? लगता है राहुल तक हमारी आवाज नहीं पहुंची, लेकिन जी राहुल, अगर सुन पा रहे हैं तो बताइए आपके पास और अंदर क्या खबर आ रही है। राहुल कितनी देर और बैठे रहेंगे, क्या रणनीति बनाई गई और दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी?
4: देखिए, जब तक FIR दर्ज नहीं होगी या उसकी अश्योरेंस नहीं दी जाएगी, राहुल गांधी यहां से हटने वाले नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है। आप देखिए मेरे पीछे ही, जस्ट आप देखिए कुछ कदमों की दूरी पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, इसके अलावा साहिल लोचप बैठे हैं, उनकी माताश्री बैठी हैं, उनके पीछे कुमारी शैलजा हैं, इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी हैं। तमाम लोग कई घंटों से यहां पर बैठे हैं और कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है कि एक FIR मात्र के लिए अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा को, नेता प्रतिपक्ष को DCP के दफ्तर के बाहर इतनी देर तक बैठना पड़ता है, तो पहली बात तो ये कतई एनआरकी नहीं है जैसा कि BJP आरोप लगा रही है, और दूसरा ये भी दर्शाता है कि किस प्रकार से चीजों को छुपाया जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की जा रही है। आप देखिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लगातार वार्तालाप कर रहे हैं, जाहिर है वो इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। यहां पर लगातार कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उनका जमावड़ा बढ़ता जा रहा है और जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो यहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जाहिर है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी खुद यहां मौजूद है, घंटों से खुद मोर्चा संभाल कर बैठे हैं, तो ऐसे में तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि देखिए छात्रों के मुद्दे पर हमने पहले संसद के अंदर सरकार को घेरा, सरकार ने उसके ऊपर जवाब नहीं दिया, सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं हुई, और अब हम जो है संसद के बाहर भी, सड़कों पर भी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। साहिल लोचा वही व्यक्ति हैं, वही स्टूडेंट हैं जिनको लेकर राहुल गांधी ने पहले भी प्रेस वार्ता करी थी, इनके जो जख्म हैं वो मीडिया को दिखाए थे और पूछा था कि आखिर ये पैलेट गन चलाने का किसने ऑर्डर दिया, और अगर ऑर्डर गृह मंत्री अमित शाह ने नहीं दिया तो आखिर किस अधिकारी ने दिया, इसके बारे में अमित शाह जी को जानकारी थी या नहीं थी? नहीं थी तो वो इनकॉम्पिटेंट है। देखिए, जो आप कह सकते हैं जो निशाना है वो सीधा सा आप बिल्कुल क्लियर है, पहले धर्मेंद्र प्रधान थे और अब अमित शाह निशाने पर है राहुल गांधी के, कांग्रेस पार्टी के, और इसीलिए आप देखिए जो मोमेंटम पिछले कुछ रोज कांग्रेस पार्टी ने बनाया उसको कांग्रेस पार्टी बनाकर रखना चाहती है, और इसीलिए आप देखिए यहां पर धरना हो रहा है। इससे पहले लगातार राहुल गांधी ने,
1: और शायद राहुल गौतम इसीलिए राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब उन्होंने ये बात भी कही कि जब हमारी अंदर अधिकारियों से बात हो रही थी तो अधिकारियों ने कहा कि ऊपर से हमसे कहा गया है कि FIR दर्ज नहीं हो सकती है, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। लेकिन कांग्रेस ने मन बना लिया है कि FIR करवा के ही यहां से उठेंगे, जब तक FIR दर्ज नहीं होगी तब तक नहीं उठेंगे। जयराम रमेश, क्या कहा गया उनकी तरफ से, वो भी सुनिए।
5: मांग सिंपल है, FIR दर्ज करो, रजिस्ट्रेशन नंबर दो और हम यहां से निकलेंगे। और जब तक रजिस्ट्रेशन नंबर FIR नया FIR की बात सही है, पुलिस का कहना है कि FIR दर्ज किया गया था, वो तो जनरल FIR था। ये साहिल ने मांग की है और उन्होंने सबूत दिखाया, अपनी आंख गवाई है।
1: जयराम रमेश को आप सुन रहे थे, वही बात, FIR दर्ज हो जाए हम आसानी से उड़ जाएंगे और हम कुछ भी नहीं चाहते हैं, ये जयराम रमेश की तरफ से कहा जा रहा था। मौसमी सिंह भी हमारे सहयोगी बनी हुई हमारे साथ, हर एक तस्वीर तो बता ही रही है, हर एक खबर भी लगातार बता रही है। मौसमी, आम लोग ये बात समझना चाह रहे हैं कि एक FIR को लेकर इतना पेच क्यों फंसा हुआ है? अगर किसी को चोट लगी है, किसी को परेशानी हुई है, तो उसका अधिकार है FIR दर्ज कराने का, और अगर वो FIR दर्ज कराने जाता है तो IO नहीं बताया जाता, उससे रसीद नहीं दी जाती है। आखिर एक एफआईआर पर इतना महासंग्राम क्यों छिड़ा हुआ है? दिल्ली पुलिस की तरफ से दलीलें दी गई होंगी।
2: देखिए इसमें कोई दो राय तो है नहीं साहिल, जो सॉरी हिमांशु, हाँ। जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट है वो हमारे हमारे चैनल पर अरविंद ओझा और तमाम जो क्राइम कवर करते हैं रिपोर्टर्स, उन्होंने वो स्टोरी भी की थी कि किस तरीके से पैलेट गन्स का जो इस्तेमाल हुआ था, साहिल को काफ़ी चोटें आई हैं। लेडी हार्डिंग से भी तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स कुछ ऐसी थी, 3 से 4 लोगों की जहाँ पे पैलेट गन्स का मेंशन था और इस्तेमाल की बात की गई थी, किसी के कान में लगा था और साहिल के आँख में लगा था। तो सवाल कहीं ना कहीं कटघरे में दिल्ली पुलिस को खड़ा करता है, यानी कि अगर कोई इंजर हुआ है, इतनी ग्रीवियसली इंजर हुआ है, वो पुलिस थाने, और दिल्ली पुलिस देश की स्मार्ट पुलिस है। मुझे याद है अभी से नहीं, जब से मोदी सरकार आई उसके बाद तमाम ऐसे अधिवेशन हुए, स्मार्ट पुलिस की पुलिसिंग की बात हुई, जीरो एफआईआर की बात हुई, और कानून व्यवस्था एक बड़ा मजबूत प्लेटफॉर्म है मोदी सरकार का, लगातार कानून व्यवस्था के फ्रंट पर कि कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में मोदी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, पुलिसिंग को स्मार्ट करने में कदम उठाए हैं, ताकि जो पीड़ित हैं उनको दर बदर भटकना पड़े ना पड़े। और ऐसे में अगर एक युवा लगातार इंतजार कर रहा है कि उसको रिसीविंग मिल जाए उसकी शिकायत की, एफआईआर छोड़ दीजिए, बताया जा रहा है कि साहिल की शिकायत पर,
1: अब देखिए यही बात है, यही बात सब लोग समझना चाहते हैं कि आखिर एक एफआईआर को लेकर इतना महासंग्राम क्यों छिड़ा हुआ है, कब तक राहुल गांधी इस धरने पर बैठे रहेंगे और अब दिल्ली पुलिस क्या कदम उठाती है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बड़ी कवरेज पर बने रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: Hey Maya, let's go.
9: The new BE6 Sportage.
10: The new BE6 Sportage.
11: Papa.
12: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
13: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
12: छक्का
13: सब कैशलेस हो गया
12: है। हाँ ला भाई मेरा बैट,
13: वो अभी तो ठीक हुआ, तो
12: चार्ज हुआ यार।
14: बैट किसका है?
15: टाटा AIG है तो भरोसा है।
6: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते
7: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
6: विमल बोलो जुबां केसरी।
16: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
17: B.R. अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है।
18: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट अलग स्टेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही बल्तिस्तान भी बनता है।

0: चीर पर चीर ये मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के आंदोलन करने की घोषणा करते हैं, मन बनाते हैं। लेकिन झारखंड की जनता अब उतना बेवकूफ नहीं है। झारखंड की जनता जानती है, इस देश की जनता जानती है, देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति है, वो गरीबी को जानते हैं, गरीबी की पीड़ा को जानते हैं, हर वो काम करते हैं जो गरीब के लिए भला हो।
1: मुझे लगता है कि शायद इसी का अंदेशा होगा जिसकी वजह से उस समय विलंब हो रहा था डिसीजन लेने में, और अब डिसीजन हुआ। तो ये भी बात सही है कि जिनकी नौकरी लग गई, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले से कुछ नौकरियां वो सरकारी कर रहे थे, कोई रेलवे की नौकरी कर रहा था, सिर्फ अपने स्टेट में वापस आने के ये में उन्होंने यहाँ की नौकरी ज्वाइन कर ली थी, तो उनके साथ अन्याय हो रहा था शायद, इसीलिए माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया। अब देखा जाएगा क्या होता है न्याय के

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: पंद्रह अगस्त को सोनिया गांधी पर वंदे मातरम के अपमान के आरोपों की तपिश अभी कम भी नहीं हुई थी कि गोवा से तस्वीर आ गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में वंदे मातरम के सिर्फ दो पद गाए गए। विवाद बढ़ा तो कांग्रेस ने कल अपनी कार्य समिति में आधिकारिक रूप से ये तय कर दिया कि वो दो पद ही गाएगी।
3: वी आर वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट आवर कांग्रेस पार्टी वर्कर्स विल डू दैट ओनली। दिस इज आवर डिसीजन। फर्स्ट टू चांस था
4: 28 अक्टूबर 1947 को वंदे मातरम, सॉरी 37 को वंदे मातरम पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उस प्रस्ताव में जब पारित किया गया CWC की बैठक में, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, राजगोपालाचारी, गोविंद वल्लभ पंत और अन्य नेता, आचार्य नरेंद्र देव मौजूद थे और रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह से ही वो प्रस्ताव पारित किया गया था और आज उस पर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष ने उस प्रस्ताव के कुछ अंश भी पढ़े और इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई सवाल नहीं है।
2: इसी साल फरवरी में सरकार ने आधिकारिक मौकों पर वंदे मातरम के 6 पद वाले संस्करण को बजाना या गाना अनिवार्य कर दिया था, जिसकी कुल अवधि 3 मिनट और 10 सेकंड की है। संसद के मानसून सत्र में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम को मंजूरी दी गई, जिसमें वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर बाधा डालने या अपमान को एक दंडनीय अपराध माना गया है। इसमें पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अपराध दोबारा दोहराने पर कम से कम 1 साल की अनिवार्य जेल होगी। क्या कांग्रेस संसद से पास कानून को नहीं मानेगी?
5: कांग्रेस ने यह भी साबित किया है कि वो अपने को संविधान से ऊपर, अपने को देश से ऊपर और अपने पार्टी के प्रस्ताव को संविधान के कानून से ऊपर मानती है और उसके साथ अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर।
2: जी हाँ, बड़ा सवाल यही है कि देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी का रुख संसद से पास कानून से अलग क्यों है? दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

संसद मार्ग थाने के बाहर राहुल गांधी का मैराथन धरना जारी। पैलेट गन मामले में FIR दर्ज करने की मांग। दिल्ली पुलिस का जवाब, ले ली गई है शिकायत। राहुल गांधी पर बरसी बीजेपी की फौज। जेपी नड्डा ने कहा कि वंदे मातरम पर गिरने के बाद नेता विपक्ष का धरना, जनता समझ चुकी है हिट एंड रन पॉलिटिक्स। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, कहा कि वंदे मातरम को स्वीकार ना करना दुर्भाग्यपूर्ण। राजनाथ बोले, कांग्रेस खतरनाक इरादे देश के सामने उजागर हुए।

0: गांव वालों ने दौड़ाया, गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए। सीजेपी का आरोप, बीजेपी के लोगों ने किया है हमला। सोरेन सरकार के नोटिफिकेशन के बाद रद्द हुई सभी परीक्षाओं पर कोर्ट ने लगाई रोक। नौकरी गंवाने वाले सभी कर्मचारी फिलहाल रहेंगे बहाल। आंदोलनकारी छात्र फिर से नाराज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
0: नमस्कार, रणभूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। रणभूमि में बात करेंगे तभी रण क्षेत्रों के बारे में, तमाम बड़े खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पर डीसीपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। वो 20 जुलाई को छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल और उससे छर्रों से घायल हुए युवक के मामले पर एफआईआर दर्ज कराने को लेकर वहां पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी के साथ पैलेट गन में घायल छात्र साहिल भी वहां मौजूद है। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा और प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ मौजूद हैं और दूसरे कांग्रेस के नेता भी उनके साथ मौजूद है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायत दी गई है लेकिन राहुल गांधी शिकायतकर्ता नहीं है। इस बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आज पूरा देश राहुल गांधी की सस्ती राजनीति को देख रहा है। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी का आज का धरना ना तो न्याय के लिए और ना ही बच्चों के लिए, ये राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। और राहुल गांधी आज कैमरे के लिए वहां पर कैमरा जीवी बनकर ड्रामा कर रहे हैं। देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी के इस धरने को लेकर अब बीजेपी आक्रामक हो गई है।
3: 14 तारीख को कनॉट प्लेस में पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत यह है, देखिए ये है पैलेट, देख लीजिए इनको अच्छी तरह, देख लीजिए ये, देखिए ये है पैलेट्स, ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ, ये इनके यहां लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है, वो फाइल दिखाओ।
4: अरे स्टिल,
3: ये
4: भाई गर्दन चाहिए,
3: ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए होंगे, मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक हैं, साहिल हैं ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है। जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं, सिंपल सी बात है। एफआईआर करना होगा, इस देश में लाखों लोगों के साथ ये अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है जिनका रेप किया जाता है, उनके साथ होता है, गरीबों पर यह किया जाता है, हर रोज किया जाता है, और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है।
5: आज जब राहुल गांधी संसद मार्ग में डीसीपी ऑफिस पहुंचे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया गया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहले से ही 20 जुलाई के सभी मामलों में सघन जांच कर रही है। डीसीपी ने यह भी बताया उनको और आश्वासन दिया कि वे इस मामले में जो क्राइम ब्रांच को आपने कहा है वह उनको भेज दिया गया है और क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। प्रशासन के इस स्पष्टीकरण के बावजूद धरने पर बैठ जाना राहुल गांधी के हठ योग को दर्शाता है और हठ योग के साथ साथ हताशा को भी दर्शाता है। इससे साफ हो जाता है कि उनका मकसद किसी को न्याय दिलाना या जांच करवाना नहीं है, बल्कि सिर्फ हंगामा खड़ा करके कानून व्यवस्था को चुनौती देना है।
0: और देखिए राहुल गांधी, आप देख सकते हैं संसद मार्ग थाने के बाहर उनके साथ में मौजूद हैं साहिल, जिन पर ये कहा जा रहा है कि ये पैलेट गन से इनको नुकसान पहुंचा। ये लगातार राहुल गांधी ने ये भी बताया कि देखिए उनकी मेडिकल रिपोर्ट दिखाई, इसके साथ उन छर्रों को भी दिखाया जो उनके शरीर से निकाले गए थे, और लगातार उनके परिवार के साथ यानी साहिल के साथ उनकी माँ, उसके साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा और कई कांग्रेस के आला अधिकारी और नेता भी वहां पर मौजूद है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी संसद मार्ग थाने के बाहर बैठे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ गए। मौसमी, अभी क्या स्ट्रेटजी आपको लगती है, क्या राहुल गांधी वहां से हटने का कोई आप कैसे कदम उठा सकते हैं या वहां बने रहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी तो अड़े हैं कि FIR जब तक दर्ज नहीं की जाती तब तक वो वहां से हटने वाले नहीं है।
6: आपको बता दें कि देखिए अभी हम लोग सुन रहे हैं कि बाहर भी अनाउंसमेंट हो रही है, नारेबाजी बाहर भी हो रही है, यहाँ पे भी नारेबाजी हो रही है। अजय दिखाएंगे आपको जूम इन करके, सब याद रखा जाएगा आर वी स्टिल इंडिपेंडेंट इस तरह के, और दिल्ली पुलिस दर्शाया गया है यहाँ पे, गृह मंत्री अमित शाह जवाब दो के नारे लगाए जा रहे हैं, और ये तमाम यूथ कांग्रेस से लेके तमाम इकाइयां यहाँ पे हैं। राहुल गांधी यहीं पे बैठे हुए हैं, प्रियंका गांधी यहीं बैठी हुई हैं, और एक तरीके से ये संदेश दिया जा रहा है कि हम कोई जल्दबाजी में नहीं है।
0: बिल्कुल,
6: अगर घंटे लगेंगे, रात भर लगेगी, तो यहीं पे हम बैठे रहेंगे, जब तक हमको हटाया नहीं जाएगा, उठाया नहीं जाएगा, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है।
0: मौसमी, एक और चीज, क्योंकि आपसे मेरी इससे पहले भी जब बात हो रही थी, हम कह रहे थे कानूनी लड़ाई अपनी जगह, परसेप्शन की लड़ाई अपनी जगह, लेकिन हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि पहले साहिल को लेकर, फिर FIR को लेकर, और अब गृह मंत्री को लेकर नारेबाजी, तो एक तरीके की स्ट्रेटजी है जहां पर राहुल गांधी ना सिर्फ आप देखिए कि पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सीधे तौर पर गृह मंत्री को ही घेरना चाह रहे हैं।
6: जी बिल्कुल, देखिए ये समझना होगा कि जो बाहर चला गया वो भीतर नहीं आ पा रहा है, जो भीतर है वो बाहर नहीं जा पा रहा है। अभी जयराम रमेश और प्रियंका गांधी जैसे जब लोग आए तो उनको भी बहुत मशक्कत करके अंदर आना पड़ा था। पुलिस ये भली बात ही जानती है कि अगर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर भीड़ बढ़ती है तो उसका क्या हाल होगा। एक बात सुन लीजिए अनाउंसमेंट, देखिए आप लाउड स्पीकर्स हैं, उधर दिखाइएगा जी, उधर लाउड स्पीकर्स हैं। ये वो जगह है जहां से चुनाव आयोग दूर नहीं है, यहां पे जो ट्रांसपोर्ट भवन का द्वार है पार्लियामेंट का, गुरुद्वारा रकाबगंज का द्वार है वो बेहद करीब है। जाहिर तौर पे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में आम लोगों की आवाजाही लगभग बिल्कुल बंद हो गई है क्योंकि दरवाजा बंद है, और अगर खोल दिया जाएगा तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अभी साहिल की माँ से कुछ कागज प्रियंका गांधी मांग रही हैं, और वो कागज मांग के आप देखिए कुछ मूवमेंट हुई है,
0: ऐसा लग रहा है।
6: खबर आज तक पर हम आप लोग को दिखा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल,
6: प्रियंका गांधी साहिल की माँ के साथ DCP के ऑफिस में भीतर जाते हुए कुछ कागज भी लेके गई हैं। हो सकता है कि कार्रवाई को लेके कुछ बात आगे बढ़ी हो। यहाँ पे मेरे सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने अभी रिवर्ट नहीं किया है जो शिकायत है, उस पर क्या करेंगे, और अब प्रियंका गांधी साहिल की माँ के साथ भीतर जाते हुए।
0: बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है मौसमी, क्योंकि मैं देख रहा था उनकी माँ के हाथ में वो मेडिकल रिपोर्ट थी साहिल की, जो लगातार जिसको लेकर राहुल गांधी भी दिखा रहे थे, शायद उन्हीं मेडिकल रिपोर्ट को दिखाया जा रहा होगा अंदर दोबारा, और बताया जा रहा हूं कि देखिए हम इन बेसिस पर, इन सबूतों के बेसिस के ऊपर इस शिकायत को दर्ज कराना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी उन छर्रों को, उन शेल्स को लेकर भी आए थे, वो मेडिकल रिपोर्ट लेकर भी आए थे, और ये बार-बार कह रहे थे कि देखिए इन्हीं के शरीर से ये सारे के सारे पैलेट्स गन के जो छर्रे हैं निकाले गए हैं।
6: बिल्कुल देखिए मेडिकल रिपोर्ट तो राहुल गांधी ने सुमित माफ कीजिएगा मैं आपको हिमांशु कह रही थी, यहाँ बहुत शोर हो रहा है। और मेडिकल रिपोर्ट तो राहुल गांधी ने खुद पढ़ के बताई और वही कागज जो है साहिल की माँ एक झोला लाई है जिसमें मुझे लगता है कि वो पूरी अपनी इंसाफ पोटली को समेट कर लाई है और वही पोटली को लेके वो आप भीतर गई हैं प्रियंका गांधी के साथ। पीछे तस्वीर में आपको नजर आ रहा है कुछ अधिकारियों लॉ वकीलों को बुलाया जा रहा है तो उनके वकील भी अंदर गए हैं, स्वाति हैं उनकी वकील, वो गई हैं भीतर स्वाति खन्ना। राहुल गांधी यहाँ पे बाहर ही बैठे हुए हैं और ये पोस्टर एक तरीके से आप देखिए A4 छोटे छोटे पोस्टर जो छपवाए गए हैं कुछ एनिमेटेड हैं और यहाँ पे लगातार कांग्रेस एक ऐसे मोड में नजर आ रही है कि यहाँ खूंटा बांध के बैठ गए हो राहुल गांधी कि अब आप बताइए आप क्या करेंगे उसके बाद हम आगे का हिसाब तय करते हैं।
0: बिल्कुल मौसमी देखिए लगातार हम ये भी अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी वहां बैठे हुए हैं, लगातार वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि FIR दर्ज की जाए। हालांकि पुलिस की तरफ से यह भी तर्क दिया गया कि वो शिकायतकर्ता नहीं है, उनकी एप्लीकेशन उनकी शिकायत हमने रिसीव कर लिया और इस पर हम लगातार इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं। इन तमाम चीजों के बीच आप देख सकते हैं तस्वीरें कि राहुल गांधी अपने कांग्रेस के कई नेताओं के साथ इस समय संसद मार्ग थाने के बाहर बैठे हुए, प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार वहां पर मौजूद है।
7: तो ये पूरा विवाद बढ़ता चला जा रहा है, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी इस वक्त भी मंदिर मार्ग थाने में मौजूद हैं, धरने पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं FIR दर्ज नहीं होगी तो हम हिलेंगे नहीं। और इसी पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस वक्त हमारे साथ लाइव आज तक पर जुड़ रही है। स्मृति जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि FIR दर्ज नहीं होगी, वो साहिल को लेकर बैठे हैं, पेलेट गन के निशान दिखा रहे हैं, उनकी आंखें दिखा रहे हैं, कह रहे हैं उनकी आंखों की रोशनी गई है, FIR दर्ज नहीं होगी तो वो मंदिर मार्ग थाने से नहीं हिलेंगे, अब क्या करेगी आप?
8: देखिए अंजना जी, जो वंदे मातरम का अपमान करते करते कांग्रेस पार्टी एक चक्रव्यूह में फंस चुकी है, आज वही कांग्रेस पार्टी अपने एक नेता को पुलिस थाने बेचती है एक नया स्वांग रचने के लिए ताकि देश का ध्यान वो वंदे मातरम की कॉन्ट्रोवर्सी से हटा सके। विषय यह है कि जब पुलिस की व्यवस्था से ये कहा गया है कि प्रोब अंडर वे है, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना मंतव्य अपना वक्तव्य इस विषय पर दे दिया है तो क्यों अपनी राजनीतिक फायदे के लिए एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं राहुल गांधी हमारे देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस पर।
7: लेकिन स्मृति जी, क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि एक राजनीतिक पार्टी राजनीतिक फायदा उठाएगी, वो ये कहेगी हम कि उन बच्चों की आवाज बन रहे हैं,
8: स्वाभाविक आपने बन रहे हैं। कहा ना एक वाक्य अंजना जी, क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए कदम उठाएंगे, यही सत्य है। लेकिन राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वो किस पर आक्रमण कर रहे हैं, देश की पैरामिलिट्री सर्विसेज पर वो किस पर आक्रमण कर रहे हैं, पुलिस की वर्दी पहनने वाले हमारे महिला पुरुष जितने भी ऑफिसर्स हैं पुलिस बल है उस पर आक्रमण कर रहे हैं। तो अपने राजनीतिक फायदे के लिए, जैसा कि आपने स्पष्ट रूप से कहा, क्या ये राजनीतिक दल जो कांग्रेस पार्टी है और उनके नेता इस हद तक जाएंगे कि अब लांछन देश की पैरामिलिट्री सर्विसेज पर लगाएंगे? आपको क्या लगता है अंजना जी, देश की पैरामिलिट्री सर्विसेज अपनी यूनिफॉर्म क्या इसलिए पहनती है कि वो देश के नागरिक के साथ अन्याय कर सके? ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे देश के इतिहास में। तो जब इन्वेस्टिगेशन वर्तमान में चल रही है तो ऐसी क्या जरूरत है राहुल गांधी को, जब कॉन्ट्रोवर्सी चरम पर है वंदे मातरम की, कि वो आज जाकर वहां बैठे हैं और वो इस विषय पर कितने संजीदा है अंजना जी, वो इस बात से भी दिखाई देता है कि वर्तमान में अगर आप इंटरनेट पर देखें तो राहुल गांधी इस व्यक्ति के साथ बैठकर दूसरे लोगों पर टॉफियां फेंक रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं। क्या आपको ये संजीदा राजनीतिक दल के संजीदा नेता का स्वरूप लगता है?
7: लेकिन सरकार मुश्किल में तो घिर गई है क्योंकि अब वो वहां पर बैठ गए हैं और वो हटने को तैयार नहीं है। स्मृति जी,
8: बिल्कुल नहीं, सरकार में मैं सरकार के प्रतिनिधि के नाते आज नहीं बोल रही हूँ, मैं भाजपा के एक कार्यकर्ता के नाते बोल रही हूँ। भाजपा का अधिकृत बयान निश्चित रूप से आपके पास आया है, सरकार को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार ने अपना स्पष्ट रखा है एक मंतव्य, सरकार ने परामर्श करके सारी तहकीकात के लिए जितना समर्थन चाहिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को वो भी व्यवस्था की है, सरकार को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है।
7: लेकिन स्मृति ईरानी जी, आपने दो शब्द मेरे पकड़े कि राजनीतिक फायदे की बात। मेरा ये अर्थ था कि वहां पर जब वो किसी भाई इंसाफ की बात वो सारे लोग कर रहे हैं जो कि जंतर मंतर पर जिनको लग रहा है उन पर लाठियां चली, जिन पर भी हमला हुआ, वो कह रहे हैं कि भाई
8: राहुल गांधी को कभी दिल्ली पुलिस के ऊपर जो आक्रमण हुआ उनके इंसाफ के लिए बैठते देखा है? आरएफ पर्सनल पर जो हमला हुआ उसके इंसाफ के लिए अपने राहुल गांधी को कभी देखा है? इस घटनाक्रम में कभी भी राहुल गांधी एक वाक्य भी बोले कि दिल्ली पुलिस के पुलिस बल पर आक्रमण नहीं होना चाहिए था, उनका माथा नहीं फोड़ा जाना चाहिए था, एक शब्द बोले?
7: लेकिन स्मृति जी, दिस इज क्लियरली अ टाइम व्हेन एवरीबॉडी इज चूजिंग साइड्स।
8: नो नो, नॉट एट ऑल। द भारतीय जनता पार्टी इज ऑन द साइड ऑफ द ट्रूथ,
7: ठीक है, एक सवाल,
8: जस्टिस,
7: ठीक है, एक सवाल, एक सवाल।
8: राहुल गांधी चूजेस टू सर्व अ लाइ फॉर हिज पॉलिटिकल पर्पस, दैट इज हिज राइट।
7: लेकिन देखिए,
8: इन दिस एंटायर इंसिडेंट, अंजना जी, आपने इस पूरे विषय को इतने दिनों से कवर किया, आपको राहुल गांधी का एक वक्तव्य मिला है क्या कि पुलिस की वर्दी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, पैरामिलिट्री सर्विस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था? नहीं मिला हो। तो अगर वो सच्ची में न्याय के पक्ष में है तो क्या राहुल गांधी की डिमांड ये नहीं होनी चाहिए थी कि पूछो पुलिस वालों को किसने मारा?
7: यही मेरी बात है। पॉलिटिकली आपको पूरा पूरा हक है कि आप इस मुद्दे को उठाएं, लेकिन वो दूसरे पक्ष का मुद्दा उठा रही है ना, वो भी तो मुद्दा उठा रही है।
8: पॉलिटिकल नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आपने कहा कि राहुल गांधी इंसाफ की तलाश में है, तो क्या इंसाफ की तलाश की वो यात्रा इसको सम्मिलित नहीं कर सकती क्या? आपको राहुल गांधी कहीं भी धरने पर दिखे ये कहते हुए कि बताओ पैरामिलिट्री को पुलिस को किसने मारा? नहीं मिलेंगे आप।
7: एफआईआर करने में दर्ज करने में दिक्कत क्या है?
8: दिल्ली पुलिस का क्या बयान है अंजना जी, क्या कहा है दिल्ली पुलिस ने? क्या वो छुपा रहे हैं कुछ? नहीं। क्या प्रोब अंडरवे है अंजना जी? बिल्कुल।
7: लेकिन कोई भी जब जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो कंप्लेंट दर्ज होती है, फिर एफआईआर दर्ज होती है, फिर उसमें आईओ लगाया जाता है, एक प्रक्रिया है, वो उसका पालन
8: हुए। अंजना जी, बिना कंप्लेंट दर्ज हुए, बिना किसी के संज्ञान में लिए, क्या प्रोब हो सकती है? कभी नहीं हो सकते ना। आप एक अनुभवी पत्रकार हैं, बिना एजेंसीज के, इंस्टीट्यूशंस के एक विषय का संज्ञान लिए हुए क्या प्रोब हो सकती है? नहीं हो सकती। तो जब संज्ञान में है और प्रोब चल रही है, तो राहुल गांधी क्या राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? बिल्कुल सेक रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न पुनः है कि अगर वो इंसाफ के पक्ष में है तो क्या पैरामिलिट्री सर्विसेज को पुलिस को किसने मारा? पुलिस बल के बच्चों ने तो अपना एक वहां पर शायद दिल्ली के किसी एक जगह पर ये भी कहा कि वो भी तो नौजवान है जिनके माता पिता पुलिस बल में सर्व करते हैं, उनके लिए क्या राहुल गांधी ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। इंसाफ को आप छिन्न भिन्न नहीं कर सकते ना, परतों में नहीं देख सकते।
7: स्मृति जी, अगला सवाल मेरा,
8: जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक एक पुलिस बल को, पैरामिलिट्री सर्विस को लांछित कैसे कर सकते हैं?
7: लेकिन हाल
8: के पुनः कहती हूँ कि वंदे मातरम के विषय पर वो घिर रहे थे तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। अभी आप सबके सामने बैठे हुए हैं ना, तो उनसे जाके पूछिए, वो थे ना कांग्रेस हेडक्वार्टर में जब वंदे मातरम पूरी तरह से नहीं गाया जाएगा, श्रीमती गांधी ने रोका, तो वो क्या रोका उन्होंने? ये जो सज्जन चुनाव में आके अपना गोत्र बताते हैं, इनकी उपस्थिति में वंदे मातरम को मना किया गया गाने से पूरा का पूरा, उसमें क्या वंदना थी कि हम माँ भारती को दुर्गा स्वरूपा मानते हैं, लक्ष्मी स्वरूपा मानते हैं? तो लक्ष्मी जी माँ भारती का सम्मान और हमारे हिंदुस्तान की जनता माँ भारती को एक विद्या का स्रोत मानती है, इन सब चीजों पर अंकुश लगाया सोनिया जी ने।
7: लेकिन
8: अब राहुल गांधी जी चुप क्यों थे?
7: आप लोग इसको
8: इंसाफ की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, बोलना चाहिए था कि माता जी आप जो कर रही है वो गलत है, क्यों नहीं बोले? ये एलओपी है ना, तो जिस संसद ने वंदे मातरम का सम्मान किया उसका पूरा का पूरा सम्मान एलओपी क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए धरने पे क्यों नहीं बैठे कि भाई मुझे जाना है मंदिर और आप यहाँ पर कांग्रेस हेडक्वार्टर में दुर्गा माँ का अपमान कर रहे हैं, क्यों नहीं बैठे? और कांग्रेस पार्टी अधिकृत रूप से कह रही है पहले कि नहीं, खड़गे जी के लिए कुर्सी मांग रहे थे, राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं बोला कि अरे झूठ बोल रहे हो, माता जी को सच्ची में रोकना था वंदे मातरम? पर ये पहली बार नहीं है, वंदे मातरम की सेंटिनरी सेलिब्रेशन जब चल रही थी, कांग्रेस पार्टी के सेवा दल ने कार्यक्रम आयोजित किया था, जब यूपीए की सरकार थी तब भी उस आयोजित कार्यक्रम में सोनिया जी नहीं गई, उन्होंने उसका भी बहिष्कार किया था। तो ये सारे मुद्दे ना उठे।
7: नहीं तो अब उनका तो पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है स्मृति जी,
8: मैं वही तो कह रही हूं,
7: वो दो ही स्टैंड लगाएंगे।
8: ऑफिशियल स्टैंड क्या है,
7: क्या अब बॉल आपके कोर्ट में नहीं है?
8: कह दिया, सुनिए ना, पार्टी का स्टैंड क्या है अंजना जी, कि नेहरू जी ने कह दिया तो हम दो ही छंद गाएंगे, ठीक है। तो नेहरू जी ने तो मोहम्मद अली जिन्ना को ये भी पत्र में लिखा था कि जिन्ना की ये डिमांड है कि गौ हत्या होनी चाहिए इस देश में, और मैं ये पत्र है रिकॉर्ड पे, आप नेहरू आर्काइव से निकाल सकते हैं 1938 का, जी बी पंत को नेहरू जी ने लिखा कि हम कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन नहीं लेंगे अगर जिन्ना साहब को काउ स्लॉटर करना है, गौ हत्या करनी है। तो अगर नेहरू जी की वो बात मानने को तैयार है, जिन्ना के पक्ष में है कि वंदे मातरम पूरा नहीं गाना, तो क्या आज कांग्रेस के मुख्यालय में खड़े होकर सोनिया जी ये बोल सकती हैं कि नेहरू जी की ये बात भी मुझे समर्थन देनी है? बोलिए ना,
7: अब ये तो उनकी पार्टी डिसाइड करेगी, ये तो उनकी पार्टी डिसाइड करेगी। लेकिन वापस विषय पर आते हैं, एक सवाल, अच्छा बोलिए बोलिए,
8: देश का कानून ये कहता है कि वंदे मातरम का पूर्णतः गायन हो, वो कानून इतिहास के डब्बे में सोनिया जी डाल सकती हैं, उनको क्या विशेषाधिकार है? 1950 में हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि वंदे मातरम का उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना जन गण मन का। तो क्या अब वो राजेंद्र प्रसाद जी के खिलाफ भी बोलेंगे कांग्रेस मुख्यालय से? इसलिए ये सारे प्रश्न देश में ने कहा था कि वंदे मातरम का उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना जन गण मन का। तो क्या अब वो राजेंद्र प्रसाद जी के खिलाफ भी बोलेंगे कांग्रेस मुख्यालय से? इसलिए ये सारे प्रश्न देश में जब खड़े हो रहे थे, तब इन्होंने सोचा कि चलिए आज मैं जाकर लोगों का ध्यान, उन्होंने कांग्रेस हेडक्वार्टर में खड़े थे वहां।
7: पर अब तो बॉल आपके कोर्ट में है, अगर उन्होंने नए कानून में संशोधन के बाद उसका उल्लंघन किया है तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ।
8: ऐसा है अंजना जी, वंदे मातरम कोई बॉल नहीं है यहाँ से वहां पॉलिटिकली उछलो, ये हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम की एक पुण्य निशानी है, पुण्य जय घोष है, ये आपकी मेरी विरासत है एज नागरिक, ये किसी की बपौती नहीं है। और देश की संसद जब इस पे अपना एक वक्तव्य रखती है या अपना एक निर्णय रखती है, तो नागरिक होने के नाते ना गाती वो चार छंद, अपमान करने का अधिकार उन्हें किसी ने नहीं दिया था।
7: चलिए
8: वहां पे इंसाफ के लिए वहां भी लड़ते ना।
7: केरला में तो ऑफिशियल कार्यक्रम में नहीं हुआ है वंदे मातरम
8: भाई, केरला में तो ऑफिशियल कार्यक्रम में इन्होंने गौ की हत्या भी की है ना।
7: अब सवाल है कि
8: 1923 में अंजना जी, क्योंकि इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं, 1923 में काकीनाडा सेशन में कांग्रेस के तब के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जौहर साहब, मौलाना साहब थे, तब जिन्ना ने खड़े होकर बोला था वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। सरदार पटेल शायद आप चेक कर सकते हैं, उस वक्त थे सेशन में। तो महाराष्ट्र के एक गायक ने खड़े होकर जिन्ना का विरोध किया और कहा कि ये मंच किसी धर्म विशेष का नहीं है, राष्ट्रीय मंच है, और उन्होंने जिन्ना के खिलाफ जाकर वंदे मातरम पूरा गाया। तो आप मुझे कह रही हैं एक मराठी सिंगर में इतनी हिम्मत थी कि वो जिन्ना को चुनौती दे दे, और नेहरू जी में नहीं थी?
7: खैर इसका जवाब देने के लिए तो अभी उस पर मैं तो नहीं आपको बता सकती हूँ जवाब, लेकिन वापस आज के विषय
8: जवाब देना चाहिए, वो तो टॉफियां फेंक रहा है अभी।
7: स्मृति जी एक सवाल जी, सीधा है
8: जी,
7: कि अब देखिए इस मुद्दे पर तो एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट भी देश में जागा ना, कि भाई पेपर लीक का मुद्दा था, छात्र निकले थे, और बहुत देखिए दोनों पक्ष है इसमें, ऐसे भी कुछ थे जिन्होंने उत्पात मचाया वहां पर, कुछ उपद्रवी घुस गए थे।
8: जी आप अपना प्रश्न रिपीट करेंगे?
7: मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर कुछ दिनों को ही पीछे जाएं तो ये एक ऐसा आंदोलन था जंतर मंतर का।
8: प्रश्न रिपीट करेंगी?
7: मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपको मेरी आवाज मिल रही है स्मृति जी? आवाज आ रही है?
8: हाँ जी अंजना जी बोलिए।
7: हाँ अब आवाज आ रही है? हाँ
8: जी।
7: हाँ तो मैं ये कह रही थी कि जंतर मंतर के दौरान एक आंदोलन हुआ और देश में कई लोगों की भावनाएं उसके साथ जुड़ी, पेपर लीक का मुद्दा था, बड़ा मुद्दा था। अब वो जो उसमें कुछ उत्पाती घुस गए थे इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है, स्टेटेड, बट उसके बाद से अब जो ये एक एक करके ऐसे लोगों को मुद्दा को उठा रहे राहुल गांधी, तो आपके लिए भी तो मुश्किल तो हो रही है ना कि भाई कैसे जवाब देंगे? पैलेट गन पर सुने ना, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ है, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ है, इसमें बस इतना बता दीजिए, देश की जनता आपको सुन रही है लाइव, पैलेट गन का सच क्या है और ये जांच के लिए क्या कोई टाइमलाइन है कि पुलिस कब तक बता देगी ताकि लोगों को एक आश्वासन मिले?
8: बिल्कुल, आपको मैं इतना कह दूं, ना आप इन्वेस्टिगेट कर रही है ना मैं, तो सच तो तभी आएगा जब तथ्य और सारा एविडेंस सामने आएगा। क्या उससे पहले मैं देश की पैरामिलिट्री सर्विसेज को दोषी करार दे दूं? क्या आपको पता है तथ्य क्या है? मुझे नहीं पता, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो इन्वेस्टिगेशन ना आप कर रही है ना मैं कर रही। और रही बात एजुकेशन के सिस्टम के सुधार की, मैं शिक्षा मंत्री थी 2014-15 में अंजना जी, जब नई शिक्षा नीति लिखी जा रही थी,
9: बिल्कुल
8: राहुल जी एक बार नहीं आए चर्चा करने कि भाई मैंने सभी सांसदों को पत्र लिखा था, कपिल सिब्बल जी, पल्लम राजू जो यूपीए के कार्यकाल में मंत्री थे, उन्होंने भी, मैंने उनसे स्वयं फोन उठा के बात की थी कि अगर कांग्रेस पार्टी का कोई योगदान है तो आप कृपया करके हमको बताइए, नहीं बताया था। आज भी कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक उनके पास नहीं है। तो अगर हम कहते हैं कि सुधार के लिए किसने प्रयास किए, नरेंद्र मोदी ने निश्चित किए, आपने देखा उन्होंने टास्क फोर्स बनाए, वो संवाद में रहे सीधा छात्रों के साथ, लेकिन जो इस वक्त बैठे हैं आपके कैमरा का, जो मैं स्क्रीन देख रही हूँ, उन्होंने क्या एक बार भी कोई कंस्ट्रक्टिव सिटीजन के नाते या पार्लियामेंटेरियन के नाते योगदान दिया? नहीं। दूसरा, मैं उस जगह पर सांसद के नाते सेवा दे चुकी हूं जहां से मेरे टर्म से पहले सीधा राहुल गांधी थे, जहां देश के दो प्रधानमंत्री आ चुके हैं, जहां सोनिया जी आ चुकी हैं, वहां पर बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते थे, पहली बार वहां पर टेबल कुर्सी 500 से ज्यादा स्कूलों में हमारी सरकार ने लगाई। तो इनका एजुकेशन का क्या इतिहास है, उसका मैं प्रमाण आपको दे सकती हूँ। आज भी अमेठी में गेस्ट हाउस है सरकारी जमीन पर, जो राहुल जी ने बनाया, सोनिया जी ने बनाया अपने लिए, जबकि वो जमीन उन्होंने ये कहकर ली थी कि वहां पर मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, वो जमीन खाली नहीं की, वहां पर आज मेडिकल कॉलेज नरेंद्र मोदी की सरकार बना रही। तो शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा कर रही होगी तो मैं चर्चा से इनकार नहीं करती हूं, लेकिन अगर प्रमाण देना होगा अंजना जी, तो प्रमाण देने के लिए मैं स्वयं अमेठी की पूर्व प्रतिनिधि के नाते भी प्रमाण दे सकती हूँ, क्योंकि व्यक्ति को कहीं ना कहीं मौका मिलता है ना पार्लियामेंटेरियन के नाते कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो मौका जनता ने राहुल जी को भी दिया था अमेठी से, नहीं बनाए स्कूल, वहां का पहला सैनिक स्कूल नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाया, वहां का पहला केंद्रीय विद्यालय नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाया। तो शिक्षा पे चर्चा स्वाभाविक है, चेंजिंग डेमोग्राफी है, मार्केट्स की डिमांड अलग है, युवा के एस्पिरेशंस नए हैं, लेकिन आप अगर कंट्रीब्यूट ना करना चाहें, जबकि मौका है हम सभी पॉलिटिशियंस के पास कि हम कंट्रीब्यूट करें, तो प्रश्न राहुल जी से करना चाहिए।
9: चूंकि आपने अमेठी की बात की, राहुल बनाम स्मृति ईरानी, लगभग एक समय पर, मुझे जितना रफ होगा, अगर मैं गलत हूं तो सही कर दीजिएगा, आप दोनों ने राजनीति की शुरुआत की थी और कई लोग महामंत्री बनकर,
8: मेरी राजनीति की शुरुआत अंजना जी 2003-04 में हो चुकी थी।
9: अच्छा, तो अब वहां से आते हैं कि आज की परिस्थिति में आपका, कई लोग इसको स्मृति ईरानी के बहुत बड़े कमबैक के तौर पर देख रहे हैं, ईरानी 2.0 भी कह रहे हैं आपका, हालांकि आपने कहा कि आई एम ऑलवेज एंड आई विल ऑलवेज बी अ पॉलिटिशियन।
8: मैं बंगाल में तो आपको दिखी थी।
9: हाँ, बिल्कुल दिखी थी और वहां पर हमने इंटरव्यू भी आपका किया
8: था। नहीं था,
9: हाँ, पद नहीं था, पद मिलना वजह से लोग कह रहे हैं ये आपका कमबैक है। अब ऐसे में राहुल गांधी भी नई ताकत के साथ आजकल अपने आप को हर जगह जमीनी लड़ाई में उतार रहे हैं, उनके इस पॉलिटिक्स को आप कैसे देखती हैं?
8: मैं पहले भी कहती थी कि ये मौका परस्तों की पॉलिटिक्स है, मैं पहले भी कहती थी ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है, मैं पहले भी कहती थी कि ये हेडलाइन चेजिंग की पॉलिटिक्स है, मैं आज भी वही कहती हूँ। आप मुझे बताइए, एक पॉलिसी पे कंस्ट्रक्टिव प्राइवेट मेंबर बिल इन्होंने कब चलाया? अगर इन मुद्दों पर वो गंभीर है तो आप मुझे एक प्राइवेट मेंबर बिल दिखाइए, एक इंटरवेंशन दिखाइए जहां पर ये किसी मंत्री के साथ बैठकर इन विषयों पर इन्होंने विस्तार से कोई काम किया हो। मैं तो अमेठी का उदाहरण दे सकती हूँ, वो मेरा निजी अनुभव है। मैं तो शिक्षा मंत्रालय का अनुभव दे सकती हूँ, वो मेरा निजी अनुभव है। हमने बच्चों के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में परिवर्तन लाने की कोशिश की, साइबर पोर्नोग्राफी से हमने बच्चों को बचाने का प्रयास किया, मोदी सरकार ने इस बिल को दोनों सदनों में पारित किया, तब राहुल जी नहीं बोले थे बच्चों के पक्ष में, नौजवानों के पक्ष में, बच्चों के पक्ष में। तो एक है हेडलाइन चीजें, एक है फोटो अच्छी आनी चाहिए कि मुझे उठाया पुलिस ने, मैं नरेंद्र मोदी के घर के बाहर था, लेकिन क्या हम पॉलिटिक्स में इसलिए आए हैं? अगर हम पॉलिटिक्स में इसलिए आए हैं ताकि हम देश के प्रति अपना योगदान दे सके, तो क्या आज वो अपने योगदान का प्रमाण दे सकते हैं कंस्ट्रक्टिव ही सही? अंजना जी, मैं भी विपक्ष में रह चुकी हूँ एक सांसद के नाते. तब की यूपीए की सरकार प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम हरासमेंट एट वर्कप्लेस का बिल ला रही थी 2013 में, कंस्ट्रक्टिवली उसमें योगदान दिया. मेरा पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड है विपक्ष का मुद्दों पे बोलने का. धरना भी दिया लेकिन मुद्दों पर योगदान भी दिया. क्या यही रिकॉर्ड राहुल गांधी क्लेम कर सकते हैं? क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते जेन्युइनली क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि एक बार तो कहें कि दिल्ली पुलिस के उस अधिकारी को मारना गलत था, पैरामिलिट्री को मारना गलत था, देश की आर्मी को गाली देना गलत था? बोले क्या एक बार? नहीं बोले. जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन देश की आर्मी को गाली देने का समर्थन करता है तो मैं किस प्रकार से उन्हें देखूं और उनकी राजनीति को?
9: स्मृति जी, देखिए विपक्ष की एक क्लियर थिंकिंग इस वक्त दिख रही है क्योंकि इस आंदोलन के बाद, सुनिए ना, इस आंदोलन में उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बिना मानेंगे नहीं, तभी डिस्कशन करेंगे जब नीट पर डिस्कशन हो, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तभी करेंगे. धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, ऐसे में अब राहुल गांधी को यह लगता है कि भाई झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए, और इसी कड़ी में अब वो सीधा गृह मंत्री पर हमला कर रहे हैं.
8: वो पुराना उनका गांधी परिवार को प्रधानमंत्री गृह मंत्री से चिड़ पुरानी है. मैं दो बार गुजरात से सांसद रह चुकी हूँ. हमने देखा है कि उस वक्त चाहे वो सरदार सरोवर डैम का विषय हो या फिर झूठे केसेस में नरेंद्र मोदी को फंसाने का या अमित शाह के परिवार को प्रताड़ित करने का वाक्य हो, हमने, मैं साक्षी रही हूं उसके. तो इनके पास जब सत्ता होती है तो इनको तब भी रास नहीं आ रहे थे नरेंद्र मोदी और अमित शाह. तो ये नया नहीं है, ना नरेंद्र मोदी के लिए ना अमित शाह के लिए. लेकिन तब भी विपक्ष आपको इस मुद्दे पर विभाजित दिखता है क्योंकि राहुल जी को लगा कि जंतर मंतर में मेरे नए लोग हैं, सिसोदिया है, मनीष और ये अरविंद केजरीवाल है, तो मैं अपना अलग धरना करूंगा. पत्रकार के नाते आप लोगों को तो आते थे मैसेज.
9: वो तो कह रहे हैं कांग्रेस वर्किंग कमिटी में कह रहे हैं स्मृति जी कि मोदी इज डेज आर ओवर.

0: ये तो कब से कह रहे हैं, ये तो कहते थे कि चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ये तो डेज की ही कल्पना नहीं कर रहे थे। और मोदी इज डेज आर ओवर, ये बात तो कांग्रेस पार्टी पिछले 12-13 साल से बोल रही है, और नरेंद्र मोदी ने अर्जुना जी बार बार कहा है मोदी से बैर है लेकिन दुश्मनी देश से मत निकाल, मोदी से बैर है तो अपमान वंदे मातरम का मत करो, मोदी से बैर है तो पैरामिलिट्री सर्विसेज का अपमान मत करो, मोदी से बैर है तो दिल्ली पुलिस पर आक्रमण हो इसका समर्थन मत करो, मोदी से बैर है तो जाकर एक यूनिवर्सिटी में भारत के टुकड़े होने का नारा मत दो।
1: एक आखिरी सवाल, लाल सलाम किताब आपने लिखी है, जो भी नक्सलवाद और दंतेवाड़ा का जो इंसिडेंट था, उन तमाम चीजों की चर्चा करते हुए, दिमागी नक्सल पर पी चिदम्बरम से लेकर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मैं हूं दिमागी नक्सल, सरकार विरोध करने वालों को दिमागी नक्सल कहती है, ये गलत है।
0: नहीं, ये वही चिदम्बरम साहब है जो उस सरकार का हिस्सा थे जब पैरामिलिट्री पर्सनल जब छत्तीसगढ़ में मौत के घाट उतारे गए, तो इन्हीं के सरकार के संरक्षण में यहाँ दिल्ली में यूनिवर्सिटी में जश्न मनाया गया। तो अगर ये कहते हैं दिमागी नक्सल हैं तो मैं उसको काउंटर नहीं करूंगी। इन्होंने तो जश्न मनाया ना जब पैरामिलिट्री, आपको याद होगा, आप तो तब थी पत्रकार। तो अगर ये स्वीकार करते हैं कि ये हैं तो क्या मैं मना कर सकती हूँ? प्रधानमंत्री ने तो किसी विशेष का नाम नहीं लिया, कहा जो देश के खिलाफ है, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, जो देश की प्रगति की गति को रोकना चाहते हैं, जो संविधान का हनन करते हैं, जो देश की सेना का अपमान करते हैं, यही है ना परिभाषा। अगर इस परिभाषा में चिदम्बरम साहब अपने आप को सम्मिलित करना चाहते हैं तो इस स्वतंत्र राष्ट्र में क्या मैं चिदम्बरम साहब को रोक सकती हूँ? अगर यही तमगा अरविंद केजरीवाल जी स्वेच्छा से शान से पहनना चाहते हैं तो मैं क्या रोक सकती हूँ? प्रधानमंत्री
1: स्मृति,
0: ने तो इन दोनों का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा देश विरोधी ताकतें। तो आपको अजीब नहीं लगता कि ये दोनों नेता अपने आप को देश विरोधी ताकत मानते हुए डिक्लेयर करते हैं अपने आप को?
1: चलिए यहीं पर इस बातचीत का अंत करते हैं। स्मृति ईरानी जी, महासचिव महामंत्री भारतीय जनता पार्टी की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर जुड़ने के
0: धन्यवाद
1: लिए।
0: अंजना जी,
1: बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो बड़ी बातें जो स्मृति ईरानी कह रही थी उनमें से यही कि सेना पुलिस उनके खिलाफ सवाल ना उठाएं, राहुल अर्धसैनिक बलों पर सवाल उठा रहे हैं।
2: इंटरव्यू था स्मृति ईरानी के साथ, महासचिव बीजेपी, जो लगातार राहुल गांधी पर इनके पूरी की पूरी आप कह सकते हैं आंदोलन को लेकर, धरने को लेकर उन पर आक्रामक थी और कह रही थी कि ये मौका प्रस्ती है और लगातार जब जांच चल रही है तो ऐसे में राहुल गांधी वहां क्यों पहुंचे, राहुल गांधी का व्यवहार संजीदा नहीं है, ये स्मृति ईरानी की तरफ से कहा गया है बीजेपी की महासचिव। चलिए हमने आपको स्मृति ईरानी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाया, लेकिन अब सीधे लिए चलते हैं आपको एक बार फिर से राहुल गांधी जहां पर साहिल और उनके परिवार के साथ बैठे हुए हैं संसद मार्ग थाने के बाहर, वहां आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मौसमी सिंह वहां से एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े। मौसमी, अभी वहां पर किस तरीके के हालात हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं राहुल गांधी अब भी वहां बैठे हुए हैं, लगातार हमने थोड़ी देर पहले आपने तस्वीरें दिखाई थी कि प्रियंका गांधी जो है वो लगातार साहिल की मदर के साथ अंदर गई थी, उनकी कुछ रिपोर्ट्स लेकर गई थी, कुछ दस्तावेज लेकर गई थी, अभी क्या चीजें वहां पर चल रही हैं?
3: मौसमी तो बन रही है, वरना पुलिस इंतजार नहीं करती। जब कांग्रेस ने ये कम्युनिकेट कर दिया कि हम ये, जी
2: प्लीज कंटिन्यू कीजिए मौसमी।
3: तो मैं ये कह रही थी सुमित कि कुछ ना कुछ तो पक रहा है, क्योंकि जब से कांग्रेस यहाँ पे आई है, राहुल गांधी यहाँ पे आए हैं, उसके बाद जमावड़ा हुआ है, उसके बाद अब बहुत घंटे बीत गए और दिल्ली पुलिस कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है, ना डिटेन करने से लेके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लगातार नेता अंदर जा रहे हैं। आपको बताया था प्रियंका गांधी भीतर गई थी, उसके बाद जो है प्रियंका गांधी के बाद राहुल गांधी भीतर गए थे और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी साहिल की माँ के साथ उन्होंने आला अधिकारियों से कुछ बात की और उसके बाद फिर राहुल गांधी आके बैठ गए। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द कुछ इस तरह की खबर आ सकती है, कुछ कम्युनिकेशन दिल्ली पुलिस की तरफ से शायद मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इनको हटाने का भी कोई प्रक्रिया शुरू

0: भी बहुत बाहर भी बहुत बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा सारी राज्य इकाइयों को पता चलेगा तो कांग्रेस एक बहुत बड़ा प्रदर्शन सड़कों पर भी कर सकती है
1: जी।
0: तो ये नहीं शायद सूट करेगा दिल्ली पुलिस को कि उसके खिलाफ प्रदर्शन, पहले तो छात्रों ने जिस तरीके से विरोध किया, प्रदर्शन कांग्रेस जगह जगह की करे और काफी इसको लेकर किरकिरी हो ना हो तो मुझे लगता है कि कुछ बातचीत चल रही है। अभी प्रियंका गांधी शायद भीतर ही है और यहाँ पे बातचीत का सिलसिला तमाम नेताओं के साथ चल रहा है और ये जरूरी जरूर है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मौसमी सिंह हमारे साथ, हमारी सहयोगी लगातार संसद मार्ग थाने के बाहर से मौजूद हैं। वो हमें बता रही हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो लगातार अंदर गई थी, उसके बाद वो साहिल की मां को अपने साथ अंदर लेकर के कुछ दस्तावेज हैं जो दिल्ली पुलिस के अफसरों अधिकारियों को दिए गए और लगातार अभी बातचीत चल रही है। शायद दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार उन साक्ष्यों को, उन लगातार सबूतों को, उन दस्तावेजों को जांच परख रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक FIR दर्ज नहीं होती वो यहां से नहीं हिलेंगे, वो साहिल और साहिल के परिवार के साथ, उनकी मां के साथ वहां पर बैठे हुए हैं। वो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन मौसमी, एक और इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपने कहा कि दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं करेगी क्योंकि दोबारा से उस आंदोलन को रिवाइव करना, अगर FIR नहीं दर्ज होती, कांग्रेस को मौका मिलता है तो फिर से उस आंदोलन को रिवाइव किया जाएगा। और राहुल गांधी का जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम है जो लगातार देश भर के 800 से ज्यादा जगहों पर वो करने वाले, उसको भी एक बूस्ट मिलेगा। लेकिन अभी कांग्रेस की रणनीति सिर्फ FIR दर्ज करने तक को लेकर है या इस छात्र आंदोलन, इन छात्रों की मांग या छात्रों पर जो बैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप वो लगा रहे हैं, इसको आगे ले जाने की भी है?
0: देखिए, साहिल के जरिए कहीं ना कहीं छात्रों की राजनीति और छात्रों के मुद्दों को उठाते हुए मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं राहुल गांधी, ये इसमें कोई शक नहीं है। अभी आप देखिए कि आज का दिन ढलने को आया है और कल राहुल गांधी पुणे में 10,000 छात्राओं के साथ अपनी छात्रों की गूंज करने वाले हैं। लगातार कोटा से उन्होंने ये शुरुआत की थी, प्रयागराज में कर चुके हैं, उत्तराखंड में कर चुके हैं और अब पुणे, यानी कि आप देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान सब BJP शासित राज्य हैं। बताया जा रहा है कि आगे कुनबा आगे बढ़ेगा तो पंजाब और 800 और जगह होगा। तो साहिल एक छात्र है, साहिल प्रदर्शन में थे, साहिल के साथ जो हुआ उसके साथ राहुल गांधी खड़े हैं, ये पूरा संदेश देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से। और सर थोड़ा साइड में हट जाइए, तो यहाँ पे आप देखिए कि हालांकि तस्वीर वही है लेकिन घंटे बदलते जा रहे हैं, टाइम बदलता जा रहा है, दबाव बढ़ता जा रहा है, तस्वीर में बदलाव नहीं है। राहुल गांधी राइट हैंड साइड पे बैठे हैं साहिल के और नेताओं के नारे चल रहे हैं अलग अलग तरीके से, एक तरीके से एक ठहराव सा इस जगह नजर आ रहा है कि धरने में कोई आके आपको हटा नहीं रहा है, यानी कि पुलिस भी इस पूरे मौके की संवेदनशीलता और गंभीरता को भली भांति समझ रही है,
1: बिल्कुल
0: जान रही है कि ये तस्वीरें सब जगह जा रही हैं, मसला छात्रों का है और कटघरे में दिल्ली पुलिस।
1: बिल्कुल, और शायद इसी वजह से टाइम ज्यादा लिया जा रहा है मौसमी, ताकि कम से कम, कहते हैं ना कि मामले को ठंडा कर एकदम से उसे सुलझाया जा सके। दिल्ली पुलिस हर साक्ष्य को अपने पास बुला रही है या फिर उनकी जांच परख कर रही है और उसके बाद कहते हैं कि दिल्ली पुलिस कुछ इसमें बड़ा कदम या फिर कोई बड़ा रिस्पॉन्स कांग्रेस पार्टी अगर राहुल गांधी को दे सकती है। एक और बात हमने देखा कि अपने आपसे थोड़ी देर पहले आप ही ने दिखाया था मौसमी कि वहां पर गृह मंत्री के पोस्टर लिए उनके खिलाफ भी नारेबाजी लगनी शुरू हो गई थी। क्या कांग्रेस एक तीर से दो निशाने साधना चाहती है कि छात्रों को अपने साथ लाकर अपने आंदोलन को या फिर अपने इस घटनाक्रम को अपने फेवर में कर ले और दूसरी तरफ सरकार को भी प्रेशराइज करे? गृहमंत्री के खिलाफ उनके उनके उनके इस्तीफे को लेकर मांग की जा रही थी पहले भी, तो क्या आपको लगता है कि एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी की?
0: देखिए, ये सियासत है और सियासत में लगातार मौके के हिसाब से आप अपनी सियासत को साधते हैं। निशाना सिर्फ एक था और सिर्फ एक, पहले लाठीचार्ज से पहले धर्मेंद्र प्रधान और उसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, और जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लाठीचार्ज हुआ, तो निशाना सिर्फ एक था और वो था गृह मंत्री अमित शाह। राहुल गांधी के सीधे निशाने पर गृह मंत्री अमित शाह है, वो जो फ्रंट से लीड करते हैं हर एक चीज में पार्लियामेंट में, उनको उन पर निशाना साधा और यही वजह है कि आप देखें नारेबाजी भी जो हो रही है, दिल्ली पुलिस को आड़े हाथ लिया जा रहा है, लेकिन दारोमदार गृह मंत्री अमित शाह का है ये राहुल गांधी जताने और बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे।
1: बिल्कुल मौसमी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपका दोबारा से रुख करेंगे, तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दोबारा से दिखाएंगे, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के इस धरने को लेकर क्या कुछ बयान दिया, आइए आपको सुनाते हैं।
2: ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं अराजकता की राजनीति करते हैं। अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और अभी फिर यहां बैठ गए हैं। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस घटना का वो संदर्भ दे रहे हैं उसकी शिकायत लीक हो चुकी है।
1: चलिए इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: मुल्तानी घो का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घो का कॉफ सिरप।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
3: B.R. अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है।
4: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट अलग ट्रेड नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे एक दलतिस्तान भी बनता।

0: डीएम साहब इनको माने जानकारी जो जो बता रहे हैं
1: यूपी की सियासत में नए बवाल का ये वायरल वीडियो है। वीडियो 18 अगस्त को सहारनपुर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक का है। इसमें कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी विधायक आशु मलिक तूतू मैं करते नजर आ रहे हैं और पास ही में बैठी समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन खामोशी से सब देख रही हैं।
0: कच्चा नाला भी फुटवाया था जाकर के पिछली बार। आप नई बात हमें बता रहे तो जवाब तो सही आना चाहिए ना।
1: दरअसल दिशा की बैठक में एसपी विधायक आशु मलिक अपने विधानसभा से जुड़े मुद्दों पर अधिकारियों से तीखे सवाल कर रहे थे। इसी दौरान दोनों नेताओं के बीच नोकझोंक हो गई। एसपी और कांग्रेस के नेता के बीच नोकझोंक के वीडियो से सवाल खड़ा हो गया कि क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव की पार्टी के बीच सब ठीक ठाक है। ऊपर से दिखने वाली एकजुटता जमीनी तौर पर तो नदारद है। इस झगड़े को पश्चिमी यूपी में वर्चस्व की लड़ाई के रूप में भी देखा जा रहा है। इस वीडियो की चर्चा ज्यादा इसलिए भी हो रही है क्योंकि इसमें एक किरदार इमरान मसूद हैं। इमरान मसूद पिछले कुछ समय से एसपी पर लगातार हमलावर हैं। दूसरी बात ये कि आशु मलिक और इमरान मसूद में निजी सियासी अदावत की बात भी आम है। फिलहाल इन स्थानीय टकरावों पर दोनों पार्टियों का नेतृत्व खामोश है। शायद 2027 का चुनाव बिगुल बजने से पहले दोनों दल एक दूसरे को तौलने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल कुमार, सहारनपुर, आज तक।
2: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: In association with
4: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
5: रांची की सड़कें कल शाम फिर इंसाफ के नारों से गूंज उठी। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर स्टे लगाकर दो परीक्षाओं से चयनित कर्मचारियों को राहत दी, तो दूसरे कर्मचारी भी राहत की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की 11वीं से 13वीं परीक्षाओं के माध्यम से चयनित सरकारी कर्मियों की नियुक्तियां रद्द करने से संबंधित आदेश पर कल रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति को रद्द करने के आदेश के अमल पर भी रोक लगा दी। कोर्ट ने राज्य सरकार से 15 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट के इस आदेश में कैंसिल हुई सभी 22 परीक्षाएं शामिल नहीं है। सोरेन सरकार ने 18 अगस्त को JSSC और TDPL द्वारा संचालित 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 23 परीक्षाओं की जांच के आदेश दिए थे। इन परीक्षाओं से चयनित करीब 2700 कर्मचारियों की नौकरी पर इस फैसले से संकट खड़ा हो गया।
6: हम लोग का बस एक ही मांग है कि हम लोगों की क्या गलती है जो हमारे साथ यह अन्याय हो रहा है। हमने क्या गलत कर दिया? क्या पढ़ना गलत है? पढ़ के मेहनत करके नौकरी लेना गलत है? मैं अपनी स्थिति बताता हूँ। मेरी ये तीसरी नौकरी, इसके पहले 2 सेंट्रल नौकरी में था।
5: इस बीच हाईकोर्ट के फैसले से वो छात्र भी नाराज हैं जिनकी मांग पर सोरेन सरकार ने इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। जेपीएससी JSSC रिफॉर्म मंच के बैनर तले प्रदर्शन करने वाले छात्र आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष सही से नहीं रखा।
7: आपका जो मनसा हम आज कोर्ट में देखने को जो मिला, आप किस मनसा के साथ आप जो ऐसा कोर्ट में उतरने का काम किए हैं, उस मनसा को हम तमाम छात्र आज पढ़े हैं। आप ये धोखा सिर्फ झारखंड के लाखों छात्रों को नहीं दिए हैं, झारखंड के तमाम आम आवाम को दिए हैं, झारखंड के उन तमाम अभिभावक को दिए हैं जिन्होंने अपने बच्चा को, अपने बेटा और बेटियों को पिछले 26 दिनों से अपने हक और अधिकार के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भेजने का काम किए थे।
5: अब एक बार फिर से छात्र संगठनों ने अपील की है कि आज झारखंड के सभी जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका जाएगा।
8: पूरे मुख्यालय में, राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में आप माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला फूंकने का कार्य करें और उन्हें चेतावनी दें कि सुधर जाए, अन्यथा इस बार उससे भी बड़ा आंदोलन होगा जिसे कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी।
5: 16 दिनों तक अनशन करने वाले देवेंद्र महतो ने भी चेतावनी दी है कि सरकार ने लापरवाही बरती तो बड़ा आंदोलन करेंगे।
9: अगर सरकार अपना पक्ष रखने में, अपना जांच रिपोर्ट रखने में अगर किसी तरीके से लिपापोती करती है, किसी तरीके से कोताही बरतती है, तो यहाँ के छात्र बिल्कुल अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब जेपी के तर्ज पर, जेपी आंदोलन के तर्ज पे आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, ये हम आज ऐलान करते हैं।
5: सोरेन सरकार के लिए भी स्थिति अब विचित्र हो गई है। एक गुट की मांग माने तो दूसरा नाराज और दूसरे की मांग माने तो पहला नाराज। सत्यजीत कुमार, रांची आज का।
10: कंप्लेंट वो क्या फाइल करें, जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया है, आज उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है, 90 साल से जो चल रहा है वही हम किए।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: संसद मार्ग थाने के बाहर राहुल गांधी का मैराथन धरना जारी। पैलेट गन मामले में FIR दर्ज करने की मांग, दिल्ली पुलिस का जवाब ले ली गई है शिकायत। राहुल के खिलाफ उतरी बीजेपी की फौज, नड्डा ने कहा वंदे मातरम पर घिरने के बाद कांग्रेस का धरना। गिरिराज बोले सिर्फ नौटंकी ही कर सकते हैं नेता विपक्ष। बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, कहा वंदे मातरम को स्वीकार न करना दुर्भाग्यपूर्ण। राजनाथ बोले कांग्रेस के खतरनाक इरादे देश के सामने उजागर। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने अखिलेश को फिर घेरा, कहा गिरगिट की तरह रंग बदलती है समाजवादी पार्टी, इनके पीडीए का पी पिछड़ा से पंडित हो गया और एक दिन कर देंगे पाकिस्तान। जयपुर में स्कूल का दौरा करने गए सीजेपी के आशुतोष रांका से गांव वालों की झड़प, गाड़ियों के शीशे तोड़े, सीजेपी का आरोप बीजेपी के लोगों ने किया हमला।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। दिल्ली में एक महीने पहले एक धरना प्रदर्शन हुआ था और एक महीने के बाद एक बार फिर एक धरना प्रदर्शन हो रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पर धरना दे रहे हैं। मांग ये है कि 20 जुलाई को सीजेपी प्रोटेस्ट में जिन छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई, उनकी आंख फोड़ दी गई, उसकी FIR पुलिस नहीं लिख रही है। बीजेपी का कहना है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में 5 सदस्यों की हाई पावर्ड कमेटी बना दी है, जो पैलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन समेत तमाम आरोपों की जांच करेगी। 11 सितंबर को अगली सुनवाई भी होनी है और इसीलिए मुकदमे की मांग ठीक नहीं है। लेकिन राहुल पैलेट पीड़ित 19 साल के साहिल लोचाप नाम के युवक के साथ धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार पहले तो पैलेट गन चलने को लेकर झूठ बोली, फिर दिल्ली पुलिस के झूठ की पोल खुली और अस्पतालों से भी पैलेट गन पीड़ितों का सच सामने आया, तब भी सरकार मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। बीजेपी का कहना है कि वंदे मातरम गाने से इनकार करने वाली कांग्रेस अपनी सियासत की पोल खुलती देख पैलेट गन का मुद्दा लेकर बैठी है, जबकि राहुल लगातार छात्रों का मुद्दा उठाए रखना चाहते हैं। कल उन्हें पुणे में छात्रों की गुंज कार्यक्रम में भी जाना है, लेकिन बीजेपी लगातार इस राजनीति को अराजकता फैलाने की राजनीति करार दे रही है। बल्कि जयपुर में सीजेपी के नेता आशुतोष रांका किसी स्कूल की जांच करने पहुंचे तो वहां पर भीड़ ने पूरी टीम पर हमला कर दिया और तोड़फोड़ मचा दी। सीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं पर भी धूल मिट्टी फेंकी गई। तो इस तरह की नई सियासत अब नौजवानों के आंदोलन और शिक्षा के मुद्दे पर शुरू हो चुकी है। क्या है इसका मकसद, किसकी सियासत है, किसका है एजेंडा और इसके क्या नतीजे होंगे, इसी पर हम आज के दंगल में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं।

0: जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन के महीने भर बाद नई दिल्ली थाना इलाके में एक बार फिर हलचल मच गई, क्योंकि राहुल गांधी पैलेट फायर पीड़ित को लेकर थाने पहुंच गए। तो अब बीजेपी कह रही है कि वंदे मातरम का विरोध करने वाली कांग्रेस फंस गई है, तो पैलेट पाखंड चल रही है। उधर जयपुर के बगरू के बाड़े में चल रहे स्कूल की जाँच करने पहुँचे सीजेपी नेता आशुतोष की भीड़ ने पिटाई कर दी।
1: कार्यकर्ताओं को आशुतोष राघव के साथ दिए मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी।
0: पैलेट गन पीड़ित युवक के परिवार के साथ थाने में पुलिस अफसरों से दरियाफ्त करने के बाद बाहर निकले राहुल गांधी धरने पर बैठ गए, क्योंकि मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा।
2: हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज FIR दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया FIR नहीं हो सकता है, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे।
0: राहुल गांधी पैलेट पीड़ित 19 साल के साहिल लोचाप के परिवार के साथ धरने पर बैठ गए और आरोप लगाया कि पैलेट की चोट से आंख की रोशनी गवा चुके साहिल के साथ न्याय नहीं हो रहा।
2: ये है एम्स की रिपोर्ट जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे।
0: पीड़ित छात्र की शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं करने के पीछे कोई वाजिब कारण नहीं बताया गया है, लेकिन दलील ये है कि 20 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता और पुलिस वालों पर हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यों की हाई पावर कमेटी बनाई है। ये कमेटी पैलेट गन, इलेक्ट्रिक शॉक बैटन के इस्तेमाल से लेकर महिलाओं से अभद्रता और पुलिस वालों पर हमले के तथ्यों की जांच करेगी। इसके लिए कमेटी धरना के दिन के सारे ड्रोन, CCTV, बॉडी कैम रिकॉर्डिंग के सबूतों की भी मदद लेगी और दोनों पक्षों के घायलों को अंतरिम मुआवजा देने पर भी रिपोर्ट देगी। बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं?
3: उनका मकसद किसी को न्याय दिलाना या जांच करवाना नहीं है, बल्कि सिर्फ हंगामा खड़ा करके कानून व्यवस्था को चुनौती देना है।
4: हमारी आशंका है और आरोप दोनों है कि वंदे मातरम पर जो कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया उसमें कांग्रेस पार्टी फंस गई है।
0: दरअसल 20 जुलाई को चली पैलेट गन को लेकर पहले तो दिल्ली पुलिस और सरकार ने इनकार किया, फिर GT एंट्री में 2 राउंड पैलेट फायरिंग की पुष्टि हुई और मरीजों के मेडिकल रिपोर्ट में भी पता चला। RTI में खुलासा हुआ कि लेडी हार्डिंग अस्पताल में पैलेट गन जैसी चोट से जख्मी 9 घायल पहुंचे थे। इसी तरह सफदरजंग के दस्तावेज में पता चला कि एक मरीज पैलेट गन से जख्मी आया था। पैलेट के पीड़ित साहिल लोचाप को राहुल ने पहले भी मीडिया के सामने पेश किया था और उनके शरीर पर सैकड़ों पैलेट के निशान दिखाए थे, जिसके बाद बाकी पैलेट पीड़ित प्रशांत और इरशाद नाम के 2 छात्रों की ओर से पूर्व IPS ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। हालांकि प्रदर्शन के दौरान प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी आसान नहीं, लेकिन कानून के जानकार बताते हैं कि पीड़ित छात्र संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट या अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर मुआवजे और दोषी पुलिस कर्मियों पर मुकदमे की मांग भी कर सकते हैं। इसके अलावा पैलेट पीड़ित मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी मुकदमा कर सकते हैं, मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत कर सकते हैं। हालांकि BNSS की धारा 218 के तहत पुलिस कर्मियों पर मुकदमे के लिए मंजूरी की जरूरत है, लेकिन 120 दिन की देरी के बाद मंजूरी दी हुई मानी जाती है। उधर दिल्ली में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद से अब CJP का अगला मुहिम स्कूलों के सुधार को लेकर चल रहा है। CJP के नेता BJP शासित राज्यों में स्कूल देखने निकल पड़ रहे हैं। इसी दौरान जयपुर के पास आशुतोष रांका की भीड़ ने पिटाई कर दी। आशुतोष के साथ स्कूल जांच करने गई टीम की महिला सदस्यों पर भी धूल मिट्टी फेंकी गई।
5: राजस्थान पुलिस का एक पुलिसकर्मी उस समय वहां मौजूद नहीं था। पत्थर मारे गए हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, उन्हें पुरुषों ने पीटा है, भाजपा के गुंडों ने पीटा है, फोन तोड़े गए हैं। रेखा शर्मा जी के हमारे एक वॉलंटियर का हाथ टूट गया, उसके फ्रैक्चर हो गए, उसको अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। पुलिस पूरी तरह गायब थी। आज राजस्थान के लोकतंत्र में काला दिन है।
0: CJP का आरोप है कि बदहाल शिक्षा व्यवस्था की पोल खुलने पर BJP हमले करा रही है। BJP का कहना है कि CJP विपक्षी दलों के झंडे पर सिर्फ अराजकता की राजनीति कर रही है। आज तक ब्यूरो।
6: तो कुल मिलाकर आज की स्थिति में हम देख सकते हैं कि राहुल गांधी वहां पर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ जयपुर में सीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जाता है तो उन पर हमला हो जाता है, और उनका आरोप है कि वो बीजेपी के नेता, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता उन पर हमला कर रहे हैं। धरने की राजनीति अभी भी चल रही है। बीजेपी का कहना है कि यह ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। इस पर चर्चा होगी क्योंकि यह मुद्दा जिंदा है। हमारे साथ शिवम त्यागी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। गुरदीप सप्पल कांग्रेस पार्टी की तरफ से चर्चा में शामिल हो रहे हैं। केजी त्यागी पूर्व एसीपी है दिल्ली पुलिस के, वो भी चर्चा में आएंगे, और थोड़ी देर में आशुतोष रांका भी इसमें आएंगे, इस चर्चा में शामिल होंगे। सत्यप्रकाश मिश्रा हमारे राजनीतिक विश्लेषक भी इस चर्चा में शामिल होंगे। तीन सवाल इस पैनल के सामने। क्या पहला सवाल, क्या पैलेट गन पीड़ित की FIR दर्ज नहीं करने के पीछे क्या सियासत है? क्योंकि 14 अगस्त को पहली बार इस पूरे मामले की शिकायत लेकर पैलेट गन पीड़ित साहिल पुलिस स्टेशन गए थे, लेकिन उनकी FIR दर्ज नहीं की गई है, तो इसके पीछे क्या सियासत है? दूसरा सवाल, जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि क्या वंदे मातरम पर घिरने के बाद कांग्रेस पैलेट गन का मुद्दा उछाल रही है? तीसरा सवाल, क्या नौजवानों के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष मौका परस्ती की राजनीति कर रहा है? तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले खबर आ रही है, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमिटी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बार बार बीजेपी ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी, जुडिशियल कमिटी बनाई थी और उसके जरिए जांच की जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी FIR की मांग क्यों कर रही है? लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के उस जुडिशियल कमिटी पर ही सवाल है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, सांसद राज्यसभा के, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यों की जो हाई पावर कमिटी बनाई है उसे लेकर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस को गुजरात हाईकोर्ट का जस्टिस करार देकर सवाल उठाया है, तो दूसरे जस्टिस को लेकर यह कहा है कि उन्होंने उमर खलीद को जमानत नहीं दी थी और इसीलिए उनसे कोई उम्मीद, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कमेटी को बेअसर करने की कोशिश की गई है। यह भी आरोप इस पूरे मामले पर उनके तरफ से लगाया गया है। 5 सदस्यों की हाई पावर कमेटी पर कांग्रेस पार्टी का यह कहना है। जो ट्वीट उन्होंने किया हुआ है उसमें वो लिखते हैं कि इवन द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड इंक्वायरी कमिटी रेजेस सीरियस क्वेश्चंस। पवन खेड़ा लिख रहे हैं, इट इज हेडेड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हु सर्व्ड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कैसे इस कमिटी में डाल दिया गया, अलोंग साइड अनदर जज हु डिनाइड बेल टू उमर खालिद। मौसमी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। मौसमी, अब कांग्रेस पार्टी उस जुडिशियल कमिटी पर भी सवाल खड़े कर रही है और शायद इसीलिए FIR की मांग भी। मौसमी, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है, कांग्रेस पार्टी ने अब जुडिशियल कमिटी पर सवाल खड़े किए हैं।
7: जी साहिल, मुझे आपकी आवाज़ मिल रही है। दरअसल ये अब बात जो है पूरी कार्रवाई को लेकर है कि सरकार की जो कथनी है और करनी है उसमें फ़र्क है, और चाहे वो जुडिशियल कमेटी हो या दिल्ली पुलिस की कार्रवाई हो या कुल मिला के सरकार इस पूरे लाठीचार्ज में जो पक्ष रख रही है वो एक तरीके से छात्रों के हितों को ना देखते हुए अपने हितों को देख रही है। और इसीलिए आप देखिए कि बेहद दिलचस्प है कि राहुल गांधी यहाँ पे कोई प्लानिंग से नहीं आते हैं। उनको जब पता चलता है कि साहिल की FIR लॉन्च नहीं हुई है, वो अकेले उनके साथ चले आते हैं और धीरे धीरे यहाँ मजमा इकट्ठा होता है। तो इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस एक तरीके से ये बताने की कोशिश कर रही है कि सरकार की मंशा ही नहीं है जो 20 जुलाई को लाठीचार्ज हुआ उसमें छात्रों को कोई इंसाफ मिले।
6: एक जल्दी से अपडेट उस बारे में भी चाहिए, क्योंकि तस्वीरों में दिख रहा है कि एक लंबा जाम वहां पर लगा हुआ है, रैपिड एक्शन फोर्स भी वहां पर तैनात की गई थी। तो क्या कांग्रेस पार्टी यह आंदोलन और भी बड़ा करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अभी भी FIR दर्ज नहीं हुआ है? दिल्ली पुलिस के सूत्र सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उनकी शिकायत ले ली गई है, तो आगे जाकर इस पे क्या होगा, क्या कांग्रेस पार्टी यह आंदोलन और भी बड़ा करेगी?
7: साहिल, मेरा अंदेशा ये है कि कुछ बातचीत तो हो रही है, और राहुल गांधी अभी कुछ देर पहले भीतर गए थे, आला अधिकारी जो DCP हैं और JCP हैं उनसे मिले हैं, तो मुझे लगता है कि शायद बात आगे बन सकती है, क्योंकि अगर बात बिगड़ रही थी होती तो राहुल गांधी को यहां से हटा दिया गया होता। PM आवास में पुलिस ने इतना टाइम नहीं लगाया था, एक ही घंटे के भीतर भीतर एक डेढ़ घंटे में राहुल गांधी को बस में भर के भेज दिया था, और यहाँ पे बाकायदा राहुल गांधी को कुर्सियाँ दिलाई गई हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ जीरो एफआईआर या अननोन जो है एफआईआर हो। हालांकि ये अभी बात ऑफिशियली औपचारिक रूप से सामने नहीं आई है, पर मैं एक पॉलिटिकल रीडिंग कह रही हूँ जिस तरीके से हालात मुझे नजर आ रहे हैं।
6: चलिए देखते हैं कि कब तक राहुल गांधी वहां पर बैठेंगे, फिलहाल तो धरना प्रदर्शन चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी, आप हमारे साथ जुड़ी इसके लिए। शुरुआत करते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में है गुरदीप सप्पल, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरदीप, सबसे पहले तो सवाल यही पूछना है कि आखिरकार ये अब जुडिशियल कमिटी जो बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं।
8: देखिए, इस पे सवाल पे बाद में आऊंगा मैं, पहले जो आपने तीन सवाल पूछे उसका जवाब ले लीजिए। राहुल गांधी आज क्यों गए थाने? क्योंकि साहिल, जिनको पैलेट गन से चोटें लगी, उनकी आंख चली गई, वो दर दर धक्के खा रहे थे पिछले कई दिन से कि उनकी एफआईआर रजिस्टर हो जाए, और कोई उन पे ध्यान नहीं दे रहा था, उनकी एप्लीकेशन ले नहीं रहा था, इसलिए राहुल गांधी गए। आज बीजेपी बोल रही है कि कांग्रेस की अराजकता है। आप मुझे बताइए कि अराजकता क्या होती है? अराजकता होती है कि आप देश के कानून को नहीं माने। देश के कानून के तहत यह राइट है, यह अधिकार है कि अगर कोई विक्टिम है उसकी एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। बीजेपी के नेता, खुद मोदी, खुद अमित शाह सब जगह कहते आए हमने जीरो एफआईआर की व्यवस्था कर दी, देश में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति एफआईआर ऑनलाइन कर सकता है, और यहां एक व्यक्ति की आंख चली गई, उसके शरीर छलनी हुआ पड़ा है, उसको एफआईआर आप करने नहीं देंगे। और ये जो बात बोली कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी तो कल आई, ये तो पिछले कई दिनों से धक्के खा रहे हैं, कई हफ्तों से धक्के खा रहे हैं, तब क्यों नहीं किया? आज कमेटी का आप बहाना लेंगे? तीसरी बात, कमेटी ने तो कल अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि दिल्ली पुलिस स्वतंत्र है अपनी जांच को जारी रखने के लिए और अपनी कार्रवाई को जारी रखने के लिए, कमेटी ने वो रोकी नहीं है, तो फिर दिल्ली पुलिस ये क्यों नहीं ले रही है आज, ये मुझे बताइए। और एफआईआर तो बहुत दूर की बात है, मैं आज वहां था, दिल्ली पुलिस से केवल इतनी भी बात हुई कि आप डीडीआर नंबर, जो डेली डायरी रिपोर्ट होती है जिसको बोलते हैं ठप्पा आम आदमी की भाषा में, कि आप उसकी एप्लीकेशन लेकर ठप्पा लगा के दे दो, वो भी मना कर दिया। अब बताइए कि क्या किसी व्यक्ति का आज इस देश में यह भी अधिकार नहीं रहा कि वो दिल्ली, वो भी मना कर दिया। क्यों मना किया भाई? दिल्ली पुलिस को अगर कमेटी की भाना था तो आप उसकी एप्लीकेशन लेते, एफआईआर करते और सुप्रीम कोर्ट वाली में मिला देते, इसको कौन रोक रहा है? लेकिन समस्या क्या है कि ये जो लड़का साहिल है, ये 13 तारीख तक शांत बैठा रहा कि संसद में इस बारे में कोई जवाबदेही तय होगी। जब वो नहीं हुई तो 14 तारीख से वो थक हार कर पुलिस में एफआईआर कर ले गया, और आज राहुल गांधी के पूरा दिन बैठने के बावजूद उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है देश के अंदर, तो आप इसको किसी तरह से जायज नहीं ठहरा सकते हैं। जेपी नड्डा जी कह रहे हैं राहुल गांधी जवाब दें, भाई राहुल गांधी क्या जवाब देंगे? राहुल गांधी तो यही पूछने गए हैं कि आप इसकी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं। सरकार में राहुल गांधी नहीं है, सरकार में जेपी नड्डा की पार्टी है, उनको बताना है कि क्या
6: वो तो जवाब इस बात पर मांगने की कोशिश कर रहे हैं,
8: करने का अधिकार रहा कि नहीं रहा।
6: हालांकि वो जवाब तो इस बात पर मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वंदे मातरम को लेकर जो हुआ ना कल सीडब्ल्यूसी के भीतर, और उसके बाद जो बीजेपी आपको टारगेट कर रही है, तो उससे डिफ्लेक्ट करने के लिए कहीं कोशिश तो नहीं कर रही है? मुद्दा हमारी चर्चा में आएगा बाद में, लेकिन अब मेरे जरा ओरिजिनल सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि अभी अभी खबर आई थी पवन खेड़ा
8: एक लाइन दे दीजिए, हम मुद्दा डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं
6: जी, मैं आता हूं ना उस
8: पर। हम नहीं फंसे, बीजेपी फंसी है वंदे मातरम के इशू पे, उनको उम्मीद ही नहीं थी कि कांग्रेस क्लियर कट स्टैंड लेगी, बीजेपी फंसी है इस मुद्दे पे, वो बचना चाह रहे हैं, वरना वो सीधे सीधे एफआईआर ले लेते, मुद्दा ही ना खड़ा होता। बीजेपी बचना चाह रही है एफआईआर पे, क्योंकि उनके जो
6: सीधा चैलेंज है आपका कि अगर बीजेपी को लगता है कि गलत आप कर रहे हैं तो सीधा एफआईआर दर्ज कर लेना चाहिए कुल मिलाकर वंदे मातरम के मुद्दे पर। लेकिन आप जरा इस मुद्दे पर भी बता दीजिएगा, ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड इंक्वायरी कमिटी रेजेस सीरियस क्वेश्चंस, इट इज हेडेड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हु सर्व्ड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाईकोर्ट। तो कोई गुजरात हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस है इसीलिए उस कमिटी पर आया है, और इसी के वजह से आपको लगता है कि यह कमिटी अनबायस नहीं होगी और जांच ठीक से नहीं होगी, यही आपका कहना है राइट? अगर मैं सही तरीके से उसको समझ रहा हूं तो
8: देखिए, बहुत पुरानी कहावत है कि न्याय होना जरूरी नहीं, न्याय होते हुए सही से दिखना भी जरूरी है। अब इस सरकार को सुप्रीम कोर्ट के जज हो या कहीं के कॉन्ट्रेक्टर हो, कहीं ठेका उठाना हो, कोई बिजनेस देना हो, सब गुजराती ही क्यों मिलते हैं? पूरे देश में कोई और है नहीं क्या? और दूसरी बात, वही जज क्यों मिले जो उमर खालिद के केस में, जिनका रिकॉर्ड पूरे देश के सामने है? इनकी पर्टिकुलर क्राइटेरिया क्यों है भाई? ये तो जवाब ये लोग देंगे ना, क्या पूरे देश में और कहीं के जज नहीं थे? क्यों नहीं ये इस बात को दिखाना चाहते कि हम जो है न्याय कर रहे हैं? न्याय करना और न्याय को कंट्रोल करने की कोशिश करना, ये दो अलग अलग बातें हैं साहिल जी।
6: ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है गुरदीप जी की, पहली बार मैं ये सुन रहा हूं कि किसी राज्य का अगर चीफ जस्टिस रहा है कोई, तो उसके आधार पर यह तय होगा कि वो अनबायस्ड होगा कि नहीं होगा, वो कानूनी तरीके से इस पूरे मामले की जांच करेगा या नहीं करेगा। यानी कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो कमेटी बनाई है उस पर आपको भरोसा नहीं है, यही हम मानकर चले, क्योंकि उनकी उनकी निगरानी में यह कमेटी बनाई गई है, उनके एक्सेप्टेंस से यह कमेटी बनाई गई है।
8: हमारा स्पष्ट कहना है न्याय होते हुए दिखना भी जरूरी है, अगर वो नहीं दिख रहा है तो फिर सवाल उठेंगे, और सवालों से बचने की जिम्मेदारी मोदी सरकार की है, हमारी नहीं है। हमारा स्पष्ट कहना है
6: मान भी लेते
8: कि न्याय होना चाहिए। अभी तक एक महीना एक दिन हो गया, देश को यह नहीं मालूम कि पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया था। ना ही अमित शाह ने कोई इंक्वायरी ऑर्डर की, ना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर की, ना देश को बताया। और अगर आप ये कहेंगे कि वो संसद में बोलना चाहते थे, तो अगर चाहते तो लिखित बयान भी दे सकते थे संसद में, लिखित बयान तक नहीं दे पाए वो, क्योंकि वो देना नहीं चाहते।
6: ठीक है शिवम त्यागी, कुल मिलाकर अगर हम मान भी ले जो आरोप आपके तरफ से लगाया जा रहा है कि भाई वो डिफ्लेक्ट करने के लिए, कोई पॉलिटिकल गेन के लिए राहुल गांधी वहां पर जाकर बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, ये चीजें हम मान भी ले, आरोप है, पॉलिटिकल आरोप तो होते रहते हैं, ये मान भी ले एक बार हम लोग, लेकिन फिर भी क्या इस बात से डिनाई किया जा सकता है कि साहिल लोचा पर पैलेट गन से फायरिंग की गई थी, जो लेडी हार्डिंग्स अस्पताल की जो रिपोर्ट लेकर वो वहां पर खड़े हैं, जो छर्रे उन्होंने वो डिब्बी में दिखाए हुए हैं, जो आंख उनकी वहां पर गई है, वो सारी चीजें देखते हुए क्या हम इस बात को कम से कम डिनाई नहीं करें कि पैलेट गन उस दिन चलाई गई थी कि नहीं चलाई गई थी? क्या इस पर कोई क्लैरिटी आप दे पाएंगे?
9: साहिल जी, डिबेट के जस्ट शुरू होने से पहले आपने कहा कि एक रिपोर्ट आ रही है जिसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमिटी बनाई है, उस कमिटी में एक जज जो है वो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हैं, और एक जज वो हैं जिन्होंने उमर खालिद की बेल रिजेक्ट की, इसलिए कांग्रेस इसको नहीं मानती। इस लोकतांत्रिक देश में गुजराती होना शर्म की बात है क्या? गुजराती हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस होना शर्म की बात है क्या? गुजरात देश का हिस्सा नहीं है क्या? और अगर किसी जज ने उमर खालिद की बेल रिजेक्ट करी है तो इसकी बात है, कांग्रेस वाले नहीं मानते। प्लीज बीच में नहीं, निवेदन है मेरा, बीच में नहीं। आप मुझे एक चीज बताइए, अब उमर खालिद को बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये राहुल गांधी तय करेंगे या कांग्रेस तय करेगी या गुरदीप सप्पल तय करेंगे या पवन खेड़ा तय करेंगे या कोई भी हाईकोर्ट या कोई सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज, उनको कैसे कार्रवाई करनी है वो ये बात कांग्रेस वाले तय करेंगे क्या? ये कह रहे हैं कि ये शक की बात है कि गुजरात के जो है एक्स चीफ जस्टिस हैं, ये शक की बात है। अरे शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है, अब पूरे गुजराती समाज पर, पूरे गुजरात पर शक करने लगे, कह रहे शक की बात है। क्या करें भाई, आपको शक है तो मतलब गुजरात के चीफ जस्टिस कहीं किसी कमेटी का हिस्सा नहीं हो सकते? उमर खालिद ने की जिस जज ने जो है बेल रिजेक्ट करी वो किसी कमेटी का हिस्सा नहीं हो सकते? कुछ तो तर्क लगाया करो भाई, कुछ तो ज्ञान होना चाहिए। अब आगे आता है, राहुल गांधी जो कर रहे हैं ये कोई पॉलिटिकल चार्ज नहीं है कि वो वंदे मातरम में फंस गए हैं इस वजह से ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा, नौटंकी, फालतू की हवाबाजी एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन को शोभा नहीं देती। मैं साबित करता हूं क्यों। अब आप मुझे एक चीज बताइए, जस्टिस सुभाष रेड्डी जी की अध्यक्षता में जस्टिस शैलेंद्र कौर, ऋषि कुमार, एल आर बिश्नोई जी और 5 सदस्य कमेटी बनी। इस 5 सदस्य कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया और उन्होंने कहा कि ये एचपीईसी खास तौर पर जो पुलिस की जो ब्रुटैलिटी बताई गई उस पर, वहां पर जो लोग इकट्ठे हुए थे उनका क्या रवैया रहा उस पर, तथा सारी चीजों पर जांच करके निष्पक्ष पूरे तरीके से देश के सामने रिपोर्ट देगी। अब अगर मान लेते हैं, चलिए जो बात है, कह रहे हैं कि साहिल की कहीं एफआईआर नहीं ली गई, जो साहिल जिसकी आंख पर पैलेट गन लगी उसको कहीं देखा नहीं गया, किसी ने पूछा नहीं, आपको यह करने की जरूरत नहीं थी भाई। गुरदीप जी मुझे लगता है मेरे से 20-30 साल बड़े ही होंगे, एक छोटा सा प्रोसीजर करना था। जो कमिटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है उसी कमिटी से संबंधित एक AOR को हायर करते, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को रिक्वेस्ट करते और वो इस बात को कह सकते थे कोर्ट में जाकर कि भैया ये मेरी इंटरवेंशन एप्लीकेशन है या फिर ये मेरी इंप्लीमेंट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ले लीजिए, ये वाला जो साक्ष्य है या ये वाला जो व्यक्ति है ये जांच से छूट रहा है, हो गया था विषय खत्म। लेकिन आपको ड्रामा करना है, आपको वंदे मातरम पर जवाब नहीं देना, आपको वंदे मातरम के विषय में क्लैरिटी नहीं करनी, आप देश के सामने एक्सपोज हो रहे हो, तो इस तरह का ड्रामा कर रहे हो। मैं एक चीज कहना चाहता हूं छात्रों, जी
6: जी नहीं, गुरदीप सप्पल इसका जवाब देंगे, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल इसके बीच में है। मैं जरा तारीख पर हम जाएंगे, क्रोनोलॉजी ज्यादा बेटर चीजें पर्सपेक्टिव में लोगों के सामने रखती है। आज 22 तारीख है, आज 22 अगस्त है, बिल्कुल एक महीना हुआ है जब 22 जुलाई को रैपिड एक्शन फोर्स ने, आज 21 तारीख है, 21 अगस्त है, एक महीना हो गया है, 22 जुलाई को रैपिड एक्शन फोर्स ने जनरल डायरी में एंट्री की थी पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के भीतर, जहां पर ये एफआईआर दर्ज करने के लिए आज गए हुए हैं, और उस एंट्री में ये लिखा गया था, एंट्री रिकॉर्ड्स, 2 rounds कंटेनिंग प्लास्टिक पैलेट फायर्ड फ्रॉम एंटी रायट गन, क्रूशियली इट सेज दैट फायरिंग वॉज ऑन द ऑर्डर ऑफ जोन 1 डीसीपी जंतर मंतर। एक महीना हो गया है उसको, 20 तारीख को ये फायरिंग होती है, 14 अगस्त को वो साहिल लोचन वहां पर जाते हैं, लोचाव वहां पर जाते हैं और कहते हैं कि हमें एफआईआर दर्ज करना है, शिकायत भी उसकी नहीं ली जाती। 20 तारीख को यानी 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि हम ये इस तरीके से कमिटी बना रहे हैं। एक महीने के भीतर क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए थी? सरकार को इस बारे में कहना चाहिए था कि पायलट गन फायरिंग हुई है कि नहीं हुई है। अगर पायलट गन की फायरिंग हुई है तो उस बात को लेकर सरकार की तरफ से कुछ अधिकृत तौर पर बयान आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू कहते हैं कि कोई इस तरीके की फायरिंग नहीं हुई है, और इसीलिए यह सवाल बार बार उठता है कि एफआईआर लेने में हर्ज क्या है, दिक्कत क्या है? यह मौका दे रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी को, अगर यह किसी ने आरोप लगाया तो क्या गलत
9: हो? मैं नहीं, बिल्कुल मौका नहीं दे रहे। मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, अंततो गत्वा आप सुप्रीम कोर्ट को तो मानते ही होंगे, किसी भी व्यक्ति का एक लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में इतना तो विश्वास होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो करेगा वो अच्छा और उचित ही करेगा, और बिल्कुल हमें कोई परेशानी नहीं है। मैं इस पर पॉलिटिकल चार्ज नहीं खेलना चाहता, वरना पॉलिटिकल चार्ज में तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो 22 परीक्षाएं झारखंड में रद्द हुई और 100 नामजद और 500 बिना नामजद के एफआईआर दर्ज हुई, वो अभी तक वापस नहीं हुई। क्या राहुल गांधी के मुंह में दही जमी है, वो उस पर कोई सवाल जवाब करेंगे? क्या कोई एक ट्वीट मुझे दिखा दो जहां यह कहा गया हो कि 600 एफआईआर वापस करो? और 10 सेकंड मैं लूंगा आपसे और यह बताना चाहूंगा, ये एक बेटी है हमारी जो
10: प्राइवेट पार्ट पे मार रही है, मेरे प्राइवेट पार्ट पे मारा गया है, हम रात भर सो नहीं पाए, इतना ज्यादा दर्द हो रहा था।
9: मैं आगे नहीं चलाना चाहता, एक बच्ची है कि मुझे मारा गया, पीटा गया, पुलिस ने घेर कर मेरे प्राइवेट पार्ट पर मारा, ये झारखंड का वीडियो है, इसके लिए कोई बात करेगा क्या? राहुल गांधी जी, जहां पर ऑलरेडी जांच हो चुकी, जांच चल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर चुका है, एक कमेटी बन चुकी है, वहां पर एक आदमी को लेकर बैठ गए और कह रहे हैं कि नहीं नहीं इसकी तो एफआईआर नहीं ली जा रही। दूसरी तरफ झारखंड में 600 एफआईआर जो अभी तक विड्रॉल नहीं हुई, जिनका कोई भरोसा नहीं आया, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पर मारा गया, पीटा गया। मैं तो सीजेपी और कांग्रेस दोनों से कहना चाहता हूं, आंखें बंद हो गई है क्या?
6: सही है,
9: हिंदुस्तान में ही है,
6: जहां जहां पर छात्रों पर इस तरीके से लाठीचार्ज किया गया होगा, लड़कियों पर इस तरीके से लाठीचार्ज किया गया होगा, वहां पर विपक्षी पार्टियां जाएं, पुलिस स्टेशन में बैठे और कहे कि इन पर एफआईआर दर्ज करिए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक और एक रांची की महिला है जिसका मेरे पास एक उदाहरण यहां पर नजर आ रहा है, नूतन 32 साल की यह महिला है, रांची से काम करने के लिए आई थी, प्राइवेट फर्म में गुरुग्राम में काम करती है, उन्होंने बताया था कि गनशॉट फायरिंग हुआ है, उसके वजह से इंजुरी हुई थी उनके कान में, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 20 जुलाई को ट्रॉमा टू राइट ईयर बाय गनशॉट, यह उनके रिपोर्ट पे यहां पर कहा गया है। हम वॉट अबाउटरी नहीं करेंगे इसमें, जो फिलहाल बातचीत चल रही है शिवम, अगर उस पर हम बात करें, उस पर अगर सफाई दे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या आपको नहीं लगता कम से कम इस बारे में सरकार को सामने आकर यह कहना चाहिए था कि गनशॉट फायरिंग हुई है कि नहीं हुई है? क्या सरकार को आके यह कहना चाहिए था कि पैलेट गन की फायरिंग हुई है कि नहीं हुई है? इसका जवाब अगर मिल जाता तो विपक्ष को मौका नहीं मिलता, सिंपल बात है। चलिए, और एक बड़ी खबर आ रही है कि पैलेट गन मामले में पुलिस दर्ज कर रही है एफआईआर, हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, जब एफआईआर दर्ज करेंगे उसका डिटेल्स सामने आएंगे, उसके बाद हम इसके बारे में कहेंगे, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है ये कहा गया है। दिन भर वहां पर धरना प्रदर्शन के बाद ये खबर आ रही है। शिवम जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद हमारे साथ बालियान जुड़ चुके हैं कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से, उनके प्रवक्ता, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन शिवम जल्दी से जो मैंने कहा और उसके बाद अभी दिल्ली पुलिस आखिरकार एफआईआर दर्ज कर रही है उस पर भी आपकी
9: प्रतिक्रिया। व्हाट अबाउट्री कहां से शुरू होती है, शब्दों को ही आपके जो है आधार बनाकर बता देता हूं। दिल्ली में विषय उठ रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और जब मैंने झारखंड की बात उठाई तो आपने कहा कि जहां जहां भी छात्रों पर यह हुआ है बात उठ, जहां जहां नहीं, झारखंड कम बात तो झारखंड। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, यहां पर तो इन्वेस्टिगेशन है, झारखंड में तो कुछ भी नहीं है। वो 600 FIR एज इट इज है। वो जो बच्ची जिसके प्राइवेट पार्ट पर मारा गया, मैं उसका वीडियो सुना रहा हूं, एज इट इज है। सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही। और कमाल की बात यह है कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई बात करने को तैयार नहीं। लेकिन अंततः वंदे मातरम से इतना मत भागो भाई, इतना मत डरो, इतना क्यों डर रहे हो? ऐसा क्या दिक्कत है, ऐसा क्या है वंदे मातरम में जो आप उस पर बात करने में इतना अनकंफर्टेबल है? और एक राज्य को छोड़कर एक राज्य में बैठे हुए हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट की जांच चल रही है, और क्योंकि आपको वंदे मातरम से बचना है, नहीं बच पाओगे। अरे वंदे मातरम से अंग्रेज नहीं बचे भैया, आप कैसे बचोगे? तो सीधा सिर्फ इतना सा है, व्हाट अबाउटरी मत करिए कांग्रेस वालों, इधर उधर मत भागो। सीधा जवाब है, अगर इस तरह की चीजें हो रही है,
6: रिवर्स व्हाट अबाउटरी है,
9: इसका आधार बनाकर वंदे मातरम से भाग नहीं सकते।
6: एक मिनट, जरा ये खबर आई है उस पर जरा हमारे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो दिल्ली पुलिस FIR दर्ज कर रही है, जो जानकारी दी है हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, ये FIR आखिरकार दर्ज कर रही है, पहले दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे थे कि शिकायत ले ली गई है, उसके बाद दिल्ली पुलिस के सूत्र ये बता रहे थे कि FIR जो पहले से दर्ज है 20 तारीख को, उसी में ये सारी चीजें हैं। अब ये अलग से FIR आखिरकार दिल्ली पुलिस दर्ज कर रही है, क्या है इस FIR में, क्या होगा? हिमांशु, अगर मेरी आवाज आ रही है,
11: देखिए ये FIR जो दर्ज की जा रही है, जो साहिल लोचप जो सुबह से ही यहाँ पर मौजूद था, राहुल गांधी लेकर के आए थे, और उसकी जी बिल्कुल साहिल, मुझे आपकी आवाज आ रही है, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? साहिल, क्या आप
6: जी,
11: तक आवाज पहुंच रही है? हेलो हेलो
6: जी बोलिए आवाज आ रही है आपकी।
11: तो जो साहिल लोचप की तरफ से जो शिकायत दी गई थी, जो सुबह से ही राहुल गांधी के साथ यहाँ प्रोटेस्ट पे भी मौजूद है, उसी कंप्लेन पर जो साहिल लोचप की तरफ से दी गई है, दिल्ली पुलिस FIR दर्ज कर रही है। अभी भी प्रियंका गांधी और रणदीप सुरजेवाला अंदर DCP ऑफिस में DCP के साथ बैठे हैं, जहां पर ये जो कंप्लेन थी उसके ऊपर डिस्कस हुआ, FIR दर्ज हो रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि इस FIR में किसी का नाम नहीं होगा, जो आरोपी का कॉलम होगा वो खाली होगा, अज्ञात के खिलाफ, अननोन के खिलाफ ये FIR दर्ज हो रही है। और सुबह ये कहा गया था, जब पहली बार जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे थे, कि क्राइम ब्रांच के पास पूरी जांच दे दी गई है, जो भी शिकायती थी। जी साहिब,
6: ठीक है तो कुल मिलाकर FIR दर्ज हो रही है अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ दरअसल ये FIR दर्ज होगी। गुरदीप सप्पल, क्या हासिल करेंगे FIR फाइल करवा के? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जुडिशियल कमिटी से जो भी निकलेगा उससे तो आप संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि पहले ही उस पर सवाल उठे हुए हैं। अब FIR आखिरकार दर्ज तो हो रही है, कब ये कहा जा रहा है? अभी हालांकि अभी तक हुई नहीं है, लेकिन हमारी जानकारी है वो ये कह रही है कि FIR दर्ज हो रही है।
8: साहिल जी, पहले तो कमेटी पे हमने ऐसा कोई नहीं बोला जो आपने बोला, जजेस के इंटीग्रिटी के ऊपर बोला। बीजेपी की तरफ से उनको बहुत होली का मत मानिए, पिछले कुछ सालों में हमने देखा बहुत सारे जजेस के बारे में बीजेपी ने ऑब्जेक्शन किया, एलिवेशन को लेके या कमेटीज को लेके। जस्टिस जोसेफ है, जस्टिस अखिल कुरेशी है, जस्टिस सौरभ वाजपेयी कृपाल है, जस्टिस जॉन है, जस्टिस पीपी राव है, सबके ऊपर
6: बीजेपी ने नहीं बोला है। गुरदीप जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैं पवन खेड़ा की ट्वीट की लाइन है, दिस कमिटी लुक्स डिजाइन टू बी टूथलेस। This committee design looks designed to be toothless.
8: Toothless होना,
6: कोई दांत नहीं होंगे इस कमिटी को।
8: यही मैंने भी बोला, मैंने भी यही बोला कि आपने चुनकर ऐसे जजेस रखे हैं जिससे जिनका काम हो सकता है कि कमेटी की तरफ से न्याय ना मिले। दूसरी बात आप आइए, जो आप बोल रहे हैं कि क्या मिला FIR करके, राहुल गांधी साहिल लोचप के साथ इसीलिए गए क्योंकि उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, जो उसका अधिकार है। इस देश में किसी विक्टिम का इतना भी अधिकार प्रोटेक्ट ना हो और उसके लिए देश के नेता विपक्ष को पूरा दिन धरने में बैठना पड़े, ये शर्मनाक बात है। ये एफआईआर के बाद विधिवत रूप से जांच होनी है, होगी। और तीसरी बात, बहुत देर से मैं सुन रहा हूं और आपने भी कहा कि कांग्रेस फंस गई वंदे मातरम में। कांग्रेस कहां फंसी? कांग्रेस ने तो कहा कि हम तो वही करेंगे जो 37 में इस देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, महात्मा गांधी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, नेहरू थे, पटेल थे, आजाद थे, उन्होंने जो फैसला लिया हम उस पर करेंगे। सवाल बीजेपी के फंसने का है। कल अमित शाह ने बोला कि बंटवारा कर दिया वंदे मातरम ने। बंटवारा इसलिए नहीं हुआ भाई साहब, बंटवारा इसलिए हुआ कि जब मुस्लिम लीग को हमने हरा दिया था 37 में कांग्रेस पार्टी ने, उसके साथ अमित शाह जी की जो पार्टी के लोग हैं जो उस समय थे सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बनाकर उसको जिंदा किया। उनकी सिंध की सरकार में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित हुआ और उस प्रस्ताव के बाद सावरकर रिकॉर्ड बोलते हैं कि मेरे और जिन्ना के विचार एक जैसे हैं।
6: हम दोनों आशुतोष रांका हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा दो सवाल मुझे उनसे पूछने।
8: बात पूरी नहीं करने देते आप, बात पूरी करने दीजिए।
6: नहीं,
8: सवाल यह है कि इनकी गद्दारी आजादी के आंदोलन में देश के सामने आ रही है, फंसे ये हुए हैं। ये कब थे वंदे मातरम के? वो तो कांग्रेस का गाना, कांग्रेस का गीत, कांग्रेस के लोग जेल जाते हुए गाते थे।
6: इसका जवाब शिवम त्यागी से लेंगे।
8: 96 से गा रहे हैं अब, आज उठ गए।
6: लेकिन इससे पहले ठीक है
8: आज आप जागे,
6: ठीक है
8: मातरम,
6: ठीक है। आशुतोष रंका हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आपके साथ क्या हो गया जयपुर के भीतर? क्योंकि जो जंतर मंतर की आग है वो अभी भी चल रही है और जयपुर में भी दिखाई दिया, और आज राहुल गांधी वहां पर धरने पर बैठे हुए, अभी वहां पर एफआईआर दर्ज हो रही है जो 20 तारीख को वहां पर पायलट गन चलाई गई थी।
12: देखिए साहिल जी, आज जयपुर की जो घटना हुई है, और हम लोग अगेन नरेटिव्स पे बात नहीं करते, हम फैक्ट्स पे बात करते हैं, जो एक्चुअल वीडियोस हैं हम सिर्फ उन्हीं पे बात करना पसंद करते हैं, बाकी जिसको जो बोलना है वो बोल सकते हैं। नरेटिव तो पिछले 12 साल से इस देश में फैल ही रहे, सारे वीडियोस ऑन रिकॉर्ड हैं, सारे वीडियोस मेरे ट्विटर हैंडल पे हमने डाले हुए हैं, कौन लोग थे जिन्होंने मारपीट की, उनके वीडियोस, उनके फोटोज, उनका भाजपा से क्या लिंक है, वो सब कुछ मैंने अपने ट्विटर हैंडल से अभी रिलीज किया है। बहुत कोऑर्डिनेटेड अटैक था, बहुत प्लान्ड अटैक था। वहां पर मेरे पहुंचने से पहले हमारे कुछ टीम के साथ ही पहुंचे हुए थे, उनके साथ ऑलरेडी ये धक्का मुक्की मारपीट हुई थी, हमने पुलिस को इस बारे में इत्तला भी दी थी, इन्फॉर्म भी किया था कि इस तरह का वहां पे कुछ प्लान किया जा रहा है। उसके बावजूद हमारे जाने के बाद पूरी नेशनल मीडिया की मौजूदगी में सरेआम वहां पर मारपीट होती है, मेरी शर्ट फाड़ी गई, हमारे 2-3 वॉलंटियर्स को गिरा गिरा कर उन्होंने मारा है, एक का हार्ट टूटा है, उसकी अभी सर्जरी चल रही है, मैं अभी खुद हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। 2-3 वॉलंटियर्स को वहां पे उन्होंने मारा, ट्यूब में, टायर के ट्यूब में ये लोग पत्थर डाल के तैयार थे, और जिस तरह के पत्थर इन्होंने आज फेंके हैं,

0: खड़े थे, और इसमें से सिर्फ दो या तीन लोग वहां के लोकल बीजेपी के गांव वाले थे, उसके अलावा सारे लोग बाहर से बुलाए गए थे। वहां के जो लोकल गुड्डे हैं जो वहां पे जमीन कब्जाने का काम करते हैं वो लोग वहां पर मौजूद थे। और बहुत शर्म की बात है कि एक ऐसा स्कूल जो भैंसों के तबेले में चल रहा है, जिसे मैं खुद एक साल पहले विजिट करके आया हूँ, मैंने वो वीडियो भी डाला, वो स्कूल हम सिर्फ ठीक कराने की बात कर रहे थे। ये लोग इस लेवल पर गिर चुके हैं कि भैंसों के तबेले में स्कूल चलता रहे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो स्कूल ठीक ना हो जाए, कोई उस स्कूल को ठीक करने की बात ना करे, ऐसे व्यक्तियों को हम मारने के लिए तैयार हैं। इस लेवल पे बीजेपी गिर चुकी है, पूरा देश देख रहा है। हम तो इस तरह के अटैक से ना पहले डरे थे ना आगे डरेंगे। हम स्कूल विजिट जारी रखेंगे, जिसको जो करना है कर ले, हम पीछे हटने वाले नहीं है।
1: शिवम त्यागी, आपने सुना, आशुतोष रंका बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और यहां पर तो वंदे मातरम वाला मामला भी नहीं है जो कांग्रेस पार्टी पर आप आरोप लगा रहे हैं कि वंदे मातरम की वजह से डिफ्लेक्ट करने के लिए या उसके उसके खिलाफ ये नया आंदोलन कांग्रेस पार्टी छेड़ रही है। यहां पर तो वो उस स्कूल के विजिट के लिए गए थे, उनका यह कहना है कि आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर उन पर हमला किया है, और ये दौर पूरे देश भर में चल रहा है अलग अलग राज्यों में।
2: देखिए, सबसे पहले तो आशुतोष जी मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। गुरदीप सप्पल जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि हम किसके साथ जो है सरकार बना रहे थे, इस वजह से देश जो है बटा। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि खासतौर पर वंदे मातरम के विषय में, द कमिटी रिकॉग्नाइजेस द वैलिडिटी ऑफ द ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय द मुस्लिम फ्रेंड्स टू सर्टन पार्ट ऑफ द सॉन्ग। द कमिटी हैव हाउएवर कम टू द कंक्लूजन दैट द फर्स्ट टू स्टैंजर्स ऑफ वंदे मातरम शुड बी संग एट नेशनल गैदरिंग्स। ये 1937 की आपकी CWC का पेपर है। आपके मुस्लिम मित्रों को दिक्कत, दुख और दर्द हो रहा था, इस वजह से सिर्फ दो स्टैंजा बजेंगे। ये देश CWC की चिट्ठी से नहीं चलता, संविधान से चलता है। संविधान में अब कानून है, 6 स्टैंजा आपको बजाने, अपमान नहीं करना, इतनी सीधी सी बात है। CWC 2026 में पास कर दिया, 37 में पास कर दिया, उससे देश नहीं चल रहा है।
1: तो एक्शन क्यों नहीं ले रहे, आरोप क्यों लगा रहे हैं? एक्शन लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का क्या मतलब है? सीधा FIR दर्ज कर लीजिए। अगर एक्शन लिया है उस नए कानून के तहत, तो
2: बिल्कुल
1: FIR दर्ज क्यों नहीं होती है? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहती है? दो दिन हो गए उस बात को लेकर।
2: प्रेस कॉन्फ्रेंस कर,
1: दो दिन हो गए।
2: प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब वही होता है जो साहिल जोशी जी की डिबेट में आने का मतलब होता है। देश को बताना, देश को समझाना किसका क्या स्टैंड किस चीज को लेकर है, वही मतलब होता है।
1: और आशुतोष रंका, ज्यादा गंभीर सवाल उनके हैं।
2: अब उस पर आता हूं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो ये बीजेपी के गुंडे हैं, ये इसके गुंडे हैं, ये उसके गुंडे हैं, ये कृपया करके ये लाइन करना बंद कर दीजिए। आप अगर किसी गांव में जाएंगे, वहां पर बैठे हुए लोगों के साथ जो है हंगामा क्रिएट करेंगे, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करेंगे, बदतमीजियां करेंगे, तो माफ कीजिए, जो आपस में जो जिस तरीके से ये बहस हुई, लड़ाई हुई, जो चीजें हुई, ये कहीं ना कहीं नहीं होनी चाहिए। दूसरी एक और भी बात है, मैं अगर कहीं पर किसी विषय पर जा रहा हूं और मुझे लगता है कि ऐसी कोई स्थिति बनी है, तो जाहिर है कि इन्होंने कोई थाने में जाकर, पुलिस स्टेशन में जाकर कोई तहरीर दी होगी, कोई दिक्कत कही होगी, कोई बात बताई होगी। शिवम
1: त्यागी
2: किसी भी विषय को लेकर जाता है और उसको ऐसा लगता है,
1: बहस के तबेले में स्कूल
2: को लेकर 12 लाख रुपए ऑलरेडी। आशुतोष रंका जी राजस्थान के जयपुर जिले के बगरू क्षेत्र में रामपुरा कवरपुरा गांव में गए, जिस स्कूल के लिए बात कर रहे हैं उस स्कूल के लिए ऑलरेडी 12 लाख रुपया सैंक्शन हो चुका है। और एक लंबा वीडियो है, मैं सुनाना नहीं चाहता, लेकिन आप सिर्फ इसको थोड़ा सा सुन लीजिए, गांव वाले क्या कहे।
3: हमने नहीं गए, उन्होंने सर यारी लेके आए सर, कम से कम 250 आदमी आए, हमने मारपीट नहीं की उनके साथ में,
4: उनकी गाड़ी
3: हमने नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले प्रेम से समझाए थे, पर उन्होंने भेजे, वो खुद ने शीशे तोड़ के ले गए गाड़ियों के।
2: राजस्थान में
1: गांव वाले कह रहे थे कि हमारे
2: लोगों को,
1: आपका ये कहना है, आपका ये कहना, शिवम त्यागी आपका ये कहना है, अगर मैं समझ रहा हूँ तो आपका ये कहना है कि गांव वाले वहां पर कह रहे थे कि हमारे स्कूल, हमारे गांव में भले भैंस के तबेले में स्कूल चल जाएगा, लेकिन बाहर के लोग आके यहां पर ये नहीं कह सकते कि भाई ये इस तरीके से स्कूल नहीं चल सकता। यही है ना, बेसिकली ये लॉजिक जाता है उस पे। हालांकि उनका कहना है कि वहां पर जो कार्यकर्ता है उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता,
2: बिल्कुल साहिल जोशी जी ने जो कहा वो बिल्कुल उनके शब्द हैं, ना ही मैंने ऐसा कहा और ना ही वहां के गांव वालों ने।
1: मैं पूछ रहा हूं,
2: गांव वालों ने
1: ये मतलब नहीं है ना, गांव वालों का
2: आए थे जब वो यहां पर माहौल, मैं बता रहा हूं, तो मैं वीडियो भी सुनाया आपको और बता भी रहा हूं। उन्होंने कहा कि 250 लोग यहां पर आए थे, वहां पर गांव के लोग पहले से ही मौजूद थे, उनके साथ जब आपस में बातचीत हुई, आर्ग्यूमेंट हीटेड हुआ, हमने कहा वापस चले जाइए, नहीं गए।
1: जवाब दीजिए,
2: बात को लेकर दोनों पक्षों में खींचातानी हुई, रस्साकशी हुई, सामने आए जनता के, भाई बोल रहा है, मतलब राजस्थान
5: में। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, ये भाई साहब जो कह रहे हैं
4: सबने वो वीडियो देखा है कि हमारे 200-250 लोग थे कि कितने लोग।

0: थे। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वो गांव वाले, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ गांवों में कौन
1: नहीं
0: रहता
1: नहीं
0: है,
1: मैंने कह रहा
0: किसान
1: नहीं,
0: मजदूर
1: गांव वाले
0: गरीब
1: कह रहा
0: आदमी
1: है,
0: रहता है,
1: गांव
0: कौन
1: वाले।
0: किसान मजदूर गरीब आदमी चाहेगा कि उसके बच्चे तबेलों में पढ़े। और ये जो कह रहे हैं कि वहां सेंशन हो चुका है, तो पिछले साल मैं और आशुतोष जी, रेखा जी, रेखा शर्मा जो सांगानेर से ही है, हम सब लोग वहां गए थे एक साल पहले। वहां पहले भी वही स्थिति थी, उसी तबेले में पहले भी बच्चे पढ़ रहे थे और आज भी बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं। आज हम फिर से वहां जा रहे थे हमारे साथी, और ये जो अभी इन्होंने एक बात और कही थी महिलाओं के सम्मान की कि महिलाओं पर अत्याचार हुए, हम पहले भी महिलाओं के लिए बोले थे कि महिलाओं पर जो अत्याचार हुए वो किसी भी सूरत में बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है, वो बहुत निंदनीय है। आज भी सेम ऐसे ही हुआ, जब बीजेपी के कुछ गुंडे हमारे इन युवा साथियों को रोकने के लिए पहुंचे तो उन्होंने महिलाओं के साथ बदतमीजी की। रेखा शर्मा जो सीजेपी की वॉलंटियर है उनके भी कंधे में चोट आई है, उनके साथ भी धक्का मुक्की की। तो ये महिलाओं के सम्मान की बात ये बीजेपी के लोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये इन लोगों के
1: ठीक है,
0: लिए महिला सम्मान का कोई मतलब नहीं बनता है। जी
1: ऑफ है वो।
2: केजी त्यागी भी हमारे साथ में है।
0: हेलो,
2: कुल मिलाकर ये अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें यहां पर दिखाई दे रही है। केजी त्यागी हमारे साथ में है। ललिता कुमारी जजमेंट में त्यागी जी ये बात बिल्कुल साफ रखी गई है कि
1: जी सर,
2: कॉग्निजिबल ऑफेंस है तो एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी। क्या कारण है कि आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की होगी,
1: जी
2: जबकि शिकायत लेकर जो भुक्तभोगी है वो वहां पर पहुंचे हुए थे 14 अगस्त।
3: नमस्कार। देखिए मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन और जो क्रिमिनल मैनुअल है इसके हिसाब से पुलिस काम करती है। मैंने 40 साल के करीब पुलिस में नौकरी की है, और जो आप कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो मुकदमा दर्ज होगा, देखिए कुछ लॉ पॉइंट्स जो है ना वो बड़े क्लियर है, क्योंकि अनलॉफुल असेंबली जो है वो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करती है, और जब पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होती है तो आप देखिए 1947 में मारकाट हुई, वो भी डिस्टर्बेंट ऑफ पब्लिक ऑर्डर था। 84 में जो दंगा हुआ वो भी डिस्टर्बेंट ऑफ पब्लिक ऑर्डर था। तो सीआरपीसी में चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही या बीजेपी की रही, इस अल्लाहफुल असेंबली के बारे में बिल्कुल अलग कानून है। ये 197 और नॉर्मल कॉग्निजेबल ऑफेंस का नहीं है। इसमें देखिए पुराना जो 129 था अब वो 149 है। मैं आपको उसमें बताता हूं कि एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और इन द एब्सेंस ऑफ सच पुलिस इंचार्ज एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सब इंस्पेक्टर कैन कमांड एनी अनलॉफुल असेंबली टू डिस्पर्स। अगर कमांड दी गई है तो इट इज ड्यूटी अपॉन द अनलॉफुल असेंबली टू डिस्पर्स। अगर नहीं करते हैं तो फिर यूज ऑफ
2: लेकिन
3: फोर्स होता है। उसके
2: नहीं,
3: अलावा
2: लेकिन त्यागी जी यहां पर तो सरकार कह रही है कि पायलट गन हमने चलाया नहीं,
3: जी
2: फिर उसको नहीं नहीं अगर अगर आप नहीं, आप
3: नहीं,
2: मुझे इस
3: मैं
2: बात का
3: उसका
2: जवाब दीजिए ना
3: उसका
2: कि
3: भी
2: सरकार
3: जवाब
2: तो कह रही है
3: दूंगा
2: हमने तो चलाया नहीं,
3: उसका
2: फिर इंजुरी कहां से हो गई है? और अभी अभी दिल्ली पुलिस फिर किस
3: नहीं,
2: कानून के
3: सरकार
2: तहत
3: थोड़ी
2: एफआईआर ले रही
3: चलाती
2: है?
3: है। नहीं सरकार पैलेट गन थोड़ी चला नहीं सरकार पैलेट गन क्यों चलाएगी सरकार? वो तो जहां मौके पे मौजूद ऑफिसर है, ये उसने चलाई है नहीं चलाई है तो वो जवाब देगा। दूसरा, 132 में कोई कंप्लेंट फाइल नहीं हो सकती उस पुलिस ऑफिसर के जिसने अनलॉफुल असेंबली के ऊपर काम किया है, क्योंकि इट इज बार
2: नहीं तो
3: टू फाइल
2: ना
3: एनी
2: सर,
3: कंप्लेंट
2: तो कोई पुलिस
3: विदाउट
2: आके
3: द
2: कहे,
3: सेंक्शन ऑफ द
2: मुझे एक
3: कंप्लेंट
2: बात
3: कमेटी।
2: नहीं समझ में आ रही है,
3: हाँ
2: क्यों नहीं आके कहा जा रहा है कि हमने अनलॉफुल असेंबली पर पैलेट गन
3: जी,
2: चलाई, ये बात मान क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं आकर ये कहा जा रहा है? क्यों नहीं सीआरपीएफ के तरफ से ये कहा गया कि हाँ
3: तो,
2: हमने पैलेट गन चलाई वहां पर, हमें आदेश दिए गए थे? नहीं बताना चाहिए, उसका ब्रीफिंग नहीं होता है त्यागी जी?
3: सीआरपीएफ जवाब देगी?
2: आप पुलिस में काम कर चुके हैं,
3: नहीं
2: आपको पता है कि किसी भी अनलॉफुल असेंबली पर अगर लाठी चार्ज होता है, कोई भी सख्त कार्रवाई की जाती है तो उसका ब्रीफिंग किया जाता है, हमने कितने राउंड फायरिंग किया हुआ है, किस तरीके से हमने उस अनलॉफुल असेंबली से निपटा हुआ है, क्यों नहीं इसका ब्रीफिंग किया गया?
3: प्लीज
2: कहां है ब्रीफिंग?
3: प्लीज सर, मैं आपको करेक्ट करता हूं। अभी देखिए पार्लियामेंट इस चीज पे चार कॉर्डन बनते हैं, अगर चौथा कॉर्डन टूटेगा पार्लियामेंट के लिए तो लाठी भी चलेगी। और दूसरा क्या होता है कि कोई भी लॉफुल असेंबली किसी किस स्टेज पे अनलॉफुल हो जाए,
2: सुप्रीम कोर्ट ने
3: वहां डिसीजन आईओ एट दी स्पॉट। हाँ बताइए,
2: सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन को चलाने के लिए पार्ट ऑफ ग्रेडेड रिस्पॉन्स कहा है। आप पुलिस में काम कर चुके हैं त्यागी जी, ग्रेडेड रिस्पॉन्स, ग्रेडेड रिस्पॉन्स नाम की चीज होती है, कब पैलेट गन चलाना है उसका भी एक ग्रेड होता है। सुप्रीम कोर्ट के क्लियर गाइडलाइन से इस पूरे मामले को लेकर, और इसीलिए सवाल बार बार उठता है कि क्यों नहीं मान लेती पुलिस की हमने चला दी करके, अगर मान लेती तो ये सारे सवाल खड़े नहीं होते
3: बिल्कुल
2: आज की स्थिति में।
3: यह कानून को बेकानून को गलत रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एक बताइए, 5000
2: सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है,
3: 10 पुलिस वाले
2: संसद मार्ग खड़े हुए हैं,
3: तो हाउ दे वुड टेक द ग्रेटर डिसीजन, स्पॉट पे डिसीजन लेना पड़ेगा।
2: मौसमी सिंह हमारे साथ में, मौसमी FIR दर्ज करने की ये शुरू हो चुकी है और मेरे ख्याल से राहुल गांधी भी पुलिस स्टेशन के भीतर गए, आपके पास क्या जानकारी?
1: देखिए, अब किसी भी वक्त ब्रीफिंग हो सकती है, यहाँ पे पूरा पोडियम तैयार कर लिया गया है और यहाँ पे भैया एक सेकंड, यहाँ पूरा पोडियम तैयार कर लिया गया है, मीडिया से बात करने वाले हैं राहुल गांधी, अंदर से कुछ खबर आई है, राहुल गांधी भी मुस्कुरा रहे हैं और कुछ बातचीत कर रहे हैं, और किसी भी वक्त यहाँ पे ये खबर धीरे से छन के बाहर आ रही है कि अभी साहिल भी सिग्नेचर करने के लिए बताया गया मुझे कि अंदर गए थे और अभी है नहीं, अभी भीतर ही है। तो FIR को लेके जो स्टैंड था राहुल गांधी का, वो बिल्कुल किया था कि FIR जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे, और जिस तरीके से अभी खबर आ रही है कि अननोन के खिलाफ FIR दर्ज होने की पूरी प्रक्रिया चल रही है, तो किसी भी वक्त जैसे ही ये खबर आती है तो राहुल गांधी यहाँ पे साहिल के साथ प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, मीडिया से मुखातिब होकर बताएंगे कि आखिर उन्होंने ये स्टैंड क्यों लिया।
2: तो मौसमी सिंह यहाँ पर जानकारी दे रही है कि थोड़ी देर में वहां पर ब्रीफिंग भी होगी और वहां पर पुलिस स्टेशन के भीतर वहां पर राहुल गांधी गए हुए हैं। जल्दी से आखिर में प्रतिक्रिया शिवम त्यागी की, आखिरकार अब ये FIR दर्ज किया जाएगा तो क्या अब सरकार ने ये मान लिया है कि FIR दर्ज कर लेना चाहिए था, क्योंकि अब पुलिस FIR दर्ज कर रही है?
4: कहना चाहता हूं, अंततः क्या होगा वही उस जांच कमेटी के समकक्ष ये सारी चीजें जाएंगी, जांच का जो स्थिति होगी यथास्थिति वो जनता के सामने आएगी और उसी के हिसाब से तय होगा कि कार्रवाई किस तरीके से और कैसे होनी है। मुझे बस एक चीज बता दो, क्या अचीव किया इस देश में? छात्रों की 1000 समस्याएं हैं अलग अलग राज्यों में, और मैं एक और अंत में एक चीज कहकर आना चाहता हूं कि एक एक स्थिति जो बनी हुई है यहां पर, मुझे बस एक चीज आप बताइए, ये अब CJP वालों की पूरी एक कमेटी गठित हुई, उस कमेटी में बाकी सभी लोग तो अलग अलग राज्यों के हैं, एक महिला है आफरीन जो तेलंगाना से, कोई एक प्रदर्शन है क्या?
2: उम्मीद सिर्फ इतनी है कि इन सारे मुद्दों पर पहले ही कार्रवाई होती तो शायद यहां की नौबत नहीं आती। फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
8: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
7: छक्का
8: सब कैशलेस हो गया है।
7: हाँ ला भाई मेरा बैट, वो अभी तो ठीक हुआ, तू
9: बिल्कुल चार्ज हुआ यार।
10: बैट किसका है?
11: टाटा AIG है तो भरोसा है।
12: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
13: सोच बदलो और बैंक भी।
14: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी।
2: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
3: B.R. अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है।
4: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट अलग स्टेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही दलतिस्तान भी बनता।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: आज जब राहुल गांधी संसद मार्ग में डीसीपी ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया गया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहले से ही 20 जुलाई के सभी मामलों में सघन जांच कर रही है। डीसीपी ने यह भी बताया उनको और आश्वासन दिया कि वे इस मामले में जो क्राइम ब्रांच को आपने कहा है वह उनको भेज दिया गया है और क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। प्रशासन के इस स्पष्टीकरण के बावजूद धरने पर बैठ जाना राहुल गांधी के हठ योग को दर्शाता है और हठ योग के साथ साथ हताशा को भी दर्शाता है। इससे साफ हो जाता है कि उनका मकसद किसी को न्याय दिलाना या जांच करवाना नहीं है, बल्कि सिर्फ हंगामा खड़ा करके कानून व्यवस्था को चुनौती देना है।

0: 15 अगस्त को सोनिया गांधी पर वंदे मातरम के अपमान के आरोपों की तपिश अभी कम भी नहीं हुई थी कि गोवा से तस्वीर आ गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में वंदे मातरम के सिर्फ 2 पद गाए गए। विवाद बढ़ा तो कांग्रेस ने कल अपनी कार्य समिति में आधिकारिक रूप से ये तय कर दिया कि वो 2 पद ही गाएगी।
1: वी आर वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट दैट आवर कांग्रेस पार्टी वर्कर्स विल डू दैट ओनली। दिस इज आवर डिसीजन। फर्स्ट 2 चांस था।
2: 28 अक्टूबर 1947 को वंदे मातरम, सॉरी 37 को वंदे मातरम पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उस प्रस्ताव में जब पारित किया गया CWC की बैठक में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, राजगोपालाचारी, गोविंद वल्लभ पंत और अन्य नेता, आचार्य नरेंद्र देव मौजूद थे और रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह से ही वो प्रस्ताव पारित किया गया था और आज उस पर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष ने उस प्रस्ताव के कुछ अंश भी पढ़े और इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई सवाल नहीं है।
0: इसी साल फरवरी में सरकार ने आधिकारिक मौकों पर वंदे मातरम के 6 पद वाले संस्करण को बजाना या गाना अनिवार्य कर दिया था, जिसकी कुल अवधि 3 मिनट और 10 सेकंड की है। संसद के मानसून सत्र में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम को मंजूरी दी गई, जिसमें वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर बाधा डालने या अपमान को एक दंडनीय अपराध माना गया है। इसमें पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अपराध दोबारा दोहराने पर कम से कम 1 साल की अनिवार्य जेल होगी। क्या कांग्रेस संसद से पास कानून को नहीं मानेगी?
3: कांग्रेस ने यह भी साबित किया है कि वो अपने को संविधान से ऊपर, अपने को देश से ऊपर और अपने पार्टी के प्रस्ताव को संविधान के कानून से ऊपर मानती है और उसके साथ अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर।
0: जी हाँ, बड़ा सवाल यही है कि देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी का रुख संसद से पास कानून से अलग क्यों है? दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो रिपोर्ट।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, बने रहिए आज तक।
0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: दिल्ली पुलिस ने मानी राहुल गांधी की मांग, पायलटगंज मामले में अज्ञात के विरुद्ध दर्ज हो रही है FIR, अभी भी संसद मार्ग थाने में मौजूद हैं राहुल और प्रियंका। राहुल के खिलाफ उतरी बीजेपी की सेना, नड्डा ने कहा वंदे मातरम पर घिरने के बाद कांग्रेस का धरना, स्मृति ईरानी बोली विरोध के नाम पर स्वांग रच रही है कांग्रेस। बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, कहा वंदे मातरम को स्वीकार न करना दुर्भाग्यपूर्ण, राजनाथ बोले कांग्रेस के खतरनाक इरादे देश के सामने उजागर। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने अखिलेश यादव को फिर घेरा, कहा गिरगिट की तरह रंग बदलती है समाजवादी पार्टी, इनके पीडीए का पी पिछड़ा से पंडित हो गया और एक दिन कर देंगे पाकिस्तान। जयपुर में स्कूल का दौरा करने गए सीजेपी के आशुतोष रंका से गांव वालों की मारपीट, गाड़ियों के शीशे तोड़े, सीजेपी का आरोप बीजेपी के लोगों ने किया हमला।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: पैलेट गन का प्रयोग हुआ उसका सबूत क्या है? सबूत यह है, देखिए ये है पैलेट, देख लीजिए इनको।
1: इस पूरे ड्रामे की अगर हम टाइमिंग को समझें तो हमें ध्यान में आएगा कि आज कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम के मुद्दे पर पूरे देश में चारों ओर से घिर चुकी है।
2: कश्यप हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी ने आज सरकार के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। संसद मार्ग थाने के बाहर राहुल गांधी धरने पर बैठे हैं। यह धरना कथित तौर पर पैलेट गन से पीड़ित साहिल लोचाब के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग पर है। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि एफआईआर दर्ज होने तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। इस बीच बीजेपी ने राहुल गांधी पर अराजकतावादी होने का आरोप लगा दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और बीजेपी महासचिव स्मृति ईरानी समेत बीजेपी के बड़े नेताओं का आरोप है कि वंदे मातरम पर घिरी कांग्रेस पार्टी अब ड्रामा कर रही है। कितना दम है इस आरोप में? गौरतलब है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर के पुलिस एक्शन और हिंसा समेत पूरे देश में छात्र प्रदर्शन के दौरान सामने आए मामलों की जांच के लिए एक जांच सदस्यों की 5 सदस्यों की कमिटी बना दी है। लेकिन इसके बावजूद आज ये मामला इस तरह से उठ रहा है। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के आज हल्ला बोल में लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। जंतर मंतर पर पैलेट गन से फायरिंग के आरोपों का मसला राहुल गांधी पहले से उठा रहे थे, लेकिन आज सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया। धरने पर राहुल गांधी की ये तस्वीरें दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर की हैं। जिस साहिल लोचाब के पैलेट गन का शिकार बनने का दावा है, उन्हें लेकर थाने पहुंचे राहुल गांधी ने पैलेट गन से फायरिंग पर एफआईआर की मांग की। मगर जुलाई में ही साहिल लोचाब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके राहुल गांधी ने एक बार फिर दावा किया कि साहिल के शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे घुसे हैं।
0: सबूत यह है, देखिए यह है पैलेट, देख लीजिए।
2: मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर साहिल की आंखों में 3 छर्रे और दिल के पास भी पैलेट गन का जख्म होने का दावा हुआ है।
0: दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे।
2: आज राहुल गांधी सबसे पहले कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। वहां वो ये जानकारी लेने आए थे कि पैलेट गन को लेकर कार्रवाई का अपडेट क्या है। कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन से वो संसद मार्ग थाने पहुंचे। वहां उनकी ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नूपुर प्रसाद और नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा से मुलाकात हुई। जब राहुल गांधी की मौजूदगी में साहिल लोचाब की शिकायत ले ली गई, लेकिन मामला कोर्ट में होने की बात कही गई, तो राहुल गांधी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद राहुल गांधी दूसरी बार धरने पर बैठे हैं। 21 जुलाई को राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया था, बाद में उन्हें हिरासत में लिया गया था। राहुल की इस राजनीति को बीजेपी अराजक कह रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक पोस्ट में लिखा, धरना नायक राहुल गांधी पेशेवर अराजक बन चुके हैं। इनका न कोर्ट में विश्वास है, न पार्लियामेंट में विश्वास है। वरिष्ठ बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि ये राहुल गांधी का कैमरा जीवी ड्रामा है।
3: राहुल गांधी की उस सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति का गवाह बन रही है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने आज संसद मार्ग थाने के बाहर जो किया वो सबने देखा है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है, यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख।
2: पैलेट गन को लेकर राहुल गांधी का ये दांव जंतर मंतर मसले पर पैनल बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद सामने आया है। 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति छात्र विरोध को लेकर न सिर्फ जंतर मंतर बल्कि देश की अन्य जगहों पर जरूरत से ज्यादा पुलिस बल के इस्तेमाल की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई ये कमेटी सुरक्षा बलों से हुई हिंसा के आरोपों की भी जांच करेगी। इन्हीं परिस्थितियों में राहुल गांधी का अन्याय के विरुद्ध न्याय के युद्ध का दांव राजनीतिक आर पार का मसला बन गया है।
4: मांग सिंपल है, FIR दर्ज करो, रजिस्ट्रेशन नंबर दो।

0: और हम यहाँ से निकले। पुलिस का कहना है कि FIR दर्ज किया गया था, वो तो जनरल FIR था। ये साहिल ने मांग की है और उन्होंने सबूत दिखाया, अपनी आंख दबाई है।
1: ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। आपको नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना राहुल गांधी।
2: 20 जुलाई को साहिल लुचाप के अलावा दो अन्य लोगों के पैलेट गन से घायल होने का दावा हुआ है आज तक ब्यूरो। वो साहिल को लेकर बैठे हैं, पैलेट गन के निशान दिखा रहे हैं, उनकी आंखें दिखा रहे हैं, कह रहे हैं उनकी आंखों की रोशनी गई है। अब क्या करेगी आप?
3: देखिए अंजना जी, जो वंदे मातरम का अपमान करते करते कांग्रेस पार्टी एक चक्रव्यूह में फंस चुकी है, आज वही कांग्रेस पार्टी अपने एक नेता को पुलिस खाने बेचती है एक नया स्वांग रचने के लिए, ताकि देश का ध्यान वो वंदे मातरम की कॉन्ट्रोवर्सी से हटा सके। विषय यह है कि जब पुलिस की व्यवस्था से ये कहा गया है कि प्रोब अंडर वे है, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना मंतव्य अपना वक्तव्य इस विषय पर दे दिया है, तो क्यों अपनी राजनीतिक फायदे के लिए एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं राहुल गांधी हमारे देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस पर?
2: लेकिन स्मृति जी, क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि एक राजनीतिक पार्टी राजनीतिक फायदा उठाएगी? वो ये कहेगी हम कि उन बच्चों की आवाज बन रहे हैं, उन लोगों की आवाज बन रहे हैं।
3: आपने कहा ना एक वाक्य अंजना जी, क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए कदम उठाएंगे? यही सत्य है, लेकिन राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वो किस पर आक्रमण कर रहे हैं? देश की पैरामिलिट्री सर्विसेज पर वो किस पर आक्रमण कर रहे हैं? पुलिस की वर्दी पहनने वाले हमारे महिला पुरुष जितने भी ऑफिसर्स हैं, पुलिस बल है, उस पर आक्रमण कर रहे हैं। तो अपने राजनीतिक फायदे के लिए, जैसा कि आपने स्पष्ट रूप से कहा, क्या ये राजनीतिक दल जो कांग्रेस पार्टी है और उनके नेता इस हद तक जाएंगे कि अब लांछन देश की पैरामिलिट्री सर्विसेज पर लगाएंगे? आपको क्या लगता है अंजना जी, देश की पैरामिलिट्री सर्विसेज अपनी यूनिफॉर्म क्या इसलिए पहनती है कि वो देश के नागरिक के साथ अन्याय कर सके? ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे देश के इतिहास में। तो जब इन्वेस्टिगेशन वर्तमान में चल रही है, तो ऐसी क्या जरूरत है राहुल गांधी को, जब कंट्रोवर्सी चरम पर है वंदे मातरम की, कि वो आज जाकर वहां बैठे हैं? और वो इस विषय पर कितने संजीदा है अंजना जी, वो इस बात से भी दिखाई देता है कि वर्तमान में अगर आप इंटरनेट पर देखें तो राहुल गांधी इस व्यक्ति के साथ बैठकर दूसरे लोगों पर टॉफियां फेंक रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं। क्या आपको ये एक संजीदा राजनीतिक दल के संजीदा नेता का स्वरूप लगता है?
2: लेकिन सरकार मुश्किल में तो घिर गई है।
3: बिल्कुल नहीं, सरकार में मैं सरकार के प्रतिनिधि के नाते आज नहीं बोल रही हूँ, मैं भाजपा के एक कार्यकर्ता के नाते बोल रही हूँ। भाजपा का अधिकृत बयान निश्चित रूप से आपके पास आया है। सरकार को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार ने अपना स्पष्ट रखा है एक मंतव्य, सरकार ने परामर्श करके सारी तहकीकात के लिए जितना समर्थन चाहिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को वो भी व्यवस्था की है, सरकार को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है।
2: लेकिन स्मृति ईरानी जी, आपने दो शब्द मेरे पकड़े कि राजनीतिक फायदे की बात। मेरा यह अर्थ था कि वहां पर जब वो किसी भाई इंसाफ की बात वो सारे लोग कर रहे हैं जो कि जंतर मंतर पर जिनको लग रहा है उन पर लाठियां चली, जिन पर भी हमला हुआ, वो कह रहे हैं कि भाई
3: राहुल गांधी को कभी दिल्ली पुलिस के ऊपर जो आक्रमण हुआ उनके इंसाफ के लिए बैठते देखा है? RAF पर्सनल पर जो हमला हुआ उसके इंसाफ के लिए अपने राहुल गांधी को कभी देखा है? इस घटनाक्रम में कभी भी राहुल गांधी एक वाक्य भी बोले कि दिल्ली पुलिस के पुलिस बल पर आक्रमण नहीं होना चाहिए था, उनका माथा नहीं फोड़ा जाना चाहिए था, एक शब्द बोले?
2: लेकिन स्मृति जी, दिस इज क्लियरली अ टाइम व्हेन एवरीबॉडी इज चूजिंग साइड्स।
3: नो, नॉट एट ऑल। द भारतीय जनता पार्टी इज ऑन द साइड ऑफ द ट्रूथ।
2: ठीक है, एक सवाल,
3: जस्टिस।
2: ठीक है, एक सवाल, एक सवाल।
3: राहुल गांधी chooses to serve a lie for his political purpose, that is his right.
2: लेकिन देखिए,
3: in this entire incident, अंजना जी, आपने इस पूरे विषय को इतने दिनों से कवर किया, आपको राहुल गांधी का एक वक्तव्य मिला है क्या कि पुलिस की वर्दी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, पैरामिलिट्री सर्विस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था? नहीं मिला हो। तो अगर वो सच्ची में न्याय के पक्ष में है, तो क्या राहुल गांधी की डिमांड ये नहीं होनी चाहिए थी कि पूछो पुलिस वालों को किसने मारा,
2: यही मेरी बात है, पॉलिटिकली आपको पूरा पूरा हक है कि आप इस मुद्दे को उठाएं, लेकिन वो दूसरे पक्ष का मुद्दा उठा रही है ना, वो भी तो मुद्दा उठा रहे हैं।
3: पॉलिटिकल नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आपने कहा कि राहुल गांधी इंसाफ की तलाश में है, तो क्या इंसाफ की तलाश की वो यात्रा इसको सम्मिलित नहीं कर सकती क्या? आपको राहुल गांधी कहीं भी धरने पर दिखे ये कहते हुए कि बताओ पैरा मिलिट्री को, पुलिस को किसने मारा, नहीं मिलेंगे आप। लेकिन मेरा प्रश्न पुनः है कि अगर वो इंसाफ के पक्ष में है तो क्या पैरा मिलिट्री सर्विसेज को, पुलिस को किसने मारा? पुलिस बल के बच्चों ने तो अपना एक वहां पर शायद दिल्ली के किसी एक जगह पर ये भी कहा कि वो भी तो नौजवान है जिनके माता पिता पुलिस बल में सर्व करते हैं, उनके लिए क्या राहुल गांधी ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। इंसाफ को आप छिन्न भिन्न नहीं कर सकते ना, परतों में नहीं देख सकते।
2: स्मृति जी अगला सवाल,
3: तो जब
2: मेरा
3: तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक एक पुलिस बल को, पैरामिलिट्री सर्विस को लांछित कैसे कर सकते हैं?
2: लेकिन हाल के
3: पुनः कहती हूँ कि वंदे मातरम के विषय पर वो घिर रहे थे तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। अभी आप सबके सामने बैठे हुए हैं ना, तो उनसे जाके पूछिए, वो थे ना कांग्रेस हेडक्वार्टर में जब वंदे मातरम पूरी तरह से नहीं गाया जाएगा, श्रीमती गांधी ने रोका, तो वो क्या रोका उन्होंने? ये जो सज्जन चुनाव में आके अपना गोत्र बताते हैं, इनकी उपस्थिति में वंदे मातरम को मना किया गया गाने से पूरा का पूरा, उसमें क्या वंदना थी कि हम माँ भारती को दुर्गा स्वरूपा मानते हैं, लक्ष्मी स्वरूपा मानते हैं, तो लक्ष्मी जी माँ भारती का सम्मान और हमारे हिंदुस्तान की जनता माँ भारती को एक विद्या का स्रोत मानती है, इन सब चीजों पर अंकुश लगाया सोनिया जी ने।
2: लेकिन
3: अब राहुल गांधी जी चुप क्यों थे?
2: आप लोग इसको
3: इंसाफ की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, बोलना चाहिए था कि माता जी आप जो कर रही है वो गलत है, क्यों नहीं बोले? ये एलओपी है ना, तुझे संसद ने वंदे मातरम का सम्मान किया, उसका पूरा का पूरा सम्मान एलओपी क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए धरने पे क्यों नहीं बैठे कि भाई मुझे जाना है मंदिर और आप यहाँ पर कांग्रेस हेडक्वार्टर में दुर्गा माँ का अपमान कर रहे हैं, क्यों नहीं बैठे? और कांग्रेस पार्टी अधिकृत रूप से कह रही है पहले कि नहीं खड़गे जी के लिए कुर्सी मांग रहे थे, राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं बोला कि अरे झूठ बोल रहे हो, माता जी को सच्ची में रोकना था वंदे मातरम? और ये पहली बार नहीं है, वंदे मातरम की सेंटिनरी सेलिब्रेशन जब चल रही थी, कांग्रेस पार्टी के सेवा दल ने कार्यक्रम आयोजित किया था, जब यूपीए की सरकार थी तब भी उस आयोजित कार्यक्रम में सोनिया जी नहीं गई, उन्होंने उसका भी बहिष्कार किया था। तो ये सारे मुद्दे ना उठे,
2: नहीं तो अब उनका तो पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है स्मृति जी,
3: मैं वही तो कह रही हूं,
2: वो दो ही स्टैंड लगाएंगे।
3: ऑफिशियल स्टैंड क्या है?
2: क्या अब बॉल आपके कोर्ट में नहीं है?
3: कह दिया, सुनिए ना, पार्टी का स्टैंड क्या है अंजना जी, कि नेहरू जी ने कह दिया तो हम दो ही छंद गाएंगे, ठीक है? तो नेहरू जी ने तो मोहम्मद अली जिन्ना को ये भी पत्र में लिखा था कि जिन्ना की ये डिमांड है कि गौहत्या होनी चाहिए इस देश में, और मैं ये पत्र है रिकॉर्ड पे, आप नेहरू आर्काइव से निकाल सकते हैं 1938 का, जीबी पंत को नेहरू जी ने लिखा कि हम कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन नहीं लेंगे अगर जिन्ना साहब को काउ स्लॉटर करना है, गौ हत्या करनी है। तो अगर नेहरू जी की वो बात मानने को तैयार है, जिन्ना के पक्ष में है कि वंदे मातरम पूरा नहीं गाना, तो क्या आज कांग्रेस के मुख्यालय में खड़े होकर सोनिया जी ये बोल सकती है कि नेहरू जी की ये बात भी मुझे समर्थन देनी है? बोलिए ना,
2: अब ये तो उनकी पार्टी डिसाइड करेगी, ये तो उनकी पार्टी डिसाइड करेगी। लेकिन वापस विषय पर आते हैं, एक सवाल, अच्छा बोलिए बोलिए,
3: देश का कानून ये कहता है कि वंदे मातरम का पूर्णतः गायन हो, वो कानून इतिहास के डब्बे में सोनिया जी डाल सकती हैं, उनको क्या विशेषाधिकार है? 1950 में हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि वंदे मातरम का उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना जन गण मन का, तो क्या अब वो राजेंद्र प्रसाद जी के खिलाफ भी बोलेंगे कांग्रेस मुख्यालय से? इसलिए ये सारे प्रश्न देश में जब खड़े हो रहे थे तब इन्होंने सोचा कि चलिए आज मैं जाकर लोगों का ध्यान थोड़ा आकृष्ट करता हूँ किसी और विषय पर जिसपे प्रोब चल रही है। ऐसा नहीं है प्रोब नहीं चल रही, प्रोब चल रही है।
2: वंदे मातरम पर आपने कहा कि वंदे मातरम से क्योंकि डिफ्लेक्ट करना है उनको मुद्दा, और
3: राहुल जी तो छे, वो इंसाफ तलाशने निकले हैं तो वंदे मातरम के लिए इंसाफ क्यों नहीं तलाशा उन्होंने? कांग्रेस हेडक्वार्टर में खड़े थे वहां।
2: पर अब तो बॉल आपके कोर्ट में है, अगर उन्होंने नए कानून में संशोधन के बाद उसका उल्लंघन किया है तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ।
3: ऐसा है अंजना जी, वंदे मातरम कोई बॉल नहीं है यहाँ से वहां पॉलिटिकली उछलो। ये हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम की एक पुण्य निशानी है, पुण्य जय घोष है। ये आपकी मेरी विरासत है एज नागरिक, ये किसी की बपौती नहीं है। और देश की संसद जब इस पे अपना एक वक्तव्य रखती है या अपना एक निर्णय रखती है, तो नागरिक होने के नाते ना गाती वो चार छंद, अपमान करने का अधिकार उन्हें किसी ने नहीं दिया था।
4: चलिए
3: राहुल थे वहां पे तो इंसाफ के लिए वहां भी लड़ते ना।
4: केरला में तो ऑफिशियल कार्यक्रम में नहीं हुआ है वंदे मातरम।
3: नहीं, केरला में तो ऑफिशियल कार्यक्रम में इन्होंने गौ की हत्या भी की है ना।
4: अब सवाल है कि
3: 1923 में अंजना जी, हाँ। क्योंकि इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं, 1923 में काकीनाडा सेशन में कांग्रेस के तब के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जौहर साहब, मौलाना साहब थे, तब जिन्ना ने खड़े होकर बोला था वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। सरदार पटेल शायद आप चेक कर सकते हैं, उस वक्त थे सेशन में। तो महाराष्ट्र के एक गायक ने खड़े होकर जिन्ना का विरोध किया और कहा कि ये मंच किसी धर्म विशेष का नहीं है, राष्ट्रीय मंच है। और उन्होंने जिन्ना के खिलाफ जाकर वंदे मातरम पूरा गाया। तो आप मुझे कह रही हैं एक मराठी सिंगर में इतनी हिम्मत थी कि वो जिन्ना को चुनौती दे दे, और नेहरू जी में नहीं थी?
4: खैर, इसका जवाब देने के लिए तो अभी उस पर मैं तो नहीं आपको बता सकती हूँ जवाब, लेकिन वापस आज के विषय
3: जवाब देना चाहिए वो तो टॉफियां फेंक रहा है अभी।
4: स्मृति जी, एक सवाल सीधा है। जंतर मंतर के दौरान एक एक आंदोलन हुआ और देश में कई लोगों की भावनाएं उसके साथ जुड़ी। पेपर लीक का मुद्दा था, बड़ा मुद्दा था। अब वो जो उसमें कुछ उत्पाती घुस गए थे, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है, स्टेटेड। बट उसके बाद से अब जो ये एक एक करके ऐसे लोगों को मुद्दा को उठा रहे राहुल गांधी, तो आपके लिए भी तो मुश्किल तो हो रही है ना कि भाई कैसे जवाब देंगे पेलेट गन पर। सुने ना, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ है, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ है। इसमें बस इतना बता दीजिए, देश की जनता आपको सुन रही है लाइव, पेलेट गन का सच क्या है और ये जांच के लिए क्या कोई टाइमलाइन है कि पुलिस कब तक बता देगी ताकि लोगों को एक आश्वासन मिले।
3: बिल्कुल, आपको मैं इतना कह दूं, ना आप इन्वेस्टिगेट कर रही है ना मैं, तो सच तो तभी आएगा जब तथ्य और सारा एविडेंस सामने आएगा। क्या उससे पहले मैं देश की पैरामिलिट्री सर्विसेज को दोषी करार दे दूं? क्या आपको पता है तथ्य क्या है? मुझे नहीं पता, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो इन्वेस्टिगेशन ना आप कर रही है ना मैं कर रही। और रही बात एजुकेशन के सिस्टम के सुधार की, मैं शिक्षा मंत्री थी 2014-15 में अंजना जी, जब नई शिक्षा नीति लिखी जा रही थी,
4: बिल्कुल
3: राहुल जी एक बार नहीं आए चर्चा करने कि भाई मैंने सभी सांसदों को पत्र लिखा था, कपिल सिब्बल जी, पल्लम राजू जो यूपीए के कार्यकाल में मंत्री थे, उन्होंने भी, मैंने उनसे स्वयं फोन उठा के बात की थी कि अगर कांग्रेस पार्टी का कोई योगदान है तो आप कृपया करके हमको बताइए, नहीं बताया था। आज भी कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक उनके पास नहीं है। तो अगर हम कहते हैं कि सुधार के लिए किसने प्रयास किए, नरेंद्र मोदी ने निश्चित किए, आपने देखा उन्होंने टास्क फोर्स बनाए, वो संवाद में रहे सीधा छात्रों के साथ, लेकिन जो इस वक्त बैठे हैं आपके कैमरा का जो मैं स्क्रीन देख रही हूँ, उन्होंने क्या एक बार भी कोई कंस्ट्रक्टिव सिटीजन के नाते या पार्लियामेंटेरियन के नाते योगदान दिया? नहीं। दूसरा, मैं उस जगह पर सांसद के नाते सेवा दे चुकी हूं जहां से मेरे टर्म से पहले सीधा राहुल गांधी थे, जहां देश के दो प्रधानमंत्री आ चुके हैं, जहां सोनिया जी आ चुकी हैं, वहां पर बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते थे, पहली बार वहां पर टेबल कुर्सी 500 से ज्यादा स्कूलों में हमारी सरकार ने लगाई। तो इनका एजुकेशन का क्या इतिहास है, उसका मैं प्रमाण आपको दे सकती हूँ। आज भी अमेठी में गेस्ट हाउस है सरकारी जमीन पर, जो राहुल जी ने बनाया, सोनिया जी ने बनाया अपने लिए, जबकि वो जमीन उन्होंने ये कहकर ली थी कि वहां पर मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, वो जमीन खाली नहीं की, वहां पर आज मेडिकल कॉलेज नरेंद्र मोदी की सरकार बना रही। तो शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा कर रही होगी तो मैं चर्चा से इनकार नहीं करती हूँ, लेकिन अगर प्रमाण देना होगा अंजना जी, तो प्रमाण देने के लिए मैं स्वयं अमेठी की पूर्व प्रतिनिधि के नाते भी प्रमाण दे सकती हूँ, क्योंकि व्यक्ति को कहीं ना कहीं मौका मिलता है ना, पार्लियामेंटेरियन के नाते कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो मौका जनता ने राहुल जी को भी दिया था अमेठी से, नहीं बनाए स्कूल, वहां का पहला सैनिक स्कूल नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाया, वहां का पहला केंद्रीय विद्यालय नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाया, तो शिक्षा पे चर्चा स्वाभाविक है, चेंजिंग डेमोग्राफी है, मार्केट्स की डिमांड अलग है, युवा के एस्पिरेशंस नए हैं, लेकिन आप अगर कंट्रीब्यूट ना करना चाहें, जबकि मौका है हम सभी पॉलिटिशियंस के पास कि हम कंट्रीब्यूट करें, तो प्रश्न राहुल जी से करना चाहिए।
4: राहुल गांधी भी नई ताकत के साथ आजकल अपने आप को हर जगह जमीनी लड़ाई में उतार रहे हैं, उनके इस पॉलिटिक्स को आप कैसे देखती हैं?
3: मैं पहले भी कहती थी कि ये मौका परस्तों की पॉलिटिक्स है, मैं पहले भी कहती थी ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है, मैं पहले भी कहती थी कि ये हेडलाइन चेजिंग की पॉलिटिक्स है, मैं आज भी वही कहती हूँ। आप मुझे बताइए, एक पॉलिसी पे कंस्ट्रक्टिव प्राइवेट मेंबर बिल इन्होंने कब चलाया? अगर इन मुद्दों पर वो गंभीर है, तो आप मुझे एक प्राइवेट मेंबर बिल दिखाइए, एक इंटरवेंशन दिखाइए जहां पर ये किसी मंत्री के साथ बैठकर इन विषयों पर इन्होंने विस्तार से कोई काम किया हो। मैं तो अमेठी का उदाहरण दे सकती हूँ, वो मेरा निजी अनुभव है। मैं तो शिक्षा मंत्रालय का अनुभव दे सकती हूँ, वो मेरा निजी अनुभव है।
4: चलिए यहीं पर इस बातचीत का अंत करते हैं। स्मृति ईरानी जी, महासचिव महामंत्री भारतीय जनता पार्टी की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर जुड़ने के लिए।
3: जी
4: बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब। बड़ी खबर आ रही है जो लगातार हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे थे, क्योंकि ये बातचीत हमारी स्मृति ईरानी से कुछ देर पहले की थी। अब दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। जिस वक्त हमने स्मृति ईरानी से ये बातचीत की, उस वक्त ये FIR दर्ज नहीं हुई थी। ये 4 बजे के बुलेटिन में लगभग 4:10 पर ये लाइव इंटरव्यू उनके साथ हमने किया था, और अब लगभग 6 बजे के आसपास ये खबर आ गई है कि सचिन लोचप की ओर से दी शिकायत पर FIR दर्ज हुई है। अज्ञात लोगों के खिलाफ ये FIR है। राहुल गांधी और साहिल लोचप DCP ऑफिस में इस वक्त भी मौजूद है। हम आपको लिए चलेंगे मौके पर, जहां से हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ, सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ पर स्टूडियो में है, और हमारे साथ अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इसी मुद्दे पर जुड़ रहे हैं। आखिरकार देखिए सुधांशु जी, इतनी देर का इंतजार हुआ, वो बैठे रहे, अड़े रहे, और दिल्ली पुलिस झुकी है, FIR दर्ज आखिरकार उनको करनी पड़ी अज्ञात लोगों के खिलाफ। भाई जांच हो रही थी, FIR दर्ज करने में क्या दिक्कत है?
5: देखिए जो कुछ राहुल गांधी जी कर रहे थे पूरे देश को समझना चाहिए। जब इस विषय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके कमेटी बना दी, तो उससे ज्यादा कौन समझदार हो गया भाई? मतलब वो अपने सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मान रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं मानेंगे साहब, हम शहजादे हैं, हम फर्जंद अंजुमन साहब आलम वली अहद सल्तनत हैं, हम जो है जलवा अफरोज होते हैं, वो आके बैठते थोड़े बैठ के कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट हो कुछ भी हो, मेरे को तो करना पड़ेगा। अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, यानी अपने को पहले संसद को नहीं मानेंगे, हम वंदे मातरम आधा गाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित कर दी तो, और जो व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष है और ये ख्वाब सजोता है कि कभी भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे, उनको ये नहीं पता कि अगर क्राइम ब्रांच को मैटर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो ज्यादा बड़ा होता है एक सामान्य पुलिस थाने नॉर्मल पुलिस से, उसके बाद वो कह रहे हैं कि साहब नहीं, हमें तो नॉर्मल पुलिस थाने में चाहिए। यानी कुछ कुछ वैसी बात हो गई कि अगर संसद में प्रस्ताव पारित हो जाए तो नहीं, मुझे विधानसभा में भी कुछ चाहिए। और मूल कारण क्या था अंजना जी, मूल कारण जानते क्या था? आज केरल में, क्योंकि भारत की पहली सरकार है जिसने की संसद से पारित होने वाला वंदे मातरम बिल्कुल नहीं गाया 15 अगस्त को, क्योंकि मुस्लिम लीग के साथ इनकी सरकार है, और आज भारतीय जनता पार्टी ने केरल में केरल बंद का आयोजन किया था, उससे डाइवर्जन करने के लिए, क्योंकि मुस्लिम लीग को कवर फायर देने के लिए, जहां से खुद सांसद मुस्लिम लीग के रहमो करम पे आते हैं, इसलिए वही चीज जो ये बार बार कह रहे थे, एक ड्रामा थिएट्रिक्स करने का इन्होंने दिखाया है। और जिस प्रकार के अनेक अनेक प्रकार के स्वांग ये दिखाते हैं, अब देश ये तय करें कि राहुल गांधी जी नादान है या शैतान है।
4: सुधांशु जी, आप ही ने जलवे की बात की, तो जलवा तो ऐसे ही बनता है कि सुबह में FIR दर्ज नहीं करेंगे, दोपहर में जब समझ में आया कि अब तो वो हिलने वाले नहीं है, तो फिर शाम होते होते FIR दर्ज होती है, तो जलवा तो आप ही लोग बना रहे हो।
5: बहुत अच्छा आपने सवाल किया, मैं इंतजार कर रहा था इस सवाल का। ये जलवा बनाने के चक्कर में तो सब कुछ हो रहा है। मैं पूछ रहा हूं, संसद में थे तो सारा विपक्ष कहता था ना, बोलो इंडिया एयरलाइंस का कौन व्यक्ति है साथ में? कोई इंडिया एयरलाइंस का नहीं है। जलवा मुझे अपना दिखाना है और इंडिया एयरलाइंस का हलवा बना देना है। ये सारे इंडिया एयरलाइंस वालों को अपनी अलग अलग चूल्हे पे अलग अलग रोटी सेकनी है। संसद में मैंने एक नहीं कई बार बोला टीवी पर कि अगर ये ईमानदारी से छात्र हितों की बात करना चाहते हैं, इंडिया एयरलाइंस के लेटर हेड पे लिख के दें कि हम करना चाहते ना, आज के इस आंदोलन में बताओ भैया, मैं जी से पूछता हूं, इंडिया लाइंस का कोई दूसरा ना जलवा तो अपना दिखाना है, क्योंकि छात्र हितों से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ अपना जलवा बनाना है, छात्रों को मोहरा बनाना है।
4: चलिए इस पर जवाब दीजिए, सिर्फ अपनी सियासत को चमकाना है, छात्रों को मोहरा बनाना है। जांच का ऐलान पहले से कर दिया गया है, कमिटी बना दी गई है, तो फिर इसकी क्या जरूरत थी?
6: 50-50 कोस दूर जब भारतीय जनता पार्टी का नेता चिल्लाता है तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व कहता है कि चुपचाप हो जा, नहीं तो राहुल गांधी आ जाएगा। यह भय अच्छा है सुधांशु जी, जो आपके चेहरे पर, आपके मन मस्तिष्क पर समूचे
5: राहुल गांधी गब्बर सिंह है,
6: भारतीय जनता पार्टी
5: पर राहुल गांधी गब्बर सिंह,
6: ये गब्बर सिंह की तो सत्ता में
5: जो भी 50-50 को
6: सत्ता में आसीन है गब्बर सिंह, तो गब्बर सिंह टैक्स जो लगाता है। अब देखिए, वो एक बच्चा गुहार लगा रहा है, दर बदर की ठोकरें खा रहा है कि सरकार आपने पैलेट गन मारकर मुझे अंधा कर दिया, सैकड़ों छात्रों को, लाखों छात्रों को कील और कांटे की लाठियों से मारा, ठोकरों में कुचला गया, तो आप हमें न्याय दे दीजिए। 14 अगस्त से थाने थाने जा रहा था, उसकी गुहार नहीं सुनी गई। 18 अगस्त को सर्वोच्च अदालत में एफिडेविट फाइल करती है दिल्ली की पुलिस, अमित शाह जी की पुलिस, अमित शाह जी वो कहते हैं 18 अगस्त को कि हमने एक्सेसिव फोर्स यूज नहीं किया। किरण रिजिजू इस देश के मंत्री, वो कहते हैं कि कोई गोली नहीं चलाई, तो राहुल गांधी ने पूछा फिर वो गोली कैसे लगी, 200 छर्रे उसके शरीर में हैं, 200 छर्रों का क्या उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए, उसको आंखों से अंधा कर दिया, 3 छर्रे उसके हृदय के बिल्कुल पास है, क्या कसूर था उस मासूम का? उसका कसूर सिर्फ इतना था कि प्रधानमंत्री जी मेरे उज्जवल भविष्य को रौंदिए मत, ये भर्ती और प्रवेश परीक्षा जो लीक हो रही है उसका न्याय कीजिए प्रधानमंत्री जी। क्या न्याय किया आपने? संजीव मुखिया की क्लीन चिट, देश के लोगों गौर से सुनिए, जिस दिन ये कानून लेकर आए पार्लियामेंट में उस दिन संजीव मुखिया को क्लीन चिट दे दी। इनकी सत्ता की सरपरस्ती में 2 विधायक है जो पेपर लीक के आरोपी है, 2 विधायक, इनका एक मंत्री उत्तर प्रदेश का खुले आम मंच पर चढ़कर कहता है कि आओ सैकड़ों छात्रों, तुम्हारी भर्ती करा दूंगा, तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, मेरे पास बेदी लाल है। क्या किया प्रधानमंत्री जी उसका? कुछ तो न्याय करना पड़ेगा। मतलब मणिपुर में निर्वस्त्र करके हमारी बेटियों को घुमाया जाएगा, तिल तिल कर तड़पाया जाएगा, आप उसकी सुध नहीं लेंगे? हमारे किसान भाइयों को करनाल से लेकर दिल्ली तक सिर फाड़कर लहूलुहान कर देंगे। क्यों? सिर्फ वो अपना हक मांग रहे थे कि 3 काले कानून प्रधानमंत्री जी वापिस ले लो। जिस अमेरिकी शरद मराठे
4: रिपोर्टर के पास चलता है, हमारे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं। अमित, जरा बताइए, क्या अज्ञात लोगों के खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है, और क्या इसके बाद अब ये धरना खत्म करेंगे राहुल गांधी? क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर? आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही है।
7: आपको मिल रही हो अगर
4: अब ठीक मिल रही
7: है। देखिए, इस वक्त प्रदर्शन यहाँ लगातार चल रहा है। राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर राहुल गांधी हैं। ये हमें बताया गया है कि FIR दर्ज कर ली गई है, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ ये FIR दर्ज हुई है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उससे स्पष्ट है कि जब तक हार्ड कॉपी उस FIR की साहिल के हाथ में नहीं दे दी जाती है या साहिल के वकील के हाथ में नहीं दे दी जाती है, तब तक दरवाजा खुलेगा नहीं, राहुल गांधी बाहर आएंगे नहीं। तो जब तक हार्ड कॉपी उस FIR की हैंडओवर नहीं होगी एडवोकेट को, तब तक आपको पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर राहुल गांधी और स्ट्रीट थाने के बाहर ये प्रदर्शनकारी दिखाई देंगे। बाहर बहुत सारी बैरिकेडिंग दोनों तरफ की गई है ताकि ज्यादा संख्या में यहाँ लोग ना पहुंचे, क्योंकि ये शाम का समय भी, अशोका रोड का पूरा जंक्शन आपको पता है अंजना की, कितना इस वक्त जाम रहता है, और उसके लिहाज से भी यहाँ बंदोबस्त किया गया है। बसें सुबह से जरूर खड़ी है डिटेंशन की अगर जरूरत पड़े तो, लेकिन अभी तक पुलिस ने अनाउंसमेंट किया है सड़क को खाली करने के लिए, लेकिन डिटेन करने को लेके कोई एक्शन नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर में जब वो हार्ड कॉपी हैंडओवर हो जाएगी तो राहुल गांधी बाहर आएंगे और प्रदर्शनकारियों के साथ, अपने समर्थकों के साथ यहां से आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे।
4: धन्यवाद आपका अमित तमाम जानकारी के लिए। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी वहां से बता रहे थे, अभी हार्ड कॉपी आने के बाद शायद राहुल गांधी वहां से निकले। लेकिन सुधांशु जी, अब ये जो एक वक्त पर छवि थी आपकी सरकार की, बोला जाता था हमारे इस्तीफे नहीं होते हैं, कहा जाता था कि हम किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। अब विपक्ष को यह समझ में आ रहा है कि वो आप पर दबाव बनाएंगे और उस दबाव में आपको उनकी बात माननी पड़ेगी और उसमें उनको सफलता मिल रही है। मैं क्या गलत कह रही हूं?
5: विपक्ष को जो सफलता मिल रही है मैं उसको बताना चाहता हूं। दर्शकों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। विपक्ष के अंदर एक छटपटाहट, आप उदाहरण देखिए, जो लोग कहते हैं एंटी बीजेपी का माहौल, तो बताइए तमिलनाडु में तो टीवी के आ गई, कांग्रेस को तो किसी ने नहीं पूछा। आइए दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी और बिहार में प्रशांत किशोर। इसका मतलब जिसको आप सो कॉल्ड एंटी बीजेपी सेंटीमेंट कह रहे हैं उन लोगों का आज के विपक्ष पर कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए इनको कहीं सफलता नहीं मिल रही है, उस छटपटाहट के चलते हुए आ रहे हैं। और ये जो स्वांग रचाते हैं उसका प्रमाण, चलिए रांची में नहीं गए, वो तो सबको पता है कि रांची के छात्रों की गूंज के लिए राहुल गांधी जी के कान में तेल आ जाता है। मगर ये बताइए पंजाब में तो आपकी सरकार नहीं, अब तो आपसे आपका यानी आम आदमी पार्टी से गठबंधन टूट चुका है, और पंजाब तो हाईकोर्ट ने कह दिया कि पेपर लीक हुआ था और पंजाब सरकार ने विधानसभा में झूठ बोला। अरे साहब, हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद एक शब्द नहीं, चंडीगढ़ में जा नहीं रही है और आकर यहां फुटेज खा रहे हैं। और मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं 24/7 वाले न्यूज चैनल नहीं होते तो राहुल गांधी जी आके नहीं बैठे होते, क्योंकि उनको फिर मैं कह रहा हूं फुटेज खाना था ताकि केरल की कवरेज को दबाया जा सके। और एक और संभावना हो सकती है, आने वाले एक आध हफ्ते में वो विदेश जाने वाले हों तो उससे पहले अपना जितना होमवर्क है सब कर लो ताकि सब इतना दिख जाए, कोई फर्क ना पड़े इसलिए। और मैं एक टेक्निकल बात भी कहता हूं। उन्होंने कहा पैलेट गन, हमारे भाई अभय दुबे जी कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ताओं में से एक हैं, वो कह रहे हैं 200 छर्रे लगे। अब मैं दर्शकों से कहता हूं पैलेट गन अगर चलाई जाती है तो ये छितरा के जाती है, जब छितरा के जाती है तो किसी एक व्यक्ति को नहीं लगती है, वो दर्जनों लोगों को लगेगी। अगर 2-4 फायर भी होंगे तो कम से कम 25-30-40 लोगों को लगेगी। ये कहना कि एक ही व्यक्ति को लगी है जांच का विषय, उस बच्चे के साथ हमारा नहीं, हम वही कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं। इसीलिए अब मैं एक बात ये जानते कैसा है, कहे कि वाटर कैनन चलिए एक ही व्यक्ति भीगा, ना अगल वाला भीगा ना बगल वाला भीगा, ये बात किसी हाँ, मगर ये वैसे ही व्यक्ति को समझ में आ सकती है जिसकी बुद्धि ऐसी हो जिसको दिमागी नक्सल कहते हैं, उसे समझ में आ सकता है कि वाटर कैनन चली एक ही व्यक्ति भीगा और पैलेट गन के छर्रे छितरा के गए, एक ही दो व्यक्ति को लगे, बाकी किसी को तो लगे ही नहीं। इसीलिए ये जांच का विषय और ये गंभीर बात हो सकती है कि वो किन परिस्थितियों में कैसे लगी, वो पैलेट गन ही थी। परंतु ये कहना कि सरकार ने चलाई ये इलॉजिकल है, क्योंकि अगर 4 पैलेट गन भी चलेंगी तो 40-50 से कम लोगों के हाथ पांव में कहीं ना कहीं लगेगा। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि केवल 2 या 1 लोगों के लगे।
4: जवाब दीजिए इसका अभय जी।
6: यही तो लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। आज मुझे गर्व है मेरे नेता पर, जननायक राहुल गांधी जी ने दूसरी बार सरकार को इस कम समय में परास्त किया और उनके साथ उनका जो साहस है वो जेंजी है। दृढ़ता से जेंजी सड़कों पर आया और बाध्य कर दिया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को। इसके बाद प्रधानमंत्री की बारी है, करनी पड़ी ना FIR। अरे यही तो राहुल गांधी कह रहे थे जो आप बात कह रहे हैं, कि अगर आप कह रहे हैं किसी ने नहीं चलाई तो सफदरजंग हॉस्पिटल की जो MLC है उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कितनी पैलेट गन्स लगी, बाकायदा डायग्राम बनाकर बताया है।
4: बिल्कुल, तो मेडिकल रिपोर्ट तो हमने शख्स की हमने भी दिखाई चलाई
6: और मैं
4: हमने भी दिखाई। एक बार पवन खेड़ा आपकी पार्टी की तरफ से क्या आरोप लगा रहे हैं आइए आपको दिखा देते हैं।
8: 20 दिन 30 दिन 50 दिन 6 महीना वहीं बैठूंगा। इंडिविजुअल FIR फॉर दिस बुलेट फॉर दिस पैलेट इंजरी। ओके भैया, वेरी सिंपल, यू आर नॉट डूइंग इट
9: सर।
8: ओके, 20 दिन 30 दिन 50 दिन 6 महीना वहीं बैठूंगा। इट्स लीगल, ही इज रिक्वेस्टिंग एन FIR।
4: तो ये अंदर की तस्वीरें थी जब राहुल गांधी को आप देख रहे थे कि वो वहां पर जो पुलिस अधिकारी थे उनसे कह रहे थे कि हम 30 दिन भी बैठेंगे, जितने दिन भी बैठना होगा बैठेंगे। अभय जी जल्दी से छोटा कमेंट फिर मैं सुधांशु जी।
6: पूरे देश के लोगों देखो नेता प्रतिपक्ष का साहस, केंद्रीय गृह मंत्रालय के दबाव में आदेश के बाद भी दिल्ली की पुलिस को झुकना पड़ा और FIR करनी पड़ी। नहीं चाहती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और गृह मंत्री की एफआईआर दर्ज हो। एफआईआर दर्ज होने का अर्थ पाप पर से पर्दा उठना, ये
4: तो ना करने का एक समय लाभ है जी। ना करने का ऑर्डर ऊपर से आया होगा तो वो भी तो आया ही होगा ना कि भाई कर लो एफआईआर।
6: राहुल गांधी जी ने चेतावनी दे दी 6 महीने नहीं उठूंगा, और 6 महीने राहुल गांधी के नहीं उठने का अर्थ करोड़ों देश के लोग वापिस वहां पर इकट्ठा हो जाते, ये भय अब सताने लगा है। ये भय अच्छा है प्रधानमंत्री जी, ये कह रहे थे सर्वोच्च अदालत की कमेटी बनी, सर्वोच्च अदालत कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है। सर्वोच्च अदालत को तो जो आप जांच करोगे उसी पर भरोसा करना पड़ेगा, तो आप अगर सर्वोच्च अदालत की आंखों में धूल झोंकोगे तो वो क्या निर्णय ले पाएगी। इसलिए सड़कों से सदन तक मुझे गर्व है राहुल गांधी जी।
4: राहुल गांधी जब बोले सुधांशु जी कि अब तो मैं यहीं बैठूंगा चाहे 30 दिन हो जितने दिन हो, उसके बाद दबाव में आकर देखिए एफआईआर तो करनी पड़ी ना।
5: देखिए इसी को दिमागी नक्सल कहें या दिमागी राहुल कहें, जो ये कहने की कोशिश करे कि सर्वोच्च न्यायालय के मॉनिटरिंग में कोई जांच चल रही है तो उसमें तो सर्वोच्च न्यायालय कुछ कर ही नहीं सकता, ये समझने की जरूरत है। अभी विद्वान प्रवक्ता महोदय क्या बोले, और देखिए राहुल गांधी जी कैसे बैठे हुए थे। अभय जी आपने वो फोटो देखी क्या, जलवाए जलाल से यूं टांग आगे करके

0: टांग आगे करके बैठे थे, अब बगल की दोनों सीटें खाली थी ना। 73 साल के सलमान खुर्शीद पीछे खड़े थे, केएल शर्मा, किशोरीलाल शर्मा, जो उनके स्वर्गीय पिताजी के जमाने से काम करते थे, राहुल गांधी जी इतने इतने रहे होंगे, वो खड़े हुए थे। अधीर रंजन चौधरी जो पिछली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थे वो खड़े थे। कुमारी शैलजा वो भी 63 साल की, वो खड़ी थी इस 56 साल के पक्की दाढ़ी वाले सत्ता के लोभ में लटके हुए नौजवान ने भटके हुए नौजवानों के ऊपर सियासत करने के लिए किसी से नहीं कहा कि तुम आके बैठ जाओ। अरे तुम्हें भी खड़े रहना चाहिए था। और इसमें से जेन जी कौन है? यही है। इसीलिए बच्चे भी बड़ों से सीख कर ये चीजें सीखते हैं। जब इस ढंग की बदतमीजियां नेतृत्व तो करेगा तो फिर आगे जाके देश का क्या हश्र होगा, ये बात समझ में आती है। और दूसरी बात, सही बात है भाई, वो बहुत ही अजीब खपतुल हवास टाइप के आदमी है। वो प्रधानमंत्री आवास के पास जाके लौट सकते हैं, वो कोई भी हरकत कर सकते हैं, वो आके बैठ सकते हैं, ठीक है भाई, सही बात है। वो तो पता नहीं बैठ जाएंगे और उसके बाद वो कुछ करेंगे नहीं करेंगे, बचे जितनी देर तक उनका तय होगा, ऊपर से जितनी चाबी भरी गई होगी उधर से कि उतनी देर तक बैठना है, तो हो सकता है शाम तक इसलिए बैठना हो कि जब वहां पर सुबेरा हो तो उनको दिखाई पड़ जाए टीवी पर कि बैठा हुआ है कोई विदेश में बैठे, हो सकता है बहुत सारे ओवरसीज कांग्रेस वाले लोग हों। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं साफ दिखाई पड़ रहा है मेरे इंडी अलायंस वाले का कोई जवाब नहीं, और अपने पार्टी के नेताओं के साथ क्या बिहेवियर किया है वो दिखाई पड़ता है। और आप सोचिए अंदर जाके पुलिस वालों से बेहुदगी के साथ लड़ रहे हैं और उसके बाद ये कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी से क्या होता है। सोचिए, दर्शकों से कहता हूं सोचिए, ऐसे दिमाग के लोग अगर ये कहते हैं कि ये देश चलाने का प्रयास करते हैं तो सोचिए देश कितने बड़े खतरे में।
1: जवाब दीजिए
2: अंजना जी। सुधांशु जी दो नाम भूल गए, इन्होंने कहा सलमान खुर्शीद खड़े थे, शैलजा जी खड़ी थी, अधीर रंजन चौधरी जी खड़े थे, दो लोग और खड़े थे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। दोनों लोग पूरे समय खड़े होकर टेलीविजन देख रहे थे, आज तक वो देख रहे थे कि कैसे कैसे दबा दिया जाए राहुल गांधी को। वो लोहा मान गए राहुल गांधी जी का, डर के मारे थर थर कांप के खड़े थे और आखिरी में एफआईआर करनी पड़ी उनको। देखिए कौन बैठा है, आप कह रहे थे राहुल गांधी के पास कौन बैठा है, वो जो न्याय की गुहार लगा रहा है साहिल, वो बैठा है, उसकी मां बैठी है हृदय में वेदना लेकर, पीड़ा लेकर कि एक नौजवान बच्चा मेरा जो जीवन भर तक एक आंख से नहीं देख पाएगा, इस सत्ता की सरपरस्ती ने उसको पैलेट गन का अंधियार जीवन भर के लिए भर दिया है। सुधांशु त्रिवेदी जी, घर पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अपने बच्चों की आंखों में आंखें डालकर देखना कि क्या पाप उनकी सत्ता की सरपरस्ती में किया है। वो तो हृदय में पीड़ा लेकर गुहार लेकर आए थे प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी न्याय कर दीजिए, हमारे और भारत के भविष्य का सवाल है। राहुल गांधी ये लड़ाई इसीलिए लड़ रहा है। आपने जिक्र किया झारखंड का, झारखंड में राहुल गांधी जी ने कहा मुख्यमंत्री जी को और निर्णय भी हो गया, लेकिन झारखंड की पीड़ा जानते हैं असली क्या है? आपकी सीबीआई आपके पाप पर पर्दा डालकर बैठी है वहां पर। बाबूलाल मरांडी के समय झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का इतना जघन्य पाप और अपराध हुआ है, उसका उस घोटाले की जब सीबीआई को जांच सौंपी हमने 13-14 में, आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ। क्या हुआ बताइए उस निर्णय का? तो आपकी सत्ता की सरपरस्ती में जब हो तब तो सब ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में जो बिहार की पब्लिक सर्विस कमीशन का आरोपी अपराधी एजु टेस्ट कंपनी का मालिक विनीत आर्य, गुजरात का आदमी, बिहार की जेल से छूटा क्योंकि पेपर घोटाले का आरोपी था, उसको उत्तर प्रदेश में ठेका दे दिया आपने, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा है कि जो ब्लैकलिस्टेड कंपनियां है प्रधानमंत्री जी उनकी लिस्ट जारी करो। और कब कहा ये दिसंबर 2025 की रिपोर्ट आई है पार्लियामेंट्री कमेटी की, उन्होंने कहा कि अपना एनुअल ऑडिटेड बैलेंस शीट मत दीजिए सिर्फ एनटीए, आप पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस दीजिए ताकि पार्लियामेंट में उसकी जांच हो पाए। आपने नहीं किया प्रधानमंत्री जी, जितनी सिफारिशें उस कमेटी की थी एक नहीं मानी, तो बच्चों को न्याय मिलेगा कैसे? राहुल गांधी जी शोक से सड़कों पर नहीं आए, वेदना हृदय में पीड़ा है, और ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है। आप साहस देखिए मेरे नेता का, आप देखिए उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति छात्रों के लिए लड़ने की, कि उन्होंने कहा जितने समय तक तुम एफआईआर नहीं करोगे, अभी तक तो कह रहे थे कि एफआईआर कैसे करें क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट की जांच कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी हो गई, पहले इनके नेता कह रहे थे पहले ही एफआईआर हो गई। अरे साहब स्पेसिफिक एफआईआर, उसको पैलेट गन लगी है, और भी लो छात्रों को लगी होगी, वो भी सामने आएंगे, बहुत सारे छात्र पीड़ित हैं, घायल हैं, AK-47 तक चला दिया आपने,
1: ठीक है,
2: कैसी सरकार है ये, अपने छात्रों को आतंकवादी,
1: और 30 छात्रों के मुद्दे पर क्या विपक्ष आपको पूरी तरह से हर राज्य में घेरने में कामयाब नहीं हो रहा है?
2: 30 पश्चिम

0: 30 सेना की कंपनियां एयरलिफ्ट करके,
1: अरे लातिया तो चली थी झारखंड में भी, लेकिन आपके मुंह से नहीं निकलेगा
0: मेरे अंजना जी,
1: जैसे इनके मुंह से जंतर मंतर नहीं निकलेगा। अरे छोड़िए सर, लाइट ऑफ कर करके विधानसभा के बाहर स्टेडियम में लाइट काट दी बच्चों की, अगर ये जंतर मंतर पे होता तो आज आसमान।
0: राहुल गांधी जी ने कहा एक लाठी भी चलाओगे तो मैं आलोचना।
1: बोलने से क्या होता है, मारी लाठी मारी लाठी।
0: राहुल गांधी
1: झारखंड के बच्चों पर कोई नहीं बोलेगा ना नहीं बनाएगा।
0: ये राजनीतिक बात नहीं है,
1: राजनीतिक नहीं है,
0: राजनीतिक तरीके से उन्होंने और निर्णय कराया। आप जानती है झारखंड में निर्णय राहुल गांधी जी ने कराया,
1: लेकिन लाठी चली करके बच्चों को मारा गया,
0: चलनी चाहिए।
1: मारा गया बच्चों,
0: मैं स्वीकार करता हूं।
1: तो जब जब बच्चों के मारने की बात करते हैं तो फिर झारखंड की भी बात
0: कीजिए।
1: नहीं नहीं, बोलिए झारखंड का नाम, बोलिए रांची में मारा।
0: राहुल गांधी ने नाम लिया,
1: रांची में मारा, बोलिए
0: प्रधानमंत्री जी ने तो शब्द तक नहीं बोले। आप मुझे बताइए
1: सुधांशु जी, लेकिन विपक्ष ने आपको घेर दिया है लगभग हर राज्य में स्टूडेंट्स के मुद्दे पर, राहुल गांधी यहाँ घेर रहे
2: हैं। अब मैं जवाब देता हूँ, पहले ये बोल दूं, देखिए जंतर मंतर के ऊपर अंजना जी आपके और तमाम चैनलों में खूब डिबेट हुई, हम लोगों से भी बहुत क्रॉस क्वेश्चन किए गए, ठीक है, रांची पर भी डिबेट हुई। पर सारे दर्शकों से कहता हूं कान खोल के सुनिए, जो दोनों पे डिबेट करे वो तो गोदी मीडिया है, और इनके जो यूट्यूबर स्वतंत्र मीडिया है एक रिपोर्टिंग नहीं रांची के ऊपर। चुप। राम मंदिर के ऊपर आप लोगों और आपके चैनलों ने भी खूब हमसे सवाल किया, छह गज की जवानों के साथ उन यूट्यूबर्स ने किया, वक्त बोर्ड पे चुप,
0: चंदा चोरी।
2: अब सुनिए, वो तो रहा हूं वक्त बोर्ड पे चुप,
0: चोरी पे ना।
2: हाँ, राम मंदिर के विषय में। और सुनो भाई, अब दूसरी बात और सुनो, मणिपुर के ऊपर खूब हम लोगों की ग्रिलिंग हुई, मगर जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे मणिपुर पे, संदेश खाली पे चुप, ये है इनका डरो मत। ऐसे डरा के रखा हुआ अपने लोगों को, या कहूं पेरोल पे रखा हुआ है कि वो ये कहेंगे।
3: शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उसके बाद मेरी कंप्लेंट दर्ज कराई है, और साथ ही बिना किसी मीडिया कवरेज के भी पिछले एक महीने से उनकी टीम मेरे कक्ष में थी, और लगातार ये भी हर तरफी से तरफ कॉल करते और मेरी हेल्थ अपडेट लेते रहते थे, और ये सब बिना किसी मीडिया कवरेज के था, मतलब कोई प्लान नहीं था मीडिया के सामने आने का। लेकिन जब कल परसों मेरी इनसे बात हुई, इनका कॉल आया कि हेल्थ अपडेट क्या है, तो मैंने बताया कि मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही, तो सडन ही से कल मिलते हैं और कल मैं आपकी एफआईआर करवाने जाऊंगा। तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जितनी इन्होंने मेरी हेल्प करी, और मैं साथ ही भारतीय जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। जब मैं बैठ बैठा उन्होंने मेरे लिए दुआई करी कि मैं आज उनके सामने 200 पैलेट छोड़ने के बाद भी मेरे शरीर में मैं उनके सामने सीधा खड़ा हूं, और उनकी दुआ के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मेरी आप ही बहुत जल्द आ जाए, मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करूंगा, और उनकी दुआ बहुत काम आएगी।
4: साहिल, जीत किसकी हुई, आप क्या मानते हैं, जीत आपके संघर्ष,
3: जीत न्याय की हुई है, ये एफआईआर न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है। पर मेरे को खुशी से ज्यादा दुख भी है कि एलओपी के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट दिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ, मेरे शरीर में 200 छपरे, उसके बाद भी मेरी एफआईआर को 8 घंटे में लिया गया, और शायद ये ली भी ना जाती अगर एलओपी मेरा साथ ना देते। 14 अगस्त से मैं एफआईआर के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी एफआईआर ली गई।
4: उम्मीद थी आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी जब ये कल बात हुई और आप यहाँ आए, सुबह जो पुलिस ने कहा उसके बाद
3: नहीं, मेरे को विश्वास था जी आलोक के तो कंप्लेंट तो होनी है, ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में। तो मैं साथ ही एम्स के डॉक्टर्स का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, अपने जब मैं उनके पास जाता तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस शेयर भी करता हूँ कि जब भी मैं उनके पास जाता तो वो कहते कि वी आर प्राउड ऑफ यू, जिससे सुन के मेरा हौसला और बढ़ता, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ।
4: राहुल जी आप कुछ कहेंगे, लंबा इंतजार,
5: मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगी जो इन्होंने हमारी इतनी मदद करी, हमें 8 घंटे से यहाँ बिठा रखा, ये नहीं होते तो हम आपको तो भगा ही देते, ये गई थी हमारे साथ
4: इन्होंने काम किया है,
5: इन्होंने करा, 14 तारीख से घूम रहे हैं हम, 14 तारीख को हमारे को 4 थानों में हटाया, फिर क्राइम ब्रांच में भेजा, ये हमारे साथ थे जब भी हमारी एफ आई आर मिली थी, आज ये आए हैं। तो
4: थैंक यू वेरी मच,
6: अभी कहा शुरुआत हुई है, ये न्याय का पहला कदम है, केस लॉज हुआ है। देखिए कितना दिन हो गया टोटल, जब से आपको ये गोली लगी
3: 20 जुलाई को, एक महीना हो गया,
6: छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है। आग से इनको दिखाई नहीं देता है, तीन चार झगड़े दिल के पास है, साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11:30 हम यहाँ आए, एक महीने से ये घूम रहे
7: हैं,
6: 11:30 आए, अभी 6:30 बज गए हैं,
4: पौने सात हो गए।
6: तब जाके FIR फाइल की। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है, और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल ओके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल FIR दिया। तो आप समझ जाइए FIR रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे FIR करना, वो वाले भी चाहते थे FIR करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। धन्यवाद
4: आपके राहुल।
1: सबसे पहले आपने साहिल को जो सुना, जो ये कह रहे थे कि इंसाफ के लिए वो लंबे वक्त से चक्कर काट रहे थे और उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, LOP के पास गए और फिर राहुल गांधी ने उनकी मदद की और आखिरकार ये FIR दर्ज हुई है। और उनका कहना था कि सुधांशु जी LOP को भी 8 घंटे बैठना पड़ा तब FIR हुई, क्या ये सेटबैक आफ्टर सेटबैक नहीं है?
2: बताना चाह रहा हूँ, देखिए पहली बात जो मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, जो मैं कह रहा था सो कॉल्ड मीडिया अब पता नहीं इनके इशारे पे चलता है, पैरोल पे चलता है, प्रेरित होकर चलता है, जैसा कांग्रेस कहती उठ जा बैठ गई, दाएं मुड़ जा दाएं मुड़ गई। अब आता हूं इस विषय के ऊपर। देखिए अभी इन्होंने क्या कहा कि जब अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR है, तो मैं आपके लाखों दर्शकों से कहूंगा कि अब अज्ञात लोगों में से किसने उस बच्चे के ऊपर को जो चोट लगी साहिल को, वो कैसे लगी है, कैसे आइडेंटिफाई होगा? आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में फेशियल रिकॉग्निशन से भाई भीड़ में देखा जाएगा कि वह लड़का कहां खड़ा था, उसके इर्द गिर्द कौन कौन लोग खड़े थे, और अगर वहां कोई गतिविधि हुई तो किसकी हुई। और यही लोग जाकर पिटीशन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि फेशियल रिकॉग्निशन नहीं पता लगना चाहिए, ये ज्ञात को अज्ञात रखने के लिए कौन षड्यंत्र कर रहा है। इनके खुद वो कौन है, रहीम जो है वो कर्नाटक के राज्यसभा सांसद, वो भी पिटीशनर हैं कांग्रेस के। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं इसको षड्यंत्र को समझिए। और रही बात इसकी कि राहुल गांधी जी के लिए कई बार होता है भाई, बाल हटके आगे कई बार झुकना पड़ता है। अब कोई आके अब सोचिए जैसे सड़क पर लोटपोट हो रहे थे, क्या तो बचपन में कोई बालक ही होता है, मेरी बात नहीं पूरी हुई, मैं नहीं आ पाया प्रधानमंत्री आवास, तो सड़क पर लोटपोट होऊंगा अगर मैं यहां आ गया। और फिर मैं कह रहा हूं पुनः, अभय जी ये जो दृश्य दिख रहा है ना, सारा प्रपंच किस लिए किया जा रहा है, इनका छात्र हितों से कोई लेना देना नहीं है। ये है कि पहले परिवार पूरी तरीके से सिक्योर हो जाए, पहले संसद में पहुंची माता जी, फिर पहुंच गए भैया जी, फिर पहुंच गए अंकल KL शर्मा जी, और फिर पहुंच गई बहन जी, मोहरा बनेगा जेन जी, और बाकी सब पीछे खड़े रहेंगे जी। ये हकीकत है,
1: ठीक है।
2: सब जाकर अंदर बैठ गए, अपनी सत्ता बनी रहे परिवार की, परिवार का एक एक सदस्य और एक एक विश्वस्त सब आकर बैठ जाए, भैया जी से लेके बहन जी तक, और जेन जी को मोहरा बनाकर पूरे देश में एक विप्लवकारी अराजक वातावरण बनाने का जिसकी प्रेरणा से चल रहा है, दर्शक समझ सकते हैं।
1: ये राजनीतिक आरोप है, लेकिन राहुल जी पहुंच गए साहिल जी के साथ और वहां पर FIR हो गई है। जल्दी से दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल गौतम और अमित भारद्वाज। अमित जल्दी से एक रिएक्शन वहां से, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी इसको बड़ी जीत बना रही बता रही है, और FIR एफआईआर की कॉपी भी आ गई आज तक के पास। हम ये एफआईआर आपको दिखा रहे हैं जिसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है और लगभग 8 घंटे राहुल गांधी साहिल के साथ वहां पर मौजूद रहे और उसके बाद ये जाकर एफआईआर दर्ज हुई है मंदिर मार्ग थाने में। एफआईआर की कॉपी सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं अमित, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि आखिरकार मानना पड़ा और उन्होंने ये भी कहा कि भाई मंदिर मार्ग थाने में देश की राजधानी में सबसे सेंट्रल इलाके में एक एफआईआर दर्ज कराने में इतनी दिक्कत होती है तो बाकी भारत में क्या होगा। अमित,
8: बिल्कुल अंजना, देखिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस मामले को अपनी बड़ी जीत बताने की कोशिश करेगी। मैं इस वक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के ठीक बाहर हूं, दरवाजा खुल चुका है, राहुल गांधी अंदर हैं, एफआईआर दर्ज हो गई है, एफआईआर की कॉपी हैंडओवर कर दी गई है और उत्साह इस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं में है क्योंकि जब ये सुबह आए थे तब इन्हें स्पष्ट नहीं था कि क्या ये एफआईआर दर्ज हो पाएगी या नहीं और लंबे लगभग 8 घंटे तक नेता प्रतिपक्ष जब यहां खड़े रहे साहिल के साथ उसके बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है तो निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा हुआ है। एनएसयूआई के भी छात्र हैं जो बिल्कुल दरवाजों पे चढ़ के चारों तरफ लगातार नारे लगा रहे थे, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और सब के अंदर उत्साह इस वक्त भरा हुआ है क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है और राहुल गांधी किसी भी टाइम अब सचिन के साथ बाहर आते हुए आपको दिखाई देंगे।
9: मौजूद आप देखिए कि कार्यकर्ता कितने
8: सांसद यहां पहुंचे हुए थे उनके अपने नेता के समर्थन में और ये और निश्चित रूप से नैरेटिव वॉर में कांग्रेस पार्टी इसको प्ले आउट करेगी कि उनके लिए जीत है क्योंकि पहले अप्रत्याशित रूप से 3 घंटे का धरना प्रदर्शन प्रधानमंत्री के घर के बाहर और देखिए हलचल शुरू हो गई है अंजना। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष अब बाहर आ रहे हैं साहिल को लेकर और जो एफआईआर दर्ज हुई है वो कॉपी हमारे पास है जिसको रजिस्टर किया गया तो आज की तारीख में एफआईआर दर्ज हुई है और बाहर नारे लग रहे हैं राहुल गांधी के।
1: कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त नारे लगा रहे हैं और वहां पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी मौजूद हैं, साहिल को आप देख ही रहे थे जिनके को पैलेट गन की चोटों के इस पूरे मामले में वहां पर आखिरकार मंदिर मार्ग थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, सुधांशु त्रिवेदी जी और अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश अखबार की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
13: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: Hey Maya, let's go.
4: The new BE6 Sportage.
3: Hey Maya, let's go.
4: The new BE6 Sportage.
5: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
6: बिजली का बिल पेड
7: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
8: कैसे?
7: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
8: माही वे।
9: पापा।
10: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
11: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
10: छक्का?
11: सब कैशलेस हो गया
10: है।
11: हाँ
10: ला, ला भाई मेरा बैट।
11: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
10: अभी तो चार्ज हुआ यार।
11: बैट किसका है?
12: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
1: धनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: पैसे ज्यादा कभी थे नहीं, लेकिन फिर भी पैसे की भूख इतनी थी। न्यूज़पेपर डिलीवरी करता था, फिर कुछ दुकानों में सफाई करता था, फिर दुकान में सेल्समैन बना। कॉलेज के सालों में एक बेटिंग शॉप में कैशियर था।
3: पर क्या, इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट टेस्ट मैच। बहुत लंबी सोच चाहिए, बहुत ही लंबी अवधि में ही पैसा बनता है।
2: दुनिया में हर चीज चैलेंज करने में बहुत मजा आता है, राइट?
3: कॉफी कैन इन्वेस्टिंग,
2: हाँ जी।
3: इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे आपकी क्या मंशा थी?
2: इंडिया छोटा सा मार्केट है, दुनिया का 3%। सो मुझे लगा यार, विदेश में निवेश तो सोचना चाहिए। AI का प्रहार शुरू हो चुका है।
3: तो क्या मिडिल क्लास गरीबी की ओर जा रहा है, भारतीय मिडिल क्लास?
2: इस प्रकार का टेक्नोलॉजी घातक है दुनिया भर के मिडिल क्लास के लिए।
4: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: अभी कहा शुरुआत हुई है, ये न्याय का पहला कदम है, केस लॉज हुआ है। देखिए
1: जब से आपको ये गोली लगी
0: 1 महीना हो गया, छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, 3-4 छर्रे दिल के पास है, साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11:30 हम यहाँ आए, 1 महीने से ये घूम रहे हैं, 11:30 आए, अभी 6:30 हैं, 7:45 हो गए, तब जाके FIR फाइल की। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिलता। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है, और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल ओके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल FIR दिया। तो आप समझ जाइए FIR रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे FIR करना, वो वाले भी चाहते थे FIR करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। धन्यवाद। आपके
2: राहुल गांधी बता रहे थे कि किस तरह से FIR उन्हें करवानी पड़ी और करवाने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ा, इतने घंटे लग गए। हम इस समय हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा के पास आपको लिए चलते हैं, और हमारे दो संवाददाता हमारे साथ हैं, राहुल भी हैं, हिमांशु भी हैं। राहुल, आप इस समय कहाँ मौजूद हैं और किस तरह से राहुल गांधी ने आज ये पैलेट गन को लेकर FIR के लिए धरना दिया और कैसे अंततः ये FIR हुई?
3: देखिए, मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हूं और ठीक DCP दफ्तर के बाहर खड़ा हूं, जहां पर राहुल गांधी 8 घंटे बैठे थे। उनके साथ में साहिल लोचप जो कि हरियाणा से आते हैं वो भी थे, उनकी माताश्री भी थी, प्रियंका गांधी वाड्रा थी, इसके अलावा तमाम सांसद थे। दरअसल राहुल गांधी लगातार ये आरोप लगा रहे थे जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे कि साहिल लोचप उनको चोट लगी है पैलेट गन के थ्रू 20 जुलाई को जो घटना घटी दिल्ली के अंदर, और उसकी FIR पुलिस नहीं लिख रही है। पुलिस का तर्क यह था कि SIT बना दी गई है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू और मल्टीपल FIRs ऑलरेडी हैं, तो मैटर सब जूडियस है, हम सेपरेट FIR नहीं कर सकते। लेकिन राहुल गांधी लगातार अड़े रहे। देखिए, काफी अनप्रेसिडेंटेड है शहीद नेता प्रतिपक्ष एक दिल्ली पुलिस के अधिकारी के दफ्तर के बाहर बैठ जाए, 8 घंटे तक वो बैठे रहे, और जाहिर है उन्होंने ये प्रेशर बनाने का उनका तरीका था कि देखिए आप कार्रवाई करिए, और ये भी कोशिश थी कि इस पूरी कवायद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह को ड्रैग किया जाए। उन्होंने बार बार नाम लिया कि ऊपर से ऑर्डर नहीं आ रहा है, इसकी वजह से FIR नहीं।
2: ये बात कही थी। राहुल, आप रहिए हमारे साथ, हिमांशु मिश्रा भी। हिमांशु, आप हमें सुन पा रहे हैं, दिख नहीं रहे फिलहाल? हिमांशु, हिमांशु क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच पाई?
4: जी, मैं थाने के अंदर ही मौजूद हूँ सहित, और सुबह से लगातार माथापच्ची चल रही थी, और जो यहाँ पे
2: हिमांशु हम सुन रहे हैं आपको, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए।
4: यहाँ पर सुबह से माथापच्ची चल रही थी, दरअसल जानकारी मिली है सहित, वो जब पुलिस सोर्सेज से हमने बात की, तो हमें पता लगी कि आखिर FIR एफआईआर करनी थी, तो सामने ये बात आई है कि जो कॉलम था जहां पर आरोपी का नाम एफआईआर में लिखा होता है उसको लेकर के काफी जो भी गतिरोध था उसको लेकर के बना हुआ था कि वो कॉलम जो है वो अज्ञात, उसमें किसी का नाम नहीं लिखना है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से पहले एक जीटी एंट्री का मामला सामने आ ही चुका था जिसमें यह था कि जीटी एंट्री दिखाया गया था कि किस तरीके से ऑर्डर मिला था पैलेट गन का, लेकिन उसके बाद जब एफआईआर होती तो ये एक डॉक्यूमेंट होता। तो यहाँ पर बड़ी सावधानी से जो एफआईआर जब दर्ज की गई तो उसमें जो अज्ञात का जो एक्यूज का कॉलम है वहां पर किसी का नाम दर्ज नहीं किया गया है, और ये बात थी इसको लेकर के गतिरोध बना हुआ था सही। और अंत में इसी को लेकर के जो बातचीत थी वो बनी है, और उसके बाद यहाँ पर इतने कार्यकर्ता पहुंच गए थे।
2: हिमांशु हम आपको रोक रहे हैं, राहुल गौतम, हिमांशु मिश्रा हमारे दोनों संवाददाता दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर से मौजूद थे जहां पर राहुल गांधी धरना दे रहे थे। एफआईआर हो गई है, तो आज राहुल गांधी पैलेट गन के मुद्दे पर एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज करने से सुबह मना कर दिया, जिसके बाद राहुल गांधी धरने पर बैठ गए, लेकिन शाम होते होते पुलिस ने केस दर्ज कर लिया अब से कुछ देर पहले। कैसे चला आज दिन भर ये पूरा राजनीतिक ड्रामा, आइए हम आपको दिखाते हैं।
5: धरने पर राहुल गांधी की ये तस्वीरें दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर की हैं। जिस साहिल लोचब के पैलेट गन का शिकार बनने का दावा है उन्हें लेकर थाने पहुंचे, जहां दिन भर चले सियासी ड्रामे के बाद राहुल गांधी की मांग को मानते हुए मामले पर एफआईआर दर्ज की गई।
6: गवर्नमेंट ने कहा था जो लोग गलती किए हैं उन पर एक्शन लेंगे, लेकिन अब तक एफआईआर किसी के खिलाफ फाइल नहीं किए, इसीलिए राहुल जी और प्रियंका जी वहां पर धरना बैठी है।
5: आज सुबह राहुल गांधी सबसे पहले कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, वहां वो ये जानकारी लेने आए थे कि पैलेट गन को लेकर कार्रवाई का अपडेट क्या है। वहां उनकी जॉइंट पुलिस कमिश्नर नूपुर प्रसाद और नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा से मुलाकात हुई, जब राहुल गांधी की मौजूदगी में साहिल लोचब की शिकायत ले ली गई, लेकिन मामला कोर्ट में होने की बात कही गई तो राहुल गांधी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए।
7: दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए।
8: राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है, यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है।
5: पैलेट गन को लेकर राहुल गांधी का यह दाव जंतर मंतर मसले पर पैनल बनने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद सामने आया है। 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति छात्र विरोध को लेकर न सिर्फ जंतर मंतर बल्कि देश की अन्य जगहों पर जरूरत से ज्यादा पुलिस बल के इस्तेमाल की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई ये कमेटी सुरक्षा बलों से हुई हिंसा के आरोपों की भी जांच करेगी।
9: पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज किया गया था, वो तो जनरल एफआईआर था, ये साहिल ने मांग की है और उन्होंने सबूत दिखाया, अपनी आंख दबाई है।
10: ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं अराजकता की राजनीति करते हैं। आपको नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना राहुल गांधी।
5: तमाम सियासत के बीच आखिरकार राहुल की मांग को मान लिया गया। आज तक ब्यूरो।
2: और अब खबर वंदे मातरम को लेकर जारी राजनीति की, जहां केरलम में विपक्ष वंदे मातरम का विरोध कर रहा है तो विपक्ष पर तुष्टिकरण का आरोप सरकार लगा रही है।
5: वंदे मातरम पर 2-6 का विवाद किस मुकाम तक पहुंच गया है, ये तस्वीर उसकी बानगी है। जगह है त्रिवेंद्रम का कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और विरोध करते ये छात्र SFI के हैं, कह रहे हैं कि ये केरलम है, यहाँ आप पूरा वंदे मातरम नहीं गा सकते।
11: You can't see Mandir Nagar going here, and you can't accept the
5: खबरों के मुताबिक त्रिवेंद्रम के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के तहत युवा प्रोफेशनल्स का राउंड टेबल आयोजित किया गया था। राउंड टेबल से पहले वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ तो एसएफआई के छात्रों ने बीच में ही रुकवा दिया। एसएफआई के छात्रों का कहना था कि ये केरलम है और यहाँ आप पूरा वंदे मातरम नहीं गा सकते। बीजेपी 15 अगस्त के कार्यक्रम में वंदे मातरम न गाए जाने को लेकर आज सड़कों पर है। बीजेपी ने केरलम के सभी जिला मुख्यालयों पर वंदे मातरम कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं कांग्रेस भी वंदे मातरम के दो छंद गाने पर अड़ी है, जिसे लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है।
12: और यदि राष्ट्रगीत का सम्मान करने से कोई मना करता है तो उसकी देशभक्ति पर भी सवालिया निशान स्वाभाविक रूप से लग जाता है। कांग्रेस 1937 के जिस प्रस्ताव की बात करती है वह कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की कट्टरपंथी मांगों के आगे नतमस्तक होकर पारित किया था और उसका खामियाजा भविष्य में देश को विभाजन के रूप में झेलना पड़ा था।
13: देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया।
5: बहरहाल वंदे मातरम पर अभी संग्राम खत्म होता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: वंदे मातरम पर जारी घमासान का असर बॉलीवुड में भी देखने को मिल रहा है। शर्मिला टैगोर ने वंदे मातरम के दो पद का समर्थन किया, यानी कि दो स्टैंजा का, जिस पर कंगना रनौत भड़क गई।
5: वंदे मातरम पर जारी सियासत के बीच शर्मिला टैगोर की एंट्री ने आग में घी का काम किया है।
14: और वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला टू स्टैंजा इज वेरी गुड।
5: शर्मिला टैगोर का ये बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि वो रविंद्रनाथ टैगोर के खानदान से ताल्लुक रखती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ही राष्ट्रगान के रचयिता थे। इसके अलावा शर्मिला टैगोर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC की अध्यक्ष रहीं। वो 13 अक्टूबर 2004 से 31 मार्च 2011 तक इस पद पर रहीं और तब केंद्र में UPA की सरकार थी। खैर, सिर्फ इसलिए शर्मिला टैगोर की दलील को सियासी चश्मे से देखना सही नहीं होगा। बहरहाल शर्मिला टैगोर की मुखालफत में बॉलीवुड की एक और अभिनेत्री सामने आ गई हैं, जिनका नाम कंगना रनौत है। एक कलाकार के तौर पर मुझे हैरानी होती है कि कला या कविता के बारे में उनकी सोच इतनी सीमित और बनावटी कैसे हो सकती है। किसी भी कविता या गाने में शब्द रूपक यानी मेटाफर्स होते हैं। कवि या कलाकार मनचाहा असर पैदा करने के लिए तरह तरह की कल्पनाओं और अद्भुत तुलनाओं का इस्तेमाल करते हैं। वंदे मातरम आजादी की लड़ाई की भावना है। बंकिम चंद्र जी देश को अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। आप कला की इतनी महान रचना को सिर्फ एक धार्मिक रीति रिवाज कैसे कह सकती हैं? इस तरह शर्मिला टैगोर के खिलाफ कंगना रनौत ने मोर्चा खोल दिया और इस मोर्चे से उन्होंने शर्मिला टैगोर पर हमलों की बौछार कर दी। कंगना आगे कहती है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि उन्हें ऐसे युवा चाहिए जिनका शरीर लोहे जैसा हो, हड्डियां स्टील की हो और नसों में बिजली जैसी ताकत दौड़ती हो। वो मौसम का हाल नहीं बता रहे थे बल्कि वो शक्ति के जागरण का आह्वान कर रहे थे। कृपया हिंदू मुस्लिम वाली सोच से बाहर आइए, भले ही हम एक ईश्वर में विश्वास करते हों। कंगना और शर्मिला के बीच ये लड़ाई बता रही है कि वंदे मातरम के दो छंद या छह छंद के सवाल पर बॉलीवुड में भी बेचैनी है। आज तक ब्यूरो।
2: और अब खबर जयपुर से आई हंगामे की तस्वीरों की, जहां प्राथमिक स्कूल जा रही कॉकरोच जनता पार्टी पर गांव वालों ने हमला कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका भी वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने बीजेपी पर हमला करने का आरोप लगाया।
15: यहां पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं, उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में और ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है।
5: जयपुर में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने आई कॉकरोच जनता पार्टी की टीम को लात घूसों से पीटा, किसी को पत्थरों से मारा, किसी पर लात घूसे बरसाए।
15: ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में और इनको यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष राके के साथ ये मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी। गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं, ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है और रामपुरा में यहाँ पर ये देखिए लात घूसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक एक की पिटाई कर रहे हैं, यहाँ पर गाँव वाले पीछे भाग रहे हैं।
5: जयपुर के रामपुरा गांव के इसी स्कूल की जांच पड़ताल के लिए कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी कार्यकर्ता गांव में पहुंचे थे। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका की अगुवाई में युवाओं का ग्रुप गांव में घुसा तो गांव वाले भी पहले से तैयार बैठे थे।
15: आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं।
16: आज आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर। इनको डर है कि कहीं सीजेपी वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे और सीजेपी वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए, सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा।
5: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी है। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी पर हुए हमले पर कांग्रेस भी सरकार को घेर रही है।
17: वे चाहते हैं कि हमारी नाकामी को छुपी रहे और जो बदहाली है स्कूलों में, व्यवस्था है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, इतने बच्चों की मौत हो चुकी है और स्थिति बहुत गंभीर है।
5: जयपुर के जिस स्कूल के निरीक्षण को लेकर सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ उसकी सच्चाई ये है कि गांव का स्कूल जर्जर है। जिस इमारत में क्लास चलती थी उसकी हालत इतनी खराब है कि कभी भी ढह जाए, इसीलिए गांव वालों ने स्कूल के सामने ही एक तबेले में व्यवस्था कर दी जहां कक्षाएं चलती हैं।
15: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो बड़े बड़े वादे करते हैं बच्चों के फ्यूचर को लेकर, ये देखिए तस्वीर, यहाँ पर गेट पर यहाँ पर कुंटी लगा रखी है और यहाँ पर अंदर ही आपको ये भैंसों का तबेला दिख रहा होगा।
5: अब सवाल यह है कि आखिर स्कूल के सुधार से किसी को क्या परेशानी हो सकती है। गांव वाले कह रहे हैं कि समस्या शिक्षा सुधार से नहीं सीजेपी से है।
18: ऐसे कार्यकर्ता नहीं चाहिए कॉकरोच वाले, इनका तो घोर विरोध करेगा ग्रामीण, क्योंकि ये देश के नहीं है तो हमारे क्या हो सकते हैं।
19: जब शिक्षा व्यवस्था सुधार करना ही उनका एक मुद्दा था तो फिर वो झारखंड क्यों नहीं गए? जब पिछले 15 दिनों से वहां अनशन हो रहा था तो झारखंड क्यों नहीं गए अभिजीत दिपके?
5: इससे पहले भी जयपुर में रांका के स्कूल जाने पर हंगामा हुआ था। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्कूलों की हालत गंभीर है जहां एक बड़े सुधार की जरूरत है। आज तक ब्यूरो।
2: और अब खबर झारखंड की, जहां हाईकोर्ट के निर्णय के बाद नाराजगी का पूरा खेल बदल गया। आंदोलन से सरकार को मनवा लेने वाले छात्र अब सरकार पर कोर्ट में कमजोर पक्ष रखने का आरोप लगा रहे हैं और एक बार फिर से सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं।
20: झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर स्टे लगाकर दो परीक्षाओं से चयनित कर्मचारियों को राहत दी तो दूसरे कर्मचारी भी राहत की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए।
21: हम लोग भी वही रास्ता अख्तियार करेंगे और हम लोग भी स्टे लेके आएंगे।
22: हाँ, क्या लगता है सरकार ने ये फैसला गलत किया?
21: सरकार ने एक तरफा फैसला किया है। सरकार ने, मुझे लगता है कि अपने सारे रास्तों को एग्जॉस्ट नहीं किया, ये एक हेस्टी डिसीजन है जो कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेशर बनाने से उसके दबाव में आके सरकार ने एक हेस्टी डिसीजन।
20: इस बीच हाईकोर्ट के फैसले से वो छात्र भी नाराज जिनकी मांग पर सोरेन सरकार ने इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया था। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के बैनर तले प्रदर्शन करने वाले छात्र आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष सही से नहीं रखा।
23: आप ये धोखा सिर्फ झारखंड के लाखों छात्रों को नहीं दिए हैं, झारखंड के तमाम आम आवाम को दिए हैं, झारखंड के उन तमाम अभिभावक को दिए हैं जिन्होंने अपने बच्चा को, अपने बेटा और बेटियों को पिछले 26 दिनों से अपने हक और अधिकार के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भेजने का काम किया।
20: 16 दिन तक अनशन करने वाले देवेंद्र महतो ने भी चेतावनी दी कि सरकार ने लापरवाही बरती तो बड़ा आंदोलन करेंगे।
24: सरकार अपना पक्ष रखने में, अपना जांच रिपोर्ट रखने में अगर किसी तरीके से लिपापोती करती है, किसी तरीके से कोताही बरतती है तो यहाँ के छात्र बिल्कुल अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब जेपी के तर्ज पर, जेपी आंदोलन के तर्ज पर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, ये हम आज ऐलान करते हैं।
20: सोरेन सरकार के लिए भी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। एक गुट की मांग माने तो दूसरा नाराज और दूसरे की मांग माने तो पहला नाराज। सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।
2: और अब खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की पीडीए की परिभाषा पर कटाक्ष किया, तो वहीं अखिलेश यादव पर कल्याण सिंह का अपमान करने का गंभीर आरोप भी लगाया।
0: क्रिकेट की तरह रिंग रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं? पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। ये वही लोग हैं, हमें दुख हुआ था और अत्यंत कष्ट हुआ था। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं, कितना द्वेष रखते हैं। उन्होंने बाबूजी को प्रत्यक्ष जाकर के श्रद्धांजलि देने की बजाय शब्दों से भी नहीं कोई कुछ व्यक्त किया। बहन और भाइयों, इससे बड़ा अपमान ये जाति अपमान है, और ये हर उस हिंदू का अपमान है जिसको लगता है कि बाबूजी का जीवन सनातन मूल्यों के लिए, हिंदू गौरव के लिए समर्पित था। उस हर हिंदू का अपमान था ये।
2: और अब खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे की, जहां बॉर्डर सिक्योरिटी पर अमित शाह ने ममता बनर्जी को घेरा। सिलीगुड़ी में अमित शाह ने कहा कि हमें घुसपैठ पर अंकुश लगाना है, हम पूरी सीमा पर बाड़ लगाना चाहते थे, लेकिन ममता जी ने हमें कभी जमीन दी ही नहीं।
1: हम तो पुराने सीएम साहिबा को भी बुलाते थे, वो एसएसबी के कार्यक्रम में आना नहीं चाहती थी। हमने तो आपको बुलाया, आप आ गए, आपका स्वागत है। एसएसबी हो, बीएसएफ हो, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक सरकार की एजेंसी नहीं है। ये अहर्निश तप तपस्या और परिश्रम कर देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला बल है। इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिसी, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी गवर्नमेंट, सभी राजनीतिक दलों को, चाहे बंगाल में हो या केंद्र में जो सरकार हो, सभी ने जवानों के साथ आत्मीय रिश्ता रखना चाहिए। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर ही 1129 एकड़ भूमि, जो हम 2014 से मांगते थे, हमें मिलती नहीं थी। बीएसएफ और एसएसबी के लिए 1129 एकड़ भूमि शुभेंदु जी ने दे दिया। हम ममता बनर्जी के हाथ पैर जोड़कर थक गए, मगर हमें भूमि नहीं दी। एक बार उन्होंने आग्रह रखा, मैं उनकी ऑफिस में भी पहुंच गया कि ममता जी, वो भारतीय जनता पार्टी को जमीन नहीं देना है, बीएसएफ को देना है, आप कृपया दे दीजिए। हाँ बोला, मगर गई तब तक नहीं दी।
2: और अब खबर हरियाणा की, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम विश्वविद्यालय में आयोजित उद्यमियों की एक चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने युवाओं की बात करते हुए 2014 से पहले की सरकार के रवैये पर प्रश्न खड़े किए।
3: स्वतंत्रता दिवस का हर्षोल्लास के साथ हम सब ने कार्यक्रम किया, याद किया उन क्रांतिकारी वीरों को जिन्होंने इस भारत की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपने आप को कुर्बान किया। हमने उनको याद किया, परंतु ठीक 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त को क्या लोगों के साथ हुआ, उसको भी याद करना चाहिए, उसको भी नहीं भूलना चाहिए कि वो क्या कारण बने, किस कारण से एक हंसता खेलता परिवार अपने बच्चों के साथ रह रहा, अपने बगीचे में रह रहा, अपनी जमीन के ऊपर रह रहा, अपने घर के ऊपर रह रहा है, एक घंटे के अंदर उसको ये बोल दिया जाता है कि आप छोड़ करके चले जाइए, क्या बीती होगी उसके ऊपर, उन बच्चों के ऊपर क्या बीती होगी, क्या स्थिति हुई है। स्थिति ये हुई है, मां से बच्चा भी छुट गया, नहीं मिल पाया, बच्चे को मां नहीं मिली, मां कहीं और चली गई, पता नहीं लगा उस इतना वो इस प्रकार का दृश्य था। हमें बिल्कुल उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए।
2: इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप,

0: दिखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
1: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।

0: बिजली का बिल पेड
1: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
2: कैसे?
1: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
2: इतना माही वे।
3: पापा।
4: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का?
5: सब कैशलेस हो गया
4: है।
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाओ।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
3: क्लिनिक पे दैट इज द मोस्ट कॉमन यू नो सिम्टम, डॉक्टर बहुत ज्यादा बाल गिर रहे हैं इस मौसम में, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, द स्किन गेट्स ग्रीजी बिकॉज ऑफ विच एक्नीफॉर्म इरप्शंस स्टार्ट, बार बार फेस वॉश नहीं करना है, दैट विल वॉश अवे ऑल द नेचुरल मॉइस्चर अदरवाइज।
4: कौन से स्किन को किस टाइप के प्रोडक्ट किस तरीके से चूज करना चाहिए?
3: विटामिन सी फॉर एन एक्नी प्रोन स्किन is not a good idea.
4: Hair treatments भी लोग बहुत करवाते हैं जिसकी वजह से hair बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, आपके हिसाब से इन treatments का क्या असर होता है बालों में?
3: We cannot be so strict, हम नहीं बोल सकते कि आप ये मत करना, ये तो obviously, but then you'll have to take care.
4: How to choose the serum according to your skin type.
5: बी.आर. अंबेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है?
6: अगर अंबेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट अलग स्टेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही गलतिस्तान भी बनता।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: राहुल गांधी की मांग पर पैलेटगन मामले में अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज। राहुल बोले, अमित शाह गृह सचिव ने दी अनुमति, ये न्याय की दिशा में पहला कदम। राहुल के खिलाफ उतरे बीजेपी की सेना, नड्डा ने कहा वंदे मातरम पर घिरने के बाद कांग्रेस का धरना। स्मृति बोली, विरोध के नाम पर कांग्रेस का स्वांग। बंगाल दौरे पर अमित शाह बोले, वंदे मातरम को स्वीकार न करना दुर्भाग्यपूर्ण। राजनाथ बोले, कांग्रेस के खतरनाक इरादे देश के सामने उजागर। आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर जंतर मंतर पर विरोध। सवर्ण समाज के लोग और युवा शामिल। रिजर्वेशन का आधार जाति के बदले आर्थिक करने की मांग। आज तक की खबर का ग्वालियर में असर। नगर निगम कमिश्नर संघ प्रिय का तबादला। सड़कों की बदहाली की दिखाई थी हमने ग्राउंड रिपोर्ट।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बाढ़ के सितम के आगे लोगों ने सरेंडर कर दिया। शहर से 50 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश की सीमा से सटे इलाकों में बाढ़ ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। एनडीआरएफ की टीमें दिन रात एक करके लोगों का रेस्क्यू कर रही हैं, जिससे बाढ़ के बीच फंसे लोग उन्हें देवदूत कह रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि इससे पहले ऐसी भीषण बाढ़ वर्ष 1997 में आई थी।

0: प्रयागराज से करीब 50 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश बॉर्डर के पास पानी का प्रकोप कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। यहाँ निचले इलाके बाढ़ की वजह से डूबने की कगार पर है। लेकिन सैलाब के सितम के बीच एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ पीड़ितों के लिए देवदूत बनकर आई, तो यूपी सरकार भी लगातार राशन और राहत सामग्री पहुंचा रही है, जिससे बाढ़ में फंसे लोगों को जरूरत का सामान मिलता रहे।
1: यूपी में बाढ़ का सितम है और इस बीच में एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या फिर जल पुलिस हो, वो एक तरीके से देवदूत बने हुए हैं उन लोगों के लिए जो इस बाढ़ में फंसे हुए हैं। आप अगर तस्वीरों में देखें मेरे पीछे, तो ये पूरा गांव है जो इस वक्त बाढ़ के पानी में समा गया है। अगली तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो लगातार यहाँ मूवमेंट कर रही है। सामने की तरफ आप देखेंगे तो प्रशासनिक अधिकारी, सामने पहले दिखाइए तस्वीर, जो छत पे लोग खड़े हैं वो इंतजार में है कि कब हमें मदद पहुंचेगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो वापस जाना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो राहत सामग्री का इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही प्रशासन की जो बोट है वो पहुंचती है राशन बांटने के लिए, ये देखिए किस तरीके से सीढ़ियों से निकलकर ये लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं, जिससे इनकी मदद हो पाए, इनको मदद मिल पाए। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो एसडीआरएफ हैं, एनडीआरएफ हैं, जल पुलिस हैं, तमाम लोग देवदूत बने हुए हैं इस बाढ़ जैसे हालात में। प्रयागराज में ये जो पीछे का आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरा गांव है, ये कोई नदी नहीं है जहां इस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे हैं। यहां पर अगर आप देखें तो ये पूरा गांव का क्षेत्र है, कैमरामैन संदीप दिखाएंगे आपको। और काफी घर जो है वो मेकशिफ्ट जो खासकर घर है वो तो इस बाढ़ के पानी में डूब ही चुके हैं।
0: आज तक की टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों का दर्द देखा। देखिए कैसे सैलाब ने इस गांव के कितने घरों को अपनी जद में ले रखा है। पेड़ों और बिजली के खम्भों का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। जहां नाव चल रही है वहां कभी जमीन थी, अब यहां मानो नदी उफना रही है। प्रयागराज के 12

0: हमारे साथ इस वक्त इंस्पेक्टर NDRF हैं, वो उनसे पूछेंगे किस तरह से ये कार्यरत हैं यहाँ पे। अपना परिचय दीजिएगा, बताइएगा किस तरीके से आप लोग कितने गांव जा चुके हैं, कितना रेस्क्यू हो चुका, कितना राशन वगैरह बढ़ चुका है।
1: इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार तिवारी, 11th NDRF वाराणसी। हमारी टीम जो है प्रयागराज में पदस्थ है अभी रेस्क्यू कार्य के लिए। जैसे ही हमको रात को लगभग 12 बजे इन्फॉर्मेशन मिला कि अपना इस इलाके में SDM मैडम ADM मैडम के थ्रू हमको फोन के द्वारा सूचित किया गया कि लोग फंसे हुए हैं, तो लोनीपार इलाके में तत्काल हमारी टीम आई है और रात को लगभग 120 लोगों को हमने रेस्क्यू किया। साथ ही हर इलाके में घूम करके लोगों को हमने जो है राहत सामग्री प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है उसको भी वितरित करने का कार्य कर रहे हैं।
0: पूरे प्रयागराज में आपकी टीम्स फैली हुई हैं इस वक्त?
1: बेसिकली हमारी एक ही टीम है, जो कहीं भी कुछ भी होता है प्रयागराज में तो हमारी टीम जाती है।
0: कितनी बोट्स हैं टोटल?
1: हमारे पास लगभग 5 बोटें हैं और जिसमें से हम 2 बोट डिप्लॉयमेंट किए हुए हैं और हमारी अगल बगल भी टीमें, बनारस हमारी रिजर्व टीमें हैं।
2: एक समय था जब भीषण गर्मी में लोग बारिश की दुआ मांग रहे हैं, आज वही लोग कह रहे हैं कि इंद्रदेव अब बस करो।
0: प्रयागराज की बाढ़ इस वक्त सबसे ज्यादा किसी चीज को सता रही है तो वो है गांव जो प्रयागराज के बॉर्डर पर बने हुए हैं और इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर उसी स्थान पर मौजूद हैं। आप सामने देखें कि घर के घर जो हैं ये निचले स्तर पर जितने घर बने हैं वो डूब चुके हैं, जो ऊपर लोग थे वो अभी आए क्योंकि हमारी मौजूदगी इस वक्त उस जगह पर है जहां पर NDRF की टीमें देवदूत बनी है, प्रशासनिक अधिकारी राशन पहुंचा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखें तो ये सभी वो लोग हैं जहां पर जो अफेक्टेड हैं इस पूरे फ्लड से और इस बाढ़ के चलते अभी इनको राशन सामग्री जो खाने पीने की चीजें हैं वो बांटी जा रही है। आपको दिखाऊं मैं तस्वीरों में, तो ये देखिए इस तरह के जो लैया के पैकेट्स हैं वो इन्हें दिए जा रहे हैं, बच्चों के हाथ में इस तरह के जो छोटे छोटे बिस्किट्स हैं ये दिए जा रहे हैं। नतीजा क्या है, क्योंकि बाढ़ कब तक ये पानी यहां रहेगा नहीं मालूम है, इस वजह से ये चीजें यहां पर की जा रही हैं।
2: जब चारों तरफ पानी ही पानी हो तो इंसान जाएगा भी तो कहां, घरों के सामने पानी कई फीट तक भर चुका है तो छत ही वो सुरक्षित ठिकाना लग रही है जहां कम से कम जान तो बची रहेगी।
0: आप समझ लीजिए हम उस प्रयागराज में हैं जहां पर ये छोटे छोटे बच्चे इस वक्त जो है उस जगह पर हैं जहां ये एपिसेंटर है बाढ़ का। हम कहीं शहरी इलाके या घाट से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम एपिसेंटर गांव जहां फंसे हैं वहां इस तरह के मासूम बच्चे और उनकी माएं भी इंतजार में हैं मदद की। मदद पहुंच भी रही है, वो उम्मीद ये कर रहे हैं पानी घटे, बाढ़ की समस्या भी घटे।
2: सैलाब में फंसे इन लोगों को NDRF की नावें डूबते को तिनके का सहारा लग रही हैं।
0: हम इस वक्त प्रयागराज के ग्रामीण क्षेत्र में हैं जहां पर नदियां उफान पर हैं। नतीजा क्या है कि घर के घर यहां डूब गए हैं। पेड़ों की तरफ एक बार दिखाइए, ये पेड़ हैं पूरा, इनमें नीचे तक पानी आ गया है, यानी कि पूरा जो पेड़ आपको देखेंगे अगर तो पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा है वहां तक पानी आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह के हालात फिलहाल यहाँ बने हुए हैं और लगातार ग्राउंड जीरो से आपको हम एक तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बाढ़ का पानी घरों तक पहुंच गया है। जो ग्रामीण है या तो उनके दरवाजे तक पानी आ गया है या उस क्षेत्र तक पानी आ गया है जहां वो असल में फंसे हुए हैं। कई लोग अपने अपने घरों को छोड़कर यहां से निकल चुके हैं, मवेशियों को छोड़ रखा है, घरों से निकल चुके हैं, लेकिन ऐसे में लगातार जो है ग्राउंड पर काम हो रहा है।
3: प्रयागराज के ग्रामीण इलाके हों शहरी इलाकों में भी बाढ़ ने अपना डेरा डाल दिया। पूरा कुंभ क्षेत्र जलमग्न हो चुका है, गंगा यमुना खतरे के निशान को पार करने के लिए बेकरार नजर आ रही हैं। श्रद्धालुओं को कई कई किलोमीटर पहले ही सड़क पर भरे पानी में स्नान को मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि संगम में अरेल घाट से लेकर दशाश्वमेघ घाट भी पानी में है। पानी का ऐसा प्रकोप शहर में है कि नागवासुरी रोड, मरीन ड्राइव, रिवर फ्रंट तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है।
4: प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है जिससे शहर में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 9 लाख क्यूसेक पानी आने से शहरी मोहल्लों में भी पानी घुसने लगा है जिससे प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। प्रयागराज में घाटों के किनारे भी सब कुछ डूबा डूबा दिख रहा है।
0: उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर एक बार फिर दस्तक दे रहा है। जिला चाहे प्रयागराज हो, बनारस हो या लखीमपुर हो, जगह जगह जो गंगा है यमुना है उनका पानी उफना रहा है। अगर आप बात प्रयागराज की करें तो यहाँ खतरे के निशान

0: निशान के करीब पानी पहुंच चुका है और अगला एक हफ्ता बहुत क्रूशियल होने वाला है। कल तक हालात इस तरीके के रहे कि शहर के पॉश इलाकों में पानी पहुंच गया, हालांकि उसकी वजह बारिश भी थी।
1: गंगा और यमुना में आ रहे 9 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी से हाहाकार मच गया है। इससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। कुंभ क्षेत्र का अरैल घाट भी पूरी तरह जलमग्न हो गया है।
0: इस वक्त हम जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं ये अरैल घाट है। आप अगर मुझे देख लें तो मेरे कमर तक यहां पर पानी दिखाई पड़ रहा है। नहीं, मैं किसी नदी के बीचों बीच नहीं खड़ा हूं, ये एक प्रॉपर घाट है, अरैल घाट इसे बोलते हैं। और महाकुंभ के दौरान यहां पर श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचते थे, यहीं से नौकाएं चलती थी जो पूरा यमुना गंगा संगम भ्रमण कराती थी। अब यहां मैं क्यों मौजूद हूं आपको ये दिखाता हूं। यहां पर आप देखेंगे तो मेरे ठीक बगल में एक गुंबद आपको दिखाई पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि इतना ही था हमेशा से, इसमें नीचे के जो सतह है, जो टोम्स नीचे लगे हुए हैं, यहां पर बकायदा बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट किया गया था प्रशासन की तरफ से। लेकिन पानी का जलस्तर इतना गंगा का बढ़ा कि जो बैठने का स्थान था वो पूरा पानी में समा गया है। बात केवल इस गुंबद की भी होती तो चलिए ठीक था, लेकिन इसके उस पार भी कहानी ठीक वैसे ही है। अब मेरी तरफ वापस आएं और अब मैं आपको एक बार दिखाऊं, ये मेरा एक जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, कमर तक पानी, और मेरे ठीक पीछे कैमरामैन संदीप प्रेम ले जाएंगे और उस गुंबद को दिखाएंगे। अब आप सकते में आएंगे और शॉक हो जाएंगे कि ये जो दूसरा गुंबद है ये भी इतना ही गहरा नीचे था, यानी कि यहां भी बैठने का स्थान बना था। और अभी अगर आप उस गुंबद को देखें तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि पानी गुंबद की छत तक पहुंच गया है।
1: वहीं लोगों को सैलाब से बचाने के लिए कैंप बनाए जा रहे हैं। गंगा और यमुना का जल स्तर 81 मीटर के ऊपर होने पर कई मोहल्लों के घरों में पानी घुसने लगा है, जिससे लोगों को आश्रय स्थल में शरण लेना पड़ा है।
0: यहाँ इस वक्त जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ तक पानी पहुंच चुका है। और हमें बहुत अच्छे से याद है महाकुंभ जब कवरेज में हम आए यहाँ थे तो हम इसी घाट से काफी नीचे, उस गुंबद के भी आगे, काफी आगे, जितना मुझे याद पड़ रहा है उस गुंबद के लगभग नहीं तो 20-25-30 कदम आगे तक हम बहुत आराम से जा सकते थे। सीढ़ियां उतनी डीप थी, इतनी खूबसूरती से इसको बनाया गया था। लेकिन इस वक्त जो है गंगा यमुना का जो प्रवाह है वो देखते बन रहा है, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और पानी फिलहाल अब यहां तक आ पहुंचा है। ऐसा नहीं है कि यहां थमेगा, असली बाढ़ अभी आनी बाकी है। विशेषज्ञ बताते हैं अगला हफ्ता 10 दिन बहुत ज्यादा क्रूशियल है। लेटे हनुमान जी तक पानी पहुंच रहा है धीरे धीरे, और ऐसे में बाढ़ के हालात जो है संशय बनाए हुए हैं। हालांकि सरकार लगातार राहत सामग्री बांट रही है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की फोर्सेस जो हैं जहां जहां लोग फंसे हैं उन्हें भी निकालने का काम कर रही है।
1: अब देखिए 21 अगस्त दोपहर 2 बजे तक कहां कितना जलस्तर दर्ज किया गया। फाफामऊ में जलस्तर 80.77 मीटर, छतनाग में दोनों नदियों का जलस्तर 80.03 मीटर, यमुना का नैनी में जलस्तर 80.42 मीटर, खतरे का निशान 84.73 मीटर। जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो बड़े हनुमान जी का महास्नान हो सकता है। वैसे शाम को मंदिर की 4 दीवारी तक पानी पहुंच गया था।
0: जहां बाइक, स्कूटी, ई रिक्शे चलते थे वहां अब नाव चल रही हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त संगम क्षेत्र में स्थित लेटे हुए हनुमान जी के पास है। हमें अगर आप देखेंगे जहां हम इस वक्त खड़े हुए हैं तो घुटने तक जो है पानी यहां पहुंच चुका है। और आप यकीन माने ये कोई घाट नहीं है, ये नीचे हमारे ठीक सड़क है और ये पानी जो है वो उधर से आ रहा है। और वहां जो जेटी लगा दी गई है वो नदी की वजह से नहीं लगाई गई है, वो इस वजह से लगाई गई है जैसे कि उसके आगे पानी और ज्यादा गहरा है, यानी कि नदी जो है वो काफी आगे है। अब आपको मैं समझाऊं कैसे, ऐसे समझिए कैमरामैन संदीप जो उधर पैन करिए जहां पिलर लगे हुए हैं, ये जो खंबे आप देख रहे हैं ना, जो आखिरी खंबा है वहां तक सड़क है, वहां तक घाट है, वहां के आगे गंगा शुरू होती है। जितने टोम्ब लगे हैं, जितने ये यहां पर आप वो देख रहे हैं इलेक्ट्रिक के जो वो लगे हैं, ये सभी जो है अभी जलमग्न हो गए हैं। तो आप अंदाजा लगा लें उस पिक्चर को देखकर कि पानी कहां तक आ पहुंचा है। अभी मैं आपको यहां जहां से रिपोर्ट कर रहा हूं, मुझे अगर देखें तो मैं खुद मेरे घुटने तक यहां पानी है और मेरे नीचे एक सड़क है, प्रॉपर सड़क है, जब मैं पैर रख रहा हूं तो मुझे अंदाजा लग रहा है। अब अगली तस्वीर आपको दिखाऊंगा मंदिर की, पहले एक नाव की तस्वीर भी दिखा दें। ये देखिए हमारे ठीक बगल में यहाँ कई सारी नाव खड़ी हुई हैं और यकीन माने ये सड़क जो है ये आवागमन के लिए थी। जैसा कि मैंने खंभों से एस्टैब्लिश करके आपको बताया यहाँ पर नाव कभी नहीं आती है, लेकिन अब पानी जब आ गया है तो भाई कुछ तो चलेगा। पानी है तो गाड़ी नहीं चल सकती, तो यहाँ नाव ही चलने शुरू हो गए। यानी कि जहां पर कल तक या कुछ दिन पहले तक स्कूटर वगैरह चल रहे थे, वहां अब नाव चल रही। अब आपको मैं दिखाता हूं हनुमान जी का मंदिर। ये हमारे ठीक पीछे आप देखेंगे लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, और ये कहा भी जाता है कि जब ये सीजन आता है उसमें माँ गंगा श्री हनुमान को स्नान करवाती हैं।
2: झारखंड के रांची में एक बार फिर से माहौल गर्मा गया। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी के बाद जेएसएससी सीजीएल की नियुक्ति रद्द करने के सरकार के आदेश पर भी रोक लगा दी। इससे पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्र एक बार फिर से गुस्से में हैं। छात्रों ने रांची में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला जलाने की कोशिश की, जिस पर पुलिस और छात्र आमने सामने आ गए। छात्रों का आरोप है कि सोरेन सरकार ने अपने निर्णय के पक्ष में कोर्ट में मजबूती के साथ अपनी दलीलें पेश नहीं की, और इसी कारण अदालत ने सोरेन सरकार के निर्णय पर स्टे लगा दिया, रोक लगा दी, और वो लोग जिनको नौकरी मिली थी वो दोबारा अपने काम पर वापस लौट आए। लेकिन वो छात्र जो इन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे थे, उन छात्रों का गुस्सा फिर से सोरेन सरकार के खिलाफ भड़क उठा। इन्होंने ये तो कहा कि सरकार ने हमारी बात मानी, लेकिन अदालत में अपना पक्ष ठीक से नहीं रखा। अदालत में सरकार की तरफ से दलीलें ठीक से नहीं दी गईं। अगर दलीलें दी जाती तो ऐसा नहीं होता। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बिजली का बिल पेड
1: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
2: कैसे?
1: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
2: पे। इत्ता माही वे।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: चीर पर चीर के मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के आंदोलन करने की घोषणा करते हैं, मन बनाते हैं, लेकिन झारखंड की जनता अब उतना बेवकूफ नहीं है। झारखंड की जनता जानती है, इस देश की जनता जानती है, देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति हैं, वो गरीबी को जानते हैं, गरीबी की पीड़ा को जानते हैं, हर वो काम करते हैं जो गरीब के लिए भला हो।
2: मुझे लगता है कि शायद इसी का अंदेशा होगा जिसकी वजह से उस समय विलंब हो रहा था डिसीजन लेने में, और अब डिसीजन हुआ। तो ये भी बात सही है कि जिनकी नौकरी लग गई, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले से कुछ नौकरियां वो सरकारी कर रहे थे, कोई रेलवे की नौकरी कर रहा था, सिर्फ अपने स्टेट में वापस आने के ये में उन्होंने यहाँ की नौकरी ज्वाइन कर ली थी, तो उनके साथ अन्याय हो रहा था शायद, इसीलिए माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया। अब देखा जाएगा क्या होता है न्याय के

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: आज तक बार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में खबरदार लेकर हमारी साथी श्वेता होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स टंकी मतलब वेक्टर्स।
1: प्रेजेंटेड बाय
0: पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: राहुल गांधी की मांग पर पैलेट गन मामले में अज्ञात के खिलाफ दिल्ली के संसद मार्ग थाने में FIR दर्ज। राहुल गांधी ने कहा अमित शाह और गृह सचिव ने दी इजाजत, बोले न्याय की दिशा में यह पहला कदम। राहुल के खिलाफ उतरी बीजेपी, नड्डा ने कहा वंदे मातरम पर घिरने के बाद कांग्रेस का धरना। स्मृति ईरानी बोली विरोध के नाम पर स्वांग। बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, कहा वंदे मातरम को स्वीकार न करना दुर्भाग्यपूर्ण। राजनाथ सिंह बोले कांग्रेस के खतरनाक इरादे देश के सामने उजागर। झारखंड के रांची और गिरिडीह में भिड़े छात्र और JMM कार्यकर्ता, सीएम सोरेन का पुतला फूंकने पर मचा बवाल। JPSC JSSC रिफॉर्म फोरम का प्रदर्शन। आज तक की खबर का ग्वालियर में असर, नगर निगम कमिश्नर संघ प्रिय का तबादला, सड़कों की बदहाली की दिखाई थी ग्राउंड रिपोर्ट।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach in association with
2: Bharat ki apni electric sawari Sokudo.

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है हर बड़ी खबर से आपको खबरदार करने का। खबरदार में सबसे पहले बात एक एफआईआर के लिए राहुल गांधी के धरने की। दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज करवाने में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 7 घंटे लग गए। एक महीने पहले छात्रों के आंदोलन में कथित तौर पर पेलेट गन से घायल हुए एक छात्र की एफआईआर करवाने के लिए आज राहुल गांधी ने आंदोलन किया। सुबह 11:30 बजे राहुल गांधी दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे। उनके साथ में पेलेट गन का पीड़ित भी था। मांग बस ये थी कि एफआईआर हो। पुलिस ने दर्ज करने से मना कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी वहीं धरने पर बैठे रहे। इसके बाद तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे, कार्यकर्ता पहुंचे, थाने के बाहर मंच सज गया। राहुल गांधी के इस धरना एपिसोड का लाइव प्रसारण हो रहा था। वहीं पर राहुल गांधी ने लंच भी किया। शाम हो गई और फिर खबर आई कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार हो गई है। शाम को करीब 7:45 बजे पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और इस तरह से करीब 7 घंटे के बाद राहुल गांधी का धरना सफलतापूर्वक खत्म हो गया। सबसे पहले आप ये सुनिए कि एफआईआर दर्ज होने के बाद राहुल गांधी का क्या कहना था।
1: ये न्याय का पहला कदम है, केस लॉज हुआ है। देखिए,
2: जब से आपको ये गोली लगी
1: 20 जुलाई को, 1 महीना हो गया, छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, 3-4 छर्रे दिल के पास है, साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11:30 बजे हम यहाँ आए, 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं,
2: पौने सात हो गए।
1: तब जाके FIR फाइल किए। अब आप इमेजिन कीजिए, इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल ओके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल FIR दिया। तो आप समझ जाइए FIR रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे FIR करना, वो वाले भी चाहते थे FIR करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है।
0: साहिल की FIR की जानकारी आज तक को लगी, जिसमें साहिल ने बताया कि नीले कपड़े पहनने वाले शख्स के हाथ में बड़ी बंदूक थी, जिसने उस पर 4-5 बार पेलेट गन चलाई, जिससे उसकी दाई आंख से दिखना बंद हो गया।
3: न्याय की भैया, ये FIR न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है। पर मेरे को खुशी से ज्यादा दुख भी है कि LOP के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट दिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ, मेरे शरीर में 200 छर्रे, उसके बाद भी मेरी FIR को 8 घंटे में लिया गया और शायद ये ली भी ना जाती अगर LOP मेरा साथ ना देते। 14 अगस्त से मैं FIR के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी FIR ली गई।
2: उम्मीद थी आपकी FIR रजिस्टर्ड होगी जब ये कल बात हुई और आप यहाँ आए, सुबह जो पुलिस ने कहा उसके बाद
3: नहीं, मेरे को विश्वास था जी LOP के तो कंप्लेंट तो होनी है, ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे निर्णायक भारत में।
0: अब आपको सीधे लिए चलते हैं अपने संवाददाता अरविंद ओझा के पास, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चली है उसमें ये समझने की आवश्यकता अरविंद है कि एक तो FIR में क्या है, उसकी तरफ से अगर कहा गया कि नीले कपड़े में एक शख्स ने बड़ी सी बंदूक से उस पर 4-5 बार पेलेट गन चलाई, लेकिन इतना समय क्यों लगा? पुलिस क्या किसी टेक्निकल चीज की बात कर रही थी या फिर क्या कारण रहा जो इतनी देर बाद एक FIR दर्ज की गई?
4: देखिए, पहले टेक्निकल चीजों पर दिल्ली पुलिस ने विचार किया, फिर लीगल ओपिनियन ली गई, क्योंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। और लीगल ओपिनियन लेने के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। और अगर सीधे सीधे कहें तो पूरी तरह से दिल्ली पुलिस बैकफुट पर नजर आई, और राहुल गांधी का जो प्रोटेस्ट था उसके सामने आखिरकार दिल्ली पुलिस को झुकना पड़ा। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं, वो दर्ज की है बीएनएस की धारा 118 और 125 के तहत, जिसमें साहिल ने बताया कि किस तरह से 20 जुलाई को जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट चल रहा था, उस दौरान जब लाठी चार्ज हुआ तो वो कनॉट प्लेस इलाके में था, आंसू गैस के गोले जब वहां पर छूट रहे थे तो वो दूसरी तरफ था, अचानक से उसके शरीर पर कुछ धातु जैसी चीज लगी, जब वो पीछे मुड़ा तो नीली पोशाक में एक व्यक्ति खड़ा था जिसके पास हथियार था, और साहिल का ये दावा है कि उसी के वेपन से कुछ धातु जैसी चीज उसके शरीर में लगी, जिससे उसके उसको काफी गंभीर चोटें आई हैं। और उसके बाद उसकी उसने जब इलाज कराया तो एमएलसी में उसका दावा है कि पैलेट गन से चोट लगने की बात है। उसके बाद उसने दावा किया कि कई बार एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, फाइनली ये एफआईआर दर्ज हुई है। और उसने ये भी पुलिस को कहा है कि जो सीसीटीवी कैमरे हैं नई दिल्ली इलाके के, उसको कहीं ना कहीं सेफ रखा जाए और जांच की जाए। तो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज हुई है राहुल गांधी के धरने के बाद लंबे वक्त।
0: एक चीज समझना चाहती हूँ कि मतलब नीली पोशाक अगर कह रहा है तो हम समझ सकते हैं कि वर्दी रैपिड एक्शन फोर्स की वैसी ही होती है, लेकिन अभी खैर अगर सिर्फ नीली पोशाक कहा गया है तो आगे उस पर जांच करना होगा। दूसरी चीज, क्या एक धरना प्रदर्शन के दौरान जो एक पैलेट गन इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसको लेकर अभी अदालत में ही यह मामला है, क्या एक प्रदर्शनकारी एफआईआर लॉज कर सकता है इस तरह लाठियों के इस्तेमाल के लिए, पैलेट गन के इस्तेमाल के लिए या फिर कुछ और?
4: अमूमन देखने में ऐसा कम ही मिलता है श्वेता, लेकिन बात यहाँ पर आप क्या कहते हैं कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी की थी, वो धरने पर बैठे थे। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि देखिए जो एसओपी और पुलिस को जो पूरा अधिकार होता है, जब इस तरह का प्रोटेस्ट होता है तो ग्रेडेड जो रिस्पांस है वो अधिकार होता है पुलिस का। अगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन है, परमिशन है, तो उसमें अलग अधिकार होते हैं, लेकिन अनलॉफुल असेंबली है तो वहां पर अगर भीड़ उग्र हो रही है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसके लिए एक प्रॉपर एसओपी है। उस एसओपी के तहत पुलिस फोर्सेस उनके पास जो भी तंत्र मिले हैं, यंत्र मिले हैं, उनका इस्तेमाल कर सकती है। इसमें पैलेट गन के को लेकर जो एफआईआर दर्ज कराई है, एफआईआर है, इसकी जाहिर सी बात है इसकी पूरी जांच होगी। और अगर नीली पोशाक वाला, जैसा आपने कहा, अगर कोई अर्धसैनिक बल का जवान होता है तो जाहिर सी बात है उससे भी पूछा जाएगा कि अगर उसने पैलेट गन चलाया तो किस स्थिति में चलाया। तो एक लंबी जांच की प्रक्रिया है, लेकिन फिलहाल जो धरना प्रदर्शन चल रहा था,
0: क्योंकि यूज ऑफ फोर्स भी अगर हम कहते हैं तो वो भी परिभाषित नहीं है, वो बदलते हुए समय के अनुसार वो बदलता भी रहता है कि कितना फोर्स उस समय के लिए, उस स्थिति को काबू में करने के लिए पर्याप्त है। अरविंद ओझा, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। यानी आगे एक लंबी प्रक्रिया चलेगी, लेकिन राहुल गांधी समझ चुके हैं कि आंदोलनों की ये राजनीति लंबे वक्त तक फायदा देती है, इसीलिए पिछले एक महीने से राहुल गांधी ने इस धरना पॉलिटिक्स पर जोर दिया है, चाहे वो जंतर मंतर के छात्रों का मुद्दा संसद में उठाना हो या फिर इस आंदोलन में पुलिस की हिंसा का मुद्दा। राहुल गांधी का एजेंडा एकदम क्लियर है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे आज पूरे दिन राहुल गांधी के धरने का ये एपिसोड चला।
5: यह है राहुल गांधी की धरना पॉलिटिक्स का दूसरा एपिसोड। 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन हुआ जिसमें हिंसा हुई, तो 21 जुलाई को राहुल गांधी ने पहले प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया था। अब करीब एक महीने के बाद 21 अगस्त को राहुल गांधी ने आज संसद मार्ग थाने के बाहर धरना दिया। आरोप है कि दिल्ली पुलिस एक पैलेट गन से घायल पीड़ित की एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है।
1: हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे।
5: राहुल गांधी पैलेट पीड़ित 19 साल के साहिब लोचाप के परिवार के साथ धरने पर बैठे और आरोप लगाया कि पैलेट की चोट से आंख की रोशनी गवा चुके साहिल के साथ न्याय नहीं हो रहा।
1: ये है एम्स की रिपोर्ट जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे।
5: राहुल गांधी इन्हीं साहिल को लेकर पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, तब भी उन्होंने दिल्ली पुलिस और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन शायद दिल्ली पुलिस को ये अंदाजा नहीं था कि राहुल गांधी अब उन्हीं के थाने के बाहर इस पीड़ित को लेकर धरने पर बैठ जाएंगे। उनके साथ प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और जयराम रमेश भी मौजूद। राहुल का आरोप है कि 20 जुलाई के प्रदर्शन में साहिल पैलेट गन से घायल हुए, 14 अगस्त को उन्होंने दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी लेकिन उन्हें शिकायत की कॉपी ही नहीं मिली, 17 अगस्त को ईमेल और फोन से भी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई लेकिन कुछ नहीं हुआ।
6: साहिल पर जो गैर कानूनी ढंग से पुलिस एक्शन हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, उस संदर्भ में FIR दर्ज किया जाए और FIR नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर उनको दिया जाए। मांग सिंपल है, FIR दर्ज करो, रजिस्ट्रेशन नंबर दो और हम यहाँ से निकलेंगे।
5: पीड़ित छात्र की शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं करने के पीछे कोई वाजिब कारण नहीं बताया गया है, लेकिन दलील यह है कि 20 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता और पुलिस वालों पर हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यों की हाई पावर कमेटी बनाई। ये कमेटी पैलेट गन, इलेक्ट्रिक शॉक बैटन के इस्तेमाल से लेकर महिलाओं से अभद्रता और पुलिस वालों पर हमले के तथ्यों की जांच करेगी। इसके लिए कमेटी घटना के दिन के सारे ड्रोन, CCTV, बॉडी कैम रिकॉर्डिंग के सबूतों की मदद भी लेगी और दोनों पक्षों के घायलों को अंतरिम मुआवजा देने पर भी रिपोर्ट देगी। बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है?
7: जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं।
5: दरअसल 20 जुलाई को चली पैलेट गन को लेकर पहले तो दिल्ली पुलिस और सरकार ने इनकार किया, फिर GD एंट्री में 2 राउंड पैलेट फायरिंग की पुष्टि हुई और मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट में भी पता चला। RTI में खुलासा हुआ कि लेडी हार्डिंग अस्पताल में पैलेट गन जैसी चोट से जख्मी 9 घायल पहुंचे थे। इसी तरह सफदरजंग के दस्तावेज में पता चला कि एक मरीज पैलेट गन से जख्मी आया था। पैलेट के पीड़ित
8: ध्यान हटाया जाए। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से यह फैसला किया है कि वो वंदे मातरम के सभी 6 छंद नहीं बल्कि केवल 2 छंद गाएंगे और ये विवाद अब पूरे देश में फैल गया है। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी इससे ध्यान हटाना चाहते थे इसीलिए संसद मार्ग थाने में धरने पर बैठे।
5: राहुल के इस धरने पर बीजेपी ने सबसे पहले यही आरोप लगाया कि राहुल गांधी वंदे मातरम से ध्यान हटाने के लिए ये सब कर रहे हैं।
7: राष्ट्र विरोधी चेहरे को छिपाने के लिए और इस जो भारी फजीहत हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने आनन फानन में यह ध्यान भटकाने का यह नया ड्रामा रचा है।
9: बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं अराजकता की राजनीति करते हैं।
5: 15 अगस्त पर कांग्रेस के दफ्तर से शुरू हुआ ये वंदे मातरम का विवाद अब पूरे देश में फैल गया है। पहले सोनिया गांधी की वंदे

0: मातरम को रुकवाने की ये तस्वीरें आईं। फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बुधवार को ऐलान किया कि पार्टी अपने सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 में से सिर्फ शुरुआती 2 पैरा गाएं। बीजेपी 15 अगस्त लगातार इसे मुद्दा बनाए हुए थे। कल पहले अमित शाह का बयान आया था, आज राजनाथ सिंह भी सामने आए, वंदे मातरम का विरोध करना कांग्रेस के खतरनाक इरादे बताए।
1: कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम का सम्मान करने से औपचारिक रूप से न केवल इनकार करना बल्कि सीधे सीधे विरोध करना अत्यंत दुर्भाग्यजनक और संवैधानिक दृष्टि से बहुत गंभीर विषय है। भारत के संविधान के अनुसार संसद देश का सर्वोच्च संस्थान है और संसद से पारित कोई भी कानून हर व्यक्ति के लिए बाध्यकारी है। यदि कोई इसे मानने से मना करता है तो निश्चित रूप से संविधान के प्रति उसकी निष्ठा संदेह के घेरे में आ जाती है, और यदि राष्ट्रगीत का सम्मान करने से कोई मना करता है तो उसकी देशभक्ति पर भी सवालिया निशान स्वाभाविक रूप से लग जाता है।
0: और दोपहर में जब राहुल गांधी का यह धरना शुरू हुआ तो बीजेपी ने तुरंत लाइन पकड़ ली कि कांग्रेस वंदे मातरम पर पूरी तरह से घिर गई थी, इसीलिए ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी ने धरना पॉलिटिक्स का एपिसोड 2 शुरू कर दिया।
2: चारों ओर से घिर चुकी है, राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर जनता कांग्रेस से जवाब मांग रही है। कांग्रेस के एक बड़े नेता तिरंगे वाले केक को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने इसी राष्ट्र विरोधी चेहरे को छिपाने के लिए और इस जो भारी फजीहत हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने आनन फानन में यह ध्यान भटकाने का यह नया ड्रामा रचा है।
3: बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं अराजकता की राजनीति करते हैं। अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। तो ये क्या मतलब है इसका?
0: अब इन आरोपों में कोई सच्चाई है या ये सिर्फ राजनीतिक आरोप है ये तो पता नहीं, लेकिन अब वंदे मातरम के सभी 6 छंदों का विरोध हिमाचल से लेकर केरल तक हो रहा है और दोनों ही जगहों पर कांग्रेस की सरकार है। यह है त्रिवेंद्रम का कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और विरोध करते ये छात्र SFI के कह रहे हैं कि ये केरलम है जहां आप पूरा वंदे मातरम नहीं गा सकते। खबरों के मुताबिक त्रिवेंद्रम के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के तहत युवा प्रोफेशनल्स का राउंड टेबल आयोजित किया गया था। राउंड टेबल से पहले वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ तो SFI के छात्रों ने बीच में ही उसे रुकवा दिया। SFI के छात्रों का कहना था कि ये केरलम है और यहाँ आप पूरा वंदे मातरम नहीं गा सकते। बीजेपी 15 अगस्त के कार्यक्रम में वंदे मातरम न गाए जाने को लेकर आज सड़कों पर है। बीजेपी केरल के सभी जिला मुख्यालयों पर वंदे मातरम कार्यक्रम आयोजित कर रही है। वहीं कांग्रेस भी वंदे मातरम के 2 छंद गाने पर ही अड़ी है। उधर वंदे मातरम को लेकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे राष्ट्रगान के साथ शुरू हुई। इसके बाद विपक्ष ने सदन के भीतर वंदे मातरम गाए जाने की मांग की, लेकिन अध्यक्ष से अनुमति नहीं मिली। इसके बाद सदन में हंगामा हो गया। सत्ताधारी कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने राष्ट्रगान का विरोध किया, तो हिमाचल में विपक्षी बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान किया है।
4: बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने राष्ट्रीय गान का अपमान किया। अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्रीय गान गाने के लिए सबको उठाने की उठाया और पहले ही हाथ खड़ा कर दिया कि राष्ट्रीय गान गाने से पहले हमें इसके राष्ट्रीय गीत के बारे में बताया जाए। विधानसभा की परंपरा रही है कि राष्ट्रीय गान गाया जाना चाहिए। अभी तक स्कूल में, शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय गान बड़े सम्मान के साथ गाया जाता है।
5: वो देश के कुछ लोगों को प्रसन्न करने के लिए राष्ट्रगीत सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम का अपमान कर रहे होंगे वो CWC और

0: कांग्रेस की पार्टी में जो कुछ करते रहें, पर देश की भावना और राष्ट्रीय गीत की इस भावना को अपमानित नहीं कर सकते। इसको तो मैं इसका इसका मैं बिल्कुल निंदा करता हूं।
1: कुल मिलाकर वंदे मातरम के विरोध की इस राजनीति में हर कोई अपने अपने लिए लाभांश खोज रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: इन आंदोलनों का राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीति को कितना फायदा मिलेगा, ये तो आगे वक्त तय करेगा। लेकिन एक बात तय है कि राहुल गांधी को छात्रों के हित की राजनीति बहुत सूट कर रही है। वो जान रहे हैं कि छात्रों के हितों की बातें करने में स्कोप भी बहुत ज्यादा है और उसका प्रभाव भी। और सबसे बड़ा प्रभाव तो ये है कि अगर जेन जी और जेन अल्फा प्रभावित हो गए तो जीवन भर के वोटर बन जाएंगे। इसीलिए राहुल गांधी का छात्रों की गूंज का चौथा एपिसोड कल पुणे में हो रहा है।
1: 17 जून कोटा राजस्थान, 17 जुलाई देहरादून उत्तराखंड, 8 अगस्त प्रयागराज उत्तर प्रदेश और अब 22 अगस्त पुणे महाराष्ट्र। राहुल गांधी का छात्रों की गूंज का कार्यक्रम। 17 जून को राहुल गांधी ने कोटा से इसकी शुरुआत की थी। लगातार आ रही पेपर लीक की खबरों के बाद राहुल गांधी ने कोटा में पहला कार्यक्रम किया।
3: अप्रोक्सीमेटली
4: 4 लाख।
1: फिर अगला कार्यक्रम प्लान करते करते कांग्रेस को एक महीना लगा। 17 जुलाई को देहरादून में छात्रों की गूंज का दूसरा एपिसोड हुआ। तब तक दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के बैनर तले छात्रों का मंच सज चुका था। 20 जुलाई को छात्रों ने संसद मार्च ही कर दिया, जिसके बाद हिंसा हुई और फिर शुरू हुई राहुल गांधी की रिवाइवल पॉलिटिक्स। राहुल गांधी लगातार छात्रों को मुद्दा बनाए हुए हैं, चाहे पेपर लीक की बात हो या उन पर दिल्ली में हुए लाठीचार्ज की। इसी मुद्दे पर संसद का पूरा मानसून सत्र धुल गया, लेकिन राहुल गांधी ने छात्रों का मुद्दा नहीं छोड़ा। और अब शनिवार 22 अगस्त को बारी है पुणे की। पुणे में मंच सज चुका है, मैदान तैयार है, बस राहुल गांधी का इंतजार है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी छात्रों के इन मुद्दों को अपनी पॉलिटिक्स के रिवाइवल का कोई चांस मान रहे हैं?
5: We are doing this program in Pune. You must have heard about it. Chhatro Ki Goonj program, only for women. And in preparing some of the stuff for that program, the presentation for that program, I decided that I would ask the ladies in my team about what their thoughts are being Indian women. And so we did this little exercise where each one of them put out over 20, 30, 40 minutes, exactly how they felt being an Indian woman, how society treated them, the good things, the bad things. And I thought it was quite a good exercise because it helped us a lot, helped me understand a little bit about what you're feeling. My team decided, why not open this to everybody and make it accessible, and let's ask the women who are going to be coming to this program, the women who are going to see this program, what they feel about being an Indian woman.
1: बीजेपी की पूरी कोशिश है कि राहुल गांधी का यह कार्यक्रम किसी भी तरह से फ्लॉप हो जाए। राहुल गांधी पर मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष ने बड़ा आरोप लगाया है। अमित साटम मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जिनका कहना है कि राहुल गांधी इस कार्यक्रम में 25,000 रुपए देकर एंटी नेशनल लोगों को शामिल करा रहे हैं।
6: एंटी इंडिया गैंग से जो उन्होंने पैसे फंड प्राप्त किए है, उस फंड से लोगों को 25,000 रुपए देकर छात्रों की गूंज इस कार्यक्रम में लोगों को बुलाने की वो कोशिश कर रहे हैं। पर राहुल गांधी को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकार से एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ में हाथ मिलाकर हिंदुस्तान में अगर अनार्की क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो इस देश की जेन जी और जेन नेक्स्ट आपको ऐसा थप्पड़ लगाएगी कि उसकी गूंज आपको भविष्य में सुनाई देगी।
1: महाराष्ट्र के बीजेपी के छोटे से लेकर सबसे बड़े नेता तक राहुल गांधी के इस कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तो कल ही कह दिया था कि कांग्रेस के इस कार्यक्रम में उन्हीं की विचारधारा से जुड़े लोगों को बुलाया जा रहा है।
7: छात्रों की गूंज है या राहुल गांधी अपनी जमीन तलाश रहे, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझे जानकारी है, अगर वो एक ओपन इस प्रकार का इवेंट करते तो शायद ये छात्रों से संवाद होता। अभी पूना और पूना के आसपास जितने कांग्रेस लोगों की संस्थाएं हैं,

0: शिक्षा संस्थाएं, उन संस्थाओं की ही लड़कियों को रजिस्टर करना, इस प्रकार का आदेश दिया गया है।
1: अब बीजेपी के इन आरोपों की सच्चाई क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस को छात्रों का ये मुद्दा पूरी तरह से गेम चेंजिंग लग रहा है। छात्रों की समस्याएं जेन्युइन है, जेन जी से लेकर जेन अल्फा तक प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों के हालात तो देश भर में खराब है। छात्रों के मुद्दे उठाने का मतलब है कि एक पूरे परिवार को अपना वोट बैंक बनाना, और कांग्रेस इसे समझ रही है। आज तक ब्यूरो।
2: दिल्ली अगर राहुल गांधी के धरने की वजह से सुर्खियों में रही, तो राजस्थान के जयपुर में सीजेपी टीम पर हमले से दिनभर हलचल रही। सीजेपी के लोग तबेले में चल रहे एक स्कूल की हालत देखने पहुंचे तो वहां उनकी गांव वालों ने पिटाई कर दी।
3: लोग इनका विरोध कर रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए, लोग इनको भगा रहे हैं। आशुतोष आगे के साथ महिला कार्यकर्ता भी है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण एक तरह से कहें कि
4: जयपुर के बगरू इलाके के एक जर्जर स्कूल की हालत देखने गए सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की शुरुआत कुछ ऐसे हुई।
3: जयपुर के रामपुरा में सीजेपी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता आशुतोष सुराका यहाँ पर गांव में स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं, लेकिन ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ आशुतोष और राका सहित पूरी टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची है, और दोनों तरफ यहाँ पर आमने सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, लोग इनको भगा रहे हैं। आशुतोष आगे के साथ महिला कार्यकर्ता भी है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में, और इनको यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष राका के साथ मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी। गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं, ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है, और रामपुरा में यहाँ पर ये देखिए लात घूसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक एक की पिटाई कर रहे हैं, यहाँ पर गांव वाले पीछे भाग रहे हैं,
5: और ये देखिए गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं, और यहाँ पर देखिए ये तस्वीर देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और ये हाथ बिखर चुका है।
4: सीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक सब जान बचाकर किसी तरह वहाँ से भागे। कुछ महिला कार्यकर्ता है वहाँ की,
6: हम तो बच गए, हम लेडीज हैं, हम शायद हमें थोड़ा सा उन्होंने वो दिखाया कि इनको ना मारे, बट हम अगर एक मिनट और वहां रुकते, अगर आप लोग नहीं आते, रस्सियां ले लेके हमारे पीछे लोग थे, लड़कों को ऐसा भगाया गया ताकि लड़कियां अकेली पीछे रह जाएं, अनसेफ फील करें, लेकिन हम अभी भी आपके सामने खड़े हैं, हम भी मिट्टी उछाली गई है, आप देख ही सकते हैं। वो एक और कार्यकर्ता है, उनके गले पे आप देखिए कैसे निशान है, लाल रंग के, उनका गला घोटा गया है, बाकी सारे लोगों को पत्थर मारा गया है।
7: जा रही है हमसे, हमें मिट्टी भी फेंकी है, देखिए ना सर, ये पूरी मिट्टी फेंकी गई है, इन पे भी फेंकी गई है, मुझ पे भी फेंकी गई है। ये गांव वाले चाहते ही नहीं है सर कि बच्चे पढ़े और स्कूल ठीक हो, इन गांव वालों की मिली भगत है सबकी।
2: जयपुर के जिस स्कूल को लेकर सारा हंगामा हुआ, वहां हमारे संवाददाता शरद कुमार जब पहुंचे तो क्या माहौल था? जयपुर के रामपुरा का वो स्कूल कैसा है जिसे लेकर इतना हंगामा हुआ, आप देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में।
4: राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामपुर कंवरपुरा, जयपुर के इस सरकारी स्कूल में अब पढ़ाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इमारत कभी भी धस सकती है।
8: ये देखिए, ये रस्सी लगाकर स्कूल को पैक किया गया है, इसलिए ये कभी भी ध्वस्त हो सकता है। हम सब स्वच्छ भारत, एक ही सपना, भविष्य हो अपना, ये सब लिखा हुआ है, और ये राजकीय विद्यालय रामपुरा है। ये जो है आप देख रहे हैं, ये रस्सी है यहाँ पर, और इस रस्सी के जरिए यहाँ पर से रोका गया है ये, कि बिल्कुल अंदर से दिखाइए एक बार, ये जर्जर हो चुकी है पूरी बिल्डिंग, जिसकी वजह से स्कूल को बंद करके तबेले में शिफ्ट किया गया। इनका कहना था कि हमने दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया था, वो 3 किलोमीटर दूर था, गांव वालों ने कहा कि हमारे गांव में व्यवस्था कीजिए, और उन्होंने ये पोस्टर भी लगा रखा है सीजेपी के कार्यकर्ताओं से आने से पहले, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जयपुर यहाँ से बगरू में 85 लाख रुपए के ये कामकाज हमने कराए हैं, विधायक बीजेपी ने इस जीर्ण शीर्ण स्कूल पे ऊपर पोस्टर लगा रखा है। ये बहुत सारे महिलाएं, उनसे भी बातचीत करते हैं, इनके बच्चे तो जाते होंगे स्कूल में, आप लोग यहीं रहते हैं गांव में?
9: गांव में रहो सब।
8: तो गांव के स्कूल की स्थिति आप देख रहे हैं?
9: देख रहे थे, टूट रही चना, पड़ रही चना,
8: तो इसको तो बननी चाहिए।
9: बहुंडी खोल मिला बाड़ा में,
8: बाड़ा में खोल रखा है,
9: कजा अंडा बनावला जितना उंडी पड़ो।
4: जब आज तक की टीम सरकारी स्कूल की जर्जर इमारत के पास तबेले में चल रहे विद्यालय की रिपोर्ट करने पहुंची, तो वहां जिला शिक्षा अधिकारी आ चुके थे। उनसे आज तक का सीधा सवाल,
8: ये बताइए इस तबेले से मुक्ति कब मिलेगी?
10: ये अजी तबेला नहीं, आप फिर वो आप तबेला तबेला बोले जा रहे हो। ये अपने ये व्यवस्था कर दी कि पास में जो भी कोई सुरक्षित जगह है वहां पर बच्चों को शिफ्ट कर दे सुरक्षा के लिए, यानी

0: सबसे पहले सेफ्टी है बच्चे की, बच्चे को दुर्घटना नहीं होनी चाहिए।
1: लोग तो कह रहे हैं 2.5 साल से कर,
0: कौन कह रहा है?
1: जो इसका मालिक है।
0: मालिक तो कुछ भी कहते हैं साहब, 2.5 साल कहाँ होगी, जब सर्जरी आपने 1 साल पहले किया है तो 2.5 साल कैसे हो जाएंगे भाई साहब?
1: तो कब इनको बेहतर जगह?
0: बहुत जल्दी हो जाएगा। 1000 करोड़ का प्रस्ताव पूरे राजस्थान का भेजा हुआ है सर सेंट्र केंद्र में, और जल्दी वो पैसा आने वाला है।
1: सच्चाई बताइए, ये हाँ गांव वालों को बताया गया है कि 14 अगस्त को 18 लाख रुपए डीएमएफटी फंड से आ गया है, और आप कह रहे हैं भारत सरकार से आएगा।
0: डीएमएफटी अलग फंड होता है, डीएमएफटी तो अपने कलेक्टर के पास होता है। उसमें क्या होता है कि एमएलए को एक अधिकार होता है, विधायक महोदय को, विधायक महोदय अपने अपने क्षेत्र में काम करवा सकते हैं।
1: तो क्यों नहीं हो रहा है? वो तो हो सकता है
0: जी, पैसा आया थोड़ी है। जैसे आप एमएलए साहब आए, उन्होंने घोषणा कर दी साहब 12 लाख रुपए हम इस चीज को लिए निर्माण के लिए देंगे।
1: कितना दिन लगेगा?
0: अब इसमें 2-4 मिनट लगते ही है।
2: 10 मिनट की बातचीत में डीईओ साहब ने तमाम सियासी और अफसरशाही की पेचीदगियां बता दी, बस तारीख नहीं बता रहे थे। अगला सवाल तारीख पर था,
1: तो डेट पूछ रहा हूं मैं। तो
0: डेट नहीं होती इसमें। अब जैसे बात सैंक्शन जो पैसा हुआ, अब काम 2-4 महीने तो काम में चालू होने में लगेंगे, और 2-3 महीने में बनेगा, नींव खुदेगी, नींव खुदने के बाद उसका प्लेंथ लेवल पे आएगा, फिर इसमें छत पड़ेगी, फिर रंग रोगन होगा, फिर टाइम तो लगता ही भाई साहब।
1: जिला शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि हम इन बच्चों को अभी जल्दी शिफ्ट कर देंगे इस यहाँ से। ये जो स्थिति है जहाँ पर ये पढ़ रहे हैं, जहाँ पर आप दिख रहे हैं कि चारा भी रखा हुआ है और 2 कमरों में बच्चे भी पढ़ रहे हैं, और 2-4 महीने में स्कूल भी बन जाएगा।
2: रामपुरा कवरपुरा के स्कूल की बदहाली एक तरफ सरकारी व्यवस्था की वानगी पेश कर रही थी, तो इसी रामपुरा से लौटते वक्त आज तक की टीम की नजर पास के गाँव खुसर के एक स्कूल पर पड़ी। स्कूल की इमारत चमक रही थी, बच्चे साफ सुथरी पोशाक में थे। आज तक की टीम को पता चला कि ये भी सरकारी स्कूल ही है।
1: राजस्थान में बहुत सारे जर्जर स्कूल आपने देखे होंगे, मगर रामपुरा कंवरपुरा जहां पर पूरा विवाद चल रहा है स्कूल को तबेले में चलाए जाने को लेकर, वहां पर एक चमचमाती हुई बिल्डिंग बगल में ही स्कूल की है, जहां पर देखकर हम रुके और पता किए तो पता चला कि ये पूरा स्कूल जो है भामाशाहों के सहयोग से बनाया गया है। घुसते ही आपको यहाँ बैठने की व्यवस्था दिखाई देगी, और ये पंखे देखिए, लाउड स्पीकर देखिए, बाथरूम देखिए, मंदिर, पेड़ पौधे सब यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि ये कोई सरकारी स्कूल नहीं बल्कि निजी स्कूल है, और ग्रामीण इलाके में ये स्कूल यहाँ पर चल रहा है। तो देख सकते हैं क्लासरूम में, यहाँ पर क्लासरूम में भी अगर आप जाएंगे तो हमने घूम कर देखा किस तरह से यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, कुर्सियाँ टेबल सब यहाँ पर नए दिखाई दे रहे हैं, और सारे के सारे गांव के बच्चे हैं। पढ़ाई कैसी होती है?
3: बहुत अच्छी होती है, हमारे सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और हमारे स्कूल का रिजल्ट हम 6 सालों से लगातार 100% रहा है और आगे भी रहेगा।
4: पिछली बार 95% 12th में बच्चे ने अचीव किए हैं, और सब्जेक्ट ऐसे हैं कि 100 में से 100 नंबर।
1: ये गांव कौन सा है?
4: खुसर।
1: खुसर,
4: यस सर।
1: देखिए खुसर गांव है, नाम क्या था आपका?
3: अंजलि प्रजापति।
1: अंजलि बता रही थी यहां पर कि 100% रिजल्ट है इस स्कूल का, तो सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं है बल्कि पढ़ाई भी काफी यहां पर अच्छी हो रही है, तभी इस तरह के रिजल्ट है। जो प्रिंसिपल साहब है उनसे भी हम बातचीत करते हैं, काफी यंग दिखाई दे रहे हैं प्रिंसिपल साहब, क्या नाम है आपका?
5: मेरा नाम शंकर चौधरी सर।
1: शंकर जी, ये नई बिल्डिंग कैसे बनी है? राजस्थान में तो हर जगह जर्जर बिल्डिंग बनी हुई है।
5: सर, हमने राज्य सरकार के सहयोग से और हमारे शिक्षा मंत्री जी और विशेषकर हमारे एमएलए साहब ने हमें बहुत सारा सहयोग प्रदान किया, हमने भामाशाह के सहयोग से इस विद्यालय का निर्माण करवाया।
1: भामाशाह के से दान लेकर?
5: यस, लेकिन जहां भी तकनीकी समस्या आती है हर एंगल पर हमारी राज्य सरकार साथ खड़ी थी सर।
1: तो थोड़ा सा ये पहले ये बिल्डिंग कैसी रही होगी?
5: सर पहले आप कल्पना नहीं कर सकते हैं सर, लेकिन कोशिश की हमने, जब से सरकार आई हमने प्रयास किया सर।
1: देखिए ये एक व्यक्ति परिवर्तन ला सकता है, यहाँ अगर हमको दिखाई दिया, ठीक रामपुरा कमरपुरा जहाँ पर तवेले में स्कूल चल रहा है जिसका विवाद चल रहा है, और वहाँ पर इसके बगल में ही ये स्कूल है, खुसर गांव है। इनका कहना है कि ये स्कूल ही बहुत बुरी स्थिति में थी, मगर पूरी गर्मी को छुट्टियों में जो यहाँ के प्रिंसिपल थे वो घूम घूम कर जा कर लोगों से बातचीत करके भामाशाहों से पैसे लाकर इस तरह से यहाँ पर स्कूल बनाए हैं। अगर टीचर प्रिंसिपल चाहें तो लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं, और इस तरह से शानदार स्कूल बनाया जा सकता है। ये खुसर गांव के स्कूल में आकर दिखाई दे रहा है। शरद कुमार, खुसर, जयपुर, आज तक।
6: छात्र और बेरोजगार आजकल दोनों पर हर नेता की नजर है, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों की ही मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। ग्वालियर में नर्सिंग छात्रों का अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग के 56 नर्सिंग कॉलेजेस से जुड़े छात्र प्रभावित हैं। छात्रों की 4 प्रमुख मांगे हैं, लंबित रिजल्ट जारी करें, लंबित परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित किया जाए।

0: पात्र छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए और कॉलेज की गलती से जिन छात्रों की स्कॉलरशिप रुकी है उनकी फीस माफ की जाए।
1: ग्वालियर में नर्सिंग छात्रों का हल्ला बोल, कटोरा ताल बना नर्सिंग का जंतर मंतर, परीक्षा रिजल्ट और स्कॉलरशिप को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन, 56 कॉलेजों के छात्रों के भविष्य पर सवाल। दिल्ली के बाद अब ग्वालियर में भी नर्सिंग छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। NSUI के बैनर तले BSc और JNM नर्सिंग के छात्र कटोरा ताल स्थित फ्लैग मार्च पॉइंट पर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ गए हैं। छात्रों ने आंदोलन स्थल को नर्सिंग का जंतर मंतर नाम दिया है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा और रिजल्ट में देरी, कथित फर्जी कॉलेजों, कागजों पर फैकल्टी और स्कॉलरशिप अटकने की वजह से हजारों छात्रों का भविष्य अधर में है।
2: जो कि हमारी परीक्षा 3 साल में कंप्लीट करा के हमें डिग्री मिलनी चाहिए थी, जो कि हमें 6 साल होने को कंप्लीट होने को आए, लेकिन हमें कोई डिग्री अभी तक प्राप्त नहीं है और इसके जिम्मेदार हमें आज तक नहीं पता चल रहा है। हमारा गवर्नमेंट है, हमारा कॉलेज है, कोई जवाब देने के लिए हमें रेडी नहीं है। यहाँ पे हम क्या करें, हमारा जो समय खराब हुआ है, जो हमें वापस कर सकते हैं हमारे 6 साल। हमारी यही मांग है जल्द से जल्द एग्जाम करवाए जाए और रिजल्ट प्राप्त हुए जाए हम लोगों को। सारे बच्चे परेशान है, हम ये नहीं कहते, कोई भी बच्चा कहता हम गरीब घर से आए, पैसा हमारा है, हमारा टाइम है, तो हमें अपना हक चाहिए, ये हमारी मांगे हैं।
1: छात्रों का कहना है कि GNM का 3 साल का कोर्स 6 साल में भी पूरा नहीं हो रहा है, तो वहीं BSc नर्सिंग का 4 साल का कोर्स 7 साल तक खिंच गया है। इतना समय बीतने के बाद भी डिग्री मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। छात्रों ने बताया कि साल 2020, 2021, 2022 के BSc और 2021-2022 के GNM के एग्जाम और रिजल्ट पिछले 3 साल से पेंडिंग पड़े हैं। इसके अलावा शहर में फर्जी कॉलेजों का बड़ा खेल चल रहा है। एक ही बिल्डिंग में नियमों को ताक पर रखकर 3-3 कॉलेज संचालित हो रहे हैं। फैकल्टी सिर्फ कागजों पर दिखाई जा रही है, जबकि हकीकत में मौजूद ही नहीं है। कई छात्रों की स्कॉलरशिप भी कॉलेज की गलती से अटक गई है। छात्रों की मांग है कि जिनके स्कॉलरशिप रुकी है उनकी फीस माफ की जाए। छात्रों का कहना है कि मामला सरकार के संज्ञान में होने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ा।
3: इनकी परीक्षाएं पिछले 4 साल से समय पर आयोजित नहीं की जा रही हैं और इसका पूरा दोष ग्वालियर के जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज हैं, एक एक बिल्डिंग में 3-3 कॉलेज चला रहे हैं और पूरी तरह से उनकी जो फैकल्टी लगी हुई है कॉलेजों में पूरी तरह से फर्जी है और इसका पूरा परेशानी बच्चों को झेलनी पड़ रही है। ये बच्चियां हैं जो गरीब परिवारों से आती हैं, इनकी ना तो स्कॉलरशिप मिली, ना इनके समय पर परीक्षाएं हो रही हैं। ये बच्चियां गरीब परिवार से आती हैं, 3-3 साल में अपनी डिग्री करने के बाद इन लोगों ने सोचा था कि हम 20-25 हज़ार की कहीं नौकरी करेंगे, कहीं सरकार में नर्स बनने का काम करेंगे, लेकिन आज तक ये 5-6 हज़ार की नौकरी करने को मजबूर हैं और कॉलेज द्वारा इनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही है। कॉलेज वाले बोलते हैं हम आपकी बात आगे कर रहे हैं, कॉलेज क्या बात सुनेगा जब कॉलेज खुद फर्जी है, CBI से जाके उन्होंने स्टे लिया।
1: छात्रों की 4 मुख्य मांगे हैं। पहला, सभी लंबित परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द जारी किए जाएं। दूसरा, लंबित परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित कर शेड्यूल जारी हो। तीसरा, सभी पात्र छात्रों को बिना किसी शर्त के परीक्षा में बैठने दिया जाए, क्योंकि लापरवाही छात्रों की नहीं है। चौथा, कॉलेज की वजह से जिनकी स्कॉलरशिप रुकी है उनकी फीस माफ हो। छात्रों ने कहा कि ये लड़ाई किसी संस्था या व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने शिक्षा अधिकार के लिए। मांगे पूरी होने तक कटोरा ताल फ्लैग पॉइंट पर यह अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। सर्वेश पुरोहित, ग्वालियर आज तक।
0: मध्य प्रदेश की सड़कों पर मवेशियों का आतंक अब सिर्फ ट्रैफिक की परेशानी नहीं, जानलेवा खतरा बन चुका है। भिंड में हाईवे पर बैठे गायों के झुंड को बचाने की कोशिश में भीषण हादसा हुआ, 8 मजदूरों की जान चली गई, 32 घायल हो गए। सवाल यह है कि जब सरकार गोवंश संरक्षण पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, गायों के चारे के लिए अनुदान बढ़ाकर 40 रुपए प्रतिदिन कर रही है, तो फिर वही गायें हाईवे पर कैसे हैं? आज तक की पड़ताल में भोपाल से लेकर रायसेन, राजगढ़ और भिंड तक सड़कों पर मवेशियों का कब्जा नजर आया, यानी सवाल केवल गायों का नहीं, व्यवस्था, गौशालाओं और जिम्मेदारी का है।
1: भिंड में आधी रात हाईवे पर दौड़ती मजदूरों से भरी पिकअप, सामने डंपर और सड़क पर बैठे गायों का झुंड। गायों को बचाने की कोशिश हुई, लेकिन पिकअप और डंपर की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भयावह था कि 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 32 मजदूर घायल हो गए।

0: पिकअप और डंपर की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भयावह था कि 8 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 32 मजदूर घायल हो गए। हादसा भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे 713 पर रात करीब 1 बजे चिमका गांव के पास हुआ। प्राथमिक जांच में सामने आया कि हाईवे पर बैठी गायों के झुंड को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ।
1: गांव जा रहे थे बेला और सामने से ट्रक ने टक्कर मार दी तो गाड़ी पलट गई। कुछ लोग साथी घायल हैं, कुछ की डेथ हो चुकी है।
2: ये सभी धान लगाने के लिए मजदूरी करने डबरा क्षेत्र में चिनोर क्षेत्र में आए थे, वहाँ से वापस घर जा रहे थे तो ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है। अभी हम उसी में लगे हुए हैं, इनको अभी बहुत लोगों की पहचान उनके परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है।
0: लेकिन भिंड की यह तस्वीर किसी एक जिले की कहानी नहीं है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर हाईवे पर बारिश के दिनों में मवेशियों के झुंड सड़कों को अपना ठिकाना बना लेते हैं और जब सड़क पर गाय सामने तेज रफ्तार वाहन और बचने की जगह कम हो तो एक छोटी सी चूक जिंदगी को मौत में तब्दील कर देती है। मध्य प्रदेश में सड़कों पर मवेशियों की समस्या कितनी जानलेवा है उसका अंदाजा सरकारी आंकड़ों से हो जाएगा। मध्य प्रदेश गृह विभाग के आंकड़े बेहद डराने वाले हैं क्योंकि पिछले 3 साल में मवेशियों की वजह से 300 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई और इन हादसों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी समस्या की सच्चाई जानने के लिए आज तक ने मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन, राजगढ़ और भिंड में हाईवे की पड़ताल की और हर जगह तस्वीर लगभग एक जैसी मिली। आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह पहुंचे भोपाल से रायसेन को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 146 पर। यहां जगह जगह गायों के झुंड सड़क किनारे और सड़क पर डेरा डाले नजर आए।
3: इस वक्त हम भोपाल से रायसेन की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे पे हैं और अगर यहाँ पे भी आप देखें तो सड़क पर बेपरवाह होकर के ये मवेशी इसी तरीके से खुलेआम चलते हैं और आप देखिए कि कैसे गाड़ियों को यहाँ पर रुकना पड़ता है, ब्रेक मारना पड़ता है कई बार अचानक से। खास तौर से जो दोपहिया वाहन चालक होते हैं उनके सामने मुसीबत ज्यादा होती है। अचानक से जब वो ब्रेक मारते हैं, अगर पीछे से कोई दूसरी गाड़ी आ रही हो या फिर उनका जो दोपहिया वाहन होता है, देखिए अब सामने से जो क्रेटा गाड़ी आ रही है उसके बिल्कुल सामने मवेशियों का झुंड है पूरा और उसे उसके बीच में से रास्ता निकाल के जाना पड़ा है। और ये जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पे बता रही है कि कैसे इस वक्त जो ज़्यादातर नेशनल हाईवे है मध्य प्रदेश के, बारिश के दिनों में खास तौर से वहाँ पर ये तस्वीर बेहद आम हो जाती है। और अभी भी आप देखिए गाड़ियों को कैसे निकलना पड़ रहा है, इन मवेशियों के जो झुंड होते हैं उनके बीच में से इन गाड़ियों को निकलना पड़ता है और यही दुर्घटना की एक बड़ी वजह बनती है। दिन के समय में तो ये मवेशी आसानी से दिख जाते हैं लेकिन असल समस्या रात के अंधेरे में आती है जब मवेशी कई बार अंधेरे में दिखते नहीं हैं और उनकी भी जान को नुकसान होता है और जो वाहन सवार होते हैं, वाहन चालक होते हैं, उनकी भी जान कई बार इन मवेशियों की वजह से मुसीबत में आ जाती है। और इसी की एक तस्वीर भिंड में देखने को मिली जहां मवेशी को बचाने के चक्कर में पिकअप वैन बेकाबू होकर ट्रक से टकराई और कई लोगों की मौत हो गई। लेकिन हजारों करोड़ों रुपए के बजट के बावजूद मध्य प्रदेश में जो पशुपालन विभाग को दिया जाता है इन्हीं गायों के लिए, ताकि ये जो गाय हैं सड़कों पर ना रहे, गौशालाओं में जाएं या फिर जो ग्राम पंचायतें हैं, नगर निगम हैं, वो उनका बेहतर रख रखाव करें, बावजूद इसके हर साल की बारिश में यही कहानी सामने आती है कि मवेशी सड़कों पर आ जाते हैं और खुद के साथ साथ इंसानी जान के लिए भी परेशानी खड़ी कर देते हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल रायसेन हाईवे आज तक।
4: मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से विधानसभा में बताया गया है कि आवारा पशुओं के कारण केवल 2 साल में 237 सड़क हादसे हुए जिनमें 94 लोगों की मौत हुई और 227 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हालांकि पशुपालन मंत्री लाखन पटेल ने भी यह दावा किया है कि अगले 2 साल यानी 2028 तक में मध्य प्रदेश की सड़कों को पूरी तरह से आवारा पशुओं से मुक्त कर दिया जाएगा।
0: हाईवे पर तफरी करती गायों का झुंड, शहर की व्यस्त सड़कों पर मटर गश्ती करते पशुओं के झुंड, चौक बाजार गलियों में घूमते फिरते आवारा पशु। मध्य प्रदेश की सड़कों पर मवेशियों का आतंक अब सिर्फ ट्रैफिक की परेशानी नहीं जानलेवा खतरा बन चुका है। भिंड में 8 मजदूरों की मौत के बाद फिर संगीन सवाल ये है कि जब सरकार गोवंश संरक्षण पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही, गायों के चारे के लिए अनुदान बढ़ाकर 40 रुपए प्रतिदिन कर रही है तो फिर वही गायें हाईवे पर क्यों? क्योंकि सिर्फ भोपाल और रायसेन ही नहीं एमपी के शहर शहर हालात वही है। जो सड़क राजस्थान के झालावाड़ से राजगढ़ होते हुए सीधे भोपाल

0: हालात, वहाँ भी यही हालात दिखे, जो कि स्थानीय सड़क नहीं एक महत्वपूर्ण हाईवे है। यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं। बस ड्राइवर और स्थानीय लोगों के मुताबिक सड़क पर बैठे मवेशी आए दिन हादसों का खतरा पैदा करते हैं।
1: परेशानी आती है सर, उठाना पड़ता है इनको, नीचे उतर के हटाना पड़ता है इनको, गौ माता को परेशानी ज्यादा आती है सर। इनका रख रखाव होना चाहिए सर। नहीं है सर, बहुत सारे गाँव में गाँव में ये गाँव से इधर से गौ माता को इधर भगा देते हैं रोड में, ये सिटी में कहाँ जाते हैं, जंगल जो अकी गए पूरे।
2: इसके लिए सरकार व्यवस्था करे, भाई की गौशाला में मेले आने जाते हैं, जगह जगह रोड में बैठती पड़ रही है और रात दिन मरने की दुर्घटना हो रही है इनकी, फिर भी सरकार इसके बारे में कोई सोच नहीं रही है।
3: ये भी तो रहती है, इनका बहुत आश्चर्य होता है, मर जाती है, कोई का पैर टूट जाता है, कोई का क्या।
0: सड़कों पर मौत की तरह बैठे मवेशियों का सच देखने के साथ अब ये भी जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में इन पर कितना खर्चा किया जाता है ताकि ये सड़क पर ना बैठे। मध्य प्रदेश में कुल 1,57,00,000 गाय हैं। प्रदेश में कुल 3,209 गौशालाएं हैं। इनमें मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना अंतर्गत 2,474 गौशालाएं, स्वयं सेवी संस्थाओं की 719 गौशालाएं और स्थानीय निकाय द्वारा 16 गौशालाएं स्थापित हैं। सरकार एक गाय पर 40 रुपए प्रतिदिन देती है। पिछले 5 साल में यानी 2021 से 2026 तक गायों और गौशालाओं को 1,479 करोड़ 15 लाख रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किए गए। वहीं साल 2026-27 में कुल 620 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट प्रावधान है, जिसमें से 155 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। मगर बड़ा सवाल ये है कि पैसा कहाँ जा रहा है? अगर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं तो फिर गायें हाईवे पर क्यों हैं? इसके पीछे कई वजहें हैं। बड़ी संख्या में बेसहारा गोवंश के लिए गौशालाओं में जगह कम पड़ रही है। पशुओं की देखरेख के लिए बनी सरकारी योजनाएं शत प्रतिशत रूप में जमीन पर नहीं उतर पा रही। आवारा पशु हटाने का जवाब दे प्रशासनिक तंत्र चुस्ती से काम नहीं करता। अधिकारियों की माने तो स्थानीय निकायों को इस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश की सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशुओं की संख्या करीब 9 से 10 लाख है। इसके मुकाबले गौशालाओं में जगह और संसाधन बढ़ाने की रफ्तार धीमी है। ऊपर से प्रशासनिक स्तर पर फंड और व्यवस्थाओं का समय पर नहीं पहुंचना भी समस्या को बढ़ाता है। इसकी तस्वीर देखने को मिलती है भोपाल से सटी कुठार ग्राम पंचायत की गौशाला में, जहां गायों के लिए समय पर फंड नहीं पहुंच रहा है।
4: अप्रैल से और अभी तक, जैसे अभी अगस्त चल रहा है, अभी तक कोई पैसा नहीं आया है। तो मतलब 3 से 4 महीने हो गए हैं, तो जो पैसा डलना चाहिए था 40 रुपए गाय के हिसाब से, वो पैसा नहीं डला है। और क्या, उस कारण से गाय भूखी रहती है। अब भूखी रहती है तो उनको बाहर निकालना पड़ता है हमें, तब जाके वो चर पाती है जंगल में। और जंगल भी कहाँ, बाजू में आप देख रहे हैं ये खाली जगह है, इसी जगह में चढ़ती है गाय और यही रोड पे पहुंच जाती है।
0: ऐसे में सवाल उस पूरी व्यवस्था का है जिस पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद मवेशी हाईवे पर पहुंच रहे हैं। सड़क पर मवेशी अगर व्यवस्था की लापरवाही से पहुंचता है तो अगले हादसे का जिम्मेदार कौन होगा? गौशालाएं हो, बजट हो, चारे का अनुदान हो या स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी, अब जरूरत सिर्फ योजनाओं की नहीं जमीन पर उनके असर की, क्योंकि हाईवे पर मवेशियों का झुंड सिर्फ सड़क नहीं रोकता, जिंदगी रोक देता है। राजगढ़ से पंकज शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
5: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए खबरदार।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: आगे आगे,
9: अरे उधर
8: उधर गया। करेक्ट करेक्ट,
10: मिल गया।
11: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर।
3: आश्चर्य जनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम?
2: क्रॉसबॉन्ड सुपर स्ट्रॉन्ग।
3: सुपर स्ट्रॉन्ग
2: और मॉइस्चर प्रूफ।
3: वारंटी
2: 15 साल की।
3: कदम
2: सर प्लीज
3: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन्ड से ही बनेंगे।
4: क्रॉसबॉन्ड HGMR Max फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।

0: विश्राम।
1: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
2: एक हिंट तो देते।
3: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
4: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 20 रुपए का कैशबैक 20 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
5: इट्स द माय वे।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
5: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
6: पापा
7: सॉरी यार, ये गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
8: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
7: छक्का?
8: सब कैशलेस हो गया है।
7: हाँ
9: तो भरोसा है।
10: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
11: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आगे आगे उधर करेक्ट करेक्ट
1: मिल गया।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
2: EU
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: आगे आगे
5: अरे उधर
4: उधर
5: करेक्ट करेक्ट
6: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: In association with
8: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
9: कंप्लेंट वो क्या फाइल करी, जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गया। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया है, आज उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम किए।
10: इस तरह का कोई भी कृत्य वो गैर कानूनी भी है, कानून के तहत कार्रवाई करने के योग्य भी है। इस तरह की गतिविधियां हरकतें अगर कोई करता है, और पार्टी किसी नेशनल पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने 55 साल तक देश में राज किया, ऐसे पार्टी के मुखिया की उपस्थिति में अगर ऐसा होता है तो लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति और देश के मानबिंदुओं के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा है, उनकी कितनी आस्था है, उनकी कितना उनके मन में पवित्रता का भाव है, देश के सामने प्रकट हो जाता है।
11: मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने देगा ना, मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा। मेरे सीधा सीधा है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, ये मेरा मूल अधिकार है, इसे आप छीन नहीं सकते मुझसे। हाँ मैं अपमान नहीं करूंगा, किसी भी सूरत में अपमान नहीं करूंगा। नहीं मैंने पहले भी नहीं गाया, अब भी नहीं गाऊंगा, उसमें नई बात थोड़ी ना है, मैं खड़ा हो जाऊंगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको उस स्कूल की कहानी बताएंगे जहां पहुंचने से पहले कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं पर हमला हुआ। आशुतोष रांका का आरोप है कि ये स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा था, सरकार को इसकी सुध नहीं थी। उन्होंने ये आरोप लगाया कि हमला करने वाले लोगों को खुद बीजेपी और राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भेजा। आज हम आपको इस हमले की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। हमारे सहयोगी शरद ने एक ऐसी रिपोर्ट बनाई है जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि आखिर इस पूरे फेस ऑफ की इनसाइड स्टोरी क्या है, जिसमें शिक्षा, सियासत और आंदोलन का संघर्ष कांच की तरह साफ साफ नजर आता है। और इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि दिल्ली के पैलेट गन मामले में राहुल गांधी ने अपने धरने से क्या हासिल किया। ये पूरा मामला 20 जुलाई का है, जब जंतर मंतर से शुरू हुए संसद मार्च में पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप लगा था। वो आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी का था, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने इसी मुद्दे को वैसे नहीं उठाया, पैलेट गन का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया। आज हम आपको यही बताएंगे कि पैलेट गन से निकली राहुल गांधी की ये पॉलिटिक्स गृहमंत्री अमित शाह तक कैसे जाती है। और इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि क्यों वंदे मातरम नहीं सिखाता आपस में बैर करना। शर्मिला टैगोर ने कहा है कि वंदे मातरम के दो ही छंदों तक सीमित रखना चाहिए, क्योंकि हर कोई वंदे काली, वंदे दुर्गा और वंदे सरस्वती नहीं कह सकता। इस पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम को हिंदू मुसलमान में बांटना सही नहीं है। आज हम आपको ये बताएंगे कि दुनिया के कई देशों में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर विवाद हुआ तो उन देशों ने तब क्या किया और भारत इन देशों से क्या सीख सकता है। आज की एक और बड़ी खबर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की बिगड़ती सेहत को देखते हुए 48 घंटे के अंदर इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का सख्त आदेश दिया था। लेकिन जानते हैं, शहबाज शरीफ की सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देते हुए ऐन वक्त पर अस्पताल का वेन्यू बदल दिया। अफवाह फैला दी कि शिफा हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं ताकि सारे समर्थक वहां पहुंचे, और खुद पहुंच गए एक सरकारी अस्पताल में लेकर इमरान खान वहां भर्ती कराया। इतने से मन नहीं भरा तो शहबाज शरीफ और मुनीर ने घबराकर इमरान खान को पहले मेडिकल रूप से फिट घोषित किया फटाफट वहां, और फिर वापस रावलपिंडी की अदियाला जेल तुरंत पहुंचा दिया। डर का आलम देखिए, यह भी तब हुआ जब इमरान खान ने अपनी पार्टी की तरफ से भरोसा दिया था कि वो आसिम मुनीर से कोई टकराव नहीं करेंगे। फिर भी मुनीर डरा क्यों, आज इसकी कहानी भी आपको बताएंगे। आज की एक और बड़ी खबर झारखंड से है, जहां प्रदर्शनकारी छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला जलाने का ऐलान किया है। लेकिन इस दौरान रांची और गिरिडीह में हंगामा हुआ। रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का पुतला लेकर फरार हो गए, जबकि गिरिडीह में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला छीनने के लिए काफी ड्रामा, काफी मारपीट हुई है। देखिए, आज हम आपको ये भी बताएंगे कि महाराष्ट्र में गरीब ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स ने कितना बड़ा अपराध किया है, उनका ऐसा अपराध जिसकी वजह से अब शायद उनका लाइसेंस चला जाए। उनका अपराध यह है कि परिवहन विभाग ने उन्हें मराठी भाषा सीखने की ट्रेनिंग दी, लेकिन वो मराठी सीख नहीं पाए और अब इन गरीब ड्राइवर्स का लाइसेंस रद्द तक हो सकता है। आज हम ये सवाल पूछेंगे कि जिस मुंबई में देश की 70% हिंदी फिल्में बनती हैं और इन फिल्मों में काम करने वाले कलाकारों को इतना सम्मान मिलता है, पूरे देश में मिलता है, उसी मुंबई में भाषा को लेकर गरीबों का ऐसा अपमान क्यों। इसके बाद हम ये सवाल पूछेंगे कि क्या कानून वाकई में सबके लिए बराबर होता है। हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण की पार्टी के सांसद लिंगम नेनी रमेश, इनके 23 साल के बेटे ने अपनी लग्जरी कार एस्टन मार्टिन से एक लड़की को कुचल दिया। इस दुर्घटना में इस लड़की की मौत हो गई। लेकिन जानते हैं, माननीय सांसद जी के बेटे, अब तो सांसद पुत्र एक नया शब्द इनके लिए हो जाना चाहिए, सांसद पुत्र जी को गिरफ्तार करने के बजाय उन्हें पुलिस ने सिर्फ एक नोटिस थमाकर छोड़ दिया। आज की एक और बड़ी खबर चीनी की कीमतों को लेकर है।
सरकार ने उन सभी आरोपों का खंडन किया है जिनमें ये कहा जा रहा था कि भारत में चीनी की कीमतें इथेनॉल के कारण बढ़ रही हैं, क्योंकि इथेनॉल भी गन्ने से बनता है और चीनी भी गन्ने से बनती है। पिछले एक महीने में 1 किलोग्राम चीनी की कीमतें 16% बढ़ी है। ये भी तब हुआ जब कम बारिश के बावजूद गन्ने का रकबा पिछले साल के लगभग बराबर रहा। इसी आधार पर कई लोग चीनी की कीमतों को पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से जोड़ रहे थे, लेकिन सरकार का कहना है कि 2022-23 में कुल चीनी उत्पादन का 12% हिस्सा इथेनॉल बनाने के लिए गया था, जबकि इस बार सिर्फ 9% हिस्सा इथेनॉल बनाने के लिए गया है। सरकार ये भी कह रही है कि पूरी दुनिया में चीनी की कीमतें औसतन 16% बढ़ी है और इसे इथेनॉल से जोड़ना सही नहीं है। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि ब्रिटेन की शरणार्थी गाइड में ये क्यों लिखा है कि रेप ना करें, महिलाओं को ना छेड़े। यूके की शरणार्थी गाइड में यह लिखा है और इस पर विवाद क्या है। और आज की एक और बड़ी खबर यह है कि भारत में अमेरिका के राजदूत सर्गियो गौर लद्दाख के सबसे ऐतिहासिक थिक से मोनास्ट्री पहुंचे, जो तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुगपा संप्रदाय का एक प्रमुख मठ है। इस मठ की स्थापना 1433 ईस्वी में हुई थी और इसकी बहुमंजिला बनावट तिब्बत के प्रसिद्ध पोटाला पैलेस से मिलती जुलती है, जिस कारण से इसे लघु पोटाला भी कहा जाता है। तिब्बत पर अभी चाइना का नियंत्रण है और ऐसे में सर्गियो गौर के इस मठ में जाने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। देख लीजिए।

0: तो आज में खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हुए हमले की इनसाइड स्टोरी क्या है। 16 अगस्त को राजस्थान के शिक्षा विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें ये लिखा था कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी स्कूल्स का औचक निरीक्षण करना चाहता है तो वहां जाकर वीडियो बनाना चाहता है, स्कूलों से इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहता है तो उस व्यक्ति को पहले स्कूल के प्रिंसिपल से इसकी इजाजत लेनी होगी। अब ये सर्कुलर तो ऐसा है जिसके खिलाफ तमाम पार्टियों ने आंदोलन किया। कांग्रेस पार्टी ने और खासतौर पर सचिन पायलट इस मुद्दे पर रोजाना वहां पर विरोध कर रहे हैं। ये सर्कुलर ऐसे समय में आया जब कांग्रेस जनता पार्टी ने 15 अगस्त से स्कूल ठीक करो अभियान चलाने का ऐलान किया। इस पूरे मामले पर विवाद हो ही रहा था कि कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने ऐलान किया कि वो और उनके बाकी नेता जयपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का जायजा लेंगे। ये स्कूल जयपुर विधानसभा से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर रामपुरा कवरपुरा गांव में मौजूद है और कांग्रेस जनता पार्टी का आरोप है कि ये स्कूल भैंसों के एक तबेले में चल रहा था। सुबह करीब 10:30 बजे जब आशुतोष रांका और कांग्रेस जनता पार्टी की एक टीम इस गांव में पहुंची तो स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध किया और कांग्रेस जनता पार्टी का यह आरोप है कि ये लोग स्थानीय ग्रामीण नहीं बल्कि बीजेपी के नेता थे, जबकि इन लोगों का कहना है कि इनका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। जिस वक्त ये पूरी घटना हुई स्थानीय लोगों पर हमला करने का आरोप लगा तब हमारी टीम वहीं मौजूद थी। हमारे कैमरे ने क्या देखा वो आप खुद हमारे सहयोगी शरद की इस रिपोर्ट में और जो अन्य रिपोर्टर हमारे हैं विशाल हमारे सहयोगी की इस रिपोर्ट में देखिए।
1: जयपुर के रामपुरा में सीजेपी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता आशुतोष रांका यहाँ पर गांव में स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं लेकिन ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ आशुतोष और रांका सहित पूरी टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची है और दोनों तरफ यहाँ पर आमने सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, लोग इनको भगा रहे हैं। आशुतोष आगे के साथ महिला कार्यकर्ता भी है लेकिन यहाँ पर ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुका है, धक्का मुक्की हो रही है आपस में और इनको यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष रांका के साथ ये मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी। गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं, ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है और रामपुरा में यहाँ पर ये देखिए लात घूसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक एक की पिटाई कर रहे हैं, यहाँ पर गांव वाले पीछे भाग रहे हैं।
2: देखिए गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहाँ पर देखिए ये तस्वीर देखिए गांव वाले उग्र हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर और यहाँ आज भी गिर चुका है।
0: अब आप इस घटना की पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए जो 2 दिन पहले शुरू होती है। गांव के लोगों का कहना है कि उन्हें 19 अगस्त को पहली बार ये खबर मिली कि कांग्रेस जनता पार्टी के लोग इस सरकारी स्कूल का जायजा लेने आएंगे। हमारे संवाददाता शरद कुमार कहते हैं कि सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध का कारण यह था कि जिस सरकारी स्कूल को कांग्रेस जनता पार्टी कैमरों पर दिखाना चाहती थी उस स्कूल के बारे में उसे सही जानकारी नहीं थी। इस प्राथमिक स्कूल के भवन पर 1 साल पहले ही ताला लगा दिया गया था और कारण यह था कि स्कूल का भवन जर्जर हो चुका था। उस वक्त गांव के लोगों ने ही इसकी शिकायत की। इसी शिकायत पर स्कूल की मरम्मत होने तक इसे बंद किया गया। ये भी तय हुआ कि जब एक नया भवन नहीं बनता तब तक स्कूल में पढ़ने वाले 18 बच्चे 3 किलोमीटर दूर एक दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगे। अब क्योंकि ये स्कूल रेलवे लाइन के उस पार था इसलिए गांव के लोगों ने खुद शिक्षा विभाग से कहा कि उनके बच्चों को इतनी दूर ना भेजा जाए। उन्होंने गांव में ही जर्जर हो चुके स्कूल के पास इन 18 बच्चों को पढ़ने के लिए एक जगह दे दी और उस दिन से ये स्कूल वहां पर लगने लगा। हमारे संवाददाता शरद कुमार ये भी बताते हैं कि जो शिक्षा विभाग को ये जानकारी थी कि जिस जगह गांव वालों ने बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह दी है वहां भैंसों का एक तबेला है और इस बात के पक्षधर नहीं हो सकता कि बच्चों का स्कूल भैंसों के एक तबेले से चले, क्योंकि गांव के लोग खुद यहां बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके बाद तैयार हो गए थे। इसलिए बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने इसको शुरू कर दिया। अब ये तस्वीरें देखिए, कांग्रेस जनता पार्टी ने स्कूल को अपने अभियान के लिए चुना तो गांव के लोग नाराज हो गए और 2 बातें वो कह रहे थे। पहला आरोप गांव वालों की तरफ से लगाया गया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने स्कूल का औचक निरीक्षण करने से पहले इसके बारे में सही जानकारी जुटाई नहीं। दूसरा उनका कहना था कि कांग्रेस जनता पार्टी के नेताओं ने उनके गांव में आने से पहले किसी से बात करना जरूरी नहीं समझा। गांव के लोग ये शिकायत कर रहे थे कि एक बार कांग्रेस जनता पार्टी के लोग उनसे बात तो करते तब जबकि कॉकरोच जनता पार्टी का आरोप भी हम आपको सुनाएंगे। उनका यह आरोप है कि विरोध करने वाले लोग बीजेपी के नेता और बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे। हमारे संवाददाता शरद कुमार ने इसकी भी पड़ताल की और उनका कहना है कि सीजेपी की तरफ से जो आशुतोष रांका जिस गांव के स्कूल में जाना चाहते थे वो जयपुर के बगरू कस्बे में आता है। बगरू ये कस्बा है और गांव है जहां बागड़ा ब्राह्मण समुदाय की बहुत अच्छी और प्रभावशाली आबादी है। पारंपरिक रूप से समुदाय के लोगों को बीजेपी का वोटर माना जाता है, यानी यहां हो सकता है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस अभियान के लिए जिस गांव को चुना वहां पर उनका विरोध होना तय था। देखिए
3: देखिए, गांव की राजनीति बिल्कुल ही अलग होती है शहरों की राजनीति से। सीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी चाहिए था कि गांव में अगर राजनीति उन्हें करनी है तो उन्हें कम से कम गांव के कुछ लोगों को अपने संपर्क में लेना चाहिए था, विश्वास में लेना चाहिए था। आप अगर मीडिया के सहारे चाहते हैं कि लड़ाई लड़े तो मीडिया के सहारे लड़ाई लड़ना आसान नहीं है। उन्होंने पहले मीडिया को कहा कि आप हमारे साथ चलिए, हम स्कूल दिखाएंगे, गांव दिखाएंगे। ये इन लोगों का आक्रोश है।
0: यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी के नेता जयपुर के इस गांव में दो बार आए। पहली बार सुबह 8 बजे कुछ लोग मीडिया के साथ इस गांव में पहुंचे और उन्होंने स्कूल तक जाने की कोशिश की थी। हमारे संवाददाता शरद कुमार बताते हैं कि उस वक्त आशुतोष रांका नहीं थे और 11 बजे स्कूल में वो बताया गया कि आने वाले थे, लेकिन जब सुबह उनकी टीम को स्कूल जाने से स्थानीय लोगों ने रोक दिया तो आशुतोष रांका बाकी नेताओं के साथ 10:30 बजे पहुंचे। ये पूरा हंगामा हुआ। यहां हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इस गांव के लोग कॉकरोच जनता पार्टी पर उनका क्रेडिट छीनने का आरोप भी लगा रहे हैं। उनका यह कहना है कि वो स्कूल के लिए पहले आंदोलन कर चुके हैं, इसी महीने स्कूल के लिए 18 लाख रुपए का फंड भी उनको मिला है, मंजूर हो चुका है। यह पैसा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाले डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत मंजूर हुआ है, जिसके लिए गांव के लोगों ने ही प्रस्ताव भेजा था। लेकिन जब कॉकरोच जनता पार्टी के नेता स्कूल में आना चाहते थे तो वो ये कहने लगे कि वो उनका क्रेडिट छीनने आए।
3: गांव में आज भी जेएनजी प्रजाति जी भारी है। रामपुरा कंवरपुरा में बागड़ा ब्राह्मण समुदाय के लोग रहते हैं और उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक यहां आएंगे तो पीटे जाएंगे। गांव में कोई राजनीतिक कार्यकर्ता भले ही न हो, मगर ये भी सच है कि बागड़ा ब्राह्मण समुदाय के लोग ज्यादातर संख्या में बीजेपी को वोट देते हैं। उनका गुस्सा इस बात को लेकर था कि जब 13 अगस्त को पैसा सैंक्शन हो गया तो फिर 20 अगस्त को ये ऐलान क्यों कर रहे हैं, 21 अगस्त को क्यों आ रहे हैं, जब हम संघर्ष कर रहे थे तब ये कहां थे।
0: अब कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और ये कहा है कि अगर मारपीट और हमला करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे राजस्थान में आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का यह भी आरोप है कि उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए कहा गया, उन्हें देश विरोधी बताया गया, उनके लिए अर्बन नक्सल शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है। सीजेपी क्या आरोप लगा रही है वो सुनिए।
4: सर, ग्रामीण शहरी सब एक है, कुछ अलग नहीं है, हम इनके विरोधी नहीं है। ये हमें आके बोल रहे हैं पाकिस्तान जाइए। मैं यही पली बड़ी हूँ, मैं ये सब नहीं सुन सकती हूँ, ना ही ये सुनना किसी भी देशवासी को अच्छा लगेगा।
5: ये गांव वाले चाहते ही नहीं है सर कि बच्चे पढ़े और स्कूल ठीक हो। इन गांव वालों की मिली भगत है सबकी। देखिए, आप खुद देखिए कि कितने लोग इकट्ठे होकर हम पे हमला कर रहे हैं, हमें मारे। हमारी क्या गलती है सर? हम यही तो चाहते हैं बच्चों की अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिले, हम यही तो चाह रहे हैं। भैंस के तबेले में पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं बच्चे, क्यों हो रहे हैं सर?
6: 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है।
0: एक बात तो तय है और ये बात हम जरूर कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी कारण किसी भी राज्य में जहां किसी की भी सरकार हो, सरकार चुनकर नहीं सरकार देखकर नहीं, किस पार्टी की सरकार ये देखकर नहीं, किसी भी राज्य में किसी भी कारण से बच्चों को भैंसों के तबेले में या उनके लिए रखे गए भूसे के बीच बैठकर पढ़ना पड़ रहा है, तो ये हमारे शिक्षा विभाग की नाकामी है और राजस्थान सरकार की बहुत बड़ी कमी है जिसकी जल्द से जल्द उनको भरपाई करनी चाहिए। हमने ये सवाल जयपुर के जिला शिक्षा अधिकारी गिरिराज पारिक से भी पूछा और वो उसका एक भी ठीक जवाब तो दे नहीं पाए। सुनिए।
3: हमारे साथ जयपुर के जिला शिक्षा अधिकारी गिरिराज पारिक हैं। सर, ये कब तक इस तरह से तबेले में स्कूल चलेगा?
7: ये सर तबेला, आप कहाँ तबेला बोले जा रहे हैं? उसको तबेला होता है जहाँ पर ये जानवर बनते हैं, जहाँ पर पशु
3: भूसा रखा हुआ है।
7: नहीं देखो, भूसा रखना क्या, गाँव में जो घर होते हैं ना, उस घर में आदमी वही रहते हैं, वहाँ पर टीन शेड लगाते हैं, अपने पशु भी हम लोग वहीं रखते हैं, पानी की व्यवस्था भी वहीं होती है। आप लोग कभी देखा गाँव में परिंडा भी वहीं होता था? ये तो लैटबाद वगैरह अब बनने लग गए, पहले चार दीवारी
3: में स्कूल में ही पढ़े हैं। ऐसा ऐसा स्कूल नहीं था हमारा।
7: सुनो, अब ये स्कूल तो अच्छा था लेकिन अब चूंकि ये जर्जर हो गया ना, तो इस वजह से अब इसको हमने कर दिया भाई, डिसमेंटल करेंगे इसको, हटाएंगे।
3: कहानी को छोड़िए, आप ये बताइए इस तबेले से मुक्ति कब मिलेगी?
7: ये अजी तबेला नहीं, आप फिर वो आप तबेला तबेला बोले जा रहे हो। ये अपने ये व्यवस्था कर दी कि पास में जो भी कोई सुरक्षित जगह है वहाँ पर बच्चों को अपन शिफ्ट कर दे।
3: कब आएगा वही तो पूछ रहे हैं।
7: ये तो भारत सरकार बताएगी ना, अपन कैसे बता सकते?
3: भारत सरकार बताएगी कि राजस्थान के स्कूलों के बच्चे कब तबेले से बाहर?
7: नहीं फिर तबेला, अरे तबेला है ही नहीं है, तो बिल्डिंग दिख रही है, मकान है हमारा। अच्छा मैं नहीं रह सकता, इसमें क्या दिक्कत है रहने में?
3: आप रह लेंगे?
7: अरे यार क्यों नहीं रहेंगे,
0: अपने बच्चे को पढ़ाएंगे स्कूल में, सवाल ये भी है। इस मामले में एक सवाल कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर भी उठ रहा है और गांव वाले उठा रहे हैं। आपने उनके कई जो प्रतिनिधि थे उनको सीधा सीधा कहा, देखा कि वो कैसे गांव वाले जो है उनको सीधा कह रहे थे कि गांव वाले मिले हुए हैं बीजेपी से। लेकिन हमारे संवाददाता शरद कुमार कहते हैं कि जिस स्कूल को कॉकरोच जनता पार्टी के नेता कैमरों पर दिखाना चाहते थे, वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर खुसर गांव में एक और सरकारी स्कूल है जिसका रिजल्ट हर साल करीब 100% रहता है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने स्कूल के बारे में नहीं बताया है। स्थानीय लोग कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं सुनिए।
3: स्कूल आपने देखे होंगे, मगर रामपुरा कंवरपुरा जहां पर पूरा विवाद चल रहा है स्कूल को तबेले में चलाए जाने को लेकर, वहां पर एक चमचमाती हुई बिल्डिंग बगल में ही स्कूल की है, जहां पर देखकर हम रुके और पता किए तो पता चला कि ये पूरा स्कूल जो है भामाशाहों के सहयोग से बनाया गया है। घुसते ही आपको यहाँ बैठने की व्यवस्था दिखाई देगी और ये पंखे देखिए, लाउडस्पीकर देखिए, बाथरूम देखिए, मंदिर, पेड़ पौधे सब यहाँ पर लगाए हुए हैं, कुर्सियाँ टेबल सब यहाँ पर नए दिखाई दे रहे हैं और सारे के सारे गाँव के बच्चे हैं। क्या नाम है आपका?
8: अंजलि प्रजापत।
3: अंजलि, स्कूल तो बड़ा नई दिखाई दे रही है।
8: यस सर।
3: पढ़ाई कैसी होती है?
8: बहुत अच्छी होती है, हमारे सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं।
9: 100% और पिछली बार 95% 12th में बच्चे ने अचीव किए हैं और सब्जेक्ट ऐसे हैं कि 100 में से 100 नंबर।
3: अंजलि बता रही थी यहाँ पर कि 100% रिजल्ट है इस स्कूल का, तो सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं है बल्कि पढ़ाई भी काफी यहाँ पर अच्छी हो रही है, तभी इस तरह के रिजल्ट है। ये लोगों के सहयोग से बना हुआ है, यानी कि सरकार से पैसा मिलने का इंतजार किए बिना ही अगर टीचर प्रिंसिपल चाहें तो लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं और इस तरह से शानदार स्कूल बनाया जा सकता है। ये खुसर गांव के स्कूल में आकर दिखाई दे रहा है। शरद कुमार, खुसर, जयपुर, आज तक।
0: तो इसीलिए अब आइए आपको दोनों स्कूल ही दिखा देते हैं ताकि आप भी समझ पाएं कि क्या फर्क है। एक तरफ 18 लाख की बात गांव वाले कह रहे हैं कि उनको पैसा मिला है, वहां पर स्कूल बनने वाला है और स्कूल चलेगा, जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, और स्कूल के अंदर की स्थिति वाकई खराब दिखती है। ये देखिए अंदर की तस्वीरें जो हमारे कैमरा ने कैद की है, इसमें एक जो भी शिक्षक है कौन है पता नहीं चल रहा, पर ये तीन लोग आते हैं सामने माइक देखकर हाथ भी जोड़ते हैं, लेकिन क्या हालत है पीछे की इमारत की आप देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो स्कूल जो आज चल रहा है अच्छे से और जहां पर बच्चे जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो खुसर गांव जैसा स्कूल बनना मुश्किल नहीं है, मुमकिन है, बस लगन की जरूरत है और सरकार को परफॉर्म करने की जरूरत है। इस विवाद का एक और कारण है पंचायत के चुनाव। राजस्थान के चुनाव आयोग ने अभी 2 दिन पहले ही नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, जिसके बाद वहां आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनावों के वक्त कॉकरोच जनता पार्टी को अपनी राजनीति नहीं करनी चाहिए। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी इन आरोपों को सिरे से गलत ठहरा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको याद होगा पिछले महीने जब कॉकरोच जनता पार्टी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर आंदोलन किया था, तब 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई में आरोपों के मुताबिक पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर बहुत सारे सवाल उठे थे। यही नहीं, सड़क से लेकर संसद, सुप्रीम कोर्ट में इस पर काफी बहस हुई। इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का संज्ञान लिया और इसकी जांच के लिए एक कमिटी भी बना दी। यहां तक सबको यही लग रहा था कि यह विवाद अब शायद थम चुका है, विपक्ष दूसरे मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी में जुट गया है, लेकिन आज राहुल गांधी के धरने ने एक नए राजनीतिक टकराव को जन्म दिया और इस धरने से जानते हैं क्या हुआ। इस धरने के बाद पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर पहली FIR दर्ज हुई है, जिसे कांग्रेस और राहुल गांधी अब अपनी बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं। ये पूरा घटनाक्रम आज दोपहर करीब 12 बजे तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी एक पीड़ित छात्र और उसकी मां के साथ कनॉट प्लेस के पुलिस थाने पहुंच गए। इस पीड़ित छात्र का नाम साहिल लोहचब है, जिसे लेकर दावा है कि 20 जुलाई की घटना में पैलेट गन के छर्रे लगने से उसे चोटें आई। उस वक्त 24 जुलाई को राहुल गांधी ने इस छात्र के साथ एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, अगर आपको याद है, और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठाए थे। अब आज जब इस बात को 29 दिन पूरे हो रहे थे, तब राहुल गांधी इसी छात्र को लेकर कनॉट प्लेस के पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वो ये जानना चाहते थे कि पुलिस ने अगर इस मामले में कोई FIR दर्ज की है तो उस FIR का नंबर क्या है और उस FIR की जांच किस पुलिस अधिकारी या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सौंपी गई है। कनॉट प्लेस के थाने पहुंचकर जब राहुल गांधी को यह पता चला कि नई दिल्ली क्षेत्र के DCP सचिन शर्मा का दफ्तर संसद मार्ग पुलिस थाने में है, तो वो कनॉट प्लेस से यहां आ गए। इसके बाद उन्होंने और इस पीड़ित छात्र ने संसद मार्ग पुलिस थाने में DCP से मुलाकात की और उनसे ये पूछा कि इस मामले में जांच अब कहां पहुंची है, पुलिस ने क्या क्या कदम उठाए हैं। इसी बातचीत में ये चीज सामने आई कि पुलिस की तरफ से इस मामले में अब तक FIR दर्ज नहीं हुई है। जब राहुल गांधी ने FIR दर्ज कराने के लिए दबाव बनाया, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने तत्काल ऐसा करने से इनकार किया और राहुल गांधी वहीं DCP दफ्तर के बाहर बैठ गए। उन्होंने कहा कि 30 दिन लगे, 60 दिन लगे, मैं तो हिलूंगा नहीं। साफ कहा कि जब तक FIR दर्ज नहीं होगी तब तक वो हिलेंगे नहीं। राहुल गांधी के धरने पर बैठते ही कांग्रेस में हलचल हो गई। कुछ ही समय में प्रियंका गांधी वाड्रा, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद, जयराम रमेश समेत कई नेता संसद मार्ग पहुंचे, संसद मार्ग थाने, और उनके साथ धरने पर बैठ गए, खड़े हो गए, जिस भी तरह से। बड़ी बात यह है कि इस धरने के दौरान भजन गाए गए और चरखा भी चलाया गया, जिससे राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म हुआ और सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने संसद मार्ग थाने के बाहर भारी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स पुलिस बल की तैनाती कर दी। कई घंटों तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी से इस मामले की औपचारिक शिकायत ली और इस दौरान पुलिस का कहना यह था कि उसे इस मामले में कोई पहले लिखित शिकायत नहीं मिली थी, इसीलिए अब तक उसने FIR दर्ज नहीं की थी। जबकि आरोपों के मुताबिक पैलेट गन से घायल हुए छात्र साहिल लोचब को लेकर राहुल गांधी ने कुछ और ही दावा किया। राहुल गांधी ने साहिल लोचब की मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से यह कहा कि उनके शरीर में पैलेट गन से 200 से अधिक छर्रे मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एम्स ट्रॉमा सेंटर में साहिल की आंख का ऑपरेशन तो हुआ, लेकिन ये छर्रे अब भी उसके पेट और शरीर के दूसरे हिस्सों में फंसे हैं, जबकि दिल्ली पुलिस इस मामले में FIR दर्ज नहीं कर रही। कांग्रेस के बाकी नेताओं ने भी ऐसे ही आरोप लगाया कि साहिल लोचब ने 14 अगस्त को ही वकीलों के साथ लिखित शिकायत दे दी थी, 17 अगस्त को ईमेल भी किया, लेकिन पुलिस ने ना तो कोई जवाब दिया ना FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज नहीं हुई तो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा नहीं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी IO का नाम और नंबर जारी नहीं किया गया, जिसके कारण यह विवाद बढ़ता गया। और आप इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे 6 घंटे तक चले इस धरने के बाद पुलिस को इस मामले में पहली FIR अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज करनी पड़ी।
10: राहुल गांधी यहीं पे बैठे हुए हैं और पुलिस ने पार्लियामेंट स्ट्रीट के जो गेट है उनको बंद कर दिया है। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता बाहर भी बैठे हैं। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर जिस तरीके से कुर्सी लगा के राहुल गांधी, अब कुर्सी भी दिल्ली पुलिस ने ही दिलाई होगी, कुर्सी लगा के राहुल गांधी और उनके साथ साहिल लोचा बैठ गए हैं। दिल्ली पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन गया है। 14, 17, 2 तारीख को साहिल लोचा जाते हैं, उनको जवाब नहीं मिलता, तो राहुल गांधी को वो ट्रिगर पॉइंट मिल गया कि दिल्ली पुलिस, क्योंकि आरोप उस पर है, राहुल गांधी के मुताबिक दोष उस पर है, इसलिए इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। और साहिल लोचा की जो स्थिति है, चश्मा पहने बैठे हैं, चोटें उनकी अभी भी नजर आ रही है।
11: 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट, देख लीजिए इनको, ये कहाँ से आए, ये इनके शरीर से आए, दिखाओ, ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। लेडी हार्डन की रिपोर्ट जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं।
12: दम है कितना दमन में तेरे,
0: राहुल गांधी के इस धरने के बाद दिल्ली पुलिस ने जो FIR दर्ज की है वो हमने अपने साथ में लेकर भी आई हूँ। ये FIR अगर आप देखेंगे तो ये अज्ञात लोगों के खिलाफ, अज्ञात आरोपी के खिलाफ दर्ज हुई, यानी FIR के मुताबिक अभी साहिल लोचा पर पैलेट गन चलाने वाले सुरक्षाकर्मी या पुलिसकर्मी का नाम नहीं पता है, लेकिन ये FIR 2 धाराओं में दर्ज हुई है। इनमें पहली धारा है 118(1), ये धारा तब लगती है जब कोई जानबूझकर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाता है, चोट पहुंचाने के लिए खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करता है, खासतौर पर ऐसा हथियार जिसे इस्तेमाल करने पर मौत होने की संभावना हो, इसलिए अहम है, क्योंकि पैलेट गन को सरकार लेस लीथल वेपन यानी कम खतरनाक हथियार की श्रेणी में डालती है। इसके अलावा इस धारा में दोषी साबित होने पर अधिकतम 3 साल की जेल या फिर अधिकतम 20,000 रुपए का जुर्माना या दोनों भी लग सकते हैं। इस FIR में जो ये शख्स बताता है, दूसरी धारा 125 लगी है, वो बताने से पहले आपको जरा ये बता देती हूँ, इसे हमने इसीलिए हाईलाइट किया है आपके लिए, ये वाला जो पूरा हिस्सा है मैं पढ़ के सुनाती हूँ, क्योंकि फर्स्ट पर्सन अकाउंट में पूरा इसमें लिखा गया है कि ये शख्स बताता है कि उसको कैसे ये चोट लगी, तो जो हाईलाइटेड पार्ट है इसमें वो मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये शख्स क्या आरोप लगा रहा है। वहां पर आंसू गैस व लाठी चार्ज हुआ जिससे वहां भी भगदड़ मच गई, और इसी समय में मेरा चेहरा दूसरी तरफ था तो मुझे एकदम ऐसा लगा कि मेरे शरीर के दाहिनी और दिल के नजदीक छाती पर, बाजू व आंख पर कुछ फटा, तो मैंने मुड़कर देखा तो नीली पोशाक में एक व्यक्ति ने, जिसके हाथ में बड़ी सी बंदूक थी, उससे मुझे बहुत सारे धातु के पैलेट लगे, जिसके बाद मेरी समझ में पैलेट लगने से कुछ नहीं आया और छात्रों की भीड़ मेरे आसपास जमा हो गई। इसके बाद फिर 2-3 लाइनें हैं जिसमें, इसके बाद मुझे बाइक पर बिठाया गया, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल ले गए जहां उन्होंने मेरी पहली MLC की, और उसके बाद मुझे सफदरजंग हॉस्पिटल भेज दिया गया, इसके बाद मुझे एम्स भेज दिया गया। फिर नीचे वो डॉक्टर के बारे में बताता है कि डॉक्टर ने मेरी MLC में साफ लिखा है कि मेरी आंख में वो जो चोट है वो पैलेट से लगी, और ये भी लिखा है कि आंख की रोशनी वापस आने की संभावना 1% से कम है। एम्स में मेरा सीटी स्कैन हुआ जिसने करीब 200 से अधिक छर्रे मेरे शरीर में है, जो कि आंख में, गर्दन में, छाती में, दिल के पास, जबड़े में, बाजू में इत्यादि हैं। और आखिर में वो लिखते हैं कि मेरे इलाज और मुआवजे के लिए मामले पर विचार किया जाए क्योंकि मेरा इलाज बहुत लंबा चलेगा, मैं अपना बयान दर्ज कराने और जांच में सहयोग के लिए तैयार हूं। तो ये साहिल ने अपनी तरफ से जो FIR लिखाई है, शिकायत लिखाई है, वो हमने आपको पढ़ के, इस FIR के दर्ज होने के बाद राहुल गांधी और पीड़ित छात्र साहिल लोचन ने क्या कहा है वो सुनिए।
11: अभी कहा शुरुआत हुई है, ये न्याय का पहला कदम है, केस लॉज हुआ है,
13: देखिए जब से आपको ये गोली लगी 20 जुलाई एक महीना हो गया छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, 3-4 छर्रे दिल के पास है, साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है।
14: अन्याय की हुई है, ये FIR अन्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है। पर मेरे को खुशी से ज्यादा दुख भी है कि LOP के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट लिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ, मेरे शरीर में 200 छर्रे, उसके बाद भी मेरी FIR को 8 घंटे में लिया गया और शायद ये ली भी ना जाती अगर LOP मेरा साथ न देते।
0: ये पूरा मामला 20 जुलाई का है, जब जंतर मंतर से शुरू हुए संसद मार्च में पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप लगा था। आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी का था, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने इस मुद्दे को वैसे नहीं उठाया जैसे राहुल गांधी ने उठाया। कारण यह भी है कि पैलेट गन रैपिड एक्शन फोर्स को दी गई थी, CRPF के अधीन आती है ये। CRPF के जरिए राहुल गांधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को घेर सकते हैं। सुनिए,
15: हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल ओके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल FIR दिया। तो आप समझ जाइए FIR रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे FIR करना, वो वाले भी चाहते थे FIR करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है।
0: खैर आगे बढ़ते और आपको ये बताते हैं कि वंदे मातरम को लेकर मशहूर अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बीच टकराव क्यों हुआ, भारत आखिर इस मुद्दे पर दूसरे देशों से क्या सीख सकता है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत को लेकर इसी तरह के विवाद हुए और ये विवाद इन देशों में धार्मिक टकराव का कारण भी बने। इसके बाद इन देशों ने ऐसे विवादों का हल कैसे निकाला, आज इसके बारे में आपको बताएंगे और ये भी समझेंगे कि वंदे मातरम को लेकर 1937 की कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में क्या हुआ। लेकिन उससे पहले आप शर्मिला टैगोर का यह बयान सुनिए जिसमें उन्होंने वंदे मातरम को सिर्फ 2 छंदों या अंतरों तक सीमित करने की मांग की है। कहा उन्होंने कि भारत में ज्यादातर लोग एक से ज्यादा भगवान में विश्वास रखते हैं, इसलिए ऐसे लोग कभी भी वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे सरस्वती नहीं कह पाएंगे वंदे, और सरकार को वंदे मातरम के 2 छंद ही लागू करने चाहिए। सुनिए,
16: मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे काफी रिलीजन के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं जो एक गॉड में विश्वास करते हैं, सिंगल गॉड, नॉट मेनी गॉड्स। और वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा, उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला 2 टैंजा इज वेरी गुड।
0: शर्मिला टैगोर के इस बयान पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने आपत्ति जताई। उनका आरोप है कि शर्मिला टैगोर ने वंदे मातरम को हिंदू मुसलमान के संदर्भ में देखा, जबकि वंदे मातरम का गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है। अब ये बहस नई तो है नहीं, कई दशकों से वंदे मातरम को लेकर यही विवाद रहा है कि एक पक्ष इसे हिंदू धर्म से जोड़कर देखता है जबकि दूसरा पक्ष इसे राष्ट्रीय एकता और उसकी शक्ति के रूप में परिभाषित करता है। अगर राजनीतिक रूप से देखें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच इसे लेकर सबसे बड़ा विवाद यही है और कांग्रेस ने साफ कहा है कि वो वंदे मातरम पर अपने उसी रुख को जारी रखेगी जिस पर 1937 में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में फैसला, क्या फैसला हुआ था अब वो भी समझिए। 1930 के दशक में कई मुस्लिम नेता वंदे मातरम का विरोध कर रहे थे जिनमें मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे। उनका कहना यह था कि वंदे मातरम में करोड़ों भुजाओं और हथियार उठाने की शक्ति का चित्रण है, इसमें हिंदू देवी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जी का भी जिक्र आता है जो मुस्लिम्स के लिए मान्य नहीं हो सकता। जब यह विवाद हुआ तो कांग्रेस के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों ने गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर से इस विषय पर राय मांगी। जवाब में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि उन्हें वंदे मातरम के पहले हिस्से की कोमलता, भक्ति, मातृभूमि के सुंदर रूपों का वर्णन विशेष रूप से पसंद है, लेकिन बाकी छंद मुस्लिम संवेदनाओं को आहत कर सकते हैं। इस सुझाव के बाद साल 1937 जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई उसमें यह ऐलान हुआ कि अब ये राष्ट्रीय सभाओं में वंदे मातरम के केवल पहले दो अंतरे गाए जाएंगे, बाकी छंदों को मुस्लिम भाईचारे के लिए छोड़ दिया जाएगा। उस वक्त मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस फैसले का विरोध किया क्योंकि वो पूरे वंदे मातरम के खिलाफ थे। उन्हें यह भी स्वीकार नहीं था कि कांग्रेस की बैठकों में इसके दो छंद गाए जाए। बाद में यही व्यवस्था चलती रही लेकिन इसी साल वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार ने इसके सभी 6 छंद जो है वो अपनाने का फैसला किया। इसे लेकर एक कानून बनाया जिसके तहत वंदे मातरम का अपमान करने पर अधिकतम 3 साल जेल की सजा हो सकती है। अब ये तो पूरा विवाद हुआ लेकिन आज हम सिर्फ इस विवाद की बात करने नहीं आए हैं। आज हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि दूसरे देशों में जब इसी तरह की चीजें हुई तो उन्होंने कोई रास्ता निकाला क्या। सबसे पहले बांग्लादेश, बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने साल 1905 में लिखा। ये वही साल था जब अंग्रेज संयुक्त बंगाल का विभाजन करना चाहते थे। उन्होंने इसके विरोध में आमार सोनार बांग्ला की ये रचना लिखी थी। इसी में उन्होंने मातृभूमि की मां के रूप में परिभाषित किया था, मातृभूमि को मां बताया था, जिसका बाद में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने जाहिर तौर पर विरोध किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश एक मुस्लिम बहुल देश है, वहां मातृभूमि को मां मानकर पूजा नहीं किया जा सकता। कुछ हद तक विवाद भारत के वंदे मातरम जैसा ही था लेकिन बांग्लादेश की सरकारों ने इन आपत्तियों को हमेशा किनारे रखा। आज भी वहां का राष्ट्रगान यही आमार सोनार बांग्ला है जिसे हिंदू पृष्ठभूमि से आने वाले गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। कनाडा दूसरा उदाहरण, जहां कई सालों के विवाद के बाद 2018 में वहां के राष्ट्रगान को बदला गया। पहले इस राष्ट्रगान में यह भाव आता था कि देशभक्ति का प्रेम देश के सभी बेटों में मौजूद हो लेकिन बाद में इस पर सवाल उठे और यह कहा गया कि देश प्रेम सिर्फ पुरुषों और बेटों के लिए क्यों रहे। 1980 में अपनाए गए इस राष्ट्रगान को लेकर 38 सालों तक विवाद रहा। 2018 में इसे बदला गया और इस राष्ट्रगान में यह भाव डाला गया कि हम सभी में देशभक्ति का प्रेम मौजूद। साल 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने राष्ट्रगान में बड़ा बदलाव किया। पहले राष्ट्रगान में ऑस्ट्रेलिया को एक युवा देश बताया जाता था लेकिन बाद में कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए, कहा कि ऑस्ट्रेलिया को युवा बताना वहां के हजारों साल पुराने जो मूल लोग हैं उनके इतिहास का अपमान होगा। यह आपत्ति ज्यादा बढ़ी तो 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना राष्ट्रगान बदला। जर्मनी में 2018 में राष्ट्रगान की कुछ पंक्तियों को बदलने की मांग की गई, इसे लैंगिक रूप से निष्पक्ष बनाने के लिए कहा गया लेकिन जर्मनी की सरकार ने कहा कि यह मांग सही नहीं है, राष्ट्रगान में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके अलावा इसराइल में भी राष्ट्रगान को लेकर बहुत विवाद रहा। वहां अरब मूल के इसराइली मुस्लिम अपने देश के राष्ट्रगान पर खड़े नहीं होते क्योंकि उनका कहना है कि यह राष्ट्रगान यहूदियों की राष्ट्रीय आकांक्षा से जुड़ा है और मुस्लिम्स की बात नहीं करता, जबकि इसराइल इन आरोपों को गलत बताता है। इसराइल कहता है कि उसका राष्ट्रगान पूरे देश के लिए समर्पित है और यही कारण है कि कई विवाद के बावजूद इसराइल ने अपना जो राष्ट्रगान है उसे कभी नहीं बदला और इसके अपमान के खिलाफ कड़े कानून बनाए गए। यहां बात सिर्फ इन कुछ देशों की नहीं है, जापान में भी राष्ट्रगान का काफी विरोध होता है क्योंकि कुछ लोग इसे उस दौर का प्रतीक मानते हैं जब जापान सैन्यवाद और साम्राज्यवाद के रास्ते पर चल रहा था। जब जापान की सरकार ने अपने स्कूलों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य किया तो कई शिक्षकों ने इसका विरोध किया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई लेकिन जापान ने अपना राष्ट्रगान कभी नहीं बदला और लोगों का असली भाव जो है इसका वो समझाने की कोशिश की। संक्षेप में कहें तो ऐसे विवाद कई देशों में हुए लेकिन ज्यादातर देशों ने धार्मिक आधार पर अपने राष्ट्रगान या राष्ट्रगीतों को संशोधित नहीं किया, अपने लोगों को इसका सही मतलब समझाने की कोशिश की। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में कल की रात काफी हलचल भरी रही। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर सवाल उठ रहे थे। पिछले 3 साल से रावलपिंडी के अडियाला जेल में बंद इमरान खान को लेकर कई तरह की अफवाहें भी फैलती रहीं। कभी उनकी मौत की अफवाहें उड़ी, कभी उन पर किए जा रहे जुल्म की खबरें आई, कई बार कहा गया कि उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि परिवार को नहीं दिखा रहे। अब इन सारी खबरों के बीच इमरान खान का परिवार, उनकी पार्टी पीटीआई के नेता सिर्फ इतना चाहते थे कि इस्लामाबाद के शिफा हॉस्पिटल में उनका मेडिकल चेकअप एक बार हो, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। 18 अगस्त को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मांग को पूरा करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों ने शहबाज और मुनीर को परेशानी में डाल दिया। परेशानी यह थी कि अगर इमरान खान की सेहत खराब हुई तो उनके परिवार, उनके पार्टी के कार्यकर्ता एक बड़ा हंगामा कर सकते हैं और इसके अलावा अगर इमरान जेल से बाहर आए तो पार्टी कार्यकर्ता उन्हें छुड़ाने की भी कोशिश कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, जिस इमरान खान के लिए इस वक्त पीटीआई के लाखों कार्यकर्ता दो तीन बार अलग अलग जगहों पर सड़कों पर आकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं, सरकार को ऐसा डर था कि अगर वही फिर से एक हलचल एक का आंदोलन शुरू हो जाएगा तो वो घिर जाएंगे, और मुनीर तो डर ही रहा था। लेकिन कल रात 12:30 बजे अचानक इमरान खान को अडियाला जेल से निकाला गया। कड़ी सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद के पीआईएमएस हॉस्पिटल लेकर चले गए, वहां पर इमरान खान की सेहत की जांच करवाई गई। रातों रात मेडिकल चेकअप पूरा होने के बाद उन्हें दोबारा से अडियाला जेल में जाकर बंद कर दिया गया। भाई मेडिकल हो गया, वापस जाइए। इमरान खान को जेल से अस्पताल लेकर जाना कोई सामान्य काम नहीं था, शायद इसलिए

0: अस्पताल तक के लिए एक कॉरिडोर बनाया गया था, जिसमें रास्ते में कई जगहों पर बैरिकेडिंग और कटीले तार तक लगा दिए गए थे। पाकिस्तान सरकार और सेना तो इतनी घबराई थी कि इमरान को जेल में से अस्पताल ले जाने से पहले उन्होंने अफवाह उड़ाई कि इमरान को शिफा हॉस्पिटल ले जाया गया ताकि सारे लोग वहां पर चले जाएं। शिफा हॉस्पिटल के बाहर अब बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी कर दी। इमरान के बहुत सारे समर्थक शिफा हॉस्पिटल के बाहर जाकर जम गए। अब प्लानिंग क्या थी सोचिए, यहां पर भी कैसा शातिराना काम करते हैं, हर जगह उल्टा दिमाग। प्लानिंग के तहत इमरान खान को PIMS ले जाया जाना था, लेकिन शिफा हॉस्पिटल के बाहर पूरा माहौल बना दिया ताकि वहां पर लोग जाएं और पिम्स में कोई ना आए। और शिफा हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर्स को वहीं पर बुलाया गया PIMS में। पाकिस्तानी सेना और सरकार इमरान खान के मेडिकल चेकअप को इमरान समर्थकों की नजरों से छिपा कर करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समर्थकों को जल्दी ही पता चल गया कि इमरान खान को तो अडियाला जेल से पिम्स ले जाया जा रहा है। इस पूरे रास्ते में इमरान खान के काफिले पर लोगों ने फूल बरसाए, समर्थन में खूब नारेबाजी हुई। इस पूरे घटनाक्रम में इतना सीक्रेट रखने की कोशिश हुई, सीक्रेटिव रखने की कोशिश की गई थी कि एक बार ये ऐसा लगा जैसे शहबाज शरीफ और मुनीर इमरान खान से डरे हुए हों, उन्हें एक सेकंड के लिए भी जेल से बाहर नहीं रखना चाहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके समर्थक छुड़ा ही ले जाए। जैसे इमरान खान का मेडिकल चेकअप पूरा हुआ, तुरंत जेल पहुंचाया, और इसी के बाद पाकिस्तान के सूचना उर्फ प्रोपेगेंडा मंत्री अताउल्ला तरार ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके ये बताना शुरू किया कि इमरान खान का मेडिकल चेकअप पूरा हो गया है, वो पूरी तरह से फिट है। अब PTI के नेता मानते हैं कि शहबाज और मुनीर इमरान खान से कितना डरते हैं, ये इस पूरे घटनाक्रम से साबित होता है। इमरान का मेडिकल चेकअप दिन में हो सकता था, लेकिन रात का समय चुना। आखिर समय तक अगर आप देखिए तो परिवार को नहीं बताया, बल्कि गलत अफवाहें फैलाई। इमरान के परिवार PTI के नेताओं को इसके बारे में नहीं बताया कि कहां ले जा रहे हैं। इसके अलावा PTI की शर्त और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ये मेडिकल चेकअप शिफा हॉस्पिटल में होना था, लेकिन इसके लिए PIMS को चुना गया ताकि इमरान की असली स्थिति को छिपाया जा सके और उनके समर्थकों को वहां पर उनको देखने से और आंदोलित होने से रोका जाए। कल की रात शहबाज और मुनीर के लिए कितनी भारी रही होगी कल्पना कीजिए। पूरा घटनाक्रम पर बनाई गई अपनी ये रिपोर्ट आपको जरा दिखाते हैं।
1: बानी PTI को उनके सेल में शिफ्ट कर दिया गया है, बानी PTI को अडियाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया है।
2: हाल देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे 14 अगस्त का जश्न मनाया जा रहा हो।
3: तमाम दस्तों में
0: पाकिस्तान सरकार के मुताबिक इमरान खान पूरी तरह से फिट है क्योंकि उनके मेडिकल चेकअप में सब कुछ सामान्य है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान का परिवार शहबाज और मुनीर के रवैये से नाराज है। इमरान खान की बहन डॉक्टर उज्मा खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए दावा किया कि इमरान की सेहत ठीक नहीं है, मेडिकल जांच के नाम पर धोखा हुआ। उज्मा ने इमरान के हवाले से बताया कि अडियाला जेल में उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जाता, टॉर्चर किया जाता है। उज्मा ने मेडिकल जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि इमरान की आंखों और ब्लड प्रेशर की जांच की गई है, लेकिन ब्लड टेस्ट तो नहीं किए गए।
4: तो एक बस उन्होंने बस एक बात, और वो डॉक्टर्स कहते हैं आप ना करें, आपका ब्लड प्रेशर इससे चढ़ता है। वो बार बार एक ही चीज उन्होंने कही, कहती मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ मेरा इतना मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। मुझे वो कहता है, एक कोई और डॉक्टर भी आता, उसने कहा था ह्यूमन कॉन्टैक्ट नहीं होने की वजह से इनको इनकी तबीयत खराब होती है। कहते हैं 10 महीने से मेरे पास, कहते ना रीडिंग मटेरियल ना TV, कहते जब मैं कहते जून, अब उनको डेट कहते जुलाई, उनसे पूछे बताओ मैं कब मेरा जुलाई में था, कहते मेरे सर में कुछ होने लग गया।
0: और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हैदराबाद में एक सांसद के बेटे ने अपनी 6 करोड़ रुपए की एस्टन मार्टिन कार से एक 26 साल की सेल्स एग्जीक्यूटिव को कुचल दिया। एक्सीडेंट के बाद उस लड़की की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। यह एस्टन मार्टिन कार आंध्र प्रदेश की जन सेना पार्टी के राज्यसभा सदस्य लिंग मनेनी रमेश के 23 साल के बेटे लिंग मनेनी संजुश चला रहे थे। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सांसद के बेटे को इस मामले में गिरफ्तार ही नहीं किया गया है। यह हादसा हैदराबाद के मधापुर रोड पर एक मॉल के सामने हुआ। हादसे का शिकार हुई 26 साल की

0: पीड़ित लड़की भारती मुखी दोपहर के समय लंच के लिए बाहर आई थी और वो उसकी जिंदगी का आखिरी दफ्तर से निकलना हो गया, क्योंकि वो जब तक समझ पाती तब तक एक तेज रफ्तार एस्टन मार्टिन कार ने उसे इतनी जोर से टक्कर मारी कि घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इस हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने उसे बचाने की कोशिश जरूर की, लेकिन एक्सीडेंट से उसके सिर पर गंभीर चोटें आई थी, खून बहुत ज्यादा बह गया था। घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों ने इस हादसे के बाद वीडियो बना लिया था, जिसमें पीड़ित भारती और उसे एस्टन मार्टिन कार से टक्कर मारने वाला लिंग मनैनी संजुश नजर आ रहा है। टक्कर के बाद आरोपी अपनी गाड़ी से बाहर भी आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
1: स्टॉप, स्टॉप।
2: इतना भाग के आते
0: अब आप कानून व्यवस्था का दुखद सच देखिए। 16 अगस्त की दोपहर को हुए इस हादसे के बाद आज 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन इस दौरान आरोपी सांसद पुत्र को गिरफ्तार ही नहीं किया गया है, और तो और अब ये खबर आ रही है कि उसे गिरफ्तारी से पहले ही जमानत दे दी गई है, क्योंकि एक लड़की को कुचल कर मारने के केस में उस पर जो धाराएं लगी हैं उसमें गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं होती है। जिस एक्सीडेंट में 26 साल की भारती की मौत हुई उसमें आरोपी संजुश पर पुलिस ने BNS की धारा 106(1) लगाई है। अब ये धारा क्या है? ये धारा 106(1) एक जमानती धारा है। ये तब लगाई जाती है जब जांच में ये पाया जाता है कि ड्राइवर लापरवाही के साथ गाड़ी चला रहा था और उसकी वजह से किसी की मौत हुई है। आज केस में दोषी पाए जाने पर 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि नियमों के तहत पुलिस इस केस में आरोपी को गिरफ्तार भी कर सकती थी, उसके बाद जो जमानत की प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती थी, लेकिन पुलिस ने यह जहमत ही नहीं उठाई। उसने नोटिस दिया और नोटिस देकर छोड़ दिया रफा दफा, और बाद में जमानत भी हो गई। मुमकिन है कि पुलिस का ये सॉफ्ट एक्शन इसलिए हुआ क्योंकि संजुश के पिता लिंग मनैनी रमेश एक्टर पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, और ये पार्टी आंध्र प्रदेश में इस वक्त TDP के साथ सरकार में शामिल है। ब्लैक एंड व्हाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा।
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: एक तो विश्राम

0: सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ
1: एक हिंट तो देते।
2: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है, कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
3: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर।
2: आश्चर्यजनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम?
1: क्रॉसबॉन सुपर स्ट्रॉन्ग,
2: सुपर स्ट्रॉन्ग
1: और मॉइस्चर प्रूफ।
3: वारंटी
1: 15 साल की।
2: कदम
1: सर प्लीज
2: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन से ही बनेंगे।
4: क्रॉसबॉन HGMR Max फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
3: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: विमल बोलो जुबा केसरी।
4: सिर पर सिर ये मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के आंदोलन करने की घोषणा करते हैं, मन बनाते हैं, लेकिन झारखंड की जनता अब उतना बेवकूफ नहीं है। झारखंड की जनता जानती है, इस देश की जनता जानती है, देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति है, वो गरीबी को जानते हैं, गरीबी की पीड़ा को जानते हैं, हर वो काम करते हैं जो गरीब के लिए भला हो।
5: मुझे लगता है कि शायद इसी का अंदेशा होगा जिसकी वजह से उस समय विलंब हो रहा था डिसीजन लेने में, और अब डिसीजन हुआ। तो ये भी बात सही है कि जिनकी नौकरी लग गई, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले से कुछ नौकरियां वो सरकारी कर रहे थे, कोई रेलवे की नौकरी कर रहा था, सिर्फ अपने स्टेट में वापस आने के ये में उन्होंने यहाँ की नौकरी ज्वाइन कर ली थी, तो उनके साथ अन्याय हो रहा था शायद, इसीलिए माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया। अब देखा जाएगा क्या होता है न्याय के।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: वंदे मातरम विवाद की ये केरलम फाइल है। आरोप है कि केरलम के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में एक त्रिवेंद्रम के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में SFI ने वंदे मातरम पूरा गाने से रोक दिया। खबरों के मुताबिक त्रिवेंद्रम के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के तहत युवा प्रोफेशनल्स का राउंड टेबल आयोजित किया गया था। राउंड टेबल से पहले वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ तो SFI के छात्रों ने बीच में ही रुकवा दिया। SFI के छात्रों का कहना था कि ये केरलम है और आप यहाँ पूरा वंदे मातरम नहीं गा सकते। वंदे मातरम के दो छंद या छह छंद। 15 अगस्त को कांग्रेस के कार्यक्रम से इस विवाद की शुरुआत हुई थी। सोनिया गांधी पर आरोप लगा कि वो वंदे मातरम पूरा गाने से रोक रही थी। दो दिन गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम के दो छंद ही गाए गए और फिर कांग्रेस कार्य समिति ने पार्टी के आयोजनों में दो छंद वाले वंदे मातरम को ही जारी रखने का फैसला लिया। कांग्रेस कार्य समिति के फैसले पर गृह मंत्री ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने भी तुरंत पलटवार किया।
3: वंदे मातरम तो कांग्रेस गा ही रही, ये लोगों ने वो बात के भी और जो लंबा चौड़ा था जिसे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद कहा था कितना लंबा ये नहीं होना चाहिए, तो वो उन्होंने जो है रोका था कि इतने बस गाया जाए। तो वो पद वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलय शीतलम सत्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम है मातृभूमि की आराधना है, तो कांग्रेस हमेशा से गाती रही। इन्होंने नया नया वंदे मातरम पकड़ा है, फिर एक भी भाजपा नेता को आप कैमरा लगा दो सामने अगर वो वंदे मातरम पूरा गा दे, नहीं गा सकते। सिर्फ जो है एक राजनीतिक जो है दुष्प्रचार करना सिर्फ वोटों के लिए।
2: इस विवाद में समाजवादी पार्टी भी कूदी। पार्टी का कहना है कि कानून अपमान को लेकर बना है न कि गाने को लेकर।
4: वंदे मातरम कानून बन चुका है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन वंदे मातरम गाया जाए इस तरीके का कोई आदेश सदन ने पास नहीं किया है। तो वंदे मातरम जब होगा तो जो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं हम खड़े होकर के सावधान मुद्रा में उसके सम्मान में हम उस कानून का पालन करेंगे और वंदे मातरम जितना आ सकेगा उतना गाएंगे, क्योंकि 6 स्टेंजा याद करना किसी के बस की बात नहीं।
2: वंदे मातरम कभी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों में जोश भरने वाला गीत था, लेकिन अब उसी वंदे मातरम पर सियासी लड़ाई छिड़ गई है। कहां से कहां आ गए हम। आज तक ब्यूरो।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही. अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे. तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए. और रिश्ता मरने से पहले बहुत देर तक वेंटिलेटर पर रहता है, उसे बचाने की कोशिश जरूर करिए. नमस्कार.
2: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय विक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब विक्टर्स.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.

0: राहुल गांधी के धरने के बाद पैलेट गन केस में अज्ञात के खिलाफ दिल्ली के संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज। राहुल का कटाक्ष, अमित शाह और गृह सचिव ने दी अनुमति, बोले न्याय की दिशा में ये पहला कदम। राहुल के खिलाफ बीजेपी की फौज, नड्डा बोले वंदे मातरम पर घिरने के बाद कांग्रेस का धरना। स्मृति बोली विरोध के नाम पर स्वांग। बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, वंदे मातरम को स्वीकार न करना दुर्भाग्यपूर्ण। राजनाथ बोले कांग्रेस की खतरनाक इरादे देश के सामने उजागर। झारखंड में रांची समेत कई शहरों में भिड़े छात्र और जेएमएम कार्यकर्ता, सीएम सोरेन का पुतला फूंकने पर हंगामा। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म फोरम का प्रदर्शन। और आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन। सवर्ण समाज के लोग और युवा शामिल, जाति के बदले आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक, अगर आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक पैलेट गन पर छिड़े संग्राम पर। दिल्ली में जंतर मंतर आंदोलन के दौरान छात्रों पर पैलेट गन चलाने के मुद्दे पर राहुल गांधी अड़ गए। जी हां, राहुल गांधी ने दिल्ली में संसद मार्ग थाने पर धरना दे दिया। राहुल गांधी ने कहा कि पैलेट गन से साहिल लोचाब नाम के छात्र की आंख चली गई। फिर भी दिल्ली पुलिस एफआईआर क्यों नहीं लिख रही है। घंटों तक हंगामा हुआ और पुलिस ने आखिर में पैलेट गन पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इस एफआईआर के अनुसार अज्ञात आरोपी पर बीनेस की धारा 118 और 125 के तहत आरोप लगाए गए हैं। धारा 118 जानबूझकर खतरनाक हथियारों या खतरनाक साधनों से किसी को चोट पहुंचाने पर लगती है। वहीं धारा 125 किसी भी ऐसे लापरवाही या उतावलेपन भरे काम पर लागू होती है। तो आइए दिखाएं आपको पैलेट गन पर कैसे फायर हुए राहुल गांधी।
1: पैलेट गन पर राहुल गांधी फायर, एफआईआर पर तकरार।
2: जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं।
1: थाने में राहुल गांधी का धरना, 5.5 घंटे में झुक गई पुलिस। पैलेट गन पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। राहुल गांधी की मान ली बात।
3: हेल्थ ब्रेक के आगे मैंने बताया कि मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही, तो सडन ही से कल मिलते हैं और कल मैं आपकी एफआईआर करवाने जाऊंगा, तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ।
1: राहुल गांधी पैलेट गन पीड़ित को साथ लाए, पुलिस से सीधे टकराए।
3: अभी कहा शुरुआत हुई है, ये न्याय का पहला कदम है, केस लॉन्च हुआ है।
1: पैलेट गन पर कांग्रेस का प्रदर्शन, बीजेपी बोली राजनीतिक हताशा।
4: कितनी भी ताकत लगा ले भाजपा, अगर राहुल गांधी ने जिद बना लिया तो एफआईआर करनी पड़ेगी और करना पड़ा।
1: 20 जुलाई वो दिन है और आज का दिन है जब से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में चलो संसद मार्च के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। तभी से राहुल गांधी छात्रों पर चली पैलेट गन के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। शुक्रवार दोपहर 12 बजे संसद मार्ग थाना दिल्ली, राहुल गांधी पैलेट गन पीड़ित छात्र साहिल लोचब को लेकर संसद मार्ग थाने पहुंचते हैं। राहुल गांधी साहिल लोचब और उनकी मां के साथ थाने के अंदर डीसीपी से मिलते हैं और पैलेट गन के मुद्दे पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हैं, लेकिन पुलिस तैयार नहीं होती और कहती है कि ऊपर से एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर नहीं है। पुलिस कहती है कि 20 जुलाई को दर्ज सभी मामलों की जांच पहले से क्राइम ब्रांच कर रही है। राहुल गांधी साहिल लोचब को लगे पैलेट गन के छर्रों के निशान दिखाते हैं और कहते हैं कि पैलेट गन चलने के सबूत हैं। ये छर्रे साहिल के शरीर से निकले हैं। अगर पुलिस ने गन नहीं चलाई तो किसने चलाई है। पुलिस कह रही है कि उन्हें एफआईआर नहीं करने के ऊपर से निर्देश है।
2: दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों, मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं।
1: और राहुल गांधी थाने में ही धरने पर बैठ जाते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती वो थाने से नहीं हिलेंगे। राहुल गांधी बहन प्रियंका गांधी और कांग्रेस के नेताओं की पूरी ब्रिगेड के साथ थाने में धरना देने लगते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि 19 साल के साहिल लोचब की पैलेट गन से आंख की रोशनी चली गई, फिर भी साहिल को न्याय नहीं मिल रहा।
2: पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट, देख लीजिए इनको अच्छी तरह, देख लीजिए ये, देखिए ये है पैलेट, ये कहाँ से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ, ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है, वो फाइल दिखाओ, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे।
1: पुलिस ने एफआईआर दर्ज न करने का कोई ठोस कारण नहीं बताया, लेकिन दलील ये दी जाती है कि 20 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता और पुलिस वालों पर हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यों की हाई पावर कमेटी बनाई है। ये कमेटी पैलेट गन, इलेक्ट्रिक शॉक बैटन के इस्तेमाल से लेकर महिलाओं से अभद्रता और पुलिस वालों पर हमले के तथ्यों की जांच करेगी। इसके लिए कमेटी घटना के दिन के सारे ड्रोन, सीसीटीवी, बॉडी कैम रिकॉर्डिंग के सबूतों की मदद भी लेगी और दोनों पक्षों के घायलों को अंतरिम मुआवजा देने पर भी रिपोर्ट देगी। संसद मार्च थाने में कांग्रेस के धरने पर बीजेपी सवाल उठाती है और ये कहती है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा कहते हैं कि कांग्रेस का ये धरना प्रदर्शन छात्रों पर फिर न्याय के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक हताशा है।
5: राहुल गांधी की उस सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति का गवाह बन रही है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने आज संसद मार्ग थाने के बाहर जो किया वो सबने देखा है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है।
1: आपको बता दें कि 20 जुलाई को चली पैलेट गन को लेकर पहले तो दिल्ली पुलिस और सरकार ने इनकार किया, फिर जीडी एंट्री में 2 राउंड पैलेट फायरिंग की पुष्टि हुई। इसके बाद आरटीआई में भी खुलासा हुआ कि लेडी हार्डिंग अस्पताल में पैलेट गन जैसी चोट से जख्मी 9 घायल पहुंचे थे। इसी तरह सफदरजंग के दस्तावेज में पता चला कि एक मरीज पैलेट गन से जख्मी आया था। इससे पहले भी राहुल गांधी ने साहिल लोचक को मीडिया और देश के सामने पेश किया और शरीर पर पैलेट गन के छर्रों के निशान भी दिखाए। आपको बता दें कि एम्स में हुई सीटी स्कैन की जांच के अनुसार साहिल के शरीर यानी गर्दन, चेहरे, जबड़े और दाहिनी आंख के गड्ढे में 200 से अधिक छर्रे फंसे हुए हैं।
6: इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा,
1: जिन्हें नस के पास होने के कारण निकाला नहीं जा सकता। ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस के दिग्गज नेता संसद मार्ग थाने में धरने पर बैठे तो बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पैलेट गन पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर लेटे हुए नजर आए तो थाने के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता चरखा चलाकर भी विरोध प्रदर्शन करते दिखे। तकरीबन 5.5 घंटे के धरना प्रदर्शन के बाद जब राहुल गांधी और कांग्रेस के दिग्गज नेता थाने में डटे रहे तो पुलिस पैलेट गन पर एफआईआर दर्ज करने पर राजी हुई। दिल्ली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लेकिन जब तक पुलिस एफआईआर लिखती रही राहुल गांधी थाने में डटे रहे।
2: एक महीना हो गया, छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, 3-4 छर्रे दिल के पास है, साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11:30 बजे हम यहाँ आए, एक महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं। तब जाके FIR फाइल की। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिलता। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है।
1: इससे पहले भी राहुल गांधी ने छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर पीएम आवास के करीब धरना दिया था और अब पैलेट गन पर FIR को लेकर राहुल गांधी की अगुवाई में पूरी टीम संसद मार्ग थाने पहुँच गयी और तब तक नहीं उठी जब तक दिल्ली पुलिस झुक नहीं गई। दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज नहीं कर ली। आखिर में राहुल गांधी FIR की कॉपी लेकर ही थाने से निकले। दिल्ली से बॉस्मी सिंह और राहुल गौतम के साथ आज तक ब्यूरो।
7: एक तरफ राहुल गांधी जेंजी पर चले पैलेट गन पर फायर,
1: गांव में जेंजी का साथ लेकर वो बाजी पलट सकती है। ऐसे में जेंजी को लुभाने के लिए
2: बड़ा
8: यूथ का पॉपुलेशन है, 40 करोड़ युवा, आप जैसे युवा, एनर्जेटिक युवा इस देश में रहते हैं, ये इस देश की स्ट्रेंथ है। चाइना की बात होती है, अमेरिका की बात होती है, रशिया की बात होती है, इंडिया के यूथ के सामने, इंडिया के यूथ पोटेंशियल के सामने ये सब लोग कुछ नहीं है। 21वीं सदी में एक और चीज हुई है, 21वीं सदी में अगर देश प्रगति करता है तो दो चीजों के बल पे करता है, यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो।
1: और शनिवार यानी 22 अगस्त को कांग्रेस महाराष्ट्र के पुणे शहर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने जा रही है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये कांग्रेसी संस्थानों के बच्चों से राहुल का मोनोलॉग है।
9: छात्रों की गूंज है या राहुल गांधी अपनी जमीन तलाश रहे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझे जानकारी है अगर वो एक ओपन इस प्रकार का इवेंट करते तो शायद ये छात्रों से संवाद होता। अभी पूना और पूना के आसपास जितने कांग्रेसियों की संस्थाएं हैं, शिक्षा संस्थाएं, उन संस्थाओं की ही लड़कियों को रजिस्टर करना इस प्रकार का आदेश दिया गया है।
1: इतना ही नहीं, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। अमित साटम ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी इस कार्यक्रम में 25,000 रुपए देकर एंटी नेशनल लोगों को शामिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लगता है कि पैसे देकर युवाओं को अपने साथ जोड़ा जा सकता है।
10: एंटी इंडिया गैंग से जो उन्होंने पैसे फंड प्राप्त किए है, उस फंड से लोगों को 25,000 रुपए देकर छात्रों की गूंज इस कार्यक्रम में लोगों को बुलाने की वो कोशिश कर रहे हैं। पर राहुल गांधी को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकार से एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ में हाथ मिलाकर हिंदुस्तान में अगर अनार्की क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो इस देश की जेन जी और जेन नेक्स्ट आपको ऐसा थप्पड़ लगाएगी कि उसकी गूंज आपको भविष्य में सुनाई देगी।
11: राहुल जी आ रहे हैं, वो खुला सभी को निमंत्रण है, महाराष्ट्र के सभी युवतियों को, खास करके युवतियों से वो मिलना चाहते हैं, जो युवती छात्र है हमारी, उनसे, हमारी बेटियों से वो मिलना चाहते हैं, उनकी क्या समस्या है, उनकी क्या सोच है देश के बारे में, राज्य के बारे में, उनकी बातों को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और उनकी आवाज़ देश में उठाना चाहते हैं, उनकी आवाज बनना चाहते हैं। तो छात्रों का गूंज का कार्यक्रम राहुल जी और कांग्रेस पार्टी जो कर रही है उस पूरे देश के सभी लोगों को ले कर रही है।
1: पुणे में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है और कार्यक्रम को पुलिस की मंजूरी मिल गई है। आयोजकों को 30 शर्तों का पालन करना होगा जिनमें आपत्तिजनक तस्वीरों, पोस्टरों और बैनरों पर रोक शामिल है।
12: अभी उसी ग्राउंड पर खड़ा हूं जहां कांग्रेस की तरफ से ये सब जोर शोर से तैयारियां शुरू है। शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और बराबरी का मुद्दा होगा, इसी पर ये छात्रों की गूंज की जाएगी। सीजेपी के आंदोलन से पहले भी राहुल गांधी ने कोटा में एक प्रोग्राम लिया था, वहीं पे भी इंटरेक्शन हुआ था और उसके बाद अब ये पुणे में प्रोग्राम होने जा रहा है जिसकी तैयारियां इस ग्राउंड पर अभी शुरू हो चुकी है। लेकिन उससे पहले ही पुणे पुलिस ने राहुल गांधी को और उनके यहाँ के जो लोकल ऑर्गेनाइजर्स है कांग्रेस के कार्यकर्ता, उन्हें 30 मुद्दों की एक एडवाइजरी दी है और ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस दी है कि उसी पर अगर ये प्रोग्राम नहीं होता है, उस पर कुछ भी गड़बड़ियां होती है तो पुणे पुलिस इस पूरे मामले में सीधा एक्शन लेगी।
1: राहुल गांधी छात्रों की गूंज से जेन जी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो मोदी सरकार ने जेन जी से

0: करने के लिए नया प्लान बनाया है। मोदी सरकार वन डे वन यूनिवर्सिटी अभियान की योजना बना रही है, जिसके तहत रोज एक यूनिवर्सिटी में एक केंद्रीय मंत्री जाकर छात्रों से अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वो छात्रों की राय सुनेंगे और खासकर युवाओं और छात्रों के लिए चल रही सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। आज तक ब्यूरो।
1: और आइए अब हम आपको दिखाएं कि कैसे जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी की टीम पर हमला बोला गया। आपको ये बता दें हम कि कॉकरोच जनता पार्टी ने 15 अगस्त से स्कूल ठीक करो अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत ग्रामीण और सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे, सुरक्षा और शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन जब कॉकरोच जनता पार्टी की टीम अपने इस अभियान के तहत जयपुर के एक स्कूल में पहुंची तो वहां उन पर हमला कर दिया गया। ग्रामीणों ने उन्हें खदेड़ा और दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने उन पर हमला किया। आशुतोष रांका ने यह भी आरोप लगाया कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इशारे पर यह सब हुआ है। आइए दिखाएं आपको आखिर पूरा मामला क्या है।
0: जयपुर में सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले की तस्वीरें आप देख सकते हैं। स्कूल ठीक करो अभियान के तहत जब सीजेपी की टीम जयपुर के स्कूल में पहुंची तो उन्हें बुरी तरह से खदेड़ दिया गया।
2: गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहां पर देखिए, ये तस्वीरें देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं।
0: टीम को लात घूसों से पीटा, किसी को पत्थरों से मारा। अब सवाल ये है कि आखिर स्कूल के निरीक्षण से इतना गुस्सा क्यों है? अगर सीजेपी वाले स्कूल में पहुंच जाते, जांच पड़ताल कर लेते तो स्कूल या गांव वालों का क्या नुकसान हो जाता? सरकारी स्कूलों की हालत खराब है तो उसे छुपाने की क्या जरूरत है? स्कूल वर्ल्ड क्लास है तो निरीक्षण करने वाले वॉलंटियर्स पर इस तरह जानलेवा हमला क्यों? यह है राजस्थान की राजधानी जयपुर और जयपुर के रामपुरा गांव का ये प्राथमिक विद्यालय। इसी स्कूल की जांच पड़ताल के लिए कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी कार्यकर्ता गांव में पहुंचे थे। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका की अगुवाई में युवाओं का ग्रुप गांव में घुसा तो गांव वाले जैसे पहले से ही तैयार बैठे थे। गांव के लोगों ने सीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की और इसी में तू तू मैं शुरू हो गई और नौबत मारपीट तक पहुंच गई।
3: आशुतोष और रांका सहित पूरी टीम यहां पर मौके पर पहुंची है और दोनों तरफ यहां पर आमने सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहां पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, लोग इनको भगा रहे हैं। आशुतोष रांका के साथ महिला कार्यकर्ता भी है लेकिन यहां पर ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में और इनको यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष रांका के साथ मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी। गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं, ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है और रामपुरा में यहाँ पर ये देखिए लात घूसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक एक की पिटाई कर रहे हैं, यहाँ पर गांव वाले पीछे भाग रहे हैं
2: और ये देखिए गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहाँ पर देखिए ये तस्वीर देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर और यहाँ हाथ बिखर चुका है।
0: अचानक हुए हमले से सीजेपी वॉलंटियर संभल नहीं पाए। हालत ये हो गई कि कुछ कार्यकर्ताओं को जमीन पर पटक कर मारा गया। जिन गाड़ियों से सीजेपी के लोग गांव में घुसे थे उन गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। भागते हुए कार्यकर्ताओं को गांव वालों ने पीछा करके पीटा। जो भी उनकी पकड़ में आया उसे इतना पीटा कि किसी का हाथ टूट गया, किसी के सिर पर चोट आई, किसी के कपड़े फाड़ दिए गए। जयपुर के जिस स्कूल के निरीक्षण को लेकर सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ उसकी सच्चाई ये है कि गांव का स्कूल जर्जर है। जिस इमारत में क्लास चलती थी उसकी हालत इतनी खराब है कि कभी भी ढह जाए। इसीलिए गांव वालों ने स्कूल के सामने ही एक तबेले में अस्थाई व्यवस्था कर दी जहां कक्षाएं चलती हैं।
3: ये वो बाड़ा है, नीम के पेड़ के पीछे आपको ये बाड़ा दिख रहा होगा जहां पर ये स्कूल चल रहा है। ये देखिए तस्वीर, यहां पर गेट पर यहां पर

0: कुंटी लगा रखी है, और यहाँ पर अंदर ही आपको ये भैंसों का तबेला दिख रहा होगा। और ऊपर से दिखाता हूँ आपको साफ तस्वीर है, जहाँ पर ये देखिए, ये स्कूल के जो दो टीचर्स हैं यहाँ पर, और भैंसों का तबेला है, बच्चे यहाँ पर, मैम यहाँ पर भैंसों का तबेले में बच्चे
1: अलाउड नहीं है, बिल्कुल अलाउड
0: प्लीज सर, भैंसों का तबेले में बच्चे,
1: प्लीज प्लीज देखो मैडम क्या कह रही है, वो नहीं देख रहे हैं, प्लीज बिल्कुल अलाउड
0: यहाँ पर कुछ।
2: स्कूल के शिक्षकों को मीडिया से बात करने की मनाही है। तबेले में चल रहे स्कूल में तीन शिक्षक हैं, लेकिन राजस्थान सरकार की सख्ती इतनी है कि कैमरा देखते ही शिक्षकों ने हाथ जोड़ लिए और बात करने से मना कर दिया। आज तक के कैमरे में जो आपने देखा स्कूल का यही सच है, और इसी सच को दिखाने के लिए सीजेपी कार्यकर्ता गांव में पहुंचे थे, लेकिन पहले से योजना बनाए बैठे ग्रामीणों ने सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। सीजेपी ने आरोप लगाया कि ये राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदमी थे, बीजेपी आरएसएस के लोग थे जिन्होंने हमला किया।
3: आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था, वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं।
4: यहाँ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे पहले से थे, उन्होंने लाठियों से मारा है, धक्का देकर के मारा है, पत्थरों से मारा है, और मेरे साथ में धक्का देकर के गिरा, लाठियों से मारा, जिससे ये हाथ गया।
5: आज आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर। इनको डर है कि कहीं सीजेपी वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे, और सीजेपी वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए, सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा।
2: अब ये कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि हम तो स्कूल ठीक कराने के लिए आए थे, शिक्षा से किसी को क्या समस्या हो सकती है। गाँव वाले कह रहे हैं कि समस्या शिक्षा सुधार से नहीं, सीजेपी से है।
6: ये हमारे यहाँ पर बगरू विधानसभा लगती है, और वहाँ से MLA डॉक्टर कैलाश वर्मा जी, उन्होंने अभी आश्वासन दिया था कि यहाँ पर 9 लाख का बजट पास हुआ है, लेकिन अभी तक वो कागजों में सिमट के रहे है, अभी तक यहाँ धरातल पे अभी कुछ नहीं हमारे।
7: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे इमरान खान की आजादी से डर गए आसिम मुनीर। आप देखते रहिए दस्तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो,
9: इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
11: I wake up wearing some

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: The new BE6 Sporter.
1: Hey, Shram.

0: सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: बिजली का बिल पेड तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
8: कैसे?
7: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
8: इतना माही वे।
9: पापा।
10: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये छोड़ खर्चा वर्चा।
9: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
10: छक्का?
9: सब कैशलेस हो गया है।
10: हाँ
9: टाटा
11: AIG है तो भरोसा है।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: In association with
4: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera.
5: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
6: हम तो पुराने सीएम साहिबा को भी बुलाते थे, वो एसएसबी के कार्यक्रम में आना नहीं चाहती थी। हमने तो आपको बुलाया, आप आ गए, आपका स्वागत है। एसएसबी हो, बीएसएफ हो, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक सरकार की एजेंसी नहीं है। ये अहर्निश तप, तपस्या और परिश्रम कर देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला बल है। इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिसी, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी गवर्नमेंट, सभी राजनीतिक दलों को, चाहे बंगाल में हो या केंद्र में जो सरकार हो, सभी ने जवानों के साथ आत्मीय रिश्ता रखना चाहिए। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर ही 1129 एकड़ भूमि, जो हम 2014 से मांगते थे, हमें मिलती नहीं थी। बीएसएफ और एसएसबी के लिए 1129 एकड़ भूमि शुभेंदु जी ने दे दिया। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए। हम ममता बनर्जी के हाथ पैर जोड़कर थक गए, मगर हमें
3: सिर्फ एक हिंट
7: तो देते।
8: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
9: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।

0: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: बिजली का बिल पेड तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिए।
4: कैसे?
3: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
4: पे। इतना माही वे।
5: पापा।
6: सॉरी यार, ये गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का?
5: सब कैशलेस हो गया है।
6: हाँ
5: टाटा
7: AIG है तो भरोसा है।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: In association with
4: E3HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera.
5: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
6: हम तो पुराने सीएम साहिबा को भी बुलाते थे, वो एसएसबी के कार्यक्रम में आना नहीं चाहती थी। हमने तो आपको बुलाया, आप आ गए, आपका स्वागत है। एसएसबी हो, बीएसएफ हो, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक सरकार की एजेंसी नहीं है। ये अहर्निश तप तपस्या और परिश्रम कर देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला बल है। इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिसी, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी गवर्नमेंट, सभी राजनीतिक दलों को, चाहे बंगाल में हो या केंद्र में जो सरकार हो, सभी ने जवानों के साथ आत्मीय रिश्ता रखना चाहिए। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर ही 1129 एकड़ भूमि, जो हम 2014 से मांगते थे, हमें मिलती नहीं थी। बीएसएफ और एसएसबी के लिए 1129 एकड़ भूमि शुभेंदु जी ने दे दिया। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए। हम ममता बनर्जी के हाथ पैर जोड़कर थक गए, मगर हमें भूमि नहीं दी। एक बार उन्होंने आग्रह रखा, मैं उनकी ऑफिस में भी पहुंच गया कि ममता जी, वो भारतीय जनता पार्टी को जमीन नहीं देना है, बीएसएफ को देना है, आप कृपया दे दीजिए। हा बोला, मगर गई तब तक नहीं दी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब खबर पाकिस्तान की। जी हां, पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर क्या चल रहा है, मुनीर कौन सा गेम खेल रहा है, अब पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया यही समझना और जानना चाहती है। क्यों? चार घंटे के भीतर इमरान खान को जेल से अस्पताल और फिर अस्पताल से जेल वापस भेज दिया गया। लंबे समय बाद इमरान जेल से बाहर आए। खबर सुनकर बड़ी संख्या में उनके समर्थक इकट्ठा हो गए। सड़कों पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछा दी गईं। उम्मीद थी कि अब इमरान खान न केवल जेल से बाहर आ जाएंगे बल्कि पाकिस्तान की सत्ता में भी उनकी वापसी हो सकती है। लेकिन इमरान के समर्थकों के उत्साह पर कुछ ही घंटों में पानी फिर गया। अब सवाल यह है कि जब चार घंटे में ही इमरान फिट पाए गए तो किस आधार पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान का इलाज 16 सितंबर तक अस्पताल में कराया जाए। दिखाएं आपको इसके पीछे पूरा गेम क्या है।
1: इमरान खान को चार घंटे जेल से आजादी, फिर वही कैद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मजाक, पाकिस्तान में फौज की धार। मुनीर की मिडनाइट नौटंकी, इमरान खान की बहनें भड़की। मुनीर का पूरा प्लान हिट, अस्पताल में इमरान कैसे हुए फिट। इमरान समर्थकों ने फूल बिछाए, मुनीर ने जश्न पर फेरा पानी।
2: क्रॉस द बैरियर चले जाए, क्रॉस द बैरियर।
1: रात 1:05, रावलपिंडी का अदियाला जेल। अचानक सड़क पर हलचल तेज हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच 20 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल की ओर बढ़ गया। सुरक्षा को पुख्त करने के लिए इनमें जैमर्स और अभेद सुरक्षा चक्र का इस्तेमाल किया गया। इस भारी सुरक्षा काफिले में इमरान खान की बहन डॉक्टर उज्मा खान और उनके निजी चिकित्सक डॉक्टर फैसल सुल्तान की गाड़ी को भी साथ रहने की अनुमति दी गई थी। जब ये काफिला शिफा अस्पताल पहुंचा तो पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। एंट्री रूट्स पर कटीले तार लगा दिए गए थे और किसी भी बाहरी वाहन या मीडिया को पास आने की इजाजत नहीं थी।
2: मीडिया के भाइयों से गुजारिश होगी, ये डीएसएनजी लगाई हुई है, ये सारी खाली कार्ड, ये चौक अक्रॉस द बैरियर लगे गए, वहाँ पे मीडिया पॉइंट बनाया हुआ है हमने। शाबाश।
1: उधर जिन रास्तों से इस काफिले को गुजरना था वहाँ इमरान समर्थक गुलाब की पंखुड़ियां बरसा रहे थे।
3: आज उन तमाम रास्तों में जिन रास्तों से इमरान खान को लेकर जाना है, आज उन तमाम रास्तों में फूल ही फूल थे। आज फूलों की पत्तियां थी, आज लोगों की मोहब्बत थी और आज लोगों ने कहा कि फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। तो ये मंजर है, आपको अपडेट देंगे थोड़ी ही देर में। इमरान खान को शिफा लेकर आया जा रहा।
1: इमरान खान को शिफा अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनके पहुंचने से पहले तक मीडिया को हटा दिया गया था, लिहाजा इमरान खान की एक तस्वीर तक सामने नहीं आई। इस समय तक उनके समर्थक खुश थे कि आखिरकार उन्हें जेल से बाहर आने का मौका मिला।
4: ये हम लोगों को सुनने को मिला कि खान साहब को अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाएगा इलाज के लिए, बेहतर सहूलत के लिए। तो मुझे तो ये फैसला बड़ा खुशहाल लगा, हम इसका खैर मकदम करते हैं। जिन्होंने भी ये फैसला लिया है ये बहुत अच्छा है।
5: खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लाने की बात है तो सच्ची बात है, मिक्स फीलिंग है। खुशी भी बहुत है और परेशानी भी बहुत है कि ये नौबत क्यों आई और इतनी देर से क्यों आई।
1: असली सस्पेंस इसके बाद शुरू हुआ। पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई कि इमरान खान को जेल से इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन इस खबर के कुछ ही देर बाद मामला पलट गया। जानकारी मिली कि इमरान खान को वापस अदियाला जेल भेज दिया गया है।
6: अस्सलाम वालेकुम जी, शहजाद नवाज आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त मैं शिफा इंटरनेशनल के बाहर मौजूद हूँ और तेज़ बारिश यहाँ पर हो रही है। तकरीबन वक्त हो गए 5:40 सुबह के और रात भर यहाँ पर आपने देखा इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पर तैनात रही, पंजाब पुलिस।

0: आपके हुक्म नहीं माने, इन पर आप इंप्लीमेंट करवाएंगे, और जब तक ये इंप्लीमेंट नहीं होगा तो फिर हर पाकिस्तानी कहेगा कि ना जो है, अगर फर्ज करें ये ताकतवर लोग ये अदलिया और जजेस के हुक्म नहीं मानते, तो फिर सब बगावत करेंगे, सब बगावत पर उतर आएंगे, पाकिस्तान जो है बनाना रिपब्लिक बन जाएगा, जंगल का कानून है, जिसका जितना जोर है वो करेगा, जो जितना ताकतवर है उतना जुल्म करेगा, उतना आईन और कानून को पामाल करेगा। तो जजेस को अभी फैसला करना होगा, और ये मेरे ख्याल में आज ही इन जजेस को फैसला करना चाहिए।
1: सवाल यही है कि इमरान खान को सिर्फ 4 घंटे में ही अस्पताल से वापस जेल क्यों भेज दिया गया? क्या इमरान खान और फौज के बीच कोई समझौता हुआ जो टूट गया, या मुनीर इमरान के बाहर आने पर अवाम का रिएक्शन देखना चाहते थे? ऐसी तमाम अटकलें इस वक्त चल रही हैं, लेकिन इमरान खान को अस्पताल ले जाने और उनका इलाज कराने के पीछे सबसे बड़ी वजह सिर्फ एक मानी जा रही है, और वो वजह है इमरान खान की सलामती का संदेश देना। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले अमेरिका में बैठे एक पाकिस्तानी पत्रकार वजाहत खान ने दावा किया था कि रावलपिंडी के 3 फौजी अफसरों ने दावा किया है कि इमरान खान को जेल में मार दिया गया है। इसके बाद उनकी पार्टी और उनकी बहनों ने अदियाला जेल का रुख कर दिया था। शहबाज सरकार के अलावा आर्मी चीफ आसिफ मुनीर पर जबरदस्त दबाव आ गया था। अब चाहे सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही सही, लेकिन आसिफ मुनीर ने उन अफवाहों को हक कर दिया है जिनमें इमरान की सलामती को लेकर सवाल उठ रहे थे। माना जा रहा है कि 4 घंटे की इस कवायद के पीछे यही सबसे बड़ी वजह है। इमरान की जांच में किसी को कोई शक न हो, इसीलिए उनकी बहन उज्मा को भी पूरी जांच के दौरान साथ रखा गया। आज तक ब्यूरो।
2: और अब खबर रूस और यूक्रेन युद्ध की। जिस तरह से यूक्रेन पर हमलों के लिए रूस ने उत्तर कोरिया की मिसाइलों का इस्तेमाल किया, तो दुनिया भर में यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या पुतिन और किम की यारी विश्व युद्ध करवाएगी। 4.5 साल हो गए, लेकिन यूक्रेन और रूस का युद्ध है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, बल्कि ये धीरे धीरे और भी भीषण खतरनाक होता जा रहा है। रूस बार बार यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के शहरों को निशाना बना रहा है, तो यूक्रेन मॉस्को के साथ साथ रूस की महत्वपूर्ण तेल रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे रूस की ऑयल सप्लाई चेन पर काफी बुरा असर पड़ा है। लेकिन इस बार कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों ने हमला किया है, और इस हमले ने पूरे यूरोप समेत नेटो के कान भी खड़े कर दिए। नॉर्थ कोरिया ने पुतिन को एक ऐसा तोहफा दिया जिससे जेलेंस्की की रातों की नींद उड़ गई। यह तोहफा अब तक का सबसे खतरनाक जानलेवा विध्वंसक तोहफा है। यह तोहफा है बैलिस्टिक मिसाइलों का तोहफा, जो कीव के लिए काल बन गया। तो आइए दिखाएं आपको, क्या यह युद्ध विश्व युद्ध की तरफ बढ़ेगा।

0: अगस्त में क्यों बढ़ रहा रूस यूक्रेन में घमासान? क्यों मिसाइलें रोकने में यूक्रेन हो रहा नाकाम? क्या नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों ने बदला गेम प्लान? क्यों अचानक मच रहा है कीव में कोहराम? उत्तर कोरिया की मिसाइलों से हमला, महायुद्ध भड़केगा।
1: इक्कीस दिन, छह बड़े हमले, इस महीने 50 से ज्यादा लोगों की अगस्त में मौत, इस महीने 80 से ज्यादा लोग घायल। साढ़े चार साल के युद्ध के बाद एक तरफ जहां यूक्रेन अपने शहरों में तबाही का मंजर देख रहा है, वहीं मिसाइलों की कमी ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका और यूरोप से लेकर खाड़ी देशों के अपने हर उस दोस्त से मदद की गुहार लगा रहे हैं जहां से उन्हें मिसाइलों की मदद मिल सकती है। उधर रूस अगर इतने लंबे युद्ध के बाद भी मस्ती के मूड में है तो नॉर्थ कोरिया की दोस्ती की वजह से किम जोंग हर मोर्चे पर रूस की मदद कर रहे हैं, फिर वो चाहे सैन्य मोर्चा हो या फिर रोजमर्रा की कारोबार की जरूरतें। नॉर्थ कोरिया से विनाशकारी मिसाइलें आ रही हैं, नॉर्थ कोरिया से काम करने वाली ब्रिगेड आ रही है, नॉर्थ कोरिया से खतरनाक हथियार आ रहे हैं। बढ़ रहा है रूस का जोश, उड़ रहे यूक्रेन के होश। यूक्रेन का आरोप है कि नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें लगातार उनकी जमीन पर मौत का खेल खेल

0: रही हैं। नॉर्थ कोरिया रूस को सैनिक और हथियार सप्लाई कर रहा है और बदले में उसे मिलता है तेल, करेंसी और मिलिट्री टेक्नोलॉजी।
1: Ви знаєте, що ми вже знаходили ракети Північної Кореї на території України. Вони вже завдавали удари, використовували це. Сьогодні це вже є визнаний факт. Південна Корея, безумовно, вони переживають, це абсолютно зрозуміло, що Північна Корея буде нарощувати досвід сучасної війни, буде отримувати ліцензії від Росії, буде отримувати від них всі військові інструменти. Ми це чітко розуміємо, і також отримують досвід військовий, тобто північнокорейський солдат, офіцер тощо. І з цим досвідом, ну, вони точно не для мирних умов цей досвід готують. Тому Південна Корея повинна, на мій погляд, більш мати більш тісне співробітництво з Україною.
0: Україн ки хуфія агенціо ке таза хуласе ке мутабик, Рус ке пас Норд Корея ки KN-23 ор KN-24 балістик місайл то пехле се ті. अब KN-30 जैसी विनाशकारी मिसाइल भी मिल गई है। नॉर्थ कोरिया से रूस को लगातार मिल रहे हथियार यूक्रेन की जमीन पर कहर बरपा रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि यूक्रेन अकेले दम पर रूस से नहीं लड़ सकता। ऊपर से नॉर्थ कोरिया की रूस से दोस्ती ने उसकी नाक पे दम कर रखा है। एंटी मिसाइल सिस्टम उसके पास है नहीं। पैट्रियट मिसाइलें वो कब से मांग रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें मिली नहीं है। गुरुवार की रात को भी उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्हें कोई तोहफा नहीं चाहिए बल्कि वो इसे खरीदने के लिए तैयार हैं।
1: На жаль, з балістикою найскладніше зараз. Якщо відсоток збиття крилатих ракет в цьому ударі близько 90%, то з балістикою ситуація значно гірша. Потрібні ракети для патріотів – це те, що можуть забезпечити тільки наші партнери. На всіх рівнях ми доводимо до них і нашу потребу, і те, що ми знаємо, що цю нашу потребу партнери можуть заповнити. Ми говоримо не про подарунки, це про готовність України купувати зброю. Важливо.
0: रूस के वोरोनिश में उत्तर कोरियाई मिसाइल यूनिट तैनात हो चुकी है और उत्तर कोरिया के हजारों सैनिक रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ चुके हैं। अब ये सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ जंग तक सीमित नहीं है बल्कि अमेरिका के एकाधिकार को सीधे चुनौती देने की एक सोची समझी वैश्विक चाल है। किम जोंग अपने सैनिकों को केवल आधुनिक ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल वॉरफेयर की लाइव ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे बल्कि बदले में मॉस्को से परमाणु और सैटेलाइट तकनीक हासिल कर पश्चिमी देशों की हर पाबंदी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में अब होगी नाटो की एंट्री। रूस और उत्तर कोरिया के गठजोड़ से भड़केगा महायुद्ध। जर्मन अखबार डाई वेल्ट के मुताबिक 18 अगस्त के बाद से रूस के साथ बढ़ते तनाव और नाटो के पूर्वी हिस्से पर रूसी आक्रामकता बढ़ने की चिंताओं के बीच बड़ी संख्या में नाटो के सैन्य विमानों को कैलिनिंग्राद हवाई क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरते हुए देखा गया। अखबार की माने तो बाल्टिक हवाई क्षेत्र के ऊपर चक्कर लगा रहे दर्जनों नाटो विमानों में से कई नाटो टोही विमान कैलिनिंग्राद के ऊपर परिचालन कर रहे थे जो रूसी सीमा के निकट हवाई क्षेत्र की निगरानी कर रहे थे। नाटो का E-3 सेंट्री एयरबोर्न कमांड एंड कंट्रोल विमान, अमेरिका का EA-37B कंपस कॉल 2 इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान और अमेरिकी सेना का आर्टेमिस 2 विमान इस क्षेत्र में आर्टेमिस 2 और नाटो के E-3 विमानों के मिशन असामान्य नहीं है लेकिन अमेरिकी EA-37B इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमानों की एक साथ मौजूदगी सबका ध्यान खींचती है। अखबार डाई वेल्ट ने इस बात पर जोर दिया कि EA-37B विमानों की मौजूदगी साथ ही अवॉक और विशेष टोही विमानों की उपस्थिति ये दर्शाती है कि नाटो और अमेरिकी सेनाओं को कैलिनिंग्राद क्षेत्र में टोही या इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की विशेष आवश्यकता है। रूसी सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि कैलिनिंग्राद के आसपास अवॉक्स विमानों, इलेक्ट्रॉनिक टोही विमानों और दूसरे प्रकार के टोही विमानों के साथ साथ लड़ाकू विमानों और ईंधन भरने वाले विमानों का जमावड़ा रूस के लिए एक गंभीर खतरा माना जाता है। तो क्या अब ये खतरा रूस और यूक्रेन की जंग को महायुद्ध की ओर ले जाएगा? आज तक ब्यूरो।
2: दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: कंप्लेंट वो क्या फाइल करी, जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गया, जो जवाहरलाल नेहरू गए थे वही गया। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया है आज उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम की।
4: इस तरह का कोई भी कृत्य वो गैर कानूनी भी है, कानून के तहत कार्रवाई करने के योग्य भी है। इस तरह की गतिविधियां हरकतें अगर कोई करता है, और पार्टी किसी नेशनल पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने 55 साल तक देश में राज किया, ऐसे पार्टी के मुखिया की उपस्थिति में अगर ऐसा होता है तो लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति और देश के मानबिंदुओं के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा है, उनकी कितनी आस्था है, उनकी कितना उनके मन में पवित्रता का भाव है, देश के सामने प्रकट हो जाता है।
5: मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने देगा ना, मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा। मेरे सीधा सीधा है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, ये मेरा मूल अधिकार है, इसे आप छीन नहीं सकते मुझसे। हाँ मैं अपमान नहीं करूंगा, किसी भी सूरत में अपमान नहीं करूंगा। नहीं मैंने पहले भी नहीं गाया, अब भी नहीं गाऊंगा, उसमें नई बात थोड़ी ना है, मैं खड़ा हो जाऊंगा।

0: आज से महाराष्ट्र में परिवहन विभाग ने मराठी भाषा वाला अभियान शुरू कर दिया है। मुंबई समेत पूरे राज्य में आरटीओ ने गैर मराठी टैक्सी और ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की मराठी की वर्किंग नॉलेज चेक करने के लिए यह अभियान शुरू किया है। जिन ड्राइवरों को मराठी की प्रैक्टिकल जानकारी की कमी पाई गई, उन्हें नोटिस दिया गया और मराठी भाषा सीखने के लिए एक महीने का समय दिया गया। आरटीओ अधिकारियों ने उन लोगों को भी नोटिस दिया जो मौखिक मराठी टेस्ट में फेल हो गए थे। उनके पास 15 क्वेश्चन पेपर हैं, जिनमें आने जाने के दौरान ड्राइवर और यात्री के बीच बेसिक सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे मराठी में पूछना कि क्या आप किसी खास जगह पर जाएंगे, मराठी में जवाब देना कि इसमें कितना समय लगेगा। आरटीओ इंस्पेक्टर ने बताया कि परिवहन विभाग अब इस नियम को सख्ती से लागू करेगा, जिसमें हर ड्राइवर की मराठी की जानकारी सीधे बातचीत से जांची जाएगी। खास बात है कि पूरी प्रक्रिया की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी।
1: तो बेसिक मराठी आपको आती है, आगे जो भी सीख लेंगे और उसके बाद
2: थोड़ा जो कुछ है मैं भी सीख रहा है, सीखूंगा। बाकी आऊंगा टैक्सी बारे में कुछ भी पूछो, मैं आपको मराठी में बात करेगा।
1: कितने साल से मुंबई में टैक्सी चला रहे हैं?
2: मैं टैक्सी तो अभी नया चला रहा हूँ, मैं बड़ा गाड़ी चलाता हूँ, मेरा लाइसेंस जो है ना बड़ा गाड़ी के, मैं टैंकर चलाता हूँ। अभी 6 महीने से ये टैक्सी चला रहा हूँ, टैंकर मेरा ट्रांसपोर्ट लाइसेंस है, मैं ट्रांसपोर्ट गाड़ी चलाता हूँ। अभी मराठी
1: ये टैक्सी है,
2: ये घाटकोपर की है, मतलब घाटकोपर है।
0: वहीं जो ऑटो टैक्सी ड्राइवर मराठी सीखने से मना करेंगे तो उनका बैज 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद भी वो मराठी सीखने से मना करेंगे तो सरकार ये मानेगी कि वो मराठी भाषा से नफरत करते हैं, इसलिए बैज और परमिट दोनों को हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा।
3: कि जिनको अभी व्यवहारिक ज्ञान अगर मराठी का नहीं है तो हमारे आरटीओ के अधिकारी उनको चेक करेंगे, उनके साथ मराठी में संवाद रखेंगे और उनको मराठी अगर नहीं आती है तो नोटिस देंगे। 1 महीने के अंदर अगर वो बोल नहीं पाए तो उनका लाइसेंस जो है वो 3 महीने के लिए निलंबित किया जाएगा, और फिर 3 महीने में भी उनको अगर मराठी नहीं आया तो पूरे कार्यकाल के लिए उनका लाइसेंस और बैच कैंसिल करने की जो कानूनन कार्रवाई है वो हमारी कल से हो रही है। और मैं तो ये नहीं चाहता हूँ कि किसी का भी लाइसेंस रद्द हो, मगर किसी का भी बैच रद्द हो, मगर महाराष्ट्र में आने का, महाराष्ट्र में व्यवसाय करने का, महाराष्ट्र में पैसे कमाने का और महाराष्ट्र के प्रति अनादर दिखाने का, ये तो महाराष्ट्र में नहीं चलेगा।
0: ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक ने कहा कि 105 दिन के कैंपेन के दौरान 1,65,000 ड्राइवरों ने पहले ही मराठी ट्रेनिंग ली है और उन्हें सर्टिफिकेट दिए गए हैं, जिसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: आज तक बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
3: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर्स।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

राहुल गांधी के धरने के बाद पैलेट गन केस में अज्ञात के विरुद्ध दिल्ली के संसद मार्ग थाने में FIR दर्ज। राहुल का कटाक्ष, अमित शाह और गृह सचिव ने दी अनुमति, बोले न्याय की दिशा में ये पहला कदम। राहुल के खिलाफ उतरी बीजेपी की सेना, नड्डा ने कहा वंदे मातरम पर घिरने के बाद कांग्रेस का धरना। स्मृति ईरानी बोली विरोध के नाम पर स्वांग। सीएम योगी ने अखिलेश को फिर घेरा, कहा इनके पीडीए का पी पिछड़ा से पंडित हो गया और एक दिन कर देंगे पाकिस्तान। अखिलेश का पोस्ट, एक रंगी क्या जाने पीडीए के बहुरंग। झारखंड में रांची समेत कई शहरों में भिड़े छात्र और जेएमएम कार्यकर्ता, सीएम सोरेन का पुतला फूंकने पर मचा बवाल। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म फोरम का प्रदर्शन। आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन, सवर्ण समाज के लोग और युवा शामिल, जाति के बदले आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कभी मुंह से ही ठाए ठाए कर गोली चला देने वाली यूपी पुलिस अब इतनी ट्रेंड हो चुकी है कि रात के अंधेरे में 15 मीटर दूर से ही सिर्फ आवाज सुनकर परफेक्ट निशाना लगा सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब ऐसे ही एक निशानेबाज इंस्पेक्टर के बारे में सुना तो खुद हाईकोर्ट को भी यकीन नहीं हुआ। इसीलिए हाईकोर्ट ने सीधे सीबीआई को हुक्म दिया कि जरा वो इस निशानेबाज इंस्पेक्टर के निशाने की ट्रायल तो लें, जो एक साथ एक ही गाड़ी में 13 पुलिस वालों को बिठाकर रात के अंधेरे में 15 मीटर दूर से सिर्फ आवाज सुनकर एनकाउंटर कर सकता है। ।126 साल पहले सन 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लिया था। आजाद भारत के तौर पर हमने पहली बार 1948 के ओलंपिक में हिस्सा लिया था। लेकिन निशानेबाजी यानी शूटिंग में हमें पहला मेडल जीतने के लिए पूरे 56 साल इंतजार करना पड़ा। राज्यवर्धन सिंह राठौर पहले भारतीय थे जिन्होंने ओलंपिक में शूटिंग में भारत को सिल्वर मेडल जिताया था। इसके बाद 2008 में अभिनव बिंद्रा ने पहली बार शूटिंग में देश को गोल्ड मेडल दिलाया। 2004 से 2024 तक यानी बीते 20 सालों में शूटिंग में हम सिर्फ 7 मेडल ही जीत पाए हैं। इनमें भी सिर्फ 1 गोल्ड और 2 सिल्वर है, बाकी 5 ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। अब आप सोच रहे होंगे कि वारदात के शो में हम स्पोर्ट्स की खबर कहां से लेकर बैठ गए, तो ऐसा नहीं है। असल में ओलंपिक के जरिए हम देश के इन नामचीन निशानेबाजों को बस याद कर रहे थे, सोच रहे थे कि कहीं ये लिस्ट गलत तो नहीं। मतलब 126 साल के इतिहास में सिर्फ 7 मेडल और 7 ही निशानेबाज, ऐसा कैसे मुमकिन है? ये हो ही नहीं सकता। इन 7 में से सिर्फ 2 ऐसे निशानेबाज थे जिन्होंने 25 या 50 मीटर की दूरी से निशाना लगाया। बाकी के 5 वो निशानेबाज हैं जिन्होंने सिर्फ 10 मीटर की दूरी वाला निशाना लगाकर पदक जीत लिया था। मुझे लगता है कि भारतीय ओलंपिक संघ या तो भेदभाव करती है या ईमानदारी से ओलंपिक में टीम ही नहीं भेजती। अगर ऐसा न होता तो फिर यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार दुबे को ओलंपिक में जरूर भेज देती। इनके निशाने के चर्चे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट तक में हो रहे हैं। राजा दशरथ के बाद ये भारत के इकलौते ऐसे निशानेबाज जो सिर्फ आवाज सुनकर निशाना लगा देते हैं। ये वो निशानेबाज हैं जिनका निशाना रात के अंधेरे में भी कभी नहीं चूकता। और तो और, ये 10 मीटर नहीं बल्कि 15 मीटर की दूरी से भी वो निशाना लगाते हैं कि क्या मजा, जो इंच भर भी इधर से उधर हो जाए। खैर, भारतीय ओलंपिक संघ न सही पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इंस्पेक्टर दुबे को एक ट्रायल का मौका जरूर दिया है। बड़ा आसान सा ट्रायल है, दुबे जी पहले भी कर चुके हैं ये। बस रात के अंधेरे में 15 मीटर की दूरी से सिर्फ आवाज सुनकर इन्हें अपनी सरकारी पिस्टल से 2 गोली चलानी है। अगर दोनों गोली सामने वाले के दोनों पैरों में घुटनों के नीचे लग गई तो दुबे जी ट्रायल पास कर जाएंगे, और अगर गलती से चूक गए तो ओलंपिक जाने का पत्ता तो कटेगा ही, जेल भी जाना पड़ सकता है। ओलंपिक में शूटर एक खास टारगेट पर निशाना साधते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर दुबे का टारगेट ठीक इस जैसा एक इंसान होगा। इस जैसा मतलब इसी की कथकाठी का शायद कोई पुतला होगा, क्योंकि जिंदा इंसान को रात के अंधेरे में 15 मीटर की दूरी से सिर्फ आवाज सुनकर गोली चलाने वाले दुबे जी का निशाना जरा सा भी चूका तो जान जा सकती है। इस ट्रायल की तैयारी के लिए इंस्पेक्टर दुबे के पास पूरे 3 महीने का वक्त है। इन्हीं 3 महीनों में किसी भी दिन उनका ट्रायल लिया जा सकता है। बस खेल में जरा सा ट्विस्ट है, दुबे जी का ट्रायल सीबीआई लेगी। यकीन नहीं आ रहा तो ये पढ़ लीजिए, ये कहीं से कोई रत्ती उठाकर नहीं लाया, ये बाकायदा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी के ऑर्डर की कॉपी है। इस ऑर्डर में लिखा है, SHO अश्वनी कुमार दुबे का इस बात के लिए ट्रायल लिया जाए कि वो रात के अंधेरे में 15 मीटर की दूरी से 9mm की पिस्टल से सिर्फ हथियार लोड करने की आवाज सुनकर निशाना लगा सकते हैं कि नहीं। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट एक इंस्पेक्टर के निशाने का ट्रायल क्यों लेना चाहती है? भाई दुबे जी हैं तो पुलिस वाले, कौन सा इन्हें ओलंपिक में हिस्सा लेना है? थोड़ा बहुत दाएं बाएं गोली लग भी गई, निशाना चूक भी गया तो कौन सी आफत आ जाएगी? पर क्या कीजिए, जब कोई खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर तुला हो तो दूसरे क्या करें। तो बस दुबे जी से यही गलती हो गई और ये गलती एक इनकाउंटर से हुई। वही इनकाउंटर जो आजकल यूपी में एक फैशन है, जिसकी तस्वीरें हर दूसरे दिन मीडिया सोशल मीडिया में लंगड़ाती हुई नजर आ जाती है, जिसे कुछ लोगों ने हाफ इनकाउंटर तो कुछ ने ऑपरेशन लंगड़ा का नाम दे रखा है। इसी लंगड़ाती तस्वीर के चक्कर में खुद दुबे जी फंस गए। बात 9 मई 2025 की है। यूपी के श्रावस्ती इलाके के इकौना थाने को खबर मिलती है कि एक नाबालिग बच्ची के किडनैपिंग का एक आरोपी नेपाल भागने की फिराक में है। खबर मिलते ही थाने के 13 पुलिस वालों की एक टीम एक गाड़ी में बैठकर उसका पीछा करती है। रात के करीब 11 बजे थे, तब तक पुलिस ने स्वैट के भी 10 पुलिस वालों को बुला लिया, यानी अब कुल 23 पुलिस वाले थे। हमेशा की तरह एक सुनसान जगह पर वो आरोपी पुलिस के घेरे में आ गया। हमेशा की तरह पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा। हमेशा की तरह आरोपी ने पुलिस पर गोली चला दी और हमेशा की तरह पुलिस ने जवाब में आरोपी पर गोली चलाई। इस तरह इस हाफ एनकाउंटर या ऑपरेशन लंगड़ा के बाद लंगड़ाता हुआ ये आरोपी खुद पुलिस वालों के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। 23 पुलिस वालों ने मिलकर एक आरोपी को बड़ी मेहनत से पीछा कर दोनों पैरों में 2 गोली मारकर जिस मुश्किल से पकड़ा था, उसके लिए जाहिर है तारीफ और इनाम दोनों बनता था। सो उन्हें मिला भी। पूरी टीम को तब के SP घनश्याम चौरसिया ने 25,000 रुपए देने का बाकायदा कैमरे पर ही ऐलान कर दिया।
1: उसमें से एक संदिग्ध के बारे में जानकारी मिली और उसको जब तलाश किया गया उसके घर पे, तो वो घर पे नहीं मिला और अपने ई रिक्शा के साथ और असलहे के साथ नेपाल की तरफ जाने की सूचना मिली। इस संबंध में पुलिस के द्वारा राप्ती पुल के पास वहां घेराबंदी की गई और जब पुलिस ने उसको रोका तो उसने पुलिस पर फायर किया और पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया, जिसमें उसके दोनों पैर में गोली लगी है और उसको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय उसके पास से तमंचा और कार्टेज बरामद हुए और घटना में प्रयुक्त ई रिक्शा भी मिला है। इनको गिरफ्तार करके नियमानुसार जेल भेजा जा रहा है। इस समय उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और जिस टीम ने एक कार्रवाई की है एडिशनल SP के नेतृत्व में, उस टीम को 25,000 रुपए की घूस रखी है।
0: किडनैपिंग के मामले में जिस आरोपी का ये हाफ एनकाउंटर हुआ था उसका नाम अलाउद्दीन। इस एनकाउंटर के बाद उसे जेल भेज दिया गया। इसी किडनैपिंग के मामले में अलाउद्दीन को 3 अक्टूबर 2025 को निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी। अलाउद्दीन के लिए गिरफ्तारी, जेल या सजा का ये कोई पहला मौका नहीं था। 2012 में भी अलाउद्दीन पर एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप करने और फिर उसका कत्ल करने का मुकदमा चला। तब पहले निचली अदालत और फिर हाईकोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई। वो 12 साल तक जेल में रहा, लेकिन 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउद्दीन को बरी कर दिया। वो जेल से बाहर आ गया, लेकिन बाहर आने के साल भर के अंदर अंदर ही उस पर फिर से एक बच्ची की किडनैपिंग का इल्जाम लगा और इसी चर्चित एनकाउंटर के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस केस में भी अलाउद्दीन को निचली अदालत ने 3 अक्टूबर 2025 को उम्र कैद की सजा सुना दी। अलाउद्दीन ने इसी सजा को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी। उसने न सिर्फ खुद को बेकसूर बताया बल्कि ये भी कहा कि पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर के नाम पर उसे गिरफ्तार किया था। अलाउद्दीन की इसी अर्जी पर हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। चार्जशीट में लिखी कहानी और तमाम किरदारों की गवाही के बाद 13 अगस्त को एक अहम फैसला आया। पर फैसला सुनाने से पहले हाई कोर्ट ने कुछ सवाल उठाए। इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार दुबे की कोर्ट में गवाही और चार्जशीट की कहानी के हिसाब से अलाउद्दीन के नेपाल भागने की खबर मिलने पर कुल 13 पुलिस वाले पुलिस की एक ही गाड़ी में बैठकर उसका पीछा कर रहे थे। हाई कोर्ट ने सीधा सवाल पूछा कि पुलिस की एक गाड़ी में 13 लोग एक साथ बैठ ही नहीं सकते। दूसरा ये कि एक गाड़ी में 13 लोगों को बिठाना वैसे ही कानून के खिलाफ, यानी ये कहानी झूठी है।
2: जो SHO थे, इंस्पेक्टर श्रावस्ती में थे, एनकाउंटर किया, उन्होंने कहा कि पुलिस की जीप में वो, यानी इंस्पेक्टर साहब खुद, सब इंस्पेक्टर, 5 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल समेत कुल 13 लोग पुलिस की जीप में बैठ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 13 लोग एक गाड़ी के अंदर बैठ जाएं पुलिस वाले?
3: देखिए, मैं ये संज्ञान में नहीं था, आपने बताया तो मैं इसको विश्वास करके बाद अपनी बात कह रहा हूँ। 13 लोग को संभव ही नहीं बैठ पाना। 13 लोग तो केवल वो जो सवारी ढोती है, डग्गा मार गाड़ियां, वो तो बैठा लेते हैं, लेकिन पुलिस को ऐसी जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, उन्हें और गाड़ियां मंगा लेनी चाहिए, प्राइवेट गाड़ी पकड़ लेनी चाहिए। पुलिस को तो पावर है, किसी प्राइवेट गाड़ी को वो चाहे तो हस्तगत कर सकती है और सरकारी काम में ले सकती है, उसका भुगतान हो जाता है। 13 लोगों का तो मुझे लगता नहीं है, वो पूरी वो खुद ही अपने को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जवाब देते नहीं बनेगा। और उन्होंने अपने बयानों से अपने आप को ठीक मकड़ी के जाले की तरह उलझा लिया है, और इसकी जब जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी,
2: जांच के आदेश दे दिए गए।
3: हाँ, तो CBI तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी ना। CBI पर अभी भी पूरी हिंदुस्तान को बड़ा भरोसा है, जनता को बड़ा भरोसा है, खुद जुडिशरी को बड़ा भरोसा है। उनको जवाब नहीं देना पड़ेगा, सारी इंची टेप से नाप दिया जाएगा, घावों को नाप दिया जाएगा, दूरी नाप दी जाएगी, उनकी गोली, बैलिस्टिक साइंस, सारी चीजें होंगी, रक्त की जांच होगी, गाड़ी पे, जमीन पे, जहां जा गिरा, उनकी हालत खराब हो जाएगी जवाब देने में। मुझे लगता है ये पहली बार मैं ऐसा केस सुन रहा हूं कि जिसमें इंस्पेक्टर ने खुद को ही अपने बयानों से लिखापढ़ी में फंसा लिया है।
0: हाईकोर्ट ने इंस्पेक्टर दुबे की दूसरी गवाही पर तो और भी हैरानी जताई। दरअसल इंस्पेक्टर दुबे ने कहा था कि पीछा करने के बाद आरोपी एक सुनसान जगह पर घेर लिया गया। तब रात के 11 बजे थे और अंधेरा था। इस दौरान 13 पुलिस वालों की मदद के लिए 10 SWAT के लोग भी वहां पहुंच चुके थे। चेतावनी के बावजूद आरोपी ने पुलिस वालों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस दौरान उसकी गोलियां खत्म हो गई। ठीक उसी वक्त इंस्पेक्टर दुबे जी को अंधेरे में आरोपी के दोबारा पिस्टल में गोली लोड करने की आवाज सुनाई थी। बस इसी आवाज को सुनकर उन्होंने अंदाजे से जिधर से आवाज आई थी, उधर एक के बाद एक दो गोली चलाई। आरोपी नीचे गिर गया। अंधेरे में सिर्फ आवाज से अंदाजा लगाकर चलाई गई दोनों गोली आरोपी के दोनों पैरों में लगी थी। ये तस्वीर इंस्पेक्टर दुबे जी की उसी गजब की निशानेबाजी के फौरन बाद की है।
4: ये केस डायरी की कैटेगोरिकल फाइंडिंग है कि असलाह जब लोड हुआ छुटकों की ओर से, वो आवाज सुनकर फिर पुलिस ने अपने आप को घेराव किया, पेड़ और हाईवे के जो भी जिस भी चीज के पीछे छुप सकते थे छुप के, वो आवाज सुनने के बाद सिर्फ दो फायरिंग शॉट पुलिस वालों ने ली, जो कि लगभग 15 मीटर की दूरी से थे और रात का अंधेरा था, और वो दो शॉट इतने प्रेसाइज थे कि घुटने के नीचे ही एक एग्जैक्ट पोजीशन पे दोनों पैर पे लगे हैं छुटकाऊ के। और उसके बाद एक एडिशनल पुलिस फोर्स भी बुलाई गई पुलिस द्वारा कि इनको तब भी भय था कि अब इस गोली लगने के बाद भी ये नेपाल भाग सकते हैं।
2: तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि रात के अंधेरे में पुलिस आवाज सुन के गोली मार देगी?
3: नहीं, इतना सटीक निशाना बहुत सव्यसाची तो है नहीं। सव्यसाची तो मैंने सुना था कि राजा दशरथ थे जो किसी की आवाज पे तीर मार देते थे, उसी में शायद श्रवण कुमार भी मरा था। सव्यसाची नहीं है ये। अगर इन्हें ये बोलना चाहिए था कि हाँ मैंने ऐसा अनुमान में लगाया, तो अनुमान से भी चलाया तो किसी अन्य को भी गोली लग सकती थी ना, कोई और भी तो मर सकता था। सटीक इनकाउंटर होना चाहिए, किसी अन्य की जनहानि नहीं होना चाहिए, किसी का अन्य घायल भी हो सकता था। ये मुझे गले से उतरने वाली बात नहीं। कोर्ट ने बिल्कुल सही ये जांच के आदेश दिए हैं, और मैंने बहुत पहले भी कहा है कि जिस दिन एनकाउंटर इस तरह के फंसेंगे, जवाब देते नहीं बनेगा, सजा हो जाएगी लोगों को। आप बताइए कि इसमें क्या, किस तरह की रोकथाम कर दी, कौन सा अपराध इन्होंने रोक दिया? कोर्ट ने सही संज्ञान लिया है, और इसकी बहुत गहन जांच विश्लेषण और साथ में फॉरेंसिक टीम को बड़े निष्पक्ष तरीके से किसी न्यायाधीश के अधीन काम कराना चाहिए, जिससे पुलिस को भी सबक सिखाना है। गुंडों को सबक सिखाना है तो पुलिस को भी सबक सिखाना है। पुलिस न्यायालय नहीं हो सकती, उन्होंने न्यायालय होने की भूमिका अदा की है तो वो सजा पाएंगे, और न्यायालय उन्हें कतई छोड़ेगा नहीं। उन्हें पुलिसिंग करना चाहिए, और 100% पुलिसिंग करना चाहिए। पुलिसिंग के तहत किसी तरह का कोई इनकाउंटर हो, कोई भी काम होगा, वो स्तुत्य है, अन्यथा वो अपराध की श्रेणी में आता है।
0: अब हाईकोर्ट भी चकरा चुकी थी कि यूपी पुलिस में ऐसे ऐसे पुलिस वाले कहां से आ गए जो सिर्फ आवाज पर निशाना लगा सकते हैं। यकीन हो नहीं रहा था, इसीलिए हाईकोर्ट ने कहा चलो कोई बात नहीं, दुबे जी के इसी हुनर का एक बार और ट्रायल ले लेते हैं। हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि न सिर्फ अलाउद्दीन इनकाउंटर की CBI जांच हो, बल्कि इंस्पेक्टर दुबे जी के निशाने का भी टेस्ट ले, और 3 महीने के अंदर CBI अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे।
2: कोर्ट ने जो SHO था जिसने दावा किया कि रात के अंधेरे में गोली चलाई 15 मीटर की दूरी पर एग्जैक्ट जगह पर, उनका भी कहा जाए कि फायरिंग टेस्ट लेने की बात कही गई।
4: बिल्कुल, क्योंकि ये एक 15 मीटर कोर्ट को ये बहुत ही तथ्य ये बहुत ही मानने योग्य नहीं लगा कि 15 मीटर की दूरी से आप एक आवाज़ की सुन के आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहाँ पे एक आदमी खड़ा है। आप सिर्फ 15 मीटर की लगभग दूरी से दो शॉट लेते हैं और दो दो शॉट एकदम प्रेसिजन से घुटने के नीचे एकदम एग्जैक्ट लगते हैं। तो कोर्ट को रात के अंधेरे में, क्योंकि भाई 15 मीटर के दूर ऑब्जेक्ट इतना क्लैरिटी नहीं दिखती है, तो कोर्ट को लगा कि ये तथ्य मानना एकदम वो नहीं है। तो CBI इंक्वायरी जब ट्रांसफ़र करी कोर्ट ने, तो इनका भी एक टेस्ट लेने के लिए बोला गया है कि इनका भी 15 मीटर की दूरी से रात के अंधेरे में सेम सर्कमस्टांसेस में इनका भी एक फायरिंग टेस्ट लिया जाए, तो वो भी एक आदेश किया गया है इसके साथ कोर्ट का।
2: श्रावस्ती के एकौना थाने में छुटकाऊ उर्फ अलाउद्दीन के इस हाफ एनकाउंटर में पुलिस की थ्योरी अपने ही जाल में फंसती चली गई, और यही वजह है कि CBI जांच के साथ साथ अब उस इंस्पेक्टर की भी तीरंदाजी की निशानेबाजी की जांच होगी जिसने दावा किया था कि उसने रात के अंधेरे में लगभग 11 बजे 15 मीटर की दूरी से छुटकाऊ उर्फ अलाउद्दीन को उसके असलहा लोड करने की आवाज़ से ही गोली चलाई और दो गोली ऐसी चलाई कि छुटकाऊ उर्फ अलाउद्दीन के घुटने में जा लगी। ये अलग बात है कि पुलिस की इस थ्योरी में उसकी गाड़ी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं जिसमें दावा किया गया कि 13 पुलिसकर्मी एक ही गाड़ी में सवार होकर घटनास्थल की तरफ रवाना हुए थे। यही वजह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में CBI जांच के आदेश तो दिए ही, साथ ही उस इंस्पेक्टर की निशानेबाजी के भी आदेश दिए हैं कि CBI जांच कर पता करें कि ये कितने बड़े निशानेबाज हैं कि रात के अंधेरे में सिर्फ आवाज सुनकर गोली चला लेते हैं।
0: हालांकि जब बात रात के अंधेरे में सिर्फ आवाज सुनकर निशाना लगाने की आई तो इंस्पेक्टर दुबे को लग गया कि वो फंसने वाले हैं। फौरन कोर्ट में बोल पड़े, हुजूर असल में उस रात इतना भी अंधेरा नहीं था बल्कि चांदनी रात थी। कोर्ट ने इंस्पेक्टर दुबे जी की बात पर यकीन ही नहीं किया, उल्टे कोर्ट ने तो ये भी टिप्पणी की, कैसा लगता है कि अलाउद्दीन को जब सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया तो गुस्से में पुलिस वालों ने उसे फंसाने की कोशिश की। इस एनकाउंटर को लेकर लगता है इंस्पेक्टर दुबे की टीम शुरू से मजाकिया मूड में थी, न एनकाउंटर को सीरियस लिया, न एनकाउंटर के बाद की कागजी कार्रवाई को, न चार्जशीट को, न खुद अपने बयान को। इनका एक और कमाल आपको बताता हूँ, आवाज पर अंधेरे में निशाना लगाने वाले इंस्पेक्टर दुबे जी ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने आरोपी पर अपनी सरकारी 9mm पिस्टल से दोनों गोलियां चलाई थी, लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो पता चला कि दोनों पैरों में दोनों गोली की जो एंट्री पॉइंट थी, यानी जहां से पैर में गोली अंदर घुसी, वहां 5mm का घाव था। अब सवाल ये है कि जब गोली 9mm पिस्टल से चली तो घाव 9mm की बजाय 5mm की कैसे हो गई?
4: अब इसके उपरांत जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है छुटकाऊ का गोली लगने के बाद, उसमें जो वूंड का साइज आता है वो है 0.5 सेंटीमीटर, और जो गोली SHO के माध्यम से पता, केस डायरी के माध्यम से पता चली है कि चलाई गई है वो है 0.9mm की। तो गोली जब 9mm की है और एंट्री वूंड है 0.5mm का, तो ये बहुत ही इम्प्रॉबेबल चीज़ें हैं जो कोर्ट को लगी है, एक बहुत ही कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई गई है पुलिस के द्वारा और जो कि मानने के योग्य नहीं है, और ये फेक एनकाउंटर बनाया गया है कि छुटकाऊ को अंदर हिरासत में लिया जाए।
0: वो तो शुक्र है कि अभी सिर्फ इंस्पेक्टर दुबे जी की ही शूटिंग का ट्रायल होना है। अगर ये ट्रायल पूरे UP भर में पुलिस वालों के होने लगे तो अंदाजा लगाइए क्या होगा। वैसे एक चीज तो माननी पड़ेगी, चाहे गोली जैसे भी मार रहे कम से कम अब मार तो रहे, वरना यही यूपी पुलिस कभी मुंह से ही ठाए ठाए कर बदमाशों को चकमा देने की कोशिश किया करती थी। ये वीडियो याद है ना आपको,
5: इधर जाए इधर आओ मारो, इधर इधर आओ, इधर आओ मारो, इधर इधर आओ,
0: वैसे इंस्पेक्टर दुबे के केस के अलावा एक केस मेरी नजर में भी है जिसकी अगर जांच हो गई तो सचमुच उनके आगे इंस्पेक्टर दुबे जी फिर भी बेचारे नजर आएंगे। 5 साल पुराना केस है ये, लेकिन बेस्ट केस स्टडी है। ये केस स्टडी वैसे गाजियाबाद की है। 12 नवंबर 2021 को इसी वारदात में शायद इसे आप देख भी चुके हैं, लिहाजा सिर्फ झलकियां देख लीजिए।

0: ऐसी तस्वीरें फिर कभी शायद ही देखने को मिले। और जहां तक पहले की बात है तो शर्तिया, इससे पहले आपने ऐसी तस्वीर देखी ही नहीं होगी। कमाल की तस्वीरें हैं ये, और कमाल की अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस, कसम से गजब की निशानची है अपनी यूपी पुलिस। हैरानी के साथ साथ अफसोस भी हो रहा है कि इतने जबरदस्त निशानेबाज ओलंपिक में क्यों नहीं भेजे गए, दो चार मेडल तो झोली में आ ही जाते। इन तस्वीरों से साफ जाहिर है कि यूपी पुलिस का हर शॉट 10 में से 10 वाला था। क्या मजाल जो एक भी गोली या एक भी निशाना रत्ती भर भी दाएं बाएं हो जाए। चलिए अब जरा इन तस्वीरों से खेलते हैं। पहली तस्वीर 21 साल के इंतजार की है। इंतजार के दाएं पैर में घुटने के नीचे ये जो पट्टी बंधी है ये गोली का घाव है। इंतजार के दाहिने पैर में ठीक घुटने के नीचे पुलिस ने गोली मारी है। ये बॉलर है जी नहीं, गेंदबाज वाला बॉलर नहीं, इसका नाम ही बॉलर है। बॉलर ने भी दाहिने पैर में घुटने के नीचे ही पुलिस की गोली खाई है। यह यूं कहिए कि पुलिस ने बॉलर को भी दाहिने पैर में ठीक उसी जगह गोली मारी जहां इंतजार को मारी। ये 33 साल का मुस्तकीम है, टांग पर गोली इसने भी खाई, मगर गोली खाने की क्या जगह चुनी है। ठीक इंतजार और बॉलर की तरह मुस्तकीम के भी दाहिने टांग पर वही गोली मारी गई। ये सलमान है, भाईजान वाला सलमान खान नहीं, यूपी का आम सलमान। पैर इसका भी घायल है, गोली इसे भी लगी है, और वो भी उसी दाहिने पैर में और उसी जगह पर जहां इंतजार, बॉलर और मुस्तकीम ने गोली खाई। किस्मत कहिए, इत्तेफाक, सितम या साजिश, 19 साल के आसिफ की टांग की कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है। वही दाहिना पैर, वही घुटने के ऐन नीचे गोली और वही पट्टी। 5 टांगों के बाद थोड़ी सी तस्वीर बदलती है, टांगे अब भी रहती है मगर अब ये दाहिने से बाईं हो जाती है, मगर जगह टस से मस नहीं हिलती। 20 साल के मोनू को भी गोली लगी है मगर बाईं टांग में, लेकिन जगह वही है घुटने के ऐन नीचे। ये 7वीं टांग 28 साल के नाजिम की है, मोनू की तरह नाजिम को भी बाएं पैर में गोली मारी गई, लेकिन जगह से छेड़छाड़ नहीं की पुलिस ने, जगह वही है घुटने के नीचे। तो तस्वीर में खेल और खेल के पीछे की तस्वीर तो आपने देख ली, अब पूरा खेल भी देख लीजिए। टांग टांग और इंच इंच नाप कर इन सातों को जिस तरह गोली मारी गई उससे साफ है कि यूपी पुलिस किसी भी कीमत पर एक भी निशाना अपने निशाने से चूकना नहीं चाहती थी। शायद निशाना लेते वक्त यूपी पुलिस भूल गई थी कि वो ओलंपिक की शूटिंग में हिस्सा नहीं ले रही बल्कि इनकाउंटर में हिस्सा ले रही। अब ओलंपिक में तो निशाना लगाने के लिए एक जगह फिक्स होती है, पर इनकाउंटर खड़े खड़े या सामने वाले को खड़ा कर नहीं किया जाता। यहाँ थोड़ा एक्शन चाहिए होता है, हिलना डुलना पड़ता है, भागना पकड़ना होता है, आड़े तिरछे गोली चलानी पड़ती है। पर यहाँ तो इन 7 टांगों को देख कर अंधा भी बता दे कि इन्हें गोली कैसे मारी गई होगी। वैसे चलते चलते आखिर में इंस्पेक्टर दुबे जी पर फिर से आते हैं। 3 महीने में कभी भी CBI उनके निशाने का ट्रायल ले सकती है, तो अगर रात के अंधेरे में आप में से किसी को इंस्पेक्टर दुबे शूटिंग की प्रैक्टिस करते नजर आ जाए तो ज्यादा हैरान मत होइएगा। संतोष कुमार शर्मा, लखनऊ, आज तक। तो गजब यूपी पुलिस के गजब निशानेबाज इंस्पेक्टर और पुलिस वालों पर यह थी वारदात की खास पेशकश। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
2: सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: राहुल गांधी के धरने के बाद पैलेट गन केस में अज्ञात के विरुद्ध दिल्ली के संसद मार्ग थाने में FIR दर्ज। राहुल का कटाक्ष, अमित शाह और गृह सचिव ने दी अनुमति, बोले न्याय की दिशा में ये पहला कदम। राहुल के खिलाफ उतरी बीजेपी की सेना, नड्डा ने कहा वंदे मातरम पर घिरने के बाद कांग्रेस का धरना। स्मृति ईरानी बोली विरोध के नाम पर स्वांग। सीएम योगी ने अखिलेश को फिर घेरा, कहा इनके पीडीए का पी पिछड़ा से पंडित हो गया और एक दिन कर देंगे पाकिस्तान। अखिलेश का पोस्ट, एक रंगी क्या जाने पीडीए के बहुरंग। झारखंड में रांची समेत कई शहरों में भिड़े छात्र और जेएमएम कार्यकर्ता, सीएम सोरेन का पुतला फूंकने पर मचा बवाल। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म फोरम का प्रदर्शन। आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन, सवर्ण समाज के लोग और युवा शामिल, जाति के बदले आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसे।
0: विजय वडेट्टीवार का आरोप, राहुल से डरती है महाराष्ट्र सरकार, छात्र कार्यक्रम के लिए 30 शर्तें लगाई, धारा 144 लगा दी। राजनीति में आने के सवाल पर इंडिया टुडे से बोले महाराष्ट्र FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे, मैं काम में अच्छा हूं तो उसी को जारी रखूंगा। बॉम्बे हाईकोर्ट की 3 कैंटीन में से 2 बिना लाइसेंस के मिली, FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे बोले नियम सबके लिए समान। महाराष्ट्र में फूड सेफ्टी पर FDA की बड़ी कार्रवाई, मुंबई के बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब मैकडोनल्ड समेत 13 प्रतिष्ठानों की लाइसेंस निलंबित। रेडियो क्लब की किचन में जिंदा मक्खी कॉकरोच मिले, मैकडोनल्ड्स में कमियां मिली, 89 प्रतिष्ठानों की जांच में 71 को सुधार नोटिस। कल राहुल का महिलाओं से संवाद, समाज की नहीं अपनी आवाज बताई, पुणे में महिला विशेष छात्रों की गूंज कार्यक्रम। छत्रपति संभाजी नगर में मोबाइल को लेकर घर में विवाद, 18 वर्षीय कुणाल ने पहाड़ी से कूदकर जान दी, 3 घंटे समझाते रहे माता पिता, तीनों की मौत। कुणाल पहाड़ी पर चढ़े बच्चे को बचाने, उसके पिता की आखिरी कोशिश नाकाम, पिता का हाथ पकड़ती दोनों गिरे, पति बेटे को गिरता देख मां ने भी गवाई जान। मुंबई के गोरेगांव आरे कॉलोनी में दर्दनाक हादसा, तबेले की पानी की टंकी में डूबने से 2 स्कूली छात्रों की मौत। नागपुर में लव ट्रायंगल बनी हत्या की वजह, हत्या का वीडियो सामने आया, 2 गिरफ्तार। एयरटेल ने कई सस्ते मोबाइल रिचार्ज प्लान बंद करे, नए प्लान 5-16% तक महंगे। ब्रोकरेज हाउसेस से जल्द ही टेलीकॉम टैरिफ 10-15% बढ़ने की आशंका। CLSA का दावा, लोगों की इनकम में खर्चों के मुकाबले कम बढ़ोतरी, बजट घटाकर कर्ज लेकर चल रहा है परिवारों का खर्च। 2 महीने में चीनी में 40% महंगाई, सरकार ने कच्ची चीनी का शुल्क मुक्त आयात स्वीकार किया, 10 अक्टूबर तक 10 लाख टन इंपोर्ट चीनी होगी। जुलाई में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 5% घटकर 1,20,00,000 रही, लगभग 67.5% की ऑल टाइम हिस्सेदारी के साथ इंडिगो टॉप पर, स्पाइस जेट सबसे पीछे। अमेरिकी बॉन्ड बाजार के निर्णय से बिटकॉइन 24 घंटे में 11% उछला, $72,000 के पार, बाजार पूंजीकरण में करीब $250 अरब की बढ़त। सलमान खान संजय दत्त की अंतर्राष्ट्रीय एक्शन फिल्म 7 डॉग्स भारत में रिलीज, कई अंतर्राष्ट्रीय सितारे साथ। फिल्म इंडियसिस आउट ऑफ द फर्दर सिनेमाघरों में रिलीज, फ्रेंचाइजी की 6 फिल्म। सिनेमाघरों के बाद OTT पर दस्तक दे रही है वेलकम टू द जंगल, जियो हॉटस्टार पर फिल्म रिलीज। जैकी श्रॉफ की फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो भी OTT पर, आज से G5 पर होगी स्ट्रीम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सुपरस्टार विजय की सबसे चर्चित फिल्म जन नायकन ओटीटी पर स्ट्रीमिंग को तैयार, आज से G5 पर उपलब्ध। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। एक तरफ राहुल गांधी जेन जी पर चले पैलेट गन पर फायर हैं, तो दूसरी तरफ वो जेन जी को लुभाने के लिए छात्रों की गूंज अभियान चला रहे हैं। देश भर में कांग्रेस 800 शहरों में छात्रों की गूंज के नाम से कार्यक्रम चलाने जा रही है, और अब कल यानी कि 22 अगस्त को पुणे में राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया।
2: जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में जेन जी का जोश और आक्रोश पूरे देश ने देखा है, और जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को जेन जी में संजीवनी नजर आने लगी। अब कांग्रेस को लगता है कि अगले चुनाव में जेन जी का साथ लेकर वो बाजी पलट सकती है। ऐसे में जेन जी को लुभाने के लिए कांग्रेस 800 शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चला रही है।
3: हिंदुस्तान के पास दुनिया में सबसे बड़ा यूथ का पॉपुलेशन है, 40 करोड़ युवा, आप जैसे युवा, एनर्जेटिक युवा इस देश में रहते हैं, ये इस देश की स्ट्रेंथ है। चाइना की बात होती है, अमेरिका की बात होती है, रशिया की बात होती है, इंडिया के यूथ के सामने, इंडिया के यूथ पोटेंशियल के सामने ये सब लोग कुछ नहीं है। 21वीं सदी में एक और चीज हुई है, 21वीं सदी में अगर देश प्रगति करता है तो दो चीजों के बल पे करता है, यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो।
2: और शनिवार यानी 22 अगस्त को कांग्रेस महाराष्ट्र के पुणे शहर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने जा रही है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये कांग्रेसी संस्थानों के बच्चों से राहुल का मोनोलॉग है।
4: छात्रों की गूंज है या राहुल गांधी अपनी जमीन तलाश रहे, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझे जानकारी है, अगर वो एक ओपन इस प्रकार का इवेंट करते तो शायद ये छात्रों से संवाद होता। अभी पूना और पूना के आसपास जितने कांग्रेसियों की संस्थाएं हैं, शिक्षा संस्थाएं, उन संस्थाओं की ही लड़कियों को रजिस्टर करना, इस प्रकार का आदेश दिया गया है।
5: मुझे आश्चर्य लग रहा है कि पूना की पुलिस राहुल जी के बारे में एक्टिव हो चुकी है, लेकिन जब पूना में लड़कियों की छेड़छाड़ होती है, कोयता गैंग चलती है, खून होते हैं, बलात्कार होते हैं, तब पूना की पुलिस इतनी एक्टिव नहीं होती। आपको पता होगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का रिपोर्ट है कि इस देश में पूना 5वें नंबर पे है क्राइम पे, और महाराष्ट्र में 1 नंबर पे। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये अमित भाई शाह जी की होम मिनिस्ट्री का रिपोर्ट है। तो मुझे आश्चर्य लग रहा है कि जो कोयता गैंग हो, बच्चों कोई सुरक्षित नहीं है पूना में, लेकिन राहुल जी संविधान की चौकट में सिर्फ बच्चों से बात करने आ रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि पूना की पुलिस बड़ी एक्टिव हो गई है।
2: इतना ही नहीं, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। अमित साटम ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी इस कार्यक्रम में 25,000 रुपए देकर एंटी नेशनल लोगों को शामिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लगता है कि पैसे देकर युवाओं को अपने साथ जोड़ा जा सकता है।
6: एंटी इंडिया गैंग से जो उन्होंने पैसे फंड प्राप्त किए है, उस फंड से लोगों को 25,000 रुपए देकर छात्रों की गूंज इस कार्यक्रम में लोगों को बुलाने की वो कोशिश कर रहे हैं। पर राहुल गांधी को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकार से एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ में हाथ मिलाकर हिंदुस्तान में अगर अनार्की क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो इस देश की जेन जी और जेन नेक्स्ट आपको ऐसा थप्पड़ लगाएगी कि उसकी गूंज आपको भविष्य में सुनाई देगी।
7: राहुल जी आ रहे हैं, वो खुला सभी को निमंत्रण है, महाराष्ट्र के सभी युवतियों को, खास करके युवतियों से वो मिलना चाहते हैं, जो युवती छात्र हैं हमारी उनसे हमारी बेटियों से वो मिलना चाहते हैं, उनकी क्या समस्या है, उनकी क्या सोच है देश के बारे में, राज्य के बारे में, उनकी बातों को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और उनकी आवाज देश में उठाना चाहते हैं, उनकी आवाज बनना चाहते हैं। तो छात्रों का गुज का कार्यक्रम राहुल जी और कांग्रेस पार्टी जो कर रही है उस पूरे देश के सभी लोगों को ले कर रही है।
2: पुणे में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है और कार्यक्रम को पुलिस की मंजूरी मिल गई है। आयोजकों को 30 शर्तों का पालन करना होगा जिनमें आपत्तिजनक तस्वीरों, पोस्टरों और बैनरों पर रोक शामिल है।
8: मैं भी उसी ग्राउंड पर खड़ा हूँ जहाँ कांग्रेस की तरफ से ये सब जोर शोर से तैयारियां शुरू है। शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और बराबरी का मुद्दा होगा, इसी पर ये छात्रों की गूंज की जाएगी। सीजेपी के आंदोलन से पहले भी राहुल गांधी ने कोटा में एक प्रोग्राम लिया था, वहीं पे भी इंटरेक्शन हुआ था और उसके बाद अब ये पुणे में प्रोग्राम होने जा रहा है जिसकी तैयारियां इस ग्राउंड पर अभी शुरू हो चुकी है। लेकिन उससे पहले ही पुणे पुलिस ने राहुल गांधी को और उनके यहाँ के जो लोकल ऑर्गेनाइजर्स है कांग्रेस के कार्यकर्ता, उन्हें 30 मुद्दों की एक एडवाइजरी दी है और ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस दी है कि उसी पर अगर ये प्रोग्राम नहीं होता है, उस पर कुछ भी गड़बड़ियां होती है तो पुणे पुलिस इस पूरे मामले में सीधा

0: रहे हैं कि सत्ता पक्ष जो है वो डर रहा है, राहुल गांधी आ रहे हैं, इसलिए वो पुलिस को आगे करके इस तरीके की अटकलें लगा रहे हैं और इस तरीके की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप 30 टर्म्स एंड कंडीशन आप सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। उसमें से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए, वो बरकरार रखने के लिए जो पुलिस को करना है वो तो पुलिस कर रही है, लेकिन उसी के साथ पुलिस का ये भी कहना है कि इस तरीके की कोई बयानबाजी ना हो, इस तरीके के कोई बैनर्स ना लगे और ना ही कोई स्लोगन्स लगाए और कोई इस तरीके के वीडियोस ना रिकॉर्ड करे जिससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है।
1: राहुल गांधी छात्रों की गूंज से जेन जी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मोदी सरकार ने जेन जी से जोड़ने के लिए नया प्लान बनाया है। मोदी सरकार वन डे वन यूनिवर्सिटी अभियान की योजना बना रही है, जिसके तहत रोज एक यूनिवर्सिटी में एक केंद्रीय मंत्री जाकर छात्रों से अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे, वो छात्रों की राय सुनेंगे और खासकर युवाओं और छात्रों के लिए चल रही सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। आज तक ब्यूरो।
2: एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी के पुणे दौरे से पहले COET इंजीनियरिंग कॉलेज में हंगामा हो गया है। ABVP और NCI के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने NCI की कुछ छात्राओं को कॉलेज के अंदर रोक कर रखा था। यह खबर मिलते ही कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां इकट्ठा होने लगे। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार भी मौके पर पहुंचे। NCI ABVP कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में ले लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खूब हंगामा हुआ। राहुल गांधी के दौरे से पहले यह हंगामा हुआ है। कल बड़ा कार्यक्रम होना है, लेकिन उससे पहले ही हंगामा। ABVP और NCI के कार्यकर्ता भिड़े, हिरासत में ले लिया गया है पुलिस ने। आगे बढ़ते हैं, NCP के अध्यक्ष सुनीत्रा पवार की ताजपोशी को उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद सिंह ने एक बार फिर से चुनौती दे दी है। सच्चिदानंद सिंह ने सुनीत्रा पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल को भी लीगल नोटिस का रिमाइंडर भेजा। उनका आरोप है कि 26 फरवरी को हुआ पार्टी अध्यक्ष का चुनाव पूरी तरह से गैर कानूनी और पार्टी के नियमों के खिलाफ था। इससे सुनीत्रा पवार की पार्टी NCP की कलह सार्वजनिक हो गई है। इस विवाद में सुप्रिया सुले ने कहा कि ये उन लोगों का अंदरूनी मामला है, लेकिन असली NCP के अध्यक्ष तो शरद पवार ही हैं।

0: अजित पवार के निधन के बाद जब से उनकी पत्नी और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने एनसीपी की कमान संभाली है, उनकी पार्टी में अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है। अब ये बात जब जाहिर हो चुकी है कि सुनेत्रा पवार की पार्टी के पुराने नेताओं से नहीं बन रही, इसीलिए उनके बीच झगड़े से अंदरूनी दरार और बढ़ गई है। दरअसल एनसीपी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह ने इस साल की शुरुआत में हुए संगठन के चुनाव को चुनौती देते हुए वरिष्ठ नेताओं को एक आखिरी रिमाइंडर नोटिस भेजा है। ये लीगल नोटिस सुनेत्रा पवार, प्रफुल्ल पटेल और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव को भेजा गया है। सच्चिदानंद सिंह का दावा है कि 26 फरवरी को हुआ एनसीपी अध्यक्ष पद का चुनाव पूरी तरह से गैर कानूनी था और पार्टी के कानूनी नियमों के खिलाफ था, जिसमें सुनेत्रा पवार को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। उनका आरोप है कि उन्हें और कई पुराने नेताओं को नॉमिनेशन फाइल करने, चुनाव लड़ने या चुनाव प्रक्रिया में वोट देने का मौका तक नहीं दिया गया था।
1: एनसीपी अजीत पवार पार्टी में अंदरूनी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह ने फिर एक बार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को एक नोटिस जारी किया है और ये फाइनल रिमाइंडर बताया जा रहा है। इससे पहले भी जुलाई में इसी तरह का एक नोटिस उन्होंने भेजा था, जिसमें उन्होंने 26 फरवरी को जब एनसीपी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत सभी महत्वपूर्ण पदों का चुनाव हुआ था, उस चुनाव को पूरी तरह से नियमों के अधीन नहीं किया गया है, गैर कानूनी तरीके से किया गया है, इस तरीके के आरोप लगाए हुए हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार सच्चिदानंद सिंह के पीछे ये चाल कौन खेल रहा है, क्योंकि एक तरफ सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार और दूसरी तरफ पार्टी के आला नेता प्रफुल्ल पटेल और पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश के मुखिया सुनील

0: करें। इन दोनों में भी काफी घमासान देखने को मिल रहा है।
1: जुलाई में भेजे गए अपने शुरुआती लीगल नोटिस का कोई जवाब नहीं मिलने पर सच्चिदानंद सिंह ने अब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को विवादित चुनाव नतीजों को कैंसिल करने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी गई सभी ऑफिशियल फाइलिंग वापस लेने और नए तरीके से पारदर्शी चुनाव कराने के लिए आखिरी 15 दिन की डेडलाइन दी। इस विवाद में एनसीपी शरद गुट की सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा कि ये विरोधी गुट का अंदरूनी मामला है। सुले ने कहा कि उनकी पार्टी एनसीपी के खिलाफ राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ती रहेगी। सुले ने दावा किया कि पूरा देश जानता है कि असली एनसीपी के अध्यक्ष तो शरद पवार ही हैं।
2: ये एनसीपी अजीत पवार गट का अंतर्गत मामला है। हमारी तो उनके खिलाफ पूरी ताकत से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है और हमारी मांग है कि जो फाउंडर मेंबर और प्रेसिडेंट है जी शरद पवार जी है, पार्टी उनको ही मिलनी चाहिए। और अगर पार्टी का आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन में हुई है वो गलत हुई है और हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी तक सीमित है कि यह पार्टी आदरणीय पवार साहब की कल थी, आज है और कल भी रहेगी और इसीलिए हम लड़ रहे हैं। और उसके बाद पवार साहब को पार्टी मिलने के बाद उनको क्या करना है वो और उनकी पूरी जो कोर टीम है वो तय करे। लेकिन ये लड़ाई इसलिए मायने रखती है कि जिस गलत तरीके से इलेक्शन कमीशन ने शरद पवार जी जो फाउंडर मेंबर भी है और फाउंडर प्रेसिडेंट भी है, गलत तरीके से वो संविधान की धज्जिया उड़ा के उनसे पार्टी ले ली उन्होंने, वो गलत है। और आज हमारे साथ हुआ है, कल आपके साथ हो सकता है। तो ये लड़ाई सिर्फ खुद के लिए या पवार साहब के लिए नहीं है, इस देश का जो सत्य है और संविधान के लिए।
3: अब खबर संभाजीनगर की, जहां लाइव सुसाइड की तस्वीरें सामने आई। कैमरे के सामने एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। दावा किया जा रहा है कि 18 वर्ष का कुणाल आईफोन की मांग को लेकर आत्महत्या करने पहुंच गया, जिसके बाद पहले वो और उसके पिता पहाड़ी से नीचे गिरे और पीछे से मां ने भी पहाड़ी से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। देखते ही देखते एक आईफोन के कारण हंसता खेलता पूरा परिवार खत्म हो गया। इस आत्महत्या ने समाज में एक नई बहस छेड़ दी है।
1: संभाजीनगर में लाइव सुसाइड, बेटे को बचाने में गिरा पिता, पति बेटे के गिरने के बाद मां ने भी लगाई छलांग। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के संभाजीनगर की है, जहां से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। किसी बात से नाराज 18 साल का कुणाल चांदवड़े सुसाइड करने इस पहाड़ी पर पहुंचा, जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। गांव वाले पहुंच गए और लड़के को समझाते रहे, लड़का मानने को तैयार नहीं था। करीब आने पर वो कूदने की धमकी दे रहा था। गांव वालों ने लड़के की खबर परिवार को दी। मम्मी पापा लड़के को बचाने भागते हुए पहुंचे। देखिए किस तरह माता पिता बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, गांव वाले भी बच्चे को समझा रहे हैं। करीब 3 घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। कुणाल को समझाते समझाते माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। नजदीक के गांव के सरपंच ने भी बच्चे को समझाने के लिए आईफोन देने का लालच दिया, लेकिन कुणाल को सुनने के मूड में नहीं था। उसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच जाती है। मामले की गंभीरता को समझते हुए दमकल कर्मियों ने लड़के को बचाने के लिए पहाड़ की तलहटी में बड़ा सुरक्षा जाल बिछाया था, लेकिन पहाड़ की चोटी पर खड़ा लड़का लगातार अपनी दिशा बदल रहा था। इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। अब देखिए, लड़का चट्टान के कोने में खड़ा है। माता पिता तेजी से उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही पिता करीब पहुंचता है, पिता और बेटे का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों ही चट्टान से गिर जाते हैं। पति और बेटे को गिरता देख माँ भी पहाड़ी से छलांग लगा देती है और चंद सेकेंड में पूरा परिवार खत्म हो जाता है।
4: फिलहाल मैं छत्रपति संभाजी नगर के 30 गांव में हूं और 30 गांव में ये तकरीबन जो पहाड़ दिख रहा है, जिसकी हाइट 200 से 300 फीट के आसपास है। आज सुबह देवले में रहने वाले एक जो 18 वर्षीय युवक था, वो गुस्से से घर से निकला और इस पहाड़ के किनारे पर आकर ठहर गया और सुसाइड करने का प्रयत्न किया, जिसके बाद जो गाँव के लोग थे वो इस पहाड़ पर जमा हो गए। उन्होंने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी।
1: गांव वाले भी हैरान हैं, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने पूरे परिवार को खत्म होते देखा।
5: परंतु मुलगा ऐकण्याच्या स्थितीत नव्हता. तो वारंवार जागा बदलत होता आणि आईची संवाद साधत होता. आईने सुद्धा भरपूर त्याला विनंती केली की बाळा असं नको तसं नको, पण त्यांनी काही ऐकण्याच्या तो स्थितीत नव्हता, डिप्रेशनमध्ये गेलेला होता. आईने विनंती केली, जवळपास 3 तास आम्ही त्याची विनंती करत होतो.
3: 26/11 यानी मुंबई हमले मामले में 6 फरार आतंकवादियों के लिए प्रोक्लेमेशन नोटिस जारी किया गया और इस केस में सरकारी वकील उज्जवल निकम ने स्पेशल कोर्ट को इन 6 फरार आतंकवादियों के बारे में बताया जिनके प्रोक्लेमेशन नोटिस गृह मंत्रालय को भेजे गए. इनमें पाकिस्तान में छिपे लश्कर के तैयबा का चीफ हाफिज सईद, जकीर रहमान लखवी, साजिद मीर, अबू अलकामा, आसम उर्फ अबू कहाफा, मेजर अब्दुल रहमान पाशा शामिल हैं. निकम ने गृह मंत्रालय से इंटरपोल को नोटिस भेजने के लिए कहा. कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन नोटिस पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 17 सितंबर रखी. निकम ने कहा पाकिस्तान इन आतंकवादियों के वहां छिपे होने से इनकार करता रहा है.
6: भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा सख्त कदम उठाया था जो हमारे देश के गृहमंत्री अमित जी शाह, इन्होंने ऐसा कुछ बदलाव लाया जिसके तहत आज धारा 356 के मुताबिक हम जो भगड़े आरोपी पाकिस्तान में छुपे हुए हैं उनके खिलाफ इन अब्सेंशिया सबूत डालने के कोर्ट को हमने विनती की थी. कोर्ट ने हमारी विनती अनुसार उनके खिलाफ प्रोक्लेमेशन वारंट इश्यू किया है और हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एक पत्र भी लिखा है. मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती ने हमें चिट्ठी लिखी थी और इसके बारे में हम तुरंत उसका फॉलोअप कर रहे हैं और तुरंत हमें आशा है कि अभी तारीख जो मिली है 17 सितंबर को, आज तक जो हमने प्रोक्लेमेशन ऑर्डर का जो यहां मुंबई के न्यायालय की बिल्डिंग के यहां हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट और मुंबई स्मॉल कॉज कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट, यहां जाहिरनामा हमने पब्लिश कर दिया है.
7: 26/11 के वो 6 आरोपी जो कि पाकिस्तान में है, आतंकवादी है, उनके खिलाफ भी अब ट्रायल जो है वो शुरू होने जा रहा है जिसकी प्रक्रिया स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम ने स्पेशल कोर्ट में कर दी है. एमएचए के थ्रू इंटरपोल को ये प्रोक्लेमेशन नोटिसेस भेजे जाएंगे. अगर ये फरार आरोपी कोर्ट के सामने हाजिर नहीं होते हैं तब भी जल्द ही 90 दिनों में 26/11 का इन आतंकवादियों को रिलेटेड जो केस है वो शुरू होने जा रहा है. मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक.
3: दादा दादी नाना नानी का फैशन शो, जाइएगा कहीं नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद.
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: नागपुर में सीनियर सिटीजन्स का अनोखा फैशन शो हुआ, जहां 65 से 80 वर्ष की उम्र के प्रतिभागियों ने रैंप पर पूरे आत्मविश्वास के साथ वॉक की। साई सभागृह में सेकेंड इनिंग्स फैशन शो में किसी ने साड़ी तो किसी ने रेट्रो मॉडर्न अंदाज में अपना स्टाइल दिखाया। तालियों के बीच रैंप वॉक का उद्देश्य ये संदेश देना था कि स्टाइल, आत्मविश्वास और जिंदगी जीने का जज्बा उम्र का मोहताज बिल्कुल नहीं होता।

0: मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: सुपरसीड ये मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के आंदोलन करने की घोषणा करते हैं, मन बनाते हैं। लेकिन झारखंड की जनता अब उतना बेवकूफ नहीं है। झारखंड की जनता जानती है, इस देश की जनता जानती है, देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति है, वो गरीबी को जानते हैं, गरीबी की पीड़ा को जानते हैं, हर वो काम करते हैं जो गरीब के लिए भला हो।
1: मुझे लगता है कि शायद इसी का अंदेशा होगा जिसकी वजह से उस समय विलंब हो रहा था डिसीजन लेने में, और अब डिसीजन हुआ। तो ये भी बात सही है कि जिनकी नौकरी लग गई, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले से कुछ नौकरियां वो सरकारी कर रहे थे, कोई रेलवे की नौकरी कर रहा था, सिर्फ अपने स्टेट में वापस आने के ये में उन्होंने यहाँ की नौकरी ज्वाइन कर ली थी, तो उनके साथ अन्याय हो रहा था शायद, इसीलिए माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया। अब देखा जाएगा क्या होता है न्याय के।
2: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: राहुल गांधी के धरने के बाद पैलेट गन केस में दिल्ली के संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज। राहुल का कटाक्ष, अमित शाह और गृह सचिव ने दी अनुमति, बोले न्याय की दिशा में पहला कदम। राहुल पर बीजेपी का पलटवार, नड्डा बोले वंदे मातरम पर घिरने के बाद कांग्रेस का धरना, स्मृति बोली विरोध के नाम पर स्वांग। सीएम योगी ने अखिलेश को फिर घेरा, कहा इनके पीडीए का पी पिछड़ा से पंडित हुआ और एक दिन होकर जाएगा पाकिस्तान। अखिलेश का पोस्ट, एक रंगी क्या जाने पीडीए के बहुरंग। इधर नवीन की नई टीम बनने के बाद बीजेपी की तीन बड़ी बैठक, राष्ट्रीय पदाधिकारियों प्रदेश अध्यक्षों के साथ चुनावी तैयारियों और संगठन की रणनीति पर मंथन। झारखंड में रांची समेत कई शहरों में भिड़े छात्र और जेएमएम कार्यकर्ता, सीएम सोरेन का पुतला फूंकने पर हंगामा, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म फोरम का प्रदर्शन।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

राहुल गांधी के धरने के बाद पैलेट गन केस में एफआईआर दर्ज, दिल्ली के संसद मार्ग थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला, राहुल बोले न्याय की दिशा में पहला कदम। पैलेट गन केस में एफआईआर पर राहुल का अमित शाह पर कटाक्ष, बोले गृह सचिव और गृह मंत्री की अनुमति के बाद हुई कार्रवाई। राहुल के खिलाफ बीजेपी की सेना, नड्डा ने कहा वंदे मातरम पर घिरने के बाद दिया धरना। स्मृति ईरानी बोली राहुल और कांग्रेस कर रही है विरोध के नाम पर स्वांग, बोली स्मृति ईरानी। बंगाल दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, कहा वंदे मातरम को स्वीकार न करना दुर्भाग्यपूर्ण। वंदे मातरम पर राजनाथ सिंह बोले कांग्रेस के खतरनाक इरादे देश के सामने। झारखंड में रांची समेत कई शहरों में भिड़े छात्र और जेएमएम के कार्यकर्ता, सीएम सोरेन का पुतला फूंकने पर हंगामा, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म फोरम का प्रदर्शन। आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन, सवर्ण समाज के लोग और युवा शामिल, जाति के बदले आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग। आज राहुल का महिलाओं से सीधा संवाद, समाज की नहीं अपनी आवाज बताई। पुणे में महिला विशेष छात्रों की गूंज कार्यक्रम। जापानी मेहमानों का आज वाराणसी दौरा, जापानी प्रतिनिधिमंडल आज काशी की संस्कृति और आध्यात्मिकता से होंगे रूबरू, सारनाथ का करेंगे भ्रमण, बौद्ध विरासत को जानेंगे, क्रूज पर गंगा आरती का अद्भुत दृश्य देखें। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा बोले सिर्फ सुरक्षा नहीं, आतंकवाद नहीं हरा सकते, पूरे समाज की एकजुटता आतंकवाद को हराने के लिए जरूरी। यूपी विधानसभा सचिवालय ने सोशल मीडिया को लेकर जारी किए निर्देश, विधानसभा सचिवालय से जुड़ी भ्रामक सामग्री पोस्ट करने पर अब होगी कार्रवाई। अधिकारियों कर्मचारियों विधानसभा अध्यक्ष को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट पर भी होगी नजर, बिना पुष्टि की गई टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई। संभल जामा मस्जिद के पास 36 घर और दुकानों को नोटिस, बिना स्वीकृति नक्शे के निर्माण का आरोप। विजय वटेडीडार का आरोप, राहुल से डरती है महाराष्ट्र की सरकार, छात्र कार्यक्रम के लिए लगाई 30 शर्तें और धारा 144। राजनीति में आने के सवाल पर इंडिया टुडे से बोले महाराष्ट्र एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे, एक काम तो अच्छा है उसी को जारी रखूंगा। बॉम्बे हाईकोर्ट की 3 कैंटीन्स में से 2 बिना लाइसेंस मिली, एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे बोले नियम सबके लिए समान। महाराष्ट्र में फूड सेफ्टी पर एफडीए की बड़ी कार्रवाई, मुंबई के बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब और मैकडोनल्ड्स समेत 13 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित। रेडियो क्लब के किचन में जिंदा मक्खियां, कॉकरोच, मैकडोनल्ड्स में भी मिली खामियां, लगभग 90 प्रतिष्ठानों को जांच में 71 को सुधार नोटिस। मिलावट का ऐसा डर, हमीरपुर में अपनी ही बनाई मिठाई खाने से दुकानदार ने इनकार किया, एसडीएम ने नष्ट करवाई सारी मिठाई। भोपाल के बाद ग्वालियर में भी नर्सिंग छात्रों का जोरदार प्रदर्शन, रिजल्ट स्कॉलरशिप को लेकर आंदोलन। आसनसोल में बीजेपी ऑफिस के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन, अन्नपूर्णा भंडार का पैसा नहीं मिलने पर नाराज। गोरखपुर में 10 एकड़ अवैध प्लॉटिंग पर चला जीडीए का बुलडोजर, सड़क मकान ध्वस्त। बरेली में जेन अल्फा का प्रदर्शन, बस का किराया कम करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। बागेश्वर में लगातार बारिश, कपकोट सबसे अधिक प्रभावित, 9 सड़कें बंद, जिला मुख्यालय का संपर्क टूटा सरयू उफान पर। देहरादून मसूरी मार्ग पर भारी भूस्खलन, लंबा जाम लगा। बाढ़ ने लगाया काशी की खूबसूरती पर ग्रहण, रिस्क लेकर गंगा स्नान, मौज मस्ती करते दिखे लोग, 80 घाट की तस्वीरें। अरुणाचल में बादल फटने और बाढ़ में सेना के 7 जवान लापता, अलवर का एक बेटा भी शामिल। गुवाहाटी में बारिश के बाद जल भराव, कई इलाकों में सड़कें तालाब में बदली। बिजनौर में हरिद्वार से 1,80,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गंगा के निशान के पार पहुंची। बिजनौर में बाढ़ का कहर, गंगा मालन नदियां उफान पर, गांवों में घुसा पानी, हाईवे भी डूबा। जबलपुर में नर्मदा उफान पर गौरीघाट डूबा, नाव दुकानों के संचालन पर रोक। यूपी के बाराबंकी में सरयू नदी की बाढ़ ने जिले के करीब 50 गांवों में जीवन की रफ्तार रोक दी, कहीं घरों में पानी तो कहीं खेत नदी में समा चुके।
सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के बीचों बीच गड्ढा, लोगों ने लगाया पेड़। वीडियो वायरल होते ही NHAI ने गड्ढा भरने का काम शुरू किया। मुंबई के गोरेगांव और आरे कॉलोनी में दर्दनाक हादसा, तबेले के पानी में टंकी में डूबने से 2 स्कूली छात्रों की मौत। मेरठ SSP ऑफिस में मारपीट के आरोप पर हड़कंप, ADG ने जांच के आदेश दिए। भोपाल के बंसल वन मॉल के रेस्टोरेंट में फंगस लगी चीजें मिली, एक्सपायरी ड्रिंक मिली, 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगा। मुजफ्फरपुर में बिस्किट में जहर देकर 2.5 वर्ष के बेटे की हत्या का आरोप, मां गिरफ्तार, तबियत बिगड़ी, पुलिस निगरानी में इलाज। मुजफ्फरपुर में स्कूल में लगातार चोरी से भड़के बच्चे, डेस्क बेंच लेकर सड़क पर उतरे, पुलिस के खिलाफ नारे। उधम सिंह नगर के काशीपुर में लव जिहाद की शिकार छात्रा का सड़क किनारे मिला शव, परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त। मथुरा में बड़ा हादसा, ओमेक्स मॉल की शटरिंग गिरने से 3 मजदूरों की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के करोल बाग प्यारेलाल रोड पर एक पुरानी इमारत में रिपेयर के दौरान मकान का हिस्सा गिरा, 3 दबे, 1 की मौत, 2 घायल। नागपुर में लव ट्रायंगल बना हत्या का कारण, वीडियो सामने आया, 2 गिरफ्तार। वडोदरा में रोड स्वीपर मशीन में भीषण आग, ड्राइवर समेत 2 को सुरक्षित बचाया गया। भुवनेश्वर के रेलवे स्टेशन पर मानसिक रूप से बीमार युवक से मारपीट, 8 से 10 लोगों पर आरोप। गाजियाबाद में बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग, CCTV में कैद। पंजाब के अजनाला के सीमावर्ती गांव पर जट्टा में घर पर ग्रेनेड हमला, 3 लोग घायल। प्रयागराज में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, पानी की टंकी पर चढ़ी, तमाशबीनों की भीड़ लगी। कर्नाटक के मांड्या में गारमेंट फैक्ट्री में भीषण आग, करोड़ों का नुकसान, सामान खाक। नोएडा में नाबालिग ने चलाई कार, पीछे से दूसरी कार में मारी टक्कर, पुलिस ने FIR दर्ज की। नासिक में गड्ढों को भरने के लिए आया ट्रक, खुद गड्ढे में फंसा, वीडियो वायरल। हिंगोली में बिस्किट और पैसे के लालच में 13 वर्ष की बच्ची से गैंगरेप, 4 पर केस दर्ज। हैदराबाद में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 26 वर्ष की महिला की मौत, आंध्र प्रदेश के सांसद के बेटे पर केस। तेलंगाना के वारंगल में कार की डिक्की से मिला महिला का शव, सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने मौत का दावा किया, पुलिस जांच में जुटी। रेवाड़ी में 3 युवकों पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला, 2 की मौत, गांव में भारी पुलिस बल तैनात। उज्जैन में महिलाओं से दोस्ती कर शादी का झांसा देकर 1.5 करोड़ की ठगी, राजस्थान से गिरफ्तार। ग्वालियर में प्रेम प्रसंग का ऑडियो वायरल, बदनामी के डर से शादीशुदा महिला ने आत्महत्या की, पति ने 5 पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। भावनगर में बनी नकली विदेशी शराब पीने से 9 की मौत, 39 अभी भी अस्पताल में भर्ती। कटिहार में 2 महिलाओं पर बर्बरतापूर्ण हमला, 1 की मौत, दूसरा अस्पताल में भर्ती। अयोध्या से देश भर पहुंचेगा रक्षा सूत्र, माता शांति की ओर से भेजी जाएगी राखी, वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित हुई राखियां, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए राखी तैयार, PM मोदी को भेजा जाएगा रक्षा सूत्र, अमित शाह को भी भेजेंगी राखी, राजनाथ सिंह के लिए भी आएगी राखी, योगी आदित्यनाथ को भी बंधेगी राखी, आनंदीबेन पटेल को भी जाएगी राखी। 27 अगस्त को रामलला को पहुंचेगी राखी, राम मंदिर में अर्पित होगा रक्षा सूत्र, विधि विधान से रामलला को बांधी जाएगी राखी। श्रीराम राखी पर्व के तहत विशेष पहल, माता शांता की राखी से जुड़ी धार्मिक परंपरा, माता शांता को प्रभु श्रीराम की बड़ी बहन माना जाता है। दिल्ली के हैंडलूम हार्ट में वीव द फ्यूचर एक्सपो शुरू, 30 से बड़े ब्रांड शामिल, 24 राष्ट्रीय स्तर के बुनकर भी पहुंचे। हैंडलूम में परंपरा के साथ आधुनिकता का मेल, सस्टेनेबल फैशन की नई तस्वीर, भांग केला बांस से बन रहे हैं कपड़े। गणेशोत्सव से पहले मिट्टी के गणपति बनाने में रात दिन जुटे नजर आ रहे हैं पाली के कारीगर, बप्पा के आगमन की जबरदस्त तैयारी। जयपुर के खुसरगांव का सरकारी स्कूल बना मिसाल, प्रिंसिपल टीचर की मेहनत, फंड जुटाने से बदली तस्वीर, 100% रिजल्ट। टिहरी में ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ग्रामोत्थान परियोजना बनी मजबूत सहारा, बदली भैंस कोटी की महिलाओं की जिंदगी, बेकरी उद्यम से आत्मनिर्भरता की नई कहानी।
मुंबई में सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स का पुरुषों की ज्वेलरी में नया प्रयोग, TI-22 कलेक्शन में टाइटेनियम के साथ सोने और असली हीरे। हर्षवर्धन राणे बने सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स की पुरुषों की नई T-122 ज्वेलरी लाइन के चेहरे, बी बोल्ड बी स्ट्रांग कैंपेन में अभिनेता का विशेष अंदाज। दरभंगा में बिहार ग्रामीण बैंक का मुखिया आउटरीच कार्यक्रम संयोजक शाखा प्रबंधक मेघा झा ने गरीब किसान और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया। हैदराबाद के गोलकोंडा में 400 वर्ष पुराने कुतुब शाही मकबरा परिसर के नीचे मिली विशाल सुरंग। जैसलमेर में सीमा के पास गरजे अपाचे और रुद्र हेलीकॉप्टर, हाईवे पर लैंडिंग टेक ऑफ का अभ्यास। एयरटेल ने कई सस्ते मोबाइल रिचार्ज प्लान बंद करके नया प्लान 5-16% तक महंगा किया। ब्रोकरेज हाउसेस ने जल्द ही टेलीकॉम टैरिफ 10-15% बढ़ने की आशंका। CLSA का दावा, लोगों की इनकम में खर्चों के मुकाबले कम बचत, घटाकर कर्ज लेकर चल रहा है परिवारों का खर्च, इससे बढ़ेगी सभी की मुश्किल। 2 महीने में चीनी के दाम में 40% से अधिक का उछाल, सरकार ने कच्चा चीनी के शुल्क मुक्त आयात स्वीकार किया। 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन इंपोर्ट किया जाएगा, थोक खरीदारों के स्टॉक लिमिट को घटाया। जुलाई में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 5% घटी, ऑल टाइम हिस्सेदारी के साथ इंडिगो टॉप पर, स्पाइस जेट भी सबसे पीछे। अमेरिकी बॉन्ड बाजार के निर्णय से बिटकॉइन 24 घंटे में 11% उछलकर $72,000 के पार, बाजार पूंजीकरण में भी करीब 250 अरब डॉलर की बढ़त दर्ज। सलमान खान संजय दत्त की अंतर्राष्ट्रीय एक्शन फिल्म 7 Dogs आज भारत में रिलीज, मोनिका बेलुची, मार्टिन लॉरेंस और दूसरे सितारे। हॉलीवुड की हॉरर फिल्म इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर सिनेमाघरों में रिलीज, लोकप्रिय फ्रेंचाइजी की 6th फिल्म। सिनेमाघरों के बाद OTT पर दस्तक दे रही फिल्म वेलकम टू द जंगल, जियो पर स्ट्रीम। अक्षय, जैकलीन, रवीना, सुनील शेट्टी, अर्शद समेत 30 से अधिक सितारे। जैकी श्रॉफ के द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो OTT पर उपलब्ध, G5 पर स्ट्रीम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सुपरस्टार विजय की सबसे चर्चित फिल्म जन नायकन OTT पर G5 पर उपलब्ध। भारत में आज से टॉक्सिक की एडवांस बुकिंग भी शुरू, 26 अगस्त को होगी रिलीज। पहली बार महात्मा गांधी का रोल करेंगे मनोज वाजपेयी, सुधीर मिश्रा की फिल्म गांधी एंड माय मदर में आएंगे नजर। रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 में दीपिका की एंट्री, आलिया के साथ निभाएंगी दमदार रोल। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 ने रिलीज से पहले रचा इतिहास, 160 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़, कमाई में बिके डिजिटल राइट्स। 3 साल बाद जोरदार कमबैक को तैयार शाहरुख खान, अंतिम चरण में मच अवेटेड फिल्म किंग की शूटिंग। अमेरिका में 25% तक सस्ता होगा बीफ, ट्रंप ने आयात शुल्क में 90 दिनों की छूट का ऐलान किया, बीफ के बढ़ते दामों को नियंत्रित करने के लिए उठाया कदम। रूस के पर्म में रूसी तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन का हमला, एयरबेस को भी बनाया निशाना, ज़ेलेंस्की ने की पुष्टि, रूस ने 2 महीने में 52 यूक्रेन के जहाजों पर हमला किया। रूस के दक्षिणी शहर रोस्तोव में ईंधन की भारी कमी, पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइन, ईंधन संकट से लोग परेशान, रिफाइनरी पर हमले से बढ़ गया तेल संकट। ऑस्ट्रेलिया में जासूसी के आरोप में रूसी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक गिरफ्तार, यूक्रेनी सेना से जुड़ी जानकारी रूसी सेना को देने का आरोप। अमेरिका ने हिजबुल्ला पर लगाए नए प्रतिबंध, कैश नेटवर्क से जुड़े 10 लोगों को बैन किया, ये लेबनान, तुर्की, UAE, ईरान के बीच करोड़ों डॉलर की नकदी पहुंचाते थे। यमन तट के पास तेल टैंकर अगवा, अदन की खाड़ी में 6 हथियारबंद बदमाशों ने हाईजैक किया, जहाज को कंट्रोल कर सोमालिया की ओर ले जा रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच चीन इंडोनेशिया में सैन्य संबंध मजबूत करने पर सहमति, ऊर्जा, व्यापार, रेल, AI समेत कई समझौते, ट्रेनिंग को लेकर भी सहमति। स्विट्जरलैंड के में अपार्टमेंट में भीषण आग में 8 लोग घायल, 14 को बचाया गया, 5 लोग लापता। दक्षिण कोरिया में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, लाल पट्टी बांधकर सड़कों पर उतरे कर्मचारियों ने रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की मांग की।
कांगो में बेकाबू इबोला वायरस, 2,500 से ज्यादा की मौत, संयुक्त राष्ट्र ने निपटने के लिए फंड की कमी बताई। WHO ने कहा तेजी से फैल रहा है इबोला वायरस।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको उस स्कूल की कहानी बताएंगे जहां पहुंचने से पहले कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं पर हमला हुआ। आशुतोष रांका का आरोप है कि स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा था, सरकार को इसकी सुध नहीं थी। उन्होंने ये आरोप लगाया कि हमला करने वाले लोगों को खुद बीजेपी और राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भेजा। आज हम आपको इस हमले की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। हमारे सहयोगी शरद ने एक ऐसी रिपोर्ट बनाई है जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि आखिर इस पूरे फेस ऑफ की इनसाइड स्टोरी क्या है, जिसमें शिक्षा, सियासत और आंदोलन का संघर्ष कांच की तरह साफ साफ नजर आता है। और इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि दिल्ली के पैलेट गन मामले में राहुल गांधी ने अपने धरने से क्या हासिल किया। ये पूरा मामला 20 जुलाई का है, जब जंतर मंतर से शुरू हुए संसद मार्च में पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप लगा था। वो आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी का था, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने इसी मुद्दे को वैसे नहीं उठाया, पैलेट गन का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया। आज हम आपको यही बताएंगे कि पैलेट गन से निकली राहुल गांधी की ये पॉलिटिक्स गृहमंत्री अमित शाह तक कैसे जाती है। और इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि क्यों वंदे मातरम नहीं सिखाता आपस में बैर करना। शर्मिला टैगोर ने कहा है कि वंदे मातरम के दो ही छंदों तक सीमित रखना चाहिए, क्योंकि हर कोई वंदे काली, वंदे दुर्गा और वंदे सरस्वती नहीं कह सकता। इस पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम को हिंदू मुसलमान में बांटना सही नहीं है। आज हम आपको ये बताएंगे कि दुनिया के कई देशों में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर विवाद हुआ तो उन देशों ने तब क्या किया, और भारत इन देशों से क्या सीख सकता है। आज की एक और बड़ी खबर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की बिगड़ती सेहत को देखते हुए 48 घंटे के अंदर इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का सख्त आदेश दिया था। लेकिन जानते हैं, शहबाज शरीफ की सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देते हुए ऐन वक्त पर अस्पताल का वेन्यू बदल दिया। अफवाह फैला दी कि शिफा हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं ताकि सारे समर्थक वहां पहुंचे, और खुद पहुंच गए एक सरकारी अस्पताल में लेकर इमरान खान वहां भर्ती कराया। इतने से मन नहीं भरा तो शहबाज शरीफ और मुनीर ने घबराकर इमरान खान को पहले मेडिकल रूप से फिट घोषित किया फटाफट वहां, और फिर वापस रावलपिंडी की अदियाला जेल तुरंत पहुंचा दिया। डर का आलम देखिए, यह भी तब हुआ जब इमरान खान ने अपनी पार्टी की तरफ से भरोसा दिया था कि वो आसिम मुनीर से कोई टकराव नहीं करेंगे। फिर भी मुनीर डरा क्यों, आज इसकी कहानी भी आपको बताएंगे। और आज की एक और बड़ी खबर झारखंड से है, जहां प्रदर्शनकारी छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला जलाने का ऐलान किया है। लेकिन इस दौरान रांची और गिरिडीह में हंगामा हुआ। रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का पुतला लेकर फरार हो गए, जबकि गिरिडीह में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला छीनने के लिए काफी ड्रामा, काफी मारपीट हुई है। देखिए, आज हम आपको ये भी बताएंगे कि महाराष्ट्र में गरीब ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स ने कितना बड़ा अपराध किया है, उनका ऐसा अपराध जिसकी वजह से अब शायद उनका लाइसेंस चला जाए। उनका अपराध यह है कि परिवहन विभाग ने उन्हें मराठी भाषा सीखने की ट्रेनिंग दी, लेकिन वो मराठी सीख नहीं पाए, और अब इन गरीब ड्राइवर्स का लाइसेंस रद्द तक हो सकता है। आज हम ये सवाल पूछेंगे कि जिस मुंबई में देश की 70% हिंदी फिल्में बनती हैं और इन फिल्मों में काम करने वाले कलाकारों को इतना सम्मान मिलता है, पूरे देश में मिलता है, उसी मुंबई में भाषा को लेकर गरीबों का ऐसा अपमान क्यों? इसके बाद हम ये सवाल पूछेंगे कि क्या कानून वाकई में सबके लिए बराबर होता है। हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण की पार्टी के सांसद लिंगम नेनी रमेश, इनके 23 साल के बेटे ने अपनी लग्जरी कार एस्टन मार्टिन से एक लड़की को कुचल दिया। इस दुर्घटना में इस लड़की की मौत हो गई। लेकिन जानते हैं, माननीय सांसद जी के बेटे, अब तो सांसद पुत्र एक नया शब्द इनके लिए हो जाना चाहिए, सांसद पुत्र जी को गिरफ्तार करने के बजाय उन्हें पुलिस ने सिर्फ एक नोटिस थमाकर छोड़ दिया। आज की एक और बड़ी खबर चीनी की कीमतों को लेकर है।
सरकार ने उन सभी आरोपों का खंडन किया है जिनमें ये कहा जा रहा था कि भारत में चीनी की कीमतें इथेनॉल के कारण बढ़ रही हैं, क्योंकि इथेनॉल भी गन्ने से बनता है और चीनी भी गन्ने से बनती है। पिछले एक महीने में 1 किलोग्राम चीनी की कीमतें 16% बढ़ी। ये भी तब हुआ जब कम बारिश के बावजूद गन्ने का रकबा पिछले साल के लगभग बराबर रहा। इसी आधार पर कई लोग चीनी की कीमतों को पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से जोड़ रहे थे, लेकिन सरकार का कहना है कि 2022-23 में कुल चीनी उत्पादन का 12% हिस्सा इथेनॉल बनाने के लिए गया था, जबकि इस बार सिर्फ 9% हिस्सा इथेनॉल बनाने के लिए गया है। सरकार ये भी कह रही है कि पूरी दुनिया में चीनी की कीमतें औसतन 16% बढ़ी है और इसे इथेनॉल से जोड़ना सही नहीं है। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि ब्रिटेन की शरणार्थी गाइड में ये क्यों लिखा है कि रेप ना करें, महिलाओं को ना छेड़े। यूके की शरणार्थी गाइड में यह लिखा है और इस पर विवाद क्या है। और आज की एक और बड़ी खबर यह है कि भारत में अमेरिका के राजदूत सर्गियो गौर लद्दाख के सबसे ऐतिहासिक थिक्से मोनास्ट्री पहुंचे, जो तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुगपा संप्रदाय का एक प्रमुख मठ है। इस मठ की स्थापना 1433 ईस्वी में हुई थी और इसकी बहुमंजिला बनावट तिब्बत के प्रसिद्ध पोटाला पैलेस से मिलती जुलती है, जिस कारण से इसे लघु पोटाला भी कहा जाता है। तिब्बत पर अभी चाइना का नियंत्रण है और ऐसे में सर्गियो गौर के इस मठ में जाने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। देख लीजिए।

0: तो आज में खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हुए हमले की इनसाइड स्टोरी क्या है। 16 अगस्त को राजस्थान के शिक्षा विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें ये लिखा था कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी स्कूल्स का औचक निरीक्षण करना चाहता है तो वहां जाकर वीडियो बनाना चाहता है, स्कूलों से इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहता है तो उस व्यक्ति को पहले स्कूल के प्रिंसिपल से इसकी इजाजत लेनी होगी। अब ये सर्कुलर तो ऐसा है जिसके खिलाफ तमाम पार्टियों ने आंदोलन किया। कांग्रेस पार्टी ने और खासतौर पर सचिन पायलट इस मुद्दे पर रोजाना वहां पर विरोध कर रहे हैं। ये सर्कुलर ऐसे समय में आया जब कॉकरोच जनता पार्टी ने 15 अगस्त से स्कूल ठीक करो अभियान चलाने का ऐलान किया। इस पूरे मामले पर विवाद हो ही रहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने ऐलान किया कि वो और उनके बाकी नेता जयपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का जायजा लेंगे। ये स्कूल जयपुर विधानसभा से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर रामपुरा कवरपुरा गांव में मौजूद है और कॉकरोच जनता पार्टी का आरोप है कि ये स्कूल भैंसों के एक तबेले में चल रहा था। सुबह करीब 10:30 बजे जब आशुतोष रांका और कॉकरोच जनता पार्टी की एक टीम इस गांव में पहुंची तो स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध किया और कॉकरोच जनता पार्टी का यह आरोप है कि ये लोग स्थानीय ग्रामीण नहीं बल्कि बीजेपी के नेता थे, जबकि इन लोगों का कहना है कि इनका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। जिस वक्त ये पूरी घटना हुई, स्थानीय लोगों पर हमला करने का आरोप लगा, तब हमारी टीम वहीं मौजूद थी। हमारे कैमरे ने क्या देखा वो आप खुद हमारे सहयोगी शरद की इस रिपोर्ट में और जो अन्य रिपोर्टर हमारे हैं विशाल हमारे सहयोगी की इस रिपोर्ट में देखिए।
1: जयपुर के रामपुरा में सीजेपी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता आशुतोष रांका यहां पर गांव में स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं लेकिन ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ आशुतोष और रांका सहित पूरी टीम यहां पर मौके पर पहुंची है और दोनों तरफ यहां पर आमने सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहां पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, लोग इनको भगा रहे हैं। आशुतोष रांका के साथ महिला कार्यकर्ता भी है लेकिन यहाँ पर ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में और इनको यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष रांका के साथ ये मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी। गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं, ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है और रामपुरा में यहाँ पर ये देखिए लात घूसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक एक की पिटाई कर रहे हैं, यहाँ पर गांव वाले पीछे भाग रहे हैं।
2: देखिए गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें देखिए गांव वाले उग्र हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर और यहाँ आज भी गिर चुका है।
0: अब आप इस घटना की पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए जो 2 दिन पहले शुरू होती है। गांव के लोगों का कहना है कि उन्हें 19 अगस्त को पहली बार ये खबर मिली कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोग इस सरकारी स्कूल का जायजा लेने आएंगे। हमारे संवाददाता शरद कुमार कहते हैं कि सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध का कारण यह था कि जिस सरकारी स्कूल को कॉकरोच जनता पार्टी कैमरों पर दिखाना चाहती थी उस स्कूल के बारे में उसे सही जानकारी नहीं थी। इस प्राथमिक स्कूल के भवन पर 1 साल पहले ही ताला लगा दिया गया था और कारण यह था कि स्कूल का भवन जर्जर हो चुका था। उस वक्त गांव के लोगों ने ही इसकी शिकायत की। इसी शिकायत पर स्कूल की मरम्मत होने तक इसे बंद किया गया। यह भी तय हुआ कि जब एक नया भवन नहीं बनता तब तक स्कूल में पढ़ने वाले 18 बच्चे 3 किलोमीटर दूर एक दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगे। अब क्योंकि यह स्कूल रेलवे लाइन के उस पार था इसलिए गांव के लोगों ने खुद शिक्षा विभाग से कहा कि उनके बच्चों को इतनी दूर ना भेजा जाए। उन्होंने गांव में ही जर्जर हो चुके स्कूल के पास इन 18 बच्चों को पढ़ने के लिए एक जगह दे दी और उस दिन से ये स्कूल वहां पर लगने लगा। हमारे संवाददाता शरद कुमार ये भी बताते हैं कि जो शिक्षा विभाग को ये जानकारी थी कि जिस जगह गांव वालों ने बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह दी है वहां भैंसों का एक तबेला है और इस बात के पक्षधर नहीं हो सकता कि बच्चों का स्कूल भैंसों के एक तबेले से चले, क्योंकि गांव के लोग खुद यहां बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके बाद तैयार हो गए थे। इसलिए बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने इसको शुरू कर दिया। अब ये तस्वीरें देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी ने स्कूल को अपने अभियान के लिए चुना तो गांव के लोग नाराज हो गए और 2 बातें वो कह रहे थे। पहला आरोप गांव वालों की तरफ से लगाया गया कि कॉकरोच जनता पार्टी ने स्कूल का औचक निरीक्षण करने से पहले इसके बारे में सही जानकारी जुटाई नहीं। दूसरा उनका कहना था कि कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने उनके गांव में आने से पहले किसी से बात करना जरूरी नहीं समझा। गांव के लोग ये शिकायत कर रहे थे कि एक बार कॉकरोच जनता पार्टी के लोग उनसे बात तो करते तब जबकि कांग्रेस जनता पार्टी का आरोप भी हम आपको सुनाएंगे। उनका यह आरोप है कि विरोध करने वाले लोग बीजेपी के नेता और बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे। हमारे संवाददाता शरद कुमार ने इसकी भी पड़ताल की और उनका कहना है कि सीजेपी की तरफ से जो आशुतोष रांका जिस गांव के स्कूल में जाना चाहते थे वो जयपुर के बगरू कस्बे में आता है। बगरू ये कस्बा है और गांव है जहां बागड़ा ब्राह्मण समुदाय की बहुत अच्छी और प्रभावशाली आबादी है। पारंपरिक रूप से समुदाय के लोगों को बीजेपी का वोटर माना जाता है, यानी यहां हो सकता है कि कांग्रेस जनता पार्टी ने जिस अभियान के लिए जिस गांव को चुना वहां पर उनका विरोध होना तय था। देखिए
3: देखिए गांव की राजनीति बिल्कुल ही अलग होती है शहरों की राजनीति से। सीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी चाहिए था कि गांव में अगर राजनीति उन्हें करनी है तो उन्हें कम से कम गांव के कुछ लोगों को अपने संपर्क में लेना चाहिए था, विश्वास में लेना चाहिए था। आप अगर मीडिया के सहारे चाहते हैं कि लड़ाई लड़े तो मीडिया के सहारे लड़ाई लड़ना आसान नहीं है। उन्होंने पहले मीडिया को कहा कि आप हमारे साथ चलिए, हम स्कूल दिखाएंगे, गांव दिखाएंगे। ये इन लोगों का आक्रोश है।
0: यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस जनता पार्टी के नेता जयपुर के इस गांव में दो बार आए। पहली बार सुबह 8 बजे कुछ लोग मीडिया के साथ इस गांव में पहुंचे और उन्होंने स्कूल तक जाने की कोशिश की थी। हमारे संवाददाता शरद कुमार बताते हैं कि उस वक्त आशुतोष रांका नहीं थे और 11 बजे स्कूल में वो बताया गया कि आने वाले थे, लेकिन जब सुबह उनकी टीम को स्कूल जाने से स्थानीय लोगों ने रोक दिया तो आशुतोष रांका बाकी नेताओं के साथ 10:30 बजे पहुंचे। ये पूरा हंगामा हुआ। यहां हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इस गांव के लोग कांग्रेस जनता पार्टी पर उनका क्रेडिट छीनने का आरोप भी लगा रहे हैं। उनका यह कहना है कि वो स्कूल के लिए पहले आंदोलन कर चुके हैं, इसी महीने स्कूल के लिए 18 लाख रुपए का फंड भी उनको मिला है, मंजूर हो चुका है। यह पैसा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाले डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत मंजूर हुआ है, जिसके लिए गांव के लोगों ने ही प्रस्ताव भेजा था। लेकिन जब कांग्रेस जनता पार्टी के नेता स्कूल में आना चाहते थे तो वो ये कहने लगे कि वो उनका क्रेडिट छीनने आए।
3: गांव में आज भी जेएनजी प्रजाति जी भारी है। रामपुरा कमरपुरा में बागड़ा ब्राह्मण समुदाय के लोग रहते हैं और उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया कि अगर कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक यहां आएंगे तो पीटे जाएंगे। गांव में कोई राजनीतिक कार्यकर्ता भले ही न हो, मगर ये भी सच है कि बागड़ा ब्राह्मण समुदाय के लोग ज्यादातर संख्या में बीजेपी को वोट देते हैं। उनका गुस्सा इस बात को लेकर था कि जब 13 अगस्त को पैसा सैंक्शन हो गया तो फिर 20 अगस्त को एक ये ऐलान क्यों कर रहे हैं, 21 अगस्त को क्यों आ रहे हैं, जब हम संघर्ष कर रहे थे तब ये कहां थे।
0: अब कांग्रेस जनता पार्टी ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और ये कहा है कि अगर मारपीट और हमला करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे राजस्थान में आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का यह भी आरोप है कि उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए कहा गया, उन्हें देश विरोधी बताया गया, उनके लिए अर्बन नक्सल शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है। सीजेपी क्या आरोप लगा रही है वो सुनिए।
4: सर, ग्रामीण शहरी सब एक है, कुछ अलग नहीं है, हम इनके विरोधी नहीं है। ये हमें आके बोल रहे हैं पाकिस्तान जाइए। मैं यही पली बड़ी हूँ, मैं ये सब नहीं सुन सकती हूँ, ना ही ये सुनना किसी भी देशवासी को अच्छा लगेगा।
5: ये गांव वाले चाहते ही नहीं है सर कि बच्चे पढ़े और स्कूल ठीक हो। इन गांव वालों की मिली भगत है सबकी। देखिए, आप खुद देखिए कि कितने लोग इकट्ठे होकर हम पे हमला कर रहे हैं, हमें मारे, हमारी क्या गलती है सर। हम यही तो चाहते हैं बच्चों की अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिले, हम यही तो चाह रहे हैं। भैंस के तबेले में पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं बच्चे, क्यों हो रहे हैं सर।
6: 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है।
0: एक बात तो तय है और ये बात हम जरूर कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी कारण किसी भी राज्य में जहां किसी की भी सरकार हो सरकार चुनकर नहीं, सरकार देखकर नहीं, किस पार्टी की सरकार ये देखकर नहीं, किसी भी राज्य में किसी भी कारण से बच्चों को भैंसों के तबेले में या उनके लिए रखे गए भूसे के बीच बैठकर पढ़ना पड़ रहा है, तो ये हमारे शिक्षा विभाग की नाकामी है और राजस्थान सरकार की बहुत बड़ी कमी है जिसकी जल्द से जल्द उनको भरपाई करनी चाहिए। हमने ये सवाल जयपुर के जिला शिक्षा अधिकारी गिरिराज पारिक से भी पूछा और वो उसका एक भी ठीक जवाब तो दे नहीं पाए। सुनिए।
3: हमारे साथ जयपुर के जिला शिक्षा अधिकारी गिरिराज पारिक हैं। सर, ये कब तक इस तरह से तबेले में स्कूल चलेगा?
7: ये सर तबेला, आप कहाँ तबेला बोले जा रहे हो? उसको तबेला होता है जहाँ पर ये जानवर बनते हैं, जहाँ पर पशु
3: भूसा रखा हुआ है।
7: नहीं देखो, भूसा रखना क्या, गांव में जो घर होते हैं ना, उस घर में आदमी भी वही रहते हैं, वहाँ पर टीन शेड लगाते हैं, अपने पशु भी हम लोग वहीं रखते हैं, पानी की व्यवस्था भी वहीं होती है। आप लोग कभी देखा गांव में परिंडा भी वहीं होता था? ये तो लैटवाद वगैरह अब बनने लग गए, पहले चार दीवार
3: के स्कूल में ही पढ़े हैं। ऐसा ऐसा स्कूल नहीं था हमारा।
7: सुनो, अब ये स्कूल तो अच्छा था लेकिन अब चूंकि ये जर्जर हो गया ना, तो इस वजह से अब इसको हमने कर दिया भाई, डिसमेंटल करेंगे इसको, हटाएंगे।
3: कहानी को छोड़िए, आप ये बताइए इस तबेले से मुक्ति कब मिलेगी?
7: ये अजी तबेला नहीं, आप फिर वो आप तबेला तबेला बोले जा रहे हो। ये अपने ये व्यवस्था कर दी कि पास में जो भी कोई सुरक्षित जगह है वहाँ पर बच्चों को अपन शिफ्ट कर दे।
3: कब आएगा वही तो पूछ रहे हैं।
7: ये तो भारत सरकार बताएगी ना, अपन कैसे बता सकते?
3: भारत सरकार बताएगी कि राजस्थान के स्कूलों के बच्चे कब तबेले से बाहर?
7: नहीं फिर तबेला, अरे तबेला है ही नहीं है, तो बिल्डिंग दिख रही, मकान है हमारा। अच्छा, मैं नहीं रह सकता, इसमें क्या दिक्कत है रहने में?
3: रहेंगे।
7: अरे यार क्यों नहीं रहेंगे?
0: अपने बच्चे को पढ़ाएंगे स्कूल में, सवाल ये भी है। इस मामले में एक सवाल कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर भी उठ रहा है और गांव वाले उठा रहे हैं। आपने उनके कई जो प्रतिनिधि थे उनको सीधा सीधा कहा, देखा कि वो कैसे गांव वाले जो है उनको सीधा कह रहे थे कि गांव वाले मिले हुए हैं बीजेपी से। लेकिन हमारे संवाददाता शरद कुमार कहते हैं कि जिस स्कूल को कॉकरोच जनता पार्टी के नेता कैमरों पर दिखाना चाहते थे, वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर खुसर गांव में एक और सरकारी स्कूल है जिसका रिजल्ट हर साल करीब 100% रहता है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने स्कूल के बारे में नहीं बताया है। स्थानीय लोग कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं सुनिए।
3: स्कूल आपने देखे होंगे, मगर रामपुरा कंवरपुरा जहां पर पूरा विवाद चल रहा है स्कूल को तबेले में चलाए जाने को लेकर, वहां पर एक चमचमाती हुई बिल्डिंग बगल में ही स्कूल की है, जहां पर देखकर हम रुके और पता किए तो पता चला कि ये पूरा स्कूल जो है भामाशाहों के सहयोग से बनाया गया है। घुसते ही आपको यहाँ बैठने की व्यवस्था दिखाई देगी और ये पंखे देखिए, लाउडस्पीकर देखिए, बाथरूम देखिए, मंदिर, पेड़ पौधे सब यहाँ पर लगाए हुए हैं, कुर्सियाँ टेबल सब यहाँ पर नए दिखाई दे रहे हैं और सारे के सारे गाँव के बच्चे हैं। क्या नाम है आपका?
8: अंजलि प्रजापत।
3: अंजलि, स्कूल तो बड़ा नई दिखाई दे रही है।
8: यस सर।
3: पढ़ाई कैसी होती है?
8: बहुत अच्छी होती है, हमारे सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं।
9: 100% और पिछली बार 95% 12th में बच्चे ने अचीव किए हैं और सब्जेक्ट ऐसे हैं कि 100 में से 100 नंबर।
3: अंजलि बता रही थी यहाँ पर कि 100% रिजल्ट है इस स्कूल का, तो सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं है बल्कि पढ़ाई भी काफी यहाँ पर अच्छी हो रही है, तभी इस तरह के रिजल्ट है। ये लोगों के सहयोग से बना हुआ है, यानी कि सरकार से पैसा मिलने का इंतजार किए बिना ही अगर टीचर प्रिंसिपल चाहें तो लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं और इस तरह से शानदार स्कूल बनाया जा सकता है। ये खुसर गांव के स्कूल में आकर दिखाई दे रहा है। शरद कुमार, खुसर, जयपुर, आज तक।
0: तो इसीलिए अब आइए आपको दोनों स्कूल ही दिखा देते हैं ताकि आप भी समझ पाएं कि क्या फर्क है। एक तरफ 18 लाख की बात गांव वाले कह रहे हैं कि उनको पैसा मिला है, वहां पर स्कूल बनने वाला है और स्कूल चलेगा, जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, और स्कूल के अंदर की स्थिति वाकई खराब दिखती है। ये देखिए अंदर की तस्वीरें जो हमारे कैमरा ने कैद की है, इसमें एक जो भी शिक्षक है कौन है पता नहीं चल रहा, पर ये तीन लोग आते हैं सामने माइक देखकर हाथ भी जोड़ते हैं, लेकिन क्या हालत है पीछे की इमारत की आप देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो स्कूल जो आज चल रहा है अच्छे से और जहां पर बच्चे जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो खुसर गांव जैसा स्कूल बनना मुश्किल नहीं है, मुमकिन है, बस लगन की जरूरत है और सरकार को परफॉर्म करने की जरूरत है। इस विवाद का एक और कारण है पंचायत के चुनाव। राजस्थान के चुनाव आयोग ने अभी 2 दिन पहले ही नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, जिसके बाद वहां आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनावों के वक्त कॉकरोच जनता पार्टी को अपनी राजनीति नहीं करनी चाहिए। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी इन आरोपों को सिरे से गलत ठहरा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको याद होगा पिछले महीने जब कॉकरोच जनता पार्टी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर आंदोलन किया था, तब 20 जुलाई पुलिस कार्रवाई में आरोपों के मुताबिक पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर बहुत सारे सवाल उठे थे। यही नहीं, सड़क से लेकर संसद, सुप्रीम कोर्ट में इस पर काफी बहस हुई। इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का संज्ञान लिया और इसकी जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी। यहां तक सबको यही लग रहा था कि यह विवाद अब शायद थम चुका है, विपक्ष दूसरे मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी में जुट गया है। लेकिन आज राहुल गांधी के धरने ने एक नए राजनीतिक टकराव को जन्म दिया और इस धरने से जानते हैं क्या हुआ। इस धरने के बाद पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर पहली FIR दर्ज हुई है, जिसे कांग्रेस और राहुल गांधी अब अपनी बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं। ये पूरा घटनाक्रम आज दोपहर करीब 12 बजे तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी एक पीड़ित छात्र और उसकी मां के साथ कनॉट प्लेस के पुलिस थाने पहुंच गए। इस पीड़ित छात्र का नाम साहिल लोहचब है, जिसे लेकर दावा है कि 20 जुलाई की घटना में पैलेट गन के छर्रे लगने से उसे चोटें आई। उस वक्त 24 जुलाई को राहुल गांधी ने इस छात्र के साथ एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, अगर आपको याद है, और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठाए थे। अब आज जब इस बात को 29 दिन पूरे हो रहे थे, तब राहुल गांधी इसी छात्र को लेकर कनॉट प्लेस के पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वो ये जानना चाहते थे कि पुलिस ने अगर इस मामले में कोई FIR दर्ज की है तो उस FIR का नंबर क्या है और उस FIR की जांच किस पुलिस अधिकारी या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सौंपी गई है। कनॉट प्लेस के थाने पहुंचकर जब राहुल गांधी को यह पता चला कि नई दिल्ली क्षेत्र के DCP सचिन शर्मा का दफ्तर संसद मार्ग पुलिस थाने में है, तो वो कनॉट प्लेस से यहां गए। इसके बाद उन्होंने और इस पीड़ित छात्र ने संसद मार्ग पुलिस थाने में DCP से मुलाकात की और उनसे ये पूछा कि इस मामले में जांच अब कहां पहुंची है, पुलिस ने क्या क्या कदम उठाए।

0: तत्काल ऐसा करने से इनकार किया और राहुल गांधी वहीं डीसीपी दफ्तर के बाहर बैठ गए। उन्होंने कहा कि 30 दिन लगे, 60 दिन लगे, मैं तो हिलूंगा नहीं। साफ कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक वो हिलेंगे नहीं। राहुल गांधी के धरने पर बैठते ही कांग्रेस में हलचल हो गई। कुछ ही समय में प्रियंका गांधी वाड्रा, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद, जयराम रमेश समेत कई नेता संसद मार्ग पहुंचे, संसद मार्ग थाने, और उनके साथ धरने पर बैठ गए, खड़े हो गए, जिस भी तरह से। बड़ी बात यह है कि इस धरने के दौरान भजन गाए गए और चरखा भी चलाया गया, जिससे राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म हुआ और सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने संसद मार्ग थाने के बाहर भारी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स पुलिस बल की तैनाती कर दी। कई घंटों तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी से इस मामले की औपचारिक शिकायत ली और इस दौरान पुलिस का कहना यह था कि उसे इस मामले में कोई पहले लिखित शिकायत नहीं मिली थी, इसीलिए अब तक उसने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। जबकि आरोपों के मुताबिक पैलेट गन से घायल हुए छात्र साहिल औचप को लेकर राहुल गांधी ने कुछ और ही दावा किया। राहुल गांधी ने साहिल औचप की मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से यह कहा कि उनके शरीर में पैलेट गन से 200 से अधिक छर्रे मौजूद हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एम्स ट्रॉमा सेंटर में साहिल की आंख का ऑपरेशन तो हुआ लेकिन ये छर्रे अब भी उसके पेट और शरीर के दूसरे हिस्सों में फंसे हैं, जबकि दिल्ली पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। कांग्रेस के बाकी नेताओं ने भी ऐसे ही आरोप लगाया कि साहिल लोचब ने 14 अगस्त को ही वकीलों के साथ लिखित शिकायत दे दी थी, 17 अगस्त को ईमेल भी किया लेकिन पुलिस ने ना तो कोई जवाब दिया ना एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा नहीं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी आईओ का नाम और नंबर जारी नहीं किया गया, जिसके कारण यह विवाद बढ़ता गया। आप इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे 6 घंटे तक चले इस धरने के बाद पुलिस को इस मामले में पहली एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज करनी पड़ी।
1: राहुल गांधी यहीं पे बैठे हुए हैं और पुलिस ने पार्लियामेंट स्ट्रीट के जो गेट है उनको बंद कर दिया है। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता बाहर भी बैठे हैं। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर जिस तरीके से कुर्सी लगा के राहुल गांधी, अब कुर्सी भी दिल्ली पुलिस ने ही दिलाई होगी, कुर्सी लगा के राहुल गांधी और उनके साथ साहिल लोचब बैठ गए हैं, दिल्ली पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन गया है। 14, 17, 2 तारीख को साहिल लोचब जाते हैं, उनको जवाब नहीं मिलता तो राहुल गांधी को वो ट्रिगर पॉइंट मिल गया कि दिल्ली पुलिस, क्योंकि आरोप उस पर है, राहुल गांधी के मुताबिक दोष उस पर है, इसलिए इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। और साहिल लोचब की जो स्थिति है, चश्मा पहने बैठे हैं, चोटें उनकी अभी भी नजर आ रही है।
2: 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट, देख लीजिए इनको, ये कहां से आए, ये इनके शरीर से आए, दिखाओ, ये इनके यहां लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। लेडी हार्डन की रिपोर्ट जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दम है कितना दमन में तेरे,
0: राहुल गांधी के इस धरने के बाद दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है वो अपने साथ में लेकर भी आई हूँ। ये FIR अगर आप देखेंगे तो ये अज्ञात लोगों के खिलाफ, अज्ञात आरोपी के खिलाफ दर्ज हुई। यानी FIR के मुताबिक अभी साहिल लोचा

0: पर पेलेट गन चलाने वाले सुरक्षा कर्मी या पुलिसकर्मी का नाम नहीं पता है, लेकिन ये FIR दो धाराओं में दर्ज हुई है। इनमें पहली धारा है 118(1). ये धारा तब लगती है जब कोई जानबूझकर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाता है, चोट पहुंचाने के लिए खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करता है, खासतौर पर ऐसा हथियार जिसे इस्तेमाल करने पर मौत होने की संभावना हो, इसलिए अहम है क्योंकि पेलेट गन को सरकार लेस लीथल वेपन यानी कम खतरनाक हथियार की श्रेणी में डालती है। इसके अलावा इस धारा में दोषी साबित होने पर अधिकतम 3 साल की जेल या फिर अधिकतम 20,000 रुपए का जुर्माना या दोनों भी लग सकते हैं। इस FIR में जो ये शख्स बताता है, दूसरी धारा 125 लगी है, वो बताने से पहले आपको जरा ये बता देती हूँ, इसे हमने इसीलिए हाईलाइट किया है आपके लिए, ये वाला जो पूरा हिस्सा है मैं पढ़ के सुनाती हूँ, क्योंकि फर्स्ट पर्सन अकाउंट में पूरा इसमें लिखा गया है कि ये शख्स बताता है कि उसको कैसे ये चोट लगी। तो जो हाईलाइटेड पार्ट है इसमें वो मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये शख्स क्या आरोप लगा रहा है। वहां पर आंसू गैस व लाठी चार्ज हुआ जिससे वहां भी भगदड़ मच गई, और इसी समय में मेरा चेहरा दूसरी तरफ था तो मुझे एकदम ऐसा लगा कि मेरे शरीर के दाहिनी और दिल के नजदीक छाती पर, बाजू व आंख पर कुछ फटा। तो मैंने मुड़कर देखा तो नीली पोशाक में एक व्यक्ति ने, जिसके हाथ में बड़ी सी बंदूक थी, उससे मुझे बहुत सारे धातु के पैलेट लगे, जिसके बाद मेरी समझ में पैलेट लगने से कुछ नहीं आया और छात्रों की भीड़ मेरे आसपास जमा हो गई। इसके बाद फिर 2-3 लाइनें हैं जिसमें इसके बाद मुझे बाइक पर बिठाया गया, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल ले गए जहां उन्होंने मेरी पहली MLC की, और उसके बाद मुझे सफदरजंग हॉस्पिटल भेज दिया गया, इसके बाद मुझे एम्स भेज दिया गया। फिर नीचे वो डॉक्टर के बारे में बताता है कि डॉक्टर ने मेरी MLC में साफ लिखा है कि मेरी आंख में वो जो चोट है वो पैलेट से लगी, और ये भी लिखा है कि आंख की रोशनी वापस आने की संभावना 1% से कम है। एम्स में मेरा सीटी स्कैन हुआ जिसने करीब 200 से अधिक छर्रे मेरे शरीर में है, जो कि आंख में, गर्दन में, छाती में, दिल के पास, जबड़े में, बाजू में इत्यादि है। और आखिर में वो लिखते हैं कि मेरे इलाज और मुआवजे के लिए मामले पर विचार किया जाए क्योंकि मेरा इलाज बहुत लंबा चलेगा, मैं अपना बयान दर्ज कराने और जांच में सहयोग के लिए तैयार हूं। तो ये साहिल ने अपनी तरफ से जो FIR लिखाई है, शिकायत लिखाई है, वो हमने आपको पढ़ के। इस FIR के दर्ज होने के बाद राहुल गांधी और पीड़ित छात्र साहिल लोचन ने क्या कहा है वो सुनिए।
1: अभी कहा शुरुआत हुई है, ये न्याय का पहला कदम है, केस लॉज हुआ है। देखिए जब से आपको ये गोली लगी 20 जुलाई एक महीना हो गया, छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, 3-4 छर्रे दिल के पास है, साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है।
2: अन्याय की हुई है ये FIR, अन्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है। पर मेरे को खुशी से ज्यादा दुख भी है कि LOP के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट लिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ, मेरे शरीर में 200 छर्रे, उसके बाद भी मेरी FIR को 8 घंटे में लिया गया, और शायद ये ली भी ना जाती अगर LOP मेरा साथ ना देते।
0: ये पूरा मामला 20 जुलाई का है जब जंतर मंतर से शुरू हुए संसद मार्च में पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप लगा था। आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी का था, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने इस मुद्दे को वैसे नहीं उठाया जैसे राहुल गांधी ने उठाया। कारण यह भी है कि पैलेट गन रैपिड एक्शन फोर्स को दी गई थी, CRPF के अधीन आती है ये। CRPF के जरिए राहुल गांधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को घेर सकते हैं। सुनिए,
3: हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है, और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल FIR दिया। तो आप समझ जाइए FIR रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे FIR करना, वो वाले भी चाहते थे FIR करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है।
0: खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि वंदे मातरम को लेकर मशहूर अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बीच टकराव क्यों हुआ, भारत आखिर इस मुद्दे पर दूसरे देशों से क्या सीख सकता है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत को लेकर इसी तरह के विवाद हुए, और ये विवाद इन देशों में धार्मिक टकराव का कारण भी बने। इसके बाद इन देशों ने ऐसे विवादों का हल कैसे निकाला, आज इसके बारे में आपको बताएंगे, और ये भी समझेंगे कि वंदे मातरम को लेकर 1937 की कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में क्या हुआ। लेकिन उससे पहले आप शर्मिला टैगोर का यह बयान सुनिए जिसमें उन्होंने वंदे मातरम को सिर्फ दो छंदों या अंतरों तक सीमित करने की मांग की है। कहा उन्होंने कि भारत में ज्यादातर लोग एक से ज्यादा भगवान में विश्वास रखते हैं, इसलिए ऐसे लोग कभी भी वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे सरस्वती नहीं कह पाएंगे। वंदे और सरकार को वंदे मातरम के दो छंद ही लागू करने चाहिए। सुनिए,
4: मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे काफी रिलीजन के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं, जो एक गॉड में विश्वास करते हैं, सिंगल गॉड, नॉट मैनी गॉड्स। और वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मैनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा, उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला टू टैंसा इज वेरी गुड।
0: शर्मिला टैगोर के इस बयान पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने आपत्ति जताई। उनका आरोप है कि शर्मिला टैगोर ने वंदे मातरम को हिंदू मुसलमान के संदर्भ में देखा, जबकि वंदे मातरम का गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है। अब ये बहस नई तो है नहीं, कई दशकों से वंदे मातरम को लेकर यही विवाद रहा है कि एक पक्ष इसे हिंदू धर्म से जोड़कर देखता है जबकि दूसरा पक्ष इसे राष्ट्रीय एकता और उसकी शक्ति के रूप में परिभाषित करता है। अगर राजनीतिक रूप से देखें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच इसे लेकर सबसे बड़ा विवाद यही है और कांग्रेस ने साफ कहा है कि वो वंदे मातरम पर अपने उसी रुख को जारी रखेगी जिस पर 1937 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में फैसला क्या फैसला हुआ था अब वो भी समझिए। 1930 के दशक में कई मुस्लिम नेता वंदे मातरम का विरोध कर रहे थे जिनमें मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे। उनका कहना यह था कि वंदे मातरम में करोड़ों भुजाओं और हथियार उठाने की शक्ति का चित्रण है, इसमें हिंदू देवी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जी का भी जिक्र आता है जो मुस्लिम्स के लिए मान्य नहीं हो सकता। जब यह विवाद हुआ तो कांग्रेस के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों ने गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर से इस विषय पर राय मांगी। जवाब में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि उन्हें वंदे मातरम के पहले हिस्से की कोमलता, भक्ति, मातृभूमि के सुंदर रूपों का वर्णन विशेष रूप से पसंद है, लेकिन बाकी छंद मुस्लिम संवेदनाओं को आहत कर सकते हैं। इस सुझाव के बाद साल 1937 जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई उसमें यह ऐलान हुआ कि अब ये राष्ट्रीय सभाओं में वंदे मातरम के केवल पहले दो अंतरे गाए जाएंगे, बाकी छंदों को मुस्लिम भाईचारे के लिए छोड़ दिया जाएगा। उस वक्त मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस फैसले का विरोध किया क्योंकि वो पूरे वंदे मातरम के खिलाफ थे। उन्हें यह भी स्वीकार नहीं था कि कांग्रेस की बैठकों में इसके दो छंद गाए जाए। बाद में यही व्यवस्था चलती रही लेकिन इसी साल वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार ने इसके सभी 6 छंद जो हैं वो अपनाने का फैसला किया। इसे लेकर एक कानून बनाया जिसके तहत वंदे मातरम का अपमान करने पर अधिकतम 3 जेल की सजा हो सकती है। अब ये तो पूरा विवाद हुआ लेकिन आज हम सिर्फ इस विवाद की बात करने नहीं आए हैं, आज हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि दूसरे देशों में जब इसी तरह की चीजें हुई तो उन्होंने कोई रास्ता निकाला क्या। सबसे पहले बांग्लादेश, बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने साल 1905 में लिखा। ये वही साल था जब अंग्रेज संयुक्त बंगाल का विभाजन करना चाहते थे, उन्होंने इसके विरोध में आमार सोनार बांग्ला की ये रचना लिखी थी। इसी में उन्होंने मातृभूमि की मां के रूप में परिभाषित किया था, मातृभूमि को मां बताया था, जिसका बाद में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने जाहिर तौर पर विरोध किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश एक मुस्लिम बहुल देश है, वहां मातृभूमि को मां मानकर पूजा नहीं किया जा सकता। कुछ हद तक विवाद भारत के वंदे मातरम जैसा ही था लेकिन बांग्लादेश की सरकारों ने इन आपत्तियों को हमेशा किनारे रखा। आज भी वहां का राष्ट्रगान यही आमार सोनार बांग्ला है जिसे हिंदू पृष्ठभूमि से आने वाले गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। कनाडा दूसरा उदाहरण, जहां कई सालों के विवाद के बाद 2018 में वहां के राष्ट्रगान को बदला गया। पहले इस राष्ट्रगान में यह भाव आता था कि देशभक्ति का प्रेम देश के सभी बेटों में मौजूद हो, लेकिन बाद में इस पर सवाल उठे और यह कहा गया कि देश प्रेम सिर्फ पुरुषों और बेटों के लिए क्यों रहे। 1980 में अपनाए गए इस राष्ट्रगान को लेकर 38 सालों तक विवाद रहा। 2018 में इसे बदला गया और इस राष्ट्रगान में यह भाव डाला गया कि हम सभी में देशभक्ति का प्रेम मौजूद। साल 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने राष्ट्रगान में बड़ा बदलाव किया। पहले राष्ट्रगान में ऑस्ट्रेलिया को एक युवा देश बताया जाता था, लेकिन बाद में कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए, कहा कि ऑस्ट्रेलिया को युवा बताना वहां के हजारों साल पुराने जो मूल लोग हैं उनके इतिहास का अपमान होगा। यह आपत्ति ज्यादा बढ़ी तो 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना राष्ट्रगान बदला। जर्मनी में 2018 में राष्ट्रगान की कुछ पंक्तियों को बदलने की मांग की गई, इसे लैंगिक रूप से निष्पक्ष बनाने के लिए कहा गया, लेकिन जर्मनी की सरकार ने कहा कि यह मांग सही नहीं है, राष्ट्रगान में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके अलावा इसराइल में भी राष्ट्रगान को लेकर बहुत विवाद रहा। वहां अरब मूल के इसराइली मुस्लिम अपने देश के राष्ट्रगान पर खड़े नहीं होते, क्योंकि उनका कहना है कि यह राष्ट्रगान यहूदियों की राष्ट्रीय आकांक्षा से जुड़ा है और मुस्लिम्स की बात नहीं करता, जबकि इसराइल इन आरोपों को गलत बताता है। इसराइल कहता है कि उसका राष्ट्रगान पूरे देश के लिए समर्पित है, और यही कारण है कि कई विवाद के बावजूद इसराइल ने अपना जो राष्ट्रगान है उसे कभी नहीं बदला, और इसके अपमान के खिलाफ कड़े कानून बनाए गए। यहां बात सिर्फ इन कुछ देशों की नहीं है, जापान में भी राष्ट्रगान का काफी विरोध होता है, क्योंकि कुछ लोग इसे उस दौर का प्रतीक मानते हैं जब जापान सैन्यवाद और साम्राज्यवाद के रास्ते पर चल रहा था। जब जापान की सरकार ने अपने स्कूलों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य किया तो कई शिक्षकों ने इसका विरोध किया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई, लेकिन जापान ने अपना राष्ट्रगान कभी नहीं बदला और लोगों का असली भाव जो है इसका वो समझाने की कोशिश की। संक्षेप में कहें तो ऐसे विवाद कई देशों में हुए, लेकिन ज्यादातर देशों ने धार्मिक आधार पर अपने राष्ट्रगान या राष्ट्रगीतों को संशोधित नहीं किया, अपने लोगों को इसका सही मतलब समझाने की कोशिश की। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में कल की रात काफी हलचल भरी रही। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर सवाल उठ रहे थे। पिछले 3 साल से रावलपिंडी के अडियाला जेल में बंद इमरान खान को लेकर कई तरह की अफवाहें भी फैलती रहीं। कभी उनकी मौत की अफवाहें उड़ी, कभी उन पर किए जा रहे जुल्म की खबरें आई, कई बार कहा गया कि उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि परिवार को नहीं दिखा रहे। अब इन सारी खबरों के बीच इमरान खान का परिवार, उनकी पार्टी पीटीआई के नेता सिर्फ इतना चाहते थे कि इस्लामाबाद के शिफा हॉस्पिटल में उनका मेडिकल चेकअप एक बार हो, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। 18 अगस्त को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मांग को पूरा करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों ने शहबाज और मुनीर को परेशानी में डाल दिया। परेशानी यह थी कि अगर इमरान खान की सेहत खराब हुई तो उनके परिवार, उनके पार्टी के कार्यकर्ता एक बड़ा हंगामा कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर इमरान जेल से बाहर आए तो पार्टी कार्यकर्ता उन्हें छुड़ाने की भी कोशिश कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, जिस इमरान खान के लिए इस वक्त पीटीआई के लाखों कार्यकर्ता 2-3 बार अलग अलग जगहों पर सड़कों पर आकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं, सरकार को ऐसा डर था कि अगर वही फिर से एक हलचल, एक आंदोलन शुरू हो जाएगा तो वो घिर जाएंगे, और मुनीर तो डर ही रहा था। लेकिन कल रात 12:30 बजे अचानक इमरान खान को अडियाला जेल से निकाला गया। कड़ी सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद के पीआईएमएस हॉस्पिटल लेकर चले गए। वहां पर इमरान खान की सेहत की जांच करवाई गई। रातों रात मेडिकल चेकअप पूरा होने के बाद उन्हें दोबारा से अडियाला जेल में जाकर बंद कर दिया गया। अभी मेडिकल हो गया, वापस जाइए। इमरान खान को जेल से अस्पताल लेकर जाना कोई सामान्य काम नहीं था, शायद इसलिए इस काम के लिए आधी रात का समय चुना शहबाज और मुनीर ने। वो कहता था ना वहां से बार बार कि आधी रात को हमला करते हैं, यहां आधी रात को लेकर छुप के जाते हैं इमरान खान। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी की गई कि जेल से अस्पताल तक के लिए एक कॉरिडोर बनाया गया था, जिसमें रास्ते में कई जगहों पर बैरिकेडिंग और कटीले तार तक लगा दिए गए थे। पाकिस्तान सरकार और सेना तो इतनी घबराई थी कि इमरान को जेल में से अस्पताल ले जाने से पहले उन्होंने अफवाह उड़ाई कि इमरान को शिफा हॉस्पिटल ले जाया गया ताकि सारे लोग वहां पर चले जाएं। शिफा हॉस्पिटल के बाहर अब बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी कर दी। इमरान के बहुत सारे समर्थक शिफा हॉस्पिटल के बाहर जाकर जम गए। अब प्लानिंग क्या थी, सोचिए यहां पर भी कैसा शातिराना काम करते हैं, हर जगह उल्टा दिमाग। प्लानिंग के तहत इमरान खान को पीआईएमएस ले जाया जाना था, लेकिन शिफा हॉस्पिटल के बाहर पूरा माहौल बना दिया ताकि वहां पर लोग जाएं और पिम्स में कोई ना आए, और शिफा हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर्स को वहीं पर बुलाया गया पीआईएमएस में। पाकिस्तानी सेना और सरकार इमरान खान के मेडिकल चेकअप को इमरान समर्थकों की नजरों से छिपा कर करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समर्थकों को जल्दी ही पता चल गया कि इमरान खान को तो अडियाला जेल से पिम्स ले जाया जा रहा है। इस पूरे रास्ते में इमरान खान के काफिले पर लोगों ने फूल बरसाए, समर्थन में खूब नारेबाजी हुई। इस पूरे घटनाक्रम में इतना सीक्रेट रखने की कोशिश हुई, सीक्रेटिव रखने की कोशिश की गई थी कि एक बार ये ऐसा लगा जैसे शहबाज शरीफ और मुनीर इमरान खान से डरे हुए हों, उन्हें एक सेकंड के लिए भी जेल से बाहर नहीं रखना चाहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके समर्थक छुड़ा ही ले जाए। जैसे इमरान खान का मेडिकल चेकअप पूरा हुआ, तुरंत जेल पहुंचाया और इसी के बाद पाकिस्तान के सूचना उर्फ प्रोपेगेंडा मंत्री अताउल्ला तरार ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके ये बताना शुरू किया कि इमरान खान का मेडिकल चेकअप पूरा हो गया है, वो पूरी तरह से फिट है। अब पीटीआई के नेता मानते हैं कि शहबाज और मुनीर इमरान खान से कितना डरते हैं, ये इस पूरे घटनाक्रम से साबित होता है। इमरान का मेडिकल चेकअप दिन में हो सकता था लेकिन रात का समय चुना। आखिर समय तक अगर आप देखिए तो परिवार को नहीं बताया बल्कि गलत अफवाहें फैलाई। इमरान के परिवार पीटीआई के नेताओं को इसके बारे में नहीं बताया कि कहां ले जा रहे हैं। इसके अलावा पीटीआई की शर्त और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ये मेडिकल चेकअप शिफा हॉस्पिटल में होना था लेकिन इसके लिए पीआईएमएस को चुना गया ताकि इमरान की असली स्थिति को छिपाया जा सके और उनके समर्थकों को वहां पर उनको देखने से और आंदोलित होने से रोका जाए। कल की रात शहबाज और मुनीर के लिए कितनी भारी रही होगी कल्पना कीजिए। पूरा घटनाक्रम पर बनाई गई अपनी ये रिपोर्ट आपको जरा दिखाते हैं।
5: बानी पीटीआई को उनके सेल में शिफ्ट कर दिया गया है। बानी पीटीआई को अडियाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया है।
6: हाल देखिए ऐसे लग रहा है जैसे 14 अगस्त का जश्न मनाया जा रहा हो। तमाम दफ्तरों में
0: पाकिस्तान सरकार के मुताबिक इमरान खान पूरी तरह से फिट है क्योंकि उनके मेडिकल चेकअप में सब कुछ सामान्य है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान का परिवार शहबाज और मुनीर के रवैये से नाराज है। इमरान खान की बहन डॉक्टर उज्मा खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए दावा किया कि इमरान की सेहत ठीक नहीं है, मेडिकल जांच के नाम पर धोखा हुआ। उज्मा ने इमरान के हवाले से बताया कि अडियाला जेल में उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जाता, टॉर्चर किया जाता है। उज्मा ने मेडिकल जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि इमरान की आंखों और ब्लड प्रेशर की जांच की गई है लेकिन ब्लड टेस्ट तो नहीं किए गए।
7: तो एक बात उन्होंने बस एक बात और वो डॉक्टर्स कहते हैं आप ना करें आपका ब्लड प्रेशर इससे चढ़ता है। वो बार बार एक ही चीज उन्होंने कही, कहती मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ मेरा इतना मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। मुझे वो कहते हैं जो एक कोई और डॉक्टर भी आता उसने कहा था ह्यूमन कॉन्टैक्ट नहीं होने की वजह से इनको इनकी तबीयत खराब होती है। कहते हैं 10 महीने से मेरे पास कहते ना रीडिंग मटेरियल ना टीवी। कहते जब मैं कहते जून अब उनको डेट कहते जुलाई उनसे पूछे बताओ मैं कब मेरा जुलाई में था। कहते मेरा सर में कुछ होने लग गया।
0: और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हैदराबाद में एक सांसद के बेटे ने अपनी 6 करोड़ रुपए की एस्टन मार्टिन कार से एक 26 साल की सेल्स एग्जीक्यूटिव को कुचल दिया। एक्सीडेंट के बाद उस लड़की की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। यह एस्टन मार्टिन कार आंध्र प्रदेश की जनसेना पार्टी के राज्यसभा सदस्य लिंग मनेनी रमेश के 23 साल के बेटे लिंग मनेनी संजुश चला रहे थे। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सांसद के बेटे को इस मामले में गिरफ्तार ही नहीं किया गया है। यह हादसा हैदराबाद के मधापुर रोड पर एक मॉल के सामने हुआ। हादसे का शिकार हुई 26 साल की पीड़ित लड़की भारती मुखी दोपहर के समय लंच के लिए बाहर आई थी और वो उसकी जिंदगी का आखिरी दफ्तर से निकलना हो गया क्योंकि वो जब तक समझ पाती तब तक एक तेज रफ्तार एस्टन मार्टिन कार ने उसे इतनी जोर से टक्कर मारी कि घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इस हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने उसे बचाने की कोशिश जरूर की लेकिन एक्सीडेंट से उसके सिर पर गंभीर चोटें आई थी, खून बहुत ज्यादा बह गया था। घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों ने इस हादसे के बाद वीडियो बना लिया था जिसमें पीड़ित भारती और उसे एस्टन मार्टिन कार से टक्कर मारने वाला लिंग मनेनी संजुश नजर आ रहा है। टक्कर के बाद आरोपी अपनी गाड़ी से बाहर भी आया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
8: स्टॉप स्टॉप चिल्ला जोड़ कहीं को भी इतना भागते आते
0: भारती। आप कानून व्यवस्था का दुखद सच देखिए, 16 अगस्त की दोपहर को हुए इस हादसे के बाद आज 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन। इस दौरान आरोपी सांसद पुत्र को गिरफ्तार ही नहीं किया गया है, और तो और अब ये खबर आ रही है कि उसे गिरफ्तारी से पहले ही जमानत दे दी गई है, क्योंकि एक लड़की को कुचल कर मारने के केस में उस पर जो धाराएं लगी हैं उसमें गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं होती है। जिस एक्सीडेंट में 26 साल की भारती की मौत हुई उसमें आरोपी संजूष पर पुलिस ने BNS की धारा 106(1) लगाई है। अब ये धारा क्या है? ये धारा 106(1) एक जमानती धारा है। ये तब लगाई जाती है जब जांच में ये पाया जाता है कि ड्राइवर लापरवाही के साथ गाड़ी चला रहा था और उसकी वजह से किसी की मौत हुई है। आज केस में दोषी पाए जाने पर 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि नियमों के तहत पुलिस इस केस में आरोपी को गिरफ्तार भी कर सकती थी, उसके बाद जो जमानत की प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती थी, लेकिन पुलिस ने ये जहमत ही नहीं उठाई। उसने नोटिस दिया और नोटिस देकर छोड़ दिया रफा दफा, और बाद में जमानत भी हो गई। मुमकिन है कि पुलिस का ये सॉफ्ट एक्शन इसलिए हुआ क्योंकि संजूष के पिता लिंग मरेनी रमेश एक्टर पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के राज्यसभा सदस्य है, और ये पार्टी आंध्र प्रदेश में इस वक्त TDP के साथ सरकार में शामिल है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और रिश्ता मरने से पहले बहुत देर तक वेंटिलेटर पर रहता है, उसे बचाने की कोशिश जरूर करिए। नमस्कार।

0: दिल्ली में एक FIR दर्ज करवाने में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 7 घंटे लग गए। एक महीने पहले छात्रों के आंदोलन में कथित तौर पर पैलेट गन से घायल हुए एक छात्र की FIR करवाने के लिए राहुल ने आंदोलन किया। सुबह 11:30 बजे राहुल दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे। उनके साथ में पैलेट गन का पीड़ित भी था। बस मांग ये थी कि FIR दर्ज की जाए, लेकिन पुलिस ने दर्ज करने से मना कर दिया, जिसके बाद राहुल गांधी वहीं धरने पर बैठ गए। शाम को खबर आई कि पुलिस FIR दर्ज करने के लिए तैयार हो गई है। इस बीच राहुल से DCP सचिन शर्मा लगातार बात करते रहे। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि दिल्ली के थाने में FIR दर्ज होने में 8 घंटे लगे तो हमारे देश के अन्य थानों का क्या हाल होगा।
1: ये न्याय का पहला कदम है, केस लॉज हुआ है। देखिए,
2: जब से आपको ये गोली लगी
1: 20 जुलाई को, एक महीना हो गया, छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, 3-4 छर्रे दिल के पास है, साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11:30 बजे हम यहाँ आए, 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं,
2: पौने सात हो गए,
1: तब जाके FIR फाइल किए। अब आप इमेजिन कीजिए, इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा। अब इमेजिन कीजिए गाँव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है, और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल FIR दिया। तो आप समझ जाइए FIR रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे FIR करना, वो वाले भी चाहते थे FIR करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है।
0: साहिल के FIR की जानकारी आज तक को लगी, जिसमें साहिल ने बताया कि नीले कपड़े पहनने वाले व्यक्ति के हाथ में बड़ी सी बंदूक थी, जिसने उस पर 4-5 बार पैलेट गन चलाई, जिससे उसकी दाई आंख की रोशनी चली गई।
3: न्याय की हुई है ये FIR, न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है। पर मेरे को खुशी से ज्यादा दुख भी है कि LOP के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट लिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ, मेरे शरीर में 200 छर्रे, उसके बाद भी मेरी FIR को 8 घंटे में लिया गया, और शायद ये ली भी ना जाती अगर LOP मेरा साथ ना देते। 14 अगस्त से मैं FIR के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7-8 दिन के बाद मेरी FIR ली गई।
2: उम्मीद थी आपकी FIR रजिस्टर्ड होगी, जब ये कल बात हुई और आप यहाँ आए सुबह, जो पुलिस ने कहा उसके बाद
3: नहीं, मेरे को विश्वास था जी LOP आगे तो कंप्लेंट तो होनी है, ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है।
0: राहुल गांधी बहुत अच्छी तरह से ये समझ चुके हैं कि आंदोलनों की राजनीति लंबे समय तक फायदा देती है, और इसीलिए पिछले 1 महीने से राहुल गांधी ने इस बार धरना पॉलिटिक्स पर ज्यादा जोर दिया, चाहे वो जंतर मंतर के छात्रों का मुद्दा संसद में उठाना हो या फिर इस आंदोलन में पुलिस की हिंसा का मुद्दा हो। राहुल गांधी का एजेंडा एकदम अब क्लियर लग रहा है।
4: राहुल गांधी की धरना पॉलिटिक्स का दूसरा एपिसोड। 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन हुआ जिसमें हिंसा हुई, तो 21 जुलाई को राहुल गांधी ने पहले प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया था। अब करीब 1 महीने के बाद 21 अगस्त को राहुल गांधी ने आज संसद मार्ग थाने के बाहर धरना था। आरोप है कि दिल्ली पुलिस एक पैलेट गन से घायल पीड़ित की एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है।
1: हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया एफआईआर नहीं हो सकता है। दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे।
4: राहुल गांधी पैलेट पीड़ित 19 साल के साहिब लोचाप के परिवार के साथ धरने पर बैठे और आरोप लगाया कि पैलेट की चोट से आंख की रोशनी गंवा चुके साहिल के साथ न्याय नहीं हो रहा।
1: ये है एम्स की रिपोर्ट जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे।
4: राहुल गांधी इन्हीं साहिल को लेकर पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, तब भी उन्होंने दिल्ली पुलिस और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। लेकिन शायद दिल्ली पुलिस को ये अंदाजा नहीं था कि राहुल गांधी अब उन्हीं के थाने के बाहर इस पीड़ित को लेकर धरने पर बैठ जाएंगे। उनके साथ प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और जयराम रमेश भी मौजूद थे। राहुल का आरोप है कि 20 जुलाई के प्रदर्शन में साहिल पैलेट गन से घायल हुए। 14 अगस्त को उन्होंने दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी लेकिन उन्हें शिकायत की कॉपी ही नहीं मिली। 17 अगस्त को ईमेल और फोन से भी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई लेकिन कुछ नहीं हुआ।
5: साहिल पर जो गैर कानूनी ढंग से पुलिस एक्शन हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, उस संदर्भ में एफआईआर दर्ज किया जाए और एफआईआर नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर उनको दिया जाए। मांग सिंपल है, एफआईआर दर्ज करो, रजिस्ट्रेशन नंबर दो और हम यहां से निकलेंगे।
4: पीड़ित छात्र की शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं करने के पीछे कोई वाजिब कारण नहीं बताया गया है, लेकिन दलील यह है कि 20 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता और पुलिस वालों पर हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यों की हाई पावर कमेटी बनाई। ये कमेटी पैलेट गन, इलेक्ट्रिक शॉक बैटन के इस्तेमाल से लेकर महिलाओं से अभद्रता और पुलिस वालों पर हमले के तथ्यों की जांच करेगी। इसके लिए कमेटी घटना के दिन के सारे ड्रोन, सीसीटीवी, बॉडी कैम रिकॉर्डिंग के सबूतों की मदद भी लेगी और दोनों पक्षों के घायलों को अंतरिम मुआवजा देने पर भी रिपोर्ट देगी। बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है?
6: जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं।
4: दरअसल 20 जुलाई को चली पैलेट गन को लेकर पहले तो दिल्ली पुलिस और सरकार ने इनकार किया, फिर जीडी एंट्री में 2 राउंड पैलेट फायरिंग की पुष्टि हुई और मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट में भी पता चला। आरटीआई में खुलासा हुआ कि लेडी हार्डिंग अस्पताल में पैलेट गन जैसी चोट से जख्मी 9 घायल पहुंचे थे। इसी तरह सफदरजंग के दस्तावेज में पता चला कि एक मरीज पैलेट गन से जख्मी आया था। पैलेट के पीड़ित साहिब लोचाप को राहुल ने पहले भी मीडिया के सामने पेश किया था और उनके शरीर पर सैकड़ों पैलेट के निशान दिखाए थे, जिसके बाद बाकी पैलेट पीड़ित प्रशांत और इरशाद नाम के 2 छात्रों की ओर से पूर्व आईपीएस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। मौसमी सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: और अब खबर वंदे मातरम को लेकर जारी राजनीति की। जहां केरल में विपक्ष वंदे मातरम का विरोध कर रही है तो सरकार विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है।
7: वंदे मातरम पर 2-6 का विवाद किस मुकाम तक पहुंच गया है, ये तस्वीर उसकी वानगी है। जगह है त्रिवेंद्रम का कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और विरोध करते ये छात्र SFI के हैं, कह रहे हैं कि ये केरलम है, यहाँ आप पूरा वंदे मातरम नहीं गा सकते। खबरों के मुताबिक त्रिवेंद्रम के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के तहत युवा प्रोफेशनल्स का राउंड टेबल आयोजित किया गया था। राउंड टेबल से पहले वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ तो SFI के छात्रों ने बीच में ही रुकवा दिया। SFI के छात्रों का कहना था कि ये केरलम है और यहाँ आप पूरा वंदे मातरम नहीं गा सकते।
8: कौन सी मंदिर में हमें खोल दिया एंड यू कैन सबसे
7: बीजेपी 15 अगस्त के कार्यक्रम में वंदे मातरम न गाए जाने को लेकर आज सड़कों पर है। बीजेपी ने केरलम के सभी जिला मुख्यालयों पर वंदे मातरम कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं कांग्रेस भी वंदे मातरम के दो छंद गाने पर अड़ी है, जिसे लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है।
9: और यदि राष्ट्रगीत का सम्मान करने से कोई मना करता है तो उसकी देशभक्ति पर भी सवालिया निशान स्वाभाविक रूप से लग जाता है। कांग्रेस 1937 के जिस प्रस्ताव की बात करती है, वह कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की कट्टरपंथी मांगों के आगे नतमस्तक होकर पारित किया था और उसका खामियाजा भविष्य में देश को विभाजन के रूप में झेलना पड़ा था।
10: देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया।
7: बहरहाल वंदे मातरम पर अभी संग्राम खत्म होता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: वंदे मातरम पर जारी घमासान का असर अब बॉलीवुड पर भी देखने को मिल रहा है। शर्मिला टैगोर ने वंदे मातरम की दो पद यानी कि दो स्टेंजा गाने का समर्थन किया, जिस पर कंगना रनौत भड़क गई।
7: वंदे मातरम पर जारी सियासत के बीच शर्मिला टैगोर की एंट्री ने आग में घी का काम किया है।
11: और वंदे मातरम के जो स्टेंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला टू टैंजा इज वेरी गुड।
7: शर्मिला टैगोर का ये बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि वो रविंद्रनाथ टैगोर के खानदान से ताल्लुक रखती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ही राष्ट्रगान के रचयिता थे। इसके अलावा शर्मिला टैगोर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC की अध्यक्ष रहीं। वो 13 अक्टूबर 2004 से 31 मार्च 2011 तक इस पद पर रहीं और तब केंद्र में UPA की सरकार थी। खैर, सिर्फ इसलिए शर्मिला टैगोर की दलील को सियासी चश्मे से देखना सही नहीं होगा। बहरहाल शर्मिला टैगोर की मुखालफत में बॉलीवुड की एक और अभिनेत्री सामने आ गई हैं, जिनका नाम कंगना रनौत है। एक कलाकार के तौर पर मुझे हैरानी होती है कि कला या कविता के बारे में उनकी सोच इतनी सीमित और बनावटी कैसे हो सकती है। किसी भी कविता या गाने में शब्द रूपक यानी मेटाफर्स होते हैं। कवि या कलाकार मनचाहा असर पैदा करने के लिए तरह तरह की कल्पनाओं और अद्भुत तुलनाओं का इस्तेमाल करते हैं। वंदे मातरम आजादी की लड़ाई की भावना है। बंकिम चंद्र जी देश को अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। आप कला की इतनी महान रचना को सिर्फ एक धार्मिक रीति रिवाज कैसे कह सकती हैं? इस तरह शर्मिला टैगोर के खिलाफ कंगना रनौत ने मोर्चा खोल दिया और इस मोर्चे से उन्होंने शर्मिला टैगोर पर हमलों की बौछार कर दी। कंगना आगे कहती है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि उन्हें ऐसे युवा चाहिए जिनका शरीर लोहे जैसा हो, हड्डियां स्टील की हो और नसों में बिजली जैसी ताकत दौड़ती हो। वो मौसम का हाल नहीं बता रहे थे बल्कि वो शक्ति के जागरण का आह्वान कर रहे थे। कृपया हिंदू मुस्लिम वाली सोच से बाहर आइए, भले ही हम एक ईश्वर में विश्वास करते हों। कंगना और शर्मिला के बीच ये लड़ाई बता रही है कि वंदे मातरम के दो छंद या छह छंद के सवाल पर बॉलीवुड में भी बेचैनी है। आज तक ब्यूरो।
0: खबर जयपुर से आई हंगामे की तस्वीरों की, जहां प्राथमिक स्कूल जा रही कॉकरोच जनता पार्टी पर गांव वालों ने हमला कर दिया। कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका भी यहां मौजूद थे, जिन्होंने बीजेपी पर इस हमले का आरोप लगाया।
12: यहां पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं, उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में। ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है।
7: जयपुर में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने आई कॉकरोच जनता पार्टी की टीम को लात घूसों से पीटा, किसी को पत्थरों से मारा, किसी पर लात घूसे बरसाए।
12: ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में और इनको यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष राके के साथ ये मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी। गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं। ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है और रामपुरा में यहाँ पर ये देखिए लात घूसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक एक की पिटाई कर रहे हैं यहाँ पर, गांव वाले पीछे भाग रहे हैं।
7: जयपुर के रामपुरा गांव के इसी स्कूल की जांच पड़ताल के लिए कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी कार्यकर्ता गांव में पहुंचे थे। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका की अगुवाई में युवाओं का ग्रुप गांव में घुसा तो गांव वाले भी पहले से तैयार बैठे थे।
12: आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं।
13: आज आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर। इनको डर है कि कहीं सीजेपी वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे और सीजेपी वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए। सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा।
7: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी है। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी पर हुए हमले पर कांग्रेस भी सरकार को घेर रही है।
14: वे चाहते हैं कि हमारी नाकामी को छुपी रहे और जो बदहाली है स्कूलों में, व्यवस्था है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, इतने बच्चों की मौत हो चुकी है और स्थिति बहुत गंभीर है।
7: जयपुर के जिस स्कूल के निरीक्षण को लेकर सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ उसकी सच्चाई ये है कि गांव का स्कूल जर्जर है। जिस इमारत में क्लास चलती थी उसकी हालत इतनी खराब है कि कभी भी ढह जाए। इसीलिए गांव वालों ने स्कूल के सामने ही एक तबेले में व्यवस्था कर दी जहां कक्षाएं चलती हैं।
12: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो बड़े बड़े वादे करते हैं बच्चों के फ्यूचर को लेकर, ये देखिए तस्वीर, यहाँ पर गेट पर यहाँ पर कुंटी लगा रखी है और यहाँ पर अंदर ये आपको ये भैंसों का तबेला दिख रहा होगा।
7: अब सवाल ये है कि आखिर स्कूल के सुधार से किसी को क्या परेशानी हो सकती है। गांव वाले कह रहे हैं कि समस्या शिक्षा सुधार से नहीं सीजेपी से है।
15: ऐसे कार्यकर्ता नहीं चाहिए कॉकरोच वाले, इनका तो घोर विरोध करेगा ग्रामीण, क्योंकि ये देश के नहीं है तो हमारे क्या हो सकते हैं। जब शिक्षा व्यवस्था सुधार करना ही उनका एक मुद्दा था तो फिर वो झारखंड क्यों नहीं गए? जब पिछले 15 दिनों से वहां अनशन हो रहा था तो झारखंड क्यों नहीं गए अभिजीत दीप के?
7: इससे पहले भी जयपुर में रांका के स्कूल जाने पर हंगामा हुआ था। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्कूलों की हालत गंभीर है जहां एक बड़े सुधार की जरूरत है। आज तक ब्यूरो
0: खबर झारखंड की, जहां हाईकोर्ट के निर्णय के बाद नाराजगी का पूरा खेल ही बदल गया। आंदोलन से सरकार को मनवाने वाले छात्र अब सरकार पर कोर्ट में कमजोर पक्ष रखने का आरोप लगा रहे हैं और एक बार फिर सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं।
16: झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर स्टे लगाकर दो परीक्षाओं से चयनित कर्मचारियों को राहत दी तो दूसरे कर्मचारी भी राहत की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए।
17: हम लोग भी वही रास्ता अख्तियार करेंगे और हम लोग भी स्टे लेके आएंगे।
18: हाँ, क्या लगता है सरकार ने ये फैसला गलत किया?
17: सरकार ने एक तरफा फैसला किया है सरकार ने, मुझे लगता है कि अपने सारे रास्तों को एग्जॉस्ट नहीं किया। ये एक हेस्टी डिसीजन है जो कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेशर बनाने से उसके दबाव में आके सरकार ने एक हेस्टी डिसीजन।
16: इस बीच हाईकोर्ट के फैसले से वो छात्र भी नाराज जिनकी मांग पर सोरेन सरकार ने इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया था। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के बैनर तले प्रदर्शन करने वाले छात्र आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष सही से नहीं रखा।
19: आप ये धोखा सिर्फ झारखंड के लाखों छात्रों को नहीं दिए हैं, झारखंड के तमाम आम आवाम को दिए हैं, झारखंड के उन तमाम अभिभावक को दिए हैं जिन्होंने अपने बच्चा को, अपने बेटा और बेटियों को पिछले 26 दिनों से अपने हक और अधिकार के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भेजने का काम किया।
16: 16 दिन तक अनशन करने वाले देवेंद्र महतो ने भी चेतावनी दी कि सरकार ने लापरवाही बरती तो बड़ा आंदोलन करेंगे।
20: सरकार अपना पक्ष रखने में, अपना जांच रिपोर्ट रखने में अगर किसी तरीके से लिपापोती करती है, किसी तरीके से कोताही बरतती है तो यहाँ के छात्र बिल्कुल अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब जेपी के तर्क पर, जेपी आंदोलन के तर्क पर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, ये हम आज ऐलान करते हैं।
16: सोरेन सरकार के लिए भी विचित्र स्थिति पैदा हो गई। एक गुट की मांग माने तो दूसरा नाराज और दूसरे की मांग माने तो पहला नाराज। सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।
0: खबर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे की, जहां बॉर्डर सिक्योरिटी पर अमित शाह ने ममता बैनर्जी को घेरा। सिलीगुड़ी में कहा कि हमें घुसपैठ पर अंकुश लगाना था, हम पूरी सीमा पर बाड़ लगाना चाहते थे लेकिन ममता ने हमें कभी जमीन ही नहीं दी।
10: हम तो पुराने सीएम साहिबा को भी बुलाते थे, वो एसएसबी के कार्यक्रम में आना नहीं चाहती थी। हमने तो आपको बुलाया, आप आ गए, आपका स्वागत है। एसएसबी हो, बीएसएफ हो, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक सरकार की एजेंसी नहीं है। ये अहर्निश तप तपस्या और परिश्रम करकर देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला बल है। इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिसी, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी गवर्नमेंट, सभी राजनीतिक दलों को, चाहे बंगाल में हो या केंद्र में जो सरकार हो, सभी ने जवानों के साथ आत्मीय रिश्ता रखना चाहिए। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर ही 1129 एकड़ भूमि, जो हम 2014 से मांगते थे, हमें मिलती नहीं थी। बीएसएफ और एसएसबी के लिए 1129 एकड़ भूमि शुभेंदु जी ने दे दिया। हम ममता बनर्जी के हाथ पैर जोड़कर थक गए, मगर हमें भूमि नहीं दी। एक बार उन्होंने आग्रह रखा, मैं उनकी ऑफिस में भी पहुंच गया कि ममता जी, वो भारतीय जनता पार्टी को जमीन नहीं देना है, बीएसएफ को देना है, आप कृपया दे दीजिए। हाँ बोला, मगर गई तब तक नहीं दी।
0: छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: राहुल गांधी के धरने के बाद पैलेट गन केस में दिल्ली के संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज। राहुल का कटाक्ष, अमित शाह और गृह सचिव ने दी अनुमति, बोले न्याय की दिशा में पहला कदम। राहुल पर बीजेपी का पलटवार, नड्डा बोले वंदे मातरम पर घिरने के बाद कांग्रेस का धरना, स्मृति बोली विरोध के नाम पर स्वांग। सीएम योगी ने अखिलेश को फिर घेरा, कहा इनके पीडीए का पी पिछड़ा से पंडित हुआ और एक दिन होकर जाएगा पाकिस्तान। अखिलेश का पोस्ट, एक रंगी क्या जाने पीडीए के बहुरंग। इधर नवीन की नई टीम बनने के बाद बीजेपी की तीन बड़ी बैठक, राष्ट्रीय पदाधिकारियों प्रदेश अध्यक्षों के साथ चुनावी तैयारियों और संगठन की रणनीति पर मंथन। झारखंड में रांची समेत कई शहरों में भिड़े छात्र और जेएमएम कार्यकर्ता, सीएम सोरेन का पुतला फूंकने पर हंगामा, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म फोरम का प्रदर्शन। दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज करवाने में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 7 घंटे लग गए। एक महीने पहले छात्रों के आंदोलन में कथित तौर पर पैलेट गन से घायल हुए एक छात्र की एफआईआर करवाने के लिए राहुल ने आंदोलन किया। सुबह 11:30 बजे राहुल दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे। उनके साथ में पैलेट गन का पीड़ित भी था। बस मांग ये थी कि एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन पुलिस ने दर्ज करने से मना कर दिया, जिसके बाद राहुल गांधी वहीं धरने पर बैठ गए। शाम को खबर आई कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार हो गई है। इस बीच राहुल से डीसीपी सचिन शर्मा लगातार बात करते रहे। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि दिल्ली के थाने में एफआईआर दर्ज होने में 8 घंटे लगे तो हमारे देश के अन्य थानों का क्या हाल होगा।
1: ये न्याय का पहला कदम है, केस लॉज हुआ है। देखिए,
2: जब से आपको ये गोली लगी
1: 20 जुलाई को, 1 महीना हो गया, 6 शरीर में है, 3 6 आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, 3 4 छर्रे दिल के पास है, साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11:30 बजे हम यहाँ आए, 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, 7:45 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल किए। अब आप इमेजिन कीजिए, इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिलता। अब इमेजिन कीजिए गाँव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है, और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल ओके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है।
0: साहिल के एफआईआर की जानकारी आज तक को लगी, जिसमें साहिल ने बताया कि नीले कपड़े पहनने वाले व्यक्ति के हाथ में बड़ी सी बंदूक थी, जिसने उस पर 4-5 बार पैलेट गन चलाई, जिससे उसकी दाई आंख की रोशनी चली गई।
3: न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है, पर मेरे को खुशी से ज्यादा दुख भी है कि एलओपी के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट लिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ, मेरे शरीर में 200 छर्रे, उसके बाद भी मेरी एफआईआर को 8 घंटे में लिया गया, और शायद ये ली भी ना जाती अगर एलओपी मेरा साथ ना देते। 14 अगस्त से मैं एफआईआर के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी एफआईआर ली गई।
4: उम्मीद थी आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी जब ये कल बात हुई और आप यहाँ आए सुबह, जो पुलिस ने कहा उसके बाद
3: नहीं, मेरे को विश्वास था जी आलोक के आगे तो कंप्लेंट तो होनी है, ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ, कि आपको विश्वास रखना आपकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में।
0: राहुल गांधी बहुत अच्छे तरह से ये समझ चुके हैं कि आंदोलनों की राजनीति लंबे समय तक फायदा देती है और इसीलिए पिछले एक महीने से राहुल गांधी ने इस बार धरना पॉलिटिक्स पर ज्यादा जोर दिया, चाहे वो जंतर मंतर के छात्रों का मुद्दा संसद में उठाना हो या फिर इस आंदोलन में पुलिस की हिंसा का मुद्दा हो। राहुल गांधी का एजेंडा एकदम अब क्लियर लग रहा है।
5: यह है राहुल गांधी की धरना पॉलिटिक्स का दूसरा एपिसोड। 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन हुआ जिसमें हिंसा हुई, तो 21 जुलाई को राहुल गांधी ने पहले प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया था। अब करीब एक महीने के बाद 21 अगस्त को राहुल गांधी ने आज संसद मार्ग थाने के बाहर धरना दिया। आरोप है कि दिल्ली पुलिस एक पैलेट गन से घायल पीड़ित की FIR दर्ज नहीं कर रही है।
1: हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज FIR दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया FIR नहीं हो सकता है, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे।
5: राहुल गांधी पैलेट पीड़ित 19 साल के साहिब लोचाप के परिवार के साथ धरने पर बैठे हैं और आरोप लगाया कि पैलेट की चोट से आंख की रोशनी गंवा चुके साहिल के साथ न्याय नहीं हो रहा।
1: एम्स की रिपोर्ट जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे।
5: राहुल गांधी इन्हीं साहिल को लेकर पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, तब भी उन्होंने दिल्ली पुलिस और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। लेकिन शायद दिल्ली पुलिस को ये अंदाजा नहीं था कि राहुल गांधी अब उन्हीं के थाने के बाहर इस पीड़ित को लेकर धरने पर बैठ जाएंगे। उनके साथ प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और जयराम रमेश भी मौजूद हैं। राहुल का आरोप है कि 20 जुलाई के प्रदर्शन में साहिल पैलेट गन से घायल हुए। 14 अगस्त को उन्होंने दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी लेकिन उन्हें शिकायत की कॉपी ही नहीं मिली। 17 अगस्त को ईमेल और फोन से भी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई लेकिन कुछ नहीं हुआ।
6: साहिल पर जो गैर कानूनी ढंग से पुलिस एक्शन हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, उस संदर्भ में FIR दर्ज किया जाए और FIR नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर उनको दिया जाए। मांग सिंपल है, FIR दर्ज करो, रजिस्ट्रेशन नंबर दो और हम यहां से निकलेंगे।
5: पीड़ित छात्र की शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं करने के पीछे कोई वाजिब कारण नहीं बताया गया है, लेकिन दलील यह है कि 20 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता और पुलिस वालों पर हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यों की हाई पावर कमेटी बनाई। ये कमेटी पैलेट गन, इलेक्ट्रिक शॉक बैटन के इस्तेमाल से लेकर महिलाओं से अभद्रता और पुलिस वालों पर हमले के तथ्यों की जांच करेगी। इसके लिए कमेटी घटना के दिन के सारे ड्रोन, CCTV, बॉडी कैम रिकॉर्डिंग के सबूतों की मदद भी लेगी और दोनों पक्षों के घायलों को अंतरिम मुआवजा देने पर भी रिपोर्ट देगी। BJP सवाल उठा रही है कि क्या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है?
7: जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है? क्या सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं?
5: दरअसल 20 जुलाई को चली पैलेट गन को लेकर पहले तो दिल्ली पुलिस और सरकार ने इनकार किया, फिर GD एंट्री में 2 राउंड पैलेट फायरिंग की पुष्टि हुई और मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट में भी पता चला। RTI में खुलासा हुआ कि लेडी हार्डिंग अस्पताल में पैलेट गन जैसी चोट से जख्मी 9 घायल पहुंचे थे। इसी तरह सफदरजंग के दस्तावेज में पता चला कि एक मरीज पैलेट गन से जख्मी आया था। पैलेट के पीड़ित साहिब लोचाप को राहुल ने पहले भी मीडिया के सामने पेश किया था और उनके शरीर पर सैकड़ों पैलेट के निशान दिखाए थे, जिसके बाद बाकी पैलेट पीड़ित प्रशांत और इरशाद नाम के 2 छात्रों की ओर से पूर्व IPS ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। मौसमी सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: और अब खबर वंदे मातरम को लेकर जारी राजनीति की। जहां केरल में विपक्ष वंदे मातरम का विरोध कर रही है, तो सरकार विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है।
8: वंदे मातरम पर दो छेक का विवाद किस मुकाम तक पहुंच गया है, ये तस्वीर उसकी वानगी है। जगह है त्रिवेंद्रम का कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और विरोध करते ये छात्र SFI के हैं, कह रहे हैं कि ये केरलम है, यहाँ आप पूरा वंदे मातरम नहीं गा सकते। खबरों के मुताबिक त्रिवेंद्रम के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के तहत युवा प्रोफेशनल्स का राउंड टेबल आयोजित किया गया था। राउंड टेबल से पहले वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ तो SFI के छात्रों ने बीच में ही रुकवा दिया। SFI के छात्रों का कहना था कि ये केरलम है और यहाँ आप पूरा वंदे मातरम नहीं गा सकते। बीजेपी 15 अगस्त के कार्यक्रम में वंदे मातरम न गाए जाने को लेकर आज सड़कों पर है। बीजेपी ने केरलम के सभी जिला मुख्यालयों पर वंदे मातरम कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं कांग्रेस

0: से कोई मना करता है तो उसकी देशभक्ति पर भी सवालिया निशान स्वाभाविक रूप से लग जाता है। कांग्रेस 1937 के जिस प्रस्ताव की बात करती है वह कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की कट्टरपंथी मांगों के आगे नतमस्तक होकर पारित किया था और उसका खामियाजा भविष्य में देश को विभाजन के रूप में झेलना पड़ा था।
1: देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया।
2: बहरहाल वंदे मातरम पर अभी संग्राम खत्म होता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: वंदे मातरम पर जारी घमासान का असर अब बॉलीवुड पर भी देखने को मिल रहा है। शर्मिला टैगोर ने वंदे मातरम की दो पद यानी कि दो स्टेंजा गाने का समर्थन किया जिस पर कंगना रनौत भड़क गई।
2: वंदे मातरम पर जारी सियासत के बीच शर्मिला टैगोर की एंट्री ने आग में घी का काम किया है
4: और वंदे मातरम के जो स्टेंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली वंदे दुर्गा वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला टू स्टैंजा इज वेरी गुड।
2: शर्मिला टैगोर का ये बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि वो रविंद्रनाथ टैगोर के खानदान से ताल्लुक रखती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ही राष्ट्रगान के रचयिता थे। इसके अलावा शर्मिला टैगोर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC की अध्यक्ष रहीं। वो 13 अक्टूबर 2004 से 31 मार्च 2011 तक इस पद पर रहीं और तब केंद्र में UPA की सरकार थी। खैर सिर्फ इसलिए शर्मिला टैगोर की दलील को सियासी चश्मे से देखना सही नहीं होगा। बहरहाल शर्मिला टैगोर की मुखालफत में बॉलीवुड की एक और अभिनेत्री सामने आ गई हैं, जिनका नाम कंगना रनौत है। एक कलाकार के तौर पर मुझे हैरानी होती है कि कला या कविता के बारे में उनकी सोच इतनी सीमित और बनावटी कैसे हो सकती है। किसी भी कविता या गाने में शब्द रूपक यानी मेटाफर्स होते हैं। कवि या कलाकार मनचाहा असर पैदा करने के लिए तरह तरह की कल्पनाओं और अद्भुत तुलनाओं का इस्तेमाल करते हैं। वंदे मातरम आजादी की लड़ाई की भावना है। बंकिम चंद्र जी देश को अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। आप कला की इतनी महान रचना को सिर्फ एक धार्मिक रीति रिवाज कैसे कह सकती हैं? इस तरह शर्मिला टैगोर के खिलाफ कंगना रनौत ने मोर्चा खोल दिया और इस मोर्चे से उन्होंने शर्मिला टैगोर पर हमलों की बौछार कर दी। कंगना आगे कहती है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि उन्हें ऐसे युवा चाहिए जिनका शरीर लोहे जैसा हो, हड्डियां स्टील की हो और नसों में बिजली जैसी ताकत दौड़ती हो। वो मौसम का हाल नहीं बता रहे थे बल्कि वो शक्ति के जागरण का आह्वान कर रहे थे। कृपया हिंदू मुस्लिम वाली सोच से बाहर आइए, भले ही हम एक ईश्वर में विश्वास करते हों। कंगना और शर्मिला के बीच ये लड़ाई बता रही है कि वंदे मातरम के दो छंद या छह छंद के सवाल पर बॉलीवुड में भी बेचैनी है। आज तक ब्यूरो।
3: खबर जयपुर से आई हंगामे की तस्वीरों की, जहां प्राथमिक स्कूल जा रही कॉकरोच जनता पार्टी पर गांव वालों ने हमला कर दिया। कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष डांका भी यहां मौजूद थे जिन्होंने बीजेपी पर इस हमले का आरोप लगाया।
5: यहां पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं, उग्र हो चुका है, धक्का मुक्की हो रही है आपस में। ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है।
2: जयपुर में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने आई कॉकरोच जनता पार्टी की टीम को लात घूंसों से पीटा, किसी को पत्थरों से मारा, किसी पर लात घूंसे बरसाए।
5: ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुका है, धक्का मुक्की हो रही है आपस में और इनको यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष राके के साथ मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी। गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं। ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है और रामपुरा में यहाँ पर ये देखिए लात घूंसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक एक की पिटाई कर रहे हैं, यहाँ पर गांव वाले पीछे भाग रहे हैं।
2: जयपुर के रामपुरा गांव के इसी स्कूल की जांच पड़ताल के लिए कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP कार्यकर्ता गांव में पहुंचे थे। CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका की अगुवाई में युवाओं का ग्रुप गांव में घुसा तो गांव वाले भी पहले से तैयार बैठे थे।
6: आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी।

0: भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं।
1: आज आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर। इनको डर है कि कहीं सीजेपी वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे और सीजेपी वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए, सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा।
2: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी है। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी पर हुए हमले पर कांग्रेस भी सरकार को घेर रही है।
3: वो चाहते हैं कि हमारी नाकामी को छुपी रहे और जो बदहाली है स्कूलों में, व्यवस्था है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, इतने बच्चों की मौत हो चुकी है और स्थिति बहुत गंभीर है।
2: जयपुर के जिस स्कूल के निरीक्षण को लेकर सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ उसकी सच्चाई ये है कि गांव का स्कूल जर्जर है। जिस इमारत में क्लास चलती थी उसकी हालत इतनी खराब है कि कभी भी ढह जाए, इसीलिए गांव वालों ने स्कूल के सामने ही एक तबेले में व्यवस्था कर दी जहां कक्षाएं चलती हैं।
4: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो बड़े बड़े वादे करते हैं बच्चों के फ्यूचर को लेकर, ये देखिए तस्वीर, यहाँ पर गेट पर यहाँ पर कुंटी लगा रखी है और यहाँ पर अंदर ये आपको ये भैंसों का तबेला दिख रहा होगा।
2: अब सवाल ये है कि आखिर स्कूल के सुधार से किसी को क्या परेशानी हो सकती है। गांव वाले कह रहे हैं कि समस्या शिक्षा सुधार से नहीं सीजेपी से है।
5: ऐसे कार्यकर्ता नहीं चाहिए कॉकरोच वाले, इनका तो घोर विरोध करेगा ग्रामीण, क्योंकि ये देश के नहीं है तो हमारे क्या हो सकते हैं।
6: जब शिक्षा व्यवस्था सुधार करना ही उनका एक मुद्दा था तो फिर वो झारखंड क्यों नहीं गए? जब पिछले 15 दिनों से वहाँ अनशन हो रहा था तो झारखंड क्यों नहीं गए अभिजीत दीप के?
2: इससे पहले भी जयपुर में रांका के स्कूल जाने पर हंगामा हुआ था। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्कूलों की हालत गंभीर है जहां एक बड़े सुधार की जरूरत है। आज तक ब्यूरो
7: खबर झारखंड की, जहां हाईकोर्ट के निर्णय के बाद नाराजगी का पूरा खेल ही बदल गया। आंदोलन से सरकार को मनवाने वाले छात्र अब सरकार पर कोर्ट में कमजोर पक्ष रखने का आरोप लगा रहे हैं और एक बार फिर सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं।
8: झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर स्टे लगाकर दो परीक्षाओं से चयनित कर्मचारियों को राहत दी तो दूसरे कर्मचारी भी राहत की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए।
9: हम लोग भी वही रास्ता अख्तियार करेंगे और हम लोग भी स्टे लेके आएंगे।
10: हाँ, क्या लगता है सरकार ने ये फैसला गलत किया?
9: सरकार ने एक तरफा फैसला किया है। सरकार ने, मुझे लगता है कि अपने सारे रास्तों को एग्जॉस्ट नहीं किया, ये एक हेस्टी डिसीजन है जो कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेशर बनाने से उसके दबाव में आके सरकार ने एक हेस्टी डिसीजन।
8: इस बीच हाईकोर्ट के फैसले से वो छात्र भी नाराज जिनकी मांग पर सोरेन सरकार ने इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया था। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के बैनर तले प्रदर्शन करने वाले छात्र आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष सही से नहीं रखा।
11: आप ये धोखा सिर्फ झारखंड के लाखों छात्रों को नहीं दिए हैं, झारखंड के तमाम आम आवाम को दिए हैं, झारखंड के उन तमाम अभिभावक को दिए हैं जिन्होंने अपने बच्चा को, अपने बेटा और बेटियों को पिछले 26 दिनों से अपने हक और अधिकार के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भेजने का काम किया।
8: 16 दिन तक अनशन करने वाले देवेंद्र महतो ने भी चेतावनी दी कि सरकार ने लापरवाही बरती तो बड़ा आंदोलन करेंगे।
12: सरकार अपना पक्ष रखने में, अपना जांच रिपोर्ट रखने में अगर किसी तरीके से लिपापोती करती है, किसी तरीके से कोताही बरतती है तो यहाँ के छात्र बिल्कुल अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब जेपी के तर्क पर, जेपी आंदोलन के तर्क पर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, ये हम आज ऐलान करते हैं।
8: सोरेन सरकार के लिए भी विचित्र स्थिति पैदा हो गई। एक गुट की मांग माने तो दूसरा नाराज और दूसरे की मांग माने तो पहला नाराज। सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।
7: यूपी में एक राजनीति जेनजी और जेन अल्फा को लेकर भी चल रही है। इस बीच सीएम योगी जापान के जेल जेन अल्फा से मिले जहां उन्होंने भारत और जापान के जेन अल्फा को जोड़ने की कोशिश की।
8: जापान के जेन अल्फा के साथ योगी आदित्यनाथ नई जनरेशन के स्टाइल में सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। पहले छात्र सेल्फी लेता है, फिर योगी खुद सेल्फी स्टिक पकड़कर सेल्फी लेने लगते हैं। तस्वीरें लखनऊ के सीएम आवास की, जहां एक डायलॉग विद का फ्यूचर कार्यक्रम के तहत योगी आदित्यनाथ ने जापान से आए 13 छात्रों के साथ संवाद किया।
13: एक बच्चा लखनऊ के किसी गाँव से आया है और दूसरा जापान के किसी गाँव से। एक हिंदी बोलता है, दूसरा जापानी, पर दोनों के बीच में एक चीज समान रूप से है और वह है कि दोनों अभी अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं।
8: छात्रों ने भी योगी आदित्यनाथ के साथ गाना गाया। कार्यक्रम के बाद योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को गिफ्ट दिया, तो वहीं छात्र भी मुख्यमंत्री के लिए खास तोहफा लाए गए। आज तक के
7: छात्र और बेरोजगार दोनों पर हर नेता की नजर है, लेकिन बावजूद इसके इन दोनों की ही मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। ग्वालियर में नर्सिंग छात्रों का अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग के 56 नर्सिंग कॉलेजेस से जुड़े छात्र प्रभावित हैं। छात्रों की चार प्रमुख मांगे, लंबित रिजल्ट जारी करना, परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित करना, पात्र छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देना, कॉलेज की गलती से जिन छात्रों की स्कॉलरशिप रुकी है उनकी फीस माफ करना।
8: ग्वालियर में नर्सिंग छात्रों का हल्ला बोल, कटोरा ताल बना नर्सिंग का जंतर मंतर, परीक्षा रिजल्ट और स्कॉलरशिप को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन, 56 कॉलेजों के छात्रों के भविष्य पर सवाल। दिल्ली के बाद अब ग्वालियर में भी नर्सिंग छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। NSUI के बैनर तले BSc और JNM नर्सिंग के छात्र कटोरा ताल स्थित फ्लैग मार्च पॉइंट पर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ गए हैं। छात्रों ने आंदोलन स्थल को नर्सिंग का जंतर मंतर नाम दिया है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा और रिजल्ट में देरी, कथित फर्जी कॉलेजों, कागजों पर फैकल्टी और स्कॉलरशिप अटकने की वजह से हजारों छात्रों का भविष्य अधर में है।
14: जो कि हमारी परीक्षा 3 साल में कंप्लीट करा के हमें डिग्री मिलनी चाहिए थी, जो कि हमें 6 साल होने को कंप्लीट होने को आए, लेकिन हमें कोई डिग्री अभी तक प्राप्त नहीं है और इसके जिम्मेदार हमें आज तक नहीं पता चल रहा है। हमारा गवर्नमेंट है, हमारा कॉलेज है, कोई जवाब देने के लिए हमें रेडी नहीं है। यहाँ पे हम क्या करें, हमारा जो समय खराब हुआ है जो हमें वापस कर सकते हैं हमारे 6 साल। हमारी यही मांग है जल्द से जल्द एग्जाम करवाए जाए और रिजल्ट प्राप्त हुए जाए हम लोगों को। सारे बच्चे परेशान है, या हम ये नहीं कहते, कोई भी बच्चा कहता हम गरीब घर से आए, पैसा हमारा है, हमारा टाइम है, तो हमें अपना हक चाहिए, ये हमारी मांगे हैं।
8: छात्रों का कहना है कि GNM का 3 साल का कोर्स 6 साल में भी पूरा नहीं हो रहा है, तो वहीं BSc नर्सिंग का 4 साल का कोर्स 7 साल तक खिंच गया है। इतना समय बीतने के बाद भी डिग्री मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। छात्रों ने बताया कि साल 2020, 2021, 2022 के BSc और 2021-2022 के GNM के एग्जाम और रिजल्ट पिछले 3 साल से पेंडिंग पड़े हैं। इसके अलावा शहर में फर्जी कॉलेजों का बड़ा खेल चल रहा है। एक ही बिल्डिंग में नियमों को ताक पर रखकर 3-3 कॉलेज संचालित हो रहे हैं। फैकल्टी सिर्फ कागजों पर दिखाई जा रही है, जबकि हकीकत में मौजूद ही नहीं है। कई छात्रों की स्कॉलरशिप भी कॉलेज की गलती से अटक गई है। छात्रों की मांग है कि जिनके स्कॉलरशिप रुकी है उनकी फीस माफ की जाए। छात्रों का कहना है कि मामला सरकार के संज्ञान में होने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ा।
15: इनकी परीक्षाएं पिछले 4 साल से समय पर आयोजित नहीं की जा रही हैं और इसका पूरा दोष ग्वालियर के जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज हैं, एक एक बिल्डिंग में 3-3 कॉलेज चला रहे हैं और पूरी तरह से उनकी जो फैकल्टी लगी हुई है कॉलेजों में पूरी तरह से फर्जी है और इसका पूरा परेशानी बच्चों को झेलनी पड़ रही है। ये बच्चियां हैं जो गरीब परिवारों से आती हैं, इनकी ना तो स्कॉलरशिप मिली, ना इनके समय पर परीक्षाएं हो रही हैं। ये बच्चियां गरीब परिवार से आती हैं, 3-3 साल में अपनी डिग्री करने के बाद इन लोगों ने सोचा था कि हम 20-25 हज़ार की कहीं नौकरी करेंगे, कहीं सरकार में नर्स बनने का काम करेंगे, लेकिन आज तक ये 5-6 हज़ार की नौकरी करने को मजबूर हैं और कॉलेज द्वारा इनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही है। कॉलेज वाले बोलते हैं हम आपकी बात आगे कर रहे हैं, कॉलेज क्या बात सुनेगा जब कॉलेज खुद फर्जी है, CBI से जाके उन्होंने स्टे लिया।
8: छात्रों की 4 मुख्य मांगे हैं। पहला, सभी लंबित परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द जारी किए जाएं। दूसरा, लंबित परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित कर शेड्यूल जारी हो। तीसरा, सभी पात्र छात्रों को बिना किसी शर्त के परीक्षा में बैठने दिया जाए, क्योंकि लापरवाही छात्रों की नहीं है। चौथा, कॉलेज की वजह से जिनकी स्कॉलरशिप रुकी है उनकी फीस माफ हो। छात्रों ने कहा कि ये लड़ाई किसी संस्था या व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने शिक्षा अधिकार के लिए। मांगे पूरी होने तक कटोराताल फ्लैग पॉइंट पर यह अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। सर्वेश पुरोहित, ग्वालियर, आज तक।
7: अबर पाकिस्तान की, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान के साथ खेल हो गया। उन्हें 16 सितंबर तक अस्पताल में रहने की छूट थी, लेकिन कुछ ही घंटों में इमरान को वापस रावलपिंडी अस्पताल से जेल भेज दिया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में आखिर चल क्या रहा है।
2: रात 1:05 रावलपिंडी का अदियाला जेल, अचानक सड़क पर हलचल तेज हुई। इस भारी सुरक्षा काफिले में इमरान खान की बहन डॉक्टर उज्मा खान और उनके निजी चिकित्सक डॉक्टर फैसल सुल्तान की गाड़ी को भी साथ रहने की अनुमति दी गई थी। जब ये काफिला शिफा अस्पताल पहुंचा तो पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। एंट्री रूट्स पर कटीले तार लगा दिए गए थे और किसी भी बाहरी वाहन या मीडिया को पास आने की इजाजत नहीं थी।
16: मीडिया के भाइयों से गुजारिश होगी, ये डीएसए चीज लगाई हुई है, ये सारी खाली कार से ये चौक अक्रॉस द बैरियर लगे जो है वहाँ पे मीडिया पॉइंट बनाया हुआ है हमने। शाबाश।
2: उधर जिन रास्तों से इस काफिले को गुजरना था वहाँ इमरान समर्थक गुलाब की पंखुड़ियाँ बरसा रहे थे।
17: फूल ही फूल थे, आज फूलों की पत्तियां थी, आज लोगों की मोहब्बत थी और आज लोगों ने कहा कि फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है।
2: इमरान खान को शिफा अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनके पहुंचने से पहले तक मीडिया को हटा दिया गया था, लिहाजा इमरान खान की एक तस्वीर तक सामने नहीं आई। असली सस्पेंस इसके बाद शुरू हुआ। पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई कि इमरान खान को जेल से इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन इस खबर के कुछ ही देर बाद मामला पलट गया। जानकारी मिली कि इमरान खान को वापस अदियाला जेल भेज दिया गया है।
18: सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक होना लाजिम था, बड़ी बदकिस्मती है जो कुछ हुआ है, लेकिन देखते हैं आगे क्या।
2: ये खबर चौंकाने वाली थी क्योंकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को इलाज के लिए 16 सितंबर तक शिफा अस्पताल भेजने का आदेश दिया था, लेकिन इमरान खान को कुछ ही घंटे बाद फिर से जेल भेज दिया गया। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तराद ने सोशल मीडिया एक्स पर 2 घंटे में 2 पोस्ट किए। पहले पोस्ट में लिखा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए कैदी को 20 और 21 अगस्त की रात कड़ी सुरक्षा में अस्पताल ले जाया गया। आपके डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट और एक फिजिशियन समेत डॉक्टरों की टीम ने उनकी विस्तृत जांच की और उन्हें मेडिकली फिट घोषित किया। उनकी बहन उज्मा खान जांच और इलाज के दौरान उनके साथ रहीं। पूरी जांच के बाद उन्हें 21 अगस्त की सुबह 5 बजे के करीब वापस अदियाला जेल भेज दिया गया। उन्होंने कोई डॉक्टरी रिपोर्ट साझा नहीं की, ये भी नहीं बताया कि 4 घंटे में ही कैसे पूरी जांच हो गई और हुई तो उसकी रिपोर्ट कहां है। 2 घंटे बाद एक और पोस्ट लिखा और ये खुलासा किया कि इमरान की जांच शिफा अस्पताल में नहीं बल्कि पेम्स यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में की गई। आज तक ब्यूरो।
7: छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: राहुल गांधी के धरने के बाद पैलेट गन केस में दिल्ली के संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज। राहुल का कटाक्ष, अमित शाह और गृह सचिव ने दी अनुमति, बोले न्याय की दिशा में पहला कदम। राहुल पर बीजेपी का पलटवार, नड्डा बोले वंदे मातरम पर घिरने के बाद कांग्रेस का धरना, स्मृति बोली विरोध के नाम पर स्वांग। सीएम योगी ने अखिलेश को फिर घेरा, कहा इनके पीडीए का पी पिछड़ा से पंडित हुआ और एक दिन होकर जाएगा पाकिस्तान। अखिलेश का पोस्ट, एक रंगी क्या जाने पीडीए के बहुरंग। इधर नवीन की नई टीम बनने के बाद बीजेपी की तीन बड़ी बैठक, राष्ट्रीय पदाधिकारियों प्रदेश अध्यक्षों के साथ चुनावी तैयारियों और संगठन की रणनीति पर मंथन। झारखंड में रांची समेत कई शहरों में भिड़े छात्र और जेएमएम कार्यकर्ता, सीएम सोरेन का पुतला फूंकने पर हंगामा, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म फोरम का प्रदर्शन। दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज करवाने में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 7 घंटे लग गए। एक महीने पहले छात्रों के आंदोलन में कथित तौर पर पैलेट गन से घायल हुए एक छात्र की एफआईआर करवाने के लिए राहुल ने आंदोलन किया। सुबह 11:30 बजे राहुल दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे, उनके साथ में पैलेट गन का पीड़ित भी था। बस मांग ये थी कि एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन पुलिस ने दर्ज करने से मना कर दिया, जिसके बाद राहुल गांधी वहीं धरने पर बैठ गए। शाम को खबर आई कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार हो गई है। इस बीच राहुल से डीसीपी सचिन शर्मा लगातार बात करते रहे। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि दिल्ली के थाने में एफआईआर दर्ज होने में 8 घंटे लगे तो हमारे देश के अन्य थानों का क्या हाल होगा।
1: ये न्याय का पहला कदम है, केस लॉज हुआ है। देखिए
2: जब से आपको ये गोली लगी
1: 20 जुलाई को, एक महीना हो गया, छर्रे शरीर में है, तीन छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, तीन चार छर्रे दिल के पास है, साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11:30 बजे हम यहाँ आए, एक महीने से ये घूम रहे हैं, 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, 7:45 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल किए। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिलता। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है, और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है।
0: साहिल के एफआईआर की जानकारी आज तक को लगी, जिसमें साहिल ने बताया कि नीले कपड़े पहनने वाले व्यक्ति के हाथ में बड़ी सी बंदूक थी, जिसने उस पर 4-5 बार पैलेट गन चलाई, जिससे उसकी दाई आंख की रोशनी चली गई।
3: न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है, पर मेरे को खुशी से ज्यादा दुख भी है कि एलओपी के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट लिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ, मेरे शरीर में 200 छर्रे, उसके बाद भी मेरी एफआईआर को 8 घंटे में लिया गया, और शायद ये ली भी ना जाती अगर एलओपी मेरा साथ ना देते। 14 अगस्त से मैं एफआईआर के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी एफआईआर ली गई।
4: उम्मीद थी आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी जब ये कल बात हुई और आप यहाँ आए सुबह, जो पुलिस ये कहा उसके बाद
3: भी मेरे को विश्वास था जी आलोक के आगे तो कंप्लेंट तो होनी है, ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ, कि आपको विश्वास रख रहा है, आपकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है।
0: राहुल गांधी बहुत अच्छे तरह से ये समझ चुके हैं कि आंदोलनों की ये राजनीति लंबे समय तक फायदा देती है, और इसीलिए पिछले एक महीने से राहुल गांधी ने इस बार धरना पॉलिटिक्स पर ज्यादा जोर दिया, चाहे वो जंतर मंतर के छात्रों का मुद्दा संसद में उठाना हो या फिर इस आंदोलन में पुलिस की हिंसा का मुद्दा हो। राहुल गांधी का एजेंडा एकदम अब क्लियर लग रहा है।
5: यह है राहुल गांधी की धरना पॉलिटिक्स का दूसरा एपिसोड। 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन हुआ जिसमें हिंसा हुई, तो 21 जुलाई को राहुल गांधी ने पहले प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया था। अब करीब एक महीने के बाद 21 अगस्त को राहुल गांधी ने आज संसद मार्ग थाने के बाहर धरना दिया। आरोप है कि दिल्ली पुलिस एक पैलेट गन से घायल पीड़ित की FIR दर्ज नहीं कर रही है।
1: हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज FIR दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया है, FIR नहीं हो सकता है, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे।
5: राहुल गांधी पैलेट पीड़ित 19 साल के साहिब लोचाप के परिवार के साथ धरने पर बैठे हैं और आरोप लगाया कि पैलेट की चोट से आंख की रोशनी गंवा चुके साहिल के साथ न्याय नहीं हो रहा।
1: एम्स की रिपोर्ट जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे।
5: राहुल गांधी इन्हीं साहिल को लेकर पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, तब भी उन्होंने दिल्ली पुलिस और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। लेकिन शायद दिल्ली पुलिस को ये अंदाजा नहीं था कि राहुल गांधी अब उन्हीं के थाने के बाहर इस पीड़ित को लेकर धरने पर बैठ जाएंगे। उनके साथ प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और जयराम रमेश भी मौजूद हैं। राहुल का आरोप है कि 20 जुलाई के प्रदर्शन में साहिल पैलेट गन से घायल हुए। 14 अगस्त को उन्होंने दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी लेकिन उन्हें शिकायत की कॉपी ही नहीं मिली। 17 अगस्त को ईमेल और फोन से भी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई लेकिन कुछ नहीं हुआ।
6: साहिल पर जो गैर कानूनी ढंग से पुलिस एक्शन हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, उस संदर्भ में FIR दर्ज किया जाए और FIR नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर उनको दिया जाए। मांग सिंपल है, FIR दर्ज करो, रजिस्ट्रेशन नंबर दो और हम यहां से निकलेंगे।
5: पीड़ित छात्र की शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं करने के पीछे कोई वाजिब कारण नहीं बताया गया है, लेकिन दलील यह है कि 20 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता और पुलिस वालों पर हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यों की हाई पावर कमेटी बनाई। ये कमेटी पैलेट गन, इलेक्ट्रिक शॉक बैटन के इस्तेमाल से लेकर महिलाओं से अभद्रता और पुलिस वालों पर हमले के तथ्यों की जांच करेगी। इसके लिए कमेटी घटना के दिन के सारे ड्रोन, CCTV, बॉडी कैम रिकॉर्डिंग के सबूतों की मदद भी लेगी और दोनों पक्षों के घायलों को अंतरिम मुआवजा देने पर भी रिपोर्ट देगी। बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है?
7: जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है? क्या सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं?
5: दरअसल 20 जुलाई को चली पैलेट गन को लेकर पहले तो दिल्ली पुलिस और सरकार ने इनकार किया, फिर GD एंट्री में 2 राउंड पैलेट फायरिंग की पुष्टि हुई और मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट में भी पता चला। RTI में खुलासा हुआ कि लेडी हार्डिंग अस्पताल में पैलेट गन जैसी चोट से जख्मी 9 घायल पहुंचे थे। इसी तरह सफदरजंग के दस्तावेज में पता चला कि एक मरीज पैलेट गन से जख्मी आया था। पैलेट के पीड़ित साहिब लोचाप को राहुल ने पहले भी मीडिया के सामने पेश किया था और उनके शरीर पर सैकड़ों पैलेट के निशान दिखाए थे, जिसके बाद बाकी पैलेट पीड़ित प्रशांत और इरशाद नाम के 2 छात्रों की ओर से पूर्व IPS ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। मौसमी सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: और अब खबर वंदे मातरम को लेकर जारी राजनीति की। जहां केरलम में विपक्ष वंदे मातरम का विरोध कर रही है, तो सरकार विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है।
8: वंदे मातरम पर दो छेक का विवाद किस मुकाम तक पहुंच गया है, ये तस्वीर उसकी वानगी है। जगह है त्रिवेंद्रम का कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और विरोध करते ये छात्र SFI के हैं, कह रहे हैं कि ये केरलम है, यहाँ आप पूरा वंदे मातरम नहीं गा सकते। खबरों के मुताबिक त्रिवेंद्रम के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के तहत युवा प्रोफेशनल्स का राउंड टेबल आयोजित किया गया था। राउंड टेबल से पहले वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ तो SFI के छात्रों ने बीच में ही रुकवा दिया। SFI के छात्रों का कहना था कि ये केरलम है और यहाँ आप पूरा वंदे मातरम नहीं गा सकते। BJP 15 अगस्त के कार्यक्रम में वंदे मातरम ना गाए जाने को लेकर आज सड़कों पर है। BJP ने केरलम के सभी जिला मुख्यालयों पर वंदे मातरम कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं कांग्रेस भी वंदे मातरम के दो छंद गाने पर अड़ी है, जिसे लेकर BJP लगातार कांग्रेस पर हमलावर है।
9: और यदि राष्ट्रगीत का सम्मान करने से कोई मना करता है तो उसकी देशभक्ति पर भी सवालिया निशान स्वाभाविक रूप से लग जाता है। कांग्रेस 1937 के जिस प्रस्ताव की बात करती है, वह कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की कट्टरपंथी मांगों के आगे नतमस्तक होकर पारित किया था और उसका खामियाजा भविष्य में देश को विभाजन के रूप में झेलना पड़ा था।
10: देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया।
8: बहरहाल वंदे मातरम पर अभी संग्राम खत्म होता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: वंदे मातरम पर जारी घमासान का असर अब बॉलीवुड पर भी देखने को मिल रहा है। शर्मिला टैगोर ने वंदे मातरम की दो पद यानी कि दो स्टेंजा गाने का समर्थन किया, जिस पर कंगना रनौत भड़क गई।
8: वंदे मातरम पर जारी सियासत के बीच शर्मिला टैगोर की एंट्री ने आग में घी का काम किया है।
11: और वंदे मातरम के जो स्टेंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा, उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला टू स्टैंजा इज वेरी गुड।
8: शर्मिला टैगोर का ये बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि वो रविंद्रनाथ टैगोर के खानदान से ताल्लुक रखती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ही राष्ट्रगान के रचयिता थे। इसके अलावा शर्मिला टैगोर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC की अध्यक्ष रहीं। वो 13 अक्टूबर 2004 से 31 मार्च 2011 तक इस पद पर रहीं और तब केंद्र में UPA की सरकार थी। खैर, सिर्फ इसलिए शर्मिला टैगोर की दलील को सियासी चश्मे से देखना सही नहीं होगा। बहरहाल शर्मिला टैगोर की मुखालफत में बॉलीवुड की एक और अभिनेत्री सामने आ गई हैं, जिनका नाम कंगना रनौत है। एक कलाकार के तौर पर मुझे हैरानी होती है कि कला या कविता के बारे में उनकी सोच इतनी सीमित और बनावटी कैसे हो सकती है। किसी भी कविता या गाने में शब्द रूपक यानी मेटाफर्स होते हैं। कवि या कलाकार मनचाहा असर पैदा करने के लिए तरह तरह की कल्पनाओं और अद्भुत तुलनाओं का इस्तेमाल करते हैं। वंदे मातरम आजादी की लड़ाई की भावना है। बंकिम चंद्र जी देश को अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। आप कला की इतनी महान रचना को सिर्फ एक धार्मिक रीति रिवाज कैसे कह सकती हैं? इस तरह शर्मिला टैगोर के खिलाफ कंगना रनौत ने मोर्चा खोल दिया और इस मोर्चे से उन्होंने शर्मिला टैगोर पर हमलों की बौछार कर दी। कंगना आगे कहती है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि उन्हें ऐसे युवा चाहिए जिनका शरीर लोहे जैसा हो, हड्डियां स्टील की हो और नसों में बिजली जैसी ताकत दौड़ती हो। वो मौसम का हाल नहीं बता रहे थे बल्कि वो शक्ति के जागरण का आह्वान कर रहे थे। कृपया हिंदू मुस्लिम वाली सोच से बाहर आइए, भले ही हम एक ईश्वर में विश्वास करते हों। कंगना और शर्मिला के बीच ये लड़ाई बता रही है कि वंदे मातरम के दो छंद या छह छंद के सवाल पर बॉलीवुड में भी बेचैनी है। आज तक ब्यूरो।
0: खबर जयपुर से आई हंगामे की तस्वीरों की, जहां प्राथमिक स्कूल जा रही कॉकरोच जनता पार्टी पर गांव वालों ने हमला कर दिया। कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष डांका भी यहां मौजूद थे, जिन्होंने बीजेपी पर इस हमले का आरोप लगाया।
12: यहां पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं, उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में। ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है।
8: जयपुर में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने आई कॉकरोच जनता पार्टी की टीम को लात घूंसों से पीटा, किसी को पत्थरों से मारा, किसी पर लात घूंसे बरसाए।
12: ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में और इनको यहां पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष राके के साथ ये मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी। गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं। ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है, और रामपुरा में यहां पर ये देखिए लात घूंसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक एक की पिटाई कर रहे हैं, यहाँ पर गाँव वाले पीछे भाग रहे हैं।
8: जयपुर के रामपुरा गांव के इसी स्कूल की जांच पड़ताल के लिए कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी कार्यकर्ता गांव में पहुंचे थे। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका की अगुवाई में युवाओं का ग्रुप गांव में घुसा तो गांव वाले भी पहले से तैयार बैठे थे।
13: आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं।
14: आज आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर। इनको डर है कि कहीं सीजेपी वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे और सीजेपी वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए। सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा।
8: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी है। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी पर हुए हमले पर कांग्रेस भी सरकार को घेर रही है।
15: वे चाहते हैं कि हमारी नाकामी को छुपी रहे, और जो बदहाली है स्कूलों में, व्यवस्था है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, इतने बच्चों की मौत हो चुकी है और स्थिति बहुत गंभीर है।
8: जयपुर के जिस स्कूल के निरीक्षण को लेकर सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ उसकी सच्चाई ये है कि गांव का स्कूल जर्जर है। जिस इमारत में क्लास चलती थी उसकी हालत इतनी खराब है कि कभी भी ढह जाए, इसीलिए गांव वालों ने स्कूल के सामने ही एक तबेले में व्यवस्था कर दी जहां कक्षाएं चलती हैं।
13: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो बड़े बड़े वादे करते हैं बच्चों के फ्यूचर को लेकर, ये देखिए तस्वीर, यहाँ पर गेट पर यहाँ पर कुंटी लगा रखी है और यहाँ पर अंदर ये आपको ये भैंसों का तबेला दिख रहा होगा।
8: अब सवाल यह है कि आखिर स्कूल के सुधार से किसी को क्या परेशानी हो सकती है। गांव वाले कह रहे हैं कि समस्या शिक्षा सुधार से नहीं सीजेपी से है।
16: ऐसे कार्यकर्ता नहीं चाहिए कॉकरोच वाले, इनका तो घोर विरोध करेगा ग्रामीण, क्योंकि जो देश के नहीं है तो हमारे क्या हो सकते हैं। जब शिक्षा व्यवस्था सुधार करना ही उनका एक मुद्दा था तो फिर वो झारखंड क्यों नहीं गए? जब पिछले 15 दिनों से वहां अनशन हो रहा था तो झारखंड क्यों नहीं गए अभिजीत दिपके?
8: इससे पहले भी जयपुर में रांका के स्कूल जाने पर हंगामा हुआ था। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्कूलों की हालत गंभीर है जहां एक बड़े सुधार की जरूरत है। आज तक ब्यूरो।
0: खबर झारखंड की, जहां हाईकोर्ट के निर्णय के बाद नाराजगी का पूरा खेल ही बदल गया। आंदोलन से सरकार को मनवाने वाले छात्र अब सरकार पर कोर्ट में कमजोर पक्ष रखने का आरोप लगा रहे हैं और एक बार फिर सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं।
17: झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर स्टे लगाकर दो परीक्षाओं से चयनित कर्मचारियों को राहत दी तो दूसरे कर्मचारी भी राहत की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए।
18: हम लोग भी वही रास्ता अख्तियार करेंगे और हम लोग भी स्टे लेके आएंगे।
19: हाँ, क्या लगता है सरकार ने ये फैसला गलत किया?
18: सरकार ने एक तरफा फैसला किया है। सरकार ने, मुझे लगता है कि अपने सारे रास्तों को एग्जॉस्ट नहीं किया, एक हेस्टी डिसीजन है जो कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेशर बनाने से उसके दबाव में आके सरकार ने एक हेस्टी डिसीजन।
17: इस बीच हाईकोर्ट के फैसले से वो छात्र भी नाराज जिनकी मांग पर सोरेन सरकार ने इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया था। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के बैनर तले प्रदर्शन करने वाले छात्र आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष सही से नहीं रखा।
20: आप ये धोखा सिर्फ झारखंड के लाखों छात्रों को नहीं दिए हैं, झारखंड के तमाम आम आवाम को दिए हैं, झारखंड के उन तमाम अभिभावक को दिए जिन्होंने अपने बच्चा को, अपने बेटा और बेटियों को पिछले 26 दिनों से अपने हक और अधिकार के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भेजने का काम किया।
17: 16 दिन तक अनशन करने वाले देवेंद्र महतो ने भी चेतावनी दी कि सरकार ने लापरवाही बरती तो बड़ा आंदोलन करेंगे।
2: सरकार अपना पक्ष रखने में, अपना जांच रिपोर्ट रखने में अगर किसी तरीके से लिपापोती करती है, किसी तरीके से कोताही बरतती है, तो यहाँ के छात्र बिल्कुल अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब जेपी के तर्ज पर, जेपी आंदोलन के तर्ज पर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, ये हम आज ऐलान करते हैं।
17: सोरेन सरकार के लिए भी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। एक गुट की मांग माने तो दूसरा नाराज, और दूसरे की मांग माने तो पहला नाराज। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: खबर यूपी की राजनीति की, जहां मुख्यमंत्री योगी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुण्यतिथि के कार्यक्रम में पहुंचे। योगी ने समाजवादी पार्टी की पीडीए की परिभाषा पर कटाक्ष किया तो अखिलेश यादव पर कल्याण सिंह का अपमान करने का आरोप लगाया।
21: क्रिकेट की तरह रिंग रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं? पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। ये वही लोग हैं, हमें दुख हुआ था और अत्यंत कष्ट हुआ था। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं, कितना द्वेष रखते हैं। उन्होंने बाबूजी को प्रत्यक्ष जाकर के श्रद्धांजलि देने की बजाय शब्दों से भी नहीं कोई कुछ व्यक्त किया। बहन और भाइयों, इससे बड़ा अपमान, ये जाति अपमान है, और ये हर उस हिंदू का अपमान है जिसको लगता है कि बाबूजी का जीवन सनातन मूल्यों के लिए, हिंदू गौरव के लिए समर्पित था, उस हर हिंदू का अपमान था ये।
0: यूपी में एक राजनीति जेनजी और जेन अल्फा को लेकर भी चल रही है। इस बीच सीएम योगी जापान के जेन अल्फा से मिले, जहां उन्होंने भारत और जापान के जेन अल्फा को जोड़ने की कोशिश की।
17: जापान के जेन अल्फा के साथ योगी आदित्यनाथ नई जनरेशन के स्टाइल में सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। पहले छात्र सेल्फी लेता है, फिर योगी खुद सेल्फी स्टिक पकड़कर सेल्फी लेने लगते हैं। तस्वीरें लखनऊ के सीएम आवास की, जहां एक डायलॉग विद का फ्यूचर कार्यक्रम के तहत योगी आदित्यनाथ ने जापान से आए 13 छात्रों के साथ संवाद किया।
22: एक बच्चा लखनऊ के किसी गांव से आया है और दूसरा जापान के किसी गांव से। एक हिंदी बोलता है, दूसरा जापानी, पर दोनों के बीच में एक चीज समान रूप से है, और वह है कि दोनों अभी अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं।
17: छात्रों ने भी योगी आदित्यनाथ के साथ गाना गाया। कार्यक्रम के बाद योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को गिफ्ट दिया, तो वहीं छात्र भी मुख्यमंत्री के लिए खास तोहफा लाए थे। आज तक
0: खबर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे की, जहां बॉर्डर सिक्योरिटी पर अमित शाह ने ममता बैनर्जी को घेरा। सिलीगुड़ी में कहा कि हमें घुसपैठ पर अंकुश लगाना था, हम पूरी सीमा पर बाड़ लगाना चाहते थे, लेकिन ममता ने हमें कभी जमीन ही नहीं दी।
10: हम तो पुराने सीएम साहिबा को भी बुलाते थे, वो एसएसबी के कार्यक्रम में आना नहीं चाहती थी। हमने तो आपको बुलाया, आप आ गए, आपका स्वागत है। एसएसबी हो, बीएसएफ हो, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक सरकार की एजेंसी नहीं है। ये हर निस्तब तपस्या और परिश्रम कर देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला बल है। इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिसी, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी गवर्नमेंट, सभी राजनीतिक दलों को, चाहे बंगाल में हो या केंद्र में जो सरकार हो, सभी ने जवानों के साथ आत्मीय रिश्ता रखना चाहिए। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर ही 1129 एकड़ भूमि, जो हम 2014 से मांगते थे, हमें मिलती नहीं थी, बीएसएफ और एसएसबी के लिए 1129 एकड़ भूमि शुभेंदु जी ने दे दिया। हम ममता बनर्जी के हाथ पैर जोड़कर थक गए, मगर हमें भूमि नहीं दी। एक बार उन्होंने आग्रह रखा, मैं उनकी ऑफिस में भी पहुंच गया कि ममता जी वो भारतीय जनता पार्टी को जमीन नहीं देना है, बीएसएफ को देना है, आप कृपया दे दीजिए। हाँ बोला, मगर गई तब तक नहीं दी।
0: ये राजधानी लखनऊ में हुए डबल मर्डर और आत्महत्या के मामले को लेकर हड़कंप मचा है। एक बैंक कर्मी ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की और फिर घर आकर अपनी बहन को मार डाला, अंत में खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस पूरे मामले में ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे।
1: ये सीसीटीवी तस्वीर लखनऊ में हुई दो हत्याओं में से एक की है। इसमें दिख रहा है कि बैंक के अंदर जा रही दिव्या मिश्रा नाम की महिला को उसका पति मानस गेट पर ही रोकता है और फिर दिव्या के साथ मारपीट करने लगता है। मारपीट होता देख पहले बैंक का गार्ड बाहर आता है, लेकिन डर कर वो भी लौट जाता है। तब बैंक के अंदर से दूसरे स्टाफ दौड़कर बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो सड़क पर पहुंचते हैं, गोली चलती है और सभी स्टाफ डरकर बैंक की तरफ भागते हैं। इतनी देर में दिव्या का खून हो जाता है। इस मामले में ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपी पति मानस कई दिनों से दिव्या की रेखी कर रहा था। 18 अगस्त को भी उसने दिव्या की गाड़ी रुकवाने की कोशिश की थी। तब से दिव्या डरी सहमी थी। उसने अपने करीबियों को बताया था कि मानस उसे मार देगा और दो दिनों के बाद दिव्या का वही अंजाम भी हुआ। लेकिन सवाल यह है कि मानस ने पत्नी पर चीटिंग का आरोप लगाया तो पत्नी की हत्या की, खुद को भी मार डाला, तो फिर अपनी बहन की हत्या क्यों की?
3: बहन उसके घर में बैठी थी, वो भी डिस्टर्ब थी। बहन के चक्कर बहन को बहुत जान देता था,
4: उसने इसीलिए बहन को मार दिया कि पत्नी को मार दिया। मैं जेल चला
23: नहीं जेल चला, घर में उसको कौन देखेगा, कौन संभालेगा? ये उसको सबसे बड़ा चिंता थी कि हमारे न रहे कोई बात हो गई तो उसका क्या होगा।
1: मानस के परिवार वाले बताते हैं कि माँ की मौत के बाद बहन डिप्रेशन में थी, वहीं बहू भी परिवार का अच्छे से ख्याल रख रही थी।
23: बहू अच्छी थी और हमारे घर आती तो बहू का ही काम करती थी, हमारी वाइफ को काम नहीं करने देती। मेरे बेटे की शादी में एक हफ्ते की छुट्टी लेके हमारे यहाँ रही और पूरी जिम्मेदारी उसने निभाई।
1: परिवार को भरोसा नहीं हो रहा कि मानस ऐसा कर सकता है।
23: लड़का एक नंबर का डरपोक था, पता नहीं कहाँ से
4: डरपोक था।
23: रात में जब देर हो जाती थी हम लोग यहाँ से 10 के बाद जाता था तो विधान खाना खाने के बाद जाता था तो विधानसभा होकर जाता था, या हमारी बहन आशियाना में रहती है वहाँ से निकलता था तो हम लोग साथ आता था। तो एक ऐसी होते हुए लाटो लोड होते हुए तब वो जाता था अपने घर, नहीं सन्नाटे के कारण से चला जाए ऐसा कभी उसने किया ही नहीं।
1: यह हत्याकांड और सुसाइड केस बेहद सनसनीखेज है। सवाल है कि मानस जिसने धोखे का आरोप लगाया उनकी सच्चाई क्या है? लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: राहुल गांधी के धरने के बाद पैलेट गन केस में दिल्ली के संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज। राहुल का कटाक्ष, अमित शाह और गृह सचिव ने दी अनुमति, बोले न्याय की दिशा में पहला कदम। राहुल पर बीजेपी का पलटवार, नड्डा बोले वंदे मातरम पर घिरने के बाद कांग्रेस का धरना, स्मृति बोली विरोध के नाम पर स्वांग। सीएम योगी ने अखिलेश को फिर घेरा, कहा इनके पीडीए का पी पिछड़ा से पंडित हुआ और एक दिन होकर जाएगा पाकिस्तान। अखिलेश का पोस्ट, एक रंगी क्या जाने पीडीए के बहुरंग। इधर नवीन की नई टीम बनने के बाद बीजेपी की तीन बड़ी बैठक, राष्ट्रीय पदाधिकारियों प्रदेश अध्यक्षों के साथ चुनावी तैयारियों और संगठन की रणनीति पर मंथन। झारखंड में रांची समेत कई शहरों में भिड़े छात्र और जेएमएम कार्यकर्ता, सीएम सोरेन का पुतला फूंकने पर हंगामा, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म फोरम का प्रदर्शन। दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज करवाने में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 7 घंटे लग गए। एक महीने पहले छात्रों के आंदोलन में कथित तौर पर पैलेट गन से घायल हुए एक छात्र की एफआईआर करवाने के लिए राहुल ने आंदोलन किया। सुबह 11:30 बजे राहुल दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे, उनके साथ में पैलेट गन का पीड़ित भी था। बस मांग ये थी कि एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन पुलिस ने दर्ज करने से मना कर दिया, जिसके बाद राहुल गांधी वहीं धरने पर बैठ गए। शाम को खबर आई कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार हो गई है। इस बीच राहुल से डीसीपी सचिन शर्मा लगातार बात करते रहे। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि दिल्ली के थाने में एफआईआर दर्ज होने में 8 घंटे लगे तो हमारे देश के अन्य थानों का क्या हाल होगा।
1: ये न्याय का पहला कदम है, केस लॉज हुआ है। देखिए,
2: जब से आपको ये गोली लगी
1: 1 महीना हो गया, छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, 3-4 छर्रे दिल के पास है, साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11:30 बजे हम यहाँ आए, 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, 7:45 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल की। अब आप इमेजिन कीजिए, इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिलता। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है, और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है।
0: साहिल के एफआईआर की जानकारी आज तक को लगी, जिसमें साहिल ने बताया कि नीले कपड़े पहनने वाले व्यक्ति के हाथ में बड़ी सी बंदूक थी, जिसने उस पर 4-5 बार पैलेट गन चलाई, जिससे उसकी दाई आंख की रोशनी चली गई।
3: न्याय की हुई है ये एफआईआर, न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है। पर मेरे को खुशी से ज्यादा दुख भी है कि एलओपी के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट लिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ, मेरे शरीर में 200 छर्रे, उसके बाद भी मेरी एफआईआर को 8 घंटे में लिया गया, और शायद ये ली भी ना जाती अगर एलओपी मेरा साथ ना देते। 14 अगस्त से मैं एफआईआर के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी एफआईआर ली गई।
4: उम्मीद थी आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी जब ये कल बात हुई और आप यहाँ आए, सुबह जो पुलिस ने कहा उसके बाद
3: नहीं, मेरे को विश्वास था जी एलओपी आगे तो कंप्लेंट तो होनी है, ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ, कि आपको विश्वास रखना आपकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है।
0: राहुल गांधी बहुत अच्छे तरह से ये समझ चुके हैं कि आंदोलनों की ये राजनीति लंबे समय तक फायदा देती है, और इसीलिए पिछले एक महीने से राहुल गांधी ने इस बार धरना पॉलिटिक्स पर ज्यादा जोर दिया, चाहे वो जंतर मंतर के छात्रों का मुद्दा संसद में उठाना हो या फिर इस आंदोलन में पुलिस की हिंसा का मुद्दा हो। राहुल गांधी का एजेंडा एकदम अब क्लियर लग रहा है।
5: यह है राहुल गांधी की धरना पॉलिटिक्स का दूसरा एपिसोड। 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन हुआ जिसमें हिंसा हुई, तो 21 जुलाई को राहुल गांधी ने पहले प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया था। अब करीब एक महीने के बाद 21 अगस्त को राहुल गांधी ने आज संसद मार्ग थाने के बाहर धरना दिया। आरोप है कि दिल्ली पुलिस एक पैलेट गन से घायल पीड़ित की FIR दर्ज नहीं कर रही है।
1: हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज FIR दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया FIR नहीं हो सकता है, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे।
5: राहुल गांधी पैलेट पीड़ित 19 साल के साहिब लोचाप के परिवार के साथ धरने पर बैठे हैं और आरोप लगाया कि पैलेट की चोट से आंख की रोशनी गंवा चुके साहिल के साथ न्याय नहीं हो रहा।
1: एम्स की रिपोर्ट जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे।
5: राहुल गांधी इन्हीं साहिल को लेकर पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, तब भी उन्होंने दिल्ली पुलिस और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन शायद दिल्ली पुलिस को ये अंदाजा नहीं था कि राहुल गांधी अब उन्हीं के थाने के बाहर इस पीड़ित को लेकर धरने पर बैठ जाएंगे। उनके साथ प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और जयराम रमेश भी मौजूद। राहुल का आरोप है कि 20 जुलाई के प्रदर्शन में साहिल पैलेट गन से घायल हुए, 14 अगस्त को उन्होंने दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी लेकिन उन्हें शिकायत की कॉपी ही नहीं मिली, 17 अगस्त को ईमेल और फोन से भी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई लेकिन कुछ नहीं हुआ।
6: साहिल पर जो गैर कानूनी ढंग से पुलिस एक्शन हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, उस संदर्भ में FIR दर्ज किया जाए और FIR नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर उनको दिया जाए। मांग सिंपल है, FIR दर्ज करो, रजिस्ट्रेशन नंबर दो और हम यहां से निकलेंगे।
5: पीड़ित छात्र की शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं करने के पीछे कोई वाजिब कारण नहीं बताया गया है, लेकिन दलील यह है कि 20 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता और पुलिस वालों पर हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यों की हाई पावर कमेटी बनाई। ये कमेटी पैलेट गन, इलेक्ट्रिक शॉक बैटन के इस्तेमाल से लेकर महिलाओं से अभद्रता और पुलिस वालों पर हमले के तथ्यों की जांच करेगी। इसके लिए कमेटी घटना के दिन के सारे ड्रोन, CCTV, बॉडी कैम रिकॉर्डिंग के सबूतों की मदद भी लेगी और दोनों पक्षों के घायलों को अंतरिम मुआवजा देने पर भी रिपोर्ट देंगे। बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है?
7: जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है? क्या सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं?
5: दरअसल 20 जुलाई को चली पैलेट गन को लेकर पहले तो दिल्ली पुलिस और सरकार ने इनकार किया, फिर GD एंट्री में 2 राउंड पैलेट फायरिंग की पुष्टि हुई और मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट में भी पता चला। RTI में खुलासा हुआ कि लेडी हार्डिंग अस्पताल में पैलेट गन जैसी चोट से जख्मी 9 घायल पहुंचे थे। इसी तरह सफदरजंग के दस्तावेज में पता चला कि एक मरीज पैलेट गन से जख्मी आया था। पैलेट के पीड़ित साहिब लोचाप को राहुल ने पहले भी मीडिया के सामने पेश किया था और उनके शरीर पर सैकड़ों पैलेट के निशान दिखाए थे, जिसके बाद बाकी पैलेट पीड़ित प्रशांत और इरशाद नाम के 2 छात्रों की ओर से पूर्व IPS ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। मौसमी सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: और अब खबर वंदे मातरम को लेकर जारी राजनीति की। जहां केरलम में विपक्ष वंदे मातरम का विरोध कर रही है, तो सरकार विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है।
8: वंदे मातरम पर 2-6 का विवाद किस मुकाम तक पहुंच गया है, ये तस्वीर उसकी वानगी है। जगह है त्रिवेंद्रम का कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और विरोध करते ये छात्र SFI के हैं, कह रहे हैं कि ये केरलम है, यहाँ आप पूरा वंदे मातरम नहीं गा सकते। खबरों के मुताबिक त्रिवेंद्रम के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के तहत युवा प्रोफेशनल्स का राउंड टेबल आयोजित किया गया था। राउंड टेबल से पहले वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ तो SFI के छात्रों ने बीच में ही रुकवा दिया। SFI के छात्रों का कहना था कि ये केरलम है और यहाँ आप पूरा वंदे मातरम नहीं गा सकते। बीजेपी 15 अगस्त के कार्यक्रम में वंदे मातरम न गाए जाने को लेकर आज सड़कों पर है। बीजेपी ने केरलम के सभी जिला मुख्यालयों पर वंदे मातरम कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं कांग्रेस भी वंदे मातरम के 2 छंद गाने पर अड़ी है, जिसे लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है।
9: और यदि राष्ट्रगीत का सम्मान करने से कोई मना करता है तो उसकी देशभक्ति पर भी सवालिया निशान स्वाभाविक रूप से लग जाता है। कांग्रेस 1937 के जिस प्रस्ताव की बात करती है, वह कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की कट्टरपंथी मांगों के आगे नतमस्तक होकर पारित किया था और उसका खामियाजा भविष्य में देश को विभाजन के रूप में झेलना पड़ा था।
10: देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया।
8: बहरहाल वंदे मातरम पर अभी संग्राम खत्म होता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: वंदे मातरम पर जारी घमासान का असर अब बॉलीवुड पर भी देखने को मिल रहा है। शर्मिला टैगोर ने वंदे मातरम की

0: आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम. तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है. तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला टू टाइम्स इज वेरी गुड.
1: शर्मिला टैगोर का ये बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि वो रविंद्रनाथ टैगोर के खानदान से ताल्लुक रखती हैं. रविंद्रनाथ टैगोर ही राष्ट्रगान के रचयिता थे. इसके अलावा शर्मिला टैगोर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC की अध्यक्ष रहीं. वो 13 अक्टूबर 2004 से 31 मार्च 2011 तक इस पद पर रहीं और तब केंद्र में UPA की सरकार थी. खैर, सिर्फ इसलिए शर्मिला टैगोर की दलील को सियासी चश्मे से देखना सही नहीं होगा. बहरहाल, शर्मिला टैगोर की मुखालफत में बॉलीवुड की एक और अभिनेत्री सामने आ गई हैं, जिनका नाम कंगना रनावत है. एक कलाकार के तौर पर मुझे हैरानी होती है कि कला या कविता के बारे में उनकी सोच इतनी सीमित और बनावटी कैसे हो सकती है. किसी भी कविता या गाने में शब्द रूपक यानी मेटाफर्स होते हैं. कवि या कलाकार मनचाहा असर पैदा करने के लिए तरह तरह की कल्पनाओं और अद्भुत तुलनाओं का इस्तेमाल करते हैं. वंदे मातरम आजादी की लड़ाई की भावना है. बंकिम चंद्र जी देश को अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए प्रेरित कर रहे थे. आप कला की इतनी महान रचना को सिर्फ एक धार्मिक रीति रिवाज कैसे कह सकती हैं? इस तरह शर्मिला टैगोर के खिलाफ कंगना रनावत ने मोर्चा खोल दिया और इस मोर्चे से उन्होंने शर्मिला टैगोर पर हमलों की बौछार कर दी. कंगना आगे कहती है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि उन्हें ऐसे युवा चाहिए जिनका शरीर लोहे जैसा हो, हड्डियां स्टील की हो और नसों में बिजली जैसी ताकत दौड़ती हो. वो मौसम का हाल नहीं बता रहे थे बल्कि वो शक्ति के जागरण का आह्वान कर रहे थे. कृपया हिंदू मुस्लिम वाली सोच से बाहर आइए, भले ही हम एक ईश्वर में विश्वास करते हों. कंगना और शर्मिला के बीच ये लड़ाई बता रही है कि वंदे मातरम के दो छंद या छह छंद के सवाल पर बॉलीवुड में भी बेचैनी है. आज तक ब्यूरो.
2: खबर जयपुर से आई हंगामे की तस्वीरों की, जहां प्राथमिक स्कूल जा रही कॉकरोच जनता पार्टी पर गांव वालों ने हमला कर दिया. कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका भी यहां मौजूद थे, जिन्होंने बीजेपी पर इस हमले का आरोप लगाया.
3: यहां पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं, उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में और ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है. ये जयपुर की तस्वीर है.
1: जयपुर में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने आई कॉकरोच जनता पार्टी की टीम को लात घूसों से पीटा, किसी को पत्थरों से मारा, किसी पर लात घूसे बरसाए.
3: ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में और इनको यहां पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष राके के साथ मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी. गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं, ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है. ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है और रामपुरा में यहां पर ये देखिए लात घूसों से इनकी पिटाई की जा रही है. ये देखिए एक एक की पिटाई कर रहे हैं, यहाँ पर गाँव वाले पीछे भाग रहे.
1: जयपुर के रामपुरा गांव के इसी स्कूल की जांच पड़ताल के लिए कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP कार्यकर्ता गांव में पहुंचे थे. CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका की अगुवाई में युवाओं का ग्रुप गांव में घुसा तो गांव वाले भी पहले से तैयार बैठे थे.
4: आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है. पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए. पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है. ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं.
5: आज आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर. इनको डर है कि कहीं CJP वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे और CJP वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए. सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा.
1: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी है. ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी पर हुए हमले पर कांग्रेस भी सरकार को घेर रही है.
6: वे चाहते हैं कि हमारी नाकामी को छुपी रहे और जो बदहाली है स्कूलों में, व्यवस्था है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, इतने बच्चों की मौत हो चुकी है और स्थिति बहुत गंभीर है.
1: जयपुर के जिस स्कूल के निरीक्षण को लेकर CJP कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ उसकी सच्चाई ये है कि गांव का स्कूल जर्जर है. जिस इमारत में क्लास चलती थी उसकी हालत इतनी खराब है कि कभी भी ढह जाए. इसीलिए गांव वालों ने स्कूल के सामने ही एक तबेले में व्यवस्था कर दी जहां कक्षाएं चलती हैं.
3: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो बड़े बड़े वादे करते हैं बच्चों के फ्यूचर को लेकर, ये देखिए तस्वीर यहाँ पर

0: गेट पर यहाँ पर कुंटी लगा रखी है और यहाँ पर अंदर ही आपको ये भैंसों का तबेला दिख रहा होगा।
1: अब सवाल यह है कि आखिर स्कूल के सुधार से किसी को क्या परेशानी हो सकती है। गांव वाले कह रहे हैं कि समस्या शिक्षा सुधार से नहीं CJP से है।
2: ऐसे कार्यकर्ता नहीं चाहिए कॉकरोच वाले, इनका तो घोर विरोध करेगा ग्रामीण, क्योंकि ये देश के नहीं है तो हमारे क्या हो सकते हैं।
3: जब शिक्षा व्यवस्था सुधार करना ही उनका एक मुद्दा था तो फिर वो झारखंड क्यों नहीं गए? जब पिछले 15 दिनों से वहाँ अनशन हो रहा था तो झारखंड क्यों नहीं गए अभिजीत दीप के?
1: इससे पहले भी जयपुर में रांका के स्कूल जाने पर हंगामा हुआ था। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्कूलों की हालत गंभीर है, जहां एक बड़े सुधार की जरूरत है। आज तक ब्यूरो
4: खबर झारखंड की, जहां हाईकोर्ट के निर्णय के बाद नाराजगी का पूरा खेल ही बदल गया। आंदोलन से सरकार को मनवाने वाले छात्र अब सरकार पर कोर्ट में कमजोर पक्ष रखने का आरोप लगा रहे हैं और एक बार फिर सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं।
5: झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर स्टे लगाकर दो परीक्षाओं से चयनित कर्मचारियों को राहत दी तो दूसरे कर्मचारी भी राहत की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए।
6: हम लोग भी वही रास्ता अख्तियार करेंगे और हम लोग भी स्टे लेके आएंगे।
7: क्या लगता है सरकार ने ये फैसला गलत किया?
6: सरकार ने एक तरफा फैसला किया है। सरकार ने, मुझे लगता है कि अपने सारे रास्तों को एग्जॉस्ट नहीं किया। ये एक हेस्टी डिसीजन है जो कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेशर बनाने से उसके दबाव में आके सरकार ने एक हेस्टी डिसीजन।
5: इस बीच हाईकोर्ट के फैसले से वो छात्र भी नाराज जिनकी मांग पर सोरेन सरकार ने इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया था। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच के बैनर तले प्रदर्शन करने वाले छात्र आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष सही से नहीं रखा।
8: आप ये धोखा सिर्फ झारखंड के लाखों छात्रों को नहीं दिए हैं, झारखंड के तमाम आम आवाम को दिए हैं, झारखंड के उन तमाम अभिभावक को दिए हैं जिन्होंने अपने बच्चा को, अपने बेटा और बेटियों को पिछले 26 दिनों से अपने हक और अधिकार के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भेजने का काम किया।
5: 16 दिन तक अनशन करने वाले देवेंद्र महतो ने भी चेतावनी दी कि सरकार ने लापरवाही बरती तो बड़ा आंदोलन करेंगे।
9: सरकार अपना पक्ष रखने में, अपना जांच रिपोर्ट रखने में अगर किसी तरीके से लिपापोती करती है, किसी तरीके से कोताही बरतती है तो यहाँ के छात्र बिल्कुल अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब जेपी के तर्ज पर, जेपी आंदोलन के तर्ज पर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, ये हम आज ऐलान करते हैं।
5: सोरेन सरकार के लिए भी विचित्र स्थिति पैदा हो गई। एक गुट की मांग माने तो दूसरा नाराज और दूसरे की मांग माने तो पहला नाराज। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
4: खबर यूपी की राजनीति की, जहां मुख्यमंत्री योगी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में पहुंचे। योगी ने समाजवादी पार्टी की PDA की परिभाषा पर कटाक्ष किया तो अखिलेश यादव पर कल्याण सिंह का अपमान करने का आरोप लगाया।
10: क्रिकेट की तरह रिंग रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं? पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। ये वही लोग हैं, हमें दुख हुआ था और अत्यंत कष्ट हुआ था। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं, कितना द्वेष रखते हैं। उन्होंने बाबूजी को प्रत्यक्ष जाकर के श्रद्धांजलि देने की बजाय शब्दों से भी नहीं कोई कुछ व्यक्त किया। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा अपमान, ये जाति अपमान है और ये हर उस हिंदू का अपमान है जिसको लगता है कि बाबूजी का जीवन सनातन मूल्यों के लिए, हिंदू गौरव के लिए समर्पित था, उस हर हिंदू का अपमान था ये।
4: यूपी में एक राजनीति जेनजी और जेन अल्फा को लेकर भी चल रही है। इस बीच CM योगी जापान की जेल जेन अल्फा से मिले, जहां उन्होंने भारत और जापान की जेन अल्फा को जोड़ने की कोशिश की।
5: जापान के जेन अल्फा के साथ योगी आदित्यनाथ नई जनरेशन के स्टाइल में सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। पहले छात्र सेल्फी लेता है, फिर योगी खुद सेल्फी स्टिक पकड़कर सेल्फी लेने लगते हैं। तस्वीरें लखनऊ के CM आवास की, जहां एक डायलॉग विद का फ्यूचर कार्यक्रम के तहत योगी आदित्यनाथ ने जापान से आए 13 छात्रों के साथ संवाद किया।
11: एक बच्चा लखनऊ के किसी गांव से आया है और दूसरा जापान के किसी गांव से, एक हिंदी बोलता है दूसरा जापानी, पर दोनों के बीच में एक चीज समान रूप से है और वह है कि दोनों अभी अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं।
5: छात्रों ने भी योगी आदित्यनाथ के साथ गाना गाया। कार्यक्रम के बाद योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को गिफ्ट दिया, तो वहीं छात्र भी मुख्यमंत्री के लिए खास तोहफा लाए गए। आज तक
4: खबर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे की, जहां बॉर्डर सिक्योरिटी पर अमित शाह ने ममता बैनर्जी को घेरा। सिलीगुड़ी में कहा कि हमें घुसपैठ पर अंकुश लगाना था, हम पूरी सीमा पर बाड़ लगाना चाहते थे, लेकिन ममता ने हमें कभी जमीन ही नहीं दी।
12: हम तो पुराने सीएम साहिबा को भी बुलाते थे, वो एसएसबी के कार्यक्रम में आना नहीं चाहती थी। हमने तो आपको बुलाया, आप आ गए, आपका स्वागत है। एसएसबी हो, बीएसएफ हो, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक सरकार की एजेंसी नहीं है। ये अहर्निश तप तपस्या और परिश्रम कर देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला बल है। इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिसी, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी गवर्नमेंट, सभी राजनीतिक दलों को, चाहे बंगाल में हो या केंद्र में जो सरकार हो, सभी ने जवानों के साथ आत्मीय रिश्ता रखना चाहिए। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर ही 1129 एकड़ भूमि जो हम 2014 से मांगते थे हमें मिलती नहीं थी, बीएसएफ और एसएसबी के लिए 1129 एकड़ भूमि शुभेंदु जी ने दे दिया। हम ममता बैनर्जी के हाथ पैर जोड़कर थक गए, मगर हमें भूमि नहीं दी। एक बार उन्होंने आग्रह रखा, मैं उनकी ऑफिस में भी पहुंच गया कि ममता जी, वो भारतीय जनता पार्टी को जमीन नहीं देना है, बीएसएफ को देना है, आप कृपया दे दीजिए। हाँ बोला, मगर गई तब तक नहीं दी।
4: अबर पाकिस्तान की, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान के साथ खेल हो गया। उन्हें 16 सितंबर तक अस्पताल में रहने की छूट थी, लेकिन कुछ ही घंटों में इमरान को वापस रावलपिंडी अस्पताल से जेल भेज दिया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में आखिर चल क्या रहा है।
13: रात 1:05 रावलपिंडी का अदियाला जेल, अचानक सड़क पर हलचल तेज हुई। इस भारी सुरक्षा काफिले में इमरान खान की बहन डॉक्टर उज्मा खान और उनके निजी चिकित्सक डॉक्टर फैसल सुल्तान की गाड़ी को भी साथ रहने की अनुमति दी गई थी। जब ये काफिला शिफा अस्पताल पहुंचा, तो पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। एंट्री रूट्स पर कटीले तार लगा दिए गए थे और किसी भी बाहरी वाहन या मीडिया को पास आने की इजाज़त नहीं थी।
14: मीडिया के भाइयों से गुजारिश होगी, ये DSA लगाई हुई है, ये सारी खाली कार्ड है, ये चौक अक्रॉस द बैरियर लगे जो है वहाँ पे मीडिया पॉइंट बनाया हुआ है हमने। शाबाश।
13: उधर जिन रास्तों से इस काफिले को गुजरना था, वहाँ इमरान समर्थक गुलाब की पंखुड़ियाँ बरसा रहे थे।
15: फूल ही फूल थे, आज फूलों की पत्तियां थी, आज लोगों की मोहब्बत थी, और आज लोगों ने कहा कि फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है।
13: इमरान खान को शिफा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनके पहुंचने से पहले तक मीडिया को हटा दिया गया था, लिहाजा इमरान खान की एक तस्वीर तक सामने नहीं आई। असली सस्पेंस इसके बाद शुरू हुआ। पूरी दुनिया में यह खबर फैल गई कि इमरान खान को जेल से इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन इस खबर के कुछ ही देर बाद मामला पलट गया। जानकारी मिली कि इमरान खान को वापस अदियाला जेल भेज दिया गया है।
16: सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक होना लाजिम था, बड़ी बदकिस्मती है जो कुछ हुआ है, लेकिन देखते हैं आगे क्या।
13: ये खबर चौंकाने वाली थी, क्योंकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को इलाज के लिए 16 सितंबर तक शिफा अस्पताल भेजने का आदेश दिया था, लेकिन इमरान खान को कुछ ही घंटे बाद फिर से जेल भेज दिया गया। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने सोशल मीडिया एक्स पर 2 घंटे में 2 पोस्ट किए। पहले पोस्ट में लिखा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए कैदी को 20 और 21 अगस्त की रात कड़ी सुरक्षा में अस्पताल ले जाया गया। आपके डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट और एक फिजिशियन समेत डॉक्टरों की टीम ने उनकी विस्तृत जांच की और उन्हें मेडिकली फिट घोषित किया। उनकी बहन उज्मा खान जांच और इलाज के दौरान उनके साथ रहीं। पूरी जांच के बाद उन्हें 21 अगस्त की सुबह 5 बजे के करीब वापस अदियाला जेल भेज दिया गया। उन्होंने कोई डॉक्टरी रिपोर्ट साझा नहीं की, ये भी नहीं बताया कि 4 घंटे में ही कैसे पूरी जांच हो गई और हुई तो उसकी रिपोर्ट कहाँ है। 2 घंटे बाद एक और पोस्ट लिखा और ये खुलासा किया कि इमरान की जांच शिफा अस्पताल में नहीं बल्कि पेम्स यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में की गई। आज तक ब्यूरो।
4: छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: राहुल गांधी के धरने के बाद पैलेट गन केस में दिल्ली के संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज। राहुल का कटाक्ष, अमित शाह और गृह सचिव ने दी अनुमति, बोले न्याय की दिशा में पहला कदम। राहुल पर बीजेपी का पलटवार, नड्डा बोले वंदे मातरम पर घिरने के बाद कांग्रेस का धरना, स्मृति बोली विरोध के नाम पर स्वांग। सीएम योगी ने अखिलेश को फिर घेरा, कहा इनके पीडीए का पी पिछड़ा से पंडित हुआ और एक दिन होकर जाएगा पाकिस्तान। अखिलेश का पोस्ट, एक रंगी क्या जाने पीडीए के बहुरंग। इधर नवीन की नई टीम बनने के बाद बीजेपी की तीन बड़ी बैठक, राष्ट्रीय पदाधिकारियों प्रदेश अध्यक्षों के साथ चुनावी तैयारियों और संगठन की रणनीति पर मंथन। झारखंड में रांची समेत कई शहरों में भिड़े छात्र और जेएमएम कार्यकर्ता, सीएम सोरेन का पुतला फूंकने पर हंगामा, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म फोरम का प्रदर्शन। दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज करवाने में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 7 घंटे लग गए। एक महीने पहले छात्रों के आंदोलन में कथित तौर पर पैलेट गन से घायल हुए एक छात्र की एफआईआर करवाने के लिए राहुल ने आंदोलन किया। सुबह 11:30 बजे राहुल दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे। उनके साथ में पैलेट गन का पीड़ित भी था। बस मांग ये थी कि एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन पुलिस ने दर्ज करने से मना कर दिया, जिसके बाद राहुल गांधी वहीं धरने पर बैठ गए। शाम को खबर आई कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार हो गई है। इस बीच राहुल से डीसीपी सचिन शर्मा लगातार बात करते रहे। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि दिल्ली के थाने में एफआईआर दर्ज होने में 8 घंटे लगे तो हमारे देश के अन्य थानों का क्या हाल होगा।
1: ये न्याय का पहला कदम है, केस लॉज हुआ है। देखिए
2: जब से आपको ये गोली लगी 20 जुलाई
1: एक महीना हो गया, छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, 3-4 छर्रे दिल के पास है, साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11:30 बजे हम यहाँ आए, एक महीने से ये घूम रहे हैं, 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, 7:45 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल किए। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिलता। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है, और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल ओके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है।
0: साहिल के एफआईआर की जानकारी आज तक को लगी, जिसमें साहिल ने बताया कि नीले कपड़े पहनने वाले व्यक्ति के हाथ में बड़ी सी बंदूक थी, जिसने उस पर 4-5 बार पैलेट गन चलाई, जिससे उसकी दाई आंख की रोशनी चली गई।
3: न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है, पर मेरे को खुशी से ज्यादा दुख भी है कि एलओपी के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट दिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ, मेरे शरीर में 200 छर्रे, उसके बाद भी मेरी एफआईआर को 8 घंटे में लिया गया, और शायद ये ली भी ना जाती अगर एलओपी मेरा साथ ना देते। 14 अगस्त से मैं एफआईआर के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी एफआईआर ली गई।
4: उम्मीद थी आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी, जब ये कल बात हुई और आप यहाँ आए सुबह, जो पुलिस ये कहा उसके बाद
3: मेरे को विश्वास था जी एलओपी आगे तो कंप्लेंट तो होनी है, ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है।
0: राहुल गांधी बहुत अच्छे तरह से ये समझ चुके हैं कि आंदोलनों की राजनीति लंबे समय तक फायदा देती है, और इसीलिए पिछले एक महीने से राहुल गांधी ने इस बार धरना पॉलिटिक्स पर ज्यादा जोर दिया, चाहे वो जंतर मंतर के छात्रों का मुद्दा संसद में उठाना हो या फिर इस आंदोलन में पुलिस की हिंसा का मुद्दा हो। राहुल गांधी का एजेंडा एकदम अब क्लियर लग रहा है।
5: यह है राहुल गांधी की धरना पॉलिटिक्स का दूसरा एपिसोड। 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन हुआ जिसमें हिंसा हुई, तो 21 जुलाई को राहुल गांधी ने पहले प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया था। अब करीब एक महीने के बाद 21 अगस्त को राहुल गांधी ने आज संसद मार्ग थाने के बाहर धरना दिया। आरोप है कि दिल्ली पुलिस एक पैलेट गन से घायल पीड़ित की FIR दर्ज नहीं कर रही है।
1: हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज FIR दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, FIR नहीं हो सकता है, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे।
5: राहुल गांधी पैलेट पीड़ित 19 साल के साहिब लोचाप के परिवार के साथ धरने पर बैठे और आरोप लगाया कि पैलेट की चोट से आंख की रोशनी गंवा चुके साहिल के साथ न्याय नहीं हो रहा।
1: एम्स की रिपोर्ट जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे।
5: राहुल गांधी इन्हीं साहिल को लेकर पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, तब भी उन्होंने दिल्ली पुलिस और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। लेकिन शायद दिल्ली पुलिस को ये अंदाजा नहीं था कि राहुल गांधी अब उन्हीं के थाने के बाहर इस पीड़ित को लेकर धरने पर बैठ जाएंगे। उनके साथ प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और जयराम रमेश भी मौजूद हैं। राहुल का आरोप है कि 20 जुलाई के प्रदर्शन में साहिल पैलेट गन से घायल हुए। 14 अगस्त को उन्होंने दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी लेकिन उन्हें शिकायत की कॉपी ही नहीं मिली। 17 अगस्त को ईमेल और फोन से भी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई लेकिन कुछ नहीं हुआ।
6: साहिल पर जो गैर कानूनी ढंग से पुलिस एक्शन हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, उस संदर्भ में FIR दर्ज किया जाए और FIR नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर उनको दिया जाए। मांग सिंपल है, FIR दर्ज करो, रजिस्ट्रेशन नंबर दो और हम यहां से निकलेंगे।
5: पीड़ित छात्र की शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं करने के पीछे कोई वाजिब कारण नहीं बताया गया है, लेकिन दलील यह है कि 20 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता और पुलिस वालों पर हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यों की हाई पावर कमेटी बनाई। ये कमेटी पैलेट गन, इलेक्ट्रिक शॉक बैटन के इस्तेमाल से लेकर महिलाओं से अभद्रता और पुलिस वालों पर हमले के तथ्यों की जांच करेगी। इसके लिए कमेटी घटना के दिन के सारे ड्रोन, CCTV, बॉडी कैम रिकॉर्डिंग के सबूतों की मदद भी लेगी और दोनों पक्षों के घायलों को अंतरिम मुआवजा देने पर भी रिपोर्ट देगी। बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है?
7: जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं।
5: दरअसल 20 जुलाई को चली पैलेट गन को लेकर पहले तो दिल्ली पुलिस और सरकार ने इनकार किया, फिर GD एंट्री में 2 राउंड पैलेट फायरिंग की पुष्टि हुई और मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट में भी पता चला। RTI में खुलासा हुआ कि लेडी हार्डिंग अस्पताल में पैलेट गन जैसी चोट से जख्मी 9 घायल पहुंचे थे। इसी तरह सफदरजंग के दस्तावेज में पता चला कि एक मरीज पैलेट गन से जख्मी आया था। पैलेट के पीड़ित साहिब लोचाप को राहुल ने पहले भी मीडिया के सामने पेश किया था और उनके शरीर पर सैकड़ों पैलेट के निशान दिखाए थे, जिसके बाद बाकी पैलेट पीड़ित प्रशांत और इरशाद नाम के 2 छात्रों की ओर से पूर्व IPS ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। मौसमी सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।
0: और अब खबर वंदे मातरम को लेकर जारी राजनीति की। जहां केरल में विपक्ष वंदे मातरम का विरोध कर रही है, तो सरकार विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है।
8: वंदे मातरम पर दो छेक का विवाद किस मुकाम तक पहुंच गया है, ये तस्वीर उसकी वानगी है। जगह है त्रिवेंद्रम का कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और विरोध करते ये छात्र SFI के हैं, कह रहे हैं कि ये केरलम है, यहाँ आप पूरा वंदे मातरम नहीं गा सकते। खबरों के मुताबिक त्रिवेंद्रम के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के तहत युवा प्रोफेशनल्स का राउंड टेबल आयोजित किया गया था। राउंड टेबल से पहले वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ तो SFI के छात्रों ने बीच में ही रुकवा दिया। SFI के छात्रों का कहना था कि ये केरलम है और यहाँ आप पूरा वंदे मातरम नहीं गा सकते। बीजेपी 15 अगस्त के कार्यक्रम में वंदे मातरम न गाए जाने को लेकर आज सड़कों पर है। बीजेपी ने केरलम के सभी जिला मुख्यालयों पर वंदे मातरम कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं कांग्रेस भी वंदे मातरम के दो छंद गाने पर अड़ी है, जिसे लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है।
9: और यदि राष्ट्रगीत का सम्मान करने से कोई मना करता है तो उसकी देशभक्ति पर भी सवालिया निशान स्वाभाविक रूप से लग जाता है। कांग्रेस 1937 के जिस प्रस्ताव की बात करती है, वह कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की कट्टरपंथी मांगों के आगे नतमस्तक होकर पारित किया था और उसका खामियाजा भविष्य में देश को विभाजन के रूप में झेलना पड़ा था।
10: देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया।
8: बहरहाल वंदे मातरम पर अभी संग्राम खत्म होता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: वंदे मातरम पर जारी घमासान का असर अब बॉलीवुड पर भी देखने को मिल रहा है। शर्मिला टैगोर ने वंदे मातरम की दो पद यानी कि दो स्टेंजा गाने का समर्थन किया, जिस पर कंगना रनौत भड़क गई।
8: वंदे मातरम पर जारी सियासत के बीच शर्मिला टैगोर की एंट्री ने आग में घी का काम किया है।
11: और वंदे मातरम के जो स्टेंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला टू स्टैंजा इज वेरी गुड।
8: शर्मिला टैगोर का ये बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि वो रविंद्रनाथ टैगोर के खानदान से ताल्लुक रखती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ही राष्ट्रगान के रचयिता थे। इसके अलावा शर्मिला टैगोर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC की अध्यक्ष रहीं। वो 13 अक्टूबर 2004 से 31 मार्च 2011 तक इस पद पर रहीं और तब केंद्र में UPA की सरकार थी। खैर, सिर्फ इसलिए शर्मिला टैगोर की दलील को सियासी चश्मे से देखना सही नहीं होगा। बहरहाल शर्मिला टैगोर की मुखालफत में बॉलीवुड की एक और अभिनेत्री सामने आ गई हैं, जिनका नाम कंगना रनौत है। एक कलाकार के तौर पर मुझे हैरानी होती है कि कला या कविता के बारे में उनकी सोच इतनी सीमित और बनावटी कैसे हो सकती है। किसी भी कविता या गाने में शब्द रूपक यानी मेटाफर्स होते हैं। कवि या कलाकार मनचाहा असर पैदा करने के लिए तरह तरह की कल्पनाओं और अद्भुत तुलनाओं का इस्तेमाल करते हैं। वंदे मातरम आजादी की लड़ाई की भावना है। बंकिम चंद्र जी देश को अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। आप कला की इतनी महान रचना को सिर्फ एक धार्मिक रीति रिवाज कैसे कह सकती हैं? इस तरह शर्मिला टैगोर के खिलाफ कंगना रनौत ने मोर्चा खोल दिया और इस मोर्चे से उन्होंने शर्मिला टैगोर पर हमलों की बौछार कर दी। कंगना आगे कहती है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि उन्हें ऐसे युवा चाहिए जिनका शरीर लोहे जैसा हो, हड्डियां स्टील की हो और नसों में बिजली जैसी ताकत दौड़ती हो। वो मौसम का हाल नहीं बता रहे थे बल्कि वो शक्ति के जागरण का आह्वान कर रहे थे। कृपया हिंदू मुस्लिम वाली सोच से बाहर आइए, भले ही हम एक ईश्वर में विश्वास करते हों। कंगना और शर्मिला के बीच ये लड़ाई बता रही है कि वंदे मातरम के दो छंद या छह छंद के सवाल पर बॉलीवुड में भी बेचैनी है। आज तक ब्यूरो।
0: खबर जयपुर से आई हंगामे की तस्वीरों की, जहां प्राथमिक स्कूल जा रही कॉकरोच जनता पार्टी पर गांव वालों ने हमला कर दिया। कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष डांका भी यहां मौजूद थे, जिन्होंने बीजेपी पर इस हमले का आरोप लगाया।
12: यहां पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं, उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में, और ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है।
8: जयपुर में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने आई कॉकरोच जनता पार्टी की टीम को लात घूंसों से पीटा, किसी को पत्थरों से मारा, किसी पर लात घूंसे बरसाए।
12: ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में, और इनको यहां पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष राके के साथ मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी। गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं, ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है, और रामपुरा में यहां पर ये देखिए लात घूंसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक एक की पिटाई कर रहे हैं, यहाँ पर गाँव वाले पीछे भाग रहे हैं।
8: जयपुर के रामपुरा गांव के इसी स्कूल की जांच पड़ताल के लिए कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी कार्यकर्ता गांव में पहुंचे थे। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका की अगुवाई में युवाओं का ग्रुप गांव में घुसा तो गांव वाले भी पहले से तैयार बैठे थे।
13: आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है, हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं।
14: आज आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर। इनको डर है कि कहीं सीजेपी वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे, और सीजेपी वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए, सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा।
8: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी है। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी पर हुए हमले पर कांग्रेस भी सरकार को घेर रही है।
15: वे चाहते हैं कि हमारी नाकामी को छुपी रहे, और जो बदहाली है स्कूलों में, व्यवस्था है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, इतने बच्चों की मौत हो चुकी है और स्थिति बहुत गंभीर है।
8: जयपुर के जिस स्कूल के निरीक्षण को लेकर सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ उसकी सच्चाई ये है कि गांव का स्कूल जर्जर है। जिस इमारत में क्लास चलती थी उसकी हालत इतनी खराब है कि कभी भी ढह जाए, इसीलिए गांव वालों ने स्कूल के सामने ही एक तबेले में व्यवस्था कर दी जहां कक्षाएं चलती हैं।
13: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो बड़े बड़े वादे करते हैं बच्चों के फ्यूचर को लेकर, ये देखिए तस्वीर, यहाँ पर गेट पर यहाँ पर कुंटी लगा रखी है, और यहाँ पर अंदर ही आपको ये भैंसों का तबेला दिख रहा होगा।
8: अब सवाल यह है कि आखिर स्कूल के सुधार से किसी को क्या परेशानी हो सकती है। गांव वाले कह रहे हैं कि समस्या शिक्षा सुधार से नहीं सीजेपी से है।
16: ऐसे कार्यकर्ता नहीं चाहिए कॉकरोच वाले, इनका तो घोर विरोध करेगा ग्रामीण, क्योंकि ये देश के नहीं है तो हमारे क्या हो सकते हैं।
17: जब शिक्षा व्यवस्था सुधार करना ही उनका एक मुद्दा था तो फिर वो झारखंड क्यों नहीं गए? जब पिछले 15 दिनों से वहाँ आंदोलन हो रहा था तो झारखंड क्यों नहीं गए अभिजीत दीप के?
8: इससे पहले भी जयपुर में रांका के स्कूल जाने पर हंगामा हुआ था। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्कूलों की हालत गंभीर है, जहाँ एक बड़े सुधार की जरूरत है। आज तक ब्यूरो।
0: खबर झारखंड की, जहां हाईकोर्ट के निर्णय के बाद नाराजगी का पूरा खेल ही बदल गया। आंदोलन से सरकार को मनवाने वाले छात्र अब सरकार पर कोर्ट में कमजोर पक्ष रखने का आरोप लगा रहे हैं और एक बार फिर सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं।
18: झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर स्टे लगाकर दो परीक्षाओं से चयनित कर्मचारियों को राहत दी तो दूसरे कर्मचारी भी राहत की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए।
19: हम लोग भी वही रास्ता अख्तियार करेंगे और हम लोग भी स्टे लेके आएंगे।
20: हाँ, क्या लगता है सरकार ने ये फैसला गलत किया?
19: सरकार ने एक तरफा फैसला किया है। सरकार ने, मुझे लगता है कि अपने सारे रास्तों को एग्जॉस्ट नहीं किया। ये एक हेस्टी डिसीजन है जो कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेशर बनाने से उसके दबाव में आके सरकार ने एक हेस्टी डिसीजन।
18: इस बीच हाईकोर्ट के फैसले से वो छात्र भी नाराज जिनकी मांग पर सोरेन सरकार ने इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया था। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के बैनर तले प्रदर्शन करने वाले छात्र आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष सही से नहीं रखा।
21: आप ये धोखा सिर्फ झारखंड के लाखों छात्रों को नहीं दिए हैं, झारखंड के तमाम आम आवाम को दिए हैं, झारखंड के उन तमाम अभिभावक को दिए हैं जिन्होंने अपने बच्चा को, अपने बेटा और बेटियों को पिछले 26 दिनों से अपने हक और अधिकार के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भेजने का काम किया।
18: 16 दिन तक अनशन करने वाले देवेंद्र महतो ने भी चेतावनी दी कि सरकार ने लापरवाही बरती तो बड़ा आंदोलन करेंगे।
2: सरकार अपना पक्ष रखने में, अपना जांच रिपोर्ट रखने में अगर किसी तरीके से लिपापोती करती है, किसी तरीके से कोताही बरतती है, तो यहाँ के छात्र बिल्कुल अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब जेपी के तर्ज पर, जेपी आंदोलन के तर्ज पर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, ये हम आज ऐलान करते हैं।
18: सोरेन सरकार के लिए भी विचित्र स्थिति पैदा हो गई। एक गुट की मांग माने तो दूसरा नाराज, और दूसरे की मांग माने तो पहला नाराज। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: खबर यूपी की राजनीति की, जहां मुख्यमंत्री योगी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में पहुंचे। योगी ने समाजवादी पार्टी की पीडीए की परिभाषा पर कटाक्ष किया, तो अखिलेश यादव पर कल्याण सिंह का अपमान करने का आरोप लगाया।
4: क्रिकेट की तरह रिंग रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं? पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। ये वही लोग हैं, हमें दुख हुआ था और अत्यंत कष्ट हुआ था। समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने, कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं, कितना द्वेष रखते हैं। उन्होंने बाबूजी को प्रत्यक्ष जाकर के श्रद्धांजलि देने की बजाय शब्दों से भी नहीं कोई कुछ व्यक्त किया। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा अपमान, ये जाति अपमान है, और ये हर उस हिंदू का अपमान है जिसको लगता है कि बाबूजी का जीवन सनातन मूल्यों के लिए, हिंदू गौरव के लिए समर्पित था, उस हर हिंदू का अपमान था ये।
0: यूपी में एक राजनीति जेनजी और जेन अल्फा को लेकर भी चल रही है। इस बीच सीएम योगी जापान की जेल जेन अल्फा से मिले, जहां उन्होंने भारत और जापान की जेन अल्फा को जोड़ने की कोशिश की।
18: जापान के जेन अल्फा के साथ योगी आदित्यनाथ नई जनरेशन के स्टाइल में सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। पहले छात्र सेल्फी लेता है, फिर योगी खुद सेल्फी स्टिक पकड़कर सेल्फी लेने लगते हैं। तस्वीरें लखनऊ के सीएम आवास की, जहां एक डायलॉग विद का फ्यूचर कार्यक्रम के तहत योगी आदित्यनाथ ने जापान से आए 13 छात्रों के साथ संवाद किया।
22: एक बच्चा लखनऊ के किसी गांव से आया है और दूसरा जापान के किसी गांव से। एक हिंदी बोलता है, दूसरा जापानी, पर दोनों के बीच में एक चीज समान रूप से है, और वह है कि दोनों अभी अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं।
18: छात्रों ने भी योगी आदित्यनाथ के साथ गाना गाया। कार्यक्रम के बाद योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को गिफ्ट दिया, तो वहीं छात्र भी मुख्यमंत्री के लिए खास तोहफा लाए थे। आज तक
0: खबर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे की, जहां बॉर्डर सिक्योरिटी पर अमित शाह ने ममता बैनर्जी को घेरा। सिलीगुड़ी में कहा कि हमें घुसपैठ पर अंकुश लगाना था, हम पूरी सीमा पर बाड़ लगाना चाहते थे, लेकिन ममता ने हमें कभी जमीन ही नहीं दी।
10: हम तो पुराने सीएम साहिबा को भी बुलाते थे, वो एसएसबी के कार्यक्रम में आना नहीं चाहती थी। हमने तो आपको बुलाया, आप आ गए, आपका स्वागत है। एसएसबी हो, बीएसएफ हो, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक सरकार की एजेंसी नहीं है। ये हर निष्ठ तपस्या और परिश्रम कर देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला बल है। इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिसी, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी गवर्नमेंट, सभी राजनीतिक दलों को, चाहे बंगाल में हो या केंद्र में जो सरकार हो, सभी ने जवानों के साथ आत्मीय रिश्ता रखना चाहिए। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर ही 1129 एकड़ भूमि, जो हम 2014 से मांगते थे, हमें मिलती नहीं थी, बीएसएफ और एसएसबी के लिए 1129 एकड़ भूमि शुभेंदु जी ने दे दिया। हम ममता बनर्जी के हाथ पैर जोड़कर थक गए मगर हमें भूमि नहीं दी। एक बार उन्होंने आग्रह रखा, मैं उनकी ऑफिस में भी पहुंच गया कि ममता जी वो भारतीय जनता पार्टी को जमीन नहीं देना है, बीएसएफ को देना है, आप कृपया दे दीजिए। हाँ बोला मगर गई तब तक नहीं दी।
0: ये राजधानी लखनऊ में हुए डबल मर्डर और आत्महत्या के मामले को लेकर हड़कंप मचा है। एक बैंक कर्मी ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की और फिर घर आकर अपनी बहन को मार डाला, अंत में खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस पूरे मामले में ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे।
1: ये सीसीटीवी तस्वीर लखनऊ में हुई दो हत्याओं में से एक की है। इसमें दिख रहा है कि बैंक के अंदर जा रही दिव्या मिश्रा नाम की महिला को उसका पति मानस गेट पर ही रोकता है और फिर दिव्या के साथ मारपीट करने लगता है। मारपीट होता देख पहले बैंक का गार्ड बाहर आता है लेकिन डर कर वो भी लौट जाता है। तब बैंक के अंदर से दूसरे स्टाफ दौड़कर बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो सड़क पर पहुंचते हैं गोली चलती है और सभी स्टाफ डरकर बैंक की तरफ भागते हैं। इतनी देर में दिव्या का खून हो जाता है। इस मामले में ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपी पति मानस कई दिनों से दिव्या की रेखी कर रहा था। 18 अगस्त को भी उसने दिव्या की गाड़ी रुकवाने की कोशिश की थी। तब से दिव्या डरी सहमी थी। उसने अपने करीबियों को बताया था कि मानस उसे मार देगा और दो दिनों के बाद दिव्या का वही अंजाम भी हुआ। लेकिन सवाल यह है कि मानस ने पत्नी पर चीटिंग का आरोप लगाया तो पत्नी की हत्या की, खुद को भी मार डाला, तो फिर अपनी बहन की हत्या क्यों की?
3: बहन उसके घर में बैठी थी, वो भी डिस्टर्ब थी, बहन के चक्कर बहन को बहुत जान देता था।
6: उसने इसीलिए बहन को मार दिया कि पत्नी को मार दिया, मैं जेल चला?
3: नहीं जेल चला, घर में उसको कौन देखेगा, कौन संभालेगा? ये उसको सबसे बड़ा चिंता थी कि हमारे न रहे कोई बात हो गई तो उसका क्या होगा।
1: मानस के परिवार वाले बताते हैं कि माँ की मौत के बाद बहन डिप्रेशन में थी, वहीं बहू भी परिवार का अच्छे से ख्याल रख रही थी।
3: बहू अच्छी थी और हमारे घर आती तो बहू का ही काम करती थी, हमारी वाइफ को काम नहीं करने देती। मेरे बेटे की शादी में एक हफ्ते की छुट्टी लेके हमारे यहाँ रही और पूरी जिम्मेदारी उसने निभाई।
1: परिवार को भरोसा नहीं हो रहा कि मानस ऐसा कर सकता है।
3: लड़का एक नंबर का डरपोक था, पता नहीं कहाँ से
6: डरपोक था।
3: रात में जब देर हो जाती थी हम लोग यहाँ से 10 के बाद जाता था तो विधान खाना खाने के बाद जाता था तो विधानसभा होकर जाता था या हमारी बहन आशियाना में रहती वहाँ से निकलता था तो हम लोग साथ आता था। तो एक ऐसी होते हुए लाटू रोड होते हुए तब वो जाता था अपने घर, नहीं सन्नाटे के कारण से चला जाए ऐसा कभी उसने किया ही नहीं।
1: यह हत्याकांड और सुसाइड केस बेहद सनसनीखेज है। सवाल है कि मानस जिसने धोखे का आरोप लगाया उनकी सच्चाई क्या है? लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: राहुल गांधी के धरने के बाद पैलेट गन केस में दिल्ली के संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज। राहुल का कटाक्ष, अमित शाह और गृह सचिव ने दी अनुमति, बोले न्याय की दिशा में पहला कदम। राहुल पर बीजेपी का पलटवार, नड्डा बोले वंदे मातरम पर घिरने के बाद कांग्रेस का धरना, स्मृति बोली विरोध के नाम पर स्वांग। सीएम योगी ने अखिलेश को फिर घेरा, कहा इनके पीडीए का पी पिछड़ा से पंडित हुआ और एक दिन होकर जाएगा पाकिस्तान। अखिलेश का पोस्ट, एक रंगी क्या जाने पीडीए के बहुरंग। इधर नवीन की नई टीम बनने के बाद बीजेपी की तीन बड़ी बैठक, राष्ट्रीय पदाधिकारियों प्रदेश अध्यक्षों के साथ चुनावी तैयारियों और संगठन की रणनीति पर मंथन। झारखंड में रांची समेत कई शहरों में भिड़े छात्र और जेएमएम कार्यकर्ता, सीएम सोरेन का पुतला फूंकने पर हंगामा, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म फोरम का प्रदर्शन। दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज करवाने में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 7 घंटे लग गए। एक महीने पहले छात्रों के आंदोलन में कथित तौर पर पैलेट गन से घायल हुए एक छात्र की एफआईआर करवाने के लिए राहुल ने आंदोलन किया। सुबह 11:30 बजे राहुल दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे। उनके साथ में पैलेट गन का पीड़ित भी था। बस मांग ये थी कि एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन पुलिस ने दर्ज करने से मना कर दिया, जिसके बाद राहुल गांधी वहीं धरने पर बैठ गए। शाम को खबर आई कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार हो गई है। इस बीच राहुल से डीसीपी सचिन शर्मा लगातार बात करते रहे। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि दिल्ली के थाने में एफआईआर दर्ज होने में 8 घंटे लगे तो हमारे देश के अन्य थानों का क्या हाल होगा।
1: ये न्याय का पहला कदम है, केस लॉज हुआ है। देखिए
2: जब से आपको ये गोली लगी
1: 20 जुलाई को, एक महीना हो गया, छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, 3-4 छर्रे दिल के पास है, साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11:30 बजे हम यहाँ आए, एक महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, 7:45 हो गए, तब जाके FIR फाइल किए। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिलता। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है, और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल FIR दिया। तो आप समझ जाइए FIR रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे FIR करना, वो वाले भी चाहते थे FIR करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है।
0: साहिल के FIR की जानकारी आज तक को लगी, जिसमें साहिल ने बताया कि नीले कपड़े पहनने वाले व्यक्ति के हाथ में बड़ी सी बंदूक थी, जिसने उस पर 4-5 बार पैलेट गन चलाई, जिससे उसकी दाई आंख की रोशनी चली गई।
3: FIR न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है। पर मेरे को खुशी से ज्यादा दुख भी है कि LOP के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट लिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ, मेरे शरीर में 200 छर्रे, उसके बाद भी मेरी FIR को 8 घंटे में लिया गया, और शायद ये ली भी ना जाती अगर LOP मेरा साथ ना देते। 14 अगस्त से मैं FIR के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी FIR ली गई।
4: उम्मीद थी आपकी FIR रजिस्टर्ड होगी जब ये कल बात हुई और आप यहाँ आए सुबह, जो पुलिस ने कहा उसके बाद
3: मेरे को विश्वास था जी LOP आएगा तो कंप्लेंट तो होनी है, ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है।
0: राहुल गांधी बहुत अच्छे तरह से ये समझ चुके हैं कि आंदोलनों की राजनीति लंबे समय तक फायदा देती है, और इसीलिए पिछले एक महीने से राहुल गांधी ने इस बार धरना पॉलिटिक्स पर ज्यादा जोर दिया, चाहे वो जंतर मंतर के छात्रों का मुद्दा संसद में उठाना हो या फिर इस आंदोलन में पुलिस की हिंसा का मुद्दा हो। राहुल गांधी का एजेंडा एकदम अब क्लियर लग रहा है।
5: यह है राहुल गांधी की धरना पॉलिटिक्स का दूसरा एपिसोड। 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन हुआ जिसमें हिंसा हुई, तो 21 जुलाई को राहुल गांधी ने पहले प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया था। अब करीब एक महीने के बाद 21 अगस्त को राहुल गांधी ने आज संसद मार्ग थाने के बाहर धरना दिया। आरोप है कि दिल्ली पुलिस एक पैलेट गन से घायल पीड़ित की FIR दर्ज नहीं कर रही है।
1: हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज FIR दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया FIR नहीं हो सकता है, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे।
5: राहुल गांधी पैलेट पीड़ित 19 साल के साहिब लोचाप के परिवार के साथ धरने पर बैठे और आरोप लगाया कि पैलेट की चोट से आंख की रोशनी गंवा चुके साहिल के साथ न्याय नहीं हो रहा।
1: एम्स की रिपोर्ट जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे।
5: राहुल गांधी इन्हीं साहिल को लेकर पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, तब भी उन्होंने दिल्ली पुलिस और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। लेकिन शायद दिल्ली पुलिस को ये अंदाजा नहीं था कि राहुल गांधी अब उन्हीं के थाने के बाहर इस पीड़ित को लेकर धरने पर बैठ जाएंगे। उनके साथ प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और जयराम रमेश भी मौजूद हैं। राहुल का आरोप है कि 20 जुलाई के प्रदर्शन में साहिल पैलेट गन से घायल हुए। 14 अगस्त को उन्होंने दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी लेकिन उन्हें शिकायत की कॉपी ही नहीं मिली। 17 अगस्त को ईमेल और फोन से भी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई लेकिन कुछ नहीं हुआ।
6: साहिल पर जो गैर कानूनी ढंग से पुलिस एक्शन हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, उस संदर्भ में FIR दर्ज किया जाए और FIR नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर उनको दिया जाए। मांग सिंपल है, FIR दर्ज करो, रजिस्ट्रेशन नंबर दो और हम यहां से निकलेंगे।
5: पीड़ित छात्र की शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं करने के पीछे कोई वाजिब कारण नहीं बताया गया है, लेकिन दलील यह है कि 20 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता और पुलिस वालों पर हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यों की हाई पावर कमेटी बनाई। ये कमेटी पैलेट गन, इलेक्ट्रिक शॉक बैटन के इस्तेमाल से लेकर महिलाओं से अभद्रता और पुलिस वालों पर हमले के तथ्यों की जांच करेगी। इसके लिए कमेटी घटना के दिन के सारे ड्रोन, CCTV, बॉडी कैम रिकॉर्डिंग के सबूतों की मदद भी लेगी और दोनों पक्षों के घायलों को अंतरिम मुआवजा देने पर भी रिपोर्ट देगी। BJP सवाल उठा रही है कि क्या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है?
7: जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है? क्या सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं?
5: दरअसल 20 जुलाई को चली पैलेट गन को लेकर पहले तो दिल्ली पुलिस और सरकार ने इनकार किया, फिर GD एंट्री में 2 राउंड पैलेट फायरिंग की पुष्टि हुई और मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट में भी पता चला। RTI में खुलासा हुआ कि लेडी हार्डिंग अस्पताल में पैलेट गन जैसी चोट से जख्मी 9 घायल पहुंचे थे। इसी तरह सफदरजंग के दस्तावेज में पता चला कि एक मरीज पैलेट गन से जख्मी आया था। पैलेट के पीड़ित साहिब लोचाप को राहुल ने पहले भी मीडिया के सामने पेश किया था और उनके शरीर पर सैकड़ों पैलेट के निशान दिखाए थे, जिसके बाद बाकी पैलेट पीड़ित प्रशांत और इरशाद नाम के 2 छात्रों की ओर से पूर्व IPS ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। मौसमी सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: और अब खबर वंदे मातरम को लेकर जारी राजनीति की। जहां केरलम में विपक्ष वंदे मातरम का विरोध कर रही है, तो सरकार विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है।
8: वंदे मातरम पर दो छेक का विवाद किस मुकाम तक पहुंच गया है, ये तस्वीर उसकी वानगी है। जगह है त्रिवेंद्रम का कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और विरोध करते ये छात्र SFI के हैं। कह रहे हैं कि ये केरलम है, यहाँ आप पूरा वंदे मातरम नहीं गा सकते। खबरों के मुताबिक त्रिवेंद्रम के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के तहत युवा प्रोफेशनल्स का राउंड टेबल आयोजित किया गया था। राउंड टेबल से पहले वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ तो SFI के छात्रों ने बीच में ही रुकवा दिया। SFI के छात्रों का कहना था कि ये केरलम है और यहाँ आप पूरा वंदे मातरम नहीं गा सकते। BJP 15 अगस्त के कार्यक्रम में वंदे मातरम न गाए जाने को लेकर आज सड़कों पर है। BJP ने केरलम के सभी जिला मुख्यालयों पर वंदे मातरम कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं कांग्रेस भी वंदे मातरम के दो छंद गाने पर अड़ी है, जिसे लेकर BJP लगातार कांग्रेस पर हमलावर है।
9: और यदि राष्ट्रगीत का सम्मान करने से कोई मना करता है तो उसकी देशभक्ति पर भी सवालिया निशान स्वाभाविक रूप से लग जाता है। कांग्रेस 1937 के जिस प्रस्ताव की बात करती है, वह कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की कट्टरपंथी मांगों के आगे नतमस्तक होकर पारित किया था और उसका खामियाजा भविष्य में देश को विभाजन के रूप में झेलना पड़ा था।
10: देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया।
8: बहरहाल वंदे मातरम पर अभी संग्राम खत्म होता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: वंदे मातरम पर जारी घमासान का असर अब बॉलीवुड पर भी देखने को मिल रहा है। शर्मिला टैगोर ने वंदे मातरम की दो पद यानी कि दो स्टेंजा गाने का समर्थन किया, जिस पर कंगना रनौत भड़क गई।
8: वंदे मातरम पर जारी सियासत के बीच शर्मिला टैगोर की एंट्री ने आग में घी का काम किया है।
11: और वंदे मातरम के एक जो स्टेंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला टू टाइम्स इज वेरी गुड।
8: शर्मिला टैगोर का ये बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि वो रविंद्रनाथ टैगोर के खानदान से ताल्लुक रखती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ही राष्ट्रगान के रचयिता थे। इसके अलावा शर्मिला टैगोर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC की अध्यक्ष रहीं। वो 13 अक्टूबर 2004 से 31 मार्च 2011 तक इस पद पर रहीं और तब केंद्र में UPA की सरकार थी। खैर, सिर्फ इसलिए शर्मिला टैगोर की दलील को सियासी चश्मे से देखना सही नहीं होगा। बहरहाल शर्मिला टैगोर की मुखालफत में बॉलीवुड की एक और अभिनेत्री सामने आ गई हैं, जिनका नाम कंगना रनौत है। एक कलाकार के तौर पर मुझे हैरानी होती है कि कला या कविता के बारे में उनकी सोच इतनी सीमित और बनावटी कैसे हो सकती है। किसी भी कविता या गाने में शब्द रूपक यानी मेटाफर्स होते हैं। कवि या कलाकार मनचाहा असर पैदा करने के लिए तरह तरह की कल्पनाओं और अद्भुत तुलनाओं का इस्तेमाल करते हैं।

0: और अद्भुत तुलनाओं का इस्तेमाल करते हैं। वंदे मातरम आजादी की लड़ाई की भावना है। बंकिम चंद्र जी देश को अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। आप कला की इतनी महान रचना को सिर्फ एक धार्मिक रीति रिवाज कैसे कह सकती हैं? इस तरह शर्मिला टैगोर के खिलाफ कंगना रनावत ने मोर्चा खोल दिया और इस मोर्चे से उन्होंने शर्मिला टैगोर पर हमलों की बौछार कर दी। कंगना आगे कहती है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि उन्हें ऐसे युवा चाहिए जिनका शरीर लोहे जैसा हो, हड्डियां स्टील की हो और नसों में बिजली जैसी ताकत दौड़ती हो। वो मौसम का हाल नहीं बता रहे थे बल्कि वो शक्ति के जागरण का आह्वान कर रहे थे। कृपया हिंदू मुस्लिम वाली सोच से बाहर आइए, भले ही हम एक ईश्वर में विश्वास करते हों। कंगना और शर्मिला के बीच ये लड़ाई बता रही है कि वंदे मातरम के दो छंद या छह छंद के सवाल पर बॉलीवुड में भी बेचैनी है। आज तक ब्यूरो।
1: खबर जयपुर से आई हंगामे की तस्वीरों की, जहां प्राथमिक स्कूल जा रही कॉकरोच जनता पार्टी पर गांव वालों ने हमला कर दिया। कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका भी यहां मौजूद थे, जिन्होंने बीजेपी पर इस हमले का आरोप लगाया।
2: यहां पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं, उग्र हो चुका है, धक्का मुक्की हो रही है आपस में। ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है।
0: जयपुर में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने आई कॉकरोच जनता पार्टी की टीम को लात घूसों से पीटा, किसी को पत्थरों से मारा, किसी पर लात घूसे बरसाए।
2: ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में और इनको यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष राके के साथ ये मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी। गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं। ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है और रामपुरा में यहाँ पर ये देखिए लात घूसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक एक की पिटाई कर रहे हैं, यहाँ पर गाँव वाले पीछे भाग रहे हैं।
0: जयपुर के रामपुरा गांव के इसी स्कूल की जांच पड़ताल के लिए कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी कार्यकर्ता गांव में पहुंचे थे। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका की अगुवाई में युवाओं का ग्रुप गांव में घुसा तो गांव वाले भी पहले से तैयार बैठे थे।
3: आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं।
4: आज आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर। इनको डर है कि कहीं सीजेपी वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे और सीजेपी वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए। सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा।
0: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी है। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी पर हुए हमले पर कांग्रेस भी सरकार को घेर रही है।
5: वे चाहते हैं कि हमारी नाकामी को छुपी रहे और जो बदहाली है स्कूलों में, व्यवस्था है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, इतने बच्चों की मौत हो चुकी है और स्थिति बहुत गंभीर है।
0: जयपुर के जिस स्कूल के निरीक्षण को लेकर सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ उसकी सच्चाई ये है कि गांव का स्कूल जर्जर है। जिस इमारत में क्लास चलती थी उसकी हालत इतनी खराब है कि कभी भी ढह जाए। इसीलिए गांव वालों ने स्कूल के सामने ही एक तबेले में व्यवस्था कर दी जहां कक्षाएं चलती हैं।
6: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो बड़े बड़े वादे करते हैं बच्चों के फ्यूचर को लेकर, ये देखिए तस्वीर, यहां पर गेट पर यहां पर कुंटी लगा रखी है और यहां पर अंदर ही आपको ये भैंसों का तबेला दिख रहा होगा।
0: अब सवाल यह है कि आखिर स्कूल के सुधार से किसी को क्या परेशानी हो सकती है। गांव वाले कह रहे हैं कि समस्या शिक्षा सुधार से नहीं सीजेपी से है।
7: ऐसे कार्यकर्ता नहीं चाहिए कॉकरोच वाले, इनका तो घोर विरोध करेगा ग्रामीण, क्योंकि ये देश के नहीं है तो हमारे क्या हो सकते हैं।
8: जब शिक्षा व्यवस्था सुधार करना ही उनका एक मुद्दा था तो फिर वो झारखंड क्यों नहीं गए? जब पिछले 15 दिनों से वहां अनशन हो रहा था तो झारखंड क्यों नहीं गए अभिजीत दीप के?
0: इससे पहले भी जयपुर में रांका के स्कूल जाने पर हंगामा हुआ था। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्कूलों की हालत गंभीर है जहां एक बड़े सुधार की जरूरत है। आज तक ब्यूरो।
1: खबर झारखंड की, जहां हाईकोर्ट के निर्णय के बाद नाराजगी का पूरा खेल ही बदल गया। आंदोलन से सरकार को मनवाने वाले छात्र अब सरकार पर कोर्ट में कमजोर पक्ष रखने का आरोप लगा रहे हैं और एक बार फिर सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं।
9: झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर स्टे लगाकर दो परीक्षाओं से चयनित कर्मचारियों को राहत दी तो दूसरे कर्मचारी भी राहत की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए।
10: हम लोग भी वही रास्ता अख्तियार करेंगे और हम लोग भी स्टे लेके आएंगे।
11: क्या लगता है सरकार ने ये फैसला गलत किया?
10: सरकार ने एक तरफा फैसला किया है।

0: सरकार ने, मुझे लगता है कि अपने सारे रास्तों को एग्जॉस्ट नहीं किया, ये एक हेस्टी डिसीजन है जो कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेशर बनाने से उसके दबाव में आके सरकार ने एक हेस्टी डिसीजन।
1: इस बीच हाईकोर्ट के फैसले से वो छात्र भी नाराज हैं जिनकी मांग पर सोरेन सरकार ने इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया था। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के बैनर तले प्रदर्शन करने वाले छात्र आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष सही से नहीं रखा।
2: आप ये धोखा सिर्फ झारखंड के लाखों छात्रों को नहीं दिए हैं, झारखंड के तमाम आम आवाम को दिए हैं, झारखंड के उन तमाम अभिभावक को दिए हैं जिन्होंने अपने बच्चा को, अपने बेटा और बेटियों को पिछले 26 दिनों से अपने हक और अधिकार के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भेजने का काम किया।
1: 16 दिन तक अनशन करने वाले देवेंद्र महतो ने भी चेतावनी दी कि सरकार ने लापरवाही बरती तो बड़ा आंदोलन करेंगे।
3: सरकार अपना पक्ष रखने में, अपना जांच रिपोर्ट रखने में अगर किसी तरीके से लिपापोती करती है, किसी तरीके से कोताही बरतती है तो यहाँ के छात्र बिल्कुल अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब जेपी के तर्ज पर, जेपी आंदोलन के तर्ज पर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, ये हम आज ऐलान करते हैं।
1: सोरेन सरकार के लिए भी विचित्र स्थिति पैदा हो गई। एक गुट की मांग माने तो दूसरा नाराज और दूसरे की मांग माने तो पहला नाराज। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
4: खबर यूपी की राजनीति की, जहां मुख्यमंत्री योगी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुण्यतिथि के कार्यक्रम में पहुंचे। योगी ने समाजवादी पार्टी की पीडीए की परिभाषा पर कटाक्ष किया तो अखिलेश यादव पर कल्याण सिंह का अपमान करने का आरोप लगाया।
5: क्रिकेट की तरह रिंग रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं, पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। ये वही लोग हैं, हमें दुख हुआ था और अत्यंत कष्ट हुआ था। समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं, कितना द्वेष रखते हैं। उन्होंने बाबूजी को प्रत्यक्ष जाकर के श्रद्धांजलि देने की बजाय शब्दों से भी नहीं कोई कुछ व्यक्त किया। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा अपमान, ये जाति अपमान है और ये हर उस हिंदू का अपमान है जिसको लगता है कि बाबूजी का जीवन सनातन मूल्यों के लिए, हिंदू गौरव के लिए समर्पित था, उस हर हिंदू का अपमान था ये।
4: यूपी में एक राजनीति जेनजी और जेन अल्फा को लेकर भी चल रही है। इस बीच सीएम योगी जापान के जेन अल्फा से मिले, जहां उन्होंने भारत और जापान के जेन अल्फा को जोड़ने की कोशिश की।
1: जापान के जेन अल्फा के साथ योगी आदित्यनाथ नई जनरेशन के स्टाइल में सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। पहले छात्र सेल्फी लेता है, फिर योगी खुद सेल्फी स्टिक पकड़कर सेल्फी लेने लगते हैं। तस्वीरें लखनऊ के सीएम आवास की, जहां एक डायलॉग विद का फ्यूचर कार्यक्रम के तहत योगी आदित्यनाथ ने जापान से आए 13 छात्रों के साथ संवाद किया।
6: एक बच्चा लखनऊ के किसी गाँव से आया है और दूसरा जापान के किसी गाँव से। एक हिंदी बोलता है, दूसरा जापानी, पर दोनों के बीच में एक चीज समान रूप से है और वह है कि दोनों अभी अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं।
1: छात्रों ने भी योगी आदित्यनाथ के साथ गाना गाया। कार्यक्रम के बाद योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को गिफ्ट दिया तो वहीं छात्र भी मुख्यमंत्री के लिए खास तोहफा लाए गए। आज तक के
4: खबर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे की, जहां बॉर्डर सिक्योरिटी पर अमित शाह ने ममता बैनर्जी को घेरा। सिलीगुड़ी में कहा कि हमें घुसपैठ पर अंकुश लगाना था, हम पूरी सीमा पर बाड़ लगाना चाहते थे, लेकिन ममता ने हमें कभी जमीन ही नहीं दी।
7: हम तो पुराने सीएम साहिबा को भी बुलाते थे, वो एसएसबी के कार्यक्रम में आना नहीं चाहती थी। हमने तो आपको बुलाया, आप आ गए, आपका स्वागत है। एसएसबी हो, बीएसएफ हो, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक सरकार की एजेंसी नहीं है। ये अहर्निश तप तपस्या और परिश्रम कर देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला बल है। इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिसी, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी गवर्नमेंट, सभी राजनीतिक दलों को, चाहे बंगाल में हो या केंद्र में जो सरकार हो, सभी ने जवानों के साथ आत्मीय रिश्ता रखना चाहिए। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर ही 1129 एकड़ भूमि, जो हम 2014 से मांगते थे, हमें मिलती नहीं थी। बीएसएफ और एसएसबी के लिए 1129 एकड़ भूमि शुभेंदु जी ने दे दिया। हम ममता बनर्जी के हाथ पैर जोड़कर थक गए, मगर हमें भूमि नहीं दी। एक बार उन्होंने आग्रह रखा, मैं उनकी ऑफिस में भी पहुंच गया कि ममता जी, वो भारतीय जनता पार्टी को जमीन नहीं देना है, बीएसएफ को देना है, आप कृपया दे दीजिए। हाँ बोला, मगर गई तब तक नहीं दी।
4: ये राजधानी लखनऊ में हुए डबल मर्डर और आत्महत्या के मामले को लेकर हड़कंप मचा है। एक बैंक कर्मी ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की और फिर घर आकर अपनी बहन को मार डाला, अंत में खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस पूरे मामले में ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे।
8: ये सीसीटीवी तस्वीर लखनऊ में हुई दो हत्याओं में से एक की है। इसमें दिख रहा है कि बैंक के अंदर जा रही दिव्या मिश्रा नाम की महिला को उसका पति मानस गेट पर ही रोकता है और फिर दिव्या के साथ मारपीट करने लगता है। मारपीट होता देख पहले बैंक का गार्ड बाहर आता है, लेकिन डर कर वो भी लौट जाता है। तब बैंक के अंदर से दूसरे स्टाफ दौड़कर बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो सड़क पर पहुंचते हैं, गोली चलती है और सभी स्टाफ डरकर बैंक की तरफ भागते हैं। इतनी देर में दिव्या का खून हो जाता है। इस मामले में ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपी पति मानस कई दिनों से दिव्या की रेखी कर रहा था। 18 अगस्त को भी उसने दिव्या की गाड़ी रुकवाने की कोशिश की थी। तब से दिव्या डरी सहमी थी। उसने अपने करीबियों को बताया था कि मानस उसे मार देगा और दो दिनों के बाद दिव्या का वही अंजाम भी हुआ। लेकिन सवाल यह है कि मानस ने पत्नी पर चीटिंग का आरोप लगाया तो पत्नी की हत्या की, खुद को भी मार डाला, तो फिर अपनी बहन की हत्या क्यों की?
9: बहन उसके घर में बैठी थी, वो भी डिस्टर्ब थी। बहन के चक्कर बहन को बहुत जान देता था,
10: उसने इसीलिए बहन को मार दिया कि पत्नी को मार दिया। मैं जेल चला
9: नहीं जेल चला, घर में उसको कौन देखेगा, कौन संभालेगा? ये उसको सबसे बड़ा चिंता थी कि हमारे न रहे कोई बात हो गई तो इसका क्या होगा।
8: मानस के परिवार वाले बताते हैं कि माँ की मौत के बाद बहन डिप्रेशन में थी, वहीं बहू भी परिवार का अच्छे से ख्याल रख रही थी।
9: बहू अच्छी थी और हमारे घर आती तो बहू का ही काम करती थी, हमारी वाइफ को काम नहीं करने देती। मेरे बेटे की शादी में एक हफ्ते की छुट्टी लेके हमारे यहाँ रही और पूरी जिम्मेदारी उसने निभाई।
8: परिवार को भरोसा नहीं हो रहा कि मानस ऐसा कर सकता है।
9: लड़का एक नंबर का डरपोक था, पता नहीं कहाँ से
10: डरपोक था।
9: रात में जब देर हो जाती थी हम लोग यहाँ से 10 के बाद जाता था तो विधान खाना खाने के बाद जाता था तो विधानसभा होकर जाता था, या हमारी बहन आशियाना में रहती है वहाँ से निकलता था तो हम लोग साथ आता था। तो एक ऐसी होते हुए लाटू लोड होते हुए तब वो जाता था अपने घर, नहीं सन्नाटे के कारण से चला जाए, ऐसा कभी उसने किया ही नहीं।
8: यह हत्याकांड और सुसाइड केस बेहद सनसनीखेज है। सवाल है कि मानस जिसने धोखे का आरोप लगाया उनकी सच्चाई क्या है? लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: राहुल गांधी के धरने के बाद पैलेट गन केस में दिल्ली के संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज। राहुल का कटाक्ष, अमित शाह और गृह सचिव ने दी अनुमति, बोले न्याय की दिशा में पहला कदम। राहुल पर बीजेपी का पलटवार, नड्डा बोले वंदे मातरम पर घिरने के बाद कांग्रेस का धरना, स्मृति बोली विरोध के नाम पर स्वांग। सीएम योगी ने अखिलेश को फिर घेरा, कहा इनके पीडीए का पी पिछड़ा से पंडित हुआ और एक दिन होकर जाएगा पाकिस्तान। अखिलेश का पोस्ट, एक रंगी क्या जाने पीडीए के बहुरंग। इधर नवीन की नई टीम बनने के बाद बीजेपी की तीन बड़ी बैठक, राष्ट्रीय पदाधिकारियों प्रदेश अध्यक्षों के साथ चुनावी तैयारियों और संगठन की रणनीति पर मंथन। झारखंड में रांची समेत कई शहरों में भिड़े छात्र और जेएमएम कार्यकर्ता, सीएम सोरेन का पुतला फूंकने पर हंगामा, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म फोरम का प्रदर्शन। दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज करवाने में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 7 घंटे लग गए। एक महीने पहले छात्रों के आंदोलन में कथित तौर पर पैलेट गन से घायल हुए एक छात्र की एफआईआर करवाने के लिए राहुल ने आंदोलन किया। सुबह 11:30 बजे राहुल दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे, उनके साथ में पैलेट गन का पीड़ित भी था। बस मांग ये थी कि एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन पुलिस ने दर्ज करने से मना कर दिया, जिसके बाद राहुल गांधी वहीं धरने पर बैठ गए। शाम को खबर आई कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार हो गई है। इस बीच राहुल से डीसीपी सचिन शर्मा लगातार बात करते रहे। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि दिल्ली के थाने में एफआईआर दर्ज होने में 8 घंटे लगे तो हमारे देश के अन्य थानों का क्या हाल होगा।
1: ये न्याय का पहला कदम है, केस लॉज हुआ है। देखिए
2: जब से आपको ये गोली लगी
1: 20 जुलाई को, 1 महीना हो गया, छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, 3-4 छर्रे दिल के पास है, साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11:30 बजे हम यहाँ आए, 1 महीने से ये घूम रहे हैं, 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, 7:45 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल की। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिलता। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है, और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है।
0: साहिल के एफआईआर की जानकारी आज तक को लगी, जिसमें साहिल ने बताया कि नीले कपड़े पहनने वाले व्यक्ति के हाथ में बड़ी सी बंदूक थी, जिसने उस पर 4-5 बार पैलेट गन चलाई, जिससे उसकी दाई आंख की रोशनी चली गई।
3: न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है, पर मेरे को खुशी से ज्यादा दुख भी है कि एलओपी के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट लिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ, मेरे शरीर में 200 छर्रे, उसके बाद भी मेरी एफआईआर को 8 घंटे में लिया गया, और शायद ये ली भी ना जाती अगर एलओपी मेरा साथ ना देते। 14 अगस्त से मैं एफआईआर के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी एफआईआर ली गई।
4: उम्मीद थी आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी जब ये कल बात हुई और आप यहाँ आए सुबह, जो पुलिस ये कहा उसके बाद
3: नहीं, मेरे को विश्वास था जी आलोक के आगे तो कंप्लेंट तो होनी है, ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ, कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है।
0: राहुल गांधी बहुत अच्छे तरह से ये समझ चुके हैं कि आंदोलनों की राजनीति लंबे समय तक फायदा देती है, और इसीलिए पिछले एक महीने से राहुल गांधी ने इस बार धरना पॉलिटिक्स पर ज्यादा जोर दिया, चाहे वो जंतर मंतर के छात्रों का मुद्दा संसद में उठाना हो या फिर इस आंदोलन में पुलिस की हिंसा का मुद्दा हो। राहुल गांधी का एजेंडा एकदम अब क्लियर लग रहा है।
5: यह है राहुल गांधी की धरना पॉलिटिक्स का दूसरा एपिसोड। 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन हुआ जिसमें हिंसा हुई, तो 21 जुलाई को राहुल गांधी ने पहले प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया था। अब करीब एक महीने के बाद 21 अगस्त को राहुल गांधी ने आज संसद मार्ग थाने के बाहर धरना दिया। आरोप है कि दिल्ली पुलिस एक पैलेट गन से घायल पीड़ित की FIR दर्ज नहीं कर रही है।
1: हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज FIR दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया है, FIR नहीं हो सकता है, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे।
5: राहुल गांधी पैलेट पीड़ित 19 साल के साहिब लोचाप के परिवार के साथ धरने पर बैठे हैं और आरोप लगाया कि पैलेट की चोट से आंख की रोशनी गंवा चुके साहिल के साथ न्याय नहीं हो रहा।
1: एम्स की रिपोर्ट जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे।
5: राहुल गांधी इन्हीं साहिल को लेकर पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, तब भी उन्होंने दिल्ली पुलिस और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। लेकिन शायद दिल्ली पुलिस को ये अंदाजा नहीं था कि राहुल गांधी अब उन्हीं के थाने के बाहर इस पीड़ित को लेकर धरने पर बैठ जाएंगे। उनके साथ प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और जयराम रमेश भी मौजूद हैं। राहुल का आरोप है कि 20 जुलाई के प्रदर्शन में साहिल पैलेट गन से घायल हुए। 14 अगस्त को उन्होंने दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी लेकिन उन्हें शिकायत की कॉपी ही नहीं मिली। 17 अगस्त को ईमेल और फोन से भी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई लेकिन कुछ नहीं हुआ।
6: साहिल पर जो गैर कानूनी ढंग से पुलिस एक्शन हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, उस संदर्भ में FIR दर्ज किया जाए और FIR नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर उनको दिया जाए। मांग सिंपल है, FIR दर्ज करो, रजिस्ट्रेशन नंबर दो और हम यहां से निकलेंगे।
5: पीड़ित छात्र की शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं करने के पीछे कोई वाजिब कारण नहीं बताया गया है, लेकिन दलील यह है कि 20 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता और पुलिस वालों पर हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यों की हाई पावर कमेटी बनाई। ये कमेटी पैलेट गन, इलेक्ट्रिक शॉक बैटन के इस्तेमाल से लेकर महिलाओं से अभद्रता और पुलिस वालों पर हमले के तथ्यों की जांच करेगी। इसके लिए कमेटी घटना के दिन के सारे ड्रोन, CCTV, बॉडी कैम रिकॉर्डिंग के सबूतों की मदद भी लेगी और दोनों पक्षों के घायलों को अंतरिम मुआवजा देने पर भी रिपोर्ट देगी। बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है?
7: जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है? क्या सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं?
5: दरअसल 20 जुलाई को चली पैलेट गन को लेकर पहले तो दिल्ली पुलिस और सरकार ने इनकार किया, फिर GD एंट्री में 2 राउंड पैलेट फायरिंग की पुष्टि हुई और मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट में भी पता चला। RTI में खुलासा हुआ कि लेडी हार्डिंग अस्पताल में पैलेट गन जैसी चोट से जख्मी 9 घायल पहुंचे थे। इसी तरह सफदरजंग के दस्तावेज में पता चला कि एक मरीज पैलेट गन से जख्मी आया था। पैलेट के पीड़ित साहिब लोचाप को राहुल ने पहले भी मीडिया के सामने पेश किया था और उनके शरीर पर सैकड़ों पैलेट के निशान दिखाए थे, जिसके बाद बाकी पैलेट पीड़ित प्रशांत और इरशाद नाम के 2 छात्रों की ओर से पूर्व IPS ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। मौसमी सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: और अब खबर वंदे मातरम को लेकर जारी राजनीति की। जहां केरलम में विपक्ष वंदे मातरम का विरोध कर रही है, तो सरकार विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है।
8: वंदे मातरम पर दो छेक का विवाद किस मुकाम तक पहुंच गया है, ये तस्वीर उसकी वानगी है। जगह है त्रिवेंद्रम का कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और विरोध करते ये छात्र SFI के हैं, कह रहे हैं कि ये केरलम है, यहाँ आप पूरा वंदे मातरम नहीं गा सकते। खबरों के मुताबिक त्रिवेंद्रम के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के तहत युवा प्रोफेशनल्स का राउंड टेबल आयोजित किया गया था। राउंड टेबल से पहले वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ तो SFI के छात्रों ने बीच में ही रुकवा दिया। SFI के छात्रों का कहना था कि ये केरलम है और यहाँ आप पूरा वंदे मातरम नहीं गा सकते। BJP 15 अगस्त के कार्यक्रम में वंदे मातरम न गाए जाने को लेकर आज सड़कों पर है। BJP ने केरलम के सभी जिला मुख्यालयों पर वंदे मातरम कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं कांग्रेस भी वंदे मातरम के दो छंद गाने पर अड़ी है, जिसे लेकर BJP लगातार कांग्रेस पर हमलावर है।
9: और यदि राष्ट्रगीत का सम्मान करने से कोई मना करता है तो उसकी देशभक्ति पर भी सवालिया निशान स्वाभाविक रूप से लग जाता है। कांग्रेस 1937 के जिस प्रस्ताव की बात करती है, वह कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की कट्टरपंथी मांगों के आगे नतमस्तक होकर पारित किया था और उसका खामियाजा भविष्य में देश को विभाजन के रूप में झेलना पड़ा था।
10: देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया।
8: बहरहाल वंदे मातरम पर अभी संग्राम खत्म होता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: वंदे मातरम पर जारी घमासान का असर अब बॉलीवुड पर भी देखने को मिल रहा है। शर्मिला टैगोर ने वंदे मातरम की दो पद यानी कि दो स्टेंजा गाने का समर्थन किया, जिस पर कंगना रनौत भड़क गई।
8: वंदे मातरम पर जारी सियासत के बीच शर्मिला टैगोर की एंट्री ने आग में घी का काम किया है।
11: और वंदे मातरम के जो स्टेंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा, उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला टू स्टैंजा इज वेरी गुड।
8: शर्मिला टैगोर का ये बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि वो रविंद्रनाथ टैगोर के खानदान से ताल्लुक रखती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ही राष्ट्रगान के रचयिता थे। इसके अलावा शर्मिला टैगोर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC की अध्यक्ष रहीं। वो 13 अक्टूबर 2004 से 31 मार्च 2011 तक इस पद पर रहीं और तब केंद्र में UPA की सरकार थी। खैर, सिर्फ इसलिए शर्मिला टैगोर की दलील को सियासी चश्मे से देखना सही नहीं होगा। बहरहाल शर्मिला टैगोर की मुखालफत में बॉलीवुड की एक और अभिनेत्री सामने आ गई हैं, जिनका नाम कंगना रनौत है। एक कलाकार के तौर पर मुझे हैरानी होती है कि कला या कविता के बारे में उनकी सोच इतनी सीमित और बनावटी कैसे हो सकती है। किसी भी कविता या गाने में शब्द रूपक यानी मेटाफर्स होते हैं। कवि या कलाकार मनचाहा असर पैदा करने के लिए तरह तरह की कल्पनाओं और अद्भुत तुलनाओं का इस्तेमाल करते हैं। वंदे मातरम आजादी की लड़ाई की भावना है। बंकिम चंद्र जी देश को अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। आप कला की इतनी महान रचना को सिर्फ एक धार्मिक रीति रिवाज कैसे कह सकती हैं? इस तरह शर्मिला टैगोर के खिलाफ कंगना रनौत ने मोर्चा खोल दिया और इस मोर्चे से उन्होंने शर्मिला टैगोर पर हमलों की बौछार कर दी। कंगना आगे कहती है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि उन्हें ऐसे युवा चाहिए जिनका शरीर लोहे जैसा हो, हड्डियां स्टील की हो और नसों में बिजली जैसी ताकत दौड़ती हो। वो मौसम का हाल नहीं बता रहे थे बल्कि वो शक्ति के जागरण का आह्वान कर रहे थे। कृपया हिंदू मुस्लिम वाली सोच से बाहर आइए, भले ही हम एक ईश्वर में विश्वास करते हों। कंगना और शर्मिला के बीच ये लड़ाई बता रही है कि वंदे मातरम के दो छंद या छह छंद के सवाल पर बॉलीवुड में भी बेचैनी है। आज तक ब्यूरो।
0: खबर जयपुर से आई हंगामे की तस्वीरों की, जहां प्राथमिक स्कूल जा रही कॉकरोच जनता पार्टी पर गांव वालों ने हमला कर दिया। कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष डांका भी यहां मौजूद थे, जिन्होंने बीजेपी पर इस हमले का आरोप लगाया।
12: यहां पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं, उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में। ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है।
8: जयपुर में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने आई कॉकरोच जनता पार्टी की टीम को लात घूंसों से पीटा, किसी को पत्थरों से मारा, किसी पर लात घूंसे बरसाए।
12: ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में, और इनको यहां पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष राके के साथ ये मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी। गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं। ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है, और रामपुरा में यहां पर ये देखिए लात घूंसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक एक की पिटाई कर रहे हैं, यहाँ पर गाँव वाले पीछे भाग रहे हैं।
8: जयपुर के रामपुरा गांव के इसी स्कूल की जांच पड़ताल के लिए कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी कार्यकर्ता गांव में पहुंचे थे। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका की अगुवाई में युवाओं का ग्रुप गांव में घुसा तो गांव वाले भी पहले से तैयार बैठे थे।
13: आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं।
14: आज आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर। इनको डर है कि कहीं सीजेपी वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे और सीजेपी वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए। सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा।
8: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी है। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी पर हुए हमले पर कांग्रेस भी सरकार को घेर रही है।
15: वे चाहते हैं कि हमारी नाकामी को छुपी रहे, और जो बदहाली है स्कूलों में, व्यवस्था है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, इतने बच्चों की मौत हो चुकी है और स्थिति बहुत गंभीर है।
8: जयपुर के जिस स्कूल के निरीक्षण को लेकर सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ उसकी सच्चाई ये है कि गांव का स्कूल जर्जर है। जिस इमारत में क्लास चलती थी उसकी हालत इतनी खराब है कि कभी भी ढह जाए, इसीलिए गांव वालों ने स्कूल के सामने ही एक तबेले में व्यवस्था कर दी जहां कक्षाएं चलती हैं।
13: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो बड़े बड़े वादे करते हैं बच्चों के फ्यूचर को लेकर, ये देखिए तस्वीर, यहाँ पर गेट पर यहाँ पर कुंटी लगा रखी है, और यहाँ पर अंदर ये आपको ये भैंसों का तबेला दिख रहा होगा।
8: अब सवाल ये है कि आखिर स्कूल के सुधार से किसी को क्या परेशानी हो सकती है। गांव वाले कह रहे हैं कि समस्या शिक्षा सुधार से नहीं सीजेपी से है।
16: ऐसे कार्यकर्ता नहीं चाहिए कॉकरोच वाले, इनका तो घोर विरोध करेगा ग्रामीण, क्योंकि ये देश के नहीं है तो हमारे क्या हो सकते हैं। जब शिक्षा व्यवस्था सुधार करना ही उनका एक मुद्दा था तो फिर वो झारखंड क्यों नहीं गए? जब पिछले 15 दिनों से वहाँ आंदोलन हो रहा था तो झारखंड क्यों नहीं गए अभिजीत दिपके?
8: इससे पहले भी जयपुर में रांका के स्कूल जाने पर हंगामा हुआ था। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्कूलों की हालत गंभीर है जहां एक बड़े सुधार की जरूरत है। आज तक ब्यूरो।
0: खबर झारखंड की, जहां हाईकोर्ट के निर्णय के बाद नाराजगी का पूरा खेल ही बदल गया। आंदोलन से सरकार को मनवाने वाले छात्र अब सरकार पर कोर्ट में कमजोर पक्ष रखने का आरोप लगा रहे हैं और एक बार फिर सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं।
17: झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर स्टे लगाकर दो परीक्षाओं से चयनित कर्मचारियों को राहत दी तो दूसरे कर्मचारी भी राहत की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए।
18: हम लोग भी वही रास्ता अख्तियार करेंगे और हम लोग भी स्टे लेके आएंगे।
19: क्या लगता है सरकार ने ये फैसला गलत किया?
18: सरकार ने एक तरफा फैसला किया है। सरकार ने, मुझे लगता है कि अपने सारे रास्तों को एग्जॉस्ट नहीं किया, एक हेस्टी डिसीजन है जो कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेशर बनाने से उसके दबाव में आके सरकार ने एक हेस्टी डिसीजन।
17: इस बीच हाईकोर्ट के फैसले से वो छात्र भी नाराज जिनकी मांग पर सोरेन सरकार ने इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया था। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के बैनर तले प्रदर्शन करने वाले छात्र आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष सही से नहीं रखा।
20: आप ये धोखा सिर्फ झारखंड के लाखों छात्रों को नहीं दिए हैं, झारखंड के तमाम आम आवाम को दिए हैं, झारखंड के उन तमाम अभिभावक को दिए जिन्होंने अपने बच्चा को, अपने बेटा और बेटियों को पिछले 26 दिनों से अपने हक और अधिकार के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भेजने का काम किया।
17: 16 दिन तक अनशन करने वाले देवेंद्र महतो ने भी चेतावनी दी कि सरकार ने लापरवाही बरती तो बड़ा आंदोलन करेंगे।
2: सरकार अपना पक्ष रखने में, अपना जांच रिपोर्ट रखने में अगर किसी तरीके से लिपापोती करती है, किसी तरीके से कोताही बरतती है, तो यहाँ के छात्र बिल्कुल अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब जेपी के तर्क पर, जेपी आंदोलन के तर्क पर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, ये हम आज ऐलान करते हैं।
17: सोरेन सरकार के लिए भी विचित्र स्थिति पैदा हो गई। एक गुट की मांग माने तो दूसरा नाराज, और दूसरे की मांग माने तो पहला नाराज। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: खबर यूपी की राजनीति की, जहां मुख्यमंत्री योगी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुण्यतिथि के कार्यक्रम में पहुंचे। योगी ने समाजवादी पार्टी की पीडीए की परिभाषा पर कटाक्ष किया तो अखिलेश यादव पर कल्याण सिंह का अपमान करने का आरोप लगाया।
21: क्रिकेट की तरह रिंग रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं? पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। ये वही लोग हैं, हमें दुख हुआ था और अत्यंत कष्ट हुआ था। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं, कितना द्वेष रखते हैं। उन्होंने बाबूजी को प्रत्यक्ष जाकर के श्रद्धांजलि देने की बजाय शब्दों से भी नहीं कोई कुछ व्यक्त किया। बहन और भाइयों, इससे बड़ा अपमान, ये जाति अपमान है, और ये हर उस हिंदू का अपमान है जिसको लगता है कि बाबूजी का जीवन सनातन मूल्यों के लिए, हिंदू गौरव के लिए समर्पित था। उस हर हिंदू का अपमान था ये।
0: छात्र और बेरोजगार दोनों पर हर नेता की नजर है, लेकिन बावजूद इसके इन दोनों की ही मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। ग्वालियर में नर्सिंग छात्रों का अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग के 56 नर्सिंग कॉलेजों से जुड़े छात्र प्रभावित हैं। छात्रों की चार प्रमुख मांगे, लंबित रिजल्ट जारी करना, परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित करना, पात्र छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देना, कॉलेज की गलती से जिन छात्रों की स्कॉलरशिप रुकी है उनकी फीस माफ करना।
17: ग्वालियर में नर्सिंग छात्रों का हल्ला बोल, कटोरा ताल बना नर्सिंग का जंतर मंतर। परीक्षा रिजल्ट और स्कॉलरशिप को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन, 56 कॉलेजों के छात्रों के भविष्य पर सवाल। दिल्ली के बाद अब ग्वालियर में भी नर्सिंग छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। NSUI के बैनर तले BSc और GNM नर्सिंग के छात्र कटोरा ताल स्थित फ्लैग मार्च पॉइंट पर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ गए हैं। छात्रों ने आंदोलन स्थल को नर्सिंग का जंतर मंतर नाम दिया है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा और रिजल्ट में देरी, कथित फर्जी कॉलेजों, कागजों पर फैकल्टी और स्कॉलरशिप अटकने की वजह से हजारों छात्रों का भविष्य अधर में है।
22: जो कि हमारी परीक्षा 3 साल में कंप्लीट करा के हमें डिग्री मिलनी चाहिए थी, जो कि हमें 6 साल होने को कंप्लीट होने को आए, लेकिन हमें कोई डिग्री अभी तक प्राप्त नहीं है, और इसके जिम्मेदार हमें आज तक नहीं पता चल रहा है। हमारा गवर्नमेंट है, हमारा कॉलेज है, कोई जवाब देने के लिए हमें रेडी नहीं है। यहाँ पे हम क्या करें? हमारा जो समय खराब हुआ है, जो हमें वापस कर सकते हैं हमारे 6 साल? हमारी यही मांग है, जल्द से जल्द एग्जाम करवाए जाए और रिजल्ट प्राप्त हुए जाए हम लोगों को। सारे बच्चे परेशान है, या हम ये नहीं कहते, कोई भी बच्चा कहता है हम गरीब घर से आए, पैसा हमारा है, हमारा टाइम है, तो हमें अपना हक चाहिए, ये हमारी मांगे हैं।
17: छात्रों का कहना है कि GNM का 3 साल का कोर्स 6 साल में भी पूरा नहीं हो रहा, तो वहीं BSc नर्सिंग का 4 साल का कोर्स 7 साल तक खिंच गया है। इतना समय बीतने के बाद भी डिग्री मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। छात्रों ने बताया कि साल 2020, 2021, 2022 के BSc और 2021-2022 के GNM के एग्जाम और रिजल्ट पिछले 3 साल से पेंडिंग पड़े हैं। इसके अलावा शहर में फर्जी कॉलेजों का बड़ा खेल चल रहा है। एक ही बिल्डिंग में नियमों को ताक पर रखकर 3-3 कॉलेज संचालित हो रहे हैं। फैकल्टी सिर्फ कागजों पर दिखाई जा रही है, जबकि हकीकत में मौजूद ही नहीं है। कई छात्रों की स्कॉलरशिप भी कॉलेज की गलती से अटक गई है। छात्रों की मांग है कि जिनके स्कॉलरशिप रुकी है उनकी फीस माफ की जाए। छात्रों का कहना है कि मामला सरकार के संज्ञान में होने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ा।
1: इनकी परीक्षाएं पिछले 4 साल से समय पर आयोजित नहीं की जा रही हैं और इसका पूरा दोष ग्वालियर के जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज हैं, एक एक बिल्डिंग में 3-3 कॉलेज चला रहे हैं और पूर्ण तरह से उनकी जो फैकल्टी लगी हुई है कॉलेज में पूर्ण तरह से फर्जी है और इसका पूरा परेशानी बच्चों को झेलनी पड़ रही है। ये बच्चियां हैं जो गरीब परिवारों से आती हैं, इनकी ना तो स्कॉलरशिप मिली ना इनके समय पर परीक्षाएँ हो रही हैं। ये बच्चियां गरीब परिवार से आती हैं, 3-3 साल में अपनी डिग्री करने के बाद इन लोगों ने सोचा था कि हम 20-25 हज़ार की कहीं नौकरी करेंगे, कहीं सरकार में नर्स बनने का काम करेंगे, लेकिन आज तक ये 5-6 हज़ार की नौकरी करने को मजबूर हैं और कॉलेज द्वारा इनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही है। कॉलेज वाले बोलते हैं हम आपकी बात आगे कर रहे हैं, कॉलेज क्या बात सुनेगा जब कॉलेज खुद फर्जी है, सीबीआई से जाके उन्होंने स्टे लिया।
3: छात्रों की 4 मुख्य मांगे हैं। पहला, सभी लंबित परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द जारी किए जाएं। दूसरा, लंबित परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित कर शेड्यूल जारी हो। तीसरा, सभी पात्र छात्रों को बिना किसी शर्त के परीक्षा में बैठने दिया जाए क्योंकि लापरवाही छात्रों की नहीं है। चौथा, कॉलेज की वजह से जिनकी स्कॉलरशिप रुकी है उनकी फीस माफ हो। छात्रों ने कहा कि लड़ाई किसी संस्था या व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि अपने शिक्षा अधिकार के लिए। मांगे पूरी होने तक कटोराताल फ्लैग पॉइंट पर यह अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। सर्वेश पुरोहित, ग्वालियर, आज तक।
0: अबर पाकिस्तान की पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान के साथ खेल हो गया। उन्हें 16 सितंबर तक अस्पताल में रहने की छूट थी लेकिन कुछ ही घंटों में इमरान को वापस रावलपिंडी अस्पताल से जेल भेज दिया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में आखिर चल क्या रहा है।
4: रात 1:05 रावलपिंडी का अदियाला जेल। अचानक सड़क पर हलचल तेज हुई। इस भारी सुरक्षा काफिले में इमरान खान की बहन डॉक्टर उज्मा खान और उनके निजी चिकित्सक डॉक्टर फैसल सुल्तान की गाड़ी को भी साथ रहने की अनुमति दी गई थी। जब ये काफिला शिफा अस्पताल पहुंचा तो पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। एंट्री रूट्स पर कटीले तार लगा दिए गए थे और किसी भी बाहरी वाहन या मीडिया को पास आने की इजाज़त नहीं थी।
23: मीडिया के भाइयों से गुजारिश होगी, ये डीएसए चीज लगाई हुई है, ये सारी खाली कार्ड है, ये चौक अक्रॉस द बैरियर लगे जो है वहाँ पे मीडिया पॉइंट बनाया हुआ है हमने। शाबाश।
4: उधर जिन रास्तों से इस काफिले को गुजरना था वहाँ इमरान समर्थक गुलाब की पंखुड़ियाँ बरसा रहे थे।
24: फूल ही फूल थे, आज फूलों की पत्तियां थी, आज लोगों की मोहब्बत थी और आज लोगों ने कहा कि फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है।
4: इमरान खान को शिफा अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनके पहुंचने से पहले तक मीडिया को हटा दिया गया था, लिहाजा इमरान खान की एक तस्वीर तक सामने नहीं आई। असली सस्पेंस इसके बाद शुरू हुआ। पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई कि इमरान खान को जेल से इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल ले जाया गया है लेकिन इस खबर के कुछ ही देर बाद मामला पलट गया। जानकारी मिली कि इमरान खान को वापस अदियाला जेल भेज दिया गया है।
25: सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक होना लाजिम था। बड़ी बदकिस्मती है जो कुछ हुआ है लेकिन देखते हैं आगे क्या।
4: ये खबर चौंकाने वाली थी क्योंकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को इलाज के लिए 16 सितंबर तक शिफा अस्पताल भेजने का आदेश दिया था लेकिन इमरान खान को कुछ ही घंटे बाद फिर से जेल भेज दिया गया। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने सोशल मीडिया एक्स पर 2 घंटे में 2 पोस्ट किए। पहले पोस्ट में लिखा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए कैदी को 20 और 21 अगस्त की रात कड़ी सुरक्षा में अस्पताल ले जाया गया। आपके डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट और एक फिजिशियन समेत डॉक्टरों की टीम ने उनकी विस्तृत जांच की और उन्हें मेडिकली फिट घोषित किया। उनकी बहन उज्मा खान जांच और इलाज के दौरान उनके साथ रहीं। पूरी जांच के बाद उन्हें 21 अगस्त की सुबह 5 बजे के करीब वापस अदियाला जेल भेज दिया गया। उन्होंने कोई डॉक्टरी रिपोर्ट साझा नहीं की, ये भी नहीं बताया कि 4 घंटे में ही कैसे पूरी जांच हो गई और हुई तो उसकी रिपोर्ट कहाँ है। 2 घंटे बाद एक और पोस्ट लिखा और ये खुलासा किया कि इमरान की जांच शिफा अस्पताल में नहीं बल्कि पेम्स यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में की गई। आज तक ब्यूरो।
0: छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: राहुल गांधी के धरने के बाद पैलेट गन केस में दिल्ली के संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज। राहुल का कटाक्ष, अमित शाह और गृह सचिव ने दी अनुमति, बोले न्याय की दिशा में पहला कदम। राहुल पर बीजेपी का पलटवार, नड्डा बोले वंदे मातरम पर घिरने के बाद कांग्रेस का धरना, स्मृति बोली विरोध के नाम पर स्वांग। सीएम योगी ने अखिलेश को फिर घेरा, कहा इनके पीडीए का पी पिछड़ा से पंडित हुआ और एक दिन होकर जाएगा पाकिस्तान। अखिलेश का पोस्ट, एक रंगी क्या जाने पीडीए के बहुरंग। इधर नवीन की नई टीम बनने के बाद बीजेपी की तीन बड़ी बैठक, राष्ट्रीय पदाधिकारियों प्रदेश अध्यक्षों के साथ चुनावी तैयारियों और संगठन की रणनीति पर मंथन। झारखंड में रांची समेत कई शहरों में भिड़े छात्र और जेएमएम कार्यकर्ता, सीएम सोरेन का पुतला फूंकने पर हंगामा, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म फोरम का प्रदर्शन। दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज करवाने में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 7 घंटे लग गए। एक महीने पहले छात्रों के आंदोलन में कथित तौर पर पैलेट गन से घायल हुए एक छात्र की एफआईआर करवाने के लिए राहुल ने आंदोलन किया। सुबह 11:30 बजे राहुल दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे। उनके साथ में पैलेट गन का पीड़ित भी था। बस मांग ये थी कि एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन पुलिस ने दर्ज करने से मना कर दिया, जिसके बाद राहुल गांधी वहीं धरने पर बैठ गए। शाम को खबर आई कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार हो गई है। इस बीच राहुल से डीसीपी सचिन शर्मा लगातार बात करते रहे। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि दिल्ली के थाने में एफआईआर दर्ज होने में 8 घंटे लगे तो हमारे देश के अन्य थानों का क्या हाल होगा।
1: ये न्याय का पहला कदम है, केस लॉज हुआ है। देखिए,
2: जब से आपको ये गोली लगी
1: 20 जुलाई को, 1 महीना हो गया, छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, 3-4 छर्रे दिल के पास है, साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11:30 बजे हम यहाँ आए, 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं,
2: पौने सात हो गए,
1: तब जाके एफआईआर फाइल की। अब आप इमेजिन कीजिए, इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिलता। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है, और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल ओके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय के ब्रेक लगी हुई है।
0: साहिल के एफआईआर की जानकारी आज तक को लगी, जिसमें साहिल ने बताया कि नीले कपड़े पहनने वाले व्यक्ति के हाथ में बड़ी सी बंदूक थी, जिसने उस पर 4-5 बार पैलेट गन चलाई, जिससे उसकी दाई आंख की रोशनी चली गई।
3: न्याय की हुई है ये एफआईआर, न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है। पर मेरे को खुशी से ज्यादा दुख भी है कि एलओपी के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट लिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ, मेरे शरीर में 200 छर्रे, उसके बाद मेरी एफआईआर को 8 घंटे में लिया गया, और शायद ये ली भी ना जाती अगर एलओपी मेरा साथ ना देते। 14 अगस्त से मैं एफआईआर के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी एफआईआर ली गई।
2: उम्मीद थी आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी जब ये बात हुई और आप यहाँ आए सुबह, जो पुलिस ने कहा उसके बाद
3: नहीं, मेरे को विश्वास था जी एलओपी आगे तो कंप्लेंट तो होनी है, ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ, कि आपको विश्वास रखना आपकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है।
0: राहुल गांधी बहुत अच्छे तरह से ये समझ चुके हैं कि आंदोलनों की ये राजनीति लंबे समय तक फायदा देती है और इसीलिए पिछले एक महीने से राहुल गांधी ने इस बार धरना पॉलिटिक्स पर ज्यादा जोर दिया, चाहे वो जंतर मंतर के छात्रों का मुद्दा संसद में उठाना हो या फिर इस आंदोलन में पुलिस की हिंसा का मुद्दा हो। राहुल गांधी का एजेंडा एकदम अब क्लियर लग रहा है।
4: यह है राहुल गांधी की धरना पॉलिटिक्स का दूसरा एपिसोड। 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन हुआ जिसमें हिंसा हुई, तो 21 जुलाई को राहुल गांधी ने पहले प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया था। अब करीब एक महीने के बाद 21 अगस्त को राहुल गांधी ने आज संसद मार्ग थाने के बाहर धरना दिया। आरोप है कि दिल्ली पुलिस एक पैलेट गन से घायल पीड़ित की FIR दर्ज नहीं कर रही है।
1: हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज FIR दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया FIR नहीं हो सकता है, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे।
4: राहुल गांधी पैलेट पीड़ित 19 साल के साहिब लोचाप के परिवार के साथ धरने पर बैठे हैं और आरोप लगाया कि पैलेट की चोट से आंख की रोशनी गंवा चुके साहिब के साथ न्याय नहीं हो रहा।
1: एम्स की रिपोर्ट जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे।
4: राहुल गांधी इन्हीं साहिल को लेकर पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, तब भी उन्होंने दिल्ली पुलिस और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। लेकिन शायद दिल्ली पुलिस को ये अंदाजा नहीं था कि राहुल गांधी अब उन्हीं के थाने के बाहर इस पीड़ित को लेकर धरने पर बैठ जाएंगे। उनके साथ प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और जयराम रमेश भी मौजूद हैं। राहुल का आरोप है कि 20 जुलाई के प्रदर्शन में साहिल पैलेट गन से घायल हुए। 14 अगस्त को उन्होंने दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी लेकिन उन्हें शिकायत की कॉपी ही नहीं मिली। 17 अगस्त को ईमेल और फोन से भी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई लेकिन कुछ नहीं हुआ।
5: साहिल पर जो गैर कानूनी ढंग से पुलिस एक्शन हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, उस संदर्भ में FIR दर्ज किया जाए और FIR नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर उनको दिया जाए। मांग सिंपल है, FIR दर्ज करो, रजिस्ट्रेशन नंबर दो और हम यहां से निकलेंगे।
4: पीड़ित छात्र की शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं करने के पीछे कोई वाजिब कारण नहीं बताया गया है, लेकिन दलील यह है कि 20 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता और पुलिस वालों पर हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यों की हाई पावर कमेटी बनाई। ये कमेटी पैलेट गन, इलेक्ट्रिक शॉक बैटन के इस्तेमाल से लेकर महिलाओं से अभद्रता और पुलिस वालों पर हमले के तथ्यों की जांच करेगी। इसके लिए कमेटी घटना के दिन के सारे ड्रोन, CCTV, बॉडी कैम रिकॉर्डिंग के सबूतों की मदद भी लेगी और दोनों पक्षों के घायलों को अंतरिम मुआवजा देने पर भी रिपोर्ट देगी। BJP सवाल उठा रही है कि क्या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है?
6: जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं।
4: दरअसल 20 जुलाई को चली पैलेट गन को लेकर पहले तो दिल्ली पुलिस और सरकार ने इनकार किया, फिर GD एंट्री में 2 राउंड पैलेट फायरिंग की पुष्टि हुई और मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट में भी पता चला। RTI में खुलासा हुआ कि लेडी हार्डिंग अस्पताल में पैलेट गन जैसी चोट से जख्मी 9 घायल पहुंचे थे। इसी तरह सफदरजंग के दस्तावेज में पता चला कि एक मरीज पैलेट गन से जख्मी आया था। पैलेट के पीड़ित साहिब लोचाप को राहुल ने पहले भी मीडिया के सामने पेश किया था और उनके शरीर पर सैकड़ों पैलेट के निशान दिखाए थे, जिसके बाद बाकी पैलेट पीड़ित प्रशांत और इरशाद नाम के 2 छात्रों की ओर से पूर्व IPS ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। मौसमी सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: और अब खबर वंदे मातरम को लेकर जारी राजनीति की। जहां केरलम में विपक्ष वंदे मातरम का विरोध कर रही है, तो सरकार विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है।
7: वंदे मातरम पर दो छेक का विवाद किस मुकाम तक पहुंच गया है, ये तस्वीर उसकी वानगी है। जगह है त्रिवेंद्रम का कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और विरोध करते ये छात्र SFI के हैं। कह रहे हैं कि ये केरलम है, यहाँ आप पूरा वंदे मातरम नहीं गा सकते। खबरों के मुताबिक त्रिवेंद्रम के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के तहत युवा प्रोफेशनल्स का राउंड टेबल आयोजित किया गया था। राउंड टेबल से पहले वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ तो SFI के छात्रों ने बीच में ही रुकवा दिया। SFI के छात्रों का कहना था कि ये केरलम है और यहाँ आप पूरा वंदे मातरम नहीं गा सकते। BJP 15 अगस्त के कार्यक्रम में वंदे मातरम न गाए जाने को लेकर आज सड़कों पर है। BJP ने केरलम के सभी जिला मुख्यालयों पर वंदे मातरम कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं कांग्रेस भी वंदे मातरम के दो छंद गाने पर अड़ी है, जिसे लेकर BJP लगातार कांग्रेस पर हमलावर है।
8: और यदि राष्ट्रगीत का सम्मान करने से कोई मना करता है तो उसकी देशभक्ति पर भी सवालिया निशान स्वाभाविक रूप से लग जाता है। कांग्रेस 1937 के जिस प्रस्ताव की बात करती है, वह कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की कट्टरपंथी मांगों के आगे नतमस्तक होकर पारित किया था और उसका खामियाजा भविष्य में देश को विभाजन के रूप में झेलना पड़ा था।
9: देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया।
7: बहरहाल वंदे मातरम पर अभी संग्राम खत्म होता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: वंदे मातरम पर जारी घमासान का असर अब बॉलीवुड पर भी देखने को मिल रहा है। शर्मिला टैगोर ने वंदे मातरम की दो पद यानी कि दो स्टेंजा गाने का समर्थन किया, जिस पर कंगना रनौत भड़क गई।
7: वंदे मातरम पर जारी सियासत के बीच शर्मिला टैगोर की एंट्री ने आग में घी का काम किया है।
10: और वंदे मातरम के एक जो स्टेंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला टू टाइम्स इज वेरी गुड।
7: शर्मिला टैगोर का ये बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि वो रविंद्रनाथ टैगोर के खानदान से ताल्लुक रखती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ही राष्ट्रगान के रचयिता थे। इसके अलावा शर्मिला टैगोर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC की अध्यक्ष रहीं। वो 13 अक्टूबर 2004 से 31 मार्च 2011 तक इस पद पर रहीं और तब केंद्र में UPA की सरकार थी। खैर, सिर्फ इसलिए शर्मिला टैगोर की दलील को सियासी चश्मे से देखना सही नहीं होगा। बहरहाल शर्मिला टैगोर की मुखालफत में बॉलीवुड की एक और अभिनेत्री सामने आ गई हैं, जिनका नाम कंगना रनौत है। एक कलाकार के तौर पर मुझे हैरानी होती है कि कला या कविता के बारे में उनकी सोच इतनी सीमित और बनावटी कैसे हो सकती है। किसी भी कविता या गाने में शब्द रूपक यानी मेटाफर्स होते हैं। कवि या कलाकार मनचाहा असर पैदा करने के लिए तरह तरह की कल्पनाओं और अद्भुत तुलनाओं का इस्तेमाल करते हैं। वंदे मातरम आजादी की लड़ाई की भावना है। बंकिम चंद्र जी देश को अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। आप कला की इतनी महान रचना को सिर्फ एक धार्मिक रीति रिवाज कैसे कह सकती हैं? इस तरह शर्मिला टैगोर के खिलाफ कंगना रनौत ने मोर्चा खोल दिया और इस मोर्चे से उन्होंने शर्मिला टैगोर पर हमलों की बौछार कर दी। कंगना आगे कहती है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि उन्हें ऐसे युवा चाहिए जिनका शरीर लोहे जैसा हो, हड्डियां स्टील की हो और नसों में बिजली जैसी ताकत दौड़ती हो। वो मौसम का हाल नहीं बता रहे थे बल्कि वो शक्ति के जागरण का आह्वान कर रहे थे। कृपया हिंदू मुस्लिम वाली सोच से बाहर आइए, भले ही

0: सवाल पर बॉलीवुड में भी बेचैनी है। आज तक ब्यूरो।
1: खबर जयपुर से आई हंगामे की तस्वीरों की, जहां प्राथमिक स्कूल जा रही कॉकरोच जनता पार्टी पर गांव वालों ने हमला कर दिया। कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष डांका भी यहां मौजूद थे, जिन्होंने बीजेपी पर इस हमले का आरोप लगाया।
2: यहां पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं, उग्र हो चुका है, धक्का मुक्की हो रही है आपस में, और ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है।
0: जयपुर में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने आई कॉकरोच जनता पार्टी की टीम को लात घूंसों से पीटा, किसी को पत्थरों से मारा, किसी पर लात घूंसे बरसाए।
2: ग्रामीण एक तरह से कहे कि उग्र हो चुका है, धक्का मुक्की हो रही है आपस में, और इनको यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष राके के साथ ये मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी। गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं, ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है, और रामपुरा में यहाँ पर ये देखिए लात घूंसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक एक की पिटाई कर रहे हैं, यहाँ पर गांव वाले पीछे भाग रहे हैं।
0: जयपुर के रामपुरा गांव के इसी स्कूल की जांच पड़ताल के लिए कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी कार्यकर्ता गांव में पहुंचे थे। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका की अगुवाई में युवाओं का ग्रुप गांव में घुसा तो गांव वाले भी पहले से तैयार बैठे थे।
3: आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं।
4: आज आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर। इनको डर है कि कहीं सीजेपी वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे और सीजेपी वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए, सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा।
0: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी है। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी पर हुए हमले पर कांग्रेस भी सरकार को घेर रही है।
5: वे चाहते हैं कि हमारी नाकामी को छुपी रहे, और जो बदहाली है स्कूलों में, व्यवस्था है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, इतने बच्चों की मौत हो चुकी है और स्थिति बहुत गंभीर है।
0: जयपुर के जिस स्कूल के निरीक्षण को लेकर सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ उसकी सच्चाई ये है कि गांव का स्कूल जर्जर है। जिस इमारत में क्लास चलती थी उसकी हालत इतनी खराब है कि कभी भी ढह जाए, इसीलिए गांव वालों ने स्कूल के सामने ही एक तबेले में व्यवस्था कर दी जहां कक्षाएं चलती हैं।
3: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो बड़े बड़े वादे करते हैं बच्चों के फ्यूचर को लेकर, ये देखिए तस्वीर, यहाँ पर गेट पर यहाँ पर कुंटी लगा रखी है, और यहाँ पर अंदर ये आपको ये भैंसों का तबेला दिख रहा होगा।
0: अब सवाल ये है कि आखिर स्कूल के सुधार से किसी को क्या परेशानी हो सकती है। गांव वाले कह रहे हैं कि समस्या शिक्षा सुधार से नहीं सीजेपी से है।
6: ऐसे कार्यकर्ता नहीं चाहिए कॉकरोच वाले, इनका तो घोर विरोध करेगा ग्रामीण, क्योंकि ये देश के नहीं है तो हमारे क्या हो सकते हैं।
7: जब शिक्षा व्यवस्था सुधार करना ही उनका एक मुद्दा था तो फिर वो झारखंड क्यों नहीं गए? जब पिछले 15 दिनों से वहां अनशन हो रहा था तो झारखंड क्यों नहीं गए अभिजीत दीप के?
0: इससे पहले भी जयपुर में रांका के स्कूल जाने पर हंगामा हुआ था। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्कूलों की हालत गंभीर है जहां एक बड़े सुधार की जरूरत है। आज तक ब्यूरो।
1: खबर झारखंड की, जहां हाईकोर्ट के निर्णय के बाद नाराजगी का पूरा खेल ही बदल गया। आंदोलन से सरकार को मनवाने वाले छात्र अब सरकार पर कोर्ट में कमजोर पक्ष रखने का आरोप लगा रहे हैं और एक बार फिर सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं।
8: झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर स्टे लगाकर दो परीक्षाओं से चयनित कर्मचारियों को राहत दी तो दूसरे कर्मचारी भी राहत की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए।
9: हम लोग भी वही रास्ता अख्तियार करेंगे और हम लोग भी स्टे लेके आएंगे।
10: हाँ, क्या लगता है सरकार ने ये फैसला गलत किया?
9: सरकार ने एक तरफा फैसला किया है सरकार ने, मुझे लगता है कि अपने सारे रास्तों को एग्जॉस्ट नहीं किया, ये एक हेस्टी डिसीजन है जो कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेशर बनाने से उसके दबाव में आके सरकार ने एक हेस्टी डिसीजन।
8: इस बीच हाईकोर्ट के फैसले से वो छात्र भी नाराज जिनकी मांग पर सोरेन सरकार ने इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया था। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के बैनर तले प्रदर्शन करने वाले छात्र आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष सही से नहीं रखा।
11: आप ये धोखा सिर्फ झारखंड के लाखों छात्रों को नहीं दिए हैं, झारखंड के तमाम आम आवाम को दिए हैं, झारखंड के उन तमाम अभिभावक को दिए जिन्होंने अपने बच्चा को, अपने बेटा और बेटियों को पिछले 26 दिनों से अपने हक और अधिकार के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भेजने का काम किया।
8: 16 दिन तक अनशन करने वाले देवेंद्र महतो ने भी चेतावनी दी कि सरकार ने

0: लापरवाही बरती तो बड़ा आंदोलन करेंगे।
1: सरकार अपना पक्ष रखने में, अपना जांच रिपोर्ट रखने में अगर किसी तरीके से लिपापोती करती है, किसी तरीके से कोताही बरतती है, तो यहाँ के छात्र बिल्कुल अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब जेपी के तर्ज पर, जेपी आंदोलन के तर्ज पर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, ये हम आज ऐलान करते हैं।
0: सोरेन सरकार के लिए भी विचित्र स्थिति पैदा हो गई। एक गुट की मांग माने तो दूसरा नाराज, और दूसरे की मांग माने तो पहला नाराज। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
2: खबर यूपी की राजनीति की, जहां मुख्यमंत्री योगी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुण्यतिथि के कार्यक्रम में पहुंचे। योगी ने समाजवादी पार्टी की पीडीए की परिभाषा पर कटाक्ष किया तो अखिलेश यादव पर कल्याण सिंह का अपमान करने का आरोप लगाया।
3: क्रिकेट की तरह रिंग रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं? पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। ये वही लोग हैं, हमें दुख हुआ था और अत्यंत कष्ट हुआ था। समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं, कितना द्वेष रखते हैं। उन्होंने बाबूजी को प्रत्यक्ष जाकर के श्रद्धांजलि देने की बजाय शब्दों से भी नहीं कोई कुछ व्यक्त किया। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा अपमान, ये जाति अपमान है, और ये हर उस हिंदू का अपमान है जिसको लगता है कि बाबूजी का जीवन सनातन मूल्यों के लिए, हिंदू गौरव के लिए समर्पित था, उस हर हिंदू का अपमान था ये।
2: यूपी में एक राजनीति जेनजी और जेन अल्फा को लेकर भी चल रही है। इस बीच सीएम योगी जापान की जेल जेन अल्फा से मिले, जहां उन्होंने भारत और जापान की जेन अल्फा को जोड़ने की कोशिश की।
0: जापान के जेन अल्फा के साथ योगी आदित्यनाथ नई जनरेशन के स्टाइल में सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। पहले छात्र सेल्फी लेता है, फिर योगी खुद सेल्फी स्टिक पकड़कर सेल्फी लेने लगते हैं। तस्वीरें लखनऊ के सीएम आवास की, जहां एक डायलॉग विद का फ्यूचर कार्यक्रम के तहत योगी आदित्यनाथ ने जापान से आए 13 छात्रों के साथ संवाद किया।
4: एक बच्चा लखनऊ के किसी गांव से आया है और दूसरा जापान के किसी गांव से। एक हिंदी बोलता है, दूसरा जापानी, पर दोनों के बीच में एक चीज समान रूप से है, और वह है कि दोनों अभी अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं।
0: छात्रों ने भी योगी आदित्यनाथ के साथ गाना गाया। कार्यक्रम के बाद योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को गिफ्ट दिया, तो वहीं छात्र भी मुख्यमंत्री के लिए खास तोहफा लाए गए। आज तक
2: खबर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे की, जहां बॉर्डर सिक्योरिटी पर अमित शाह ने ममता बैनर्जी को घेरा। सिलीगुड़ी में कहा कि हमें घुसपैठ पर अंकुश लगाना था, हम पूरी सीमा पर बाड़ लगाना चाहते थे, लेकिन ममता ने हमें कभी जमीन ही नहीं दी।
5: हम तो पुराने सीएम साहिबा को भी बुलाते थे, वो एसएसबी के कार्यक्रम में आना नहीं चाहती थी। हमने तो आपको बुलाया, आप आ गए, आपका स्वागत है। एसएसबी हो, बीएसएफ हो, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक सरकार की एजेंसी नहीं है। ये अहर्निश तप, तपस्या और परिश्रम कर देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला बल है। इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिसी, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी गवर्नमेंट, सभी राजनीतिक दलों को, चाहे बंगाल में हो या केंद्र में जो सरकार हो, सभी ने जवानों के साथ आत्मीय रिश्ता रखना चाहिए। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर ही 1129 एकड़ भूमि जो हम 2014 से मांगते थे हमें मिलती नहीं थी, बीएसएफ और एसएसबी के लिए 1129 एकड़ भूमि शुभेंदु जी ने दे दिया। हम ममता बनर्जी के हाथ पैर जोड़कर थक गए मगर हमें भूमि नहीं दी। एक बार उन्होंने आग्रह रखा, मैं उनकी ऑफिस में भी पहुंच गया कि ममता जी वो भारतीय जनता पार्टी को जमीन नहीं देना है, बीएसएफ को देना है, आप कृपया दे दीजिए। हाँ बोला मगर गई तब तक नहीं दी।
2: बीगी राजधानी लखनऊ में हुए डबल मर्डर और आत्महत्या के मामले को लेकर हड़कंप मचा है। एक बैंक कर्मी ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की और फिर घर आकर अपनी बहन को मार डाला, अंत में खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस पूरे मामले में ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे।
6: ये सीसीटीवी तस्वीर लखनऊ में हुई दो हत्याओं में से एक की है। इसमें दिख रहा है कि बैंक के अंदर जा रही दिव्या मिश्रा नाम की महिला को उसका पति मानस गेट पर ही रोकता है और फिर दिव्या के साथ मारपीट करने लगता है। मारपीट होता देख पहले बैंक का गार्ड बाहर आता है लेकिन डर कर वो भी लौट जाता है। तब बैंक के अंदर से दूसरे स्टाफ दौड़कर बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो सड़क पर पहुंचते हैं गोली चलती है और सभी स्टाफ डरकर बैंक की तरफ भागते हैं। इतनी देर में दिव्या का खून हो जाता है। इस मामले में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी पति मानस कई दिनों से दिव्या की रेखी कर रहा था। 18 अगस्त को भी उसने दिव्या की गाड़ी रुकवाने की कोशिश की थी। तब से दिव्या डरी सहमी थी। उसने अपने करीबियों को बताया था कि मानस उसे मार देगा और 2 दिनों के बाद दिव्या का वही अंजाम भी हुआ। लेकिन सवाल यह है कि मानस ने पत्नी पर चीटिंग का आरोप लगाया तो पत्नी की हत्या की, खुद को भी मार डाला, तो फिर अपनी बहन की हत्या क्यों की?
7: बहन उसके घर में बैठी थी, वो भी डिस्टर्ब थी, बहन के चक्कर बहन को बहुत जान देता था।
8: उसने इसीलिए बहन को मार दिया कि पत्नी को मार दिया, मैं जेल चला?
7: नहीं जेल चला, घर में उसको कौन देखेगा, कौन संभालेगा? ये उसको सबसे बड़ा चिंता थी कि हमारे न रहे कोई बात हो गई तो इसका क्या होगा।
6: मानस के परिवार वाले बताते हैं कि माँ की मौत के बाद बहन डिप्रेशन में थी, वहीं बहू भी परिवार का अच्छे से ख्याल रख रही थी।
7: बहू अच्छी थी और हमारे घर आती तो बहू का ही काम करती थी, हमारी वाइफ को काम नहीं करने देती। मेरे बेटे की शादी में एक हफ्ते की छुट्टी लेके हमारे यहाँ रही और पूरी जिम्मेदारी उसने निभाई।
6: परिवार को भरोसा नहीं हो रहा कि मानस ऐसा कर सकता है।
7: लड़का एक नंबर का डरपोक था, पता नहीं कहाँ से
8: डरपोक था।
7: रात में जब देर हो जाती थी हम लोग यहाँ से 10 के बाद जाता था तो खाना खाने के बाद जाता था तो विधानसभा होकर जाता था या हमारी बहन आशियाना में रहती वहाँ से निकलता था तो हम लोग साथ आता था। तो एक ऐसी होते हुए लाटू रोड होते हुए तब वो जाता था अपने घर, नहीं सन्नाटक के कारण से चला जाए ऐसा कभी उसने किया ही नहीं।
6: यह हत्याकांड और सुसाइड केस बेहद सनसनीखेज है। सवाल है कि मानस जिसने धोखे का आरोप लगाया उनकी सच्चाई क्या है? लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए।

0: राहुल गांधी के धरने के बाद पैलेट गन केस में दिल्ली के संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज। राहुल का कटाक्ष, अमित शाह और गृह सचिव ने दी अनुमति, बोले न्याय की दिशा में पहला कदम। राहुल पर बीजेपी का पलटवार, नड्डा बोले वंदे मातरम पर घिरने के बाद कांग्रेस का धरना, स्मृति बोली विरोध के नाम पर स्वांग। सीएम योगी ने अखिलेश को फिर घेरा, कहा इनके पीडीए का पी पिछड़ा से पंडित हुआ और एक दिन होकर जाएगा पाकिस्तान। अखिलेश का पोस्ट, एक रंगी क्या जाने पीडीए के बहुरंग। इधर नवीन की नई टीम बनने के बाद बीजेपी की तीन बड़ी बैठक, राष्ट्रीय पदाधिकारियों प्रदेश अध्यक्षों के साथ चुनावी तैयारियों और संगठन की रणनीति पर मंथन। झारखंड में रांची समेत कई शहरों में भिड़े छात्र और जेएमएम कार्यकर्ता, सीएम सोरेन का पुतला फूंकने पर हंगामा, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म फोरम का प्रदर्शन। दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज करवाने में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 7 घंटे लग गए। एक महीने पहले छात्रों के आंदोलन में कथित तौर पर पैलेट गन से घायल हुए एक छात्र की एफआईआर करवाने के लिए राहुल ने आंदोलन किया। सुबह 11:30 बजे राहुल दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे, उनके साथ में पैलेट गन का पीड़ित भी था। बस मांग ये थी कि एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन पुलिस ने दर्ज करने से मना कर दिया, जिसके बाद राहुल गांधी वहीं धरने पर बैठ गए। शाम को खबर आई कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार हो गई है। इस बीच राहुल से डीसीपी सचिन शर्मा लगातार बात करते रहे। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि दिल्ली के थाने में एफआईआर दर्ज होने में 8 घंटे लगे तो हमारे देश के अन्य थानों का क्या हाल होगा।
1: ये न्याय का पहला कदम है, केस लॉज हुआ है। देखिए
2: जब से आपको ये गोली लगी 20 जुलाई को, एक महीना हो गया,
1: छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, 3-4 छर्रे दिल के पास है, साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11:30 बजे हम यहाँ आए, एक महीने से ये घूम रहे हैं, 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, 7:45 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल किए। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिलता। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है, और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है।
0: साहिल के एफआईआर की जानकारी आज तक को लगी, जिसमें साहिल ने बताया कि नीले कपड़े पहनने वाले व्यक्ति के हाथ में बड़ी सी बंदूक थी, जिसने उस पर 4-5 बार पैलेट गन चलाई, जिससे उसकी दाई आंख की रोशनी चली गई।
3: न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है, पर मेरे को खुशी से ज्यादा दुख भी है कि एलओपी के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट दिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ, मेरे शरीर में 200 छर्रे, उसके बाद भी मेरी एफआईआर को 8 घंटे में लिया गया, और शायद ये ली भी ना जाती अगर एलओपी मेरा साथ ना देते। 14 अगस्त से मैं एफआईआर के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी एफआईआर ली गई।
4: उम्मीद थी आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी जब ये कल बात हुई और आप यहाँ आए सुबह, जो पुलिस ये कहा उसके बाद
3: नहीं, मेरे को विश्वास था जी आलोक के आगे तो कंप्लेंट तो होनी है, ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ, कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है।
0: राहुल गांधी बहुत अच्छे तरह से ये समझ चुके हैं कि आंदोलनों की राजनीति लंबे समय तक फायदा देती है, और इसीलिए पिछले एक महीने से राहुल गांधी ने इस बार धरना पॉलिटिक्स पर ज्यादा जोर दिया, चाहे वो जंतर मंतर के छात्रों का मुद्दा संसद में उठाना हो या फिर इस आंदोलन में पुलिस की हिंसा का मुद्दा हो। राहुल गांधी का एजेंडा एकदम अब क्लियर लग रहा है।
5: यह है राहुल गांधी की धरना पॉलिटिक्स का दूसरा एपिसोड। 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन हुआ जिसमें हिंसा हुई, तो 21 जुलाई को राहुल गांधी ने पहले प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया था। अब करीब एक महीने के बाद 21 अगस्त को राहुल गांधी ने आज संसद मार्ग थाने के बाहर धरना दिया। आरोप है कि दिल्ली पुलिस एक पैलेट गन से घायल पीड़ित की FIR दर्ज नहीं कर रही है।
1: हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज FIR दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया है, FIR नहीं हो सकता है, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे।
5: राहुल गांधी पैलेट पीड़ित 19 साल के साहिब लोचाप के परिवार के साथ धरने पर बैठे हैं और आरोप लगाया कि पैलेट की चोट से आंख की रोशनी गंवा चुके साहिल के साथ न्याय नहीं हो रहा।
1: एम्स की रिपोर्ट जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे।
5: राहुल गांधी इन्हीं साहिल को लेकर पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, तब भी उन्होंने दिल्ली पुलिस और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। लेकिन शायद दिल्ली पुलिस को ये अंदाजा नहीं था कि राहुल गांधी अब उन्हीं के थाने के बाहर इस पीड़ित को लेकर धरने पर बैठ जाएंगे। उनके साथ प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और जयराम रमेश भी मौजूद थे। राहुल का आरोप है कि 20 जुलाई के प्रदर्शन में साहिल पैलेट गन से घायल हुए। 14 अगस्त को उन्होंने दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी लेकिन उन्हें शिकायत की कॉपी ही नहीं मिली। 17 अगस्त को ईमेल और फोन से भी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई लेकिन कुछ नहीं हुआ।
6: साहिल पर जो गैर कानूनी ढंग से पुलिस एक्शन हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, उस संदर्भ में FIR दर्ज किया जाए और FIR नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर उनको दिया जाए। मांग सिंपल है, FIR दर्ज करो, रजिस्ट्रेशन नंबर दो और हम यहां से निकलेंगे।
5: पीड़ित छात्र की शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं करने के पीछे कोई वाजिब कारण नहीं बताया गया है, लेकिन दलील यह है कि 20 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता और पुलिस वालों पर हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यों की हाई पावर कमेटी बनाई। ये कमेटी पैलेट गन, इलेक्ट्रिक शॉक बैटन के इस्तेमाल से लेकर महिलाओं से अभद्रता और पुलिस वालों पर हमले के तथ्यों की जांच करेगी। इसके लिए कमेटी घटना के दिन के सारे ड्रोन, CCTV, बॉडी कैम रिकॉर्डिंग के सबूतों की मदद भी लेगी और दोनों पक्षों के घायलों को अंतरिम मुआवजा देने पर भी रिपोर्ट देगी। बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है?
7: जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है? क्या सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं?
5: दरअसल 20 जुलाई को चली पैलेट गन को लेकर पहले तो दिल्ली पुलिस और सरकार ने इनकार किया, फिर GD एंट्री में 2 राउंड पैलेट फायरिंग की पुष्टि हुई और मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट में भी पता चला। RTI में खुलासा हुआ कि लेडी हार्डिंग अस्पताल में पैलेट गन जैसी चोट से जख्मी 9 घायल पहुंचे थे। इसी तरह सफदरजंग के दस्तावेज में पता चला कि एक मरीज पैलेट गन से जख्मी आया था। पैलेट के पीड़ित साहिब लोचाप को राहुल ने पहले भी मीडिया के सामने पेश किया था और उनके शरीर पर सैकड़ों पैलेट के निशान दिखाए थे, जिसके बाद बाकी पैलेट पीड़ित प्रशांत और इरशाद नाम के 2 छात्रों की ओर से पूर्व IPS ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। मौसमी सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: और अब खबर वंदे मातरम को लेकर जारी राजनीति की। जहां केरलम में विपक्ष वंदे मातरम का विरोध कर रही है, तो सरकार विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है।
8: वंदे मातरम पर दो छेक का विवाद किस मुकाम तक पहुंच गया है, ये तस्वीर उसकी वानगी है। जगह है त्रिवेंद्रम का कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और विरोध करते ये छात्र SFI के हैं, कह रहे हैं कि ये केरलम है, यहाँ आप पूरा वंदे मातरम नहीं गा सकते। खबरों के मुताबिक त्रिवेंद्रम के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के तहत युवा प्रोफेशनल्स का राउंड टेबल आयोजित किया गया था। राउंड टेबल से पहले वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ तो SFI के छात्रों ने बीच में ही रुकवा दिया। SFI के छात्रों का कहना था कि ये केरलम है और यहाँ आप पूरा वंदे मातरम नहीं गा सकते। बीजेपी 15 अगस्त के कार्यक्रम में वंदे मातरम न गाए जाने को लेकर आज सड़कों पर है। बीजेपी ने केरलम के सभी जिला मुख्यालयों पर वंदे मातरम कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं कांग्रेस भी वंदे मातरम के दो छंद गाने पर अड़ी है, जिसे लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है।
9: और यदि राष्ट्रगीत का सम्मान करने से कोई मना करता है तो उसकी देशभक्ति पर भी सवालिया निशान स्वाभाविक रूप से लग जाता है। कांग्रेस 1937 के जिस प्रस्ताव की बात करती है, वह कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की कट्टरपंथी मांगों के आगे नतमस्तक होकर पारित किया था और उसका खामियाजा भविष्य में देश को विभाजन के रूप में झेलना पड़ा था।
10: देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया।
8: बहरहाल वंदे मातरम पर अभी संग्राम खत्म होता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: वंदे मातरम पर जारी घमासान का असर अब बॉलीवुड पर भी देखने को मिल रहा है। शर्मिला टैगोर ने वंदे मातरम की दो पद यानी कि दो स्टेंजा गाने का समर्थन किया, जिस पर कंगना रनौत भड़क गई।
8: वंदे मातरम पर जारी सियासत के बीच शर्मिला टैगोर की एंट्री ने आग में घी का काम किया है।
11: और वंदे मातरम के जो स्टेंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा, उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला टू स्टैंजा इज वेरी गुड।
8: शर्मिला टैगोर का ये बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि वो रविंद्रनाथ टैगोर के खानदान से ताल्लुक रखती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ही राष्ट्रगान के रचयिता थे। इसके अलावा शर्मिला टैगोर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC की अध्यक्ष रहीं। वो 13 अक्टूबर 2004 से 31 मार्च 2011 तक इस पद पर रहीं और तब केंद्र में UPA की सरकार थी। खैर, सिर्फ इसलिए शर्मिला टैगोर की दलील को सियासी चश्मे से देखना सही नहीं होगा। बहरहाल शर्मिला टैगोर की मुखालफत में बॉलीवुड की एक और अभिनेत्री सामने आ गई हैं, जिनका नाम कंगना रनौत है। एक कलाकार के तौर पर मुझे हैरानी होती है कि कला या कविता के बारे में उनकी सोच इतनी सीमित और बनावटी कैसे हो सकती है। किसी भी कविता या गाने में शब्द रूपक यानी मेटाफर्स होते हैं। कवि या कलाकार मनचाहा असर पैदा करने के लिए तरह तरह की कल्पनाओं और अद्भुत तुलनाओं का इस्तेमाल करते हैं। वंदे मातरम आजादी की लड़ाई की भावना है। बंकिम चंद्र जी देश को अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। आप कला की इतनी महान रचना को सिर्फ एक धार्मिक रीति रिवाज कैसे कह सकती हैं? इस तरह शर्मिला टैगोर के खिलाफ कंगना रनौत ने मोर्चा खोल दिया और इस मोर्चे से उन्होंने शर्मिला टैगोर पर हमलों की बौछार कर दी। कंगना आगे कहती है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि उन्हें ऐसे युवा चाहिए जिनका शरीर लोहे जैसा हो, हड्डियां स्टील की हो और नसों में बिजली जैसी ताकत दौड़ती हो। वो मौसम का हाल नहीं बता रहे थे बल्कि वो शक्ति के जागरण का आह्वान कर रहे थे। कृपया हिंदू मुस्लिम वाली सोच से बाहर आइए, भले ही हम एक ईश्वर में विश्वास करते हों। कंगना और शर्मिला के बीच ये लड़ाई बता रही है कि वंदे मातरम के दो छंद या छह छंद के सवाल पर बॉलीवुड में भी बेचैनी है। आज तक ब्यूरो।
0: खबर जयपुर से आई हंगामे की तस्वीरों की, जहां प्राथमिक स्कूल जा रही कॉकरोच जनता पार्टी पर गांव वालों ने हमला कर दिया। कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष डांका भी यहां मौजूद थे, जिन्होंने बीजेपी पर इस हमले का आरोप लगाया।
12: यहां पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं, उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में। ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है।
8: जयपुर में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने आई कॉकरोच जनता पार्टी की टीम को लात घूसों से पीटा, किसी को पत्थरों से मारा, किसी पर लात घूसे बरसाए।
12: ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुका है, धक्का मुक्की हो रही है आपस में, और इनको यहां पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष राके के साथ ये मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी। गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं। ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है, और रामपुरा में यहां पर ये देखिए लात घूसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक एक की पिटाई कर रहे हैं, यहाँ पर गाँव वाले पीछे भाग रहे हैं।
8: जयपुर के रामपुरा गांव के इसी स्कूल की जांच पड़ताल के लिए कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी कार्यकर्ता गांव में पहुंचे थे। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका की अगुवाई में युवाओं का ग्रुप गांव में घुसा तो गांव वाले भी पहले से तैयार बैठे थे।
13: आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं।
14: आज आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर। इनको डर है कि कहीं सीजेपी वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे, और सीजेपी वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए, सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा।
8: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी है। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी पर हुए हमले पर कांग्रेस भी सरकार को घेर रही है।
15: वे चाहते हैं कि हमारी नाकामी को छुपी रहे, और जो बदहाली है स्कूलों में, व्यवस्था है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, इतने बच्चों की मौत हो चुकी है और स्थिति बहुत गंभीर है।
8: जयपुर के जिस स्कूल के निरीक्षण को लेकर सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ उसकी सच्चाई ये है कि गांव का स्कूल जर्जर है। जिस इमारत में क्लास चलती थी उसकी हालत इतनी खराब है कि कभी भी ढह जाए, इसीलिए गांव वालों ने स्कूल के सामने ही एक तबेले में व्यवस्था कर दी जहां कक्षाएं चलती हैं।
13: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो बड़े बड़े वादे करते हैं बच्चों के फ्यूचर को लेकर, ये देखिए तस्वीर, यहाँ पर गेट पर यहाँ पर कुंटी लगा रखी है, और यहाँ पर अंदर ही आपको ये भैंसों का तबेला दिख रहा होगा।
8: अब सवाल ये है कि आखिर स्कूल के सुधार से किसी को क्या परेशानी हो सकती है। गांव वाले कह रहे हैं कि समस्या शिक्षा सुधार से नहीं सीजेपी से है।
16: ऐसे कार्यकर्ता नहीं चाहिए कॉकरोच वाले, इनका तो घोर विरोध करेगा ग्रामीण, क्योंकि जो देश के नहीं है तो हमारे क्या हो सकते हैं। जब शिक्षा व्यवस्था सुधार करना ही उनका एक मुद्दा था तो फिर वो झारखंड क्यों नहीं गए? जब पिछले 15 दिनों से वहाँ आंदोलन हो रहा था तो झारखंड क्यों नहीं गए अभिजीत दिपके?
8: इससे पहले भी जयपुर में रांका के स्कूल जाने पर हंगामा हुआ था। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्कूलों की हालत गंभीर है, जहां एक बड़े सुधार की जरूरत है। आज तक ब्यूरो।
0: खबर झारखंड की, जहां हाईकोर्ट के निर्णय के बाद नाराजगी का पूरा खेल ही बदल गया। आंदोलन से सरकार को मनवाने वाले छात्र अब सरकार पर कोर्ट में कमजोर पक्ष रखने का आरोप लगा रहे हैं और एक बार फिर सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं।
17: झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर स्टे लगाकर दो परीक्षाओं से चयनित कर्मचारियों को राहत दी तो दूसरे कर्मचारी भी राहत की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए।
18: हम लोग भी वही रास्ता अख्तियार करेंगे और हम लोग भी स्टे लेके आएंगे।
19: हाँ, क्या लगता है सरकार ने ये फैसला गलत किया?
18: सरकार ने एक तरफा फैसला किया है। सरकार ने, मुझे लगता है कि अपने सारे रास्तों को एग्जॉस्ट नहीं किया, ये एक हेस्टी डिसीजन है जो कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेशर बनाने से उसके दबाव में आके सरकार ने एक हेस्टी डिसीजन।
17: इस बीच हाईकोर्ट के फैसले से वो छात्र भी नाराज जिनकी मांग पर सोरेन सरकार ने इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया था। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के बैनर तले प्रदर्शन करने वाले छात्र आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष सही से नहीं रखा।
20: आप ये धोखा सिर्फ झारखंड के लाखों छात्रों को नहीं दिए हैं, झारखंड के तमाम आम आवाम को दिए हैं, झारखंड के उन तमाम अभिभावक को दिए जिन्होंने अपने बच्चा को, अपने बेटा और बेटियों को पिछले 26 दिनों से अपने हक और अधिकार के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भेजने का काम किया।
17: 16 दिन तक अनशन करने वाले देवेंद्र महतो ने भी चेतावनी दी कि सरकार ने लापरवाही बरती तो बड़ा आंदोलन करेंगे।
2: सरकार अपना पक्ष रखने में, अपना जांच रिपोर्ट रखने में अगर किसी तरीके से लिपापोती करती है, किसी तरीके से कोताही बरतती है, तो यहाँ के छात्र बिल्कुल अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब जेपी के तर्ज पर, जेपी आंदोलन के तर्ज पर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, ये हम आज ऐलान करते हैं।
17: सोरेन सरकार के लिए भी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। एक गुट की मांग माने तो दूसरा नाराज, और दूसरे की मांग माने तो पहला नाराज। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: यूपी में एक राजनीति जेन जी और जेन अल्फा को लेकर भी चल रही है। इस बीच सीएम योगी जापान के जेल जेन अल्फा से मिले, जहां उन्होंने भारत और जापान के जेन अल्फा को जोड़ने की कोशिश की।
17: जापान के जेन अल्फा के साथ योगी आदित्यनाथ नई जनरेशन के स्टाइल में सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। पहले छात्र सेल्फी लेता है, फिर योगी खुद सेल्फी स्टिक पकड़कर सेल्फी लेने लगते हैं। तस्वीरें लखनऊ के सीएम आवास की, जहां एक डायलॉग विद का फ्यूचर कार्यक्रम के तहत योगी आदित्यनाथ ने जापान से आए 13 छात्रों के साथ संवाद किया।
21: एक बच्चा लखनऊ के किसी गांव से आया है और दूसरा जापान के किसी गांव से। एक हिंदी बोलता है, दूसरा जापानी, पर दोनों के बीच में एक चीज समान रूप से है, और वह है कि दोनों अभी अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं।
17: छात्रों ने भी योगी आदित्यनाथ के साथ गाना गाया। कार्यक्रम के बाद योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को गिफ्ट दिया, तो वहीं छात्र भी मुख्यमंत्री के लिए खास तोहफा लाए। आज तक
0: छात्र और बेरोजगार दोनों पर हर नेता की नजर है, लेकिन बावजूद इसके इन दोनों की ही मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। ग्वालियर में नर्सिंग छात्रों का अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग के 56 नर्सिंग कॉलेजेस से जुड़े छात्र प्रभावित हैं। छात्रों की चार प्रमुख मांगे, लंबित रिजल्ट जारी करना, परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित करना, पात्र छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देना, कॉलेज की गलती से जिन छात्रों की स्कॉलरशिप रुकी है उनकी फीस माफ करना।
17: ग्वालियर में नर्सिंग छात्रों का हल्ला बोल, कटोरा ताल बना नर्सिंग का जंतर मंतर। परीक्षा रिजल्ट और स्कॉलरशिप को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन, 56 कॉलेजों के छात्रों के भविष्य पर सवाल। दिल्ली के बाद अब ग्वालियर में भी नर्सिंग छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। NSUI के बैनर तले BSc और GNM नर्सिंग के छात्र कटोरा ताल स्थित फ्लैग मार्च पॉइंट पर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ गए हैं। छात्रों ने आंदोलन स्थल को नर्सिंग का जंतर मंतर नाम दिया है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा और रिजल्ट में देरी, कथित फर्जी कॉलेजों, कागजों पर फैकल्टी और स्कॉलरशिप अटकने की वजह से हजारों छात्रों का भविष्य अधर में है।
22: जो कि हमारी परीक्षा 3 साल में कंप्लीट करा के हमें डिग्री मिलनी चाहिए थी, जो कि हमें 6 साल होने को कंप्लीट होने को आए, लेकिन हमें कोई डिग्री अभी तक प्राप्त नहीं है, और इसके जिम्मेदार हमें आज तक नहीं पता चल रहा है। हमारा गवर्नमेंट है, हमारा कॉलेज है, कोई जवाब देने के लिए हमें रेडी नहीं है। यहाँ पे हम क्या करें, हमारा जो समय खराब हुआ है जी, हमें वापस कर सकते हैं हमारे 6 साल। हमारी यही मांग है, जल्द से जल्द एग्जाम करवाए जाएं और रिजल्ट प्राप्त हुए जाएं हम लोगों को। सारे बच्चे परेशान है, या हम ये नहीं कहते, कोई भी बच्चा कहता हम गरीब घर से आए, पैसा हमारा है, हमारा टाइम है, तो हमें अपना हक चाहिए, ये हमारी मांगे हैं।
17: छात्रों का कहना है कि GNM का 3 साल का कोर्स 6 साल में भी पूरा नहीं हो रहा है, तो वहीं BSc नर्सिंग का 4 साल का कोर्स 7 साल तक खिंच गया है। इतना समय बीतने के बाद भी डिग्री मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। छात्रों ने बताया कि साल 2020-2021, 2022 के BSc और 2021-2022 के GNM के एग्जाम और रिजल्ट पिछले 3 साल से पेंडिंग पड़े हैं। इसके अलावा शहर में फर्जी कॉलेजों का बड़ा खेल चल रहा है। एक ही बिल्डिंग में नियमों को ताक पर रखकर 3-3 कॉलेज संचालित हो रहे हैं। फैकल्टी सिर्फ कागजों पर दिखाई जा रही है, जबकि हकीकत में मौजूद ही नहीं है। कई छात्रों की स्कॉलरशिप भी कॉलेज की गलती से अटक गई है। छात्रों की मांग है कि जिनके स्कॉलरशिप रुकी है उनकी फीस माफ की जाए। छात्रों का कहना है कि मामला सरकार के संज्ञान में होने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ा।
23: इनकी परीक्षाएं पिछले 4 साल से समय पर आयोजित नहीं की जा रही हैं,
1: और इसका पूरा दोष ग्वालियर के जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज हैं, एक एक बिल्डिंग में तीन तीन कॉलेज चला रहे हैं और पूर्ण तरह से उनकी जो फैकल्टी लगी हुई है कॉलेज में पूर्ण तरह से फर्जी है और इसका पूरा परेशानी बच्चों को झेलनी पड़ रही है। ये बच्चियाँ हैं जो गरीब परिवारों से आती हैं, इनकी ना तो स्कॉलरशिप मिली, ना इनके समय पर परीक्षाएँ हो रही हैं। ये बच्चियाँ गरीब परिवार से आती हैं, तीन तीन साल में अपनी डिग्री करने के बाद इन लोगों ने सोचा था कि हम 20-25 हज़ार की कहीं नौकरी करेंगे, कहीं सरकार में नर्स बनने का काम करेंगे, लेकिन आज तक ये 5-6 हज़ार रुपये की नौकरी करने को मजबूर हैं और कॉलेज द्वारा इनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही है। कॉलेज वाले बोलते हैं हम आपकी बात आगे कर रहे हैं, कॉलेज क्या बात सुनेगा जब कॉलेज खुद फर्जी है, CBI से जाके उन्होंने स्टे लिया।
17: छात्रों की चार मुख्य मांगे हैं। पहला, सभी लंबित परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द जारी किए जाएं। दूसरा, लंबित परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित कर शेड्यूल जारी हो। तीसरा, सभी पात्र छात्रों को बिना किसी शर्त के परीक्षा में बैठने दिया जाए, क्योंकि लापरवाही छात्रों की नहीं है। चौथा, कॉलेज की वजह से जिनकी स्कॉलरशिप रुकी है उनकी फीस माफ हो। छात्रों ने कहा कि ये लड़ाई किसी संस्था या व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि अपने शिक्षा अधिकार के लिए। मांगे पूरी होने तक कटोराताल फ्लैग पॉइंट पर यह अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। सर्वेश पुरोहित, ग्वालियर, आज तक।
0: अबर पाकिस्तान की पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान के साथ खेल हो गया। उन्हें 16 सितंबर तक अस्पताल में रहने की छूट थी, लेकिन कुछ ही घंटों में इमरान को वापस रावलपिंडी अस्पताल से जेल भेज दिया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में आखिर चल क्या रहा है।
3: रात 1:05 रावलपिंडी का अदियाला जेल, अचानक सड़क पर हलचल तेज हुई। इस भारी सुरक्षा काफिले में इमरान खान की बहन डॉक्टर उज्मा खान और उनके निजी चिकित्सक डॉक्टर फैसल सुल्तान की गाड़ी को भी साथ रहने की अनुमति दी गई थी। जब ये काफिला शिफा अस्पताल पहुंचा, तो पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। एंट्री रूट पर कटीले तार लगा दिए गए थे और किसी भी बाहरी वाहन या मीडिया को पास आने की इजाजत नहीं थी।
4: मीडिया के भाइयों से गुजारिश होगी, ये DSA चीज लगाई हुई है, ये सारी खाली कार से ये चौक अक्रॉस द बैरियर लगे गए, वहाँ पे मीडिया पॉइंट बनाया हुआ है हमने, शाबाश।
3: उधर जिन रास्तों से इस काफिले को गुजरना था, वहाँ इमरान समर्थक गुलाब की पंखुड़ियाँ बरसा रहे थे।
23: फूल ही फूल थे आज, फूलों की पत्तियां थी आज, लोगों की मोहब्बत थी और आज लोगों ने कहा कि फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है।
3: इमरान खान को शिफा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनके पहुंचने से पहले तक मीडिया को हटा दिया गया था, लिहाजा इमरान खान की एक तस्वीर तक सामने नहीं आई। असली सस्पेंस इसके बाद शुरू हुआ। पूरी दुनिया में यह खबर फैल गई कि इमरान खान को जेल से इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन इस खबर के कुछ ही देर बाद मामला पलट गया। जानकारी मिली कि इमरान खान को वापस अदियाला जेल भेज दिया गया है।
24: सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक होना लाजिम था, बड़ी बदकिस्मती है जो कुछ हुआ है, लेकिन देखते हैं आगे क्या।
3: ये खबर चौंकाने वाली थी, क्योंकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को इलाज के लिए 16 सितंबर तक शिफा अस्पताल भेजने का आदेश दिया था, लेकिन इमरान खान को कुछ ही घंटे बाद फिर से जेल भेज दिया गया। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तराद ने सोशल मीडिया एक्स पर 2 घंटे में 2 पोस्ट किए। पहले पोस्ट में लिखा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए कैदी को 20 और 21 अगस्त की रात कड़ी सुरक्षा में अस्पताल ले जाया गया। आपके डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट और एक फिजिशियन समेत डॉक्टरों की टीम ने उनकी विस्तृत जांच की और उन्हें मेडिकली फिट घोषित किया। उनकी बहन उज्मा खान जांच और इलाज के दौरान उनके साथ रहीं। पूरी जांच के बाद उन्हें 21 अगस्त की सुबह 5 बजे के करीब वापस अदियाला जेल भेज दिया गया। उन्होंने कोई डॉक्टरी रिपोर्ट साझा नहीं की, ये भी नहीं बताया कि 4 घंटे में ही कैसे पूरी जांच हो गई और हुई तो उसकी रिपोर्ट कहाँ है। 2 घंटे बाद एक और पोस्ट लिखा और ये खुलासा किया कि इमरान की जांच शिफा अस्पताल में नहीं बल्कि पेम्स यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में की गई। आज तक ब्यूरो।
0: छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: राहुल गांधी के धरने के बाद पैलेट गन केस में दिल्ली के संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज। राहुल का कटाक्ष, अमित शाह और गृह सचिव ने दी अनुमति, बोले न्याय की दिशा में पहला कदम। राहुल पर बीजेपी का पलटवार, नड्डा बोले वंदे मातरम पर घिरने के बाद कांग्रेस का धरना, स्मृति बोली विरोध के नाम पर स्वांग। सीएम योगी ने अखिलेश को फिर घेरा, कहा इनके पीडीए का पी पिछड़ा से पंडित हुआ और एक दिन होकर जाएगा पाकिस्तान। अखिलेश का पोस्ट, एक रंगी क्या जाने पीडीए के बहुरंग। इधर नवीन की नई टीम बनने के बाद बीजेपी की तीन बड़ी बैठक, राष्ट्रीय पदाधिकारियों प्रदेश अध्यक्षों के साथ चुनावी तैयारियों और संगठन की रणनीति पर मंथन। झारखंड में रांची समेत कई शहरों में भिड़े छात्र और जेएमएम कार्यकर्ता, सीएम सोरेन का पुतला फूंकने पर हंगामा, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म फोरम का प्रदर्शन। दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज करवाने में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 7 घंटे लग गए। एक महीने पहले छात्रों के आंदोलन में कथित तौर पर पैलेट गन से घायल हुए एक छात्र की एफआईआर करवाने के लिए राहुल ने आंदोलन किया। सुबह 11:30 बजे राहुल दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे, उनके साथ में पैलेट गन का पीड़ित भी था। बस मांग ये थी कि एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन पुलिस ने दर्ज करने से मना कर दिया, जिसके बाद राहुल गांधी वहीं धरने पर बैठ गए। शाम को खबर आई कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार हो गई है। इस बीच राहुल से डीसीपी सचिन शर्मा लगातार बात करते रहे। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि दिल्ली के थाने में एफआईआर दर्ज होने में 8 घंटे लगे तो हमारे देश के अन्य थानों का क्या हाल होगा।
1: ये न्याय का पहला कदम है, केस लॉज हुआ है। देखिए
2: जब से आपको ये गोली लगी
1: 20 जुलाई को, 1 महीना हो गया, 6 शरीर में है, 3-6 आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, 3-4 दिल के पास है, साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11:30 बजे हम यहाँ आए, 1 महीने से ये घूम रहे हैं, 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, 7:45 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल की। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिलता। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है, और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है।
0: साहिल के एफआईआर की जानकारी आज तक को लगी, जिसमें साहिल ने बताया कि नीले कपड़े पहनने वाले व्यक्ति के हाथ में बड़ी सी बंदूक थी, जिसने उस पर 4-5 बार पैलेट गन चलाई, जिससे उसकी दाई आंख की रोशनी चली गई।
3: न्याय की हुई है ये एफआईआर, न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है। पर मेरे को खुशी से ज्यादा दुख भी है कि एलओपी के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट लिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ, मेरे शरीर में 200 जारे छपरे, उसके बाद भी मेरी एफआईआर को 8 घंटे में लिया गया, और शायद ये ली भी ना जाती अगर एलओपी मेरा साथ ना देते। 14 अगस्त से मैं एफआईआर के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी एफआईआर ली गई।
4: उम्मीद थी आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी जब ये कल बात हुई और आप यहाँ आए सुबह, जो पुलिस ने कहा उसके बाद
3: मेरे को विश्वास था जी आलोक के आगे तो कंप्लेंट तो होनी है, ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में।
0: राहुल गांधी बहुत अच्छे तरह से ये समझ चुके हैं कि आंदोलनों की ये राजनीति लंबे समय तक फायदा देती है और इसीलिए